सकते हैं ये दो मास जो किया है इसमें नोट करना स्वराज्य अधिकारी रहे या कर्मेंद्रिय के वश बन गए, अभी कर्मातीत बनना है। समय समीप आ रहा है तो क्या करना है, चलते फिरते स्वराज्य अधिकारी बनना ही है, चलते फिरते स्वराज्य अधिकारी बनना ही है। यह संकल्प आप ब्राह्मण बच्चों के ही है। डबल राज्य, स्वराज्य और फिर भविष्य में विश्व राज्य। बाप दादा चक्कर लगाते बच्चों का रिजल्ट नोट कर रहे हैं, तो सदा स्वराज्य अधिकारी, इसमें अभी अटेंशन चाहिए। बाबा इशारा भी दे देते हैं कि अभी रिजल्ट बाबा ने देखी उसमें सदा स्वराज्य अधिकारी, इसमें अभी अटेंशन चाहिए। तो दो कार्य बाप दादा ने दिया है, एक ये दो मास स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक रहते वह अपनी रिजल्ट देखने हैं, और साथ साथ मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर द्वारा व्यर्थ समाप्त करना है। तो दो कार्य बाबा ने दिया, एक स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक रहते और दूसरा मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर द्वारा व्यर्थ समाप्त करना है। इसमें जो नंबर लेंगे उसको बाप दादा इनाम देगा। पसंद है, करना है ना, करेंगे करेंगे ना, कांध हिलाओ। बाबा कहते करेंगे तो कांध हिलाओ। अच्छा, बाप दादा ने आज सभी का जो स्नेह है वह स्वीकार किया। अमृत वेले से जो बच्चों ने स्नेह के मोतियों की माला चढ़ाई, बाबा कहते हैं वो स्नेह को बाबा ने स्वीकार किया। अमृत वेले तो वतन में भी बहुत बच्चों की रिमझिम थी, एडवांस पार्टी भी वतन में आज अपने दिल का स्नेह देने लिए, लेने लिए आए थे, अपने दिल का स्नेह देने और लेने आए थे। अब वह बाप से पूछते हैं, एडवांस पार्टी की आत्माएं भी बाप से पूछते हैं कि आखिर हमारा ये पार्ट कब तक। तो बाबा कहे क्या जवाब दे, पहली लाइन वाले बताओ क्या जवाब दे, क्या कहा। हाँ, दादी जानकी कुछ कह रही थी तो बाबा पूछते क्या कहा। दादी जानकी ने कहा हम रेडी हैं। बाबा कहे आप अकेली जाएगी, तो दादी ने कहा सभी जाएंगे, आपका प्यार है ना, ऐसे छोड़कर राज्य कैसे करेंगे। तो दादी कहती है एडवांस पार्टी वाले हमको क्यों छोड़कर चले गए। तो बाबा कहते उन्हों का पार्ट था ना, उन्हों को जाना ही था। तो देखो बाबा की दादियों के साथ की रू रिहान कितनी सुंदर होती है। तो दादी ने कहा एडवांस पार्टी वाले हमको क्यों छोड़कर चले गए। तो बाबा के उन्हों का पाठ था ना, उन्हों को जाना ही था। अभी आप ये कोशिश करो कि जल्दी जल्दी संगठन तैयार करो, जो दो मास काम दिया है ना, अगर ये काम आप सभी को करा देंगे, रिजल्ट निकालेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो दादी कहती बाबा के स्नेह में कर लेंगे। बाबा कहते स्नेह तो है, स्नेह में सभी पास है, बाप दादा भी देखते हैं कि स्नेह सबका है, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं, बाबा देखता है कि बच्चे बैठते हैं, बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने का वायुमंडल

शक्तिशाली चाहिए। कोई कैसा बैठता है, कोई कैसा बैठता है। अगर आप फोटो निकालो ना, तो आपको खुद लगेगा कि कुछ होना चाहिए। हम बाबा के उस समय फोटो निकालो तो लगेगा कि कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने लास्ट संडे की मुरली में विशेष कार्य दिया था, ज्वालामुखी योग कहा। बाप दादा ने कहा ज्वालामुखी योग, उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना। पुरुषार्थ करते हैं सभी, बाबा ने ये भी देखा पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ो। अभी बाप दादा ने हर बच्चे को ये दो मास्क दिए हैं, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा आपको सहयोग देगा। बाबा जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा एक्स्ट्रा आपको सहयोग देगा। मन के मालिक, मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बाहें को चलाते हो। जो चाहते हो वह करते हैं ना। अभी आप चाहो यहां नहीं, यहां रखूं, जब चाहते हैं हाथ पैर यहां नहीं यहां रखूं तो रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, इतना पावरफुल मन के ऊपर भी कंट्रोल हो। जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो, आज मन की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहां तक रही। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए। बाबा कहे अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए। अब समर्थ बन, वायुमंडल में समर्थपन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अब जल्दी समाप्ति कराना चाहते हैं। सुना है ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो तीव्र। तीव्र शब्द को बाबा कहे ऐड करो। करना ही है, करेंगे देखेंगे, ये गेंगे नहीं चलेगा। स्नेह का नजारा भी आज देखा, हर एक के दिल में कितना प्यार है। लेकिन जितना प्यार है ना, साथ में उतना शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को भरो। कभी भी कोई भी बहने अपने को सिर्फ शक्ति नहीं, शिव शक्ति समझो। शिव शक्ति के दिन है तो बाबा कहे अभी कोई भी बहन अपने को सिर्फ शक्ति नहीं, शिव शक्ति समझो। शिव शक्ति, बाप साथ है। और पांडवों, पांडव क्या समझे, तो पांडव से पांडव पति साथ है। तो भी क्या करेंगे, जो बाप दादा ने कहा है पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ। वायुमंडल बनाओ, एक दो के सहयोगी बन। हर एक अपने अपने जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो क्या करेंगे, अभी नवीनता करेंगे ना। जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो। अमृत वेले बाप दादा देखते हैं कि संकल्प अच्छे करते हो। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। लेकिन जब कर्म योगी बनते हो, संबंध संपर्क में आते हो, तो उसमें फर्क हो जाता है। अमृत वेले तो बहुत अच्छे संकल्प करते, लेकिन बाबा कहे बाद में फर्क हो जाता है।
कर्म योगी की स्थिति इसमें अटेंशन ज्यादा चाहिए। अच्छा, सभी खुश तो है ना? खुश है? देखो नए नए भी कितने आते हैं। जो नए पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, देखो कितने हैं। आधा क्लास नए आए हैं, बाप दादा आए हुए नए बच्चों को देख खुश है, क्योंकि लास्ट समाप्ति के समय से तो पहले आ गए हैं। समाप्ति के समय से तो पहले आ गए हैं, लेकिन जितना लेट आए हो उतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इस थोड़े टाइम में आपको पूरे इस जन्म का भविष्य बनाना है। इतना अटेंशन रखना पड़ेगा, समय को बचाना, सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना, तीव्र पुरुषार्थी रहना। साधारण पुरुषार्थ से पहुंचना मुश्किल है, फिर भी बाप दादा आए हुए बच्चों को दिल से मुबारक दे रहे हैं, दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, टीचर्स बहने बहुत आई हैं, टीचर्स को देखकर तो बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो निमित्त टीचर्स बनी है वह बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनी हुई है। कोई भी टीचर को देखते खुश होते हैं, क्योंकि टीचर्स माना ही जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, टीचर्स माना ही जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। फ्यूचर आपका क्या है? फ्यूचर है सदा दिल खुश, फ्यूचर है सदा दिल खुश, सदा अधिकारी अधीन होने वाले नहीं। तो टीचर्स के फीचर्स का ये साक्षात्कार कराते हैं। हर एक टीचर सदा यही समझे, कहां बोला कहां नहीं बोला भले, लेकिन वर्तमान समय की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति आपके फीचर्स आपकी शक्ल दिखाती है। सदा ये अटेंशन रखो कि हमारा चेहरा ऐसा साक्षात्कार कराने वाला हो। कोई भी टीचर के सामने आए, कोई भी व्यक्ति टीचर के सामने आए, टीचर को देख एक तो खुश मिजाज हो जाए, खुशी उनके जीवन में दिखाई दे, ऐसे खुशनुमा और खुश किस्मत हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक टीचर का लक्ष्य अच्छा है, करना ही है, बनना ही है, ऐसे है ना? लक्ष्य क्या है? यही लक्ष्य है ना? तो ये लक्ष्य लक्षण में दिखाई देता भी है, और ज्यादा दिखाई देना चाहिए। जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर आत्मा को आवश्यक है। चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, तो टीचर्स माना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें, अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन यह सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चाहना बढ़ेगी। कुछ मिले कुछ मिले, इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए। जो कोई आवे वह कम से कम कुछ लेके ही जावे, चेहरे और चलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जाए। दाता के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। क्योंकि हर एक टीचर सेवा तो करते ही है, और अपनी रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार्ट तो आप ही देखते हो, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ।
अगर कारणे अकारणे नहीं हुआ तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो, क्योंकि टीचर्स माना निमित्त दाता के बच्चे दाता। तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना यह भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपकी हिम्मत पर तो खुश है। अब और साथी बनाओ, और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़ने ही है। अभी थोड़ा हंगामा होगा, बाबा कहते अभी थोड़ा हंगामा होगा, और सब उत्कंठा से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, हम बच्चों के प्रति स्वमान की सीट पर स्थित रहे, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमान धारी भव। स्वमान की सीट पर स्थित रहे, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमान धारी भव। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। आज का स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति में रह दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति में रह दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। आज का व्यक्त इशारा है, परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारी पर भी उपकार करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते अपकारी पर भी उपकार करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे बाप ने ज्ञानी को भी कल्याणकारी दृष्टि से देखा, उपकारी पर उपकार तो दुनिया वाले भी करते हैं, भक्त आत्माएं भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। अपकारियों पर भी उपकार करें तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सब श्रोताओं का सहर्ष स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, चलते चलते जीवन में कभी कभी अचानक निराशा आ जाती है, उदासी आ जाती है, और फिर ये तो कोई बात नहीं खैर, लेकिन ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के संन्यास लिया जाए या हर बात से वैराग्य आ जाता है। ये बहुत सुंदर शब्द है वैराग्य, लेकिन उसका अर्थ अगर हम सही रीति से जानेंगे तो फिर रहना कहाँ है, वो हिमालय की गुफा में रहना है या घर की दीवारों में रहना है, वो बात अलग है। उस पर जानने के लिए, समझने के लिए और अपना चिंतन सुनने के लिए हमारे साथ उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर जी का रेडियो मधुबन की तरफ से हम पहले स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम।
1: थैंक यू भक्ति जी, गुड मॉर्निंग आपको भी और हमारे सब श्रोतागण को भी। आपने जो वैराग्य का सब्जेक्ट विषय चर्चा के लिए लिया है और वो सब्जेक्ट जो ओपन करने के लिए आपने जो शब्द प्रयोग किया है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे वैराग्य प्रश्न आपने कहा, कभी कभी जिंदगी में ऐसे रहता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वैराग्य आता है। उसमें कभी कभी हमारे लोग जो है, हमारे मित्र जो है, हमारे मित्र संबंधी जो है, वो मूंझ जाने की संभावना है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हम वैराग्य और नैराश्य उसमें अंतर करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमें नैराश्य आ जाता है और उसे ही हम वैराग्य समझ बैठते हैं। उसमें बहुत अंतर है और ये अंतर जानने की, समझने की कोशिश हमें करनी है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए इस वैराग्य शब्द का अर्थ जानने के लिए, या जैसे आपने कहा, नैराश्य और वैराग्य दोनों की परिभाषा अलग है, दोनों कंसेप्ट अलग है, लेकिन इतना नैराश्य आ जाता है कि उसको ही लोग वैराग्य मानने लगते हैं। तो मुझे उस पर एक बहुत सुंदर कथा याद आती है जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी है। कथा का जो सार है और गहराई से जो अर्थ है, वो आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताएंगे। तो कथा ऐसी है कि एक नौजवान जो किसी शहर में रहता था,
1: अच्छा,
0: ग्रेजुएट था और बहुत अच्छी अपनी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं था, क्योंकि हर समय किसी न किसी समस्या उसको परेशान करती थी और फिर उस समस्या का हल करने में उसके कई घंटे, कभी कभी कई दिन भी बीतते थे, और इसीलिए उसको लगता था कि अभी किसी को मिलकर ये समस्या जो है उसके बारे में जरूर पूछना चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो एक बार जब वह शहर से बहुत दूर गया तो उसने देखा कि एक फकीर बाबा ऊंटों का काफिला लेकर चल रहे थे।
1: ओके।
0: और वो फकीर बाबा के बारे में गांव तथा शहरों में काफी चर्चा हो रही थी। बहुत सारे लोग उस फकीर बाबा का नाम सुनकर उनके पास आते थे, अपनी समस्या का हल करते थे और चले जाते थे। तो ये जो नौजवान था, उसने भी निश्चय किया कि ये निश्चित है कि मेरी भी समस्या का हल फकीर बाबा जरूर करेंगे।
1: ओके।
0: तो फिर वह छुट्टी निकाल कर बाहर चला गया, जहाँ फकीर बाबा का काफिला, ऊंटों का काफिला और फकीर बाबा रुके हुए थे, और सुबह सुबह ही वह उनके पास पहुंचा। देखा तो बहुत सारे गांव वाले लोग, उनकी भीड़ थी इकट्ठी हुई, बहुत इंतजार करना पड़ा उसको, लेकिन उसके मन में अभी तो श्रद्धा और भी बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि उसको लगा, अरे वाह, मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं, तो इसीलिए उसको वो इंतजार का भी कुछ दुख नहीं हुआ, या उसको इंतजार करते समय वो बोर नहीं हुआ।
1: अच्छा।
0: फिर जब उसका नंबर आया तब वह फकीर बाबा के पास गया और उसने अपनी समस्या बताते हुए फकीर बाबा को कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हर समस्या मेरे पास आती है ऐसा मुझे लगता है, और कभी ऑफिस का टेंशन होता है, कभी घर पर जाओ तो घर में अनबन होती है, वहाँ का टेंशन होता है, कभी कभी सेहत का भी टेंशन होता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, और कभी तो मन इतना उदास हो जाता है बाबा कि बात मत पूछो, आप कोई उपाय बताइए और मेरे जीवन में जो सारी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए, ऐसा कोई अक्सर जिसको रामबाण कहते हैं ना वो इलाज मुझे दे दें ताकि मैं चैन से जी सकूं। फकीर बाबा ने उस नौजवान को एक बार फिर से देखा, मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पुत्र आज तो बहुत देरी हो गई है, आपका नंबर लगते वक्त अभी शाम का समय हो गया है, लेकिन एक बात जरूर है, मैं कल सुबह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा काम है मेरा, करोगे? अभी नौजवान को तो बहुत उमंग आया, क्योंकि बस आज की ही रात थी कि उसकी सारी समस्याएं समाप्त जो होने वाली थी, इसीलिए उसने कहा, बिल्कुल बाबा जो आप कहेंगे वो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो फिर फकीर बाबा ने उस नौजवान को कहा, देखो बेटा हमारे काफिले में 100 ऊंट है, इनकी देखभाल करने वाला जो इंसान है वो आज बीमार हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आज की जो रात है तुम इनका ख्याल करो, जब तक 100 के 100 ऊंट बैठ जाए तब तक तुम सोना नहीं, 100 के 100 ऊंट जब बैठ जाएंगे तब तुम जाकर निश्चिंत होकर सो जाना। बस इतना बोले और फकीर बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह नौजवान बाबा से मिलने गया तो बाबा ने पूछा, बेटा नींद अच्छी हो गई? तो फिर नौजवान ने कहा, अरे बाबा काय की नींद, मैं एक पल भी नहीं सो पाया, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सभी ऊंटों को बिठा ही नहीं पाया, कोई ना कोई ऊंट खड़ा ही हो जाता था। तो फिर बाबा मुस्कुराए, बोले, बेटा मैं तो जानता था यही होगा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है जो ये सारे ऊंट एक साथ बैठ जाए। वो फिर अजय ने नाराजगी से फकीर बाबा को कहा, बाबा ये तो सरासर अन्याय है, अगर आप जानते हैं फिर आपने मेरे को ये काम सौंपा ही क्यों? तो फकीर बाबा ने कहा, देखो बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया, यही ना कि कितनी भी कोशिश करने के बाद सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते, तुम एक को बिठाओगे तो दूसरा खड़ा होगा, इसी तरह तुम्हारे जीवन की समस्याएं हैं। एक समस्या का समाधान करोगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी समस्या का समाधान करने बैठेंगे तो तीसरी अचानक आ जाएगी, क्योंकि ये जीवन ऐसा है, जब तक जीवन है तब तक समस्याएं है ही है, कभी ज्यादा कभी कम। तो नौजवान और भी मूंझ गया, उसने पूछा, तो बाबा अभी क्या करना चाहिए? अभी उस नौजवान को जो फकीर बाबा ने उत्तर दिया, दोस्तों मैं समझती हूँ ये उत्तर हम सारे लोगों के लिए जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उन सब के लिए इतना सुंदर है, और उसका जवाब का अगर हम जीवन में कुछ परसेंटेज में भी अवलोकन करेंगे

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक टू रेडियो मधुबन पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो। हम सुन रहे हैं एक सुंदर कहानी दृष्टांत के रूप में, जो हमें अपने जीवन के आईने में झांक कर देखने से पता चलता है कि ये तो मेरी कहानी है, ये तो हर एक की कहानी है, न कि उस नौजवान की। तो ज्ञानेश्वर जी, उस नौजवान ने जब पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा जग गई, तो फकीर बाबा ने कहा, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। फिर से उन्होंने पूछा, कल रात क्या हुआ था? कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बिठाए, पर बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए, कुछ समझे? अजय नौजवान देखता रह गया, उसको कुछ समझा नहीं। तो फकीर बाबा ने आगे कहा, बेटा समस्याएं भी ऐसी ही होती है, कुछ समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती है, जैसे ऊंट खुद ही बैठ गए। कुछ को तुम प्रयास करने के बाद भी मिटा नहीं सकते, हल नहीं कर सकते। कुछ बहुत कोशिश करने पर हल नहीं होती, तो ऐसी समस्याओं को छोड़ देना चाहिए, और उचित समय के बाद वो खुद ही खत्म हो जाती है, जैसे तुम्हारे जाने के बाद कई ऊंट अपने आप बैठ गए। और जैसे मैंने पहले कहा, जीवन जब तक है समस्याएं रहेगी ही रहेगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिन रात उनके बारे में सोचते रहो। ऐसे होता तो ऊंटों की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं सकता। समस्याओं का हल करना एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, अर्थात चैन की नींद लो। जब समय आएगा तो समस्याएं खुद ही हल हो जाएंगी।
1: बहुत अच्छा।
0: इसीलिए कहा गया है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा ये तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम, अर्थात जब खुशी होती है तब हम उछल जाते हैं, जब गम होता है और वो बार बार होता है तब हम वैराग्य की भाषा करने लगते हैं। ज्ञानेश्वर जी, इस कहानी से हम अपने निजी जिंदगी में क्या ले, ये तो फकीर बाबा ने ही बताया, लेकिन इस कहानी से मुझे आपसे ये पूछना है कि जो हम यह सब बातें सुनते हुए पढ़ते हुए भी बुद्धि तक नहीं लेते, ये जो वैराग्य वृत्ति आ जाती है, वो क्या चीज है?
1: फिर से मैं रिपीट करूंगा कि आपने जो वैराग्य शब्द यूज किया वो वैराग्य नहीं है, ये नैराश्य है, ये पलायनवाद है, और समस्या उनसे जब घिर जाता है तब आदमी को या इंसान को वैराग्य आ जाता है, ऐसे लगता है, लेकिन वो असली नैराश्य है। वैराग्य जो है वो वैराग्य डर के मारे भागने को सिखा नहीं सकता। वैराग्य जो है सब कुछ होते हुए भी उसमें नहीं रहना है, उससे आसक्ति नहीं रहनी है, उसे वैराग्य कहा जाता है। वो सिर्फ दुख के कारण नहीं आ सकता, भले दुख एक निमित्त हो सकता है, लेकिन लोगों का दुख खुद का दुख नहीं। जैसे गौतम बुद्ध जी की कहानी है कि उन्होंने जब संसार के दुख देखे तब उन्हें वैराग्य आ गया, और उन्हें लगा कि संसार जो है वो सार रूप नहीं है, असार है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि संसार को, क्योंकि वो तो संसारी और सन्यासियों की बात है, अगर हम वैराग्यता अपने जिंदगी में अपनानी है तो डर के मारे या भय के मारे या नैराश्य के मारे हम हमारे जिंदगी से नहीं भाग सकते। इसी को कहा जाता है वैराग्य। बिना डर के हम जिंदगी को फेस कर सके, आनंद ले सके और समस्याओं से घबराए नहीं, इसी को मुझे लगता है वैराग्य कहना है। और अगर समस्याओं से डरे हुए हम हैं और जिंदगी से या समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं तो वो नैराश्य है। और ये नैराश्य जो है वो इंसान की जिंदगी में बड़ी समस्या बन सकती है और ये समस्या जो है उसका हल नहीं होता और फिर वो नैराश्य की खाई में गिर जाता है, ऐसे मुझे लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और यही मुझे आपसे जानना था या यही मेरा एक अंतर निरीक्षण था कि कभी कभी जो नैराश्य हम बहुत अंदर तक चले जाते हैं, नैराश्य आता है, बार बार आता है, तो हम उसको दुर्भाग्यवश वैराग्य शब्द देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मैंने एक बहुत सुंदर वैराग्य की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ लिखा हुआ था कि वैराग्य का अर्थ यह नहीं है जो प्रायः लोग लेते हैं। लोग अर्थ लेते हैं कि घर बार छोड़कर उदास होकर गंगा किनारे जाकर बैठना और माला जपना, लेकिन अगर हम संसार को असार समझते हैं, देह को मिट्टी समझते हैं, तो फिर शहर में रहो, गांव में रहो या हिमालय की गुफाओं में रहो, देह रूपी मिट्टी का अनुभव करना, उसकी अनुभूति होना और सब संसार की चीजों में ये जो ममत्व है, आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ना, इसको सच्चा वैराग्य कहा जाता है, जो बहुत बहुत बहुत ऊंची स्टेज है। और इसीलिए उसमें आगे कहा था, घर में रहते हुए भी अगर आप इस संसार को असार समझकर उसमें जो मन लगा के रखते हैं, आश लगा के रखते हैं और छोटी छोटी आश पूरी न होने के बाद दुखी होते हैं, तो इसीलिए घर में रहते हुए देह को मिट्टी समझ अगर व्यापार भी करो, नौकरी भी करो, बाल बच्चों को भी संभालो, रस्म रिवाज दुनियादारी को भी निभाओ, तो जरूरी नहीं कि आपको भगवा वस्त्र पहनकर गंगा किनारे जाना है। बहुत अच्छा लगा मुझे।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा मुझे। इस बात पर अगर हम थोड़ी सी गहराई से चर्चा करें तो ये नैराश्य और वैराग्य की जो सीमा है, जो हम कभी कभी कह देते हैं, ऐसे ही कुछ शब्द कह देते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, वो नहीं होगा और हमको उससे बाहर आने के लिए, जैसे इस नौजवान ने बहुत सुंदर उसका अर्थ समझा कि समस्या है तब तो हमारे पास चैलेंजेस है, हमारे पास कुछ ना कुछ हल करने के लिए वो युक्तियाँ आएगी, वो हम सोचेंगे, वो सबसे अच्छी बात है। आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे, आपका जो चिंतन है वो जानने की हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से उपस्थित होंगे। रेडियो मधुबन पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक टू रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। ज्ञानेश्वर जी, आपका चिंतन जो वैराग्य के बारे में है, जो आपने कहा कि निराशा और वैराग्य में अंतर है ये तो निश्चित है, वो क्या है?
1: वैराग्य जो आपने समस्या उनका बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, ऊंट का, बहुत अच्छी कहानी ऊंट की बताई आपने, तो इसमें यह है कि समस्या तो जिंदगी में आती ही है। और एक आपने बताया था कि मेरी जिंदगी जीते समय मैं देह को मिट्टी समझूं और संसार को असार समझूं, ये अवस्था है। लेकिन हर बार मुझे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं हमेशा समझूं कि ये मेरा देह मिट्टी का पुतला है और ये मेरी जिंदगी असार है, तो जिंदगी का मजा नहीं ले सकता। वैराग्य जो है वो जिंदगी जीने की कला है। वैराग्य जो है वो जिंदगी खुशी से जीने की कला है। वैराग्य हमें दुखों से वैराग्य चाहिए, वैराग्य हमें नैराश्य से वैराग्य चाहिए। लेकिन अगर खुशी से वैराग्य हम ले लेंगे तो जिंदगी की खुशी गायब हो जाएगी। हम हमेशा वैराग्य की जब परिभाषा आती है तब सोचते हैं कि जिसकी जिंदगी में वैराग्य है वो खुशी नहीं ले सकता, जिंदगी की खुशी नहीं ले सकता, जिंदगी का आनंद नहीं ले सकता। और फिर लोगों को लगता है मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया तो अभी मैं खुश नहीं रह सकता, ये गलत है। मुझे लगता है कि अगर मुझे जिंदगी की खुशी लानी है तो दुखों से वैराग्य मिलना चाहिए। और ये वैराग्य क्या है इसका भी मुझे अर्थ समझ में आना चाहिए। यह वैराग्य जो है समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं का सामना करना है। और समस्याओं का सामना करते समय भी मुझे उसमें एंजॉयमेंट आनी चाहिए।
0: समस्याओं का सामना करते समय एंजॉयमेंट, ये बात हम समझ नहीं पाए।
1: बिल्कुल, तो देखिए समस्या जो है, जो समस्याओं से सामना करते समय अगर हम थक जाते हैं, डर जाते हैं, तो उसमें एंजॉय नहीं कर सकते। और मैं हमेशा के उदाहरण देता हूँ गेम का, खेल का, और कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे और कोई बैडमिंटन हो, कोई भी खेल हो, तो सामने वाला जो है वो कभी हमारे ऊपर हावी होता है या कभी हम उसके ऊपर हावी होते हैं। क्रिकेट का गेम है तो गेंद तो हमेशा आती ही रहेगी। अगर गेंद के डर से मैं बैटिंग करना छोड़ दूं तो मुझे पिच छोड़ के भागना पड़ेगा और ताली बजेगी नहीं। अगर मुझे ताली बजानी है, अगर मुझे क्रिकेट एंजॉय करना है, तो ये गेंद जो है, समस्या जो है वो गेंद जैसी है। जो सचिन तेंदुलकर जो है वो बोलते हैं क्रिकेट का भगवान है, वो हमेशा बोलते थे कि क्रिकेट वो एंजॉय करते थे, कितने रन बनाइए, कैसे बनाइए, उससे ज़्यादा क्रिकेट खेलते समय वो एंजॉय करते थे। और ये जिंदगी जो है हमारी वो भी क्रिकेट जैसी है। अगर हर कोई समस्या जो हमारी जिंदगी में आती है वो अगर क्रिकेट की गेंद जैसे मैं समझूँ तो उसका हल करना भी मेरे हाथ में है और उससे डर नहीं लगता। इसलिए मैं समझता हूँ कि वैराग्य जो है वो दुखों से वैराग्य चाहिए। और उसी समय मेरी जिंदगी कितनी कीमती है उसका भी मुझे अनुभव और एहसास होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, वैराग्य और नैराश्य में अंतर समझ में आएगा, ऐसे मुझे लगता है।
0: आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हमें खुशी होती है उससे वैराग्य नहीं लेना है, लेकिन जब गम है जिंदगी में उस समय हमें उसको चैलेंज स्वीकारना है और उस समय ऐसा लगना चाहिए। लेकिन यह तो केवल खुशी के समय नहीं करना और गम के समय अनुभव करना, ये बात थोड़ी सी अभ्यास की लगती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि उसमें मुझे जिंदगी जो है, मेरी जिंदगी जो है वो जिंदगी कितनी कीमती है इसका एहसास नहीं है। इसलिए कभी कभी आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है कि वो डिफिकल्ट लगता है। अभी उसके लिए मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ तो उसमें पता चलेगा कि जिंदगी कीमती अगर है तो उसको खोना कोई नहीं चाहता। वैसे खुशी अगर हमारी जिंदगी में कीमती है तो उसे भी कोई खोना नहीं चाहता। एक कहानी है, हमारे जे आर डी टाटा जी जो है उनके बारे में कहानी है। अभी मुझे पता नहीं कि ये सचमुच जेआरडी टाटा जी की कहानी है या और किसी की कहानी है, लेकिन कभी भी मैंने देखा है अच्छी कहानियाँ जो होती है वो अच्छे इंसान जैसे जेआरडी टाटा बहुत माननीय सम्माननीय व्यक्ति है उनके बारे में, अब्दुल कलाम जी ऐसे ऐसे कई मान्यगण मान्यवर व्यक्तियाँ हैं उनके नाम पर कई कहानियाँ हैं। उस कहानी का हमें बोध लेना है, कहानी के तल तक नहीं जाना है, कहानी के जड़ तक नहीं जाना है, कहानी का बोध लेना है। तो एक आदमी उनसे मिलता है और कहता है कि मैं पेन हमेशा खोता हूँ और मुझे आदत पड़ी है, मेरे पास कोई पेन टिकता ही नहीं है, फाउंटेन पेन जो लिखते हैं, कलम जो है। तो जेआरडी टाटा जो है वो बोलते हैं फिर क्या करना है, आपको क्या चाहिए मुझसे? बोलते मुझे ऐसा कुछ हल ढूंढो कि मैं मेरी याददाश्त ठीक कैसे रखूं, मेरा पेन जो है वो संभाल के कैसे रखूं, क्योंकि आजकल मैं क्या करता हूं बहुत सस्ते पेन लेता हूं, तो गुम भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है। तो जेआरडी टाटा उसे सलाह देते हैं कि एक काम करो, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना करके ज्यादा से ज्यादा महंगा पेन ले लो, और महंगा पेन लेने के बाद फिर हम एक दो महीना रुकते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं और फिर हम देखेंगे उसका हल कैसा लेना है। तो जब वो महंगा पेन लेता है, बहुत ही महंगा पेन, उसकी हिसाब से बहुत महंगा पेन होता है, और वो लेता है और फिर यूज करने लगता है। दो तीन महीने के बाद फिर वो जेआरडी टाटा जी से मिलता है, फिर वो जेआरडी जी उनको पूछते हैं, भैया क्या हो गया, आपका पेन ठीक तो है? वो बोलते आश्चर्य की बात है, जब से मैंने ये महंगा पेन दिया वो महंगा पेन मेरा लूज हुआ नहीं, गुम नहीं हुआ, एकदम मेरे पास 3 महीने हो गए, मेरे पास सही सलामत है, सुरक्षित है। और मुझे आश्चर्य हो गया कि इतना जल्दी मुझ में बदलाव कैसे आया। तो क्या हो गया, सोच में फर्क पड़ गया। ये सस्ता पेन लेने की आदत थी, पेन को सस्ता समझने की आदत थी, और मन में संकल्प था कि ये पेन बहुत सस्ता है तो उसको केयर नहीं करते थे। लेकिन जब पता चला कि ये महंगा पेन है मेरे पास, तो उसका ख्याल रखने लगे, उसकी जानकारी हो गई, उसका नॉलेज हो गया, और फिर पेन गुम नहीं हो गया। हमारी जिंदगी में जो खुशी है या हमें जिंदगी जो मिली है वो बहुत कीमती है। अगर हम उसे सस्ता समझेंगे तो फिर नैराश्य आ जाता है, अगर उसे कीमती समझेंगे तो नैराश्य नहीं आता, और फिर वैराग्य जो है, वैराग्य मीन्स उससे हम दूर रहते हैं, उसमें है लेकिन उससे दूर रहते हैं। जैसे कमल है, कमल के पत्ते जो है, कमल का फूल ऊपर खिला हुआ रहता है, कमल की डंडी ऊपर रहती है, लेकिन कमल के पत्ते जो है वो पानी में है, लेकिन पानी से उन्हें वैराग्य है, नैराश्य नहीं है, क्योंकि वो पानी में है, पानी से भागते नहीं है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि हम पानी में रहते हुए भी डंडी जैसे कमल की ऊपर रहती है, कमल का फूल ऊपर रहता है, वैसे हमारी खुशी बरकरार रखे तो हमें जिंदगी से कहेंगे सच्चा वैराग्य है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बहुत सुंदर, अर्थात जीवन में रहना भी है, उसको समस्याओं को हल भी करना है, जैसी समस्या आए, जैसे आपने कहा कि हमारी जो ऑटो सजेशन है, जैसे कीमती पेन उस नौजवान के पास जब आया तब वो गुम नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने मन को एक संकल्प दिया कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो केयरफुल हो गया। कभी कभी हम केयरलेस होते हैं और केयरलेसनेस जो है वही हमें निराशा की तरफ ले जाता है, ऐसा आपका कहना है?
1: बिल्कुल, और केयर जो है, केयर और चिंता उसमें फर्क आ जाता है। हम जिसे केयर समझते हैं वो चिंता में बदली हो जाती है, और ये चिंता जो है फिर मन को खाती रहती है, और वो चिंता से जीवन में निराशा आती है, और ये चिंता जो है ये मनगढ़ंत चिंता रहती है। कभी कभी हम वो सब्जेक्ट बहुत छोटा रहता है, उसे हम सोच सोच के बड़ा करते हैं, और इतना बड़ा कर देते हैं कि वो सब्जेक्ट हमारे ऊपर हावी होता है, वो विषय हमारे ऊपर हावी होता है, और बाद में पता चलता है ये तो चिंता जो है, ये जो सब्जेक्ट जो था, ये जो विषय था, ये प्रश्न था, वो अपने आप उसका हल हो गया। जैसे आपने ऊंट का बताया था, कई ऊंट जो होते हैं वो अपने आप बैठते हैं, वैसे कई समस्या जो है वो समाधान उनका अपने आप मिल जाता है
0: जी। जैसे कि हम आपत्ति अगर है, कोई विपदा है, उसको हल करने के लिए उस भागते रहते हैं तो वो कभी जाती नहीं। जैसे कुत्ते का हमेशा मिसाल देते हैं, कुत्ता अगर पीछे आ रहा है, हम भाग रहे हैं, तो कुत्ता और जोर से हमारे पीछे आता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हम रुक जाते हैं तो वो देखता है और भाग जाता है।
1: कभी कभी ये रुकना जो है, रुकना धैर्य से रुकना है। रुक जाते हैं, थक के रुक जाते हैं तो फिर कुत्ता काट लेगा, लेकिन धैर्य से रुकते हैं तो फिर कुत्ते को समझ में आएगा और कुत्ता भी रुक जाएगा या कुत्ता वापस चला जाएगा। तो धैर्यता जो है वो हमारे पास चाहिए, और ये धैर्यता जो है वो कब आएगी, जब हमें वैराग्य और नैराश्य का अंतर समझ में आएगा।
0: बहुत सुंदर। तो वैराग्य और नैराश्य, उसका अंतर समझ में आने से हमारे मन की जो परमात्मा के समीप जाने की निरंतरता है, उसको हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और यही जीवन जीने की कला है। आइए सुनते हैं एक बहुत सुंदर संगीत, और उसके साथ हम भी अपने मन को फिर से एक बार रिचार्ज करते हैं। समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन पर सुनते रहो मुस्कुराते।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक टू रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। वैराग्य जो शब्द है वो बहुत गहराई से समझना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें जीवन से वैराग्य लेना है या जीवन के जो सुख दुख है उनकी तरफ वैराग्य वृत्ति रखनी है। तो ज्ञानेश्वर जी, इस वैराग्य का हमारे निजी जिंदगी में कुछ अर्थ हम ले सकते हैं?
1: वैराग्यता जो आपने बताया था, इसके बार इसके ऊपर जब हम चर्चा करते, इस विषय पर जब चर्चा करते हैं, तब मुझे याद आता है राजा जनक की भी एक कहानी हमने बहुत बार सुनी भी है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने उसका जिक्र किया था। वो राजा जो है जनक, वो राज्य तो करता है, बड़ी अच्छी तरह से राज्य करता है, राज्य का अनुभव भी लेता है, लुप्त भी लेता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे मालूम है, उसे याद है कि आज वो राजा है, कल शायद नहीं रह सकता। तो राज्य में उसकी आसक्ति नहीं है, राज्य करते समय उसकी आसक्ति नहीं है, इसलिए आनंद ले सकता है। जब आसक्ति हो जाती है तब उसका आनंद चला जाता है और चिंता रहती है कि आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। वैराग्य जो है, हम हमेशा कहीं ना कहीं हमारे मन में ये विचार आता है कि वैराग्य और पलायनवाद ये दोनों एक है, ऐसी कभी कभी आशंका लगती है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। पलायनवाद जो है तो जिंदगी से भागना है, समस्याओं से भागना है, उसे हम कहते हैं पलायन। और जिंदगी का लुप्त उठाना है, समस्याओं का सामना करना है, समस्याओं को किनारा करना है और जिंदगी का आनंद उठाना है, और दूसरों की समस्या कोई है तो उसका निराकरण करना है, उसे मैं समझता हूँ वैराग्य है। वैराग्य शक्तिशाली है, सब कुछ होते हुए भी मैं इसमें फंसता नहीं है, ये शक्ति मेरे पास है, इसलिए वैराग्य शक्तिशाली है। शक्तिशाली पुरुषों को कहते हैं वैराग्य है। अगर कोई शक्तिशाली पुरुष है और निर्बल जो है उसके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, तो वो अपने शक्तियों से, अपने विचारों से वैराग्य कहता हूं मैं, क्योंकि उसे शक्ति का एहसास है लेकिन फिर भी वो लड़ाई नहीं करना चाहता। वैसे समस्या मेरे पास है लेकिन समस्याओं से मैं डरता नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास शक्ति है, मेरे पास बल है समस्याओं का सामना करने का। तो अपने शक्ति का एहसास होते हुए भी उसे नहीं दिखाना है, इसे कहते हैं वैराग्य। अपने शक्तियों का एहसास मुझे करना है और उसे जानकारी रखना है लेकिन उसका गर्व नहीं करना है, इसे कहते हैं वैराग्य। ऐसा मेरा विचार है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये वैराग्य का मेरे जिंदगी में फायदा क्या है। हम जिस ऊपर विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, तो ये वैराग्य का मेरे अगर निजी जिंदगी में फायदा नहीं है तो ये वैराग्य का कोई मतलब नहीं है। और ये निजी जिंदगी का फायदा कब होता है? जब मैं जिंदगी का आनंद उठाता हूँ। तो जिंदगी का आनंद उठाने के लिए मुझे खुद की पहचान होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्योंकि बहुत संत शिरोमणि जो है उन्हें वैराग्य आ गया, वो भाग नहीं निकले, उन्हें वैराग्य आ गया। भले लगता है लोगों को वे संसार के भागे, लेकिन संसार से दूर होने हो गए। दूर होना, किनारा करना और भागना, उसमें अंतर है। तो जैसे गौतम बुद्ध जी जो है, बहुत सारे संत महात्माएं जो है, उन्हें वैराग्य आ गया, लेकिन वैराग्य आने के बाद उन्होंने आम आदमी को जो उपदेश किया, आम आदमी के सामने जो मिसाल के रूप में खड़े हो गए, उसे हम वैराग्य कहते हैं। और वो वैराग्य जो है वो जिंदगी में, खुद के जिंदगी में और दूसरों के जिंदगी में आनंद ला सकता है, ऐसा मुझे लगता है।
0: मतलब वैराग्य का बहुत सुंदर अर्थ जो आपने कहा कि परिवर्तन हमारे संकल्पों में होना चाहिए। जहाँ मैंने एक जगह पढ़ा था कि वैराग्य अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कर्तव्य से हम भागे, लेकिन यह संसार सदा था ही नहीं, जैसे कि कभी कभी मृगजल जैसा वहाँ बताया था, लेकिन यह संसार था ही नहीं तो इससे हम हर प्रकार की मित्रता क्यों करें? और इसके ऊपर अगर हम सोचे विचार करें तो हमारी दुख जो है उससे हम किनारा कर सकते हैं,
1: दुख जो है उससे किनारा कर सकते हैं, क्योंकि दुख जो है रुकने वाला नहीं है। एक मैंने पढ़ा था बहुत अच्छा था कि हमेशा अपने मन को समझाते रहो। वैराग्य जो है, वैराग्य कब आता है? जब जैसे आपने कहा मिट्टी का देह है, मिट्टी का देह है ये मुझे भावना आनी चाहिए, तो वैसे मिट्टी का देह है बिल्कुल ऐसी भावना आनी है, और दूसरा खुद से बात करनी है। वैराग्य क्या है? जब मैं देह में फंस जाता हूँ तब खुद से बात करना मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मेरे मन को समझा रहा हूँ। मेरा मन बुद्धि और मैं आत्मा जो है उसकी सूक्ष्म इंद्रिया है। जब आत्मा का अनुभव होगा तब देह से वैराग्य आएगा। जब आत्मा की अनुभूति, इसको जिसे हम आत्म अनुभूति बोलते हैं, आत्मज्ञान बोलते हैं, और वो हमेशा खुशी दिलाता है, तो ये आत्मा जो है वो मन को कहते रहता है। और ये कहना मीन्स जिंदगी से वैराग्य लाना, क्योंकि वैराग्य में डिफरेंशिएट करना है मैं कौन और मेरा कौन। ये मेरा शरीर है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, और इसलिए कभी कभी ये मन को जो समझानी देनी है, ये वैराग्य जब आता है तब दो अलग अलग चीजें समझ लेते हैं, तब मन को समझानी देनी पड़ती है। और ये मन की समझानी है वो हमेशा अच्छी रहती है। कभी भी मेरा मन उदास होता है तब मैं उसे समझानी देता हूँ तो मन मानता है, लेकिन मन को जब मैं खुद मन समझता हूँ, खुद देह समझता हूँ, तो मैं समझाने वाला कौन ये भूल जाता हूँ और फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए वैराग्य, आपने जो शब्द कहा वो वैराग्य जो है वो असली पहचान, खुद की पहचान, आत्मा की पहचान, ये जब मिलेगी तब बाकी सबसे वैराग्य आता है, बाकी सब चीज़ों से हम किनारा कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: बहुत सुंदर। और किनारा करना और उसमें रहते हुए भी उसका आनंद उठाना, आपने दोनों बात बहुत अच्छी तरह से समझाई, और यही अगर हम ठीक तरह से कर पाते हैं उस समय वे स्मृति रहती है, तो फिर कभी भी हमारे मन में वो पलायनवाद नहीं आएगा। इसमें कमल के जैसी, हमारी कमल का फूल जो है उस जैसी हमारी वृत्तियाँ होगी, और वो वृत्तियाँ होने से उस कीचड़ का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, और हम इस संसार सागर में रहते हुए भी उस सागर से किनारा कर सकेंगे, और जब चाहे तब उनकी लहरों पर लहरा भी सकेंगे, तैर भी सकेंगे, और यही सच्चा जीवन है, उसको हम अनुभव करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अब वाणी को विराम देने का समय आया है। फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे अमृत धारा प्रोग्राम के द्वारा। रेडियो मधुबन पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आपने बचपन में वो कहानी अवश्य सुनी होगी कि एक राजा को शत्रु सेना ने पराजित कर दिया और राजा भाग गए जंगल में। और जंगल में जब उन्होंने देखा कि एक चींटी बार बार एक दीवार पर चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, लेकिन उसने तब तक अपना प्रयास नहीं छोड़ा जब तक वो सफल नहीं हुई। वो चींटी जैसे राजा के लिए प्रेरक बन गई और राजा वापस लौटे। उन्होंने अपनी सेना एकत्र की और पुनः चढ़ाई करके शत्रु सेना को भगा दिया। कहने का भाव, जीवन में कई बार समस्याएं आती हैं, हम घबरा कर भागने लगते हैं। जब समस्याएं आती हैं तो जैसे हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, असहाय महसूस करते हैं। लेकिन यदि हम हिम्मत ना हारें, यदि हम साहस बनाए रखें, यदि अपनी धैर्यता को ना छोड़ें, तो निश्चित रूप से सफलता हमारे गले का हार बनती है। समाधान कार्यक्रम आपको लगातार बार बार यही सिखाता है कि परिस्थितियां कमजोर हैं, आप शक्तिशाली हैं। आप हिम्मत ना हारें तो निश्चित रूप से समस्याएं 9-2-11 हो जाएंगी। यही सिखाते हैं हमें बार बार आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू
0: राता जी। इस प्रकार की कुछ प्रेरक बातें हमेशा ही हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं, हमें लड़ने के लिए तैयार करती हैं, हमारी हिम्मत और हौसले को बनाए रखती हैं।
1: बिल्कुल, यही हर समस्या के समाधान का एक मूल सूत्र है कि मनुष्य हिम्मत ना हारे। हार होती है, हार भी जीवन का एक अंग है। जैसे ऐसा तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो निरंतर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता गया हो। कहीं ना कहीं उसे रुकना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसकी हार होती है। गिरता है मनुष्य, फिर चढ़ता है। एक बच्चा भी चलना सीखता है, कई बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, आखिर वो चलना सीख जाता है।
0: हम अब्राहम लिंकन की भी बात सुनते हैं प्रताप जी। जीवन में लगातार, वो चाहे बिजनेस का फील्ड रहा हो, पारिवारिक फील्ड रहा हो, चुनाव का फील रहा हो, लगातार हारते हारते अल्टीमेटली 51-52 इयर्स ओल्ड जब हुए वो, तब जाकर के राष्ट्रपति बने।
1: बस यही बात है कि मनुष्य ऐसी अपनी मेंटलिटी को तैयार कर ले कि जीत हमारी ही है। और स्पिरिचुअल नॉलेज में हम इसके लिए बहुत अच्छा एक मंत्र जैसा एक महावाक्य देते हैं, मैं विजयी रत्न हूँ, मेरी विजय है ही। ये जो संकल्प है कि मैं विजयी हूँ, विजय मेरी ही होगी, चाहे हार कितनी भी बार हो, अंततः मैं ही विजय को प्राप्त करूँगा। तो इस सुंदर संकल्प से हमारे अंदर जो विजय की शक्तियाँ हैं, विजय प्राप्त करने की शक्ति हम सब के अंदर है, वो एक्टिव हो जाती हैं और मनुष्य विजय पा लेता है। शक्तियाँ सब के अंदर हैं लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में रहती हैं। हमें उन्हें एक्टिव करना होता है, हमें उन्हें जगाना होता है। तो ऐसे सुंदर संकल्प, चाहे हिम्मत हो, चाहे मनुष्य के अंदर दृढ़ता हो, चाहे उमंग उत्साह हो, चाहे ये संकल्प हो कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे ये संकल्प हो विजय मुझे मिलेगी ही, मैं तो विजयी हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, भगवान का आशीर्वाद है मेरे साथ, उसने मुझे वरदान दिया है, विजय तुम्हारी ही होगी। तो ये श्रेष्ठ संकल्प हमारी सोई हुई शक्तियों को फिर से एक्टिव कर देते हैं और वो शक्तियाँ हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं।
0: बिल्कुल, तो यही सुंदर संकल्प हमारे मन में रहें कि सफलता हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और सफलता हम अर्जित करेंगे। और वैसे भी हम सोचें यदि व्रता जी, तो निश्चित रूप से भगवान ने हमें इस सृष्टि पे सफलता के लिए ही भेजा है, असफलता के लिए तो बिल्कुल नहीं भेजा होगा, ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना है। तो जब हम इस प्रकार के सुंदर विचार करते हैं तो जैसे असफलता दूर होती चली जाती है, और यदि हमारे सामने समस्याएं आती भी हैं तो समस्याएं हमें समस्याएं नहीं लगती, जैसे आपने कहा कि खेल लगता है। और वैसे कहा भी गया है कि लाइफ इज अ गेम, प्ले इट, एंजॉय इट।
1: बस यही है कि मनुष्य दो चीजों पे बहुत ध्यान दे, एक वो कर्म को सुधारे
0: जी,
1: वो इमोशनल होकर या किसी बुरे संग में आकर अचानक कुछ गलत काम न कर बैठे। दूसरा वो व्यसनों से बचे। देखिए, बहुत बड़े बड़े जो केस हुए हैं पिछले 6 मास में ही, जिन्हें गैंग रेप लोगों ने नाम दिया है, वो ऐसे ही तो हो गए, वो अपनी मति खो बैठे। युवक कितने अच्छे थे वो सब, किसी किसी ने तो सुसाइड कर लिया ना लज्जावश। माँ बाप ने भी कह दिया हमारा बेटा नहीं, ये मर जाए तो अच्छा, इसे फांसी पर चढ़ा दो। तो अचानक इमोशनली या बुरे संग में रहकर वो गलत काम कर बैठे। तो मनुष्य को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये समा देना चाहिए, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, जैसे पाप कर्मों से मेरा कोई नाता नहीं, और जिस दिन इस सारे संसार में पुण्य की सरिता बहने लगेगी, ये पाप कर्मों का गंदा नाला सूख जाएगा, उस दिन वास्तव में कोई भी समस्या नहीं रहेगी।
0: बिल्कुल, हम चाहेंगे कि ऐसा दिन बहुत जल्दी से जल्दी आए जबकि पाप के नाले, पाप की सरिताएं सब समाप्त हो जाएं और पुण्य की ही सरिता प्रवाहित हो। आजकल तो लोग शायद ये सोचने लगे हैं कि अब शायद कुछ सुधार होना नहीं है, चारों तरफ पाप ही पाप इतने हैं, तो अब पुण्य का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि शायद अब पुण्य।
1: आज भी मैं पढ़ रहा था अखबारों में, और जो कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सूत्र हैं और जो कुछ आज उन्हें दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे अच्छे चिंतक भी तो समाज में है ना, बहुत बुद्धिमान लोग, समझदार लोग, जो भविष्य के बारे में बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, ऐसे लोग भी बहुत हैं। तो बड़ी निराशा भरी दृष्टि से वो लिख रहे थे, बोल रहे थे कि आखिर होगा क्या इस लोकतंत्र का, तो किसी को भी इसका उज्जवल भविष्य दिखाई नहीं देता। या तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, कोई और तंत्र आएगा जिसमें अच्छे लोग शासन संभाल सकें और समाज को एक, देश को एक नई दिशा दे सकें, क्योंकि राजाओं पे सब कुछ, नेताओं पे सब कुछ निर्भर करता है। कहावत भी है, यथा राजा तथा प्रजा, तो आजकल के नेता राजा ही हैं। तो अगर वो मानसिक स्थिति से बहुत सुंदर हो, उनके जीवन में पुण्य बहुत हो, उनके मन में लोक कल्याण की भावना हो, स्वार्थ से वो हट जाएं, जो डर्टी राजनीति चल रही है इसको बिल्कुल स्वच्छ कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से संसार में पुण्य की सरिता बहने लगेगी। और ये समय आ रहा है। अब देखिए, भगवान जो इस सृष्टि का नियंता है वो भी तो देख रहा है ना, और उसकी भी तो कुछ प्लानिंग होती है ना, ऐसे तो नहीं ना बहता ही चला जाएगा।
0: वो गीत भी है ना भ्राता जी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई,
1: हे प्रभु तू मालिक तो है पर क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहा, लेकिन वो देख रहा है कुछ। और अभी भी संसार में अच्छे लोग हैं, उनकी कमी नहीं है, उनकी उपस्थिति से ही संसार चल रहा है, देश चल रहा है। गंदे लोग थोड़े ही होते हैं लेकिन वो प्रसिद्ध ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा समय आ रहा है जब इस संसार में पुण्य ही पुण्य होगा और ये पाप की गंदगी सदाकाल के लिए समाप्त हो जाएगी, और एक सुंदर व्यवस्था, चाहे राज्य व्यवस्था कहे, जहाँ सब कुछ सुखदायी होगा, जहाँ ये रोग नहीं होंगे, ये समस्याएं नहीं होंगी, एक सुंदर भविष्य जैसे हमारा आह्वान कर रहा है, वो तो सृष्टि चक्री ऐसा बना हुआ है, तो भगवान की प्लानिंग है, उसके अनुसार अब संसार में काम चलेगा। मनुष्यों की प्लानिंग से तो देख लिया क्या हो गया है।
0: जैसे आपने वर्णन किया कि किसी भी प्रकार की ये रोग, शोक, व्याधि, समस्याएं ना हो, बल्कि सभी लोग सुखी हों और पुण्य की सरिता ही चारों ओर प्रवाहित होती रहे। फिलहाल भ्राता जी, मैं चूंकि अब हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग में तो समस्याएं हैं ही, इसलिए मैं समस्याओं से आपको रूबरू करा रहा हूं। ये पहला जो हमारे पास मेल आया है ये दिल्ली से आया है, और ममता मेहता जी लिख रही हैं कि मेरा 19 साल का बेटा नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा है, उसके संगी साथी ठीक नहीं हैं, अपनी पढ़ाई और फ्यूचर को लेकर वो जरा भी फिक्रमंद नहीं है, मेरे मन में उसे लेकर चिंता बनी रहती है, जब ज़्यादा समय घर से बाहर रहता है तो बहुत नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं। मैं 1 साल से ब्रह्म कुमारी विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, कृपया कोई हल बताएं कि उसकी नशे की आदत छूट जाए, बुरे साथी छूट जाएं और वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दें।
1: ऐसे बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे पास भी आते रहते हैं। माताएं विशेष रूप से निश्चित है ये बात कि चिंतित रहती हैं, उनके 19-20 साल के बच्चे, 12वीं क्लास के बच्चों का ये ज्यादा दर्दनाक समाचार सुनने में मिलता है कि बुरे संग में चले गए। अब इसके बाद तो उनका कैरियर बनाने का समय है ना, 12वीं क्लास में वो कैसा परफॉर्म करेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, मेडिकल में जाएंगे, या आगे की जो कॉलेज की लाइफ है वो उनकी कितनी अच्छी चलेगी।
0: बिल्कुल, सारा बेस यही,
1: सारा बेस यही बनता है। तो ये काल बहुत सुंदर काल मनुष्य के लिए होता है, तो माँ का चिंतित होना बिल्कुल लाजमी है और उसे चिंता करनी भी चाहिए। लेकिन बच्चे क्या है आजकल, कुछ बच्चे तो बहुत अपने भविष्य के बारे में सिंसियर हैं और बहुत सेंसिटिव हैं, और वो हमेशा सोचते हैं कि माँ बाप न केवल पैसा खर्च कर रहे हैं, चलो पैसा भी किसी के पास बहुत हो, लेकिन हमारा भी तो अपना भविष्य है ना, माँ बाप कब तक हमें साथ देंगे, हमें अपना जीवन भी तो अच्छी तरह से जीना है ना, समाज में भी हमें कुछ करना है। ये जो फ्रेंड्स मिल गए हमें दो चार जो गलत राह पर हैं, जिनका पढ़ाई के लिए कोई रुचि नहीं है और जो हमेशा ही गंदी बातें करते हैं, व्यसनों में रहते हैं, कॉलेजों में जाते ही नहीं हैं, तो ये साथी तो बहुत थोड़े समय के हैं। और जैसा जो अच्छे बच्चे हैं वो जानते हैं कि कलयुग में ये दोस्त सच्चे दोस्त नहीं होते, आज हैं कल नहीं होंगे, आज हमारे दोस्त हैं कल किसी और के होंगे, आज हमें धोखा देंगे कल किसी और को धोखा देंगे, तो वो इनसे दूर रहते हैं। जिस विद्यार्थी ने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है वो तो इन सब चीजों से बचा रहता है, उसके माँ बाप भी उस पर बहुत खुश रहते हैं और उसका भविष्य भी बहुत सुंदर होता है। अन्यथा वही होता है, किसी भी तरह इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया, चलो मेडिकल में चले गए डोनेशन आदि देकर, लेकिन क्योंकि पढ़ने में होशियार नहीं है, मन विचलित है, बुरे संग के कारण बहुत चीजें डैमेज हो चुकी हैं अंदर में, ब्रेन भी बिल्कुल कई हिस्से उसके डैमेज कर दिए हैं उसने बुरे व्यसनों के कारण, शराब पीकर, गुटखा खाकर, कई चीजें गंदगी आजकल बहुत

0: हमारे माँ बाप, हमारा फ्रेंड सर्किल सब हमें अप्रिशिएट करे, हमें ऐसा काम करना। हम बुरे संग से प्रभावित क्यों हों, हम क्यों ना अपने अच्छे संग से बुरे लोगों को प्रभावित करें। मुझे खुद का अनुभव है, मैं जब 10th में पहुंचा तो 3 लड़के ऐसे थे जो 10th में 3 बार फेल हो चुके थे और वो दादा बन चुके थे,
1: सीनियर मोस्ट,
0: बिल्कुल सीनियर मोस्ट थे। तो 3 बार असफल हो के वो पहले दिन ना मेरे पास आ बैठे, मैं आगे बैठता था और उन्होंने अपनी सीट ले ली। पहले मैं भी छोटा था, पहले तो मुझे डर लगा ये तो बदमाश जैसे लड़के हैं, अब ये मेरे साथ रहने लगे, वो मेरे से बात करने लगे, दोस्ती करने लगे, तो मुझे थोड़ा फियर तो हुआ। लेकिन मैंने देखा वो मेरे से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और उन्हें ये था कि क्योंकि उन्होंने देखा था जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, वो ग्रामीण व्यवस्था थी वहां, तो सब बच्चों को बैठा के, सब बच्चे जितने भी 9, 10, 11, 12 तक था वो सब बच्चों को एक साथ बैठाया था और रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे थे। तो 9th में मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे तो मुझे खड़ा किया गया, तो उन्होंने देखा था। जब उनका नंबर आया तो वे फेल थे, तो वो बहुत खुश हुए और मेरे साथ आ बैठे। मुझे डर लगा लेकिन उनकी रुचि बढ़ गई। अब वो हमारे घर में पहुंचने लगे और मेरे से मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने लगे। मेरा ये था, मैं
1: लगा होगा कि आपने उनका बेड़ा पार कर सकते।
0: और सचमुच उनकी उस साल सेकंड डिवीजन आ गई, वो याद करते अभी मैं कभी उधर जाता हूँ। तो क्यों ना हम अपने अच्छे संग से उन बुरे व्यक्तियों को भी अच्छा कर दें। लेकिन ये तब होगा जब हम अपने लक्ष्य में दृढ़ होंगे। तो मैं इन माता जी को, इनकी जो सहानुभूति है अपने बच्चे के लिए, उससे सहमत हूँ और हमारी शुभ भावनाएं हैं कि इनका बच्चा भी अच्छी राह पर आ जाए, व्यसनों को छोड़ दे। लेकिन इस माता जी को कुछ 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। राज्योग तो इन्होंने सीखा ही होगा
1: जी, ये सेवा केंद्र पे जाती हैं पिताजी। इन्होंने कहा कि मैं 1 साल से ब्रह्मा कुमारीज में जाती हूं।
0: हाँ, तो एक तो ये उसको पवित्र भोजन खिलाएं। देखिए पवित्र भोजन और पवित्र पानी में बहुत ज्यादा इफेक्ट है। पवित्र पानी मनुष्य के विचारों को तुरंत बदल देता है। पवित्र भोजन क्योंकि शरीर में जाएगा वो अंग अंग को प्रभावित करेगा, ब्रेन को प्रभावित करेगा, तो वो उसकी इनर फीलिंग्स को चेंज कर देगा। तो जब ये भोजन बनाए थोड़ा मेडिटेशन करते करते बनाएं। जब भोजन बनाएं उससे पहले 5 मिनट राजयोग मेडिटेशन कर लें और भगवान से बातें कर लें, मैं ये भोजन आपके लिए बना रही हूँ, ये पवित्र भोजन है, मेरे बच्चे की बुद्धि से शुद्ध हो जाए, वो सद्मार्ग पर आ जाए। और फिर भोजन बनाते हुए बार बार अभ्यास करें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो भगवान की संतान हूँ, मैं पवित्र हूँ, ये ब्रह्मा भोजन है, इसको खाने वाले बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, उनका चित्त निर्मल हो जाए। ऐसी भावनाओं के साथ बहुत प्यार से ये भोजन बनाएं। बच्चे को जब खिलाए, चाहे भले वो रात को देर से आए, कभी भी आए, थोड़ा सा सहन कर ले और बहुत प्यार से उसे भोजन खिलाए। जब वो घर में आए उसे बहुत प्यार दे, ताकि बच्चे को ये ना आभास हो कि मेरे इस कारण से माँ बाप मेरे से रुष्ट हो गए हैं। उसको लगे मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते हैं।
1: और होता यही है दादाजी, जो बात आपने अभी छेड़ी है कि वास्तव में जब बच्चा इस प्रकार से गलत रास्ते पे चलने लगता है तो माता पिता उसके लिए जैसे एक तानाशाह की भूमिका
0: आते ही डांटेंगे,
1: डांटना शुरू कर देंगे, फटकारना शुरू कर देंगे, अच्छा बात बात में अवरोध भी पैदा करना शुरू कर देंगे। तो शायद यंगस्टर्स को ये चीज पसंद नहीं आती और वो और ज्यादा
0: चले जाते हैं। इसलिए इन्हें अपनी गुड फीलिंग्स, अच्छी शुभ भावनाएं और बहुत प्यार उसे देना है इस। और जब वो पवित्र भोजन खाएगा तो इससे निश्चित रूप से उसके मनोभाव में परिवर्तन होगा। अपने घर में थोड़े अच्छे स्लोगन ये लिख दें जो उसे काम आए, जैसे स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, दिस टाइम इज योर गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, ऐसे ऐसे लिखे, वो आपे ही पढ़े। ऐसे समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी अच्छी चीज छपी हुई हो वो टेबल पे रख दें, उसका ध्यान जाए, दिन में जाए, कभी भी जाए, वो पढ़े। एक और चीज, सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग इन्हें कर देना चाहिए
1: जी।
0: रोज सवेरे 5 बजे मेडिटेशन करने के बाद, बच्चा तो सोया होगा निश्चित रूप से, वो 12 बजे आया, 1 बजे सोएगा, उसे 15 मिनट तो ये राजयोग के वाइब्रेशंस देंगे, एनर्जी देंगे, प्योर एनर्जी जो उसके ब्रेन को जाएगी। ये राजयोग में एक सुंदर विधि हम लोग सिखाते हैं कि कैसे परमात्म शक्तियां लेकर वो आत्मा में आएंगे और अभ्यास करें मुझ आत्मा से ये वाइब्रेशंस उस आत्मा को जा रहे हैं, चाहे वो बच्चा कहीं

0: भी हो, दूर हो, विदेश में हो या पास के कमरे में सो रहा हो, फिर मन से उसे कुछ अच्छे थॉट्स देंगे, उसे संकल्प देंगे आत्मा देखकर कि यू आर ए गुड सोल, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो हमारे कुल के दीपक हो, तुम्हें तो हमारे कुल का नाम रोशन करना है, तुम्हें तो अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बनाना है, तुम पर तो हजारों लोगों की निगाहें हैं, हमारा सारा परिवार और समाज तुम्हारी ओर बहुत अच्छी नजरों से देख रहा है, तुम्हें तो सबकी उम्मीदें पूरी करनी है, ये बुरा संग, ये बुरे व्यसन, इन्हें छोड़ दो, ये अच्छे नहीं होते, ये लाइफ को डैमेज करने वाले हैं, ये बुद्धि को मलिन करने वाले, इस तरह के संकल्प रोज देंगे 21 दिन तक, सेम टाइम फॉर 21 डेज, तो निश्चित रूप से 2-4 दिन में ही उसकी विचारधाराओं में चेंज आने लगेगी और वो सब पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे हैं और माताओं को ये बात सिखाई है, तो जिन माताओं ने ये सब किया है उनके बच्चे ठीक लाइन पे आ गए हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है ब्रदर जी। इसी प्रकार का एक और मेल हमारे पास आया ब्रदर जी, ये है परवेश कुमारी जी जालंधर से, कहती हैं कि मेरा बेटा रुड़की में इंजीनियरिंग कर रहा है, हॉस्टल में रहता है, उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया है, वो मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं करता, बहुत बुरा बिहेव भी करने लगा है, उसके इस व्यवहार से मैं बहुत दुखी रहती हूँ, उसके इस व्यवहार का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बेटा मुझसे अच्छे से बात करे, प्यार से व्यवहार करे, उसके लिए मैं क्या करूँ। तो ज्यादातर ये भी जैसे सेम केस है कि बच्चे इस एज में शायद थोड़े से अपने माता पिता से दूर होने लगते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है।
0: कई बार तो माँ बाप जब अच्छी सीख देते हैं बच्चों को तो बच्चे अपने माँ बाप को शत्रु समझने लगते हैं। मान लो उनका कहीं प्यार हो गया है, उन्हें कोई गर्लफ्रेंड बना ली है और माँ को पता चल गया है और माँ उसको समझाती है या कुछ डांटती है या थोड़ी धमकी भी दे देती है कि तुम्हारी पढ़ाई बंद कर देंगे, तुम्हें पैसे नहीं देंगे, है तुम कहाँ बिगड़ गया है, क्योंकि माँ बाप तो अपने को अधिकारी समझते हैं ना, भाई हमें तो अधिकार है अपने बच्चों
1: और वास्तव में ये उनका प्यार होता है,
0: प्यार होता है, और बच्चे इस प्यार को प्यार नहीं मानते, शत्रुता समझ लेते हैं कि माँ हमें देखो इससे रोक रही है, सब तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो इस कारण उसके मन में माँ के लिए थोड़ी निगेटिव फीलिंग्स हो गई होंगी निश्चित रूप से, वो इरिटेट होता होगा तो इसको गुस्सा आता है और माँ से वो रफ व्यवहार करता है। लेकिन इस माँ को चाहिए कि वो इनको वैसे ही अच्छे वाइब्रेशंस दे, और जैसे पहले हमने बात बताई कि राजयोग मेडिटेशन करे, इस बच्चे के लिए 15 मिनट राजयोग करे और जैसे परमात्म शक्तियां लेकर इसे वाइब्रेशंस दे, अच्छे संकल्प करे कि शिव बाबा इसकी बुद्धि को शांत करे, इसकी बुद्धि को शुद्ध करे और ये कहीं भी फंस गया हो, अटक गया हो, ये वापिस आ जाए, क्योंकि इस टाइम इसको अच्छा परफॉर्म करना है, इसका इम्पोर्टेंट टाइम है, रुड़की इंजीनियरिंग IIT है वहाँ, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें जाकर बच्चे, खर्च भी बहुत होता है वहाँ, उसमें जाकर बच्चे अगर बहुत अच्छा नहीं करेंगे तो उनका भविष्य खराब हो सकता है, लेकिन वहाँ अगर उन्होंने अच्छा ग्रेड प्राप्त कर लिया तो सारा जीवन वो एंजॉय करेंगे। तो ये उन्हें वाइब्रेशंस दें और अपनी गुड फीलिंग्स दें, क्योंकि माँ का इफेक्ट, माँ के वाइब्रेशंस का इफेक्ट, माँ के संकल्पों का इफेक्ट डायरेक्ट बच्चों पर होगा। इसलिए अगर इनके मन में भी थोड़ी कोई निगेटिविटी आ गई हो, मेरा बच्चा बिगड़ गया, ये मुझसे नफरत करता है, ये मेरे से क्रोध करता है, ये अच्छा नहीं है, तो ऐसे अच्छे विचार करे कि कोई बात नहीं, इसकी ये यंग एज है ना, यंग एज में बच्चों को ये होता है, उनके कारण उनके देह में कई हार्मोन्स की चेंजेस भी आती हैं, वो कई बार इरिटेट भी रहने लगते हैं।
1: कई बार ऐसा भी तो होता होगा प्रताप जी कि पढ़ाई का लोड रहता होगा, बिजी शेड्यूल रहता होगा, तो माँ को फोन नहीं करते होंगे और इन्हें ऐसा लगता होगा कि शायद ये मुझसे,
0: बिल्कुल ये संभव है, जरूरी नहीं उसका कहीं प्यार ही हुआ हो, पढ़ाई का दबाव उस पर हो या कोई और उससे व्यवहार करता हो, कोई साथी, कोई रूममेट, कोई प्रोफेसर, किसी का उससे रफ व्यवहार हो और वो अपनी फीलिंग्स को वहां तो नहीं एक्सप्रेस कर सकता तो माँ पर उसको निकाल लेता हो, क्योंकि उसका भी माँ पर अधिकार है, इसलिए ये उसे योग के वाइब्रेशंस दें, ये ठीक 5 बजे वैसे ही उसे बहुत अच्छे थॉट्स भी दें जैसे पहले केस में हमने वर्णन किया, तो माँ के गुड वाइब्रेशंस बच्चों के वाइब्रेशंस को बदल देंगे, उसके चित्त को शांत करेंगे, क्योंकि बच्चे में अगर इस तरह क्रोध बढ़ता रहा, क्योंकि क्रोध है उसमें, वो वहां पर तो निकल रहा है पर क्रोध उसके अंदर स्टोर्ड हो चुका है, तो ये क्रोध उसकी आंतरिक शक्तियों को, उसकी विवेक शक्ति को नष्ट करेगा। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो बुद्धि की शक्ति को नष्ट करती है, और कहीं ना कहीं पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव देखने में आएगा। इसलिए माँ का कर्तव्य है वो ऐसी शुभ भावनाएं और प्रेम बच्चे को दे कि उसका जो इरिटेशन है, क्रोध है, वो नष्ट हो जाए।
1: बिल्कुल। कई बार भ्राता जी, कई लोगों ने ये प्रश्न किया है फोन करके कि ये जो हम वाइब्रेशन देने की बात करते हैं या शुभ भावनाओं की बात करते हैं, तो ये क्या केवल सुबह उठ करके ही किया जाना चाहिए या हम दिन में जब चाहें तब भी कर सकते हैं? तो ये कईयों के प्रश्न है।
0: देखिए, वैसे तो भावनाएं ऐसी चीज हैं कि जब भी हम रखेंगे वो उसका असर होगा ही, और सारा दिन हमारे मन में शुभ भावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारा दिन तो हम निगेटिव फीलिंग्स रखें और सवेरे गुड फीलिंग्स रखें, वो होगा भी नहीं। सारा दिन अगर निगेटिव फीलिंग है तो सवेरे की गुड फीलिंग में हमारी पावर काम नहीं करेगी। इसलिए सारा दिन हमें एक अच्छे फीलिंग्स रखनी है, अपने चित्त को भी शांत रखना है। और सवेरे की बात इसलिए जरूरी है कि हम बहुत अच्छा मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि सवेरे प्रकृति शांत है, मनुष्य का मन शांत है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो बहुत अच्छी एनर्जी हम परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम दूसरे को देंगे तो, क्योंकि वो भी व्यक्ति सोया हुआ है और हर व्यक्ति अच्छी चीजों को रिसीव कर रहा है। देखिए, आत्मा की एक क्वालिटी है, आत्मा पीसफुल है, आत्मा प्योर है, दो विशेष चीजें, ये उसकी मूल नेचर है। नफरत, घृणा, क्रोध, इरिटेशन, टेंशन, ये तो बाहर से आई गई चीजें हैं, लेकिन उसमें प्योरिटी है, पीस है, लव है, गुड फीलिंग्स हैं। तो माँ की गुड फीलिंग्स को वो आत्मा तुरंत रिसीव करेगी, क्योंकि वो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है। इस सत्य को, इस सीक्रेट को जानते हुए सवेरे राजयोग करके, यानी हम अपने में पावर भर लें और फिर जब गुड फीलिंग्स देंगे, अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, तो उस फोर्स से ये वाइब्रेशंस तेजी से उसके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करेंगे।
1: मतलब इसलिए सवेरे का महत्व जी, सारे दिन भी किया जा सकता है, लेकिन सुबह का महत्व तो जैसे आपने बताया ज्यादा है, क्योंकि उस समय वो भी इसको ज्यादा से ज्यादा रिसीव कर पाते हैं। राता जी, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे दोनों माओं ने अपने बच्चों की बात कही है, निश्चित रूप से इन अभ्यासों से उनके बच्चे बिल्कुल सदमार्ग पे आ जाएं और अच्छी तरह परफॉर्म करें अपने स्टडी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, शुभ भावनाओं की बात चल रही है और हमारे देश में, हमारी संस्कृति में तो सदियों से एक बात कही जाती रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो सारे संसार के लिए कल्याण की भावना रखते हैं, हम अपने अपनों के लिए भी कल्याण की भावना रखें। कहीं ना कहीं उनके दुर्व्यवहार के कारण, कहीं ना कहीं किसी अन्य परेशानियों के कारण हमारे मन में दुर्भावना आ जाती है, नेगेटिव विचार आ जाते हैं। लेकिन जो सारे संसार को सद्भावना देने वाले हैं, उनके मन में दुर्भावना शोभा नहीं देती। इसीलिए यदि हमें अपने संबंधों को बहुत श्रेष्ठ, बहुत सकारात्मक बनाना है, उनमें मधुरता का रस घोलना है, तो हम ये अवश्य सीखें कि हम शुभ भावनाएं अपने परिवार के हर सदस्य के लिए रखें। विशेष करके माएं अपने बच्चों को यदि शुभ भावनाओं का वाइब्रेशन देंगे, जैसे भ्राता जी ने आज भी कहा, तो यदि वो गलत मार्ग पे जा भी रहे हैं तो मार्ग पर आ जाएंगे और उनका जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। आज के लिए समाधान में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। 11 अक्टूबर 2026 है आज और शक समत 1948 अश्विन मास है, यानी कि नवरात्रि प्रारंभ है। शुक्ल प्रतिपदा रविवार विक्रम संवत 2083 है। अंग्रेजी तारीख है 11 अक्टूबर सन 2026। सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु राहुकाल शाम 5:30 से शाम 7 तक है। प्रतिपदा तिथि रात्रि 9:30 तक, उपरांत द्वितीय तिथि का आरंभ है। चित्रा नक्षत्र रात्रि 10:32 तक, उपरांत स्वाति नक्षत्र का आरंभ है। वेदुति योग रात्रि 9:05 तक, उपरांत विश्वकुंभ योग का आरंभ है। और किस्तुग्न करण प्रातः 9:21 तक, उपरांत बव करण का आरंभ है। चंद्रमा प्रातः 10:04 तक कन्या राशि पर, उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा। शारदीय नवरात्र प्रारंभ है आज के दिन से। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज महाराजा अग्रसेन जी की भी जयंती है। तो सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ माता रानी को बुलाने के लिए, स्वागत के लिए भी हम भजन सुनेंगे, गाने सुनेंगे। गुड मॉर्निंग आबू इस कार्यक्रम के अंतर्गत में हूँ आरजे शुभा। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

11 अक्टूबर 2026 रविवार से यानी कि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस दौरान पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 शक्ति रूपों को पूजा की जाएगी। वर्ष में 4 बार पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन महीने में नवरात्रि आते हैं। चैत्र और अश्विन में आने वाले नवरात्रि प्रमुख होते हैं, जबकि अन्य 2 महीने पौष और आषाढ़ में आने वाले नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। अश्विन महीने से शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसीलिए अश्विन महीने की इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि आज से शुरू होकर के 19 अक्टूबर तक चलेंगे। 20 अक्टूबर को विजयादशमी मनाया जाएगा और नवरात्रि का पारण किया जाएगा। और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और जो बोने की परंपरा भी आज के दिन है, यानी कि पहले दिन है। जो बोने के लिए एक साफ और शुद्ध मिट्टी के बर्तन लेते हैं और इसमें फिर शुद्ध मिट्टी डाल देते हैं और इसके बाद मिट्टी में जौ के दाने को अच्छी तरह से फैला देते हैं। जौ डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं और फिर हल्के हाथों से थोड़ा पानी डाल देते हैं। नवरात्रि के हर दिन इसमें थोड़ा थोड़ा साफ जल डालते हैं। जल की मात्रा अधिक नहीं रख के थोड़ा थोड़ा ही डालते ताकि बीज खराब ना हो। जो अच्छी तरह अंकुरित हो इसके लिए नवरात्रि से एक रात पहले से ही जो के कुछ दाने भिगोकर रख देते हैं। कलश स्थापना के ठीक सामने या उत्तर पूर्व ईशान कोने दिशा में जो का पात्र रखना सबसे शुभ माना जाता है। जो वाले पात्र को कलश स्थापना के ठीक सामने या उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखना सबसे ज्यादा शुभ भी माना जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि एक पात्र में, मिट्टी के पात्र में जो अंकुरित जो रखा जाता है दुर्गा जी के मंडप में भी। तो आज से शारदीय नवरात्रि शुरू है, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत तो है, आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभ अभिनंदन भी है आज के इस दिन विशेष के बारे में। और आप नवरात्रि कैसे मना रहे हैं ये कॉल करके बता सकते हैं हमें 94-14-15-14-15 पर। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी है।

प्रतापनगर वर्तमान समय राजस्थान और हरियाणा सीमा के निकट सरस्वती नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। नागराज कुमुद की कन्या माधवी के साथ इनका विवाह हुआ था और इन्हें भगवान श्री रामचंद्र का वंशज तथा द्वापर युग के अंतिम और कलयुग के प्रारंभिक चरण में भगवान श्री कृष्ण का समकालीन माना जाता है। उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर अग्रोदक यानी कि अग्रोहा नामक राज्य और उसकी राजधानी की स्थापन की थी। उनके राज्य में सामाजिक समानता का अनूठा नियम था। नया बसने वाला प्रत्येक परिवार यदि अजनबी हो तो राज्य का प्रत्येक परिवार उसे एक रुपया और एक ईंट देता था, जिससे वो व्यक्ति आसानी से अपना घर बना सके और व्यापार शुरू कर सके। उन्होंने यज्ञ में पशुओं की बलि पर रोक लगाई थी और करुणा, दया तथा शांति का संदेश दिया था। उनके 18 पुत्रों और 18 गुरुओं के आधार पर अग्रवाल समाज के 18 गोत्रों की शुरुआत हुई थी। हर साल अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा शारदीय नवरात्रि का पहला दिन को उनकी जयंती श्रद्धा से मनाई जाती है। आइए यहाँ पर लेते हैं एक अल्पविराम और माता शैलपुत्री जी का दिन है तो उनकी स्तुति करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन. आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से.
1: तो नवरात्रि के इस प्रथम दिन पर शैलपुत्री माता की पूजा होती है. शैलपुत्री माता कौन है? तो कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री ये प्रथम देवी है. पहला अवतार माँ दुर्गे का है, जिसके अंदर खूब एनर्जी है, शक्ति है, और जो हिमालय की बेटी मानी जाती है, और इसीलिए शिव के साथ की शक्ति बताई गई है. शैलपुत्री, पुत्री यानी जो बेटी है, और शैल माना पहाड़, यानी सती भवानी या पार्वती या हेमवती का ही दूसरा स्वरूप है. हिमालय का जो राजा हेमवान, उसकी बेटी शैलपुत्री नवदुर्गा में प्रथम मानी जाती है, और उसकी ये पूजा करके शक्ति को प्राप्त करने का भाव है. उसके एक हाथ में त्रिशूल दिखाया है और दूसरे हाथ में कमल पुष्प दिखाया है, और भैंसा उसकी सवारी के रूप में दिखाया गया है. उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान और आनंद का भाव प्रकट होता है. अब ये त्रिशूल और कमल का प्रतीक जो दिखाया गया है, ये किस बात का प्रतीक है? तो कहा जाता है कि त्रिशूल के नीचे एक छड़ दृढ़ निश्चय का प्रतीक है, और ऊपर की तीन पत्तियां मन, वाणी और कर्म द्वारा पांच विकारों रूपी राक्षसों पर विजय प्राप्त करने का द्योतक है. साथ ही साथ कमल पुष्प अर्थात संसार में रहते हुए तामसिक विकारी वायुमंडल से अलिप्त एवं पवित्र रहने का प्रतीक है. तो जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मन, वाणी, कर्म के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करके दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है और संसार में रहते हुए पवित्र रहता है, तब उसके जीवन में आनंद का भाव और मुस्कान नेचुरल रूप में बनी रहती है.
2: अब एक भजन सुनेंगे और उसके बाद शांति की शक्ति के बाद 8 बजे पुनः मिलते हैं.

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। राजधानी जयपुर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है। बात करें अगर उदयपुर की, 35 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 19 डिग्री। आबू रोड में 36 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 19। माउंट में 23 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 15। पाली में 37 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 20। और वैसे माउंट में अधिकतम तापमान फील होने का 26 डिग्री है, रियल फील, और रियल शेड फील जो होता है वो 22 डिग्री तक आपको महसूस होगी। यानी कि कभी कभी भी ठंड लग सकता है और कभी कभी गर्मी भी आपको लग सकता है। आइए चलते हैं हम जोधपुर की ओर। 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक जा सकता है। सूरत में 37 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 23। मेहसाना में भी 21 डिग्री न्यूनतम अधिकतम 37। राजकोट में अधिकतम 37 न्यूनतम 23। गांधीनगर अहमदाबाद में 22 डिग्री न्यूनतम अधिकतम 36 डिग्री तक जा सकता है। और बात करें राजधानी दिल्ली के बारे में, यहाँ पे 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक जा सकता है। दिल्ली में थोड़ा बहुत रिमझिम होने की आज संभावना है। कोलकाता के बारे में बात करें तो यहाँ पे 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बेंगलुरु में 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक जा सकता है। मुंबई में 38 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। और मुंबई में आज थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है, 25% तक सिर्फ गर्म है आज। यानी कि आज आपको मुंबई में टेम्परेचर 38 डिग्री, मतलब गर्मी का एहसास होगा। चेन्नई के बारे में बात करें, यहाँ पे 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 28 डिग्री तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा आज के दिन। जिला सिरोही में 37 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा। और नवरात्रि का दिन आज से शुरू हो चुका है, तो आप नए नए कपड़े तो रेडी कर ही रहे होंगे, गरबा में जाने के लिए सब तैयार हो रहे होंगे। और इसके साथ साथ और क्या तैयारी है आप आज के दिन विशेष पर कर रहे हैं, तो हमें 94 14 15 14 15 इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत भजन।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। इस मोड़ पर एक साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते दीदी
0: जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ दीदी जी।
0: जी जी, और आज नवरात्र शुरू हो चुका है, और पहले नवरात्रि के दौरान आप क्या कुछ तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं?
1: जी बिल्कुल तैयारी है, नवरात्रि यहाँ थोड़ी देखेंगे, और भी आपने गाना अच्छा सुना है विष्णु देवी का
0: जी,
1: और वहाँ भी रहे हैं, और वहाँ भी प्रोग्राम हो गया हमारा और टिकट भी कट गई है, और वहाँ से 17 किलोमीटर दूर ऊपर जाने का है, 13 किलोमीटर के आगे 13 किलोमीटर है, उसके भी आगे 4 किलोमीटर और जाना है
0: जी
1: चल के
0: जी।
1: तो ये हमारा सब हो गया है, और बहुत अच्छा गाना सुना है विष्णु देवी का, और नवरात्रि की पूरे विश्व में इस साल बहुत धूमधाम से हुई, और अपना अपना मतलब बना दिया है।
0: क्या बात है, मतलब आप वैष्णव देवी जाने वाले हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है।
1: 2 महीना हो गया, उसको हम धीरे धीरे कहते हैं, एकदम नहीं कहते।
0: जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: जी। 22 तारीख को हम जाएंगे जम्मू तारीख गाड़ी में, विष्णु जी, और बहुत और भी हम जाएंगे। पहले बनारस का घोटा

0: और बड़े गर्वे गाते हैं सम्मान से कुछ, और माता जी की अगरबत्ती करने के टाइम में, मतलब दिया करने के टाइम में सब हाजिर हो जाते हैं और बड़ी खुशी से और उमंग से माता जी की सेवा करते हैं। शरणा दरेक के मन में आंखों में, मतलब इतना खुशी का पारा चढ़ा रहता है और वहाँ का माहौल अच्छा बन जाता है, तो वहाँ अच्छा लगता है। जो आस पास दूसरे भी देखने आए हैं वहाँ भी सब दूर तक हमें अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। इतना सुंदर, जैसे कोई शरीर के अंदर कोई रोग भी नहीं होता, इतना अच्छा लगता है नवरात्रि।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पसंद बताने के लिए।
0: जी जी, नमस्कार।
1: नमस्ते
0: दोस्तों को, नमस्कार आपको और हमारे सभी चौक को। आपको भी अनेक अनेक शुभकामना नवरात्रि की, हमारे सभी दोस्तों को, और बड़ी खुशी से मनाएं और बड़ा अच्छा रहे, माता जी सबको मिले
1: जी,
0: और मिलता है
1: जी। ओम बिल्कुल
0: शांति,
1: नमस्ते, ओम शांति। ये थे हमारे मदन भाई जी फ्रॉम मेहसाना से। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं रेलवे इन्फॉर्मेशन आबू रोड रेलवे स्टेशन की ओर। गाड़ी संख्या है 14702। अरावली एक्सप्रेस 8:30 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। ग्वालियर से गांधीग्राम तक जाने वाली सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 22547 8:35 पर 10 मिनट देरी से चलती हुई पहुंचने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस 9:05 पर पहुंचने वाली है आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। जोधपुर से साबरमती तक जाती है ये गाड़ी, 12461 संख्या वाली गाड़ी। गरीब नवाज एक्सप्रेस 16532 9:10 पर पहुंचेगी। 9:45 पर जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 19224 पहुंचने वाली है। 10:10 पर अजमेर मैसूर एक्सप्रेस 16209 संख्या वाली गाड़ी पहुंचने वाली है। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 संख्या वाली गाड़ी 10:30 पर पहुंचेगी। वहीं पर प्रयागराज से आने वाली साबरमती तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड 04179 संख्या वाली गाड़ी 11:20 पर पहुंचेगी, 19 मिनट की मामूली देरी के साथ। दौलतपुर से आने वाली गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस 19412 11:30 पर पहुंचेगी। 11:40 पर गांधीग्राम जोधपुर एक्सप्रेस 14822 पहुंचने वाली है। योगा एक्सप्रेस 19032 1:41 देरी से चलती हुई 12:31 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने वाली है। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। और सोने चांदी के बात करें तो क्या कुछ रेट्स चल रहे जानते हैं। 24 कैरेट प्योर गोल्ड है 1,74,851 रुपये, 22 कैरेट है 1,60,293 रुपये और 18 कैरेट है 1,31,187 रुपये। चांदी के दामों के ऊपर भी नज़र डालते हैं, 2,40,000 है चांदी पर किलोग्राम के हिसाब से। प्लैटिनम प्राइसेस है पर 10 ग्राम 51,960 रुपये। पेट्रोल 102.12 रुपये राजधानी दिल्ली में है और राजधानी जयपुर में क्या कुछ कीमत है आइए जानते हैं। राजधानी जयपुर में 113.19 रुपये यानी कि 53 पैसे की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल की। डीजल के बारे में बात करते हैं,

डीजल है राजधानी जयपुर में 98.25 रुपये/47 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी 942 रुपये है देश में और लगभग 941.50 रुपये है डोमेस्टिक। कमर्शियल है 19 kg 2764.50 रुपये। राजधानी जयपुर में घरेलू गैस है 945.50 रुपये और जो व्यापार के लिए गैस यूज़ होती है कमर्शियल पर्पज़ के लिए वो है 2839.63 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सीधा सेंसेक्स है 72,472.33 पर और 1.23% की बढ़ोतरी दर के साथ बाजार बंद होने तक, और निफ्टी है 22,520.45 पर 1.30% की बढ़ोतरी दर के साथ। ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे सोना और चांदी के साथ।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप और नवरात्र उत्सव किस प्रकार से आप मना रहे हैं हमें कॉल कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे आसपास के साथ जानते हैं।

आइए, नवरात्रों की बात हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ आसपास के घटनाक्रमों के ऊपर नज़र डालते हैं। लेकिन एक बात और है कि अगर सर्दी के मौसम शुरू हो चुका है और कोई अचानक पंखा चला दे तो क्या हाल होता होगा, तो ये बात आप हमें बता भी सकते हैं कि कैसा लगता है जब अचानक कोई पंखा चला दे और ठंडी का मौसम हो। तो आइए पंचायती राज चुनाव के बारे में बात करते हैं। इसके तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के मतदान के लिए ईवीएम आवंटित की जाएगी और इसके लिए रिटर्निंग अधिकारियों को भी मशीनें ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से इसके साथ साथ रैंडम आधार पर भी आवंटित करना है और इसके साथ साथ मतदान के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। 4 स्टेशनों पर आरक्षण काउंटरों का समय बदलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल ने अजमेर भीलवाड़ा उदयपुर सिटी और आबू रोड रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर के संचालन समय में बदलाव किया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मिहिर देव जी के अनुसार इन स्टेशनों पर रात्रि 10 बजे तक संचालित होने वाले काउंटरों के समय में परिवर्तन किया जाएगा। आइए बात करते हैं पंचायत चुनावों में नेता गांवों को शहर की तरह सुविधा युक्त बनाने का दावा करते हैं, लेकिन पंचायती राज की शुरुआत के 74 साल बाद आज भी प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जहां पर पीने के पानी तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस बार जब आप चुनाव में वोटिंग दे रहे हैं तो आप ज़रूर बातें करें अपने नेताओं के साथ, प्रार्थियों के साथ, कि अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं आपके गाँव में तो उपलब्ध कराया जाए। बात अगर रावण दहन के बारे में करें तो सिरोही में इस बार रावण दहन कार्यक्रम के लिए खेल मैदान का उपसभापति और पार्षदों ने निरीक्षण किया। रितु जैन जी के निर्देश पर उपसभापति ईश्वर सिंह डाबी जी ने नगर परिषद के अधिकारियों के साथ अरविंद पवेलियन के हॉकी मैदान का जायजा लिया है और व्यवस्थाओं की जानकारी ली, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। रितु जैन जी ने बताया कि नगर परिषद सिरोही हर साल जिला कारागृह के पास नेहरू पवेलियन में रावण दहन कराती है, तो इस बार पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के कारण ये मैदान यातायात व्यवस्था के लिए आरक्षित किया गया है, तो इसी वजह से रावण दहन अरविंद पवेलियन में कराने का फैसला लिया गया है। और वहीं पर पोसालिया में मतदान के लिए प्रेरित किया गया है स्वीप गतिविधि के तहत। और आबू रोड में पंचायती राज आम चुनाव 2026 को देखते हुए पंचायत समिति सभा भवन आबू रोड में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए नामांकन प्रक्रिया पर प्रबोधन कार्यक्रम हुआ। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के तहत विशेष सफाई की गई है। इस दौरान रेलवे परिसर में जगह जगह लगे गुटके के दाग साफ किए गए हैं और इसके साथ साथ गुटखा थूकने से बचने की समझाइश भी दी गई। अभियान के दौरान CHI आबू रोड और SS आबू रोड ने यात्रियों से रेलवे परिसर को स्वच्छ एवं साफ सुथरा बनाने के लिए और सहयोग करने के लिए अपील की। नया सनवाड़ा में झाड़ोली क्षेत्र में सरगरा समाज के युवाओं ने हर अमावस्या पर शमशान घाट परिसर में सफाई और श्रमदान अभियान शुरू किया है। बहुत ही यूनिक ये अभियान है कि हर अमावस्या के दिन शमशान पर जाकर के सफाई अभियान करना। अगर आपके गांव में, आपके अंचल में ऐसे कोई अनोखे तरीके से सफाई अभियान या कुछ श्रमदान कार्य हो रहा है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। मंडार मुख्य मार्ग पर बह रहा है गंदा पानी, तो ये दैनिक भास्कर के जरिए इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं पर सिरोही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग में शबीर भाई कुरैशी जी को जिला सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। पोसालिया में गांव जोयला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मोहनलाल जैन जी ने मनोज कुमार मोहनलाल सिरोहिया जी की पुण्यतिथि पर विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री बांटी गई। तो इस प्रकार से कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आबू रोड में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन के
स्वर्गीय उमेश मिश्रा जी की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल शनिवार को रेलवे ग्राउंड में खेला गया। मुकाबला में इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स 11 और स्टार डीजल शेड 11 के बीच में हुआ। डीजल शेड स्टार 11 ने 4 विकेट से जीत दर्ज की, ट्रॉफी अपना नाम की है। पितृपक्ष के अंतिम दिन शनिवार को शहर के गायत्री शक्तिपीठ में सर्व पितृ अमावस्या के अवसर पर सर्व समाज के सामूहिक श्राद्ध तर्पण और पिंडदान अनुष्ठान का भावपूर्ण आयोजन किया गया। पिंडवाड़ा में नवरात्रि पर्व के दौरान पिंडवाड़ा नगर पालिका प्रशासन ने 11 से 20 अक्टूबर तक नगर पालिका क्षेत्र में माछ मछली की दुकानों और कत्ल खानों को बंद करने के लिए आदेश जारी किया है। और इसके साथ साथ श्री अग्रवाल समाज आबू रोड के तत्वावधान में अग्रसेन जयंती महोत्सव 2026 के तहत विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ। आइए यहाँ पर लेते हैं अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

पुनः आप सभी का स्वागत है। अंतिम मोड पर पहुंच चुके हैं हम। आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई है जॉब्स के साथ जान लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की अगर बात करें तो रोजगार के अवसर है। यहाँ पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL भर्ती 2026 के तहत 2536 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए तथा सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के पद शामिल है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 सितंबर 2026 से शुरू हुई थी। उम्मीदवार 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आज 11 अक्टूबर 2026 है और आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अगर लास्ट डेट की तिथि और तारीख बढ़ाई गई है। 4 नवंबर 2026 लास्ट डेट है। DSSSB दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड के 641 पदों पर भर्ती के लिए मांगा गया है आवेदन। और इसके साथ साथ 15 अक्टूबर 2026 लास्ट डेट है। सेल की तरफ से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यंग प्रोफेशनल के 8 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किया गया है। शैक्षणिक योग्यता है, मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा उम्मीदवार के अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और वहीं पर RRB पैरामेडिकल भर्ती 590 पदों पर बहाली होगी और लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2026। हाँ जी, और यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने पैरामेडिकल कैटेगरी के तहत 590 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इनमें डाइटिशियन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और फार्मासिस्ट और अन्य पद भी शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की तारीख 14 अक्टूबर तक है। वहीं पर लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2026 से JSSC पारा टीचर भर्ती और यहां पर 7,999 पदों पर आवेदन शुरू है। 12वीं पास को भी मौका है। तो JTET या निर्धारित पात्रता परीक्षा में सफल होना जरूरी है। आयु सीमा है न्यूनतम 21 और अधिकतम 40। उम्मीदवार JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2026। और वहीं पर रेलवे के बात करें तो अप्रेंटिस 2008 पदों पर भर्ती की जाएगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के लिए 2008 प्रशिक्षण लिस्ट पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। लास्ट डेट 6 नवंबर 2026 है। और वहीं पर UPSCESE इंजीनियरिंग सर्विसेज के 880 पदों के लिए वैकेंसी निकली है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट है ऑलरेडी निकल चुकी है, क्षमा चाहूंगी मैं। लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2026 थी। और वहीं पर एम्स भोपाल के लिए लास्ट डेट है 11 अक्टूबर 2026। असिस्टेंट प्रोफेसर के 45 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। और वहीं पर BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा 32,388 पदों पर आवेदन है और लास्ट डेट 26 अक्टूबर 2026 है। 8:45 रेडियो मधुबन की घड़ी पर, और यहीं पर मैं विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
2: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती है। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
3: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पीपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्न अराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल को होता है।
3: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
5: जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं, इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एसईजेड, लॉजिस्टिक, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा।
3: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदरगाह आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
6: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
7: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनु, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। कालासागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधू, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। कालासागर में सोमवार को जहाज एमवी रॉयद मम्मा दोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये तीन भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रि शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारंभ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 56 विशेष बसें चला रही सरकार, दिल्ली की बसों में 2000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। अमेरिका और रूस में डीजल डील, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से 7 अप्रैल तक डीजल सप्लाई बैन हटाया। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों में है, कैप्टन स्मिथ पर हमले की जांच, एनआईए को, पायलट पर केस। दैनिक जागरण की खबर है, पत्र लिखता है, फ्लाई दुबई विमान अपहरण और आतंकी साजिश की होगी जांच। पहाड़ों के छोटे से गांव में बसता है मिनी सराय, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर पर्यटन को बढ़ावा शीर्षक से प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: अभी बजे हैं सुबह के 9। 1 मिनट का समय स्वयं को दे।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ 9 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। और आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिग बी अमिताभ बच्चन का भी जन्मदिन है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए बात करते हैं, आज हम लोग विशेष न्यूरो साइंस के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में, कैसे बिना दवा के आप घर बैठे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर विषय लेकर हमारे बीच आई है डॉक्टर कृपा, जिनसे

0: लोग बात करने वाले हैं, तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर कृपा जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ
0: जी। जी जी जी, डॉक्टर कृपा, मैं सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं को आपका इंट्रोडक्शन दे, क्योंकि पहली बार आपकी आवाज से रूबरू हो रहे हैं, तो आप अपने बारे में बताइए। नेचुरोपैथी से या नीरो साइंस से कैसे आपका जुड़ना हुआ? जी,
1: नेचुरोपैथी जो आजकल लगभग सब अवेयर हो रहे हैं,
0: हाँ, बिल्कुल,
1: कि दवाई का साइड इफेक्ट हो रहा है, तो मेरी नेचुरोपैथी की जर्नी कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई। बचपन में हम जब बीमार होते थे तो सर्दी जुकाम फीवर ऐसा कुछ हो जाता था तो दवाइयाँ देते थे, तो स्पेशली मेरा ऐसा रहता था कि जब हम दवाई लेते थे तो फीवर से जितनी तकलीफ मुझे नहीं होती थी, उतनी ज्यादा तो मुझे दवाई से तकलीफ होती थी।
0: अच्छा।
1: तो मुझे ये क्वेश्चन रहता था कि ये दवाई सच में ठीक कर रही है या मुझे और तकलीफ दे रही है, इनका सॉल्यूशन क्या होगा। ये उस समय की बात है जब हम स्कूल में थे, तब इतना नेचुरोपैथी का ख्याल नहीं था हमें। फिर बाद में जब कौन सी फील्ड में जाना है ये हमारे सामने आया कि कोई वे चूज करो।
0: जी, जी, जी, जी।
1: तब मेरे माइंड में यही ख्याल आता था कि ये दवाई से कैसे छुटकारा पाए, इनके रिलेटेड कोई दुनिया में है अलग अलग स्टडीज क्या
0: जी,
1: है
0: जी, जी, जी।
1: तो उस समय हमें पता चला कि ये नेचुरोपैथी एक ऐसा वे है जिसमें बिना दवाई के लोग ठीक हो सकते हैं। फिर नेचुरोपैथी के बारे में थोड़ा स्टडी किया, उसके बाद मैंने उसमें एडमिशन लिया और ये 5.5 साल का मैंने कोर्स किया।
0: अरे वाह।
1: नेचुरोपैथी करने के बाद जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की
0: तो
1: अलग अलग हॉस्पिटल में मैंने काम किया, तो वहां जाके मैंने देखा कि सच में लोग ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन वहां पे जो पेशेंट आते थे उनका मैंने ये देखा कि वो लोग बहुत ही डिप्रेस स्ट्रेस एंग्जाइटी में रहते हैं। तो उन लोगों को थेरापी वर्क तो करती है, डाइट भी वर्क करता है, लेकिन 100% जो रिजल्ट चाहिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा था। अब इनको कैसे ठीक करें, इनके लिए मैंने रिसर्च किया और ये रिसर्च करते करते मुझे समझ आया कि ये न्यूरो साइंस है जो हमारे इमोशंस को हील करते हैं। वो इमोशंस जब तक हील नहीं होंगे तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि कोई भी डिजीज होता है वो डिजीज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही आता है, चाहे कैंसर हो, सर्दी जुकाम हो, कोई भी है, वो स्ट्रेस की वजह से ही क्रिएट होता है। तो इस स्ट्रेस को, नेगेटिव इमोशंस को हील करने के लिए मैंने स्पेशली न्यूरोसाइंस का स्टडी किया और अब मैं एक साथ दोनों प्रैक्टिस करती हूँ, न्यूरोसाइंस और नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और न्यूरोसाइंस में माइंड को डिटॉक्स करते हैं। तो इस तरह से जब बॉडी और माइंड दोनों डिटॉक्स हो जाते हैं तो कोई भी इंसान एवर हेल्दी रह सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कृपा, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे आपका जो है नेचुरोपैथी की तरफ रुझान हुआ, और बचपन में जैसे आप बीमार पड़ते थे तो दवाइयाँ आपको अच्छा नहीं लगता था, दवाइयों से मुक्त होने का आपका जो है संकल्प ने आपको इस ओर लेकर आया है, और आपने नेचुरोपैथी का पूरा जो है कोर्स करके अब न्यूरोसाइंस इसमें कैसा रोल करता है, न्यूरोसाइंस के बारे में थोड़ा सा बताइए क्या है न्यूरोसाइंस, क्योंकि ये हमारे सभी श्रोता बंधु शायद पहली बार ही इस तरह का शब्द सुन रहे होंगे।
1: जी जरूर। न्यूरोसाइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है
0: जी।
1: मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल थ्रू समझाना चाहूंगी। जैसे हम एक थॉट क्रिएट करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर 1200 केमिकल जनरेट होते हैं जिसको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। ये शब्द सभी ने सुना होगा, हॉर्मोन। तो एक थॉट से 1200 केमिकल रिलीज होते हैं, तो सोचिए हम पूरे दिन में कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो 60,000 से 70,000 दिन भर का थॉट होता है। कोई ओवर थिंकिंग करता है तो ये 90,000 तक जाता है, और जो कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो कोई कोई का 1,00,000 से ऊपर भी जाता है। जिनका थॉट ज्यादा उनको फिर कोई इमोशनल डिजीज होगा। तो एक थॉट से 1200 केमिकल रिलीज होते हैं, तो पूरे दिन हम जो थॉट क्रिएट करते रहते हैं तो उनके हिसाब से वो केमिकल रिलीज होते हैं। हाँ। जी, और ये जो केमिकल्स है वो हमारे बॉडी में जाता है, थॉट माइंड क्रिएट करता है और उसके जो केमिकल्स है वो बॉडी में जाते हैं। तो हमारे बॉडी के जो सेल है वो सेल्स वो केमिकल को एब्जॉर्ब करते हैं और वो सेल उसके बाद केमिकल को एब्जॉर्ब करने के बाद फीलिंग जनरेट करते हैं।
0: अच्छा,
1: यस, थॉट इज द लैंग्वेज ऑफ माइंड, फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बॉडी। देखिए, कोई भी फीलिंग्स होती है वो आपको बॉडी में फील होगी। जैसे आप बहुत खुश है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे किसी कभी आपने सैड न्यूज सुन लिया अचानक से तो आपके हार्ट बीट फास्ट हो जाएंगे, आपको पेट में कुछ हो जाएगा। तो फीलिंग है वो बॉडी फील करती है, माइंड है वो थॉट क्रिएट करता है। तो अभी आपको समझ आया कि फीलिंग कैसे क्रिएट होती है?
0: थॉट की वजह से।
1: माइंड ने थॉट क्रिएट किया,
0: थॉट की वजह से
1: बॉडी के अंदर वो केमिकल्स जनरेट हुए, सेल ने वो केमिकल एब्जॉर्ब किया और बॉडी के अंदर फीलिंग जनरेट हुई। एक थॉट किया, बॉडी ने फीलिंग जनरेट की। अभी बार बार सेम थॉट करते हो तो बार बार जो हमारे बॉडी के सेल्स है उनको सेम केमिकल मिल रहा है तो वो सेम फीलिंग जनरेट कर रही है। अभी यहाँ मेन पॉइंट ये है कि जब ब्रेन ने थॉट क्रिएट किया, बॉडी ने वो फीलिंग जनरेट की, फिर वो जो सेल्स है वो माइंड को ऑर्डर देता है कि यही केमिकल वाला थॉट क्रिएट करो। क्योंकि वो केमिकल के आदि हो चुके, बार बार सेम थॉट करते करते सेल्स को वो केमिकल का हैबिट पड़ गई है। तो वो ब्रेन को ऑर्डर देता है कि यही थॉट क्रिएट करो। माइंड मजबूर हो जाता है उनके जो सेल्स की जो क्रेविंग है केमिकल की वो फुलफिल करने के लिए, सेम थॉट क्रिएट करने के लिए वो मजबूर हो जाता है और सेम थॉट क्रिएट करते। जैसे कभी कभी आपको लगता होगा मैं ये सोचना नहीं चाहता हूँ लेकिन ये मेरी माइंड बंद ही नहीं हो रहा,
0: बंद ही नहीं हो रहा। हाँ, हाँ, हाँ।
1: ये इसकी मेन वजह ये है, ये साइंस है,
0: मतलब वो साइकिल
1: साइकिल चलती ही रहेगी।
0: अच्छा अच्छा,
1: थॉट क्रिएट किया, केमिकल जनरेट हुए, सेल ने फिर से वही केमिकल की डिमांड की, ब्रेन ने फिर से वही सोचा, सेम केमिकल, सेल की फिर से वही डिमांड। हाँ,
0: हाँ।
1: ये साइकिल बार बार चलती है, जो लंबे समय तक चलती है उसको बोलते हैं, फिर वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। फिर आपको पता भी नहीं होगा आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। ये एक साइकिल ऑटोमेटिक चलती रहती है,
0: चलता रहता है,
1: तब तक चलती रहेगी
0: जब तक
1: आप अवेयर होके उसको ब्रेक नहीं करेंगे।
0: तो अवेयर होके ब्रेक करने का क्या तरीका है?
1: पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोग्रामिंग आपके अंदर ऑटो पायलट
0: में मोड चल रहा है। अच्छा अच्छा, उसको पकड़ेंगे तो फिर उसको
1: पकड़ेंगे, फिर उसके बाद नया थॉट क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ भी क्या है, मान लो कोई बार बार स्ट्रेस का थॉट क्रिएट करता है,
0: जी जी जी जी,
1: तो अंदर स्ट्रेस का केमिकल हो गया।
0: अभी
1: सेल को बॉडी को ये नहीं पता है कि ये केमिकल मेरे लिए यूजफुल है या नहीं, ये नहीं पता है। उनको तो जो बार बार आ रहा है वही उनके लिए बेस्ट है। तो बार बार स्ट्रेसफुल थॉट क्रिएट करते हैं,
0: जी जी,
1: तो सेल को सेम केमिकल की वो हैबिट हो चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: तो मान लो 2 साल से आप स्ट्रेस में हैं, तो आपके अंदर एक थॉट का 1200 केमिकल,
0: ओ, एक थॉट का 1200 केमिकल,
1: तो 17000 दिन के जो थॉट्स होते हैं उनके कितने केमिकल बन गए?
0: बहुत ज्यादा
1: बन गए। मान लो आपका बॉडी पूरा एक वो केमिकल का समंदर बन गया। अभी आप सोचते हो मुझे स्ट्रेस से बाहर आना है तो क्या करना है, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। अभी जो पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं,
0: जी जी जी,
1: वो आपने मान लो एक ड्रॉप डाला आपका बॉडी केमिकल का जो समंदर बन गया है स्ट्रेस वाले थॉट के केमिकल से।
0: जी जी,
1: पॉजिटिव थॉट किया, समंदर में एक ड्रॉप डाला, आज पूरे दिन में आपने 10-15-20 पॉजिटिव थॉट्स किए तो 10-15 ड्रॉप गए। कल भी किए, फिर रोज थोड़े थोड़े ड्रॉप डालते जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम तो थॉट्स, वो केमिकल कौन सा है? स्ट्रेस वाला ही है. अभी नया जो आपने पॉजिटिव थॉट्स वाले जो ड्रॉप्स डाले हैं केमिकल के,

0: जाएगा, वही स्ट्रेस वाला थॉट, वो फिर हमारा यहाँ अनकॉन्शियस माइंड काम करता है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपको स्ट्रेस हो ही, क्योंकि अंदर सेल डिमांड कर रहे हैं। और हमारे बॉडी के सेल्स कितने हैं,
1: बहुत
0: ट्रिलियंस
1: ज्यादा
0: ऑफ सेल्स है। ये सारे सेल्स एक ही केमिकल की डिमांड करेगा तो माइंड क्या करेगा, मजबूर हो जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है चलती रहती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि लोग माइंड की दवाई के लिए मजबूर हो जाता है, उनका माइंड अभी सह नहीं पाता है ये नेगेटिव थॉट, फिर बीमारियां शुरू होगी। ये भी एक वंडरफुल है, लोगों को मैक्सिमम नहीं पता है बीमारियां कैसे शुरू होती है। जैसे कोई इंसान बार बार लंबे समय से स्ट्रेस में रहता है तो अभी उनका माइंड बॉडी सब कुछ ऑटो पायलट में चला गया है, तो वो कंटिन्यू स्ट्रेस में ही रहेगा, वो स्ट्रेस के हैबिचुएट हो चुके हैं। तो वो स्ट्रेस की वजह से बॉडी को हीलिंग का टाइम नहीं मिलता। जैसे को हमारी बॉडी होती है उनको हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, और वो टाइम है सबसे बेस्ट स्लीपिंग, रिलैक्स मोड चाहिए। जब रिलैक्स मोड में बॉडी और माइंड दोनों रहता है तो बॉडी अपने आप हील हो जाती है। बॉडी में कोई भी बीमारी आए बस उसे रेस्ट दीजिए, दोनों को,
1: माइंड और
0: माइंड
1: बॉडी.
0: और बॉडी को, तो अपने आप हील हो जाती है। लेकिन मान लो आप स्ट्रेस में हो, अभी आप स्ट्रेस में हो तो बॉडी और माइंड दोनों को तो स्ट्रेस की हैबिट हो चुकी है। बॉडी को ऐसा लगता है बाहर कुछ खतरा है, स्ट्रेस को वो क्या मानता है, खतरा, बाहर कुछ खतरा है। तो वो जैसे आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो, आपके पास कुछ कीमती सामान है, तो आप चैन की नींद सो पाएंगे?
1: नहीं.
0: तो ऐसे ही होता है, ब्रेन को, बॉडी को ऐसा लगता है बाहर कुछ खतरा है तो रिलैक्स मोड में नहीं जाएगा। जब वो रिलैक्स मोड में नहीं जाता है हीलिंग बंद हो जाता है। अब रिलैक्स मोड में नहीं गया तो क्या होगा, बॉडी को एनर्जी चाहिए स्ट्रेस को फाइट करने के, आप जो कंटिन्यू स्ट्रेस ले रहे हो उनको फाइट करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लाएगा, बॉडी खुद ही नींद कम कर देगी। पहला स्टेप ये आएगा। कोई भी इंसान स्ट्रेस में रहता है तो एक्सपीरियंस होगा सबका, नींद कम हो जाएगी, डीप स्लीप नहीं जाएगा, तो हीलिंग का काम बंद हो गया। तो पहली एनर्जी ली नींद कम की, दूसरा बॉडी खुद ही डाइजेशन कम कर देगी, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है उसमें मैक्सिमम एनर्जी डाइजेशन में यूज होती है, तो डाइजेशन वीक कर देगी, मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगी। तो इस तरह से पूरी एनर्जी स्ट्रेस को फाइट करने में लगा देगी। अभी सोचो नींद कम हो गई, हीलिंग बंद हो गया, डाइजेशन वीक हो गया, तो पूरा बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी क्रिएट होने शुरू हो जाएगी। और जब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी तो इसके लिए, इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज क्रिएट होना ही है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे है। जैसे हड्डियां टूटना, हड्डियां कमजोर होना, थकान होना, और इनकी वजह से बहुत सारे डिजीज। फिर डाइजेशन वीक कर दिया तो पेट का इश्यू, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, अल्सर। और दूसरा, डाइजेशन कम हो गया तो हमारा जो रोज का टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि डाइजेशन ही वीक हो गया है। टॉक्सिन बाहर नहीं निकलेगा तो कहते हैं ना, कब्ज ही सारे बीमारियों की
1: जड़ है.
0: जननी तो जहां जहां वो टॉक्सिन, अभी बॉडी के अंदर टॉक्सिन रोज का रोज बढ़ता जाएगा, निकल नहीं रहा है, बढ़ता जाता है। अब टॉक्सिन बढ़ता जाता है तो वो टॉक्सिन ब्लड सर्कुलेशन के साथ पूरी बॉडी में घूमेगा, और कोई ना कोई ऑर्गन में वो फंसेगा, क्योंकि टॉक्सिन है, कचरा है, तो कहीं ना कहीं फंसेगा। मान लो किसी का टॉक्सिन हार्ट में फंस गया तो वहां ब्लॉकेज दिखाएगा, हाई बीपी होगी, ऐसी डिजीज क्रिएट होगी। किसी के टॉक्सिन्स पेनक्रियाज में फंस गए तो पेनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन क्रिएट नहीं कर सकता, और इनकी वजह से जो बीमारी क्रिएट हुई उनको हम नाम देते हैं डायबिटीज। तो इस तरह से जहां जहां ये टॉक्सिन्स
1: फंसते हैं वहां पर एक नई बीमारी,
0: वहां वो ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो उनको आप नाम
1: नाम
0: दे
1: दे
0: देंगे।
1: देंगे हाँ.
0: तो हमारे नेचुरोपैथी में ऐसे कहते हैं हम, सारी बीमारियां एक जैसी है, सब हमने
1: सब एक इक्वली कर दिया।
0: हाँ।

0: सर हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं और हम क्या करते, हार्ट की प्रॉब्लम हुई हार्ट के डॉक्टर के पास जाओ, पेट की प्रॉब्लम हुई पेट के डॉक्टर के पास जाओ,
1: अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास घूमते
0: रहते। वो जो मेडिसिन देते हैं आपको
1: तो
0: वो क्या वर्क करेगी? अभी आप सब आपको पूरी साइकिल समझ में आ गई ना,
1: तो वो सिर्फ उसको ठीक करने की कोशिश करेगी, सिम्टम्स को ठीक करने की,
0: ठीक करती है। कोई एक ऐसी मेडिसिन बताइए जिन्हें आपको ठीक किया हो, क्योंकि बीमारी क्रिएट कैसे हुई? स्ट्रेस से, स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन वीक हुआ, डाइजेशन वीक हुआ इनकी वजह से टॉक्सिन बढ़े, टॉक्सिन बढ़े इनकी वजह से ऑर्गन काम नहीं कर पा रहा, इसीलिए बीमारी क्रिएट हुई। तो जो मेडिसिन लेते हैं वो सिम्टम्स को सप्रेस कर देते, आपको ऐसे लग रहा है कि वो बीमारी ठीक हुई, ठीक नहीं हुई, क्योंकि अंदर जो टॉक्सिन है वो निकले ही नहीं है। इसीलिए लोग जिंदगी भर दवाई लेते रहते हैं। तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं नेचुरोपैथी में, जिसमें हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, पूरी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर दे, जहां जहां कचरा फंसा है वो बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं। इसके साथ साथ न्यूरो साइंस थ्रू उनका जो स्ट्रेस का एडिक्शन है वो ब्रेक करवाते हैं। जब स्ट्रेस का एडिक्शन ब्रेक हो जाता है तो उनकी माइंड और बॉडी को रिलैक्स मोड में लाते हैं, और रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, हीलिंग अपने आप शुरू हो जाता है। तो इस तरह से न्यूरोसाइंस एंड नेचुरोपैथी दोनों से कोई भी इंसान एवर हेल्दी रह सकता है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर कृपा जी। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को नेचुरोपैथी और न्यूरोसाइंस क्या है उसके बारे में पता चल गया होगा। आपको एक बहुत ही सुंदर जो है चाबी मिल गई है, न्यूरोसाइंस माना क्या है, जो हम थॉट क्रिएट करते हैं, थॉट माइंड क्रिएट करता है, बॉडी फीलिंग करता है, उसमें जो केमिकल रिलीज होते हैं और फिर धीरे धीरे ये साइकिल जो है चलता रहता है। इसको ठीक से अगर आप समझेंगे तो आपको शायद बीमारी का भी पता चल जाएगा कि इस तरह के सोच की पैटर्न आपकी है। अगर आप किसी चीज़ को देखकर गुस्सा बार बार हो जाते हैं और रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई एक पैटर्न है जिसको आपको समझना होगा, जो डॉक्टर कृपा अभी बता रहे थे। अगर आप पैटर्न समझ लिया तो उस पैटर्न को पॉजिटिव वे में चेंज करने का एक तरीका फिर आपको बना के उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसे कृपा जी बता रही थी कि खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन आपका विचार है, आपके थॉट्स है, आपका स्ट्रेस लेवल है, तो उसको आपको मैनेज करना होगा। तो उसके बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर कृपा से। इनका वेबसाइट है क्योर हेल्थ, एच के आगे एस है ना,
0: लास्ट
1: में यस है, और उसके बाद .com है,
0: curehealth.com
1: ये आपका जो है वेबसाइट है। यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे बातें भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और ट्रीटमेंट भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, वीडियो कॉल से या फ़ोन कॉल से या मैसेज से या वीडियोस के ज़रिए भी आप ये पूरा ट्रीटमेंट का आप ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूरो साइंस या फिर नेचुरोपैथी से जो कंसल्ट किए हैं कुछ एक दो केसेस के बारे में इनसे सुनेंगे, ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाएगा कि कैसे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, कैसे बीमारियां ठीक होती हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं अभी, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जिया, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। 9:29 हो रहे हैं और आप हो हमारे साथ। आइए, आज डॉक्टर कृपा हमारे साथ हैं जो न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट है और नेचुरोपैथ है। तो नेचुरली हम लोग अभी नेचुरोपैथी के बारे में और न्यूरोसाइंस के बारे में कुछ डिफाइन थोड़ा सा जो है शॉर्ट में हमने समझा उसको। अब हम लोग ये समझते हैं कि न्यूरोसाइंस कैसे काम करता है हमको हील करने का, तो इसका टेक्निक क्या है, तो वही चीज़ समझेंगे एक केस स्टडी के माध्यम से। तो डॉक्टर कृपा, मैं चाहूँगा कि आप काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को मैसेज करके पर्सनल जो है उनका केयरिंग करके आप उनको ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा उनका, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो, जिनका रिजल्ट आपको 100% अच्छा मिला है, वैसे बहुत लोगों को मिला होगा, कुछ एक एक केस स्टडी जो आपको यूनिक लगा हो वो हमें बताइए शुरू से लेकर लास्ट तक।
3: जी जरूर, बहुत सारे लोगों का ऐसे ऐसे डिजीज सॉल्व किए हैं
2: जी जी जी,
3: जहां मेडिकल फील्ड ने हाथ खड़े कर दिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
3: स्पेशली मैं एक आपको एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी, ये एग्जांपल मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में उनका वीडियो भी है।
2: अरे वाह,
3: हाँ। यहाँ हमारे गुजरात में एक गवर्नमेंट टीचर थे, सुरेश भाई करके उनका नाम है, गुजराती है, तो वीडियो भी गुजराती में उन्होंने बनाया है। उनको सोराइसिस था,
2: अच्छा,
3: स्किन डिजीज। सोराइसिस ये ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें क्या होता है, हमारे जो बॉडी के सेल्स है उनका काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब आप लंबे समय से स्ट्रेस में रहते हैं, तो जैसे कैसे आप बहुत जल्दी में होते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप भूल जाएंगे कहाँ जाना है, काम कैसे करना है, सिंपल सिंपल काम भी भूल जाएंगे। जल्दी में होते तो चाबी कहाँ रखी वो भी भूल जाते,
2: बाथरूम में जाते तो कपड़े बाहर रहते।
3: तो इंसान सालों से स्ट्रेस में रहता है, तो उनके जो सेल है ना, वो एक तो बेचारे को रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है, रिलैक्स मोड में हम जाते ही नहीं है ताकि वो रेस्ट करे। तो स्ट्रेस की वजह से सेल्स अपना काम भूल जाते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: उनका काम है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो काम भूल जाते क्योंकि आपने ओवरलोड देके रखा है काफी लंबे समय से। तो अपना काम भूल के वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने की वजह बॉडी को खाने लगता है। और इनकी वजह से जो डिजीज क्रिएट होते हैं उनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। वो खुद ही, खुद की बॉडी ही उसे क्रिएट करती है।
2: अच्छा, खुद की बॉडी क्रिएट की,
3: सेल्स ही क्रिएट करते हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे बॉडी को, वो बॉडी को अटैक
2: कर रहे हैं। अच्छा अच्छा,
3: तो इनकी वजह से ये जो सोराइसिस है वो भी वन टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज है, बॉडी खुद ही क्रिएट करती है। अभी ऐसे लोगों को नेचुरोपैथी इसके साथ न्यूरोसाइंस
2: दोनों मिला के
3: मतलब नेचुरोपैथी में हम क्या करेंगे, नेचुरल डाइट देंगे और नेचुरल थेरापीज देंगे। थेरापी दोनों टाइप की होगी, अंदर से बॉडी को हील करे और ऊपर से भी हील करे। जैसे सोराइसिस वाले को ईचिंग बहुत होती है, खून निकलना लगे, इतनी खुजली होती है,
2: काफी ज्यादा,
3: तो ऐसे लोगों के लिए ऊपर से नेचुरल थेरापीज देते हैं जो स्किन के ऊपर लगाना है, कोई मेडिसिन नहीं देते हम, ना ऊपर से लगाने के लिए ना खाने के लिए. डाइट थेरापीज और इनके साथ न्यूरोसाइंस. न्यूरोसाइंस में हम क्या करते हैं, वीकली 2 सेशंस लेते हैं, लाइव सेशन होता है हमारा, पर्सनली होता है. तो इनके जो पर्सनल इमोशंस है जिनकी वजह से वो स्ट्रेस में रहते थे, इनकी वजह से ऑटोइम्यून डिजीज रहे, जो पर्सनल स्ट्रेस रहते हैं उनको मैं हील करवाती हूँ. पहले उनका क्या करती हूँ, पूरा न्यूरोसाइंस का नॉलेज देती हूँ कि कैसे आपकी लाइफ में ये स्ट्रेस शुरू हुआ, कैसे, पहले उनकी हिस्ट्री हम जान लेते हैं, फिर उनको बताते हैं कैसे आपका डिजीज शुरू हुआ है, पूरा न्यूरोसाइंस का नॉलेज सिखाती हूँ. उनके बाद उनके एक एक जो नेगेटिव इमोशंस जिसको हम बोलते हैं सर्वाइवल इमोशंस, एक एक इमोशन को हील कराने के लिए पहले मैं उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ. पहले न्यूरोसाइंस का नॉलेज, उसके बाद एक उनका कोई नेगेटिव इमोशन लिया उनके ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगी. प्रैक्टिस करवाने के बाद उनको 3 दिन का गैप दूंगी. मैंने जो प्रैक्टिस करवाई है ना, अभी मैंने 1 घंटा प्रैक्टिस करवाई, तो यहाँ भी न्यूरोसाइंस काम करेगा. आपकी बॉडी में वो 1 घंटे नया थॉट आया तो नया केमिकल बना, नया केमिकल बना तो थोड़ा सपोर्ट करेगा. वो ब्रेन को, वो जो सेल है वो ब्रेन को कंटिन्यू ऑर्डर दे रहे थे स्ट्रेस के थॉट करो, अभी उनके अंदर नए केमिकल बने क्योंकि 1 घंटा मैंने प्रैक्टिस करवाया है. आप खुद नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ मैंने रेडीमेड थॉट दिए हैं, आपने थॉट क्रिएट नहीं किए हैं, मैंने रेडीमेड थॉट दिए हैं नया. तो 1 घंटा का कितने सारे केमिकल्स बन जाएंगे. फिर 3 दिन का गैप दूंगी, कहाँ कैसे कब वो नॉलेज प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है सब कुछ सिखाती हूँ. 3 दिन आप प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे, 3 दिन के बाद फिर से आएंगे, फिर से 1 घंटा मैं नेक्स्ट इमोशन पर काम करूंगी जो आपको परेशान करते हैं बार बार. उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, पहले न्यूरोसाइंस का नॉलेज दूंगी, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिकल करवाऊंगी, उसके बाद फिर से 3 दिन का गैप दूंगी उनको प्रैक्टिकल, जो मैंने सिखाया है प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है. अगर किसी को कोई कभी कभी नहीं भी हो पाता है क्योंकि बॉडी के अंदर वो पुराना केमिकल बहुत स्ट्रांग होता है, तो नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, उस समय फिर से हम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं. जो पेशेंट हमारे साथ कनेक्ट हुआ वो जब तक ऐसा बोले कि अभी मैं परफेक्ट हेल्दी हूँ तब तक हम साथ रहेंगे. फोन थ्रू, कॉल, मैसेज, एनी टाइम हम अवेलेबल रहते हैं, सर्विस हम बहुत बेस्ट देंगे. फिर ऐसे ऐसे चलते चलते हर वीक में 2 सेशन चलेगा प्रैक्टिकल अप्लाई, सेशन प्रैक्टिकल अप्लाई, ऐसे कंटिन्यू साइकिल चलेगी. हमारे पेशेंट का एक्सपीरियंस रहता है कि जो सोरायसिस का जिसको मैं बात कर रही थी, 3-4 दिन में उनका ईचिंग बंद हो गया, उनकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होने लगेगी.
2: अरे वाह.
3: क्योंकि 1-1 घंटे का सेशन चलता है तो उसमें माइंड रिलैक्स हो जाता है. अभी उनके माइंड और बॉडी को रिलैक्स मोड में आने की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, तो हीलिंग शुरू हो जाती है. तो इस तरह से 2-3 महीना वो जो भाई की मैं बात कर रही थी उनको 12 साल से था.
2: अच्छा, अच्छा.
3: और उनको सोरायसिस ऐसा था, वो पूरा उनके वीडियो में वो खुद एक्सप्लेन कर रहा है, शिव के मंदिर में जाके उन्होंने वीडियो बनाया है और ऐसे बोल रहे हैं कि मैं भगवान की साक्षी होके जो बोल रहा हूँ सच सुना रहा हूँ. उनकी बॉडी में आप उंगली रख सके इतनी भी खाली जगह नहीं थी, पूरे बॉडी में इतना सोरायसिस
2: हो गया था.
3: धीरे धीरे डाइट थेरापी और न्यूरोसाइंस के सेशंस इन तीनों के साथ करते चलते वो अपने टाइम पे वो फॉलो करते गए और आज ऐसा टाइम आ गया है उनकी बॉडी कम्प्लीटली क्लीन हो चुकी है.
2: अरे वाह.
3: वो बता रहे थे कि
2: कितना टाइम लगा उनको,
3: उनको लगा था 5 महीना एकदम क्लीन होने में क्योंकि बहुत ज्यादा था. और उन्होंने 12 लाख रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुके थे.
2: ओहो.
3: और उनकी कंपेयर में तो एकदम नॉमिनल चार्ज में बिना दवाई के बिना कोई साइड इफेक्ट के वो गारंटी देते कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी. और 100% उनको रिजल्ट मिल गया और कम्प्लीटली ठीक हो गए।
2: अरे वाह।
3: तो ऐसे बहुत सारे हमारे रियल सक्सेस स्टोरी हमने यूट्यूब पे डाली है,
2: आप देख ले सकते हैं।
3: जी
2: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि पेट की समस्याएं रहती हैं बहुत सारे लोगों को, कब्ज रहता है या फिर ये सारी चीजें भी क्या स्ट्रेस के कारण होता है?
3: हाँ,
2: ये तो किस टाइप का स्ट्रेस, क्या पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेस ही पेट के लिए काम करता है या कोई
3: नहीं
2: कोई ऐसा कुछ है?
3: सिर्फ स्ट्रेस नहीं।
2: हाँ,
3: मान लो आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है जहाँ आप हमेशा जल्दी में रहते हैं,
2: जल्दबाजी
3: में रहता है, तो भी वो भी वन टाइप ऑफ स्ट्रेस है। जल्दी ऑफिस जाना है, टाइम पे पहुंचना है, अगर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो बॉस डांटेंगे। तो ये हमेशा जल्दी में रहना है, जो ट्रैवलिंग करते हैं, जल्दी में बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, तो वो भी वन टाइप ऑफ स्ट्रेस है। इनकी वजह से भी आपकी डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगी ही। तो कोई पर्टिकुलर ऐसा स्ट्रेस नहीं है कि इनकी वजह से ही पड़ा। जो जो जब आप रिलैक्स मोड में नहीं होते, उनके अलावा की जो सिचुएशन है वो सारी स्ट्रेसफुल है। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपने हर्ट फील कर दिया, तो भी आपके डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगी। अगर आप ज्यादा बुरा लगा लेते हो, हर्ट फील कर लेते हो, तो इनकी इफेक्ट भी डाइजेशन पर पड़ेगी।
2: जी,
3: ये पूरा केमिकल का खेल है, अंदर कौन से केमिकल रिलीज हो रहे है।
2: और हम सोच रहे खाना अच्छा खाने से हेल्थ रहता है।
3: उसमें क्या होता है, कुछ कुछ जैसे फल सब्जियां खाते हैं तो डाइजेस्ट करना इजी होता है। तला हुआ ज्यादा मीठा खाना खाते हो तो डाइजेस्ट करना थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन आप खुश है, बहुत खुश है, हमेशा रिलैक्स मोड में रहते हैं, जॉयफुल रहते हो, तो बॉडी को वो तला हुआ ज्यादा मीठा खाना भी इजी रहता है पचाना। क्योंकि उनको स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए एनर्जी देनी नहीं है।
2: बिल्कुल,
3: आप तो जॉयफुल हो, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहते हो और
2: कई बार ऐसा सुना है कि जो स्ट्रेस में रहते हो ज्यादा खा लेते हैं।
3: हाँ,
2: ये भी है क्या?
3: ये एकदम सही है।
2: क्योंकि
3: जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपको तो ऐसे लगता है कहीं से खुशी तो मिल नहीं रही है, आपको हैप्पीनेस चाहिए, बॉडी को तो चाहिए, क्योंकि हमारा आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, हैप्पीनेस चाहिए और सबको अच्छी लगती है। लेकिन रहते हो स्ट्रेस में तो उस समय आपको हैप्पीनेस जनरेट करने के लिए वो हैप्पीनेस आप खाने में ढूंढेंगे।
2: अच्छा,
3: मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक हाथ में रखा है एप्पल, एक हाथ में रखा है समोसा, और मैं लोगों को पूछती हूँ आपके सामने ये दोनों है तो आप क्या चूज करेंगे? क्या चूज करेंगे अगर मैं आपके सामने रख दूँ?
2: समोसा ही।
3: अगर आपने समोसा चूज किया, दैट मींस आपका माइंड कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। जो इंसान जॉयफुल होगा वो एप्पल चूज करेगा। और आपको तो पता है ना कि इन दोनों में से हेल्दी कौन सा है? एप्पल ही हेल्दी है, लेकिन चूज करेंगे समोसा ही। क्योंकि आपको जो हैप्पीनेस है वो समोसा में मिल रही, खाने में आप हैप्पीनेस फाइंड आउट
2: कर रहे हैं।
3: इसीलिए स्ट्रेस वाले ज्यादा खाते हैं तो और ज्यादा डाइजेशन
2: खराब हो जाता है,
3: यदि ये साइकिल चलती ही रहती है।
2: तो एक समोसा खाएगा और ये एप्पल खाएगा, दोनों को स्ट्रेंथ किसको ज्यादा मिलेगा?
3: किसको ज्यादा मिलेगा? आपको क्या लगता है? कैसे एप्पल खाने वाले को ही स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा? इनका रीजन ये है कि समोसा आप खा रहे हैं तो समोसा तला हुआ है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी की बहुत सारी एनर्जी लगेगी, हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपको उसमें से एनर्जी कम मिलेगी। और एप्पल है, उनको डाइजेस्ट करना इजी है
2: और नेचुरल।
3: हाँ,
2: नेचुरल है वो,
3: इसीलिए आपको इसमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से ये चीजें हो रही हैं और आप जो है नेचुरल अपने जीवन को जो है इन चीजों से बना के रख सकते हैं। और जितना आप नेचुरल फ्रूट खाएंगे, रिलैक्स रहेंगे, उतना आप जो है हेल्दी रहेंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ आपका होगा। तो अगर कोई सवाल हो या कुछ पूछना चाहते हैं आप तो मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं 9414151415 इस नंबर पर। और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अब आपने ये सारी चीज़ें बता दी कि कैसे हम लोग थेरेपी देते हैं कंटिन्यू उनको और कंसल्टेशन करते हैं, और सुरह से जैसे बड़ी बीमारी से भी 5-6 महीने में मुक्त हो गए, ये केसेस आपके पास है, तो कई बार तो सोरेसिस वाले का लंबा चलता है, बहुत लंबा चलता है, पता ही नहीं चलता।
3: जब तक स्ट्रेस में स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे
2: तब तक वो चलता रहेगा।
3: क्योंकि कोई दवाई तो ऐसी है नहीं जो आपके सेल को याद दिलाए कि आपको अटैक नहीं करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। वो तो रिलैक्स मोड में जाएंगे तो अपना काम नॉर्मल आ सकता है।
2: एक और अनुभव मैं चाहूंगा कि जो मेंटली कई बार बहुत सारे लोग सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी स्ट्रेस में रहते हैं, इनका क्या कारण है? ना खाना पीना, घर भी अच्छा है, कपड़े लत्ते सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, माना फिजिकली उनको जो चाहिए रोटी कपड़ा और मकान एम्पल है, फिर भी स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसा क्यों होता है?
3: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले, अभी सब कुछ परफेक्ट है लेकिन पहले कभी स्ट्रेस था। एक दो साल तीन साल पहले स्ट्रेस था और वो स्ट्रेस लंबा चला था। तो वो स्ट्रेस की वजह से अभी स्ट्रेस के आपकी बॉडी के अंदर वो केमिकल है। अभी आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया लेकिन वो बॉडी को नहीं पता है ना। हमारे सेल तो वही डिमांड करेंगे जो सालों से उनको वो मिल रहा था केमिकल, तो माइंड को वो ऑर्डर करते हैं कि यही स्ट्रेस वाले जो केमिकल बन रहे हैं वही थॉट क्रिएट करो। तो ब्रेन मजबूर हो जाएगा, वही थॉट क्रिएट करेगा। अभी आपकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक है तो वो कहीं ना कहीं से भी स्ट्रेस ढूंढ ही लेगा। किसी ने कुछ बोल दिया, स्ट्रेस। किसी ने बोला था वो काम नहीं किया, स्ट्रेस। किसी ने पार्किंग में गाड़ी ठीक से नहीं पार्क की, स्ट्रेस। गाड़ी चला रहे, बाजू वाला गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे, हम अंदर बैठे स्ट्रेस। क्योंकि हमें स्ट्रेस का एडिक्शन हो चुका है। मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं, होता है
2: कि
3: फीलिंग्स का भी एडिक्शन होता है। सैडनेस है, किसी को दुखी रहने की आदत हो चुकी है। जैसे ये मेरे पास केसेस आते है, ब्रेकअप हुआ, आजकल चलता है ना लोगों का, ब्रेकअप हो जाता है तो सैड में रहने की हैबिट हो जाती है। फिर वो हर मोड में स्ट्रेस सैड रहेंगे। सब कुछ परफेक्ट है, फैमिली परफेक्ट है, पेरेंट्स सिबलिंग्स सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको सैड में रहने की एक हैबिट हो चुकी है
2: जी।
3: और वो सैड रहेगा ही। मान लो कोई इंसान सैड है, उनको आप बोलेंगे चलो हम घूमने जाते मजा आएगा, वो नहीं आएगा। वो मना कर देगा, अभी मेरा मूड नहीं है। क्योंकि उनको सैडनेस ही चाहिए, उनको भी पता है बाहर जाऊंगा मजा आएगा, नहीं जाएगा क्योंकि सैडनेस की हैबिट उनको छोड़ेगी
2: नहीं।
3: तो इस तरह से स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस का एडिक्शन हो गया। जो खुश है उनको खुशी का एडिक्शन हो जाएगा।
2: बिल्कुल।
3: तो वो हर जगह कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ ही लेगा। जो देखो कोई लोग बहुत फनी होते हैं, कोई भी मैटर हो उसमें वो फन कर ही लेगा क्योंकि उनकी वो हैबिट हो चुकी है। तो फीलिंग्स का भी एडिक्शन होता है। ये किसी को पता नहीं, हमको लगता है खाने का, मोबाइल का, गुटखा का, इनका ही एडिक्शन होता है, ऐसा नहीं। फीलिंग्स का भी एडिक्शन होता है
2: जी जी। मतलब जो कुछ आप सोच रहे हैं उसके जो
3: फीलिंग जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं उनका भी आपको एडिक्शन हो जाता है, वही चाहिए,
2: एडिक्शन हो जाता है जी। ठीक है, चलिए आशा करूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं को आज न्यूरो साइंस का जो टेक्निक है वो समझ में आ गया होगा और कैसे हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, इसका भी एक आदत हो जाता है और ये आदत बार बार रिपीट हो जाता है तो वो हमारे जीवन में दिखता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति को देखते हैं कि भाई आप ऐसा है वैसा है और हम सोचते हैं कि उनको थोड़ा चेंज लाने के लिए हम बाहर लेके जाने, मतलब बंदा आता नहीं है, इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ उनका स्ट्रेस बना हुआ है। तो वो चीज़ों से हमें जो है अपने पुराने चीज़ों से, इन थॉट से अपने आप को जो है बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सक्षम हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं जिससे आपको बाहर निकलने में आपको ईजीनेस होगा और आप आसानी से अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है गहरी नींद, है ना, वो चीज़ हमारी बॉडी को हील करता है और वो चीज़ ही हमारे से गुम हो गया। अच्छा, नींद नहीं आता, बहुत सारे लोगों का हमने केसेस कभी कभी आते हैं, हमारे पास भी फ़ोन भी आते हैं, तो गहरी नींद का क्या नीरो साइंस में कुछ टेक्निक है या कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा है?
3: पहले तो यही है, दिन भर स्ट्रेस कम लो, अगर स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है तो मेडिटेशन करना, अगर थोड़ा स्ट्रेस है तो रोज का 30 मिनट कम से कम मेडिटेशन कीजिए, ज्यादा स्ट्रेस है तो 1 घंटा मेडिटेशन करना है। और अच्छी नींद के लिए घरेलू नुस्खा में ये है, रात का खाना लाइट ले और जल्दी खा ले।
2: अच्छा, रात का खाना लाइट ले,
3: लाइट लेना है और जल्दी खा लेना है। और फास्ट रिकवरी चाहिए, रिजल्ट फास्ट चाहिए, तो खाना एकदम आराम से चबा चबा के खाइए, ताकि बॉडी को जल्दी से वो डाइजेस्ट करने में इजी रहे, तो रात को वो डाइजेस्ट करने का काम उनका खत्म हो जाए सोने से पहले। तो ये पहला है। दूसरा है, रात को सोने से पहले गर्म पानी में पैर डुबो के रहिए, हॉट फुट बाथ। एक बाल्टी में गर्म पानी ले, जितना आप सह सके इतना, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे और 15 से 20 मिनट तक पैर डुबो के बैठ जाए।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ बॉडी के पैर की तरफ चला जाएगा, तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, तो उनको रिलैक्सेशन फील होगा, तो आपको गहरी नींद आ सकती है।
2: अरे वाह, जी जी।
3: और फिर भी आपको नींद की कोई डिफिकल्टी लगे तो मिट्टी की पट्टी बनाते हैं आंखों के लिए। क्लीन मिट्टी लो, एक कपड़े में लपेट के, गीला कपड़ा रखना है, कपड़े में लपेट के सिर के ऊपर रख दीजिए,
2: सिर पे रखना है,
3: आंखों के ऊपर और
2: सिर के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा,
3: 15 मिनट रखिए और साथ साथ मेडिटेशन सुने, कोई भी मेडिटेशन कमेंट्री सुनते जाइए, डेफिनेटली आपको नींद आ ही जाएगा।
2: तो मिट्टी, गीली मिट्टी होगा तो नहीं आंखों में वगैरह जाएगा?
3: कपड़े में डाला है ना हमने, कपड़े के अंदर मिट्टी रखी है,
2: गीली मिट्टी को ऐसा लोई टाइप बना के,
3: हाँ,
2: चपटा करके, फिर शायद ऐसे कपड़े में लपेट
3: के
2: रखना। ओके ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया।
3: हमारे वीडियो में है मिट्टी की पट्टी कैसे
2: कैसे बनानी। अच्छा, चलिए, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
4: हेलो, नमस्ते
2: जी। सुखना बहन बोलिए, कैसे हैं आप?
4: बहुत अच्छे हैं हम तो।
2: एक मिनट, हमारे डॉक्टर साहब कृपा जी से बात कीजिए। जी नमस्ते, ओम शांति।
3: हेलो,
2: आपको सुनाई दे रहा
3: है? हाँ जी,
4: हाँ जी, नमस्ते, ओम शांति,
3: ओम शांति।
4: हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, देखो।
3: थैंक यू।
4: तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती। हाँ, नेगेटिव थॉट तो ऐसे ही चलते ही रहते हैं, देखो। हाँ, लेकिन हम तो बाबा की जान में जाते हैं, तो थोड़ा नेगेटिव डाइवर्ट कर सकते हैं बाबा की याद से।
3: वेरी नाइस।
4: हाँ, और क्या है कि दीदी, जो नहीं जानते हैं बाबा का ज्ञान, कुछ नहीं जानते
3: जी,
4: वो लोग भी थोड़ी थोड़ी बात में ऐसे टेंशन में आ जाते हैं
3: जी,
4: उनके लिए हम क्या करेंगे दीदी?
3: यही हमने बताया ना, टेंशन लेने की एक हैबिट हो चुकी है।
4: हाँ,
3: अभी टेंशन कुछ है नहीं लाइफ में, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन जो हैबिट हो चुकी है उनको ब्रेक करना है। तो जब जब आपको टेंशन आए तो तुरंत अपने आप को पहचानना है कि ये टेंशन लेने की मुझे हैबिट हो चुकी है। तुरंत अपने थॉट को पहचानो और उनके ओपोजिट यानी कि पॉजिटिव थॉट करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते जाएंगे।
4: देखो, हमको तो पता है, हम तो बाबा के ज्ञान में चलते हैं ना
3: जी,
4: तो हम मेडिटेशन करते हैं
3: जी,
4: तो हमको तो पता है, लेकिन जो नहीं जाते, नहीं मानते, बाबा तो जानते ही नहीं है। हम तो बहुत बार उनको बोलते हैं बाबा के ज्ञान में चलो, करो करो, लेकिन वो लोग कुछ तैयारी नहीं है बाबा के ज्ञान में जाने के लिए, कुछ समझने के लिए। और उनके लिए देखो, अभी उनका परिस्थिति ऐसा है कि उनको जीवन में कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है
3: जी,
4: सब तरफ से ऐसे टेंशन में आके ऐसे बैठ गए सब हार के, तो उनके लिए हम क्या कर सकते?
3: उनको मेडिटेशन करवाना है, अगर कोई भी मेडिटेशन करे, लेकिन मेडिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि ये मेडिटेशन से ही थॉट चेंज हो सकते हैं। और मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो उनका माइंड और बॉडी रिलैक्सेशन मोड में आता है, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते जाएंगे, फिर उनका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता जाएगा।
4: हमको तो पता है, बहुत अज्ञान है, कितने साल से अज्ञान में चल रहे हैं। अभी सूरज भाई का जो सुबह में कार्यक्रम आता है वो भी हमें समझाते हैं। देखो, हमारे पास सामने वाले के को तो कुछ ज्ञान नहीं है
3: जी,
4: क्योंकि कलयुग का अभी अंत चल रहा है
3: जी,
4: और सामने वाले में कुछ ज्ञान नहीं है। तो वो बोलते हैं कि हम ज्ञान का ऐसा प्रकाश डाले उन्हों को, तो उससे भी उनका जीवन परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यदि क्या होता है कि देखो, हमारे कोई नजदीक की संबंधी है, हम उनके बहाव में आ जाते हैं।
3: उनके बहाव में नहीं आना है, उनको अपने बहाव में लेके आना है।
4: क्या करें, हम तो जाते हैं ना कभी, तो बस वो उनों की सब देख के परिस्थिति, तो हमें लगता है पता नहीं क्या होगा इन लोगों के जीवन में। हमको तो बाबा मिल गया है,
3: नहीं तो, उस टाइम आपको ये थॉट क्रिएट करने हैं कि जैसे हमें बाबा मिल गया है और हम बहुत खुश हैं, इसी तरह हमें उनकी शुभ भावना रखनी है कि उनको भी बाबा मिल जाए और उनको भी परफेक्ट हेल्थ मिल जाए, खुशी मिल जाए, शांति मिल जाए। हमें ये थॉट क्रिएट करना है, ऐसे नहीं कहना है कि इनको पता ही नहीं है ये कब करेंगे, ये कैसे निकलेंगे, ऐसे कुछ थॉट नहीं क्रिएट करने। आप उनके लिए जो थॉट क्रिएट करेंगे वो उनको तुरंत इफेक्ट करेगा। तो आप सोच रहे हैं कि वो भी बाबा के बन जाए, वो भी खुश रहे, शांत रहे, तो हो जाएगा।
4: मैं तो पूरा कोशिश कर रही हूँ दीदी
3: जी, बहुत अच्छा।
4: लेकिन वो अभी के इंसान क्या है कि अभी बाबा ने बोला ना भक्ति मार्ग ज्यादा बढ़ेगा, तो ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, देखते हैं हम। तो उन्हों को इसमें इंटरेस्ट है, हम बताते हैं भाई ये सब छोड़ो, बाबा
3: हमें हम न्यूरो साइंस में ये सिखाते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं वो हमें ना देखना है ना सोचना है, हमें यही सोचना है कि वो लोग भी बाबा के बच्चे बन जाए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, बस हमें सिर्फ इतना ही सोचना है।
4: सही बात है दीदी, मैं तो यही वाइब्रेशन देती हूँ,
3: बस यही वाइब्रेशन देते रहे।
4: हाँ, कि बाबा को बोलती हूँ कि बाबा ये सभी आपको शांति मिले,
2: बहुत बढ़िया
4: है बाबा का
3: जी।
2: ठीक है, ओम शांति सुगना बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और ये थे सुगना बहन गुजरात से, जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और उन्होंने अपना ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है उसके बारे में जिक्र किया, जिसे सुनकर व्यक्ति जो है स्ट्रेस फ्री हो जाता है, ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा डॉक्टर कृपा जी एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए।
3: सबके लिए मेरा एक मेन मैसेज है कि अगर आप परफेक्ट हेल्दी रहना चाहते हो हमेशा के लिए, तो दो रेमेडीज करनी है। एक रेमेडी है दिन में आधा घंटा मेडिटेशन करें
2: जी,
3: और दूसरी रेमेडी है तीनों टाइम जो खाना खा रहे हो, चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं, एकदम आराम से खाना खाए, चबा चबा के खाना खाए, बस ये लाइफ में दो चेंजेस करेंगे तो भी मैं मानती हूँ 60-70% आपकी हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी, माइंड और बॉडी दोनों की।
2: जी जी जी,
3: सिर्फ दो चीजें ध्यान रखो,
2: दो चीजें जरूर, एक आधा घंटा मेडिटेशन, दूसरा
3: खाना, तीनों टाइम
2: आराम से चबा चबा के खाए, बस
3: ये हमारा एक्सपीरियंस है।
2: चलिए, बहुत ही सिंपल टेक्निक आपको बताया है कि आप आधा घंटा मेडिटेशन करें और खाना चबा चबा के धीरे से खाएं, इससे आपका हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ठीक हो जाएगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम ऐसी नारी शक्ति पर आधारित है जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव या कुछ अलग उनके जीवन की कोई कहानी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि नारी शक्ति के साथ जो घर में रह रही है या बाहर जो भी करती है तो उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां भी आ सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप नारी शक्ति की शक्ति को भी पहचान सकते हैं, उसके स्ट्रगल को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही नारी शक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है मधु राठौड़। आप गुजरात जूनागढ़ जिला बांटवा गांव के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 52 वर्ष है। आपने 12th तक पढ़ाई की हुई है। सिलाई कढ़ाई बुनाई का आपको बहुत ही शौक है, कुकिंग का और विशेष करके सफाई का बहुत ही शौक है और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। मधु जी नमस्कार।
1: धन्यवाद जी,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद
0: मधु जी। चलिए, आपकी उम्र 52 है, मतलब पिचपन के आसपास पहुंच चुकी है। और कहते हैं ना, पिचपन में जब बचपन की बातें करते तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या कहेंगे?
1: बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी
0: जी,
1: तब से मुझे कुछ ऐसे लगा, बचपन से तो वैसे माँ बाप, हम 5, 3 बहने हैं, 2 भाई है, छोटा सा परिवार है और माता पिता है, दादी थी। फिर दादी तो अचानक से हार्ट अटैक आया और चली गई। उसके बाद सत्संग चला था घर में, जैसे कि तो सत्यनारायण की कथा हर 11 को होती थी। तो मम्मी सब कहती थी कि जाओ आप ना, सबको जो सगे संबंधी है उसको कहना कि हमारे यहाँ सत्संग है तो आ जाना। फिर सबको वो फूल लाना, प्रसाद लाना, वो सब मम्मी मुझे देती थी कि आप वो करो। फिर तो सब लाते थे, फिर ना बरसात आई, ये सब इकट्ठा करते हैं पैसा और उसका कुछ बड़ा करना था। तो मैं तो छोटी थी, तो एकदम बरसात आई तो सारा

0: ऐसा ऐसे पास रहता है, 25 पैसे का, 30 पैसे का,
1: जी
0: हाँ, तो वो सब इकट्ठा किया हुआ था और घर की जो कांधी कहते मतलब माड़िया कहते उसमें लगा था। तो बरसात आने की वजह से जोरदार वो बिक गया। फिर सब वो सुखाया बहनों ने, मेरी 2 बहनें हैं और भाभी है, सब सुखाया। फिर तो मम्मी ने, और सत्संग की जो मंडली थी ना, बड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही वो सत्संग चालू किया। तो कहते हैं कि अब ना कुछ उसका नया करे। हमारे यहाँ जो राजपूत के मंडली होती है ना बहनों की, तो उसमें सत्संग में से जो इतने पैसे इकट्ठे हुए थे, तो उसका कुछ अच्छा सा करे जो सबको काम भी आए उसमें।
1: चलिए मधु जी, सत्संग की बातें हम जरूर जानेंगे। पहले हम बचपन की बात जानना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे थे कि 5 भाई बहनों, ठीक है। अच्छा, आप 3 बहनें और 2 भाई हो, आपका नंबर कौन सा आता है?
0: मेरा लास्ट का नंबर 5वां।
1: तो आप तो सबके चहेते रहे होंगे।
0: बहुत बहुत बहुत चेते रहे
1: आपके
0: सब।
1: पिताजी क्या काम करते थे उस समय?
0: वो किसान थे, किसान। पहले तो मैं जब से आई ना, तब से तो हमने बहुत खेती देखी। इससे पहले कहते थे कि हमारे 7 थे ना घर में, जैसे 5 बच्चे और 2 माँ बाप और दादी। उसमें बहुत एकदम करकसर से जीवन था,
1: जी,
0: क्योंकि
1: मुश्किल से चल पाते थे गृहस्थी की
0: हाँ,
1: गाड़ी।
0: नहीं, पापा का यही एक सपना था कि मैं बड़ी खेती लूँ। इसके लिए उसने करकसर से हम सबको ऐसे सिखाया कि करकसर से रहोगे, लोभ से नहीं, करकसर से।
1: जी,
0: तो उसने 100 बीघा, मतलब अभी उसका पैसा होता है वो 15 करोड़ होता है। तभी कभी कुछ नहीं था, फिर भी पापा ने, हम काका कहते थे, हम साथ में रहते थे।
1: जॉइंट परिवार था।
0: हाँ, जॉइंट परिवार था, मतलब मेरे जो बड़े पापा के बड़े भाई वो साथ में रहते थे, उसका 6 बेटा,
1: जी
0: हाँ, और साथ में रहते थे। तो साथ में रहने की वजह से जो बड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते
1: जी काका बोलते हैं और बड़े पापा के बेटे।
0: हैं, हाँ, पापा के बड़े भाई, उसको हम अदा बोलते हैं गुजराती में।
1: जी
0: तो वो अदा का सब बच्चे इकट्ठे रहते, तो वो मेरे पापा को काका कहते थे, तो हम भी काका ही कहते, लास्ट तक काका किया। तो काका का यही सपना था, और मुझे बहुत पढ़ाया उसने। सब हमारे भाई बहन है ना, उसमें से मुझे ज्यादा पढ़ाया,
1: अच्छा, बाकी आपसे सब कम पढ़े लिखे हैं,
0: सब कम पढ़े लिखे,
1: भाई भी
0: भाई भी,
1: तो सब क्या करते, खेती का काम?
0: हाँ, सब खेती का ही काम करते।
1: तो आपके सामने 100 बीघा जमीन का जो आपके पिताजी का
0: वो बनाया उसने अपने,
1: संकल्प था तो लिया।
0: हाँ, वो पूरा किया। पहले ऐसा नहीं था, फिर पूरा किया। फिर उसको तो इतना उमंग आया। उसके बाद सब, पहले भाई की शादी हुई, बड़े भाई की, उसके बाद तीन तीन की साथ में हुई और मेरी अकेली हुई।
1: अच्छा, आपकी शादी की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बात कर रहे थे आपके बचपन की, कि इस तरह आपके पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे। आपके माताजी भी कुछ करते थे?
0: हाँ, घर का काम करती थी और खेत में पिताजी को बहुत साथ देती थी, सारा पूरा काम करके, अपना भाता बना करके। और मुझे कहती थी कि आप ये घर संभालो, और पढ़ाई करने के बाद हम आएंगे तो आपको ये खिचड़ी बना के रखनी है, ये सफाई करनी है, और चूल्हा चूल्हा ये सब कुछ अच्छे से रखना है, ताकि आए तो सिर्फ हमें सब्जी और रोटी दोनों ही बनानी है, और पूरा घर का ख्याल रखना है, बाहर सब आपको करना है। और फिर आप ये सब पढ़ाई करने के बाद फिर पेड़ाई कर लेना और सफाई कर लेना। तो मम्मी भाता बनाकर, मतलब रसोई बनाकर जाती थी,
1: जी
0: हाँ, और साथ में पिताजी को बहुत बहुत साथ देती थी।
1: तो आपके भाई बहन भी जाते थे खेत में?
0: सब जाते थे, सब के सब।
1: आप अकेले घर पर रहते?
0: हाँ, मैं अकेली घर पर रहती, मैं डरती नहीं थी। मेरे से जो तीसरे नंबर की बहन है ना, जैसे हम 3 बहन हैं, तो तीसरे नंबर बहन के, वो अकेली नहीं रहती थी, वो डरती थी, वो कहती थी मैं अकेली नहीं रहूंगी। मम्मी बहुत कहती थी कि आप रहो इसके साथ। फिर मैं कह देती हूँ कोई बात नहीं मम्मी, आप जाओ, उसको भी ले जाओ, मैं अकेली रहूंगी। और मैं बहुत बड़ा था, तो मैं उसमें अकेली रहती थी और सब काम कर लिया करती, और मम्मी मुझे ऐसी शाबाशी देती, देखो तो आपसे छोटी है तो भी वो अकेली रहती है, और सारा डरती भी नहीं है। कोई आते हैं तो ऊपर से देख लेती हूँ कि कौन आया है, अगर कोई हमारा संबंधी आते हैं तो मैं खिड़की खोलती हूँ, अगर कोई और है तो खिड़की भी नहीं खोलती। ऐसे में बहुत तैयार थी, तो मम्मी और पापा दोनों की चाहती थी। पापा तो हमें साथ में ही सुलाते थे, वो तो मेरी सगड़ी है जैसे बोलते। मैं इतनी गर्म रहती हूँ ना, तो वो खेत में से आते और पापा को मैं पानी देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, तो पापा की बहुत चाहती थी। छोटी थी इसलिए बहुत बचपन प्यार से ही गुजरा, और सबका भाई बहनों का अभी तक प्यार मिल रहा है।
1: जी जी जी
0: बहुत प्यार मिला
1: जी।
0: और अभी वो पे दुलार देते तो कहते है कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसे कहते है अभी भी।
1: जी जी वो कहते हैं ना कि नमे सौने गमे, गुजराती कहावत है।
0: हाँ।
1: तो आपके अंदर नम्रता थी, तो आप सभी के दिलों पर राज करते थे।
0: अभी भी कर रही हूँ। और
1: बचपन से जो स्वभाव संस्कार जो हमारे अंदर पड़ जाते हैं, वो लाइफ टाइम चलता है।
0: हाँ, वो आगे ज्यादा हो जाता है बढ़कर। तो बचपन ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला कि देखो सबने इतना साथ दिया। और मैं मेरा उत्साह और उमंग बहुत बढ़ाते थे भाई बहन।
1: जी
0: जो मेरे से चारों भाई बहन है ना, बहुत उत्सव उमंग बढ़ाते थे। जैसे कि खेतों में बुनाई होती है, कटाई होती है, वो हम एक दो मजदूर रख करके हम स्वयं करते थे।
1: अच्छा।
0: मजदूर चार आते थे, वो चार बहनें आती थी, दो बहनें अपनी और दो भाई उसके, वो चार ही आते थे और हम सब मिल करके ये सारा खेत संभालते थे।
1: सौ बीघा जमीन में।
0: हाँ सर।
1: अच्छा।
0: मजदूर नहीं, ना कोई किराए का रखा, रात में कोई नहीं, सब अकेले ऐसे ही करते थे। तो हमने बचपन से यही सीखा कि मेहनत करो, और मेहनत से आगे बढ़े। और पापा का तो बहुत था कि ये ले वो ले, बहुत था, कोनो मेहनत में बहुत विश्वास था।
1: जी चलिए मधु जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है यहाँ पर एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मधु जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं जो हम फिर से सुनेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी जुड़ी हुई है, ऐसी मातृ शक्ति जुड़ी हुई है, मधु राठौड़, जिनके अनुभव हमने सुने हैं। इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। मधु जी, पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: जी थैंक यू जी।
0: तो मधु जी, आपके बचपन की बातें चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, स्कूल की बातें बताएंगे कि आपके टीचर्स के साथ, सखियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
1: हाँ, मेरी सखिया भी बहुत बढ़िया थी। एक सखी थी, बहुत अच्छी थी। मैंने उसे अपना माना था, उसका वो अलग था। फिर मैंने पहले आठवीं पढ़ी तो मम्मी होली का त्यौहार था, जैसे अभी होली आ रही है, तो होली का त्यौहार था तो मम्मी ने कहा कि अब मैं ना सारा रसोई या भाता बोलते हैं ना, वो भाता कर रही हूँ, तो आप ना आज जाओ शिव के मंदिर पर। और वहाँ से गुजरात में ये होता है कि बड़ा शिवरात्रि का महत्व होता है, शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं और भांग का प्रसाद मिलता है, और बड़ी उत्साह उमंग से शिवरात्रि पूरा दिन रहते हैं। और शिवरात्रि के दिन खाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट लेना है, दूध लेना है, और वो प्रसाद लेना जरूरी है। तो प्रसाद नहीं, माताजी लाई थी, तो उसने कहा आप जाओ तो मुझे मंदिर भेजा। तभी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी मिली और मैं आठवीं कक्षा में वो प्रदर्शनी देखी। तो वो प्रदर्शनी पहले तो कुछ समझ में नहीं आई, बाद में इतनी मन को भा गई कि बार बार वही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे। इसमें इतनी लगती थी कि मैं ही वही देवी हूँ, और मुझे इतना अच्छा अनुभव होने लगा कि मैं बस इसी मार्ग पर चलूँ। घर पर आई, प्रदर्शनी देखी, तो उस प्रदर्शनी में सुना कि मैं कौन हूँ, वही बहुत अच्छा लगा। फिर पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, और माता जी तो चली गई खेत में, और मैं घर पे, तब स्कूल पे रजा होती है तो घर पे हूँ, घर पे थी। उसके बाद आध्यात्मिक में मेरा जुड़ाव बहुत रहा, मैं बहुत अच्छा लगता था कि मैं आध्यात्मिक में कैसे आगे चलूँ। फिर हर ग्यारस के दिन और पूनम के दिन मेरी माताजी कथा करती है, सत्संग सब बहनें आती है, सत्संग की 50 बहनें होती है, तो माताजी सत्संग में होने के कारण मैं इतनी आध्यात्मिक रही पहले से। भक्ति भाव, उसमें प्रसाद होता है, महाप्रसाद की बहुत महिमा होती है सत्संग में, सत्यनारायण की कथा, वो सत्संग फिर पाठ पूरा हो जाता है, 5 अध्याय होता है, पूरा होने के बाद प्रसाद सबको बांटते।
0: अच्छा, तो आप अध्यात्म में चलने लगे, तो फिर घर में किसी ने विरोध तो नहीं किया?
1: जी छोटी थी तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, पर ऐसे कहा कि अच्छा है,

0: और मम्मी अध्यात्म से जुड़ी थी, तो अध्यात्म में बहुत रुचि थी मेरी पहले से ही,
1: तो भक्ति के संस्कार आपको बचपन से थे
0: बचपन से
1: जी, और 8वीं से आपको थोड़ा अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया,
0: स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया।
1: अच्छा, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि आपकी सखियों के साथ कैसा था?
0: सखियों के साथ तो इतना मैं सखी नहीं करती थी, मुझे ऐसे अध्यात्म में अच्छा लगता है बस।
1: अच्छा, ये बताइए, आप स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करते थे जैसे गाने?
0: हाँ,
1: में
0: हाँ, जो में? कोई स्पर्धा होती है, कोई भी स्पर्धा होती है, तो पहले तो मैं लींबू चमची में वो स्पर्धा किया ना, तो मेरा वो उसमें फर्स्ट नंबर आया, पहला नंबर आया, जो अच्छा लगा कि आगे बहुत बढ़ना चाहिए, उत्सव उमंग बढ़ा, जैसे पहले नंबर आए ना तो अंदर से लगा कि बहुत आगे मेहनत करनी चाहिए, फिर तो आगे आगे नंबर आता ही गया।
1: अच्छा, तो हर साल आप भाग लेते थे?
0: हाँ, हर साल भाग लेते।
1: अच्छा, और डांस गरबा ये भी करते थे?
0: हाँ, गरबा करते, डांस तो अकेले अकेले करते,
1: तो करते थे अकेले स्टेज पर?
0: हाँ, अकेले अकेले स्टेज पर करते थे, पर थोड़ा हिचकिचाते पर कर लेते थे, फिर बाद में एक भी किया फिर तो अच्छा लगा तो करते रहते थे डांस भी।
1: कभी टूर्नामेंट में भी गए? गेम्स में कोई गेम्स खेलते थे?
0: गेम्स तो नहीं खेली।
1: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
0: पढ़ाई में बहुत बढ़िया था, और एक फोकस था कि आगे बढ़ना है, मतलब इतना तो लाना ही है, तो पढ़ाई में भी रुचि बहुत रही, 10वीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 12वीं तक, पर 12वीं तक में तो मेरी शादी हो गई थी, मैं 12वीं तो वहाँ ससुराल में किया।
1: अच्छा, 12वीं पढ़ रहे थे और शादी करवा दी?
0: हाँ, 12वीं में तो मेरा जो रिजल्ट आया ना वो ससुराल में आया, पढ़ाई तो वहाँ, शादी तुरंत कर दी।
1: तो आपका ससुराल कहाँ है?
0: ससुराल भी वही बांटवा में ही है।
1: बांटवा में ही? कितना बड़ा शहर है बांटवा? शहर है या गांव है?
0: वैसे शहर भी कहो तो शहर भी है और गांव भी है,
1: तो वहीं पर आपका पियर भी और ससुराल भी?
0: ससुर एक गांव में, सब कई बाहर गई नहीं, रेल तो मैंने कहीं देखा नहीं, आध्यात्मिक में रहे और गांव में ही शादी हो गई।
1: तो आप बता रहे थे कि छोटे थे तब तो कोई विरोध नहीं करते थे, तो शादी के समय किसी ने विरोध किया क्या?
0: नहीं, फिर तो युगल को मैं आध्यात्मिक में ले गई तो उसको भी अच्छा लगा, फिर विरोध होगा आध्यात्मिक में,
1: फिर क्या हुआ, विरोध हुआ?
0: हाँ, ससुराल में कहते कि नहीं, हम कोई पकड़ बकड़ नहीं है, हम आध्यात्मिक में नहीं चल सकते, अब तो हमें बेटा चाहिए बेटी चाहिए, ऐसे आप शादी किए तो ये करना है वो करना है।
1: कौन बोलता है?
0: सास ससुर बोलता है, पर हमारे में लाज प्रथा थी, घूंघट निकालने की प्रथा थी
1: जी,
0: तो मेरे पापा ने ही शादी के वक्त किया था कि आप घर जाके घूंघट उठाओ, वो अलग बात है, हमारे यहाँ तो शादी होगी तो घूंघट में ही होगी
1: जी।
0: पापा जी ने यही बोला था, और माँ माता जी और बड़ी दो बहनें हैं वो भी अच्छे से शिक्षा देती रही कि हमें अपने मर्यादा में ही रहना है, कभी इधर उधर पाँव ना जाए, फिसल ना जाए, वो बड़ा ध्यान रखना है किसी के साथ, बहुत सारी हमें मदद की बातें मिली उसी से
1: जी,
0: बड़ी दो बहनें थी उसी से सब मिला।
1: तो फिर ससुराल में सब कैसे रहते थे? शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
0: सासी तो घूंघट निकालते थे और बहुत स्ट्रगल हुआ।
1: मतलब आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते थे?
0: तभी तो करते थे, पर जब आध्यात्मिक में जुड़ी, आध्यात्मिक में मेरा मन रुचि लगी, तभी विरोध हुआ।
1: तो आपने कहा कि आपके हस्बैंड तो आपके साथ जाते थे?
0: पहले उसने थोड़े टाइम किया, थोड़े टाइम वो मेरे साथ चले, मैंने कहा प्यार से उसे बोला ना कि चलो हम जाते हैं, इसमें आध्यात्मिक में क्या, बहुत अच्छा है लगता है, वो सत्संग में जाने लगे, अब मेरे साथ आए, उसमें साप्ताहिक होता है कोर्स, उस वो किया उसने, और उसके बाद विरोध किया, और घर में तो जाते हैं तो सबको पता चलता है ना ससुराल में, तो मैं कह कर के जाती थी कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो फिर आने के बाद सबको अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना काम टाइम पर करती थी, सबको बहुत प्यार से रखती थी, फिर भी उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हम पकड़ लोग नहीं है, सत्संग में हमारा आध्यात्मिक में नहीं जाना है, सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर मन नहीं लगता था सत्संग के बिना, तो
1: फिर आपने विरोध किया?
0: मैंने विरोध नहीं किया, मैंने चलती रही सत्संग में, जाती रही।
1: जी।
0: फिर चुप चुप के जाने लगी, इसे थोड़े सामने से, फिर तो उसको पता चल गया कि ये वहां से वहां हंस जाती है तो सामने से आकर दो चमाट लगा देती।
1: अच्छा, तो इस तरह आपके साथ विरोध होने लगा
0: बहुत।
1: अच्छा, ससुराल में कितना बड़ा परिवार था, मतलब संयुक्त परिवार था या आप अकेले रहते थे सास ससुर के साथ?
0: संयुक्त परिवार था, 10 जने रहते थे, 4 भाई है, 2 बहने हैं, 2 ननद है और सास ससुर है, जेठ जेठानी, उसके 3 बच्चे।
1: जी जी,
0: बच्चे थे। हाँ,
1: तो इतना बड़ा परिवार था, आप कह रहे 10 जने थे, इतना बड़ा परिवार रहते थे साथ में।
0: हाँ, सबका काम भी हमें ही करता है, ऐसे कोई काम का भाग नहीं हुआ था, सब इकट्ठे काम करते थे। और मैं तब पानी की तंगी थी तो खेत में जाकर के कपड़े धोने होते हैं।
1: जी जी
0: हाँ,
1: जी।
0: और वहाँ नहाने का सब मना होता है, नहाते नहीं थे, कहते कि नहीं हम थोड़ा ब्राह्मण लोग है, हम ब्राह्मण लोग नहीं है, वो क्या बोलते है, ब्राह्मण लोग नहाते हैं, हम नहीं नहाते। तो 2-3 दिन में नहाने देते थे और जैसे कि चलता था।
1: अच्छा, नहाने रोज नहीं देते थे और आपको स्वच्छता पसंद है, तो फिर क्या करते है?
0: फिर मैं तो नहाती हूँ तो उसको विरोध होता है कि ये कैसी है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते बोलते थे ना कि नहीं नाना नहीं है, हम थोड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते ही वो नहाते थे।
1: जी चलिए मधु जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी श्रोताओं को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए, इनके अनुभव हमने काफी कुछ सुने हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो मधु जी, जैसे आपकी शादी हो गई, आपको अध्यात्म में गहरी रुचि थी, सत्संग में आप जाते थे, ससुराल में फिर आप जाने लगे तो विरोध होने लगा, फिर आप रोज नहाते तो नहाने का भी विरोध होने लगा, तो पानी कहाँ से भर के लाते थे? घर पर नल था?
2: हाँ जी, नल तो था, पर ऐसे भी सबका मन भी देखना है ना, उसका मन नहीं है और हम ना रहे, फिर भी नहाना ही है, जरूरी है, फिर नहाते थे, नहाना तो जरूरी लगा, तब भी लगा और अब भी लग रहा है।
1: नहाते और रोज डांट खाते?
2: रोज डांट भी खाते, और उसको हम अच्छे नहीं लगते थे, क्यों नहाने के लिए मना करते और हम नहाते, तो संबंध ऐसे प्यार से नहीं रहता है।
1: आपके हस्बैंड के साथ?
2: हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे है।
1: तो कौन मना करते है?
2: सासू, जेठानी, वो कहते कि नहीं नहाना है, ये क्यों नहाना है इसे।
1: तो फिर साथ में ही रहे या अलग हो गए?
2: नहीं, फिर तो साथ में रही, जब तक पहली बेटी आई, दूसरा बेटा आया, तब तक साथ थे।
1: अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे उस समय?
2: वो होमगार्ड में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं।
1: अच्छा, तो आपके गांव में थे?
2: हाँ, गांव में सेवा होती है ना सरकारी, होमगार्ड की, जैसे पुलिस के नीचे।
1: जी जी,
2: कॉन्स्टेबल के नीचे होती है।
1: अच्छा, तो जैसे आपका मायका भी वहीं था और
2: ससुराल भी गांव में।
1: जी, जैसे आप बता रहे थे कि कपड़े धोने आप खेत में जाते थे, तो पानी की कमी थी, तो आपके मायके में भी कपड़े धोने आप खेत पर जाते थे?
2: जी नहीं, वहाँ तो घर पे ही था सब कुछ, घर पे ही कपड़े धोते थे, पर ससुराल में ना दुष्काल हुआ तो वहाँ थोड़ी तंगी हुई पानी की, तो कहते कि आप खेत में जाओ, तो मैंने तो जैसे शादी की आई और तुरंत कपड़े या जो चद्दर वो रजाई होती है ना, एक साथ 18 रजाई धोई, एक दिन भी मैंने बैठी नहीं हूँ।
1: इतना काम करते थे?
2: एक दिन भी बैठी नहीं हूँ, जैसे आज इधर पांव रखा, शाम को शादी करके आए, सुबह सब बोलने लगे इतना काम है, इतना काम है, वो है, इतना धोना है, तो मैंने सीधा कहा चलो मैं आती हूँ, मैं और मेरी जेठानी साथ में गए। फिर एक दिन आई, दूसरे दिन तो सास बोलने लगी कि इतना काम मैं अकेली क्या करूँगी, तो वो तो घर पर रही रसोई के लिए और मैं अकेली गई
1: कपड़े धोने।
2: हाँ,
1: तो शादी होते ही आपके काम में लगा देते हैं, नई नई बहू आई तो थोड़ा लाड़कोड़ भी तो करते हैं ना?
2: करते हैं ना, अभी हम भी कर रहे हैं, हमारी भी बहू है, हम भी बहुत करते हैं, क्योंकि ऐसे आध्यात्म में जाते हैं ना, तो जैसे हम पर बीती है ना, उस पर ना ही बीते, उसको तो इतना लाड प्यार करते, उसको तो आप करके, आप अभी भी मैं, मेरी बहू है, उसको आप कहकर ही बुलाती हूँ
1: जी,
2: उसको ऐसे तुकार के नहीं बुलाते, प्यार से ही उसे बुलाते, अगर बुलाना है तो प्यार से ही बुलाते।
1: जी जी, अच्छा, तो जैसे आपका काम में लगा दिया तो आपके मायके वालों ने कुछ नहीं कहा?
2: नहीं नहीं माँ पापा का तो यही था कि मेहनत करो, मेहनत आपको जगह देगी, मेहनत से ही आगे बढ़ना है ना।
1: तो इतना आप काम करते थे तो सास ससुर प्यार करते थे आपको?
2: नहीं, वो अपना अपना तरीका होता है ना, अपना अपना नजरिया होता है।
1: अच्छा, किसी का प्रेम नहीं मिला?
2: नहीं, आध्यात्मिक में बहुत रुचि इसलिए तो जगी ना।
1: अच्छा, तो इसलिए आपको थोड़ा सत्संग से प्रेम बढ़ा?
2: हाँ, प्रेम और बढ़ा।
1: फिर कितने समय में आप पियर जाते थे?
2: पियर तो गांव में ही था, क्योंकि वहाँ खाना, मुझे वहाँ तेल बहुत लगता था सब्जी में, और मायके में तेल नहीं था, तो साग भाजी में मायके ही खाती थी। अब माता जी मेरी और मेरी भाभी थी, सब कहते थे अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता, यहाँ खा लो, और खा करके वहाँ जाती हूँ ससुराल में।
1: तो रोज जाते थे खाना खाने?
2: हाँ, वहाँ रिवाज है, गांव में जो शादी होती है ना, वो 4 बजे या 5 बजे मायके में रोज जाती है।
1: अच्छा,
2: अभी भी
1: टाइम मिल जाता है?
2: नहीं, टाइम निकालते, वो रिवाज हो गया है,
1: तो 5 बजे जा करके खाना खा के वापिस आ जाते हैं।
2: हाँ,
1: फिर ससुराल में खाना नहीं खाते थे?
2: नहीं, सब्जी में बहुत तेल होता है, कोई स्वाद नहीं, तो क्या।
1: तो आप नहीं बोलते कि सब्जी में थोड़ा तेल कम डालो, या आप खुद नहीं बनाते?
2: नहीं, सबको यही पसंद है, मेरी पसंद नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम मैं खा लेते हैं।
1: नहीं तो जैसे नहीं कहते कि आपके चाहिए उत्ती अलग से बना दो?
2: अलग कोई नहीं बनता किसी का।
1: अच्छा, तो इस तरह आपके जीवन यात्रा रही। तो वो कहते हैं ना, गांव में पियर और गांव में ससुराल है, तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है बैलेंस बनाने में, तो मुश्किल रहती थी आपके जीवन में भी?
2: हाँ, पर अध्यात्म में बहुत रुचि थी ना, तो मुश्किल नहीं लगा
1: जी। अच्छा, और आप बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलता था?
2: तभी मिलता था, फिर वो आध्यात्मिक में जुड़े तो थोड़ा कम हुआ, फिर ससुराल में सास ने और बोला कि अब तो 3 साल हो गए, तो 3 साल में तो बच्चा होना चाहिए। मैके में भी यही कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर तो बेटी हुई, बेटी हुई तो जेठानी थी वो खेत में चली जाती थी, पूरा काम मेरे पर आ जाता था, जैसे गायों को दोना, भैंस रखते थे इसको दोना, सब काम करना और बच्चे को रखना
1: जी।
2: थोड़ा थोड़ा ज्यादा सासू का साथ था, सासू थोड़ी बेटी को रखती थी, साथ में थे ना जॉइंट फैमिली में
1: जी,
2: तो रखती थी।
1: दूसरे और कोई सदस्य नहीं थे परिवार में?
2: हाँ थे ना, वो है, एक चूल्हे पर ही रसोई बनती थी, पर यहाँ से कटोरी में लेकर वो अपने घर में खाती थी, वो मेरी सास की सास थी ना वो।
1: अच्छा, तो मधु जी जैसे आप कह रहे थे कि आपको सत्संग का शौक था, इस वजह से परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे और काम की जिम्मेवारी काफी रहती थी आपके ऊपर, और फिर आप कह रहे थे कि बच्चे होने के बाद आप अलग हो गए, तो सभी अलग हो गए, जेठानी आप या फिर सास ससुर के साथ रहते थे आप?
2: सभी अलग हो गए, देवरानी भी अलग हो गई, मैं भी, फिर तो देवर की शादी हुई उसके बाद 1 साल में सब अलग हो गए
1: जी। फिर तो आपको सत्संग में जाने से कोई नहीं रोकता था?
2: नहीं, कोई नहीं रोकता था, मैं चुपके से ही जाती थी सत्संग में, वो जो मेरे पति है ना उसको जाना अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं अपना ढूंढती थी अंदर से कि भाई क्या मेरी कमी है, मेरा कोई काम छूट ना जाए, उसको बराबर से टाइम देती हूँ, उसका खाना पीना सब काम करना।
1: अच्छा, आप सारा काम करते थे और भजन कीर्तन भी करते थे
2: साथ में? बहुत भजन कीर्तन साथ में ही रहता था।
1: अच्छा, और आप क्या करते थे? कभी
2: सिलाई करते थे? हाँ, बच्चों को पढ़ाई में।
1: आपको सिलाई का भी शौक रहा, तो सिलने में आप क्या क्या सिलते थे?
2: ब्लाउज सिलते थे, ड्रेस सिलते थे, सिलाई का काफी शौक था, मैं ब्लाउज भी बना लेती थी और अपना पूरा जो भी है वो सब मैं सिलाई कर लेती हूँ।
1: जी जी, तो आप जैसे सास जेठानी देरानी सबके साथ रहते थे, वहां पर भी सिलाई करते थे या अलग होने के बाद शुरू?
2: अलग होने के बाद, साथ में तो टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि 10 जने का काम था,
1: इसलिए आप अलग होने के बाद सिलाई का काम शुरू किया। तो आप अपना ही सिलते थे या मोल का भी सिलते थे?
2: मैं अपना ही सिलती थी, फिर दो थे भैंस थी और खेत थी, अलग होने के बाद तो खेत को संभालना होता है, सुबह 8 बजे बाता बना करके 8 बजे निकल जाना, 1 घंटे का चलने का खेत दूर थी।
1: अच्छा,
2: तो वहां पहुंच के आध्यात्मिक में रुचि थी ना, तो वहां भी मैं पढ़ लेती थी कुछ भजन, भजन कर लेती थी।
1: वहां भजन किसके साथ करते थे?
2: ऐसे अपने ऐसे मन से, तो जब मजदूर आते हैं ना उससे पहले मैं पहुंच जाती थी।
1: अच्छा,
2: हाँ।
1: तो आपके हस्बैंड भी जाते थे?
2: वो दोपहर को रोटी लेकर आते थे, उसको क्या भाता बोलते हैं। हाँ, तो वो भात लेकर के आते, मैं अपने भाता लेकर के जाती थी सुबह, और बच्चों को मेरी माँ

0: लगती थी।
1: अच्छा,
0: अलग होने के बाद।
1: जी जी
0: हाँ। और शाम को आती थी चल करके, साइकिल भी नहीं कुछ नहीं था, चल के आना चल के जाना, तो एक घंटा तो हो जाता है आने जाने में, 2 घंटा।
1: तो खेत में क्या करते थे आप, कुछ बोते थे?
0: बोते तो वो
1: बुआई आप ही करते हैं या मजदूर करते हैं, आप देख रेख करते हैं?
0: बुआई तो उसी से होती है, ट्रैक्टर से होती है।
1: जी
0: पहले तो बैल था ना, बैल से होती बुआई तो। फिर उसमें सफाई होती है ना, वो हम करते थे।
1: अच्छा,
0: उसके बाद बड़े होकर के कटाई होती है ना, जैसे मूंगफली को पाड़ते हैं, भेगी करते हैं जैसे।
1: जी, खट्टी करते हैं और
0: हाँ
1: फिर उसकी मिट्टी हटाते हैं।
0: हाँ
1: मतलब खेत के काम में आप व्यस्त
0: सारे काम,
1: रहते?
0: सारे काम करते थे
1: जी जी
0: जो मजदूर वाला होता है ना, वो सारा काम करते थे।
1: जी जी और पढ़ाई में आपको शौक था, और उसी गांव में आपकी शादी हुई, तो आपके टीचर लोग नहीं कहते कि क्या तू इन कामों में लग गई, पढ़ाई कर लेती तो अच्छा रहता?
0: टीचर बहुत अच्छी थी, पढ़ने जाते थे तो भी वो ऐसे वार्ता बोलते हैं, ऐसे ही पढ़ाई की भार नहीं दिया, पढ़तर में तो बहुत अच्छा।
1: जी जी आप इस तरह खेत में जाते हैं, खेत में आते हैं, आपका टाइम पूरा हो जाता है, फिर सिलाई कब करते हैं?
0: सिलाई तो मैं जिस दिन नहीं जाना होता है ना तब करती हूँ, और कभी कभी तो खाने पीने के बाद टाइम निकाल करके जो बनाना है ना वो मन से बना लेती हूँ, करना है कि यही करना है, यही चाहिए घर में और अपने पहनने में, तो रात को भी मैं सिल लेती थी।
1: अच्छा, जब जरूरत पड़ी कि हाँ मेरे को इस तरह के कपड़े चाहिए, तो आप खुद का सिल लेते थे?
0: खुद का सिल ले।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है मधु जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुणे लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव और भी बाकी है, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: की हंसी में ईश्वर बसता है, नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो नारी का मान रखे उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधु जी के काफी अनुभव सुने हैं, और भी हम कहना चाहेंगे, मधु जी आप पूरे जीवन, अभी तक 52 साल की उम्र है तब तक आप पाटवा गांव में ही रहे, उससे बाहर आपका जाना नहीं हुआ?
1: कभी नहीं।
0: तो जैसे आपकी दो बहनें बड़ी है, कभी उनके यहाँ जाना हुआ होगा?
1: एक तो गांव में ही है, एक बाजू में मजेठी है, वहाँ है।
0: अच्छा, पास पास में ही है।
1: हाँ, कभी कभी जैसे कि प्रसंग होते हैं, उसकी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तभी जाना हुआ
0: जी। और आप कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं?
1: नहीं, पहली बार ये एक आध्यात्मिक ही बैठे।
0: हाँ, पहले जब आप रहे अपने ससुराल में तब तक ट्रेन में नहीं बैठे?
1: ट्रेन देखा ही नहीं था, दूर बाटवे में तो ट्रेन नहीं है, जूनागढ़ से।
0: जूनागढ़ से मिलते हैं। अच्छा, और जैसे अब आपकी उम्र 52 साल की है, आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू भी आ गई है, बेटी की भी शादी हो गई होगी?
1: हाँ, बेटी की भी शादी हो गई है, वो उसका भी दो बेटी है, बेटा है छोटा।
0: अच्छा, तो आप नहीं पढ़ पाए तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया?
1: बहुत खूब पढ़ाया, यहाँ तक कि उसको तो नौकरी भी दिलाई, यहाँ तक
0: बेटी को,
1: बेटे को भी। अभी बेटा भी है, वो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर वहाँ पाजोद में है।
0: अच्छा, दोनों बच्चे जॉब करते हैं आपके?
1: हाँ, बेटी नहीं करती, बेटी को तो अच्छा ससुराल मिला है तो उसको नहीं करने देते, पर अब वो विदेश जाने वाली है।
0: जी जी शादी हो गई और बेटा जॉब करता है?
1: हाँ।
0: अभी आपको कोई दिक्कत नहीं?
1: जी नहीं।
0: अभी कोई सत्संग से रोकता नहीं?
1: जी नहीं।
0: आपके हस्बैंड सहयोग करते हैं अब?
1: हाँ, वो सहयोग करते हैं, थोड़ा मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ तो सत्संग में, तो मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है
0: जी।
1: मैं उसको भी बोलती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
0: अभी भी आपके सास ससुर सभी है?
1: सास है अभी।
0: जी जी जी। अब अच्छे रहते हैं आपके साथ?
1: हाँ, बढ़िया रहते हैं, सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।
0: जी जी।
1: हाँ,
0: एक समय था जब कोई आपके साथ अच्छे नहीं रहते थे तो आपका दिल दुखता था?
1: एक समय तो यही था कि जब मैं अलग हुई ना, तब तो मेरे से सब विरोधी थे, फिर मेरी ये सत्संग की वजह से मैं सबसे साथ मिलजुल रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसको स्वीकार लेती हूँ, जैसे भी है मैं मिल जाती हूँ उसके, हर प्रसंग में उसके आगे होती हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल। तो आपने सबके साथ तालमेल बनाए रखा?
1: अभी भी बना ही रखा है।
0: जी जी। और बहू के साथ आपका कैसा व्यवहार है?
1: बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसका नाम भी ऐसा है जैसा उसका काम है, उसका नाम है शीतल। तो बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है।
0: जी जी जी। तो आपने बहू और बेटी को समान समझा?
1: हाँ, बेटी से बढ़कर भी बहू को मैंने अपने दिल में रखा है।
0: जी जी।
1: कहते हैं ना, बेटी तो आती है तो जाती है।
0: जी।
1: बेटी से हमारा क्या? हाँ, आती है, वो फोन भी करती है, सब हालचाल पूछती है, पर बेटी से बढ़कर है बहू।
0: जी जी। बहुत
1: और बहुत बहुत अच्छी है।
0: जी,
1: बहुत प्यारी है, और जैसा इसका नाम है ना वैसा उसका गुण है।
0: जी। और सिलाई काम आज भी आप करते हैं? हाँ, या छोड़ दिया?
1: नहीं नहीं करती हूँ अभी भी। अभी तो बहुत अच्छा सिलाई काम हाथ में बैठ गया है।
0: तो आप अपना ही करते हैं या अभी भी मुल्का करते हैं?
1: मुल्का बेटे ना बोलते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं मम्मी, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, खेती जी। है, अभी बहुत अच्छा है।
0: तो पहले आप मोल का भी करते थे?
1: पहले मोल का नहीं, घर का पूरा करती थी, खेत करती थी और पशुपालन।
0: अच्छा,
1: पशुपालन मेरे ऊपर था।
0: अच्छा, कितनी गाय भेजते?
1: 3 गाय भैंसे थी और उसके बछड़े बच्चे होते हैं वो थे।
0: तो आप अकेले संभालते थे?
1: हाँ, हस्बैंड का तभी थोड़ा कम था साथ सहयोग।
0: जी, तो वो क्यों सहयोग नहीं करते थे फिर? आपने इतना क्यों पाला, खेती को संभाला?
1: पैसे के लिए, पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो खेत में से जो उत्पादन होता है वो तो इतना नहीं होता था तब।
0: लेकिन आपके हस्बैंड तो होमगार्ड थे ना, तो सैलरी तो आती होगी ना?
1: हाँ, वो उसके खाते में जमा होती है, वो घर पर नहीं देते थे ना।
0: अच्छा, घर में पैसे नहीं देते?
1: नहीं देते थे,
0: तो घर कैसे चलेगा?
1: हाँ बस दूध घर का है, सब्जी खेत की आती है, गेहूं भी खेत के आते हैं, तो और क्या चाहिए? जैसे कि बाहर से कुछ लेना है ना, तो वो गाय भैंस का जो दूध बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, उसमें से मेरा घर चल जाता है।
0: इसलिए आपने गाय भैंस रखी कि
1: हाँ,
0: आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते थे?
1: हाँ तभी भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते,
0: अभी भी नहीं देते?
1: नहीं देते।
0: तो फिर पैसों का क्या करेंगे वो?
1: वो तो क्या करेंगे, ले जाएंगे साथ में, कोई नहीं ले जाता है ना, यहाँ ही पड़ा रहेगा।
0: अच्छा तो आप जैसे आबू आए अभी, आप रेडियो मधुबन में हमारे साथ है, तो किराया भी लगता है, पैसा भी चाहिए बाहर जाने पर, तो कौन देता है फिर आपको?
1: बेटा देता है ना।
0: अच्छा बेटा देता है।
1: बेटे से मांगती हूँ, मेरा स्वभाव यही है कि मैं मांगती नहीं, वो सामने से बोलता है कि अभी तो आपका खलास हो गया होगा, इतना दिया था अब खलास हो गया होगा तो लो मम्मी। मैं तो पहले तो ना ही बोलती थी, मुझे नहीं चाहिए, फिर यहाँ ये तो
0: बाहर जाते हैं तो फिर पैसे दे देता है बेटा, लेकिन हस्बैंड आज भी नहीं देते हैं।
1: नहीं
0: और आज भी जॉब उनकी जारी है?
1: नहीं वो रिटायर्ड हो गए।
0: रिटायर्ड हो गए, पेंशन आती होगी?
1: नहीं पेंशन नहीं आती उसमें, नहीं आती है,
0: अच्छा
1: होमगार्ड में नहीं आती है।
0: अच्छा फिर भी थोड़ा बहुत पैसा उनके हाथ में होगा, लेकिन देते नहीं है।
1: हाँ वो सारा जमीन का पैसा तो आता ही है ना,
0: जी खेती बाड़ी का,
1: खेती बाड़ी का।
0: तो फिर खेती बाड़ी में से भी आपको नहीं मिलता, जबकि आप तो काम करते हैं?
1: जो नहीं मिलता।
0: अच्छा
1: ये महिलाओं की जिंदगी इसी टगल वाली है।
0: फिर भी आप खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करके चल रहे?
1: स्वीकार लिया ना जैसे भी है।
0: जी जी जी तो चलिए कार्यक्रम के अंत में आप हमारी बहनें सुन रही, उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है, और हर परिस्थिति का डट के सामना करना है। जब सामना करेंगे आगे बढ़ेंगे तभी हमें अंदर से खुशी भी आएगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
0: जी चलिए बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है मधु जी, सभी नारी शक्ति को कि मेहनत करना है और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। जैसे आप पशुपालन करके थोड़ा बहुत पैसे बचा करके कहीं जाते हो तो लेके जाते हो, बाकी घर से नहीं मिलता है।
1: और सहन शक्ति एक बड़ी शक्ति है, वो सहन शक्ति से हमारा सबके साथ संबंध अच्छा रहता है।
0: जी जी जी
1: सहन करेंगे ना तो सबके प्यारे रहेंगे।
0: बिल्कुल बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है मधु जी ने, बहुत बहुत आभार। आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सभी के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू जी, थैंक यू उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया और बहुत बहुत दुआएं देती हूँ आपको।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मधु जी राठौड़ हमारे साथ बने हुए थे। आप जूनागढ़ बाटवा से पधारे हैं और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए हैं। देखिए आपने जाना है कि नारी शक्ति कितनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका एक रुपये पर भी अधिकार नहीं होता है, फिर भी आप खुश है, परिवार को साथ में लेके चलते, और सत्संग में जाना कोई गलत बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप ईश्वर भजन करते हैं, तो परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और आपके साथ अव्यवहार किया, फिर भी आप सहनशीलता के दम पर और मिलनसार संस्कार होने के दम पर सभी को साथ में लेके चले और हमेशा खुश रहे और आज भी खुश है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, रविवार की सुप्रभातम और सभी श्रोताओं को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके स्वर्णे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। जगत पालन हार है माँ, जगत पालन हार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ, भक्तों की भक्ति का आधार है माँ, सारे विश्व की रक्षा का आधार है माँ। इन्हीं सुंदर आशा भरे शब्दों के साथ सारा विश्व हम चैतन्य शिव शक्तियों की पूजा आराधना और भक्ति कर रहा है, आवाहन कर रहा है। हम ही वो अष्टभुजाधारी शक्ति स्वरूपा हैं जो सारे विश्व को प्यारे शिव परमात्मा से शांति और शक्ति का वरदान लेकर देते हैं। हम विश्व की हर आत्माओं की आशाओं को पूरा कर सके, इसके लिए नवरात्रि के इन पावन दिनों में हम सभी योग तपस्या में डूब जाएं, स्वयं को सर्व शक्तियों से सुसज्जित करें, हर गुणों से अपना श्रृंगार करें, मधुरता, सहनशीलता, पवित्रता, संतुष्टता, सत्यता, निर्मानता आदि आदि गुणों को अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बना लें। यही पुरुषार्थ हमें नवरात्रि के दिनों में करना है, परमात्मा के समान बनना है, परमात्मा की हर आशाओं को पूरा करना है, विश्व की हर आत्माओं के लिए दानी महादानी वरदानी बनना है। तो आइए इस नवरात्रि पर हम सभी कुलभूषण मिलकर अपने पुरुषार्थ को तीव्रता प्रदान करें और साथ साथ हर एक भक्त आत्मा की शुद्ध आशाओं को पूर्ण करें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक दुआएं और शुभकामनाएं। चंदन का पेड़ जब तक जिंदा रहता तब तक छांव देता है और जब कट जाता है तो खुशबू देता है। ऐसे

0: ही हमारे माँ बाप जब तक जिंदा हैं, आपके लिए सहारा है और उनके जाने के बाद उनकी दुआओं से आपका जीवन भी महक सकता है चंदन की खुशबू की तरह। यही जीवन का सार है, माँ बाप है तो संसार है। मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर इस चीज में इसमें मिठास है वो शक्कर नज़र नहीं आती। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोजाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास हम मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। हम कहाँ देख पाते एक दूसरे को, साल दो साल में एक बार मिल पाते हैं जब रेडियो मधुबन का जन्मदिन होता है, नहीं तो फोन वार पर तो बतिया ही लेते हैं। इसलिए किसी एक परेशानी को इतनी अहमियत मत दो कि आप अपने पास मौजूद हजार खुशियों को भूल जाएं। यानी खुशी है तो जीवन है। शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा महोत्सव की बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं। आइए इस नवरात्रि पर्व पर हम नौ बुराइयों से मुक्त हो सच्चा दशहरा मनाएं। हेलो
1: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो गए?
0: एकदम ठीक है, आप कैसे हैं?
1: बस बहुत अच्छे है, बातें हो रही है और बहुत अच्छा दिन शुरू हुआ है आज से
0: जी।
1: आज से हमारे भक्तजनों की एक नया दिन की शुरुआत हुई, आज के लिए नवरात्रि का प्रारंभ शुरू हो गया है दीदी
0: जी।
1: माता जी का जो दिखते है ना, आज माता जी से सब पूजा पाठ करके, मैं बताऊं दीदी कि नौ दिन नहीं है हमारे लिए, पूरे दिन है जब तक
0: जी जी
1: हमको आराधना करना है। क्या होता है बस नौ दिन की नवरात्रि है, बाद में सकते भगवान को माता जी को याद कभी नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। रोज परमात्मा को याद करना है, माता हमारे जिसमें देवी को याद करना है, माता रानी को याद करना है और पूजा पाठ करनी है। कभी कभी लोग क्या करते थे, नौ दिन के लिए कोई नशा होता है वो नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, शराब नहीं पीते, लेकिन ऐसा नहीं है, नौ दिन के नहीं करना है हमको, बस
0: पूरा जीवन
1: नवरात्रि शुरू होगी
0: हर दिन
1: कोई चीज नहीं अपनाएंगे
0: जी जी,
1: तो ऐसा करना है, नौ दिन के लिए नहीं है,
0: हर दिन हमारे लिए नवरात्रि हो 365 दिन, और अपने बड़ों के प्रति उतना ही सम्मान।
1: बस आज के दिन से संकल्प कर देंगे, आज के हम नियम लेंगे कि आज हमारे कोई हमारे जो शरीर में कोई कमी है, कोई दोना है, कोई ईर्ष्या है, गुस्सा है, अच्छे
0: कोई, मैंने कल कहा था ना कि जी
1: जी माता रानी के चरणों में अर्पण कर देना है, बस आज
0: जी
1: अच्छी तरह से रहेंगे।
0: हाँ, कल मैंने कहा था कि हमें श्राद्ध वैसी तो करे ना करे, लेकिन बुरे विचारों का श्राद्ध जरूर कर लें जी।
1: जी दीदी, कल हम ऐसे कहा, ऐसे ही गए थे हमारे रिश्तेदार के सर, जो हमारे बड़े भाई और
0: अच्छा
1: चले भाई के हमारे बड़े बापा के भाई थे, उसको चले गए थे, दो तीन साल हो गया हमारे भाभी और दोनों।
0: अच्छा,
1: कल इसकी पूजा थी वहाँ करते और श्राद्ध का जो करता है उसका घर पे थे, तो हम कल वहाँ थे, तो कल हम कार्यक्रम नहीं कर पाए क्योंकि हम कल पूजा में बैठे थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: कार्यक्रम सुन पाए थे, लेकिन रात की बात की थी तो हमने भी, हमारे माता जी का भी श्राद्ध था 15 दिन पहले,
0: 15 दिन
1: हो गए, तो हमने भी माता जी का श्राद्ध करवा दिया, सभी हमारी बहनों को बेटियों को सभी परिवार को बुलाया और सबको जो मिला वो दिया, और
0: क्या है ये श्रद्धा भाव है उनके प्रति, सम्मान है ना
1: जी दीदी। और कहते हैं कि जो बेटियां होती हैं, बेटियां होती, बेटी की बेटियां होती हैं, जो हमारे सांझे होते हैं, वो जो हमारे घर पे आके भोजन करते दीदी, तो
0: जी
1: पूरा समझ लो पूरा आपका जन्म सुधर गया, क्योंकि
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: साल एक दिन तो बाहर तो हमारे घर पे आके उसको खाना खिलाना है, बेटियों को खिलाना चाहिए
0: जी,
1: तो हम छुट्टी कर सकते
0: हैं। और इस बहाने शरीर पूरे परिवार से मिलना भी होता है, सब आ भी जाते हैं ना
1: हमारे, ऐसे तो हम देखिए सबके मिल नहीं पाते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो दिन मैंने ऐसा रखा, सभी को हमने बुलाया, हमारे घर कम से कम 70-80 लोग थे
0: जी, जी.
1: तो सबको एक दूसरे के इतना मिला कि सब खुश हो गए, कहने लगे हमें चलो इस बार सबको मिलने का मौका भी मिल गया
0: जी जी.
1: और दूसरी बात माँ बाप की आपने बताया, तो माँ बाप से तो क्या कहना है, क्योंकि भगवान है हमारे,
0: बिल्कुल
1: जो माने तो भगवान है, वरना तो माँ बाप को भी बेटे स्वीकार देते हैं, छोड़ देते हैं, अच्छी तरह से नहीं रखते हैं, लेकिन माँ बाप तो भगवान ही, पहला भगवान हमारा माँ बाप ही, बड़ा क्या
0: हाँ, जिन्होंने इस दुनिया में हमें लाया, बिल्कुल
1: लाए हैं, हमको सब कुछ दिखाया, बड़ा किया, सबको हमको एक अच्छा नेक इंसान बनाया, तो माँ बाप का तो गुण नहीं भूलना है दीदी, इतना तो जितना हम सकते इतना ही कम है दीदी
0: जी,
1: बस हमारी तरफ से नवरात्रि की और बहुत सभी हमारे सभी साथी मित्रों को आपको हमारे सभी परिवार को भी हमारी तरफ से
0: बहुत बहुत
1: शुभकामनाएं, और आप भी हमारे सभी बहनों में एक है, हमारे इस तरफ से आपको भी दीदी माता रानी कृपा बने रहे, आप बहुत अच्छे रहे, निरोगी रहे, सभी हम शुभकामनाएं देते हैं, नमस्ते दीदी.
0: नमस्ते, थैंक यू भैया. तो देखिए भाई, सूरज भाई चिताना से थे, और उन्होंने सबसे पहले नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दी और बताया कि कल वो पूजा में बैठे थे इसलिए फ़ोन नहीं कर पाए. ऐसे आप लोगों का फ़ोन आते रहता है, सुन रहे हैं, ये पता चलता है तो बहुत खुशी होती है. तो हम कह रहे थे आइए इस नवरात्रि पर्व पर इन 9 बुराइयों से मुक्त हो सच्चा दशहरा मनाएं. सबसे पहली बुराई है क्रोध, क्रोध मुक्त. दूसरा व्यर्थ संकल्प मुक्त. आज हमारे और कोई बोझा नहीं है, व्यर्थ का चिंतन जिसका कोनो सिर पैर नहीं है, बिना बैठे बैठे बैठे बैठे ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, अरे कुछ नहीं हो जाएगा है, लेकिन सोच सोच के व्यर्थ संकल्प अपने को बीमार कर लेते हैं. तीसरा लगाव मुक्त. बहुत लगाव दुनिया में बढ़ रहा है, इतना पानी का जो तूफान आ रहा है, ये सब हो रहा है, ये काहे हो रहा है जानते हैं, हमारे शरीर में भी 70% पानी है, दुनिया में भी 70% पानी है, और पानी प्रतीक है लगाव का, जितना लगाव होगा उतना आपको परेशानी होगी, तो लगाव मुक्त होने का एक संकल्प करिए. चौथा परमत, परचिंतन और परदर्शन मुक्त हो जाइए. पांचवा अभिमान व अपमान मुक्त हो जाइए. छठवा झमेला मुक्त, इसका उसका ये सब नहीं करिएगा. व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त हो जाइएगा. अप्रसन्नता मुक्त, हमेशा चेहरा लटका हुआ, काहे भाई, भगवान इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है तो खुश रहिए ना. और दिल से कष्ट मुक्त हो जाइए. छोटी छोटी बात पे दिल ऐसा होता जैसे पता नहीं कितना बड़ी बात हो गई है. तो इन 9 बुराइयों को आज से छोड़ दें, फिर देखिए आपका जीवन कितना सुंदर होता है. और एक बात कर रहे हैं, अब नवरात्रि की तो बात कर ली, कुछ काम की बात करें, ये मजाक नहीं है, अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताएं. अति आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, आपको 2-3 दिन बुखार आया था, अगर आपने दवा नहीं भी ली होती तो भी शरीर शायद अपने आप ठीक हो जाता, लेकिन आप डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर ने शुरुआत में ही कई जांचें लिख दी, जांचों में बुखार का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला, लेकिन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दिया, जो सामान्य व्यक्ति में भी कभी कभी हो सकता है. बुखार तो ठीक हुई गया, लेकिन अब आप केवल बुखार के मरीज नहीं रहे, डॉक्टर ने कहा आपको कोलेस्ट्रॉल अधिक है, शुगर थोड़ी ज़्यादा है, यानी आप प्री डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लिए दवाएं लेनी पड़ेगी. इसके साथ ही खान पान पर भी कई प्रतिबंध लगा दिए गए, शायद आपने उन प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन नहीं किया, लेकिन दवाएं लेना नहीं भूले. 3 महीने बीत गए, फिर से जांच हुई, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाया, एक और गोली लिख दी गई, अब आप 3 गोलियां लेने लगे. इस सुनकर आपकी चिंता बढ़ गई, आगे क्या होगा, इस विचार के कारण आपकी नींद खराब होने लगी। डॉक्टर ने नींद की गोली लिख दी। अब गोलियों की संख्या 4 हुई गई। सभी दवाई लेने के कारण

अब गोलियों की संख्या 7 हुई गई। हृदय विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने डायबिटीज के लिए एक और गोली और थायराइड के लिए एक और गोली लिख दी। अब आपकी कुल दवाओं की संख्या 9 गोलियां हो गई। धीरे धीरे आपको लगने लगा कि आप एक गंभीर मरीज है। हृदय रोगी, डायबिटीज, नींद की समस्या, अपच, थायराइड, किडनी, और ये सूची बढ़ती गई। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि मनोबल, आत्मविश्वास और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन आपको लगातार ये बताया जाता रहा कि आप कमजोर, असफल और रोगग्रस्त हैं। 6 महीने बाद सभी दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण आपको पेशाब से संबंधित परेशानी शुरू हो गई। जांच हुई और किडनी से संबंधित समस्या की संभावना दिखाई दी। डॉक्टर ने और जांचें कराई। रिपोर्ट देखकर कहा क्रिएटिनिन थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन चिंता मत कीजिए, दवाएं नियमित रूप से लेते रहें। उन्होंने 2 और गोलियां लिख दी। अब गोलियों की संख्या 11 हुई गई। अब आप भोजन से ज्यादा गोलियां लेने लगे हैं और इन सभी गोलियों के दुष्प्रभाव के कारण धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। अगर शुरुआत में बुखार के समय डॉक्टर ने केवल इतना कहा होता, चिंता मत कीजिए, यह हल्का बुखार है, दवा की जरूरत नहीं है, केवल आराम करें, पर्याप्त पानी पिए, ताजे फल सब्जियां खाएं और सुबह टहलने जाएं, इतना ही पर्याप्त है, कोनो दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर डॉक्टरों और दवा कंपनियों का व्यवसाय कैसे चलता? सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर किस आधार पर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, हृदय या किडनी का मरीज घोषित करते हैं? इन सीमाओं को किसने निर्धारित किया है? थोड़ा गहराई से समझते हैं, लेकिन ये हम थोड़ी देर बाद सुनते हैं। कहे कि बहुत लंबी चौड़ी बात और बहुत काम की है हमारे जीवन की, तो पहले एक गीतवा सुन लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। सुनिएगा गीत, उसके बाद आपके जीवन की जरूरी बातें भी सुनाते, सुनिएगा।

0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी श्रोताओं को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: तो सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर कौन आधार पर कोनो व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, हृदय या किडनी का मरीज घोषित करते हैं? इन सीमाओं को किसने निर्धारित किया है? आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं। 1979 में डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर का स्तर 200 मिलीग्राम माना जाता था। उस समय केवल 3.5% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज माना जाता रहा। 1997 में इंसुलिन कंपनियों के दबाव के कारण सीमा 126 मिलीग्राम कर दी गई 200 से, और अचानक डायबिटिक लोगों का प्रतिशत 3.5% से बढ़कर 8% हो गया, यानी 4.5% अधिक लोगों को डायबिटिक घोषित कर दिया गवा, जिनमें वास्तव में कोई लक्षण नहीं रहे। 1999 में WHO विश्व का जो हेल्थ ऑर्गेनाइजर है, इन दिशा निर्देशों को स्वीकार कर लिया। इंसुलिन कंपनियों ने बहुत अधिक मुनाफा कमाया और नई फैक्ट्रियां स्थापित की। 2003 में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने फास्टिंग ब्लड शुगर की प्री डायबिटिक सीमा 100 मिलीग्राम कर दी। एक एक कारण 27% लोगों को डायबिटिक घोषित कर दिया गया बिना कोने कारण के। वर्तमान में ADA के अनुसार भोजन के बाद 140 मिलीग्राम शुगर वाले लोगों को डायबिटिक माना जाता है। इसके कारण अब दुनिया के लगभग 50% आबादी को डायबिटिक घोषित कर दिया गया है, जिनमें से बहुत से लोग वास्तव में मरीज नहीं हैं। भारतीय दवा कंपनियां इस सीमा को और कम करके HbA1c 5.5% करने का प्रयास कर रही है, जिससे और अधिक लोग मरीज बनेंगे और दवाओं की बिक्री बढ़ेगी। वास्तव में कई विशेषज्ञ का मत है कि HbA1c 11% तक भी डायबिटिक नहीं माना जाना चाहिए। एक और उदाहरण, 2012 में एक बड़ी दवा कंपनी पर US सुप्रीम कोर्ट ने $3 अरब का जुर्माना लगाया। वो कंपनी पर आरोप रहा कि 2007 से 2012 के दौरान उसकी डायबिटीज की दवा से हार्ट अटैक का खतरा 43% बढ़ता था। ये जानकारी पता होने के बावजूद कंपनी ने इसे छिपाया। इस दौरान उन्होंने $300 अरब का मुनाफा कमाया। यही है आज का अत्याधुनिक चिकित्सा विज्ञान। सोचिए, विचार कीजिए, इसे जरूर सुरक्षित करके अपनी खुपरिया में रखें। हर व्यक्ति स्वस्थ और खुश रहे, यही आज की हमारी शुभकामना है। एक बुखार था, वो बुखार ने आपको कहाँ से कहाँ ले आया। कभी कभी थोड़ा प्रकृति पर भी छोड़ दिया करिए, उनको भी टाइम दीजिए। अपने आप कहते हैं सर्दी जुकाम हो तो एक हफ्ते में डॉक्टर कहता है दवाई लोगे तो ठीक होगे, और दवाई नहीं लोगे तो भी एक हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाओगे। शरीर में अपने आप को ठीक करने की बहुत सारी प्रक्रिया भगवान ने दे रखी है, लेकिन हम तो ठीक आए पर भी डॉक्टर के पास चले जाते और फिर इसी गुंथम में पूरी जिंदगी चली जाती है। चलिए भाई, ये हो गई बात। अब फिर हम अपनी बात पर जाते हैं। जौन आज शुभ दिन है। कौन सा शुभ दिन? नवरात्रि शुरू हुई। हम दुखियों का कष्ट मिटाओ, भाव सागर से पार लगाओ, दर्शन दो माँ दरस दिखाओ, दर्शन दो मुझे दरस दिखाओ। हे माँ दुर्गा मेरे घर आओ, हे माँ अम्बे मेरे घर आओ, हे माँ जगदम्बा मेरे घर आओ। इष्ट हमारी आराध्य तुम्ही हो, करुणा निधि दीन दयाल तुम्ही हो, भक्तों की इस आस तुम्ही हो, जग की एक विश्वास तुम्ही हो। हे माँ दुर्गा मेरे घर आओ, हे कृपा सिंधु हर प्राण प्रिय, हम सेवक हैं दास तुम्हारे, तुम जननी हो मात हमारे, दया दृष्टि जरा हम पर डालो। हे माँ दुर्गा मेरे घर आओ। हे मन को मोहित करने वाली, मोहिनी रूप ले छलने वाली, ब्रह्म ये माया मोह मिटाओ, अपना अष्टभुजा रूप दिखाओ, अपना दिव्य स्वरूप दिखाओ, हे माँ दुर्गा मेरे घर आओ, हम दुखियों का कष्ट मिटाओ, भव सागर से पार लगाओ, दर्शन दो माँ दरस दिखाओ, दर्शन दो माँ मुझे दरस दिखाओ, हे माँ दुर्गा मेरे घर आओ, हे माँ अम्बा मेरे घर आओ, हे माँ जगदम्बा मेरे घर आओ। अजब इतना प्रेम से आप वो माता जी का आवाहन करेंगे, शिव शक्ति काहे नहीं आएगी, वो आएगी, लेकिन सही दिल से उनको पुकारे की आवश्यकता है। अगर सही दिल से उनको ऐसे पुकारिएगा तो देखिएगा कि आपके ऊपर उनकी कितनी कृपा बरसती है। सिर्फ नाचे गाने से सब कुछ नहीं हो जाता, कई लोग तो नव दुर्गा का इंतजार ही करते हैं कि 9 दिन बहुत अच्छा गरबा करें। करिए, खुशी की बात है, बहुत अच्छा, अच्छी हेल्थ है आपकी, आप डांस कर सकते हैं, पूरी शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, उसमें दोनों है, मन भी खुश तन भी खुश हो जाता है। लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, भक्ति का भाव भी रखिए, अपना माँ के प्रति वो सम्मान भी रखिएगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में साक्षी होकर केवल अपना श्रेष्ठ पाठ बजाता है, वो कभी भी किसी बात से विचलित नहीं होता। दुनिया की मंजूरी जितनी जरूरी लगने लगती है, दुनिया की मंजूरी जितनी जरूरी लगने लगती है, अपनी सच्चाई उतनी दूर होती जाती है। अब दुनिया की बातों में अटक जाते, किसी ने टोक दिया बस खुपरिया में बात बैठ जाती है और वही उधेड़ बुन चलते रहती है। तो जितना दुनिया से चाहेंगे कि बोले सब, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कर रहे हैं, अरे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अरे बहुत अच्छा, नहीं, आप दूसरे पर डिपेंड रखिए, अपनी सच्चाई से आप उतनी दूर होते जाएंगे। लोगों का कहा है भाई, कब का बोल दे, कब का ना बोल दे। दिखावा एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपनी असली पहचान और सुकून दोनों ही खो देता है। दिखावा मत करिए, जो है जैसे है वैसे दिखाइए। रिश्ते जीतकर नहीं निभाए जाते, बल्कि निभाकर जीते जा सकते हैं। फिर कहेंगे शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की आराधना का दिन। माँ शैलपुत्री की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। सुख शांति समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, यही प्रभा पंडिताइन आप सब के लिए माता दुर्गा से, माता शैलपुत्री से शुभकामना करती है। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, बहुत पते की बात बता रहे। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा ही लौट कर आएगा। हम सब जानते हैं, जौन बोए हैं वही तो आएगा। खुद पर विश्वास रखो, हर मुश्किल के आगे एक रास्ता जरूर होता है। जितना मन को सकारात्मक रखेंगे उतना ही जीवन में प्रकाश बढ़ता जाएगा। संसार में जन्म लेना सहज है, स्वयं में जन्म लेना दुर्लभ। संसार में जन्म लेना सहज है, स्वयं में जन्म लेना दुर्लभ। बहुत गहरी बात है। पहला जीवन का उपहार है, दूसरा आत्मा का जागरण। ये जिंदगी में आकर अगर आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा परमात्मा से मिलन मना के वो अतिंद्र सुख के झूले में नहीं झूली, तो मनुष्य जीवन का खाक लिया। संपूर्ण पाने की चाहत में मनुष्य बहुत कुछ खो देता है, परंतु वो भूल जाता है कि चंद्रमा आधा भी सुंदर होता है। सब विचार की तो बात है, सब आपकी खुपरिया में जौन उपजता है वही की तो बात है। आधा चंद्रमा सुंदर लगता है, आधा ग्लास भरा है, नहीं तो कहेंगे आधा ही ग्लास खाली। अगर हम सही दिशा में चले रहे हैं, अगर हम सही दिशा में चले हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को शुद्ध और कर्मों को महान रखते हैं। कोशिश होनी चाहिए कि हम सदा ही समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। आशा करते हैं इन विचारों को, इन बातों को अपने जीवन में आप धारण करिएगा और जीवन को जैसा सुखमय बनाना चाहते हैं वैसे बना पाएंगे। चलिए एक गीता और सुनते हैं, उसके बाद फिर बतियाते हैं। बहन जी कौन अनुकुआ सर गीता सुना दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: राजस्थान की पावन धरती ने ऐसे अनेक वीरों को जन्म दिया जिन्होंने अपने साहस, स्वाभिमान, धर्मनिष्ठा और भक्ति से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उन्हीं महान योद्धाओं में राव दूदा के पुत्र राव वीरमदेव और उनके पौत्र राव जयमल का नाम आदर के साथ लिया जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और धर्म का त्याग नहीं करता। राव दूदा के 5 पुत्र थे। उनमें राव वीरमदेव एक महान योद्धा और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अपने पिता के देहावसान के बाद उन्होंने मेड़ता का शासन संभाला। वो अत्यंत साहसी, स्वाभिमानी और स्वतंत्र विचारों वाले शासक थे। उस समय किसी योद्धा की पहचान उसके शौर्य, बुद्धि और युद्ध कौशल से होती थी। कहा जाता है कि राव वीरमदेव की तलवार का भार 1.25 मन था और वे उसे लेकर युद्ध भूमि में शत्रुओं का सामना करते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता उनका स्वाभिमान था। जब जोधपुर के राव मालदेव ने अपनी अधीनता स्वीकार करने का दबाव मनाया, तब राव वीरमदेव ने अपने स्वतंत्र स्वभाव के कारण उसे स्वीकार नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मेड़ता का अधिकार छोड़ना पड़ा, किंतु उन्होंने कठिनाइयों के सामने अपने सिद्धांतों को नहीं झुकाया। समय बदला और सुमेलगिरी के संग्राम में राव मालदेव की पराजय के पश्चात राव वीरमदेव को मेड़ता पर पुनः अधिकार प्राप्त हुआ। ये प्रसंग हमें बताता है कि जीवन में कभी कभी सत्य और स्वाभिमान के मार्ग पर चलने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, किंतु दृढ़ निश्चय रखने वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं खोता। राव वीरमदेव के पुत्र राव जयमल भी अपने पिता की भांति पराक्रमी और भगवान श्री राम के परम भक्त थे। उन्होंने अपने पिता के वचन की मर्यादा रखते हुए चित्तौड़ की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। जब मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब राव जयमल ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। युद्ध के दौरान गोली लगने से उनकी जांघ घायल हो गई। वो घोड़े पर बैठकर युद्ध करने में असमर्थ हो गए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। कल्ला राठौड़ ने उन्हें अपने कंधों पर सहारा दिया और दोनों वीरों ने मिलकर शत्रुओं का सामना किया। दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध करने वाले इन वीरों ने अंततः मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शरीर घायल हो सकता है, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं और मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि मन में कर्तव्य के प्रति निष्ठा हो तो मनुष्य का साहस कभी समाप्त नहीं होता। राव वीरमदेव हमें स्वाभिमान और दृढ़ संकल्प का संदेश देते हैं, जबकि राव जयमल त्याग, कर्तव्य निष्ठा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते हैं। सच्ची महानता केवल शक्ति या पद में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों पर अडिग रहने में है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों, कर्तव्य और धर्म के लिए कठिनाइयों का सामना करता है, उसका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है। आज के दिवस पर इन महान योद्धाओं को हम शत शत नमन करते हैं और माँ दुर्गा से माँ शैलपुत्री से यही दुआ करते हैं कि ऐसे वीरों को जन्म देते रहें और ऐसे वीरों के माता और पिताओं को भी हम शत शत नमन करते हैं। तुम खुद से बेहतर बनना, तुम खुद से बेहतर बनना, दूसरों से बेहतर तुम पहले ही हो। बहुत बड़ी बात है, हम दूसरों से बेहतर बनना चाहते हैं और हम दूसरों से बेहतर तो हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप खुद से बेहतर बनो। आज जो आप हो, कल आप इससे और अच्छे बनो, तभी जीवन का सही अर्थ समझेंगे कि हम अपने आप से प्रतिस्पर्धा करें। हम अपने आप से सोचें कि कल मेरे में क्या विशेषता थी, आज और कौन सी कमी है जिसे हम भर दें। और जैसे जैसे आप अपनी इन चीज़ों को चेक करते जाएंगे, अपने आप से बेहतर बनते जाएंगे, वैसे वैसे प्रभु की आपके पर कृपा बरसेगी और वो प्रभु की कृपा बरसे, माँ शक्तियों की कृपा हम पे बरसे, तो फिर क्या बात है। जैसे हम कहा, हम दुखियों का कष्ट मिटाओ, भव सागर से पार लगाओ, दर्शन दो माँ दरस दिखाओ, ये सब तो कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्मों को भी हम श्रेष्ठ बनाएंगे। आशा करते हैं आप इन बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे और कहीं ना कहीं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे, अपने आप से कंपटीशन करेंगे। कल जो थी उससे आज हमें बेहतर बनना है, और जिसने ये कला सीख ली उसका जीवन सही में बहुत श्रेष्ठ हो जाता है अपने आप। काहे कि हम दूसरों को नहीं देखते, फिर खुद को देखते हैं। व्यर्थ का खर्चा जीवन की व्यवस्था को और व्यर्थ की चर्चा मन की अवस्था को खराब कर देती है। पहले भी बोले रहे, बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं तीनों चीज़ों के कारण आई है लोगों में गिरावट। पैसा उधार लेकर अमीर बनने का दिखावा करने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि जमाने वाले उसकी असलियत पहले से ही जानते हैं। ये मत सोचो कि लोग जानते नहीं हैं, वो खाएंगे पिएंगे और फिर कहेंगे कि अरे हमने तो उसको बुद्धू बना दिया, उसके हम असलियत नहीं जानते हैं क्या, वो तो कर्जा लेकर ऐसा कर रहा, खाएंगे पिएंगे भी बुराई भी करेंगे। सोच लीजिएगा, कोई बिना किसी काम से याद करे तो ऐसा लगता है कि भावनाएं अभी जिंदा हैं। कितनी सुंदर बात है। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहें, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है अपने आप को सम्मानित करने से। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। मंदिर में जलाया गया दीपक कुछ देर उजाला करता है, लेकिन किसी की ज़िंदगी में किया गया एक छोटा सा उपकार बरसों तक रोशनी बनकर रहता है। आप क्या कर रहे हैं? दीपक बन रहे हैं कि किसी के जीवन में रोशन कर रहे हैं? समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, समय तो शाश्वत है, ना उसका आरंभ है ना अंत। समय बीत रहा है, समय तो शाश्वत है, ना उसका आरंभ है ना अंत। जो हर पल कम हो रहा है वो हमारा जीवन है, इसलिए समय की नहीं अपने जीवन की कीमत समझो, अपने जीवन की कीमत समझो। जिनके स्वभाव में प्रेम बसा हो उनके दरवाजे पर खुशियाँ खुद चल कर आती है। सर को झुकाकर चरणों में बस इतना ही कहना है, सर को झुकाकर चरणों में बस इतना ही कहना है, मुझे भवो भव प्रभु आपके ही चरणों में रहना है, मुझे भवो भव प्रभु आपके ही चरणों में रहना है। अच्छे लोग कभी दूर नहीं होते, अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, बातों में भी, दुआओं में भी। आप भी उन्हीं में से एक हैं। आप सब सुनने वाले को कह रहे हैं, जैसे रोटी का स्वाद दोनों तरफ सीखने पर ही आता है, वैसे जीवन में रिश्ते भी तभी खूबसूरत बनते हैं जब परवाह दोनों तरफ से की जाए। चलिए भाई, फिर एक गीत की बारी बनती है और एक गीत के बाद आपसे बच जाएंगे। बहन जी सुना दीजिएगा गीत।

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: राजस्थान के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसके जीवन में लगातार कठिनाइयां आ रही थी। व्यापार में घाटा, घर में कलह, बच्चों की पढ़ाई की चिंता और मन में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। पितृपक्ष आया तो गांव के लोग अपने अपने पितरों का श्राद्ध करने लगे। गोविंद की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो विधि विधान से बड़ा आयोजन कर सके। वो इसी चिंता में एक दिन गांव के वृद्ध संत के पास पहुंचा। गोविंद ने कहा, महाराज, मैं अपने माता पिता और पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, क्या मेरी श्रद्धा अधूरी रह जाएगी? संत मुस्कराए और बोले, बेटा, पितरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भावना है। यदि सामर्थ्य कम है तो चिंता मत करो, प्रातः स्नान करके तांबे के पात्र में जल भरो, भगवान का स्मरण करो और अपनी श्रद्धा से पितरों को नमन करो। अगले दिन गोविंद ने ऐसा ही किया। उसने सूर्य देव को जल अर्पित किया और हाथ जोड़ कर कहा, हे मेरे पितरों, मैं आपको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप जहाँ भी हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। मेरे मन में आपके प्रति जो श्रद्धा और प्रेम है, उसे स्वीकार करें। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी दिवंगत माता को याद किया। उसे वो दिन याद आया जब माँ स्वयं भूखी रहकर उसे भोजन खिलाती थी। पिता को याद किया जिन्होंने कठिन परिश्रम करके उसके भविष्य के लिए अपना जीवन लगा दिया था। गोविंद ने कहा, माँ, पिताजी, आपका शरीर भले ही इस संसार में नहीं है, लेकिन आपके संस्कार आज भी मेरे भीतर जीवित है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए मार्ग पर चलूं और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। उस दिन से गोविंद ने अपने जीवन में कई अच्छे परिवर्तन किए। उसने क्रोध कम किया, गलत आदतें छोड़ी, सात्विक भोजन अपनाया और जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। वो गाय को रोटी खिलाता, पक्षियों के लिए भी भोजन रखने लगा और कुछ समय बाद उसके घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार में प्रेम बढ़ा और उसके काम में धीरे धीरे सुधार आने लगा। एक दिन गोविंद फिर संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, लगता है मेरे पितरों का आशीर्वाद मुझे मिल गया। संत ने कहा, बेटा, पितरों का सम्मान केवल एक दिन का कर्म नहीं है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में उतारें। जब हम सत्य, सेवा, संयम और सदाचार का मार्ग अपनाते हैं, तभी वास्तव में अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। गोविंद समझ गया कि पितरों को याद करने का सबसे सुंदर तरीका केवल कर्मकांड नहीं बल्कि अपने जीवन को ऐसा बनाना जिस पर हमारे पूर्वज भी गर्व करें। पितृपक्ष हमें अपने पूर्वजों को याद करने के साथ साथ अपने जीवन और आचरण को शुद्ध करने की प्रेरणा देता है। सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा, सेवा, संयम और सद्भाव रखें। जरूरतमंदों, पशु पक्षियों और बुजुर्गों की सहायता करें तथा अपने माता पिता के प्रति सम्मान बनाए रखें, क्योंकि पूर्वजों की सबसे बड़ी विरासत धन नहीं बल्कि उनके दिव्य संस्कार होते हैं और उन संस्कारों को जीवित रखना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। और यही के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलते हैं 11 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, सुर लय ताल की आवाज रेडियो मधुबन संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। संगीत की शुरुआत के विषय में अनेक गुरुजन के अलग अलग मत मतांतर रहे हैं। कहावत है, देवादि देव महादेव से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। उसके पश्चात महामुनि भरत जी, जो महादेव जी के शिष्य थे, उन्होंने ही पृथ्वी पर संगीत का प्रचार प्रसार शुरू किया। मतांतर में आदि देव ब्रह्मा जी ही संगीत के आदि गुरु कहे जा सकते हैं। महादेव जी ने ब्रह्मा जी से शिक्षा लेकर फिर सरस्वती देवी को संगीत विद्या प्रदान की थी। उसके बाद नारद जी ने सरस्वती देवी से संगीत विद्या लेकर भरत जी को ये शिल्प कला प्रदान की थी। ऐसे भरत जी मानव समाज में पहले संगीत गुरु कहे जा सकते हैं। संगीत के इतिहास में और भी जानकारी हम जरूर लेंगे, लेकिन शास्त्रीय संगीत में आइए हम सभी शामिल हो जाए। हर बार की तरह श्यामली जी भी हमारे साथ है। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ जी, मैं भी सबको नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, रागों की श्रृंखला में आज आप कौन सा नया राग लेकर आए हैं?
1: आज हम जो राग लेकर आए हैं उसका नाम है हम्बीर।
0: हम्बीर?
1: हम्बीर
0: जी,
1: तो ये कलन ठाट की है जिसमें कड़ीमा है। बहुत सुंदर राग है। ये जो राग है, समय जो है पहला प्रहर होता है 6 से 9।
0: ओके।
1: हाँ, इस बीच में, हाँ, इस बीच में हम कर सकते हैं। बहुत सुंदर राग है जिसमें है जाति जो है संपूर्ण जाति का है। वादी स्वर धा है, समवादी गा है, कभी कभी पा भी कह सकता है वादी स्वर।
0: ओके।
1: और बहुत सुंदर है। इसमें कड़ी माँ जो लगते हैं आरोह में नहीं लगते हैं।
0: ओके।
1: इसको प्रयोग जो नहीं लगता है, अवरोह में प्रयोग होता है।
0: Okay.
1: कभी आरोह में नहीं, ध्यान देना चाहिए। और कभी कभी होता है ना टेढ़ा बकड़ सहित
0: जी,
1: उसको जो प्रयोग होता है नी और गा थोड़ा बकड़े सहित बकड़े भाव से उसको प्रयोग होता है।
0: अच्छा।
1: मैं करके सुनाऊंगी, बहुत सुंदर है। जैसे इसमें दो माँ होता है, एक शुद्ध माँ कड़ी माँ तो है ही, कभी कभी इसमें कोमल नी विवादी स्वर में प्रयोग होता है।
0: कोमल नी?
1: कोमल नी
0: जी,
1: जैसे केदार राग की तरह। केदार राग में भी ऐसे ही होता है। केदार राग में भी गा और नी जैसे वक्र भाव से प्रयोग होता है, इसमें भी होता है। और हमने पहले भी कहा था कभी कभी कि कल्याण राग में जो अंतरा जो होता है पा से डायरेक्ट सा, तार स्वर जो सा है उसमें जाता है, पा सा।
0: अच्छा, कल्याण ठाट में।
1: हाँ, कल्याण ठाट में जो राग होता है इसमें ये है कि अंतरा में पा से डायरेक्ट सा लगता है।
0: Okay.
1: तो अभी हम करके सुनाते हैं, आरोहण अवरोहण पकड़ के सुनाते हैं, उसके बाद हम स्वर लिपि दे देंगे। ठीक है।

0: इस राग में एक वैशिष्ट है, रूपरेखा है, बहुत सुंदर। अगर गामाधा जैसे ऐसे प्रयोग होता है तो ये हमें राग की है।
1: ओके
0: जैसे इमन राग की नीरे सा नीरे गारे नीरे सा, ऐसे ही हम भी राग की जो है, या केदार राग कहो सामारे सा, ये केदार राग की होता है। जब हम भी रहते हैं, हम भी की जब टाइम आते हैं गामाधा ऐसे ही होता है।
1: मतलब तो वो पहचान है,
0: पहचान है
1: जी।
0: तो फिर से करती हूँ।

0: ठीक है, हम क्या किया है, आरोह अवरोह पकड़ दिखाया है, गामा धा ऐसे जाते हैं, इसमें गुरुमुखी विधा है ना, तो इसलिए गुरु के पास जरूर शिक्षा लेना चाहिए।
1: जी, जी।
0: दिन पर दिन और भी कठिनाई में जा रहे हैं ना संगीत, तो गुरु के पास आकर शिक्षा लेते हैं तो बहुत अच्छा है,
1: आसानी से वो समझ पाएंगे।
0: हाँ, समझ पाएंगे
1: जी।
0: तो आप ही क्या करते हैं, हम तीन ताल में जो बंदिश देंगे, जो शास्त्रीय संगीत सिखाएंगे, मध्य लय की बंदिश सिखाएंगे, उसके स्वरलिपि पहले हम दे देते हैं।
1: ओके।
0: तीन ताल की है, 16 मात्रा की है, फाक से शुरू होता है
1: जी।
0: इसमें जाने के टाइम सुधमा, अवरोह में करिमा, सुधमा दोनों ही प्रयोग होता है। कैसे होता है हम बता देंगे, पा सा नी धा मा पा गा मा, ये जो पहला जो मा है वो जो है करिमा, दूसरा मा जो है सुधमा है
1: जी।
0: पा सा नी धा मा पा गा मा, धा धा धा सा ऊपर की सा है, धा धा पा पा या धा आ पा आ। नेक्स्ट लाइन है, गामा धा धा पा धा पा आ, गा गा मारी सा री सा आ। थर्ड लाइन है, सा सा मा मागा, ये मा जो है शुद्ध है और मा मागा एक साथ है, सा सा मा मागा पा पामा, ये जो माँ है करीमा, पा पामा धा पा। इसके बाद मापा धानी सारे सानी, ये जो माँ है करीमा है, मापा धानी सारे सानी सा, ये जो सारे सानी जो है तार स्वर की है, सा धा पा आ, ऊपर की सार तार स्वर है, सा धा पा आ। फिर से मैं बोलती हूँ, पा सा ऊपर की सा, पा सा नी धा करीमा पा गा सुधमा, धा धा धा सा ऊपर सा, धा आ पा आ, गा मा धा धा पा आ, गा आ मारे सारी सा आ, सा सा मा मा गा पा पा मा करिमा धा पा, मा पा धानी सारे सानी सा धा पा आ। ये सारे सानी जो सारे सा जो है ऊपर की सा है और माँ कड़ी है
1: जी।
0: मैं करके सुनाती हूँ ठीक है।

0: ये जो स्वलिपि है स्थाई का है।
1: स्थाई का,
0: हाँ जी,
1: हम्भीर राग की स्थाई का स्वरलिपि, हाँ, आपने अभी बताई। श्यामली जी, और भी हम्भीर राग के बारे में जानकारी लेंगे, मगर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
0: हाँ जी।
1: और ब्रेक में इसी राग से संबंधित एक प्यारा सा गीत हम आप सभी सुनेंगे। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जी जी
1: तो हम पहले स्वरलिपि दे देते हैं, फाक से शुरू होता है पा पा सा सा, जो सा है सब तार स्वर की है, पा पा सा सा सा सा रे सा, रे जो है तार स्वर की है, धा आ सा रे तार स्वर की है, सा नी धा पा। नेक्स्ट लाइन गा गा मा रे ऊपर की है, सब तार स्वर की है, सा रे सा सा धा धा सा रे सारी ऊपर की है, सा नी धा पा। थर्ड लाइन सा सा मा मा गा पा पा मा धा पा, मा पा धा नी सा रे सा नी सा धा कोमल नी पा। अभी आपको पहले बताया कि विवादी स्वर के रूप से कभी कभी कोमल नी भी यूज होता है
0: जी,
1: तो फिर से मैं बोलती हूँ पा पा सा सा सा सा रे सा धा आ सा रे सा नी धा पा, गा गा मा रे सा रे सा सा धा धा सा रे सा नी धा पा, सा सा मा मा गा एक साथ पा पा मा धा पा, मा पा धा नी सा रे सा नी सा धा नी पा।
0: जी
1: मैं करके सुनाती हूँ तब बैठ जाएंगे।

0: ये हमने जो स्थाई अंतरा की जो स्वरलिपि है हमीरा की हमने दे दिया है, जिसने बहुत अच्छा से इसको उठाएंगे, बहुत अच्छा से ये करेंगे और आकार सहित करेंगे तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट जब हम बंदिश दे देंगे तो बहुत आसानी से वो उठा सकते हैं।
1: जी
0: ठीक है
1: श्यामली जी, स्वर लिपि के साथ आगे आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
0: हाँ, मैं सोचती हूँ लिसनर को छोटा सा हमीरा के ऊपर बंदिश सुनाई जाए तो अच्छा लगेगा।
1: जी

0: तो ये हम्बीर राग की छोटी सी बंदिश हाँ, आपने सुनाई।
1: इसमें जो मिठास है
0: जी,
1: इसलिए हम इच्छा था कि
0: बंदिश सुनाकर आप इसकी पहचान भी दे सकते हैं।
1: हाँ जी, हाँ
0: जी, जी। श्यामली जी, जाते जाते आज आप हमारे लिए क्या लाए?
1: हाँ, एक बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी,
1: 1946 का।
0: ओ हो, इतना पुराना
1: जी। मिलन फिल्म। इसमें जो कंपोजिशन जिन्होंने किया है अनिल विश्वास,
0: ओके,
1: और जिन्होंने गाए हैं, जिन्होंने कंठ में दिया है पारुल घोष।
0: अच्छा, पारुल घोष।
1: हाँ, पारुल घोष ने दिया है। उस टाइम में बहुत फेमस गायिका थे, तो वही मैं करके सुनाती हूँ
0: जी।
1: बहुत सुंदर, सुहानी बैरिया बीती जाए, बहुत सुंदर।

0: वाह बहुत सुंदर, इतना पुराना गीत।
1: हाँ जी,
0: मगर फिर भी उसकी जो अलंकारिक भाषा है।
1: हाँ जी, पालघर जी ने इतना अच्छा निभाया है, मैं कोशिश किया है।
0: जी श्यामली जी, समय देता है हमको इजाजत। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 94-1415-1415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 94-1415-1415। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: जब कबूतर को पता चलता है कि बिल्ली उसके पास आ गई है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे बिल्ली गायब हो गई है, पर ऐसा होता नहीं है बाबू। वैसे हम लोग कभी कभी यही तरीका अपनाते हैं, समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इससे वो खत्म हो जाती है? घर ऑन एयर के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राठौड़ परिवार बड़ी मुश्किल से नाश्ते की टेबल पर बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर होती है एक नॉक। कौन पूछने पर गेट से जवाब आता है, पुलिस। अब यहाँ कबूतर है राठौड़ परिवार और बिल्ली है पुलिस। चलिए देखते हैं कि अब कबूतर करता क्या है।
1: बड़े भैया गेट मत खोलिए, मैंने सीरियल में देखा है, पुलिस एकदम से आती है अंदर और बिना कुछ बताए हथकड़ी लगाकर ले जाती है और फिर बहुत मारती है।
2: अरे अरे तो आप गेट मत खोलिए, आपको ले गए तो हमारा क्या होगा?
3: अरे पुलिस वालों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी को भी ले जाए, और मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैंने क्या किया है?
4: एक काम करते हैं, तुम लोग सब चुप हो जाओ, उनको लगेगा घर पे कोई नहीं है तो सब वापस चले जाएंगे।
5: माँ ऐसी थोड़ी होता है, आप
4: चुप कर किशन, जेल जाना है क्या?
6: माँ आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। बड़े भैया आप बैठिए, भाभी घबरा रही है, मैं देखता हूँ और आप लोग जरा शांत हो जाइए।
7: भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
6: ठीक है चलिए।
4: नहीं वीरेंद्र रुक, अरे रुक बेटा।
6: माँ आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा।
8: हम नजदीकी पुलिस थाने से आए हैं, हमें विजय की तलाश है।
7: आपका मतलब विजय दीनानाथ चौहान है?
8: आप पुलिस वाले से मजाक कर रहे हैं?
7: सॉरी सर, मैं नर्वस होता हूँ तो मजाक निकल जाता है।
8: ठीक है आप मेरी बात का ठीक से जवाब दीजिए, विजय कहाँ है?
6: जी विजय नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता।
8: देखिए हमें पता चला है यहीं रहता है, एक आरोपी को छुपाना कानूनन जुर्म है, इसलिए जल्दी बताइए विजय कहाँ है।
6: सर हम सच कह रहे हैं, यहाँ कोई विजय नहीं रहता।
8: देखिए हमारे पास प्रूफ है, विजय कुशवाहा आधार कार्ड डिटेल्स है, उसमें यहीं का एड्रेस दिया हुआ है।
9: अरे ये तो अपना विजय है।
8: हाँ पकड़े गए, मतलब हमसे झूठ बोल रहे थे, कौन विजय, अब कहते हो अपना विजय।
6: नहीं नहीं सर, मतलब क्या है ना, ये हमारे परिवार का मेंबर नहीं है, ये तो हमसे पहले इस मकान में रहता था तो इसलिए ये एड्रेस पड़ा होगा, इसकी पोस्ट आती है कभी कभी यहाँ तो लेने आ जाता है बस।
8: कोई और आपके एड्रेस पे 5 साल से अपनी पोस्ट पार्सल मंगा रहा है, आपने कुछ नहीं कहा?
7: ये लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं।
8: सर मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं।
6: नहीं सर हमें लगा वो तो हमारा दोस्त है।
10: सर हुआ क्या है ये तो बताइए।
8: देखिए विजय ने बड़ा बैंक फ्रॉड किया है।
0: कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में कोई नहीं फंसना चाहता, लेकिन अगर मुसीबत आ ही जाए तो फिर समझदारी ही तो काम आती है। आपका आईडी प्रूफ आपका प्रमाण है, ध्यान रखिए कि आपके नाम नंबर या एड्रेस का कोई और इस्तेमाल ना करे। अब पुलिस अपने विजय, मेरा मतलब है कि विजय को तो पकड़ ही लेगी, बैंक में जो फ्रॉड किया है, लेकिन क्या राठौड़ परिवार की समस्या कम होगी? अब ये तो बाद में पता चलेगा।
11: मर्दों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, हमसे हंस खेल के बात करने वाला वो विजय फ्रॉड निकला।
12: रागिनी दीदी पहली बार सही बात बोली है आपने।
11: पहली बार तो क्या कहना चाहती है शांति, क्या मैं हमेशा गलत बात कहती हूँ?
10: भैया ये हमारी बहने ही है ना, कहीं मंदिर से तो उठा कर नहीं लाए थे इन दोनों को?
11: किशन तू तो पिटेगा मुझसे।
12: दीदी आपसे और मुझसे दोनों से।
11: रुक अभी बताती हूँ।
12: पकड़ो दीदी पकड़ो इसको, बहुत मजाक बनाता है हमारा।
10: अरे कोई बचाओ मुझे इन दोनों से, कोई छोड़ के आओ इनको वापस मंदिर में।
11: तुझे तो मंदिर में भी नहीं रखेंगे। रुक,
4: मारो दीदी, मारो मारो।
13: अरे क्या कर रहे हो तुम तीनों, बच्चों की तरह लड़ रहे हो।
14: थोड़ा लड़ने तो इन्हें अंबिका, बड़े होकर भी बचपन जी लेना चाहिए कभी कभी। घर की रौनक इस मीठी प्यार वाले झगड़े से ही तो है। और देखो ये लोग इस बहाने एक तो हो गए ना।
2: इसलिए तो मैं भी प्यार से झगड़ती हूँ ताकि आप लोग खुश रहें।
13: बड़ी बहू, तू तो इतना खुश कर देती है कि खुशी के साथ मेरा बीपी भी बढ़ जाता है।
3: वैसे चंद्रावती, तुम तो बचपन में बड़ी शांत थी। तुम्हारी माताजी ने बताया था मुझे, कहीं शादी के लिए झूठ तो नहीं कह दिया था।
2: मैं तो सच में बड़ी शांत थी, अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया मैंने। और ये आपकी बहनों को देख लीजिए।
10: बड़े भैया आप तो बहुत लकी हैं।
14: हाँ बिल्कुल, हमारी बड़ी बहू ने आते ही इस घर को संभाला, इस घर को एक करके रखा। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो चंद्रावती 23 साल की थी और गजेंद्र 26 का, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बहू पर ज्यादा थी। शादी होते ही एक लड़की से सब ऐसे उम्मीदें लगा लेते हैं जैसे एकदम से वो बदल जाए, अपनी उम्र से भी बड़ी होकर व्यवहार करने लगे और वही लड़के को छूट दे देते हैं, बस इसलिए कि वो एक लड़का है। इसलिए मैं तो सच में मानता हूँ मेरी बहू तो बहुत सयानी है।
2: थैंक यू पिताजी।
0: चलिए, कोई तो समझा कि बहू भी एक आम लड़की ही तो है जिसे अपनी सहेलियों से बात करना पसंद है, जिसकी आंखों में अपने भी कुछ सपने हैं। उसी लड़की को शादी की रस्मों के बाद एकदम से सब जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता है और कहीं चूक हो जाए तो उसे बुरी बहू का खिताब दे दिया जाता है। उसकी गलतियों पर ताने कसने की जगह प्यार से समझा कर गले लगाकर तो देखिए, देखिए कि कैसे वो बहू बेटी बन जाती है। हाँ वैसे बहू से याद आया कि राठौड़ परिवार की छोटी बहुरानी राजकुमारी जी नजर नहीं आ रही। हो समझ गया, राजकुमारी जी किचन में है।
13: कुमारी ये क्या कर रही हो? अरे ये कढ़ाई जमीन पर क्यों गिरी हुई है और ये दो तरफ से मुड़ी हुई क्यों है?
15: मासा मैं तो आपने जो कहा था बस वही कर रही थी।
13: मैंने क्या कहा तुझे?
15: आपने तो कहा था मासा कि राजकुमारी हमें कढ़ाई की जरूरत नहीं है, जा इसे बदल कर कुकर ला।
13: तो तूने कढ़ाई को हथौड़े से तोड़ दिया?
15: हाँ मैं तो इसे कुकर बना रही थी मासा।
13: राजकुमारी बेटा, मैंने कढ़ाई को दुकान से बदल कर लाने को कहा था।
15: ओ तभी मैं सोचूं कि मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, फिर मासा ने मुझे कुकर बनाने को क्यों बोला? लेकिन फिर मैंने सोचा मासा ने बोला है कि कढ़ाई को बदल के कुकर ला तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
16: आपको क्या लगता है भाभी, इंजीनियर बर्तन बनाते हैं?
15: हाँ मतलब वो पास वाली दुकान पे जो छोटू है ना, वो इंजीनियर ही तो है, बर्तन ठीक करके देता है सारे वो।
16: भाभी वो उसके पापा की दुकान है और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।
15: ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शुरू में ही सिखा देते हैं बर्तन बनाना।
13: बेटा अच्छा हुआ तू इंजीनियर नहीं बनी, वरना सारे इंजीनियर दरिया में कूद जाते।
7: हमारी भाभी कितनी भोली है ना?
11: हाँ भोली भी है और भाली भी,
16: जैसी भी है हमारी है।
7: मैं बहुत लकी हूँ मासा कि इस परिवार का हिस्सा हूँ।
0: ऐसा आज्ञाकारी देखा है आपने कि कोई कढ़ाई को कुकर बनाने की कोशिश करने लगे। वैसे हर परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और यही तो जिंदगी का मजा है। जैसे चाट होती है ना, थोड़ी खट्टी, आहा, थोड़ी मीठी और थोड़ी तीखी, हर स्वाद होता है। ऐसे ही जिंदगी में हर कोई हमारे जैसा सोचने बोलने और करने लगे तो फिर बोरिंग ना हो जाएगी लाइफ। हाँ तो चलिए आप और हम लोगों में छुपी हुई खूबसूरती को देखते हैं और उन्हें सराहते भी हैं। आखिर अपने तो अपने होते हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, आपका साथ निभाने और राठौड़ परिवार की कहानी सुनाने फिर आऊंगा अगले एपिसोड में। इंतजार कीजिएगा हमारा, क्योंकि भई ये राठौड़ परिवार है, बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है यहाँ।
17: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गाते रहो, गुनगुनाते रहो, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन. आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से.
1: तो नवरात्रि के इस प्रथम दिन पर शैलपुत्री माता की पूजा होती है. शैलपुत्री माता कौन है? तो कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री ये प्रथम देवी है. पहला अवतार माँ दुर्गे का है जिसके अंदर खूब एनर्जी है, शक्ति है, और जो हिमालय की बेटी मानी जाती है, और इसीलिए शिव के साथ की शक्ति बताई गई है. शैलपुत्री, पुत्री यानी जो बेटी है, और शैल माना पहाड़, यानी सती भवानी या पार्वती या हेमवती का ही दूसरा स्वरूप है. हिमालय का जो राजा हेमवान, उसकी बेटी शैलपुत्री नवदुर्गा में प्रथम मानी जाती है, और उसकी ये पूजा करके शक्ति को प्राप्त करने का भाव है. उसके एक हाथ में त्रिशूल दिखाया है और दूसरे हाथ में कमल पुष्प दिखाया है, और भैंसा उसकी सवारी के रूप में दिखाया गया है. उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान और आनंद का भाव प्रकट होता है. अब ये त्रिशूल और कमल का प्रतीक जो दिखाया गया है, ये किस बात का प्रतीक है? तो कहा जाता है कि त्रिशूल के नीचे एक छड़ दृढ़ निश्चय का प्रतीक है, और ऊपर की तीन पत्तियां मन, वाणी और कर्म द्वारा पांच विकारों रूपी राक्षसों पर विजय प्राप्त करने का द्योतक है. साथ ही साथ कमल पुष्प अर्थात संसार में रहते हुए तामसिक विकारी वायुमंडल से अलिप्त एवं पवित्र रहने का प्रतीक है. तो जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मन, वाणी, कर्म के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करके दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है और संसार में रहते हुए पवित्र रहता है, तब उसके जीवन में आनंद का भाव और मुस्कान नेचुरल रूप में बनी रहती है.

0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी श्रोताओं को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार श्रोता बंधुओं, आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम सलामे जिंदगी। सलामे जिंदगी कार्यक्रम में मैं आज आपको ऐसे भारत देश के बेटे से मिलवाना चाहूंगी जिन्होंने पढ़ाई नहीं की लेकिन फिर भी अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाया। आप मजदूरी करते गए, मजदूरी से आप मिस्त्री बने, मिस्त्री से आप ठेकेदार बने, न आपने कभी बीड़ी को छुआ, ना ही सिगरेट को छुआ, ना ही शराब को छुआ। लोग कहते इस लाइन में इस तरह का नशा हो जाता है लेकिन आप नशे से मुक्त रहे। अध्यात्म में आपको गहरी रुचि है, आपकी उम्र 63 वर्ष है और आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आया लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी। तो ऐसे हमारे देश के नागरिक घनश्याम जी बेहरवा से आपको मिलवाना चाहूंगी जो आप सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में 30 वर्षों से भी ऊपर आपको हो चुका है आबू तलेटी में रहते हुए। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, अच्छे हारमोनियम बजाते हैं, सुंदर सुंदर गीतों की रचना खुद करते हैं, राजस्थानी में गीत भी लिखते हैं और खुद ही हारमोनियम बजा करके गीत की प्रस्तुतियां भी देते हैं। तो ऐसे शख्स से आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ। नमस्कार घनश्याम जी।
2: धन्यवाद,
1: आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। बहुत बहुत
2: धन्यवाद
1: जी। आबू रोड में पधारे हुए आपको कितना समय हुआ?
2: मैं 98 से आ गया था।
1: अच्छा, काफी वर्ष हो गए इधर आए हुए
2: जी।
1: तो चलिए हम थोड़े समय के लिए आपके बचपन की तरफ झांकते हैं। आपका बचपन कहाँ, सवाई माधोपुर में ही बीता?
2: बचपन तो मेरा देश प्रदेश में ही बीता है आधा। 6 महीने देश में, 6 महीने प्रदेश में रहता था मैं। क्यों,
1: मतलब देश और प्रदेश कैसे? सवाई माधोपुर
2: और जैसे MP भी गया था, दिल्ली भी आया, ऐसे में आना जाना लग रहा। मम्मी पापा गरीब थे, मजदूर थे, तो उनको साल में एक बार जो है 6 महीने के लिए कहीं जाना पड़ता था कमाने खाने के लिए। और खेती जो है हमारे इतनी थी नहीं और साधन पानी का था नहीं। कुओं बाँव में जो चौमास सर्दी चौमासा के महीने के अंदर में पैदावारी होती थी खेतों के अंदर में, और उनके बाद में फिर जो है बाहर प्रदेश में जाते थे साड़ों के साड़े के साथ, अपने चेत के महीने के बाद में बाहर चल जाते थे हम लोग कमाने खाने के लिए। बचपना मेरा जो बाहर ही रहा, पढ़ाई मैंने बहुत विशेष कम की है क्योंकि 6 महीना देश में प्रदेश में रहने से पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया मैं। लेकिन फिर भी पढ़ाई में बहुत, टीचर मेरे को मॉनिटर के रूप में भी रखते थे पहले, क्यों पढ़ाई में अच्छा ध्यान था मेरा, लेकिन बरोबर क्या रहने नहीं पाया। इसलिए से फिर हम जब बाहर जा रहे थे तो हमारे को पिताजी को टीचर ने बुलाया, मास्टर ने, तो उसको पूछा गया भाई कि आप जो है घनश्याम को यहाँ क्यों नहीं छोड़ते, पढ़ाई अच्छी है, बच्चा अच्छा है पढ़ने में लिखने में
1: जी।
2: तो वो कहते नहीं साहब, मैं मेरे साथ में ले जाता हूँ उनको, छोटी बच्ची उसको रखना पड़ता है ऐसे, तो मैं अधिकतर ज्यादा मम्मी पापा के साथ ज्यादा रहा हूँ, कहने का मतलब।
1: अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं?
2: हम जो है 4 भाई हैं, बहन थी लेकिन बहने रही नहीं, वो बचपन में ही गुजर गई, कहने का मतलब।
1: अच्छा, बचपन में ही गुजर
2: जी गए।
1: तो 4 भाई आप उस समय बहने थी आपके साथ बचपन में, छोटे थे तब?
2: बचपन में मैं, हाँ जब छोटा था ना तो दो मेरे छोटा था, उसको रेख देख के लिए मेरे को लेके जाते थे। जब मैं 6 साल का था तो 3 साल के बाद मैं छोटा भाई को मैं रेख देख करता था। तो फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके बाद में फिर मेरे
1: तो आपको इस वजह से नहीं पढ़ने दिया गया कि आपके भाई को आपको रखना है?
2: जी जी,
1: छोटे भाई को।
2: जी जी। और एक भाई जो फिर वो थोड़ा बड़ा होशियार हो गया तो उसको फिर स्कूल में उन्होंने रख दिया, कहने का मतलब। तो हम दोनों भाई साथ रहे लेकिन फिर वो छोटा वाला भाई को दादी जी के साथ में छोड़ना पड़ा।
1: अच्छा।
2: हाँ, दादी थी ना, उनको छोड़ना पड़ा उनके, तो उनके दादी के रेख देख में वो भाई पढ़ भी गया लिख भी गया। मैं प्रदेश में दादा मम्मी पापा के साथ रहा था, कहने का मतलब।
1: अच्छा, मम्मी पापा के साथ आप साल में कितनी बार जाते थे बाहर?
2: बाहर 6 मास, पूरा 6 मास रहता था मैं।
1: अच्छा,
2: 6 मास फिर वापस गांव, फिर गांव में आता था मैं, कहने का मतलब।
1: तो ये क्या कारण है कि 6 महीना बाहर रहना, 6 महीना अपने पुश्तैनी गांव में रहना?
2: वहाँ क्या होता है कि जैसे हमारे पिताजी थे ना, किसी से पैसे अडबंस लेता था वो, अडबंस लेने के बाद में फिर हमको जहाँ काम धंधा होता ना वहाँ वो लेके जाते थे हम लोगों को अडबंस दे करके। तो वहाँ 6 महीने हमको रहना पड़ता है। MP के अंदर में बहुत गए थे हम लोग, तो वहाँ पर जाते, मैं आदिवासी लोगों में भी रहा हुआ हूँ वहाँ जंगलों के अंदर में, घोर 6 साल रहा हूँ आदिवासियों के अंदर में।
1: अच्छा।
2: इसलिए बहुत मास, मतलब क्या होता है कि हमारे को रात में दिन में शेर चीताओं का भी सामना करना पड़ता था उस वक्त, ऐसे समय गुजारा था मैंने बचपन में।
1: जी जी जी।
2: हाँ, फिर उसके बाद
1: जंगल में सोते थे तो शेर चीता भी आ
2: जाते थे। जी जी जी जी, आवाजें सुनते थे उनकी, गूंजते थे। और जानवर बहुत मतलब उनका सामना किया हम लोगों ने वहाँ जंगलों
1: जी,
2: के अंदर
1: तो कभी आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया?
2: नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने ये, तो
1: उनको पता है कि यहाँ पर इंसान है।
2: जी जी जी हाँ,
1: तो वो तो इंसान को तो ऐसे खतरा पहुंचाते हैं ना।
2: हाँ,
1: आप लोग क्या बना के रहते थे जंगल में?
2: जंगल में हमारे बहुत बिजनेस था, एक जैसे ये जो अपने लकड़ी के जो कोयले बनते थे ना, तो वो उसके वो हमारे वहाँ लेके जाते थे, हमको पार्टी होती ना वो, तो हमको बुलाते थे वहाँ पर ले जाने के लिए, तो 6 मास हमको लग जाता था वहाँ, तो उनको हम कोयले बनाते थे, वो लकड़ी जाते थे दूर दूर का, पहले इंगिटी बहुत होती थी तो बनते थे ना, जाते थे बेच
1: जी,
2: उसके हिसाब से चलते थे, प्रेस के लिए होता था वो, ऐसा काम हमारा था, मम्मी पापा का था, मैं तो नहीं करता था पर जाते थे मम्मी पापा के साथ में। फिर 6 मास के बाद हम जब आते थे यहाँ साढ़ के अंदर में, फिर हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो है फिर खेती बाड़ी में करते थे। पहले क्या है कि बड़े बोरिंग वगैरह नहीं थी, कुएँ नहीं थे, कुएँ थे तो मतलब पैसे वालों के थे, तो वो उनके साधन थे, उनके खेती होती थी, कहने का मतलब अपने जो बरसात के मौसम की खेती होती थी।
1: जी जी जी
2: ये, और उसके बाद में फिर मैं वहाँ से गांव आने के बाद में फिर मैंने ठा कि भाई अब मुझे वहाँ प्रदेश में उधर नहीं जाना है, अभी दिल्ली जाऊँगा मैं। तो दिल्ली में 78 की साल में
1: जब आप बड़े हो गए था
2: जी, मैं 1975 में मेरी शादी हो गई थी।
1: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी?
2: उस वक्त में 13-14 साल का था।
1: अच्छा, बाल विवाह हुआ आपका?
2: जी जी जी।
1: आपकी पत्नी कितने साल के थे?
2: ये पत्नी तो कम ही थी, छो उम्र की थी ये
1: जी,
2: छोटी थी, उसको तो कंधे पे बिठा के लेके आते थे।
1: अच्छा,
2: ऐसी थी बचपन में, तो क्यों बचपन में बहुत पहले शादी
1: ऐसे होता था कंधे पर बैठने जैसे
2: जी। उस वक्त क्या था कि वो परंपरा नहीं थी ना, भाई नहीं कि 18 साल का ही करो, 20 साल का ही करो
1: जी,
2: तो बचपन में ही मेरी शादी हो गई थी 1984 में मेरा फिर गोना किया, तो उससे पहले मैं जो मजदूरी करने के लिए मुझे दिल्ली में आना पड़ा, कहने का मतलब दिल्ली में मैं मजदूरी की, मेहनत की, मतलब मेहनत बहुत की मैंने, और सच्चाई सफाई और हिम्मत और मेहनत, मेहनत में बहुत किया जिंदगी के अंदर में, मेरी मेहनत ही मेरे को रंग लाई है, कमाना खाना, कमाने का शौक बहुत था, सच्चाई पे चलने का, सेवा करने का, बड़े बुजुर्गों को भी सेवा किया मेरा बहुत, मतलब उमंग उत्साह होती थी मैं बड़े बुजुर्गों को भी सेवा करूं कुछ
1: जी जी। हाँ,
2: इस तरीके से मेरी सेवा भाव का मेरा लक्ष्य बहुत अच्छा था बचपन से ही।
1: तो ये बताइए, आपके बचपन में शादी हो गई तो आप दोनों साथ में थोड़ रहे होंगे, वापिस आना किए बिना तो भेजते नहीं है?
2: 9 साल के बाद में हुआ ना।
1: अच्छा।
2: हाँ, 1975 में मेरी शादी हुई तो 9 साल यानी 1984 में मेरा गोना हुआ।
1: अच्छा
2: जी, और मेरे को जो है बचपन से ही अच्छे संग करने का बहुत शौक था
1: जी,
2: गाना बजाने का, भजन करने का, सत्संग करने का, भजन कीर्तन करने का, तो बचपन से ही मेरे की रुचि बहुत थी
1: जी।
2: तो इस तरीके से मेरा जीवन जो है गुजरा है, बहुत परिस्थितियों के भी मैंने सहन किया है, लेकिन इस वक्त मेरे को जो है 1978 में मैं यहाँ आया था दिल्ली के अंदर में, दिल्ली खानपुर रोहिणी के अंदर में, वहाँ जो है मैं कुछ काम किया, काम सीख भी गया था मैं, और 1984 के अंदर मेरे जो पत्नी आ गई मेरे साथ में
1: जी, तो वो हम बात जरूर करेंगे, लेकिन आपकी बात चल रही है बचपन की, है ना, कि आप बचपन में 6 महीना अपने गांव में रहते थे, 6 महीना आप अलग अलग शहरों में रहते थे
2: जी,
1: तो अलग अलग शहरों में हर जगह आप जंगल में ही रहते थे या बस्ती में भी रहते थे?
2: नहीं, फिर तो बस्ती में रहने लग गया था।
1: अच्छा, तो जंगल में क्यों रहना पड़ता था? कोयले जलाने की वजह से?
2: हाँ, लकड़ी के कोयले बनते थे वहाँ, कहने का
1: जी।
2: हाँ,
1: तो आपके माता जी पिताजी सभी जंगल में रहते थे?
2: हाँ, सभी जंगल में रहते थे, क्यों काफी लोग थे, संगठन थे हमारे, मतलब 20-25 आदमी का एक संगठन होता था हमारा, कहने का मतलब
1: जी,
2: तो उसके साथ में हम रिया करते थे, हम कहने का मतलब, और जो है काफ़ी मतलब क्या होता है कि जब 6 मास के बाद में फिर हमको जो है वहाँ से मजदूरी पूरी हो जाती ना, फिर हम वापस घर पे आते थे।
1: अच्छा।
2: हाँ
1: जी जी जी, फिर 6 महीना आप खेती संभालते थे?
2: जी, फिर 6 महीने खेती करते, क्यों कि खेती जो है बरसात के मौसम की खेतियाँ होती थी।
1: जी जी जी। हाँ, वो आपने कहा कि पानी की व्यवस्था नहीं थी तो बरसाती खेती कर सकते हैं, उस समय तो बरसात भी अच्छी आती थी
2: जी।
1: तो बरसात के मौसम में कौन सी खेती आप करते थे?
2: उसके अंदर में पहले हमारे खेतों के अंदर में ज्वारी होती थी, ज्वार जो होते हैं ना, ज्वार
1: जी जी,
2: ज्वार, बाजरा, मूंग, मूठ
1: जी,
2: हाँ, और चने बोए करते थे पहले, जो वहाँ रहते जाते चने भी बोते थे, पर पानी नहीं होता था तो पहले बरसात होती थी, चने भी अच्छे होते थे, कहने का मतलब, पर ज्वारी तो हमारे हमेशा होती थी, बढ़िया ज्वारी होती थी, कहने का मतलब
1: जी, जी, जी।
2: और मूंगफली करते थे हम लोग
1: जी। तो ज्वार आज भी लगती है उधर?
2: अभी तो क्या है, साधन हो गया ना लोगों के पास में, तो गेहूं बाते हैं, सरसों बाते हैं, और ये जो है अपने बाजरी बाते हैं। अभी तो बरसात के मौसम बाजरी तिल बा देते हैं, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है ना उसमें गेहूं, चने और सरसों ज्यादा बोते हैं हमारे उधर को।
1: अच्छा,
2: खेतों के अंदर में।
1: जी जी
2: हाँ।
1: चलिए घनश्याम जी, समय हो चला है यहाँ पर एक गीत सुनने का। एक गीत सुनने के बाद पुनः आपके अनुभव सुनेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम सलामे जिंदगी में। घनश्याम जी के अनुभव बहुत सारे बाकी हैं, इन्हीं के द्वारा सुनेंगे, पर पहले सुनेंगे एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: जो तपता है कर्म क्षेत्र की अग्नि में नहीं मानता हार, जो तपता है कर्म क्षेत्र की अग्नि में नहीं मानता हार, चलता रहता नित्य प्रतिदिन नहीं करता विश्राम, चलता रहता नित्य प्रतिदिन नहीं करता विश्राम। तो ऐसे ही विभूति आज हमारे समक्ष विराजमान है, घनश्याम जी बेरवा जो आबू तलेटी में रहते हैं, और आपके अनुभव हम सुन रहे हैं। घनश्याम जी पुनः आपका स्वागत है सलाम जिंदगी में। तो आप अपने अनुभव सुना रहे थे, बचपन की बातें चल रही थी, 6 महीना आप अपने पुस्तैनी गांव में रहते थे, 6 महीना आप कभी मध्य प्रदेश तो कभी
2: दिल्ली
1: अलग अलग राज्य में आप रहते थे। तो बोली का आपको ये नहीं लगता था कि अलग अलग भाषा है और थोड़ा बोलना समझ पाना बड़ा मुश्किल?
2: मेरी बोलने की जो लैंग्वेज है ना ऐसी हिंदी में रही है, जो मतलब कोई किसी देश का प्रभाव मेरे ऊपर में नहीं पड़ा है। मैं राजस्थान में भी रहा हूँ, दिल्ली में भी रहा हूँ और एमपी में भी रहा हूँ, लेकिन कोई मेरे प्रभाव भाषा का नहीं पड़ा है। और मैं सीखने की काफ़ी कोशिश की है लेकिन मैं बरोबर सीख नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा भी कम था ना, इसलिए उसको हैंडल नहीं कर पाता था इसको।
1: जी जी, तो अलग अलग राज्य में आप जाते थे तो वहाँ की भाषा को आप कैच नहीं कर पा
2: नहीं कर पा रहा था।
1: लेकिन ठीक है, मध्य प्रदेश में भी हिंदी है, दिल्ली में भी हिंदी बोलने वाले ही है, तो दिक्कत नहीं आई। और इसके अलावा कोई अन्य राज्य में गए आप?
2: हाँ, मैं हरियाणा में भी गया हुआ था।
1: अच्छा, हरियाणा में भी थोड़ा राजस्थानी का लगता है ना तड़का।
2: जी,
1: आधी राजस्थानी।

0: टीचर बोल रहे थे, बोले कि भाई ऐसे नहीं होगा पढ़ाई, बोले कि इसको रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो बोले कि पिताजी को बुलाया भाई कि मैं लेके चला गया था पढ़ने के लिए, लेकिन फिर वहाँ से मेरे को बिठाया नहीं उन्होंने, क्यों उनका भी थोड़ा कानून कायदा होता ना, तो
1: जी
0: उन्होंने मना कर दिया। बोले कि नहीं कि भाई अगर रेगुलर पढ़ते हो तो भले आप छोड़ दो बच्चों को, यहाँ तो पढ़ लेगा है, लेकिन हमारी मजबूरी थी मम्मी पापा की, तो इसलिए से मेरे को वहाँ छोड़ा नहीं गया। कहने का मतलब छोटा भाई जो था वो पढ़ गया है, पढ़ लिख के फिर मैंने उस पर ध्यान दिया, चलो ठीक है कम से कम मैं नहीं पढ़ा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा छोटा वाला भाई है तो
1: जी
0: जो मेरे से सहयोग होगा मैं उसको करूँगा, लेकिन उसको पढ़ाया लिखाया थोड़ा, जो जितना सहयोग किया उसकी मेहनत।
1: तो आप
0: और
1: तीन भाई अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे, एक भाई दादी के साथ रहता था।
0: हाँ,
1: जी
0: तो जो हम तीन भाई थे हम तो मम्मी पापा साथ रहे थे। और उसके बाद में फिर क्या है कि जब पिताजी जो है उम्र में ज़्यादा हो गए थे ना, तो वो भी फिर मैंने उनको गांव ही छोड़ दिया था। जो भाई जो था उस वक्त क्या होता, पढ़ लिख करके पढ़ाई अच्छी कर ली थी उन्होंने और वो अपने पैर पर खड़े हो गए थे, टीचर बन गए थे, उनने भी मजदूरी की है पढ़ाई
1: जी
0: के बाद में, मजदूरी की थी उन्होंने।
1: जी
0: हाँ, छोटा भाई का नाम राधेश्याम है, लेकिन उन्होंने मेहनत भी की, काम धंधा भी किया और पढ़ाई भी साथ में की, रात में 3-3 बजे उठ करके पढ़ाई करता था वो। ये था उस वक्त, तो क्या थे, रोशनी भी नहीं थी घर के अंदर में, लाइट नहीं थी,
1: जी
0: पंखे
1: जी
0: नहीं था,
1: जी
0: कुछ भी नहीं था, लेकिन एक लैंप की रोशनी के अंदर में पढ़ाई की, तो
1: जी
0: पढ़ाई करने से ही वो व्यक्ति जो है आज वो गवर्नमेंट जॉब
1: जी जी
0: कर
1: तो
0: रहा है।
1: आपको आज लगता है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, अफसोस
0: हाँ
1: होता है?
0: हाँ मुझे एहसास हुआ इस बात का कि मैं पढ़ाई करता तो कुछ न कुछ मेरे को भी पढ़ाई से प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन क्या होता है कि पढ़ाई में नहीं करने की वजह से मजबूरी थी ना, मेरे को भी शौक था ऐसी बात नहीं थी, लेकिन क्या है कि जब मम्मी पापा जो है मजदूर आदमी गरीब थे, तो इसलिए से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया
1: जी,
0: और वो भी नहीं पढ़ा पाया। फिर वो कहते तो भाई मैं भी मजदूर करना हूँ, अगर तू दो पैसे कमाएगा तो दोनों को मिल सहयोग से मिलेगा कुछ न कुछ।
1: देखिए पहले तो ऐसा ही होता था, माता पिता पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, बच्चों को काम में लगवा
0: हाँ
1: देते
0: जी, हाँ जी,
1: थे। जी तो आप जैसे बता रहे थे कि 14 साल की उम्र में आपकी शादी हुई,
0: हाँ
1: उस समय
0: जी,
1: आपको पता था कि आपकी शादी हो रही है?
0: हाँ। उस वक्त क्या होता है कि हम भी देखते थे ना एक दूसरे की शादी बचपन में ही होती थी पहले,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: जी
0: बारात में जाते थे हम लोग, तो उस वक्त क्या आता है शादियों में क्या होता है, छोटे छोटे शादियों में पहले तो बैलगाड़ियों में बारात जाती थी हम लोगों की, तो
1: जी
0: इसलिए से क्या होता है हमारे को बहुत शौक था बचपन में, पैदल ही भागते थे कहने पर, अब तो साधन बहुत हो गए, 3-3 दिन बारातें रुकती थी, लेकिन आजकल
1: जी
0: ऐसे नहीं हो रहा है। तो इसलिए से क्या है कि अब आप जानते हैं आजकल तो जो है इतना सब कुछ करते हुए नहीं हो पा रहे बच्चों का रिश्ता, लेकिन पहले तो गाँव में रिश्ते दारियों में जाने से हर कोई आदमी सहयोग कर देते थे, बोले नहीं बच्चा है अपने कोई दिक्कत नहीं शादी कर दो, तो मम्मी पापा ने भी हमारी शादी नहीं की और बाहर वाले ने मेहमानों में आपस में ऐसे रिश्तेदारियों में शादी हो जाती थी पहले बचपन में
1: जी जी पहले तो थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए, कोई
0: पहचान।
1: भी करवा देता था, भले दोनों
0: हाँ
1: पार्टी अननोन है लेकिन दूसरे कोई जानते हैं तो वो बीच में आकर के करवा देते थे।
0: जी,
1: तो फिर गुना होने के बाद आप साथ में रहने लगे, तब आप कहाँ रहते थे? सवाई माधोपुर रहते थे या फिर दिल्ली चले गए?
0: नहीं मैं क्या होता कुछ गांव में रहा कुछ दिन, फिर मैं दिल्ली चले गया था, क्यों मैं पहले से दिल्ली में था,
1: जी
0: 1978 में मैं दिल्ली में गया था और 1984 में मेरा गोना हुआ था कहने का मतलब।
1: जी
0: तो हाँ, तो वहाँ जो है फिर मैं, फिर बहू वगैरह वो बच्चे, पिताजी भी मेरे साथ में थे, बहू भी साथ में थी, तो हम एक जगह रहते थे और एक जगह खाना वाना बनता था अपना और काम
1: तो
0: धंधा भी एक जगह
1: आपके
0: करते हैं।
1: माता पिता आपके भाई सभी साथ में थे दिल्ली में?
0: हाँ, दिल्ली में हम तीन भाई साथ में थे ना।
1: तीन भाई, आपके पिताजी, माताजी और
0: हाँ
1: आपके धर्मपत्नी,
0: जी,
1: मतलब पूरा परिवार आप साथ ही थे,
0: हाँ
1: एक भाई को
0: सिर्फ
1: छोड़
0: एक
1: के।
0: भाई सिर्फ गांव में था हमारा।
1: जी, तो
0: हाँ,
1: वहां पर आप क्या काम करते थे दिल्ली में?
0: दिल्ली में मैंने मजदूरी की, ईंट में हम मसाला बनाते थे, ईंट वगैरह ढोते थे हम लोग, जो भी काम मिलता था करते थे वहाँ पर मजदूरी कर, मकान बनाने का काम बहुत किया था हम लोगों ने।
1: मिस्त्री काम आप कह
0: हाँ,
1: रहे थे?
0: मिस्त्री का तो बाद में सीखा, पहले मजदूरी करता था मैं।
1: अच्छा, पहले
0: हाँ,
1: मजदूरी।
0: पहले क्या मिलता था, 5 रुपये, मेरे को उम्र कम थी ना मेरी, तो
1: जी
0: उम्र कम थी तो बहुत पैसे कम मिलते थे मेरे को, बोले इसकी उम्र कम है इसको 5 रुपये मिले, 5 रुपये में मैंने मजदूरी की है, मैंने 2 रुपये में मजदूरी की है।
1: जी जी लेकिन
0: हाँ
1: आपकी शादी के बाद, जब आपका गोना हो गया, उसके बाद तो आपकी उम्र ठीक हो गई?
0: हाँ उसके बाद मेरी जो है उम्र होने, उस वक्त में फिर मैं काम सीख गया था, 1980 में मैंने काम कारीगरी का पकड़ लिया था, मैंने कारीगरी लेन में आ गया था मैं, तो 1980 के अंदर में मैं कारीगरी लेन में चला गया था, तो मैं कम रेट मिलती थी मेरे को, लेकिन काम सीख रहा था मैं कहने का मतलब,
1: जी
0: काम सीखते सीखते फिर मेरे को जो है अच्छे पैसे भी फिर रेट भी

0: बढ़ती गई, मेरे काम भी करता रहा मैं, काम का अनुभव भी होता रहा। फिर मैं एक अच्छा कारीगर बनने के बाद में मेरे को एहसास हुआ, मेहनत तो बहुत की लेकिन ये है कि चलो अभी मैं मजदूरी करने से बच गया हूँ, लेकिन अपन ये है क्या अब जो है अच्छा कारीगर बन गया हूँ तो मेरे को जो है पैसे कमाने का भी अच्छा शौक हो गया, अच्छा पैसे कमाने लग गया था।
1: तो मजदूरी करते करते आप कारीगर बन गए, काम सीख लिया आप?
0: जी जी जी जी
1: जी।
0: हाँ
1: और फिर आप अच्छे कारीगर बन गए, तो आपने अपनी टीम तैयार की या फिर आप किसी के अंडर में करते थे?
0: अभी मैं किसी के अंडर में करता था काम, ठेकेदारों के अंडर में काम करता था मैं।
1: जी
0: तो मैं वहाँ 1980 के साल में अपने जो है दिल्ली में ही काम किया मैंने, जो खानपुर में खानपुर मकान बनाए थे हमारे, वहाँ तो उस ठेकेदारों के अंडर में काम करता था मैं। वहीं पर ही हम ये कि जो है झोंपड़ियाँ थी, झोंपड़ियों के अंदर में रहते थे हम लोग, झोंपड़ी बना रखते थे, 100-100 झोंपड़ियाँ थी, काफ़ी मजदूर लोग रहते थे हम लोग,
1: जी
0: तो उसके अंदर में हमारा गुजारा होता था रहने का फिरने का
1: जी
0: ये
1: जी
0: होता। तो हमारे मम्मी पापा को अलग झोंपड़ी मिल गई थी, मेरे को अलग मिल गई थी, तो इस तरीके से हमारा जो जीवन काल वहाँ पर हमारा गुजारा।
1: तो उस समय तो फिर ऐसा नहीं होता था कि 6 महीना दिल्ली रहना, 6 महीना वापस राजस्थान जाना?
0: हाँ नहीं ऐसे नहीं हुआ फिर मेरे साथ, पर पढ़ाई तो मेरी चली गई थी ना, फिर पढ़ाई
1: जी
0: कैसे कर
1: जी
0: पाता था मैं।
1: पढ़ाई तो संभव ही नहीं है, पढ़ाई के तो एक
0: जी
1: एज होती है तो।
0: हाँ एज होती है,
1: जी फिर कारोबार में लगने के बाद कहाँ पढ़ाई हो पाएगी?
0: नहीं हो पाई
1: तो
0: सर।
1: आपने बताया कि जैसे आपने मिस्त्री काम सीखा, फिर ये हारमोनियम बजाना, गाने का शौक, ये कब से शुरू हुआ?
0: ये तो बहन जी मेरे को जो है बचपन से ही शौक था, जैसे हमारे हमारे पिताजी जो थे ना, हमारे भाई पिताजी और हमारे जो गांव वाले होते ना, तो प्रोग्राम रखते थे वो छोटे मोटे, जैसे सत्संग करने का, भजन कीर्तन गाने का, पहले कीर्तन गाते थे हमारे, पहले पुराने जमाने में कीर्तन चलते थे हमारे वहाँ, गाँव
1: जी
0: गाँव में जाते थे बुलाते थे, तो कीर्तन का शौक था। हमारे ताऊ जी का जो बड़ा लड़का था ना, वो बहुत अच्छा कलाकार था कीर्तन गाने में, भजन गाने में, उसको बुलाते थे लोग गाँव गाँव में, तो हम छोटा था उस वक्त, तो हमको भी शौक था ना, तो बचपन में ही उनके साथ में रहते थे, गाते भी थे बजाते भी थे। और फिर क्या होता है कि देते भी नहीं थे बजाने के लिए, लेकिन हमको शौक था, तो कुछ ऐसे ही नज़र, इसका नज़र का खेल होता ना सारा, तो देख लेते थे भाई क्या कहाँ बजाते थे ऐसे, तो उस तरीके से हम सीख रहे थे, सीख जाते थे कभी कभी बाई चांस, ये होता है। गाने का भी शौक था, और हमारे क्या है कि कोई गीत गाता है ना, गीत गाने का, कोई गीत भजन गाऊंगा ना मैं, तो भजन सीखने का, पढ़ाई जो मैंने जितनी पढ़ाई की मेरी, वो पढ़ाई मेरे को काम आई है, क्यों मैं हिंदी में यह था पुस्तक पढ़ लेता तो भजन भी मैं किताब लेकर के पढ़ लेता था, और भजन गाना सीख गया था मैं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: आपने पढ़ाई नहीं की लेकिन आप थोड़ा पढ़ना सीख गए थे,
0: सीख गया था,
1: तीसरी तक आपने पढ़ाई की तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेते
0: पढ़
1: थे?
0: लेता था मैं थोड़ा थोड़ा,
1: जी
0: पढ़ाई मेरी राइटिंग तो वो थी मेरी, राइटिंग क्या होता है कि मैं कुछ शब्द ऐसे जो भूल जाता था लिखना,
1: जी
0: उसके आगे पीछे क्या लिखना क्या
1: जी
0: नहीं,
1: मात्रा की
0: मात्रा
1: मिस्टेक हो
0: मात्रा
1: जाती
0: का
1: है।
0: सब्जेक्ट, ये सब मेरे को इतना गौर से जो है लिखना नहीं आता था। वो
1: जी
0: अगर भाई के पास में भी लेटर भेजूंगा ना मैं, तो लेटर लिखता बहुत फाटता मैं, लेकिन वो कुछ मात्रा भूल जाती है, कुछ बीच का शब्द लिखना भूल जाता हूँ मैं, तो उस तरीके से फिर मेरे को जो है लेटर में पढ़ते थे लोग बोले भाई ये पढ़ाई किसने की है, कौन भेजा लेटर ऐसे, काफ़ी मेरा भाई भी मेरे को बोलता था भाई तू लिख तो सही दिया कर कम से कम,
1: फिर
0: मैं ये बोलता था मजाक में, तेरी तरह पढ़ा थोड़ू भाई मैं, कि मैं जो ऐसे लिख के भेजूं।
1: भी आप लिखते थे, ये बड़ी बात है ना।
0: हाँ
1: तो चलिए घनश्याम जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, घनश्याम जी के अनुभव बहुत सारे बाकी है और बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव हम सभी सुन रहे हैं। आगे क्या होता है इन्हीं के द्वारा जानेंगे, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हे उसके माथे पे अनगिनत भाव भंगिमाएं, हे उसके माथे पे अनगिनत भाव भंगिमाएं, मन में चलता अथाह चिंताओं का संग्राम, देता संबल निज दिन, जगाता हर हाल में अपने कुटुंब का आत्मविश्वास। तो आप सुन रहे हो कार्यक्रम सलामे जिंदगी। सलामे जिंदगी कार्यक्रम में घनश्याम जी हमारे साथ बने हुए हैं और आपके काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे कि आपके बचपन की बातें हमने सुनी है, आपने बिजनेस कैसे शुरू किया है, कैसे आप मजदूरी करते करते कारीगर बन गए और कारीगर बनते बनते फिर ठेकेदार कैसे बने घनश्याम जी।
2: सर मैं माउंट आबू में, दिल्ली से मेरे को बुलाया गया था माउंट आबू के अंदर में।
1: अच्छा, हाँ। आप दिल्ली रहते थे, वहीं से आपको माउंट आबू का ऑफर मिला।
2: जी मैं 95 के अंदर में मेरे को बुलाया गया था, मजदूरी के लिए बुलाया था मेरे को, क्यों हमें सेंटर पे जानकारी थी ना, काम करता था मैं सेंटर, मजदूरी करते करते ही मैं जो है दिल्ली के अंदर में छोटी मोटे काम भी लेता था मैं, छोटा मोटा पलस्तर का काम ज्यादा लिया हूँ मैं, पलस्तर चिनाई का नहीं जानता था, मैंने पलस्तर बहुत काम किया मैंने
1: जी।
2: तो पलस्तर करते करते मैं ठेकेदारी का शौक मेरे को हुआ थोड़ा, तो ठेकेदारी का लेन में मैंने ठेकेदारी लेन पकड़ी। तो उस वक्त क्या होता है, मैंने काम किया लेकिन मैं थोड़ा ठेकेदार ने, मालिक ने मेरे को पैसे नहीं दिए, उसके बाद फिर मैंने वहां से काम छोड़ दिया, फिर मैं उल्टा वही मजदूरी करने लग गया था, कहने का मतलब।
1: अच्छा।
2: पार्टी ने पैसे नहीं दिए थे मेरे को, तो फिर मैं मजदूरी करने लग गया, फिर मैंने सोचा चलो मेरे को पार्टी सही नहीं मिली है, फिर मैं जो है 1992 के अंदर में मजदूरी करते करते कुछ ठेकेदार के पास काम कर रहा था मैं, तो उस वक्त मैंने देखा मैं कि मैं मजदूरी तो कर ही रहा हूँ और मैं कि अपने यहाँ पर जो है शकुंतला हमारे जो है छोटी सी थी पहले गोद में।
1: अच्छा, आपके बच्चे हो गए थे।
2: हाँ बच्चे हो गए थे, शकुंतला 1990 के अंदर में जो है उससे पहले, हाँ बड़ी थी थोड़ी, और संजू 1990 के बाद हुआ था ये।
1: अच्छा, बेटे का नाम संजू और बेटी का नाम शकुंतला।
2: जी
1: दो बच्चे।
2: हाँ, दो बच्चे थे। फिर मैं वहीं काम करता करता मेरे पास में जो है एक मजदूर काम करता था पहले, उसका नाम था रामचरित भाई जी। तो वो मेरे साथ में घिसाई का काम करता था, पत्थर मार्मल घिसाई की
1: जी।
2: तो उसने एक दिन मैं उसको देखा सफेद कपड़े में वस्त्र में, वो जो है देख रहा, ठंडी का मौसम था, कॉल ओढ़ करके मैंने देखा ये बंदा सफेद सफेद जो है ये ओढ़ करके कहाँ जा रहा है ये। तो उस दिन मैंने उसको मिला और उसको मैंने पर्चे करवाए भाई मैं कि तू कहाँ जाता है, कि यार घनश्याम जी मैं तो यहाँ प्रोग्राम में जा रहा हूँ सत्संग में। तो मेरे को सत्संग का जैसे उसने नाम लिया तो मेरे को बहुत रुचि हो गया सत्संग में, तो मैं कौन सी सत्संग में जाते हो आप लोग, मैं कि हाँ जाता हूँ सत्संग में, आप चलना का भी टाइम मिले तो आपको, उसने ऐसे जवाब दिया मेरे को। तो मैं कि यार मेरे को सत्संग का तो बहुत शौक, गाने बजाने का शौक था मेरे को, अनुभव इस चीज़ का उन्होंने बताया, बोले कि आपको वहाँ आना है। तो इस तरीके से मेरे को जो फिर वो ब्रह्मा कुपने का पर्चे मेरे को वहाँ से
1: मिला जी,
2: रोहिणी मधुबन चौक सेक्टर 8 से
1: जी।
2: हाँ, तो मैं ऐसे ही, मेरे को सत्संग का गाने का बजाने का तो बहुत शौक था, तो मुझे सत्संग का नाम सुना तो मैं रुचि से ऊपर मैं चढ़ गया 3rd मंजिल के ऊपर में भाई, मेरे को चलो बहुत अच्छा, मैं कुछ न कुछ गाऊंगा बढ़ाऊंगा तो अच्छा लगेगा मेरे को भी, उनको भी गाने बजाने में शौक था ना मेरे को
1: जी।
2: तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी में अंदर में जा करके वहाँ जो एक रूम था, तो वहाँ जो है तो जो है वहाँ जा करके देखा भैया तो घुस गया, मैं डरा मैं कि भाई अंदर में कोई भी नहीं है तो मैं कैसे जाऊँ अंदर में, ऐसे मेरे को अनुभव हो रहा। फिर वो भाई बोला घनश्याम भाई आ जाओ बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ, मैं बैठ गया चुपचाप वहाँ, तो मैंने काफ़ी देर तक बैठा रहा, लाल लाइट जला दी थी, मैंने सोचा ना तो कोई हारमोनी भी नहीं, कोई ढोलक नहीं, कोई जरा कुछ भी नहीं है, बाजा वाजा, फिर मैं कहीं बैठ के करूँगा क्या मैं, ऐसे मेरे को फील हो रहा था। तो भाई भी चुपचाप बैठ गया, बहन आई आकर के वहाँ जो है सफ़ेद सी गद्दी बैठ बना रखी थी उस पर बहन आकर के बैठ गई और वो भी कुछ नहीं बोले। मैंने क्या, फिर बहन ने भाई को पूछा, बोले कि भाई कौन है, कि बहन जी ये मिस्त्री है, बोले कि ये हम एक साथ में काम करते थे, इसको सत्संग का भजन का बहुत शौक था इसलिए मैंने इसको यहाँ लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा। फिर वो तो बहन जी मेरे को जो है बिठाया, फिर वो योग में भाई जी आ गया उसको बिठा दिया और मेरे को बोला कि इसका कोर्स वगैरह करवाएं। तो वहाँ पर जो है मेरे को बाबा का पर्चे मिला, कहने का मतलब
1: जी।
2: हाँ, तो वहाँ पर्चे मिलते ही फिर मेरे को जो है सारी ज्ञान की जानकारी हुई और सत्संग के अंदर में भी मेरे को रुचि थी, तो मैंने सोचा चलो मैं कि कुछ मेडिटेशन योग के बारे में मेरे को जानकारी दी तो मेरे को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो मैं फिर मैं कुछ समय यहाँ चलता रहा, ज्ञान में आता रहा जाता रहा, बाबा से प्रोग्राम बनाया। तो 95 के अंदर में जैसे मैं वहाँ मकान बना लिया दिल्ली के अंदर मैंने, दिल्ली खानपुर में।
1: अच्छा, आपके खुद का?
2: हाँ।
1: अच्छा,
2: वो भी मैंने मजदूरी करके, मेहनत कर करके और जैसे तैसे करके छोटा सा प्लॉट लेकर के मकान बना लिया था वहाँ। तो मैं मधुबन चौक से फिर वहाँ शिफ्ट हो गया था मकान के अंदर में, पर वहाँ बाबा से मिलने के लिए यहाँ चला आया था मैं 1992 के अंदर में।
1: जी।
2: तो 1992 में यहाँ आया तो बहुत बड़ा विस्तार देखा मैंने, बाबा से मिलन मनाया। तो यहाँ पर मैंने देखा मैं कि यह तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया लगा मेरे को, बाबा से मिलने का अनुभव हुआ। बाबा ने बहुत अच्छा अच्छा अनुभव भी करवाया मेरे को यहाँ पर आने के बाद में। और वहाँ से फिर मेरे को जैसे ही मैं भगवान का परिचय हुआ, और भगवान के परिचय होता ही मेरे को जो बहुत अच्छा अनुभव हुआ, मैं भक्ति मार्ग के अंदर में भी भजन गाया करता था एक, कि भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं मेरे सच्चे दिल से लगन लगी। तो ऐसे ऐसे मैंने बहुत गाया था पहले भक्ति मार्ग के अंदर में, तो मुझे ऐसा लगा मेरे कुछ प्राप्ति हो रही है। तो ऐसे करके मैं वापस दिल्ली चला गया, मैं दिल्ली गया यहाँ प्रोग्राम करके देख करके। फिर मेरे को वहाँ सेंटर पे काम मिल गया था, तो सेंटर पे काम किया मैंने, तो वहाँ बहन जी ने मेरे को जो है काम के लिए बोला गया कि बोले घनश्याम भाई आप अच्छा काम करते हो। फिर मधुबन से यहाँ से फोन आया कि बोले आपको जो है कैसे एडजस्ट करके वहाँ जाना है मधुबन में। मैंने कहा मैं क्या दीदी, मैं तो अभी तो दिवाली है, अभी क्या करूँगा जा करके वहाँ। बोले कि नहीं, कि आपकी लाटरी लगी है बाबा के घर में जाने की, आपको काम के लिए बुलाया गया, 3 मिस्त्री आपके साथ में लेके जाओ। और तब से मैं यहाँ आया हूँ, कहने का मतलब तब से मेरा आना जाना हुआ, तब से मेरे को यहाँ बुलाया गया। तो मैं ज्ञान सरोवर में काम शुरू किया मिस्त्री का लाइन का, ठेकेदारी लाइन में मैंने ठेका लिया हुआ था वहाँ पर भी मैंने, तब से मैं ठेकेदारी लाइन में बरोबर आना जाना लगा रहा मेरा। फिर 98 में मैं बरोबर यहाँ आकर के रहा हूँ,
1: स्थायी तौर से रहना शुरू कर दिया आपने यहाँ पर।
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: अपने परिवार को भी ले आए?
2: परिवार को भी लेके आएगा, परिवार को मैं जो है एक साल के लिए नहीं लेके आया था, क्योंकि वहाँ पर भी घर था और यहाँ जो है अपने मैं खा रखूंगा मुझे इसको। तो बहन जी ने तो बोल दिया था मेरे को, बोले के घनश्याम भाई आपको जाना है जाना है। फिर मैंने कहा ठीक है दीदी कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। मैं तो मेरे को अच्छा लगा, तो मेरे को ऐसा लगा। फिर मैंने बहन जी को एक बार ऐसे ही प्रोग्राम था, बोले घनश्याम भाई आपको मधुबन जाना है,
1: आज इस तरह आप यहाँ आ गए।
2: हाँ।
1: और यहाँ आपको काम मिला तो फिर आप यही रह गए?
2: हाँ, मैं यहाँ आ गया हूँ काम के लिए, और यही मैं दिल्ली में भी इधर काम करता हूँ, मैं वहाँ भी मैं काम कर लूंगा, वहाँ रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी, मैं भगवान करी देगा खैन खैन मेरे लिए
1: जी।
2: और मैं जैसे ही मैं यहाँ आया तो मेरी रहने की व्यवस्था भी किराए से रहा 2-3 साल, उसके बाद में फिर छोटा सी जगह यहाँ रहने की मिल गई मेरे को, उसमें एक झोंपड़ी बना दी, कमरा बना लिया था। कमरा रहने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी थी, मैं चलो अभी तक थोड़ा थोड़ा करके बनाता रहूँगा। तो काम मिलता रहा मेरे को, काम करता रहा, और ऐसे ऐसे बनाता बनाता फिर मैंने एक रूम बनाया, फिर 2 रूम बनाया, ऐसे करते करते मेरा रहने की व्यवस्था थोड़ी सही हो गई है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनकी शादी की चिंता लग गई, फिर और ज़्यादा कमाने का शौक हो गया, भाई शादी है बच्चों की तो पैसे तो कमाना पड़ेगा। मैंने यही किया, भगवान से पहले भी यही कहता, भगवान मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, मेरे को इतना दो जिससे मेरा परिवार चलता रहे। तो इस तरीके से मैं ये धंधा बिजनेस करता
1: जी,
2: काम
1: तो
2: धंधा करता।
1: इस तरह आपने ठेकेदारी भी शुरू कर दी
2: जी।
1: तो ठेकेदारी करते थे उसमें ज्यादा फायदा मिला, या मिस्त्री थे तब ज्यादा फायदा मिला, या मजदूरी करते थे तब ज्यादा फायदा था?
2: बिजनेस तो बिजनेस ही होता, ठेकेदारी ठेकेदारी होती है। ठेकेदार में क्या होता है कि कुछ 2 कारीगर लगा देता था मैं, तो 2 कारीगर भी ठेकेदारी में, मैं खुद भी कारीगर था ना, तो मैं खुद भी कारीगरी का काम करता था और मिस्त्री भी लगाता था मैं
1: जी।
2: हाँ, जितना वो मेरी मजदूरी निकालता था, 2 मिस्त्री मजदूरी, मैं भी मजदूरी करता था। तो मैं ऐसे मान के चलो मेरी अगर 600 रुपये की हाजिरी मिल रही है, 300-300 रुपये दोनों मिस्त्री निकाल दिया, तो मेरी डबल हाजिरी मेरे को होती थी कहने का मतलब। तो उसी के हिसाब से मेरे को जैसे जैसे आमदनी होती गई, मेरे को पता लगा भाई चलो मेरे कुछ नफा हो रहा है ठेकेदारी लेने के अंदर में। लेकिन मैं ठेकेदारी होकर भी मैंने मजदूरी की है, मैं कहा चलो कोई नुकसान घाटा होता तो मैं बरोबर हूँ, किसी को कोई कर जाना हो मेरे ऊपर में।
1: जी जी जी। तो आपने अच्छा सोचा और आप मेहनत करते रहे
2: जी,
1: ऐसे नहीं ठेकेदारी करके ऑर्डर दे के आपने आराम किया, वो नहीं किया,
2: वो नहीं किया मैंने।
1: तो आज आप संपन्न हो गए आप, मतलब हाँ। हर प्रकार से कोई तकलीफ नहीं है,
2: कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। और मैं तो यही भगवान जिससे यही दुआ करता हूँ कि जो मेरी लाइफ मैंने अपने सेट की है, भले इतना बड़ा ठेकेदार तो नहीं बन पाया हूँ मैं, लेकिन क्यों तो मैं बड़ा ठेकेदार इसलिए भी मानता हूँ मैं कि चलो मेरे कारोबार मैंने जो किया है, बच्चों की रख देख की, रक्षा की, पढ़ाया लिखाया, प्रोबर कर दिया, शादी ब्याह कर करके बच्चों को अपने कंप्यूटर लाइन में डाल दिया, उसको वो भी अपना धंधा बिजनेस कर रहा है कहने का मतलब, बच्ची है तो बच्ची की भी बढ़िया शादी कर दी, तो सभी लोगों ने बड़ा तारीफ की, बोले बहुत अच्छा काम किया आपने, एक मिस्त्री लाइन होकर के ठेकेदारी लेन होकर के आपने जो इतना अच्छा बढ़िया शादी की है, लोग बाग आए दूर दूर से हमारे गाँव से शहरों से आते थे, उनने भी अच्छा अनुभव किया। बोले फिर एक बात ये भी था, यहाँ आने के बाद में क्या होता है, सबको अच्छा लगा, माउंट आबू के अंदर में देखा भाई ये तो अच्छी जगह पर रह रहे हो आप, तो स्वर्ग में रह रहे हो, यहाँ ये अनुभव करते थे वो लोग।
1: जी जी हाँ। जी घनश्याम जी, आपसे और भी हम सुनेंगे। एक ब्रेक लेकर के पुनः आपसे रूबरू होंगे, तो कहीं भी जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो आइए सुन लेते हैं एक गीत पहले, उसके बाद हम फिर से घनश्याम जी के अनुभव की ओर बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जगाता हर हाल में अपने कुटुंब का आत्मविश्वास, नहीं डिगने देता कभी किसी का सम्मान, ऐसे पुरुषशाली पुरुष को मेरा मन देता हर पल सम्मान, मेरा मन देता हर पल सम्मान। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामे जिंदगी, और सलामे जिंदगी में घनश्याम जी बने हुए हैं। घनश्याम जी के काफी अनुभव हमने सुने हैं, और घनश्याम जी जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पर आपको काम मिला और यहाँ आपको बड़ा अच्छा लगा और यही सेट हो गए, आपके परिवार वाले भी आए तो बड़े खुश हुए। कितने समय बाद आपके परिवार वाले आए आपके आने के बाद?
1: हाँ, मेरे जो माता पिता जो है वो 2001 में आए थे।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: जी जी जी,
1: 2001 में आए थे, पहली बार आए थे। उन्होंने देखा कि भाई आप यहाँ तो अपनी समाज भी है कि नहीं, अकेले खा रह रही हो। मैंने कहा मुझे समाज से क्या, मेरा जो है बिजनेस है, प्रोग्राम है, जो भी है, मैं यहाँ जो है अच्छा काम चल रहा है मेरा, बढ़िया, मेरे को जहाँ मजदूरी मिलती है, जहाँ दो पैसे मिलेंगे भाई, मेरी घरबार है सब।
0: जी जी। हाँ, तो सभी खुश हो गए।
1: खुश हो गए थे वो, बोले बड़ी अच्छी बात है, ये तो मुझे अच्छा लगा। और जब दो पैसे मैं उनको भी देता था, मम्मी पापा को भी यहाँ से, तो वो भी अच्छा है, बढ़िया, मेरे बेटा वहाँ से पैसे भेजता है, माउंट आबू से आते तो देखते हैं कहाँ से पैसा है, माउंट आबू से डाकिया देखता था ना पैसे भेजता था यहाँ से, तो कहते थे भाई कहाँ से पैसा है, माउंट आबू कौन रहता है, तो उनकी बड़ी तारीफ करते थे, बोले तुम्हारा बेटा माउंट आबू रहता है वहाँ।
0: जी
1: हाँ जी, तो इस तरीके से वो लोग भी काफी बोले कि वो तो स्वर्ग में रहते हैं, वो देखते ना भाई, देखने वाले जाते हैं वो तो स्वर्ग में रहते, ऐसे कहते थे मेरे को।
0: पूरे परिवार को अच्छा लगा?
1: हाँ, पूरा परिवार को अच्छा लगा।
0: अच्छा, और फिर ये आपने जो हारमोनियम बजाना यहीं पे प्रैक्टिस की क्या?
1: हाँ, हारमोनियम बजाना, भजन, सत्संग कीर्तन तो मैं पहले से भी गाता था, लेकिन अपने जो है ना किसी की मांग मूंग करके, जैसे प्रोग्राम होता था ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे सीखा तो इतना नहीं था, लेकिन मेरे कैचिंग करने की पावर अच्छी थी कि कैसे मुझे बजाना है, तो उस तरीके से मैं राग में राग मिला करके कुछ भजन गाना सीख गया था मैं, तो इसलिए से उनको अच्छा लगता था सभी को। तो फिर बाद में तो क्या आता है कि जैसे मैं अपना भी ले लिया था।
0: अच्छा, हारमोनियम आपने
1: अपना ले लिया था, फिर यहाँ आकर के काफी उसकी ट्रेनिंग भी दी, काफी सीखा भी था मैंने कुछ।
0: जी
1: हाँ, सीखा भी था, तो इसलिए से भजन कीर्तन का तो मेरे को बहुत पहले से ही शौक था, इस चीज के बारे में जानकारी थी मेरे को। और यहाँ पर अभी फिलहाल जो है सब चीजों से, नशीली पदार्थों से तो मैं बहुत पहले से ही मुक्त था, कोई खाने पीने का मेरे को कोई चीज का शौक ज्यादा बिल्कुल भी नहीं था। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू मैंने बचपन से ही नहीं पिया, वैसे सेवा तो बहुत करता था मैं।
0: जी। हाँ। लेकिन देखिए, आपने तो ऐसा कार्य किया जैसे मजदूरी वर्ग से आप जुड़े हैं, और मजदूरी वर्ग में ही कहते हैं कि कोई बीड़ी सिगरेट जैसे नशे के आदि होते हैं, तो आपके साथ जो काम करते थे वो बीड़ी सिगरेट पीते थे?
1: पीने वाले बहुत अतराज करते थे, बोले कि यार तू दिन भर लगा रहता है धंधा में, काम के अंदर में, हमको भी रेस्ट नहीं देने देता है, बीड़ी सिगरेट पीने से हमको रेस्ट मिल जाता है, लेकिन भाई मैं कि मेरा काम में इन चीजों का शौक नहीं है मेरे को, मैं नहीं, तू तेरा काम है, भले तू रेस्ट कर ले, मैं तो मेरा काम करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू और ये दारू पानी बिल्कुल भी मेरे को बचपन से ये सब चीजें लागू नहीं था मेरे, वैसे काफी कोशिश की लोगों ने।
0: अच्छा।
1: संगत तो हमारी कारीगर लेन ऐसी है कि इसके अंदर में कोई बचता नहीं इन चीजों से।
0: जी।
1: हाँ, क्योंकि लेन ही ऐसी है, तो इसलिए इसके अंदर में कहते हैं भाई कि हम थक जाते हैं तो ले लेते हैं ये है, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी के अंदर में, मैं भले दूध पिया हूं थक गया तो मैं औरों को भी मैं यही कहता था भाई कि नहीं भाई कि ये सब चीज अच्छी नहीं है, दारू बीड़ी सिगरेट। वो कहते हम तो भाई के मजदूरी दिन भर करते थक जाते हैं तो थोड़ा बहुत पे के ले लेते हैं, तो इस तरह के काफी लोग मेरे को ऐसे कहते तो आप भी ले लिया, मैं कहता नहीं भाई मेरा है, मुझे पसंद नहीं है ये सब चीजें, मैं ऐसे देखो सेवाएं बहुत की है मैंने, लाला के दी लोगों को, लेकिन मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, मुंह में नहीं डाली।
0: जी जी जी।
1: हाँ,
0: लोगों ने मंगाया तो आपने
1: लाके दी है मैंने, लेकिन मैंने इस चीज को इससे बहुत दूर रहा हूँ। देखो बड़े बुजुर्ग गांव के अंदर में क्या होता था, वो हुक्का पीते थे, बोले भाई ये हुक्का के लाग रख के लाओ, इसके अंदर में इसको जलाओ, फलाना करो, ढिकड़ा करो, लेकिन मैं करता लगता, लेकिन अपने कभी भी मैंने इसको मुंह के नहीं लगाया इन चीजों को। बड़े बड़े बुजुर्गों का काम क्या था, यही था मेरे को, और कोई चीज का शौक नहीं था बिल्कुल, कमाने के अलावा।
0: जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा है, आपने कमाने पर फोकस दिया, तो अपने बच्चों का भी आपने जीवन बनाया, उनके जीवन को भी सवारा। और आप दो लाइन सुनाएंगे, आपको गीत भजन का शौक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता बंधु सुने।
1: मैं तो बचपन में जो एक भजन गाया करता था कि भगवान परमात्मा पिता को हमने बहुत याद किया, और सत्संगों में, कीर्तनों में, भजनों में भी गाया हमने, और भगवान के बारे में यही कहा कि मैंने पहले भक्ति मार्ग के अंदर में भजन गाया करता था, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं मेरे सच्चे दिल से लगने लगी, पहाड़ों में मिले, मंदिर में मिले, फूलों में मिलेंगे कहीं न कहीं मेरे सच्चे दिल से लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, ये मैं भक्ति मार्ग के अंदर में बहुत गीत गाया करता था, कहने का मतलब। तो मेरे को इस चीज़ के, फिर मेरे को जब भगवान का कुछ मेरे को अच्छा लगा तो फिर मेरे को तमन्ना थी, जो चाहत थी मेरी भक्ति मार्ग के अंदर में जो किया था वो मेरे को प्राप्ति यहाँ माउंट आबू में आकर के अच्छा लगा मेरे को हुआ, यहाँ कहने का मतलब ये।
0: जी जी जी।
1: हाँ, और मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा जीवन मैंने अच्छा बनाया यहाँ। मैं तो कहता हूँ मैं आज मेरे जीवन को देखते ना लोग तो कहते हैं बोले यार घनश्याम जी आप हम गवर्नमेंट जॉब वालों से बहुत अच्छे विचार है आपके, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई को देखने के हिसाब से लोग कहते हैं। अब भी मैं देखता हूँ, मैं जब भगवान का मैं मेरे शुरू से ही मेरे जेंटलमैन बनने का ज्यादा शौक था, मैं हर मैं जवानी के अंदर में भी बिल्कुल टिप टॉप बनकर रहता था कहने का मतलब। तो लोग कहते थे बोले कि यार ये मिस्त्री लाइन में के अंदर में हम तो इसको इंजीनियर समझते हैं, कोई कहते हैं ये तो कोई अफसर है, कोई क्या ऐसे शुरू से मेरी पर्सनैलिटी मेरी शुरू से अच्छी थी।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी उम्र 63 वर्ष है, 63 वर्ष का सफर जो जीवन का सफर है वो कम नहीं होता, इसमें आपने विशेष क्या अनुभव किया?
1: विशेष अनुभव मैंने ये किया कि जीवन के अंदर में कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन कभी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। मेरे अंदर में कई परिस्थिति आई, कर्जा भी हुआ, कई समस्याएं हुई मेरे सामने आई, लेकिन मेरी एक नीत थी कि मुझे देना है तो देना ही है, कमा के देना, कैसे किसी के अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं उसको ये नहीं सोचता हूँ कि ले इसका पैसा ले मेरे पास है ना कोई बात नहीं आज नहीं तो कल दे, नहीं मुझे इसका कर्जा उतारना तो उतारना ही है कैसे भी करके। तो हिसाब भी मेरा क्लियर, लेना देना कोई किसी को ज़्यादा मतलब वो ये नहीं कहता था कि भले भाई आज दूंगा कल दूंगा, नहीं जो भी कहता था मुँह पे कहता था मैं कि भाई इतने दिन के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। तो मेरा लेने देने के अंदर में भी क्लियर अच्छा था, क्योंकि जब कमाने लग गया तो मेरे को यह था कि भाई चलो ठीक है मैं कमा किस ले रहा हूँ, अच्छा खाने पीने के लिए, अच्छा रहने के लिए, और कोई कर्जा लिया दिया तो उनका लेने देने के लिए करना है मेरे को। तो इस तरीके से मेरी जो आगे की सफर यात्रा रही।
0: जी जी। हाँ, तो आज के जो हमारे सीनियर सिटीजन पुरुष वर्ग सुन रहा है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं तो यही कहूंगा आजकल के जमाने के अंदर में हमारे जो अच्छे अच्छे जो है 60 वर्ष के बाद में रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनके संस्कार ऐसे बन जाते हैं वो और उनको सुख मिलता है सारे जीवन, तो उन्होंने जो है अपने गवर्नमेंट को जॉब में दे देते हैं वो लोग, और उसके बाद में उनकी संगत ऐसी हो जाती है जो जीवन जो बचता है वो जीवन को भी जो है नरक के समान बना देते हैं, खाने पीने का शौक और कोई किसका शौक हो जाता है इन लोगों को। और ये जीवन जो ऐसा है कि बार बार नहीं मिलता है इंसान को, ये कहते हैं, लेकिन अपने जीवन को जो है बिल्कुल इन चीज़ों से नशीली पदार्थों से और इन चीज़ों से अगर अच्छे तरह से अपने खाने पीने में और चीज़ में शौक रखो, लेकिन नशीली पदार्थों से अगर आप मुक्त रहोगे ना, अब मैंने देखो मेरी लाइफ के अंदर सभी ये कहते हैं यार इस जीवन में तुमने देखो इस समय में जो है खाना पीना आप लाइन के अंदर में नहीं कर रहे हो तो बोले कि आप कैसे रह रहे हो कि इसके अंदर में, लेकिन हमने ये क्या नहीं भाई हम बुराइयों से बिल्कुल भी नफरत करते हैं, हम अच्छी चीज़ को अपनाते हैं, बुराइयों को बिल्कुल भी हमारे जीवन के अंदर में धारण नहीं करते हैं। और मेरा जीवन का यही लक्ष्य है कि आप सभी भी श्रोताओं से यही कहना मेरा कि इस चीज़ों से आप दूर ही रहो तो अच्छा ही रहेगा, जीवन कुछ समय नहीं अच्छा कट जाएगा आपका।
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर मैसेज भी आपने दिया है और आपने बहुत अपना कीमती समय दिया रेडियो मधुबन और सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को, और आपने अपने जीवन के अनुभव सभी के साथ शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: धन्यवाद।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सलाम जिंदगी, और सलाम जिंदगी कार्यक्रम में घनश्याम जी हमारे साथ बने हुए थे। घनश्याम जी बेरवा, आप आबू तलेटी में रहते हैं, आप वैसे निवासी है सवाई माधोपुर राजस्थान के, लेकिन आपको 35 वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं या आबू में रहते हुए, और आपके अनुभव काफी अच्छे रहे। कैसे आपने तीसरी की पढ़ाई छोड़ करके आपके माता पिता ने आपको काम पर लगा दिया, मजदूरी पर लगा दिया, और साथ ही साथ अपने छोटे भाइयों को रखना, फिर भी आपने अपने दिमाग से अपने विवेक से आप आगे बढ़ते गए, मजदूरी करते गए, मजदूरी से आप मिस्त्री बने, मिस्त्री से आप ठेकेदार बने, साथ ही साथ आपको अध्यात्म में गहरी रुचि भी है और हारमोनियम वाद्य वगैरह भी बजा लेते हैं, अच्छे से गीत भी सुना लेते हैं। तो ऐसे भारत देश के बेटे को, ऐसे भारत देश के नागरिक को रेडियो मधुबन सलाम करता है। प्यारे भाइयों, अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी श्रोताओं को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: श्रोताओं, आज की शाम और शाम ढल चुकी है, अंधेरा हो चुका है, परंतु हमें मालूम है कि सूरज फिर उगेगा, उम्मीद फिर जगेगी और इस संसार में रोशनी फिर से आएगी, ये अंधेरा कायम नहीं रहेगा। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका समय हमेशा का दोस्त शरद, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। हम इस बार लेकर आए हैं आपका फेवरेट शो जुनून। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी 107.8 FM पर हम लेकर आते हैं एक फिर से जुनूनी को, जो समाज में बदलाव करना चाहता है, परिवर्तन की बात कर रहा है और एक नव चेतना की बात कर रहा है। वो युवा है, वो अधीर है, लेकिन फिर भी उसमें एक जुनून है और वो आगे बढ़ चुका है अपने जीवन को बदलने और दूसरे अपने आस पास के अपने भाई बहनों के जीवन को बदलने। तो ऐसे ही जुनूनी के साथ मैं आज राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर से हैं हमारे साथ कोमल। आइए जानते हैं कोमल की कहानी। कोमल, आप हमारे साथ हैं और फिर से हमने बात शुरू की है हमारे प्रोग्राम जुनून में। फिर से कुछ दिनों बाद हम जुड़े हैं और लेकर आए हैं हम सबका फेवरेट शो, जो हमें भर देता है चेतना से, उम्मीद से, नव जागरण की चेतना से, जीवन को बदलने और इस समाज को नई दिशा देने के रास्ते पे चलने की उम्मीद देता है हमारा कार्यक्रम जुनून। और जुनून में आप हैं हमारे साथ इस बार। तो कोमल, बताइए अपने बारे में कि क्या आपकी कहानी है और आप क्या करते हैं उदयपुर में।
2: सबसे पहले नमस्ते सबको और थैंक यू सो मच, मुझे ये मंच पर आज मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सबको, मेरा नाम कोमल है और मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। और मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि मैं बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ काम करूं, और जब उनके साथ कोई हिंसा होते देखती थी तो दिल को बहुत दर्द होता था। और उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं इनका कैसे मदद करूं। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों से मिलती गई, अलग अलग एक्सपीरियंस आते गए कि किस तरीके से उनका सॉर्ट आउट करें। तो सबसे पहले तो मैं उनको एक ऐसा कम्फर्ट एरिया उनको प्रोवाइड करवाती थी जहाँ उनको लगे कि हाँ, यहाँ पे मैं अपनी दिल की बात, यहाँ मैं अपना दर्द शेयर कर सकती हूँ। और उनको मैं इतना स्पेस देती थी, इतना अच्छा एनवायरमेंट देती थी कि उनको ये नहीं लगता था कि मैं उनकी सीनियर हूँ। वो मुझे अपनी एक बड़ी बहन मानते थे और हर चीज शेयर करते थे, और मैं अपने लेवल तक जो उनको सजेशन दे सकती थी, सलाह दे सकती थी, वो मैं अपने लेवल पे देती। उसमें मैं कोई लीगल एडवाइस जैसे वकील का है, ये सजेशन पहले उनको नहीं देती। देन उसके बाद में मैं उदयपुर की एक विकल्प संस्थान है जो बहुत सालों से महिलाओं और बच्चियों के लिए काम कर रही है और उनका बहुत सपोर्ट करती है एजुकेशन में, उनके मेंटल हेल्थ में, या उनको कोई भी लीगल एडवाइस की जरूरत होती है वहाँ पे उनका बहुत सपोर्ट करती है। तो उसमें कुछ कुछ ऐसे स्टोरीज है जो मेरे लिए इंस्पायर भी हो सकती है, और जहाँ पे विकल्प ने मदद किया है वहाँ पे भी उनमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो मैं कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी इस मंच पे।
1: हम सुनेंगे उन कहानियों को और उन बातों को, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी क्या है, कोमल की कहानी क्या है।
2: मेरी कहानी तो यही है कि मैं अभी सेवा का काम करती हूँ। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेती हूँ, न मैं सरकार से कोई मदद लेती हूँ। मेरे कुछ वेल विशर्स हैं जो मेरे काम को देखते हैं और उनको अच्छा लगता है, वो मेरा सहयोग करते हैं। और हम लोग जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में भी मदद करते हैं। कुछ गरीब ऐसी फैमिली होती है जिनको उनके बच्चे जो है बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देते हैं, उनके लिए हम राशन की व्यवस्था करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बारिश में आते हैं बिना स्लीपर्स के, गर्मी में आते हैं उनको हम लोग स्लीपर्स पहनाते हैं। सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में बच्चे नंगे बदन स्कूल में आते हैं तो वहाँ पे भी हमने कुछ मुहिम चला के उनको स्वेटर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि भारत में हम लोग गरीबी नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि जब तक वो सोच नहीं है कि मेरा पैसा मेरे तक, ये सोच नहीं बदलेगी तब तक भारत में गरीबी खत्म नहीं हो। लेकिन मैं मेरे लेवल पर, हमारे मुहिम के लेवल तक या हमारी टीम के द्वारा हम लोग जितना कर पाएंगे उतना हम लोग करेंगे, ये मेरा स्टोरी है।
1: नहीं, ये आपकी कहानी में तो बात है कि कोमल कैसे तैयारी, कोमल में ये बात चेतना कहाँ से आई है, एक समाज परिवर्तन की बात करने की बात जो है, ये आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई।
2: आज से 3-4 साल पहले मैं बस्ती में गई थी लड़कियों से बात करने के लिए कि कैसे मैं उनको कनेक्ट कर सकती हूँ। तो वहाँ पे एक दादी से मिली थी मैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिनके बेटे की डेथ हो गई, उनकी जो बहू थी वो अपने बच्चों को लेके पक्के मकान में रह रही थी और उस

0: टाइम पे मैं गई थी, बारिश का मौसम था, और वो जो दादी थी वो झोपड़ी में रह रही थी, उसके जो सामान जो था वो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ था। मैंने उस दादी से बात किया था, उस वक्त मुझे लगा था कि मुझे इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फील्ड में उतरती गई, जैसे जैसे मैं बस्तियों में जाती गई, मुझे लगा कि मैं दुनिया में भेड़ चाल चलने के नहीं आई, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे मैं इन लोगों की मदद कर सकूँ। और धीरे धीरे मेरे अंदर वो कल्पनाएं जागने लगी कि मैं अलग अलग जगह जाके लोगों की मदद करने लगी, लोगों से जुड़ने लगी, और धीरे धीरे मेरी मुहिम में लोग जुड़ने लगे, लोग मेरी मदद करने लगे कि आप ये काम कर रहे हैं तो आप मुझे सहयोग दीजिए। तो धीरे धीरे ये जो भावना, ये फीलिंग जो मेरे अंदर आई थी, उसको थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि पहले जब मैं लोगों से कपड़े कलेक्ट करके लाती थी, घर पे रखती थी, तो मम्मी वगैरह डांटते थे कि कहाँ से लेके आई, कहाँ इनको कलेक्ट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मेरा परिवार भी मेरे साथ जुड़ता गया। आज मेरे परिवार का एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आज मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बैक सपोर्ट बन चुका है कि वो मेरे हर समय मेरी मदद करता है, मेरा सहयोग करता है। आज कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले पापा मुझे व्हीकल की चाबी दे देते, फोर व्हीलर की, कि ये गाड़ी लेके जाओ, कहाँ तुम्हें किसकी जरूरत है वो लेके जाओ। और मेरा पूरा परिवार मेरे पीछे खड़ा है, मेरा सपोर्ट करता है, और इस समाज ने भी, और बहुत सारे एनजीओ से जिन्होंने मुझे मंच पे सम्मानित भी किया है, बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो ये मुहिम मैंने स्टार्ट किया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंचे, और लोग मेरा सहयोग करें, ताकि मेरा जो ये मुहिम मैंने स्टार्ट किया है वो कभी स्टॉप नहीं हो पाए।
1: बहुत
0: ये
1: बढ़िया
0: मेरा
1: दर्शकों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, और फ्रीक्वेंसी है 107.8 FM, जो कि है माउंट आबू की वादियों से। और आप सुन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम जुनून को रेडियो मधुबन के एप्लीकेशन पर भी, तो जाएं और डाउनलोड करें रेडियो मधुबन। तो हमारे साथ हैं आज हमारी इस कहानी में जुड़ने वाली कोमल, और कोमल बता रहे हैं कि अपने एक जुनून को, कि वो कैसे थे, पुराने सामान, पुराने कपड़े लोग घरों से लेते हैं तो उनके काम में नहीं आ रहे, और लेकिन वो किसी और व्यक्ति के लिए उनकी आवश्यकता को पूरी करने का साधन बन सकता है। तो ये जो शुरुआत है कोमल, इसमें आप अभी क्या कर रहे हैं और कैसे इसको करते हैं, क्या चुनौतियाँ आती हैं?
0: अभी चैरिटी वाला अच्छा चल रहा है, चुनौतियाँ पहले बहुत आई थी, क्योंकि उनको डीप एरिया में जाना, ले जाना, लोगों से कनेक्ट होना, और पहले लोग मेरे से बहुत कम कनेक्ट हो रहा था, क्योंकि मैं जहाँ पे बच्चे देखती थी वहां पे मुझे लगता था मुझे कपड़े देने, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मेरी फैमिली में इतने कोई छोटे बच्चे नहीं है, तो लोगों तक मैसेज पहुंचाना पड़ता था कि मुझे कुछ कपड़ों की जरूरत है, जूतों की कपड़े जरूरत है। तो बहुत चुनौतियां भी आई थी, कुछ फाइनेंशियल भी चुनौतियां आई थी कि कैसे उस एरिया में पहुंचा जाए। उसके लिए हमें व्हीकल भी करना होता था, व्हीकल के लिए मैं उस टाइम पे जॉबलेस भी थी। तो उन चुनौतियों से मैंने डर कर अपने मुहिम को स्टॉप किया, मैंने कंटिन्यू किया, मैंने कहा मेरे से जितना हो पड़ेगा करूंगी। लेकिन अभी वो चुनौतियां सारी हट चुकी है, और अभी मेरे साथ बहुत सारा मजमा जुड़ चुका है, बहुत सारा टीम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और लोग मेरे से सामने से जुड़ना चाहते हैं कि आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ इस मुहिम में पार्ट लेना चाहें।
1: जी, तो ये कैसे चलता है ये कार्यक्रम, इसमें कैसे आप जरूरतमंद की मदद करते हैं और कैसे उनको चिन्हित करते हैं, कैसे ढूंढते हैं?
0: पहले तो हमें बस्तियों में जाना पड़ता था, खुद से ढूंढना पड़ता था, एफर्ट मारना पड़ता था, बट अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ग्रीन सोल फाउंडेशन है, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, उन्होंने कम से कम मुझे 1,000 स्कूल बैग, 1,000 स्लीपर्स और 1,000 मेट्स जो होते हैं वो मुझे डोनेट करने के लिए दिया। तो मैंने गोगुंदा, उदयपुर और सायरा स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे मैंने डोनेट किया। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल है, टीचर्स है, वो मेरे से कॉन्टेक्ट में आए हैं। तो अब वो सामने से बोलते हैं कि मैडम यहाँ जाइए, यहाँ आप डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे रियल में नीड है। तो अब मुझे बस्तियों की सर्च नहीं करना पड़ता, सामने से लोगों का कॉन्टेक्ट आ जाता है कि आप यहाँ जाके डोनेट कर सकते हैं।
1: जी, तो अभी तक आपकी यात्रा कैसी रही और क्या रिसोर्सेज आप इसमें लगा रहे हैं, आपके पास कितना स्पेस है, या कैसे आप अपने घर से इसकी शुरुआत करी की आपने, या अभी आप सामान कैसे इकट्ठा करते हैं, कहाँ रखते हैं सारे सामान?
0: पहले बहुत सारी चुनौतियां भी थी, बीच में मैंने सोचा भी था कि इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो पहले तो मैंने अपने घर पे ही स्टोर किया था, देन मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उनका उदयपुर में एक शॉप चलता है, तो फिर हमने कपड़ों को वहाँ कलेक्ट करना स्टार्ट किया, लोगों से सामान कलेक्ट करते हैं। और आज मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है कि पहले हमें हमारे पिताजी की वजह से जानते थे, क्योंकि मेरे फादर सरपंच रह चुके हैं, तो उनकी वजह से हमारी पहचान थी, लेकिन आज हमें गांव में लोग पहचानते हैं कि अरे ये वो दीदी है, अरे ये दोनों बहन वो हैं जो गांव में जाके लोगों को कपड़े डोनेट करते हैं। तो अब घर पे ही हमारे यहाँ सामान आ जाता है, लोग हमारे घर पे ही आके डोनेट करके जाते हैं और हम लोग स्टोर करते हैं। और हमारे एक ही सोच रखा है कि हमारे पास जो टू व्हीलर है हमेशा उनमें एक बैग भरा रहता है, जहाँ पे हमें लग जाता है कि ये बच्चे हैं, नंगे पैर हैं, या इनके बदन पे कपड़े नहीं है, या फिर कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जिनके राशन नहीं है, तो हम लोग उनको उसी टाइम हम लोग देते थे। हम वेट नहीं करते कि हम घर जाएंगे वापस लेके आएंगे, ऑलवेज हमारे बैग में सामान रहता है, हम लोग वहाँ डोनेट करते रहते।
1: क्या कहानी है आपको बताइए, उदयपुर में कैसी कैसी कहानियाँ आपकी नजर में है जो आपने देखी और तो लगता है कि हमें कुछ काम करने की जरूरत है?
0: चैरिटी वाला तो कोई स्टोरी वही है, रैंडम मैंने आपको क्लियर किया था, लेकिन अभी जो मैं विकल्प संस्थान से जुड़ी हूँ तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मेरे सामने आई है जिसको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे आज हमारा टॉपिक है नशा, इस नशे की वजह से इंसान हैवान बनता जा रहा है। कुछ कुछ ऐसे हमारे पास केसेस भी आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उस बच्ची का। बच्ची अपनी माँ के साथ आई थी, यानी माँ ने दूसरी शादी किया था, तब बच्ची अपने माँ के साथ आई थी अपने नए पिता के पास। वहाँ बच्ची की माँ की डेथ हो जाती है, बच्ची महज 8वीं क्लास में पढ़ती है और 13 साल की। उसके पिता 11 साल, जब बच्ची 11 साल से थी, उसके साथ गलत हरकतें करता था। रात में बच्ची ने अपने आस पड़ोस में बताया कि मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना है, मैं पिता बहुत परेशान करते हैं, मैं घर से निकालो, मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना है। तो हम लोग क्या स्कूलों में सेशन करते हैं बच्चों के साथ पॉक्सो पे, यौन हिंसा पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो किसी बच्ची के पास हमारा टोल फ्री नंबर था, उस नंबर पे बच्ची का कॉल आया, फिर हमने बच्ची का सर्च किया, जहाँ बच्ची किराए रहती थी उसके पिता को भनक लगी, पिता ने वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, फिर पिता ने वहां से बच्ची को तीसरी जगह शिफ्ट किया, फिर पिता ने बच्ची को चौथी जगह शिफ्ट की। हमने पीछा नहीं छोड़ा, हमने उसका पीछा किया और जहाँ बच्ची को चौथी जगह शिफ्ट किया गया वहां पे, मतलब ये बात मुझे बताते हुए बहुत दर्द हो रहा है कि उस पिता ने पैसे के लिए अपनी बच्ची का सौदा किया। हर रात बच्ची को वो बेचता था पैसे के लिए, मज़ 1000 रुपए के लिए अलग अलग पर्सन को बेचता था। हमें सूचना मिली, हमने कुछ गुप्तचर भी रखे, कुछ एजेंट भी रखे, हमें सूचना मिली कि बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। हमने फिर उसका CWC में एप्लीकेशन लगाया, फिर हमने थाने में भी FIR दर्ज करवाई, पिता को पेश किया गया, बच्ची को पेश किया गया, बच्ची को काउंसलिंग करी गई और बच्ची ने हकीकत जो बताई, और फिर बच्ची को शेल्टर मिला, पिता को जेल मिला। और इस तरीके से जो बच्ची थी, आज बच्ची को हमें देखते हुए बहुत खुशी होती है कि बच्ची के जो चेहरे की रौनक थी वो हम वापस ला सकते, और जो हमारा मेन मकसद था वो पूरा हो। आज बच्ची बहुत खुश है, जहाँ पे भी है वो शेल्टर में है, आज वो अपनी खुशी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है, और उसकी जो जीवन की जो जर्नी होती है, जीवन की जो रूटीन है, वो चल रही है। आज बच्ची अगर हम फ्री मिल भी जाएगी तो हम ये चाहते हैं कि बच्ची हमेशा खुश रहे। ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था विकल्प संस्थान में आने के बाद। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो नशे की वजह से, क्योंकि उसका पिता जो था वो नशे का आदी था, उसको पैसा चाहिए होता है और वो पैसा कहाँ से लाए, क्योंकि उससे कमाई होती नहीं। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो नशे की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद।
1: जी सर, तो इस पूरी बात में आपकी जो संस्था है जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपका वहाँ जुनून है कि कुछ बदल दें, समाज में कुछ बदलाव कर दें और कुछ लोगों के जीवन में रोशनी कर। तो इस प्रयास में आपने एक बच्ची की कहानी बताई, अब वो बच्ची की उम्र कितनी है अभी वर्तमान में?
0: अभी बच्ची 14 साल की है।
1: जी बढ़िया है, वो डेफिनेटली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में अभी होगी और 18 साल तक वहाँ रहेगी। 18 के बाद आपके पास क्या योजना है उस बारे में भी हमें सोचना है। और सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है कि 19 साल तक उसको एक मदद मिलेगी, एक साल तक कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी, तो 19 साल के बाद उसको समाज में छोड़ दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप क्यों ना उसकी अडॉप्शन की प्रक्रिया में आप सहयोग करें। अडॉप्शन क्या आपने उसके लिए अडॉप्शन के लिए आवेदन किया है?
0: अभी नहीं किया सर।
1: CWC ने अपने
0: आदेश
1: तो प्रताओं में आपको बताऊँ की देश में चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर एक रेगुलेटरी एक्ट है और इसके तहत 0 से 18 साल तक के बच्चों का अडॉप्शन किया जा सकता है। और कोई भी आर्थिक रूप से संपन्न और संपन्न पारिवारिक स्थिति से दंपति बच्चे का अडॉप्शन कर सकता है और उस पोर्टल पे आवेदन कर सकता है। और CWC और जिले की DCP यूनिट के माध्यम से डॉक्टरिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो आप भी कोई बच्चा अगर आपको मिले तो आप उसको तुरंत PWC तक बच्चे को पहुंचाएं और

0: स्टोरी में आपको बताऊंगी। हमारा मेन मकसद ये है कि महिला के अंदर जो समाज का डर है, समाज का डर इस वजह से है कि आज महिलाएं समाज के डर की वजह से बहुत सारी हिंसा सहती है, बहुत सारी मार सहती है, लेकिन वो बाहर नहीं बोलते कि इससे मेरा घर टूटेगा या मेरे समाज में बदनामी हो। इस वजह से बहुत सारे ऐसे घर टूटे हैं, बहुत सारे घर हैं या बहुत सारी महिलाओं ने सुसाइड किया है। और इसका मेन वजह यह है, इसकी मेन रीजन ये है कि महिलाओं के अंदर डर है, समाज का डर। सबसे पहला डर उसके अंदर समाज का है कि समाज क्या बोलेगा, क्योंकि सबसे पहले उंगली उठती है औरत के ऊपर। मैं समाज के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन समाज का आज मैं इतनी बड़ी हुई हूँ तो मैंने खुद ने ये देखा है कि आज अगर गलती अगर लड़की की है या लड़के की भी है, लेकिन उंगली हमेशा लड़की के ऊपर ही उठाई जाए कि लड़की की वजह होगी। अगर लड़की को बेवजह मारा भी जा रहा है तो समाज यही बोलेगा कि लड़की की ही गलती हो, तो लड़के ने हाथ उठाया होगा। उसके पीछे का जो कारण है वो जानने की कोशिश नहीं की जाती। और हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज की वजह से बहुत सारी ऐसी महिला हैं जो गुट गुट के जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसको पता है कि शादी के बाद उसके बच्चे हैं, अगर वो सुसाइड कर लेगी तो उसके बच्चों है वो घर घर के भीख मांगने लायक हो जाए। अगर वो अपने मायके जाके बैठती है तो वहाँ पे भी वो अपने भाई भाभी की नौकरानी बनके जिएगी, उसके बच्चों का कोई भविष्य नहीं होगा। ये सारा चीज सोचने के बाद वो बहुत सारी ऐसी चीजें सहन करती रहती है, बहुत सारी मारे, बहुत सारे अत्याचार सहन करती रहती है, लेकिन वो कभी बाहर नहीं बताती। तो हमारा मेन मकसद ये है कि महिलाओं के अंदर जो डर छुपा हुआ है, जो डर बैठा हुआ, उसको बाहर निकालना। हम ये नहीं चाहते कि अगर आपका पुरुष आपके थप्पड़ मार रहा है तो आप उसके थप्पड़ मारो, बट एटलीस्ट आप ऐसा तो करते हैं कि अगर वो थप्पड़ मार रहा है तो आप आवाज उठाए कि मेरी गलती नहीं है, आप मुझसे बात कीजिए, आपको किससे तकलीफ है, आप ये जो मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। बस वो आवाज उठा सकते। और इसमें 50% नहीं, मैं 80% मानूंगी कि जो रीजन है वो या तो समाज का है या किसी भी प्रकार के नशे का है। क्योंकि आदमी के जब नशे का टाइम हो जाता है, किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का हो या फिर शराब का हो, अगर उसके नशे का टाइम हो जाता है और उसको उस टाइम पे नशा नहीं मिलता है, नशा करने का पैसा नहीं मिलता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता। तो मैंने इस नशे के ऊपर कुछ लाइन लिखी है, वो मैं आप श्रोताओं के सामने कुछ शेयर करना चाहूंगी। नशा वो चीज है पत्नी का सिंदूर छीन लेता है, नशा पत्नी का सिंदूर छीन लेता है, माँ की दवा और पिता का सम्मान छीन लेता है। नशा माँ की दवा और पिता का सम्मान छीन लेता है, बेटे की पढ़ाई और बेटी का बचपन छीन लेता है। नशा बहन का प्यार और भाई के अरमान छीन लेता है, बहन का प्यार और भाई का अरमान छीन लेता है। और नशा अंत में व्यक्ति के शरीर से ताकत और ताकत से आत्मा छीन लेता है। और ये नशा नाश का द्वार होता है, और जो द्वार है वो आपकी बर्बादी और मृत्यु की तरफ ले जाने वाला द्वार होता है। और एक बार नशे की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया तो यही समझो कि आपको उसका अंत, उसकी मंजिल मृत्यु ही होती है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो किसी भी तरह का नशा करता है, आप एक बार सोचिए कि नशे से कितने लोगों का जीवन खराब हो रहा है। आपने देखा होगा नशा करने वाला झोपड़ी में रहता है और नशा करवाने वाला बंगले में रहता है। आपने कभी देखा होगा जो शराब पीता है वो झोपड़ी में रहता है और शराब पिलाने वाला बंगले में रहता है। शराब पीने वाला साइकिल पे जाता है और शराब पिलाने वाला मर्सिडीज में जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, नशा आपको बर्बाद ही करता है। कभी वो किसी का घर नहीं बनाता कि नशा करने वाला हमेशा सक्सेस होता है।
1: बहुत ही बढ़िया आपने कविता नशे को लेकर पढ़ी है, और जो विचार है आपके बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नशा है वो नशा करने वाले के लिए उसका जीवन भी ले सकता है और उसको आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये बताइए कि कोमल जी, आपको क्या लगता है कि हम कैसे इसको नशे को दूर कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी सारे नशे की दुकानें खुली हुई है या फिर जो इंटरनल बेस्ड है, उनकी सूचना देने वाले के लिए अगर आप 5,000 का या 10,000 का इनाम देना कि नशे की जो भी सूचना देती है उसको इनाम दिया जाएगा, तो आपको उसमें सुधार मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकल स्टोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे खुद चुपके आपको ये जो कॉलेज के पास, कैंपस के पास होते हैं, इंस्टीट्यूट के पास होते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल के पास होते हैं, ऐसी बहुत सारी शॉप है जो खुद चुपके ये नशे का धंधा करती है। उनको पैसों से मतलब होता है।

0: है तो हम लोग वहाँ मुहिम चला सकते हैं, स्कूल में कैंपेन कर सकते हैं, कॉलेज में कैंपेन कर सकते हैं, और उनको कुछ ऐसी पीपीटी दिखाई जाए, उनको डीपली ऐसे मैसेजेस दिए जाए, डीपली ऐसे वीडियोस शेयर किए जाए जो उनको बहुत दिल तक या बहुत इंटरनल उनको बहुत टच करे कि नशा करना बहुत खराब होता है।
1: जी
0: ऐसे इस मुहिम को चलाने के लिए हमें ऐसे इतने सारे यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे 18 से 25 साल के यूथ है उनको ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनसे इंस्पायर होके बच्चे जो हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वो उनसे इंस्पायर होके अपना जो डिसीजन है नशा करना है उससे थोड़ा सा दूर हो पाए।
1: जी तो नशे को लेकर जो आपकी बात है, वो विचार है, निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। अभी नशे को लेकर क्या हालात है ग्रामीण इलाके में, कैसे आप देखते हैं युवाओं को, वो क्या कर रहे हैं, नशा किस प्रकार का नशा बढ़ रहे हैं?
0: अभी नशे का ये है कि उदयपुर में नशा पहले कुछ कुछ जगह पे होता, लेकिन वो टूरिस्ट सिटी बनने के बाद में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट बाहर से आते हैं, वो खुद अपने साथ लेके भी आते और यहाँ पे भी सर्च करते हैं। तो युद्ध को लगा कि क्यों ना हम, कि युद्ध बहुत ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको जहाँ मैं जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अगर टूरिस्ट आएंगे उनको रास्ते दे।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो जुनून, और जुनून में आपकी है फ्रीक्वेंसी 107.8 FM। बने रहिए और हमें सुनते रहिए। तो कोमल बता रहे हैं कि कैसे नशा जो है वो ग्रामीण इलाकों में टूरिज्म के माध्यम से पहुंच रहा है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो हम रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए भी बात करते रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैसे देश में आगे बढ़े, यानी कि टूरिज्म भी रहे और वो जिम्मेदार टूरिज्म, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, वहाँ के विकास को, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को, वहाँ के हेरिटेज को और वहाँ के समाज को ना खराबता है, ऐसे टूरिज्म की हम बात करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो, सस्टेनेबल हो। लेकिन हमें जानने को मिल रहा है कि उदयपुर का जो पर्यटन है उसने कहने की नशे में कॉन्ट्रीब्यूट किया, वहाँ के स्थानीय कोमल हमें बता रहे हैं। कोमल बताए कि कैसे पर्यटन ने टूरिज्म को बढ़ावा दिया है वहाँ के क्षेत्र में।
0: जी सर, तो उदयपुर सिटी बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे आपको नेचर देखने को मिलता है, बहुत सारी ऐसी हेरिटेज वॉक है या फिर ऐसी हिस्टोरिकल पैलेसेज है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया ही नहीं, इवन ऑल वर्ल्ड से बहुत सारे लोग आते हैं विजिट करने के लिए। बट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट भी आते हैं जो किसी भी तरह के नशे के एडिक्टिव होते हैं। अब उनको जो एडिक्शन होता है, उनको वो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फिर यहाँ आके वो केमिस्ट्री की शॉप से पूछते हैं या फिर किराना से पूछते हैं। और धीरे धीरे आप ये देखो ना कि अगर हम किसी शॉप पे जाके किसी चीज के लिए 10 बार बोलेंगे कि ये चीज है क्या, तो शॉप वाले को लगेगा कि यार ये चीज मुझे रखनी चाहिए क्योंकि इसका मार्केट है। और धीरे धीरे वो गुपचुप भी उस चीजों को रखते हैं, और फिर उनको जो होते हैं बीच के जो डीलर होते हैं उनको भी हायर किया जाता है। और धीरे धीरे एक बार उनको अगर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और एक बार वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते, तो युवाओं को लगता है कि उस पर्सन को लगता है कि यार पुलिस वाले ने मुझे नहीं पकड़ा तो अब वो क्या ही पकड़े, और धीरे धीरे वो इस गिरफ्त में जाते हैं। और जब कोई लाके उसको सेल आउट कर रहा है तो वो कहता है कि एक बार मैं उसको ट्राई करूँ उसका टेस्ट कैसा है, और वही टेस्ट जो फर्स्ट टाइम का जो टेस्ट होता है वही आगे चल के उसके लिए एडिक्शन बन जाता है। और धीरे धीरे इस गिरफ्त में 18 से भी कम साल के, बहुत सोचने लायक बात है कि 18 साल से भी जो स्कूल गोइंग है 9th 10th के बच्चे हैं वो भी नशे के शिकार होते जा रहे हैं, जैसे स्मोकिंग जो है वो करते हैं, बियर पीते हैं, गांजा पीते हैं। इसका मेन कारण ये है कि उनको वो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, और उनको पता है कि कहां से हमें ये चीज मिल सकती है, कहां से वो परचेस कर सकते हैं। तो सबसे मेन रीजन ये है कि वो इजीली अवेलेबल हो पा रहा है।
1: जी, और किस तरह के उदाहरण आपने देखे? मैंने पिछले दिनों एक शराब की दुकान है वहाँ से छोटे बच्चे को, मैंने 12-13 साल के बच्चे को बियर खरीदते हुए देखा, और मैंने वहीं पर दुकानदार को मैंने विरोध किया, दुकानदार ने उसको फिर शराब देने से मना किया, अन्यथा अगर मैं नहीं रोकता तो वो दुकानदार उसको शराब बेच रहा है। कुछ ऐसे अनुभव भी हमारे सामने हैं, जो हमारे दुकानदार हैं जो शराब की दुकान पे काम करते हैं उनको भी समझना है कि वो छोटे बच्चे के हाथ में शराब की बोतल ना दे। और इसके साथ ही अगर ग्राहक भी ये घटना देख रहा है तो ग्राहकों का भी फर्ज बनता है कि वो छोटे बच्चे को वहाँ से शराब ना खरीदने दें और दुकानदार को भी मना कर दें। तो कुछ ऐसी ही बात है जो ये हम सबको पहन लेने की जरूरत है कि ऐसा कुछ होते हुए अपने इलाके में देखते हैं, खासतौर पर सरकार के द्वारा चलाई गई दुकान पर यदि ऐसा हो रहा है तो उसका विरोध करना आवश्यक है। और अब तो सरकार के भी पंचायती राज के रूल्स में भी है, यदि किसी गांव में 50% आबादी चाह ले तो वो अपने गांव के ठेके को अपने गांव से बाहर कर सकते हैं। तो जरूरत है कि पंचायत में ग्राम सभा में इसका प्रस्ताव लिया जाए, क्या आप जानते हैं? तो इसलिए हम लेकर आते हैं ऐसा ही सुलझुनू जिसमें आप न केवल आप अपनी तकलीफ बता सकते हैं, अपने गाँव और अपने समाज के लिए बदलाव के लिए भी काम कर सकते हैं। तो आज हमारे हाथ में ऐसे ही क्रांतिकारी उदयपुर से कोमल, कोमल का नाम बड़ा कोमल है लेकिन उनके जो काम है उनमें दृढ़ता है, उनमें एक आत्मविश्वास है और उनके अंदर आगे बढ़ने का जुनून। कोमल आप बताइए कि आप उदयपुर के बारे में क्या सोचते हैं, उदयपुर को कैसे शहर बनाना चाहते हैं?
0: मेरा सपना ये कि मैं उदयपुर को क्लीन सिटी तो वो है, बट मैं ये चाहती हूँ कि उदयपुर में अभी बहुत ज्यादा नशा होने लग गया है और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें युवा लोग भटक रहे हैं। युवा लोग भटकने का मतलब है कि आज जो बच्चे हैं, स्कूल जो गोइंग बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल में जाके हम लोग सेशंस लेते हैं, उनका माइंड बहुत डाइवर्ट हो चुका है। उनका जो माइंड है वो पढ़ाई से हटके वो जो अदर एक्टिविटीज होती है जैसे घूमना फिरना, दोस्त बनाना, होटलों में जाना, कैफेज में जाना, फैशनेबल कपड़े पहनना, इन चीजों की तरह उनका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे अगर जब तक अपना करियर न बना ले वो इन चीजों में न पड़े, क्योंकि अभी इस जमाने में आपके इतना हाई कंपटीशन हो चुका है, किसी भी फील्ड में आप जाए, किसी भी सेक्टर में जाए, हाई कंपटीशन की वजह से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने की एज में वो करियर बनाने की एज में वो भटक जाते हैं। होटलों में घूमना, यारे दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना, उस टाइम पे उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, इस वजह से वो भटक जाते हैं और इस वजह से उनका करियर नहीं बनता है और करियर नहीं बनने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलता है। मैं चाहती हूँ, मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जो पाठ्य पुस्तकें हैं, क्योंकि मेरा थॉट ये है कि जो बच्चा फिफ्थ क्लास में जो बुक पढ़ेगा हिंदी की, वो चैप्टर उसके सिक्स क्लास में काम नहीं आने वाला, क्योंकि सिक्स क्लास में हिंदी का चैप्टर डिफरेंट होगा, लेकिन उनको जो अदर एक्टिविटीज जो कराई जाती है, जो मोटिवेशन उनको जो स्पीकर के द्वारा जो बातें सिखाई जाती है वो उनके लाइफ टाइम तक काम आती है। जैसे उनको करियर गाइडेंस का है, या फिर सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर उनका कोई सेशन होता है, या फिर सेल्फ डिफेंस वाला है, या कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, या उनकी अदर एक्टिविटीज है, स्किल डेवलपमेंट वाला है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करवाए जाए, तो बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करे तो भी आगे चल के अपना करियर बना सके। अगर बच्चा टेंथ फेल भी हो जाता है, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है, अगर बच्चा टेंथ फेल हो जाता है तो उसको फैमिली से, समाज से, स्कूल से, अपने फ्रेंड सर्कल से इतना प्रेशराइज किया जाता है कि तू तो फेल हो गया, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाए, ऐसे उनको गाइडेंस दे, ऐसा उनका सेशन स्कूल में चलाए करियर गाइडेंस का, कि बच्चा अगर नहीं होना चाहिए लेकिन इन केस अगर वो फेल भी हो जाता है या उनके परसेंटेज डाउन भी होता है तो वो अदर स्किल को अपनाकर अपना लाइफ या फिर अपनी चॉइस है या फिर अपने जो सपने है उसको पूरा कर पाए।
1: निश्चित रूप से युवाओं के सामने एक कंफ्यूजन होता है, वो एक ऐसी उम्र का दौर है जब आदमी अपने और अपने साथ साथ अपने मानसिक बदलावों से भी गुजर रहा होता है, तो और समाज के जो बदलाव है वो तो उसको प्रभावित कर ही रहे हैं, तो इन सारे अंतर्द्वंद के बीच वो बच्चा अपने आप को आगे बढ़ा रहा होता है, तो वो समय होता है कि उसको सही गाइडेंस मिले और उसको गाइडेंस के साथ साथ उसके हाथ को हुनर मिले और हाथ के हुनर के साथ साथ वो समाज और अपने देश के लिए कुछ कर पाए, और उसी समय यदि कोई नकारात्मक अनुभव उसको हो जाए तो वो जीवन भर उसे नहीं भुला पाता। और इसी तरह सब तरह की युवाओं के और बच्चों के जीवन को बदलने में लगी है हमारी आज की युवा कोमल, और कोमल के साथ हमें ढेर सारी बातें। कोमल, हम बातचीत तो करते रहेंगे लेकिन आप ये बताएं कि कुछ और ऐसी कहानियां जो मैं आपसे, आप चाहते हैं कि इस मंच पर रखी जाए और मैं आपसे नहीं सुन पाया और आप उसमें रुचि दिखाते हैं, थोड़ा बताएं इसको।
0: मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं उन पेरेंट्स से, अगर ये मेरा मैसेज किसी पेरेंट्स के पास जा रहा है तो सबसे पहले मैं उस लड़की के माता पिता से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा शराबी है, किसी नशे का आदी है, तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, उसकी शादी न करें। मेरा कहने का मतलब है कि आपका बच्चा अगर किसी तरह का नशा करता है तो आपके बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं, नशे से छुड़वाएं, उसकी शादी न करें। आप सोचते हैं, मतलब लड़के के पिता माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे की शादी कर देंगे तो ये सुधर जाएगा, नहीं, क्योंकि आने वाली लड़की डॉक्टर नहीं है। आप आने वाली बेटी का भविष्य मत बिगाड़े। अगर आपके बच्चे की किसी तरीके की कोई नशे की आदत है तो किसी बच्ची का भविष्य आप खतरे में न डाले और उसमें सारी हकीकत उसको बताए। दूसरा ये बता मतलब बोलना चाहती हूँ मैं ये बच्ची के माता पिता से कि आप अपनी बच्ची को धन दौलत ना दे, दहेज न दे, लेकिन आप अपनी बच्ची को इतना संस्कार दे, इतना एजुकेशन दे कि बच्ची अपने पैरों पे खड़ा हो सके और शादी के बाद वो किसी के सामने हाथ न फैलाए और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, वो समय आने पर अपना खुद का और अपने परिवार का भी घर चला सके। ये मेरा निवेदन है। जी सर।
1: हाँ श्रोताओं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और ये संदेश सभी बेटियों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है कि वे भी जैसे ही अपनी उम्र में आगे बढ़े तो सिर्फ राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना ना देखें, वो भी अपने जीवन में एक मकसद बनाए कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा काम करना है, मुझे देश के लिए कुछ उत्पादक नागरिक बनना है और मुझे देश के लिए कुछ अच्छा करना है। तो आपका सपना अगर राजकुमार को पाना होगा तो हो सकता है कई बार आपको राजकुमार ना मिले और राजकुमार के बदले में एक नशे और युवा के रूप में एक आपको पति मिल जाए, तो ये धोखा आपके साथ भी हो सकता है। तो आप अपने जीवन का मकसद जो है वो राजकुमार के संग विवाह करना ना होकर अपने जीवन का मकसद खेलों में कुछ अच्छा करना बताए, किसी की महाविद्यालय विद्यालय में पढ़ाने का सपना देखें, आप देश के लिए किसी उत्पादक फैक्ट्री में काम करने का सपना देखें, आप इंजीनियर बनने का सपना देखें, आप नर्स बनने का सपना देखें, आप डॉक्टर बनने का सपना देखें और तो और आप देश की राजनीति में राजनेता बनने का सपना देखें। ये सपने तो कुछ काम के हैं। राजकुमार तो आपके जीवन में आपका जब आप इस सफर पे चलेंगे तो उस सफर पे हम सफर तो आपके साथ आ ही जाएगा। तो और वैसे भी हर सफल व्यक्ति के पीछे के साथ कौन नहीं डूबना चाहेगा, तो कुछ ऐसा ही हम सफर आपके साथ अपने आप ही डूबने के लिए मिल जाएगा। पहली बात तो है कि आप एक मजबूत सफर पे निकले, एक सफर पे निकले जिससे आपका जीवन और आपके आसपास के समाज के जीवन बदले, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन हमारी बेटियां ये भूल कर बैठती हैं कि वो जैसे ही बड़ी होती हैं तो राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना देख लेती हैं और उन्हें कुछ नया सपना समाज के द्वारा बताया गया है। तो हमारे बीच में है कोमल जो इस तरह के गहरे विषयों पर हमारी बेटियों के साथ बात कर रही है और इस शो में तो हम पूरी दुनिया के साथ आज बात कर ही रहे हैं। ये ऐसे विषय हैं जिन पर सामान्यतः समाज में बात नहीं की जाती है, लेकिन आज हम इस रेडियो मधुबन के माध्यम से आपके बीच के सारे विषय लेकर हैं। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं डॉक्टर, तो चलते चलते मैं चाहूँगा कि कोमल आप ये बताएं कि नशे को लेकर राजस्थान सरकार भी जल्दी ही 26 जून को अपने अभियान का आगाज करने जा रही है और नशे को लेकर एक अत्यंत गंभीरता के साथ चलाए गए अभियान में पूरा राज्य भागीदारी करेगा, सभी नागरिक जुड़ेंगे, सभी संस्थाएं सरकार के विभाग कॉर्पोरेट को भी इसमें जोड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार के साथ क्या नया किया जा सकता है नशा मुक्ति अभियान के अंदर? आप सीएम अभी आपके सुन रहे हैं,
0: मेरा मानना यह है कि सरकार बहुत सारे नियम बनाती है, बहुत सारे कायदे बनाती है, लेकिन उसी को सरकार ही तोड़ देती है। जैसे कभी ब्लैक डे होता है, उस दिन शराब नहीं बेचने का नियम बना रखा है, शटर डाउन होगा, लेकिन पीछे की विंडो से शराब बिक रही है। और आप देखिए कि पीछे की विंडो से अगर शराब लिया जा रहा है तो वो पुलिस वाला खुद ले रहा है, जबकि वो सरकार का ही आदमी है। नियम यहीं से तोड़ना स्टार्ट होता है कि नियम बनाते भी आप है और तोड़ते भी आप है। अगर आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाया है तो उसको फॉलो आप कीजिए पहले, क्योंकि जब तक अगर मिनिस्टर वगैरह या फिर गवर्नमेंट का कोई आदमी उसको फॉलो नहीं करेगा तो लोकल पब्लिक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर इस मुहिम में महिलाओं को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए तो आपको 100% तो नहीं मान सकती लेकिन 90% रिजल्ट मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे पुरुष नशे के जो आदी हैं वो उससे दूर हो सकते हैं। चांसेस हैं अगर उसमें इन्वॉल्व महिलाएं ज्यादा होगी 90% इस मुहिम में, तो 90% बच्चे या फिर 90% पुरुष हैं नशे से छुटकारा पा सकते, मेरा तो मानना ये है। पर
1: बहुत बढ़िया कोमल, आपने हमसे बात की, आप ऐसे ही काम करते रहे और अपने चैरिटी वाले काम में भी जुटे रहे और आपकी टीम को और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हमारे रेडियो मधुबन की तरफ से भी शुभकामनाएं और उदयपुर को सुंदर नगरी, झीलों की नगरी को और सुंदर बनाते रहे। वहाँ सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, समाज में आ रही विकृतियों और बदलावों पर भी अपनी सटीक नजर रखी जाए और तुरंत होने वाले बदलावों को नोटिस किया जाए और उसमें समाज को जागरूक कर बदलाव के लिए आह्वान किया जाए। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहें और हमारे साथ काम करते रहें। रेडियो मधुबन की पूरी टीम की तरफ से आपको सलाम और नमस्कार।
0: एक मैसेज मैं उन शराबी भाइयों को देना चाह रही थी कि 1000 की बियर की बोतल, 1000 की बियर की बोतल शराबी एक बार में खत्म कर देता है, लेकिन वही 1000 रुपए का जो सिलेंडर आता है वो 2 महीने तक पूरे परिवार का खाना बन सकता है। तो शराबी भाई इस बात को सोचिएगा कि 1000 की बियर की बोतल एक बार में आपको काम में लेनी है या 1000 का सिलेंडर आपको अपने परिवार के लिए 2 महीने का खाना बनाने के लिए काम लेना है, ये बात आप सोचिएगा जरूर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया और आपने मुझे मौका दिया, इसलिए पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, और सबसे ज्यादा थैंक यू सो मच शरद भाई आपका, और कृष्णा बहन आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू कोमल, तो फिर से ऐसे ही हम एक जुनूनी के साथ आपको मिलवाएंगे आपके फेवरेट शो जुनून में, और जुनून में फिर से नई बात होगी, एक नया आयाम होगा और एक नए जीवन को हम छुएंगे। तो फिर से मिलेंगे, योर दोस्त एंड दोस्त सनी ऑफ केयर शरद, जय हिंद।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: मीराबेन का असली नाम मेडलिन स्लेट था। उनका जन्म 22 नवंबर 1892 को एक अंग्रेज परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी पर लिखी एक पुस्तक पढ़ने के बाद वे उससे इतना प्रभावित हुईं कि उन्होंने बापू की विचारधारा को न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि उनके साथ रहने हिंदुस्तान चली आईं। गांधी जी ने उन्हें अपनी पुत्री माना और नाम दिया मीराबेन। बापू के सानिध्य में उन्होंने धुनना और बुनना सीखा। खादी के उत्थान के लिए उन्होंने कई प्रांतों का दौरा किया। 1932 में गांधी जी के जेल प्रवास और कांग्रेस कार्यकारिणी पर प्रतिबंध के दौरान उन्होंने सराहनीय भूमिका निभाई थी। अंग्रेज सरकार की क्रूरता की सूचनाएं एकत्रित करके वे दुनिया के कोने कोने में भेजने लगी। उन्होंने विश्व के तमाम नेताओं से मिलकर गांधी जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आजादी के पहले और आजादी के बाद उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा था। 20 जुलाई 1982 को उनका देहांत हो गया। भारतवासी उन्हें हमेशा याद रखेंगे।
3: मैडलिन स्लेट एक ब्रिटिश एडमिरल की वो बेटी जिनकी आत्मा भारत में बसती थी। 7 समंदर पार रहते हुए भी मेडलिन का गांधी जी से जुड़ाव आध्यात्मिक था और उनके इस अभूतपूर्व आध्यात्मिक आत्मिक सफर की शुरुआत हुई स्विट्जरलैंड से, जहां वो महान लेखक रोमा रोला से जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए मिली और उसके बाद मेडलिन स्लेड बन गई मीराबेन।
4: आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो। I'm very much influenced by the greatest musician, Beethoven, but he's no more to guide me.
3: महान संगीतकार बीथोवन के जीवन दर्शन से प्रभावित मेडलिन ने जब रोमा रोला से अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने जवाब में गांधी जी की जीवनी पढ़ने को देते हुए कहा,
5: He's second Jesus Christ.
3: इस किताब को पढ़ने से पहले मेडलिन गांधी जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और इसके बाद तो जैसे सब कुछ उन्हें ही मानती थी। मेडलिन को लगा कि गांधी जी के विचारों का अनुसरण ही उनका जीवन उद्देश्य है और इसी के लिए वो छटपटा रही थी। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर आश्रम आने की अनुमति मांगी।
6: बापू, इंग्लैंड से पत्र आया है।
7: किसका है?
6: मिस मेडलिन स्लेट का।
7: दिखाओ मुझे।
6: क्या हुआ बापू?
7: ये लड़की एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी है। कहती है कि मेरे विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहती है। लिखती है, मेरे विचार उसे जीवन का उद्देश्य जान पड़ते हैं और इसलिए वो यहाँ आकर अपना जीवन आश्रम को समर्पित करना चाहती है।
6: लेकिन एक अंग्रेज लड़की अपने ही देश वालों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में हमारा साथ कैसे दे सकेगी?
7: उससे भी ज़्यादा मुश्किल उसके लिए आश्रम की परिस्थितियों से तालमेल बिठाना होगा।
6: तो इसका मतलब यही ना बापू कि हम उन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं दे सकते?
7: अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लाओ वो पोस्ट कार्ड मुझे दो।
6: लीजिए।
7: प्रिय मित्र, याद रखना, यहाँ का जीवन सुखमय नहीं है, ये बहुत कठिन है। यहाँ हर एक को शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इस देश की जलवायु भी ऐसी नहीं जिसके बारे में न सोचो। मैंने ये बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी के लिए लिखी है।
3: गांधी जी के जवाब के बाद तो जैसे मेडलिन की इच्छा दृढ़ निश्चय में बदल गई। उन्होंने विदेश में रहकर ही एक साल तक खुद को भारत और आश्रम के माहौल में ढालने की कोशिशें शुरू कर दी। वो उर्दू और हिंदी सीखने लगी, महान ग्रंथों के अनुवादित संस्करण भी पढ़े। एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी भारतीयता के रंग में रंगने लगी। उन्होंने महल में रहकर भी जमीन पर सोने का अभ्यास किया, चरखा चलाने लगी और शराब और मांस का भी त्याग कर दिया। घर वालों को अपने फैसले से अवगत कराने के बाद मेडलिन ने फिर एक बार गांधी जी को पत्र लिखा।
6: बापू, ये पत्र कई दिन पहले आया था।
4: लाओ।
6: उन्हीं मिस मेडलिन का है। इस बार 20 पौंड भी भेजे हैं।
7: जिसका निश्चय इतना दृढ़ हो उसे कोई नहीं रोक सकता। इन्हें तो जवाब लिखना ही होगा। प्रिय मित्र, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि पत्र का जवाब जल्दी ना दे पाया। मैं निरंतर यात्रा पर था। आपने जो 20 पाउंड भेजे हैं उसके लिए मेरा शुक्रिया कबूल करें। ये पैसा चरखे को लोकप्रिय बनाने के काम में खर्च किया जाएगा। मुझे खुशी है कि आपने अपने पहले आवेग में काम करने की जगह खुद को यहाँ के जीवन के लिए तैयार करने और समय लेने का फैसला किया। अगर एक साल की
0: परीक्षा भी आपको यहाँ आने की प्रेरणा दे तो शायद भारत आने का आपका फैसला सही होगा।

0: के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाने की उम्मीद करती हूँ। कुछ महीने पहले मुझे एक अनुभव हुआ जिसके बारे में मैं आपसे मिलकर ही बताना चाहूँगी। इसने मुझे स्पष्ट कर दिया कि मेरा जीवन आपके जीवन से जुड़ने ही वाला है। मैं भारत आना चाहती हूँ ताकि आपके साथ रहकर आपके काम में अपनी ओर से यथासंभव सहायता करूँ। आप बताएं मैं कब आ सकती हूँ? इस पत्र के साथ उस ऊन का नमूना भेज रही हूँ जो मैंने चरखे पर खाता है।
1: आपका पत्र पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आपने ऊन का जो नमूना भेजा है वो शानदार है। आप जब आना चाहें आपका स्वागत है। अगर मुझे पता चले कि आप किस जहाज से आ रही हैं तो आपकी अगवानी के लिए और साबरमती के लिए रेलगाड़ी के बारे में जानकारी देने के लिए कोई ना कोई जरूर पहुंच जाएगा।
2: 6 नवंबर 1925 को मेडलिन स्लेड का जहाज बॉम्बे के प्रिंसेस बंदरगाह में आ गया। उनके लिए सब कुछ अलग और अजब ही था। यहां
3: वेलकम टू इंडिया मेडलिन।
0: धन्यवाद।
3: अरे वाह, मुझे बापू ने आपकी सेवा में भेजा है। मेरा ख्याल है आप कुछ दिन मुंबई में रुककर आराम करें, थोड़ा शहर घूमकर देखें।
0: नहीं नहीं, मैं आज शाम की ट्रेन से ही अहमदाबाद जाना चाहती हूँ।
3: जी, जैसा तुमको ठीक लगता है। बग्गी इधर इधर।
1: आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इंग्लैंड से जो मेडलिन स्लेड हमारे यहाँ आ रही हैं उनके संबंध में हमें महान फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला का पत्र प्राप्त हुआ है। वो लिखते हैं कि जल्द ही साबरमती में आप मेडलिन स्लेट का स्वागत करेंगे, जिन्हें आपने अपने आश्रम में दाखिला देने की कृपा की है वो मेरी बहन और मेरी प्यारी मित्र हैं, और मैं उन्हें अपनी मानस पुत्री भी मानता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय शिष्यों में पाएंगे। उनकी आत्मा प्रशंसनीय ऊर्जा एवं समर्पण से भरी है। वे एकदम सीधी सादी और ईमानदार हैं। आप जिस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं उसके लिए यूरोप उनसे ज्यादा विनम्र या निष्काय व्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता।
2: आश्रम में एक ओर मेडलिन के आने की उत्सुकता थी तो दूसरी ओर कुछ सुबुगाहट थी।
4: मिस मेडलिन आ भी गया। चलो भाई चलो।
5: वेलकम मिस मेडलिन।
0: धन्यवाद भाई।
5: आप बापू से मिलने के पहले मुंह हाथ धो ले।
0: नहीं, मैं अभी बापू से मिलना चाहती हूँ।
5: जी जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बापू, मिस मेडलिन।
1: संभल कर, तुम मेरी बेटी बन कर रहोगी।
2: एक दूसरे ब्यौरे के मुताबिक मेडलिन गांधी जी को देखते ही बेहोश हो गई थी, जिसका राज उन्होंने बाद में खोला। उन्होंने बताया कि बापू को देखते ही उन्हें उनकी तरफ से आते जबरदस्त प्रकाश की अनुभूति हुई। उस दिन के बाद मेडलिन जल्दी ही आश्रम के कार्यकलापों में हिस्सा लेने लगी।

0: मेडलिन, अब तुम हम सबको एक ईसाई भजन सुनाओ।
1: इंग्लिश प्रेयर?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रार्थना की कोई भाषा नहीं होती, यहाँ हर भाषा की प्रार्थना होती है। गाओ गाओ बेटी।

0: आइए मिस मेडलिन, मैं आपको पूरा आश्रम दिखा दूँ।
1: अभी मैं एक पत्र लिख रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा, अपने घर वालों की कुशलता की जानकारी ले रही हैं आप?
1: नहीं नहीं, उन्हें जिन्होंने मुझे यहाँ आने का रास्ता दिखाया।
0: ओह, वो प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक?
1: यस
0: जी। ठीक है, आप लिखिए, मैं चलती हूँ।
1: ओ मेरे प्यारे पिता, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि वे कितने दिव्य हैं। मैंने एक पैगंबर से मिलने की तैयारी की थी, मुझे एक देवदूत मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मेरा जीवन सफल हो जाएगा।
2: मेडलिन के आश्रम आगमन के पहले की सुगबुगाहटें अब असंतोष में बदलने लगी। कई आश्रमवासियों को ऐसा लगा कि बापू मेडलिन को खास तवज्जो दे रहे हैं।
3: कभी ऐसा हुआ है भला कि आश्रम के किसी नए सदस्य की अगवानी के लिए बापू ने महादेव देसाई, सरदार पटेल और स्वामी पटेल जैसे लोगों को भेजा हो?
4: हाँ, और आश्रम में सबसे अच्छे सूत काटने वाले सुरेंद्र भाई उसे सूत काटना सिखा रहे हैं।
3: और अब तो बापू चाहते हैं कि वो अंग्रेज पहले जल्द से जल्दी अच्छी हिंदी सीखकर उनके कार्यों में मदद करें।
4: पता नहीं बापू ऐसा क्यों कह रहे हैं।
5: बापू वो आश्रम के लोग।
4: जानता हूं, मैं आज ही सबका भ्रम दूर किए देता हूँ। जा, जाकर मेडलिन को यहाँ आने का संदेशा दो। जी
6: जी बापू।
4: हाँ बेटी, आज मैं तुम्हें शौचालय साफ करने का तरीका सिखाता हूँ।
5: लेकिन बापू आप क्यों?
4: लाओ, मुझे ही जाना होगा, झाड़ू मुझे दो। आओ मेडलिन, हमें सारे शौचालयों की सफाई करनी है।
6: जी बापू।
4: ये देखो, इस झाड़ू से इस तरह सफाई की जाती है।
6: लाइए, मुझे दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। बापू, मुझे अपने कमरे में मेज, कुर्सी, पलंग और मच्छरदानी की कोई जरूरत नहीं। मैं फर्श पर चटाई पर सोने का अभ्यास कर चुकी हूँ, मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं।
4: ठीक है बेटी, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी।
2: मेडलिन के जिम्मेदारी भरे बर्ताव के चलते आश्रमवासी जल्दी ही समझ गए कि वो कोई साधारण अंग्रेज महिला नहीं। इसी बीच मेडलिन ने गांधी जी के समक्ष एक अप्रत्याशित अनुरोध कर सबको चकित कर दिया।
6: बापू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
6: मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेना चाहती हूँ, साथ ही अपने बाल भी मुंडवाना चाहती हूँ।
4: अरे भाई, मैं कोई बुद्ध नहीं और तुम भी बौद्ध भिक्षुणी नहीं हो। ये व्रत गंभीर होते हैं, इन्हें हल्के में या हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए।
6: आप जानते हैं कि मैं आपसे जुड़ी किसी भी चीज को कभी हल्के में नहीं लेती। मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि ब्रह्मचर्य की आपकी अवधारणा का मतलब केवल यौन से नहीं बल्कि आत्मानुशासन और आत्मसंयम है। आश्रम का तपोवन वाला वातावरण मुझे आकर्षित करता है और मैं इसे मजबूत करना चाहती हूँ।
4: देखो, अगर तुम केश मुंडवाओगी तो दूसरी औरतों से अलग हो जाओगी और इससे तुम और अलग थलग पड़ जाओगी। तुम इस पर आज रात और विचार कर लो, हम कल इस पर बात करेंगे, ठीक है?
6: जी बापू।
3: चलो चलो, शाम की प्रार्थना सभा शुरू हो चुकी है।

0: आओ बैठो, मुझे तुम्हारे लिए और अपने लिए खुशी होती है। कस्तूरबा, मुझे कैंची लाकर दो, मैं अच्छे खासे बाल काट लेता हूँ।
1: मुझे आशीर्वाद दीजिए बापू।
0: मुझे मालूम है कि ये आश्रम जिन आदर्शों को साकार करने के लिए स्थापित किया गया है, उन्हें पूरा करने के लिए तुम जितना प्रयास करोगी उतना कोई और नहीं करेगा। मेरे पास तुम्हारा

0: आपके लिए एक उपहार है, एक नया नाम, मीरा। मीरा भक्ति और धैर्य से भरपूर एक राजकुमारी थी। मीरा के भजन आज भी पूरे देश में गाए जाते हैं। अपने हिंदी शिक्षक नवीन से उनके बारे में पूछना।
1: मेडलिन अब आश्रम में मीराबेन के नाम से पुकारी जाने लगी। सफेद खादी की साड़ी में वो कभी रसोई में सब्जियां काटे जाने का निरीक्षण करती तो कभी प्रार्थना सभा के पहले की तैयारियों का, और जिस समय आश्रम का कोई कामकाज न होता तो सूत काटती या कुछ पढ़ती। 1925 से 1932 के बीच उन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत कुछ किया। 1932 के असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।
2: सर, आपका कई बार वार्निंग देनी पर भी मेडलिन नहीं माना। वो हर हाल में इंडियंस को सपोर्ट देना चाहती है।
3: लगता है वो ऐसे नहीं मानेगा। अरेस्ट हर।
1: अंग्रेजों के प्रयासों से उलट इन सजाओं ने जैसे मीराबेन के दृढ़ निश्चय को बढ़ाया हो। जेल से छूटने के बाद वो फिर अपने कामों में लग गई। उन्होंने गांव गांव जाकर बापू के आदर्शों का प्रचार प्रसार किया और समाज सेवा के नए आयाम स्थापित किए।
0: मीरा, वैसे तो तुम भारत में रहकर भी भारत की आजादी के लिए बहुत कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें फिर लंदन जाना होगा।
4: लंदन?
0: हाँ मीरा, ताकि हम अपने आदर्शों की व्याख्या वहाँ के लोगों को समझाकर भी कर सके।
4: जी, जैसा आप ठीक समझें बापू।
1: लंदन में रहकर मीराबेन ने खुद एक अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेजों के सामने भारत का दर्द रखा। वे कर्मचारियों अधिकारियों से मिली, अखबारों व पत्रिकाओं में लेख लिखे ताकि जल्द से जल्द भारत की आजादी का रास्ता खोल सके।
2: मेडलिन, व्हाई डोंट यू लीव इंडिया? दिस इज योर कंट्री। व्हाई यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर ओन कंट्री?
4: फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट मेडलिन, आई एम मीरा, एंड आई एम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट एनी कंट्री। दिस इज ऑल अबाउट ट्रूथ एंड फॉल्स। Anyway, I have to go.
0: Raghupati Raghav, Raja Ram. तो तुम्हारी वार्ताएं कितनी सफल रही मीरा?
4: पापू, मुझे लगता है कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के विचारों को सुनते हैं और उनके विचारों की स्वतंत्रता से सहमत भी होते हैं। मैं होलीफैक्स, होर, स्मट और चर्चिल से मिली और उन्हें आपके सिद्धांतों के बारे में बताया। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, वो जल्द ही भारत छोड़ देंगे।
0: लेकिन भारत में अभी जो स्थिति है वो सचमुच बहुत गंभीर है। लोग हिंसा पर उतर आए हैं और ऐसे तो
4: आप चिंता ना करें बापू, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए क्या आदेश है बापू?
0: मेरे विचार से हमें अलग अलग स्थानों पर जाना होगा, वहाँ के लोगों को अपने विचारों से अवगत कराकर सही रास्ते पर लाना होगा। तुम एक काम करो, अब तुम वर्धा चली जाओ।
4: जी, जैसी आपकी इच्छा।
1: ये वक्त 1942 का था। देश की आजादी चाहने वाले सभी लोग भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। अंग्रेजों ने सबकी गिरफ्तारी का फरमान जारी कर दिया और इसी धरपकड़ में मीराबेन फिर जेल पहुंच गई। कुछ 2 साल जेल में बिताने के बाद उनकी रिहाई हुई।
5: अब आप कहां जाएंगी मीराबेन?
4: मैं हरिद्वार के पास एक किसान आश्रम का संचालन करूंगी। मुझे जेल में भी पत्र द्वारा बापू के दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते थे।
5: मीराबेन, काफी दिनों से बापू का कोई पत्र नहीं आया।
4: हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें। वे निश्चित ही देश में व्याप्त घृणा व हिंसा से खिन्न होंगे और इसलिए उनमें शायद कुछ समय के लिए विरक्ति का भाव आ गया है।
6: मीराबेन, मीराबेन, बुरी खबर है।
4: क्या हुआ?
6: जी जी, खबर मिली है कि बापू नहीं रहे।
4: नहीं रहे? मतलब?
6: हाँ, किसी ने उनकी हत्या कर दी।
4: हे राम, मेरे लिए अब तक केवल दो सत्य थे, भगवान और बापू। आज वे दोनों मिलकर एक हो गए।
1: बरसों तक मीराबेन अपना काम करती रही, जनता की सेवा में निरंतर जुटी रही। लेकिन देश की आजादी के बाद जब उन्हें बापू के सपने बिखरते हुए दिखे तो वे चुपचाप भारत छोड़कर चली गईं। बरसों तक उनका कुछ पता न चला। 1979 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। तब वो वियना के पास एक गांव में सादा जीवन जी रही थी। 1982 में वो अमरता को प्राप्त हो गई।
7: निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन. आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से.
1: तो नवरात्रि के इस प्रथम दिन पर शैलपुत्री माता की पूजा होती है. शैलपुत्री माता कौन है? तो कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री ये प्रथम देवी है. पहला अवतार माँ दुर्गे का है जिसके अंदर खूब एनर्जी है, शक्ति है, और जो हिमालय की बेटी मानी जाती है और इसीलिए शिव के साथ की शक्ति बताई गई है. शैलपुत्री पुत्री यानी जो बेटी है और शैल माना पहाड़ यानी सती भवानी या पार्वती या हेमवती का ही दूसरा स्वरूप है. हिमालय का जो राजा हेमवान उसकी बेटी शैलपुत्री नवदुर्गा में प्रथम मानी जाती है और उसकी ये पूजा करके शक्ति को प्राप्त करने का भाव है. उसके एक हाथ में त्रिशूल दिखाया है और दूसरे हाथ में कमल पुष्प दिखाया है और भैंसा उसकी सवारी के रूप में दिखाया गया है. उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान और आनंद का भाव प्रकट होता है. अब ये त्रिशूल और कमल का प्रतीक जो दिखाया गया है ये किस बात का प्रतीक है? तो कहा जाता है कि त्रिशूल के नीचे एक छड़ दृढ़ निश्चय का प्रतीक है और ऊपर की तीन पत्तियां मन वाणी और कर्म द्वारा पांच विकारों रूपी राक्षसों पर विजय प्राप्त करने का द्योतक है. साथ ही साथ कमल पुष्प अर्थात संसार में रहते हुए तामसिक विकारी वायुमंडल से अलिप्त एवं पवित्र रहने का प्रतीक है. तो जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मन वाणी कर्म के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करके दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है और संसार में रहते हुए पवित्र रहता है तब उसके जीवन में आनंद का भाव और मुस्कान नेचुरल रूप में बनी रहती है.

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। किसे कहते हैं दोस्तों, हर किसी के जीवन अलग होती है। हर किसी के अंदर एक ख्वाब होता है, मुझे अपने जीवन को ऐसे जीना है। बचपन में हम माँ बाप के कहे हुए मार्ग पर चलते हैं और जैसे ही हम होश संभालते हैं और दुनिया को देखने लगते हैं, हम आसपास के लोगों को देखने लगते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ आशाएं उत्पन्न होती हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है और मैं अपने जीवन को इस तरीके से जीना चाहता हूँ। तो वो सपने और वो सोच बुनना शुरू हो जाता है। फिर फाइनली जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो थोड़ी बहुत दिशा मिल जाती है और हम अपनी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं जीवन जीना मतलब बाल्यकाल में स्कूल जाओ, युवावस्था में पढ़ाई पूरा करो, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर सेट हो गया, फिर मिडिल एज में आकर के जिम्मेवारियां संभालो, फिर वृद्धाप्य में आ गया तो फिर बाल बच्चों के साथ खुश होके जीवन पूरा हो गया। क्या यही जीवन है या हर कोई ऐसे जीना चाहते हैं या कुछ हटके भी जी सकते हैं? आइए आज हम इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है इसमें जानेंगे। हमारे साथ है एक योगी जीवन जीने वाले, ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय में समर्पित रूप से अपनी जीवन को जीने वाले आदरणीय श्याम भाई जी। आप वर्तमान समय में हेडक्वार्टर्स में रहते हुए अनेक कार्यों को आप मार्गदर्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं और ये जीवन उन्होंने क्यों और कैसे चुना है, उनकी ही जीवन के अनुभवों से आज हम जानेंगे। श्याम भाई जी, आपको आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, रेडियो मधुबन वालों का हमको बुलाया उसके लिए।
0: शुक्रिया भाई जी। पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने समय निकाला हमारे श्रोताओं के साथ अब अपनी जीवन की बहुमूल्य पलों के बारे में साझा करने के लिए। हम सबसे पहले उन पलों के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपका जो बचपन रहा है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस परिवार में हुआ और आपकी लौकिक परिवार का क्या माहौल रहा है, आप कितने भाई बहन हैं, आपका अपना लौकिक जीवन का परिचय थोड़ा संक्षिप्त में बताएं।
1: ओम शांति। मेरा पूरा नाम श्याम बाबू गुप्ता है और मैं भोपाल जोन पोरसा मध्य प्रदेश एमपी से निकला हुआ हूँ। एज मेरी 51 है अभी। और हमारे फादर जो थे 2012 में उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो हमारा पहले बिजनेस था, आड़त का काम था, जो सरसों गेहूं वगैरह जो खरीदने का होता है तो वो काम था हमारा। तो उस समय हम बिजनेस में भी रहते थे प्लस सेंटर की सेवाओं में भी अपना समय देते थे। तो हालांकि उस समय पिताजी थोड़े हमारे एंटी थे इस चीज से, ज्ञान में हम नहीं आए, वो सोचते थे कि हम शादी कर लें। तो उन्होंने काफी हमारे आजू बाजू और भी संपर्क वालों से कोशिश किया कि मैं कैसे भी करके शादी ये कर ले। और कभी कभी लोग बोलते थे कि आप दोनों शादी कर लो, भले ही ज्ञान में चलना शादी के बाद। तो और दूसरे लोगों का जो उदाहरण देते थे, उन्होंने भी शादी किया, रामचंद्र जी ने भी शादी किया, ऐसे करके देते थे। तो उनको हम उसी हिसाब से गाइड करते थे। फिर हमारा ज्ञान में आने का सिद्धांत यही रहा, क्योंकि हमें अपना जीवन जिस प्रकार से देश के लिए सेवा के लिए करना है, तो उस प्रकार से हमने अपने जीवन को एक संघर्ष माना, जीवन को सोचा चलाने के लिए। तो हमारी माताजी और हमारी लौकिक सिस्टर वो पहले से ही ज्ञान में थे,
0: मतलब ये ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो राज्यों की पढ़ाई है वो पढ़ते थे,
1: ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई पढ़ते थे पहले से ही। तो उनके माध्यम से भी हम संस्था से जुड़े और फिर इस संस्था में धीरे धीरे हम अपना आना जाना होता रहा और काफी चीजों का अनुभव मिला मुझे, जो ज्ञान का अनुभव नहीं था कि जीवन में जीने की कला क्या है। तो वो चीज हमें वहाँ सीखने को मिली, क्योंकि जीते तो सभी हैं लेकिन जीना कैसे है वो बाबा ने हमें सिखाया कि कैसे जीना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना है। कि दुनिया में लोग आते तो हैं और अपना जीवन सारे समय ऐसे ही निकाल देते हैं, जवानी से लेके बुढ़ापे में अपने गृहस्थ में ही जीवन निकाल दिया। लेकिन हमारा एक मतलब यही था कि अपने जीवन को हम अपना श्रेष्ठ बनाएं, यही हमारी एक भावना है।
0: तो श्याम भाई जी, आपको जीवन श्रेष्ठ बनाने की इच्छा थी, देश की सेवा करने की इच्छा थी, तो बचपन में भी आपको ऐसा ही फील होता था? कहाँ तक पढ़ाई किया था आपने?
1: हमने 12th किया था पढ़ाई
0: जी। तो घर की माहौल ऐसी थी या फिर आपको कहीं से ऐसी?
1: घर का माहौल नहीं, हमारा क्या है, बचपन से ही एक बिजनेस का संस्कार पड़ गया था, तो हमारे लौकिक भाई थे वो एमकॉम किया था उन्होंने, लेकिन हमारा क्या एक बनिया क्वालिटी में आते हैं ना, उनको नौकरी बहुत कम मिल पाती थी उस समय, तो इसलिए हमने कि नौकरी करके क्या करना है, करेंगे तो बिजनेस ही करना है, तो इसलिए हमारे काफ़ी साथी भाई बहन थे जो, तो वो सब माना थोड़ा ही पढ़ के अपने बिजनेस में लग गए थे।
0: जी, आपकी सिस्टर कहाँ तक पढ़ाई की थी?
1: सिस्टर ने तो कुछ एमकॉम ऐसा कुछ एमबीए कुछ किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है।
0: तो आप दो भाई एक बहन हैं?
1: हम दो भाई और छह बहन हैं।
0: छह बहनें,
1: जिसमें एक की शादी नहीं हुई है, जो समर्पित टीचर बहन है, और बाकी जो सिस्टर हैं वो सब ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान
0: से जुड़े हुए, अपना शादीशुदा जीवन जी,
1: जी जी शादीशुदा जीवन जी करके वो ज्ञान में
0: चल रहे हैं।
1: जी,
0: तो जैसे आपने कहा कि आपको ये ख्याल चलता था कि देश की सेवा करना है, ये आम जीवन मुझे नहीं जीना है, तो आपके जीवन में कोई आदर्श रहे जिनसे आप ऐसी प्रेरणा लेते थे, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको प्रेरित करते थे?
1: मुझे उस समय क्या है, बचपन था तो किसी से हमारा ऐसा संपर्क नहीं हो पाया कि भाई उनके साथ में रह करके और हम इस प्रकार से देश की सेवा कर सकें, तो वो संपर्क हमें ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद ही वो प्रेरणा मिली, वो हमें रास्ता मिला, तो उस प्रकार से हम उस रास्ते पे आकर के और अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे।
0: नहीं, बचपन में आपको क्यों लगा मुझे देश की सेवा करनी है?
1: क्योंकि केवल दुनिया में जीना है तो केवल अपने स्वयं के लिए जीना होता है, स्वयं के परिवार के लिए जीना होता है, लेकिन हमारा संकल्प हम देश के लिए जिए।
0: तो बचपन में आपको ऐसा फील होता था?
1: जी।
0: तो मतलब आपने कोई मूवी देखी थी या किसी फौजी को देखे थे?
1: मूवी वगैरह तो देखता था, लेकिन मुझे इतना याद नहीं रहता है उसी का, क्योंकि
0: नेचुरली आपको फील होता था।
1: जी जी,
0: ऐसा देश की सेवा करना चाहिए।
1: जी जी,
0: इस तरीके से बहुत अच्छा। तो जब आपकी बचपन से ही ये देश की सेवा करने का इच्छा थी और आपको एक दिशा मिल गई वो सेवा की भावना को ब्रह्म कुमारी इसके आने के बाद, तो फिर ज्ञान जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ज्ञान मिलता है वो सत्य ज्ञान है, इसके ऊपर निश्चय कैसे हुआ आपका?
1: उसके ऊपर निश्चय ये है कि भगवान हमें जो रोज मुरली सुनाता है, तो मुरली हम सुनते हैं और जो हमारे संकल्प आते थे तो वो संकल्प हमारे ऑलरेडी बाबा पूरा कर देता था। जैसे मान लो संकल्प तो अलग चीज है, लेकिन मैं 2003 की बात है समथिंग, तो उस समय ग्राम विकास अभियान की रैली निकल रही थी जो सारे विश्व में भ्रमण होता था, और माउंट आबू में उसका समापन समारोह था, तो उस समय में
0: पूरी भारत में वो रैली घूम के फिर माउंट आबू में समापन होता।
1: तो उस समय में वो गाड़ी को लेकर के माउंट आबू आने वाला था, तो गाड़ी की हम तैयारी कर रहे थे उस समय, तो वहाँ पर एक ऐसी घटना घटी हमारे साथ। तो उस समय क्या है, हम एक लोहे का पाइप जो बाबा की गाड़ी में झंडा लगाने के लिए लेके आ रहे थे, तो एक घर के आगे एक लाइन थी 33,000 KV की, तो उस लाइन से मेरा वो ध्यान नहीं था उस समय, क्योंकि यंग एज होती है इतना वो नहीं होता है, तो पाइप क्या है वो 3 फीट दूर से खींच लेता है, तो ऐसे ही मुझे वो 3 फीट दूर से वो पाइप खींचा, लेकिन मैं तो एकदम अचानक
0: मतलब बिजली खींच गई थी।
1: जी जी, तो लाइट क्या है वो पाइप तो मुझे नहीं मालूम, मेरे के आगे तो एकदम अंधेरा हो गया बिल्कुल, केवल छाया चित्र रह गया आत्मा का। फिर मैं अंदर ही अंदर महसूस कर रहा हूँ कि मुझे करंट लग गया और मेरा इस दुनिया से खेल अभी पूरा हो गया। तो फिर धीरे धीरे मैं वहाँ गिर गया, और मुझे नहीं मालूम उस चीज का गिरने के बाद फिर क्या हुआ, लेकिन वो गिरे भी थे वो भी आत्मा महसूस कर रही थी, लेकिन उस समय मुझे बाबा की बात याद आई, बाबा ने बोला कि अंत समय में केवल मुझे ही याद करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। तो उसी समय में ये गिरने से पहले मैंने अपनी बुद्धि को और बाबा की याद से जोड़ लिया,
0: परमात्मा
1: की याद से जोड़ा, फिर मैं धीरे धीरे वहाँ गिर गया। उसके बाद बताते हैं कि मेरे कपड़ों में भी आग लग गई थी, तो वहाँ कुछ भाई बहन थे तो उन्होंने अपने दस्ताने पहने हुए थे, तो उन्होंने आग को बुझाया, फिर हॉस्पिटल लेके गए। तो कहने का भाव ये है कि उसमें मुझे 6 महीना कम्प्लीट ठीक होने में लगा, तो 3 महीना तो ज्यादातर हम बेड पे ही रहे, और उसके बाद धीरे धीरे एक चलना सीखा माना लाठी के सहारे, फिर धीरे धीरे अपने आप को माना ठीक हो पाए हम। तो उससे हमें विश्वास हुआ है, बाहर वाले भी दुनिया में भी लोग जब हमको देखने आ रहे थे हॉस्पिटल में, तो उस समय वो लोग यही बोल रहे थे कि इनका बचना नामुमकिन है, लेकिन परमात्मा की ऐसी दया होती है, परमात्मा की जो सेवा करते हैं, तो उसमें परमात्मा भी हमें पूरा सहयोग देता है, और परमात्मा ने उस समय हमें उस जिंदगी को नया जीवन दिया। तो नया जीवन दिया तो हमें भी एक संकल्प आया कि हमें अभी पूर्ण रूप से देश की सेवा करनी है। फिर हम अपनी अच्छी तरह से ठीक हो गए और फिर हम बाबा की सेवा में पूर्ण रूप से अपना जीवन दे दिए।
0: जी, मतलब उस हादसे ने परमात्मा की महावाक्यों की सच्चाई आपको अनुभव कराई,
1: जी,
0: जिसे आपको विश्वास हुआ कि ये सत्य ज्ञान है और यही परमात्मा है,
1: जी, जी,
0: और जीवन को उद्धार करते हैं।
1: जी,
0: तो ये फिर आप रिकवर हुए और सब ठीक हो गया, लेकिन समर्पित होने का ख्याल कहाँ से आया आपको?
1: समर्पित होने
0: घर में पिताजी का विरोध तो था ही ना।
1: समर्पित होने का मुझे नहीं मालूम, मैंने अपने जीवन में बाबा के आगे माना, एक यही संकल्प था मेरा तो, कि जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन फल की इच्छा करना वो उसके बस में नहीं है। तो वो मेरा एक संकल्प रहता कि सेवा करते जाओ, कर्म करते जाओ, बाकी फल देने वाला भगवान है, वो मेरा काम नहीं है। तो मैं मधुबन में भी जब आया था 2006 में, तो मैं बहुत सीधा सिंपल था। तो कुछ लोग बोलते थे कपड़े भी थोड़े वैसे पहने जाते, हमारे एक वो होता है रीति रिवाज हैं जो भी है, तो लोगों को थोड़ा वैसा लगता था। तो लेकिन हमारा एक संकल्प था सेवा करते जाओ, तो हम अपनी सेवा करते गए। और 2006 में हम जब आए, तो उसके बाद हमें डायरेक्ट जुलाई में आए थे, पहले सेवा करके गए ऐसे 6 महीने करके, फिर उसके बाद हम 2007 में भी सेवा करने आए, फिर 2008 में हमें स्पेशल निर्मल दादी, शांता मणि दादी जो है हमारी, उनकी सेवा के लिए स्पेशल हमको जून में 24 जून मम्मा डे के समय हम आए थे, और
0: शांतामणि दादी के पास,
1: जी, शांतामणि दादी के पास, निर्मल शांतामणि दादी, तो उनकी गाड़ी की रथवान के सेवा किया मैंने उनके पास। और हमारा अगस्त में ट्रायल फार्म भी भर गया, तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे अचानक सब कुछ हो गया। तो मैं तो वैसे जो भी कुछ होता था, जैसे 2006 में मैं आया था सेवा में, तो मैंने बाबा को यही बोला, बाबा मुझे अब कहीं नहीं जाना है, बस मुझे आपकी यहीं सेवा करनी है। तो बस बाबा को ही मैंने योग में जब करते मेडिटेशन करते थे, तो उस समय बाबा को मैं बता दिया, तो बाबा ने ऐसे फटाफट ये काम करा दिया मेरा।
0: तो आपको घर से छुट्टी मिल गई थी?
1: घर से हमारी माता जी तो हमारे पूरे सहयोगी थे, लेकिन पिताजी थोड़ा सा एंटी थे। तो पिताजी ने हमारे को यही बोला कि अगर आप दुकान पर नहीं रहेंगे तो फिर हम आपको हिस्सा नहीं देंगे।
0: अच्छा, प्रॉपर्टी में हिस्सा,
1: प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमको नहीं देना, आप हमें नहीं चाहिए। तो हमने ऐसे कह करके उनको बता दिया, क्योंकि उस समय दुकान को छोड़ना, क्योंकि दुकान पे ज्यादातर हम ही पूरा संभालते थे, बाकी पिताजी थे और हमारे भाई थे, वो तो बाहर का कारोबार देखना वो रहता था उनका। तो इसलिए फिर मेरा संकल्प यही था कि मैं अपने लिए कमाऊं कि किसके लिए कमाऊं, भाई मैं तो अकेला हूं। मान लो माँ बाप है, जिम्मेवारी थी वो तो हमारी चलो पूरी हो गई थी, वो माँ बाप की सेवा के लिए भी चलो हमारे भाई हैं या कभी कभी जाना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी समझ करके हमारी जो भी जिम्मेदारी थी वो हमने अपनी पूरी कर दिया, उसके बाद हम बाबा के घर में समर्पित
0: हो गए। तो फिर आप जब मधुबन आए समर्पित होने, उस समय क्या उम्र थी आपकी?
1: उस समय हमारी उम्र हो गई लगभग 30 साल।
0: 30 साल की उम्र में आप, जब आप 30 साल की उम्र में आए परमात्मा के घर में समर्पित होके सेवा करने के लिए, उस समय जो आप अपने आप को देखते हैं और अभी आप अपने आप को देखते हैं, क्या अंतर महसूस करते हैं आप?
1: उस समय काफी अनुभव हमको बढ़ता है, क्योंकि शुरू शुरू में जब आते हैं तो उस समय इतना हमको अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो सब चीजें देखते हैं। धीरे धीरे जब यहाँ रहते हैं तो उस चीज का अनुभव बढ़ते, बड़ों से हमें पालना मिली। तो जैसे हमारे आदरणीय निरोर भाई साहब जो थे ब्रह्मा कुमारी के सेक्रेटरी जनरल, तो उनकी हम सेवा में रहे थे, रद्वान के रूप में भी सेवा किया था, और प्लस उनके अंग संग रह करके भी उनका साथ रह करके उनकी सेवा किया था। लेकिन बड़ों के साथ रह करके हमें दूसरों के साथ अपना कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसे उनके साथ चलना चाहिए, तो भाई साहब ने हमेशा यही सिखाया कि हमेशा आपस में प्यार से रहने का होना चाहिए, कभी आपस में खटपट नहीं होना चाहिए। तो प्यार से रहने से वाइब्रेशन भी अच्छे रहते हैं, प्लस जो रहने वाले हैं वो भी उनका माइंड भी अच्छा रहता है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ खटपट अगर होती है, जैसे बाहर की दुनिया में भी देखा है अगर घरों में कभी खटपट होती है तो वो वायुमंडल खराब हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने हमें जैसे कहा कि आपस में प्यार से रह करके और एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाओ।
0: तो कोई ऐसी चीजें है जो आपको लगता है कि अगर मैं बाबा के घर में या मधुबन में नहीं आता, समर्पित नहीं होता, तो मेरा जीवन का ये भाग्य नहीं बनता या मेरे जीवन में ये जो परिवर्तन है वो कभी नहीं हो पाता?
1: ये चीज तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भाग्य नहीं है। ब्रह्म कुमारी संस्था से जब मैं जुड़ा तो सब सौंप दिया प्यारे प्रभु को। तो मैं तो यही सोचता हूँ बाबा के ऊपर है, बाबा को जो करना है वो जाने। मैं काफी बार कभी कभी अनुभव करता हूँ कि हम मनुष्य सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन करण करावन हार जो शिव बाबा है उसे क्या मंजूर है वो तो वो ही जानता है। तो हमने तो अपने जीवन बाबा के हवाले कर दिया लेकिन बाबा को क्या करना है वो बाबा जाने। बाकी हमने ये कभी संकल्प ही नहीं किया कि बाबा के नहीं बनते तो हमारा जीवन क्या होता, वो हमने कभी संकल्प नहीं किया।
0: हाँ, शुरू से आपको ये था मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, बस हो गया। बहुत सुंदर भाई जी, ये भी कितनी अच्छी सोच है कि सिर्फ मैं और परमात्मा हमारा यही रिश्ता है। बहुत सुंदर भाई जी। तो अभी जब आपके परिवार वाले आपसे मिलते हैं, 20 साल से आप एक योगी जीवन जी रहे हैं और इस संस्था की जो मुख्य दादियां और भाई साहब थे उनके अंग संग रह करके आपने अपने आध्यात्मिक उन्नति की है, तो जब आपकी लौकिक परिवार अभी मिलते हैं तो फिर वो क्या महसूस करते हैं?
1: उन्हें यही एक अच्छा लगता है कि भाई देखो मधुबन में रह रहे हैं तो इन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छा सफल कर लिया। वहाँ की दुनिया में तो हालत खराब होती है देखती हैं तो उन्हें एक ये चीज लगता है। दूसरा हमारे फादर जो है तो वो बाद में वो ज्ञान में आए तो फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव होते गए। फिर मधुबन में भी आए तो मधुबन में भी उनको हमने सब घुमाया तो माना एक जो उनके अंदर नेगेटिवता थी वो पूरा पॉजिटिव में परिवर्तन हो गया कि उनको भी लगा कि हाँ अभी अच्छी जगह रह रहे हैं। तो वो भी अभी जो नेगेटिव अंदर भरा हुआ था वो सब निकल गया उनका। माना वो भी ज्ञान में काफी साल चले, 4-5 साल शायद मैं समझता हूँ, ज्यादा भी हो गया।
0: शरीर छोड़ने से पहले?
1: हाँ, शरीर छोड़ने से पहले लगभग 5-6 साल वो बाबा के यज्ञ में मुरली वगैरह रोज सुनना, गीत भी गाना बाबा के, वो उनकी लगन लग गई थी। हर गुरुवार को वो कुछ ना कुछ फल वगैरह बाबा के लिए लेके जाते थे।
0: बहुत सुंदर। बचपन में पढ़ाई करते हुए आपने दुनिया की महान आत्माओं को भी देखे होंगे, सुने होंगे, और आप जब संस्था में आए यहाँ पे महान योगियों को देखा, आप क्या अंतर महसूस करते हैं?
1: हमें तो यही लगता कि हमने जानकी दादी को भी साथ में देखा है, गुलजार दादी के पास जब भाई साहब के साथ में हम जाते थे ना तो गुलजार दादी को भी हम एक बार ज्ञान सरोवर से नक्की लेके वगैरह गाड़ी से घुमाने लेके आ गए थे। तो उनका जीवन हमने जो देखा एकदम वैराग्य वृत्ति होता है, उनकी दृष्टि वृत्ति कृति एकदम शुद्ध प्योर, क्योंकि उनके साथ जो भी मिलने सामने जाएगा तो पूरा एकदम संपूर्ण जैसे कहें तृप्त आत्मा हो जाती है, ऐसे उनका जीवन एक अनुभव होता है उनको। तो उनकी तपस्या, जिन्होंने इतनी तपस्या की थी पहले से हमारी दादियों ने, हमारे वरिष्ठ भाइयों ने, तो उनकी तपस्या ही उनकी सेवा थी। क्योंकि बाबा भी हमेशा बोलता है ना कि आपके चेहरे से ही सेवा हो, तो ऐसे ही हमारी दादियां जो थी, हमारे बड़े भाई थे, भाई साहब थे, तो उनके चेहरे से ही बाबा की सेवाएं अनेक होती गई और हमें उससे ही सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन भी इसी प्रकार से योग तपस्या के माध्यम से ही अपने आप को परफेक्ट बनाएं जिससे सामने वाले को भी वो चीज अनुभव हो।
0: तो श्याम भाई जी, आपको जीवन में कब और कैसा महसूस हुआ कि यही जीवन है, इसे ही जीना कहते हैं या जीना इसी का नाम है? कोई ऐसा मोमेंट या कोई पल रहा जो आपको महसूस हुआ कि हाँ यही जीना इसी का नाम है, इसे कहते हैं?
1: मैं जब ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़ा था तो उस समय तो हम मंदिर वगैरह में भी जाते थे कभी कभी, कोई कोई धर्म के कार्म भागवत हो रहे हैं या जो भी होता है तो उससे भी भावना वो रहती थी मंदिरों में जा कर के। तो फिर जब ब्रह्म कुमारी से जुड़े तो हमने अपने आप को ओनली कोई संकल्प नहीं रखते थे, बस बाबा की सेवा, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते थे। जो बाबा की सेवा मिलती थी, हमारी ज्यादातर पहले शुरू शुरू में रथवान गाड़ी चलाने की सेवा रहती थी, तो गाड़ी से जो भी गेस्ट आते थे उनको अहमदाबाद लाना, उदयपुर से लाना, छोड़ना, ऐसे करके स्टेशन कभी छोड़ना, तो जो लोग

0: हम सेवा करते थे तो वो लोग के अंदर से यही भावना निकलती थी कि ये लोग कितने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, कभी भी किसी से कुछ लेना देना ऐसा नहीं रहता है इनका, तो वो लोग भी काफी संतुष्ट होकर के जाते थे। तो हमारी यही भावना रहता है कि हम कभी किसी की सोचा ही नहीं कि हमारा क्या होना है क्या नहीं होना है, वो हमने नहीं कभी सोचा।
1: बहुत सुंदर भाई जी, वर्तमान समय में आप क्या सेवा करते हैं मुख्यालय में?
0: वर्तमान समय हमारे आदरणीय ब्रह्म कुमारी के सेक्रेटरी जनरल निर्वर भाई साहब जो थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद, तो हमारे डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी जो ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और हमारे आदरणीय शशि दीदी जो पांडवन को संभालते हैं, तो उनके द्वारा हमें जो भी गाड़ी अरेंजमेंट करने की सेवाएं रहती हैं तो उनको हम फिर गाड़ी अरेंज कराते हैं। और फिर उसके बाद कभी हमको भी जाना होता है, किसी कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो उनको लाना ले जाना, प्लस हमारा महादानी कॉटेज जो है जो उनके मार्गदर्शन में ही उनके निमित्त है, तो उसको संभालने के लिए हम निमित्त बनाया हुआ है बाबा ने।
1: बहुत सुंदर, मतलब जो भी गेस्ट होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का आप कारोबार देखते
0: जी,
1: हैं।
0: जी।
1: बहुत सुंदर भाई जी, तो अंत में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, एक योगी का जीवन या एक योगी एक आदर्श जिसे हम कहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर कोई सोचते हैं कि मैं भी इस तरीके से जीवन जीऊं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: मेरा तो यही एक मानना है, क्योंकि हम इस सृष्टि पर जन्म लिया है तो इस जीवन को जितना भी हो सकता है दूसरों को सुख देने का काम करें। तो जितना आप दूसरों को सुख देंगे उतना आपकी पुण्य की पूंजी कहें, दुआएं कहें, वो आपकी जमा हो जाएंगी और वो ही दुआएं आपको जन्म जन्म वो आपके काम आती हैं। तो हमारा तो यही एक संकल्प है कि जो भी भाई बहन इस चीज को सुन रहे हैं तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और ब्रह्म कुमारी का जो हमने चुना है तो उसे भी अपने जीवन में, अगर कुछ हमारा मेडिटेशन होता है राजयोग के द्वारा, तो उसको भी अगर आप करेंगे साथ साथ तो आपका जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा और आपकी जो गृहस्थ जीवन भी कहें, जो गृहस्थ जीवन वाले भी हैं, और उनका भी जीवन श्रेष्ठ बन सकता है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आज आप अपनी अमूल्य समय लेकर के हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में आए। जीना इसी का नाम है, इस कार्यक्रम के जरिए आपकी योगी जीवन की उन जीवन के अनुभवों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
0: थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों यहीं पे हम विराम लेते हैं आप सभी से। अभी तक आप सुन रहे थे श्याम भाई जी को, जो ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए योगी के साथ और उनके जीवन के अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी श्रोताओं को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में जिस विषय पर हमने सुना था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और वो विषय था रेजिलेंस। तो आज हम जानेंगे अडेप्टेबिलिटी के बारे में। उसी से ही कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मूल्य दूसरे मूल्य के साथ पूरक है। तो आज हमारे मध्य हैं बीके सस्मिता दीदी जी, जो डिवाइन रिट्रीट सेंटर भुवनेश्वर से हम सभी के मध्य पधारे हैं। आपने PG इन इकोनॉमिक्स किया है, इसके साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिशनर भी हैं। तो दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में।
2: ओम शांति, थैंक यू
1: जी। तो आपने PG इन इकोनॉमिक्स किया, और उसके बाद आप फील्ड चेंज करके स्पिरिचुअलिटी को अपना करके बहुत सारे यंगस्टर्स को आप गाइड कर रहे हैं। तो मतलब आपने भी अडॉप्ट किया, अडॉप्टेबिलिटी दिखाई, और उस फील्ड से इस फील्ड पर आप आए
2: जी।
1: तो सरल शब्दों में आपसे समझना चाहेंगे कि अडॉप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलनशीलता, जिसको कहते हैं हिंदी में, इसका वास्तव में क्या अर्थ है और हमारे जीवन में इसकी क्या जरूरत है
2: जी। अडॉप्टेबिलिटी एक ऐसी कला है, हम इसे कला भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हर क्षेत्र में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हमें बहुत खुश रहना है, लाइट रहना है, प्रेजेंट में रहना है, छोटी छोटी बातों में मूड आउट नहीं करना है, तो ये विशेषता हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत सहज है, इसे हम सहजता से अपना सकते हैं। हाँ, इसका ट्रिक जो है वो मेडिटेशन के थ्रू ही आपको बहुत ईजी फील हो सकता है, ये हम ज़रूर बताएंगे। और इसकी आवश्यकता हर संबंध में, हर क्षेत्र में, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपका परिवार में आपका रिलेशन कैसा है, आपका वर्क फील्ड में रिलेशन कैसा है, आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको अगर देखें अलग अलग पहलुओं में, ये हर जगह आपको काम में आने वाला है। आपकी मनस्थिति में भी, आपका सवेरे मन कैसा है, दोपहर तक कैसा है, शाम तक कैसा है, क्यों ये चेंजेस है, चेंजेस को स्वीकार हम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। और इसका एक्चुअल में हर पहलू में इसकी आवश्यकता है
1: जी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने करियर की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गई। तो आजकल ऐसा हो रहा है ना, कई बार हम प्लानिंग करते हैं कि हम फॉरेन में जाके जॉब करेंगे, करते भी हैं, लेकिन अचानक नौकरी से हमें, मतलब हम निकल जाते हैं या फिर हमें निकाला दिया जाता है। तो ऐसे समय में खुद को मेंटली कैसे स्टेबल रखें, इस परिस्थिति को कैसे अडाप्ट करें, शुरुआत कहाँ से करना चाहिए
2: जी। जैसे हम एक बहुत अच्छा प्लानिंग किया था, है ना, हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, हमारी बहुत सारी खुशियां भी उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि हम बहुत कुछ देखते हैं, ड्रीम है हमारा, लेकिन कुछ अचानक ऐसी चीज़ें आ गए जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो हम कैसे उसे अडॉप्ट करें, इसका भी बहुत सहज तरीका है। क्योंकि मुझे फाइनली इन सब चीज़ों से क्या चाहिए था, बहुत सारा खुशी
1: जी,
2: है ना, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम, ये जरूर दोबारा इसी बात पे आएंगे, जैसे जैसे हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है, आप अपने आप में इतना यूनिक और स्पेशल और ब्यूटीफुल है, ये अनुभूति आप राजयोग मेडिटेशन में ही कर सकते हैं। तो मैं वो एक बहुत सुंदर चैतन्य शक्ति, और मैंने ये प्लानिंग किया था और इसका ये रिजल्ट है, चलो कोई बात नहीं, अगर वो प्लान चेंज भी हो गया, पर मेरी अनुभूति की जो सुंदरता, ये जब हमने किया हुआ है, तो उसी को लेके हम एक प्लान टू में भी जा सकते हैं, और उसे भी हम बेहतर बना सकते हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी आ जाए। इसका शुरुआत यहीं से है कि मैं कौन हूँ, मैं अपने आप में बहुत एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत यूनिक हूँ, मेरा हर क्रिएशन बहुत यूनिक ही होने वाला है, क्योंकि मैं क्रिएटर बहुत यूनिक हूँ
1: जी।
2: तो यहाँ से हम स्टेबल हो सकते हैं, फिर फ्यूचर के प्लानिंग में जा सकते हैं। और ये जो हमारा प्लान टू, ये भी बहुत सुंदर हो सकता है, ऐसे हो भी सकता है ना, प्लान जो वन था उसमें आगे जाकर कोई और प्रॉब्लम आने वाला रहेगा, इसलिए भगवान ने मुझे एक दूसरा अपॉर्चुनिटी दिया है
1: जी,
2: तो उसकी मैं प्लानिंग करूँ
1: जी। कई बार दीदी बदलाव को हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, मन स्वीकार नहीं करता है, या देख लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी है, कुछ भी चीज़ें हम बदलना चाहते हैं तो जल्दी से हम उसे स्वीकार नहीं करते, उसके नेगेटिव साइड को ही देखते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी को डेवलप कैसे किया जा सकता है, या कोई भी चेंज हो उसे कैसे एक्सेप्ट करें, उसका पहला सूत्र क्या है, माइंडसेट क्या है?
2: उसका पहला ही माइंडसेट ये है कि मुझे मेरे संकल्पों पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि हम जैसे हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारी जो पढ़ाई है रोज की, वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना हाईली एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन जो गॉडली नॉलेज के थ्रू हम रोज सुनते हैं, तो परमात्मा हमें उसमें ये सिखाते हैं कि आपके संकल्प से आपकी सृष्टि
1: जी।
2: तो सबसे पहले मैं अपने संकल्प को बहुत पावरफुल रखूं, ये आप पर तय करता है, क्योंकि देखिए सिचुएशन वही है, किसी के लिए वो बहुत बड़ा बन जाता है, किसी के लिए बहुत छोटा बन जाता है, ये कारण क्या है? कारण है हर एक की आंतरिक शक्ति, उनकी आंतरिक स्थिरता या आत्मा की ताकत कैसी है। तो जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिसेस बढ़ाते

0: जाते हैं तो शुरुआत हमारी एक सही संकल्प से हो कि जो भी बदलाव है, क्योंकि हर चीज तो चेंज होता है। अब देखो हमारा शरीर भी चेंज होता है, दिन में मन भी चेंज होता है, ऋतुओं में चेंजेस आता है, दिन साल महीने ये भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज है ना। तो जरूरी नहीं जिसमें मैं बहुत एक कंफर्ट जोन में था और आज चेंज हो गया, कोई बात नहीं, मुझे एक चीज नया लग रहा है, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको भी एक्सपेरिमेंट करके देखूं कि इसके साथ मैं कितना क्रिएटिव रह सकता हूँ। तो एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है ना
1: जी।
0: तो जिसका जितना इनर स्ट्रेंथ रहता है वो तो अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहता है कि मुझे कुछ और सामने से आए, मैं कुछ और क्रिएटिव बनाऊं।
1: जी
0: ये तो मेरा रेगुलर पैटर्न था, कुछ मैं नया करूं। तो बदलाव को पसंद नहीं करना नहीं, उसे बहुत प्यार से स्वीकार करें कि मेरे लिए तो ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है और मुझे बहुत अच्छा ही करना है आगे चल के, और मैं कर सकता हूँ।
1: जी तो अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि कई बार नॉलेज है, कोटेशंस पसंद आता है, हम घर पे दीवारों पे लगा के रखते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आता है तब हम अपने मन को स्ट्रांग नहीं बना सकते हैं प्रैक्टिकली।
0: जी ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल ये तब होता है जब आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस करके देखिए,
1: रेगुलर
0: करें इसे, देखिए। जैसे हमें अगर मान लो गाड़ी चलाना है, हम प्रैक्टिस करके फिर रोड में जाते हैं ना, हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, एक्सीडेंट होगा। इसे आप करके देखें, इतना ब्यूटीफुल है राजयोग मेडिटेशन, जिसमें मैं कौन हूँ और मैं एक बहुत ब्यूटीफुल बींग हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, पवित्र हूँ, यूनिक हूँ, मैं भगवान की यूनिक क्रिएशन हूँ, मेरा यूनिक बॉन्डिंग है ऑलमाइटी के साथ, उसे मैं महसूस करूँ, उसके साथ का संबंध को मैं यूज तो करूँ। जैसे मान लो कोई एक सिचुएशन आ गया, हम एकदम से क्या करते हैं, अपने नजदीक के दोस्त को उससे बात करेंगे, सीनियर से बात करेंगे, माता पिता को बोलेंगे, या हमें जहाँ पे भी लगता है कोई हमें सहारा देने वाला है उससे बात करेंगे। आप एक बार सोचिए क्या हमेशा ये अवेलेबल रह सकते हैं हमारे साथ? नहीं। तो आप ये ट्राई करके देखें, आपके रोजमर्रा के जीवन में ये इतना ब्यूटीफुली, अगेन और एक बार हम बताएंगे, जितना हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं और जो गॉडली नॉलेज, वो इतनी हाईली एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई रोज आपको बहुत प्यार से आपका सेल्फ एस्टीम को इतना ऊंचा उठाता है, मॉर्निंग मेडिटेशन और उसके बाद गॉडली नॉलेज इतना ऊंचा उठाता है, कोई आपको इतने प्यार से एड्रेस करता है कि आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत यूनिक हो, आप भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हो, उसकी शक्ति ही आपकी शक्ति है, आप अपनी शक्तियों को संकल्प में यूज करो, ये हमें कौन कह रहा है? उसे ना ट्राई करना चाहिए एक्चुअल में।
1: okay.
0: ये यहाँ से शुरू हो सकता है और ये आप करके देखें, तभी प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में भी ये कैसे काम करता है। हमारे वाइब्रेशंस ही
1: जी
0: प्रकृति एब्जॉर्व करता है और हमें सब कुछ रिटर्न में देता है, बस आप ट्राई करके देखिए।
1: जी तो प्रकृति के साथ बात करने के लिए भी एडेप्टेबिलिटी की जरूरत है?
0: जी कर सकते हैं।
1: ओके क्योंकि आजकल बाहर के क्लाइमेट भी चेंज हो रहे हैं, अंदर के क्लाइमेट में चेंज हो रहा है लगातार, तो ये वैल्यू बहुत जरूरी है। मान लीजिए घर में अचानक कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है तो वो बदल जाए और लाइफस्टाइल में हमें थोड़ा सा कटौती करनी पड़े, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे थोड़ा सा हम कटौती करें, तो व्यक्ति को सडनली फ्रस्ट्रेशन आ जाता है या फिर इरिटेशन हो जाती है, तो इस जगह पे हम एडेप्टेबिलिटी को कैसे देखेंगे?
0: हाँ जी, यहाँ पे आप देखिए, जितना हम अंदर भर रहे हैं, हम बहुत शांत हैं, हम बहुत खुश हैं। आप देखो किसी के पास लाखों हैं लेकिन जीवन में खुशी नहीं है, किसी के पास लाखों नहीं है लेकिन वो संतुष्ट है, खुश है, बीमारी नहीं है, उनके रिलेशंस अच्छे हैं, तो एक्चुअल में वो एक हैप्पी पर्सन हम बोल सकते हैं ऐसे एकदम से, क्योंकि इस समय हम जिस माहौल में खड़े हैं, हम कलयुग के जिस टाइम पे खड़े हैं, ये बहुत नेचुरल है। फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब कुछ भी आ जाना एकदम से, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे रिलेशन हो, अगर फाइनेंस में आ भी जाता है और हम अंदर से भरे हुए हैं तो भी ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं आप एक बहुत लग्जरी कार यूज करते थे, ठीक है, आप अब वो यूज नहीं करेंगे, किसी वजह से आपने बेच दिया, बाइक में जा रहे हैं, क्या फर्क आएगा? आपकी जो यूनिकनेस है, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, क्या वो कार की वजह से आप वैल्यूएबल थे? बाइक की वजह से आपका वैल्यू कम हो गया, नहीं ना, वो तो एक साधन था ना
1: जी,
0: वो सारे इंस्ट्रूमेंट थे, उससे ज्यादा वैल्यूबल आप हो, वो प्योर बींग, वो एनर्जी जो सब कुछ शरीर के द्वारा कार्य करती है। तो इसकी महसूसता जब बढ़ती है तो धीरे धीरे, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन हाई ही रहेंगे, तो ये एक पेपर आया और वो जाएगा भी, और एक बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी भी सामने खड़ा हो जाएगा कि अब वापस फिर से अपने और एक ऊंच अवस्था में जा सकते हैं फाइनेंशियली। ये सिचुएशन भी आपके सामने निर्माण हो जाएगा क्योंकि आपके वाइब्रेशन हाई रहा।
1: जी बिल्कुल, तो इस प्रकार से आप अपने आप से बात करें कि कार के वजह से आपकी वैल्यू नहीं थी, आपकी वैल्यू आपके गुणों से, आप जो पर्सनालिटी हाँ, उससे,
0: हमारी ड्रेस से, हमारे घर, हमारी बंगलो, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस, हमारे पार्टीज, फंक्शन, इस वजह से मेरी वैल्यू नहीं है, वो तो इसलिए है क्योंकि मैं हूँ।
1: राइट,
0: तो वैल्यूबल कौन है? मैं वो इटर्नल बींग, मैं जो वो पावरफुल बींग हूँ, पीसफुल बींग हूँ, लवफुल बींग हूँ, ये मैं हूँ, मेरी वजह से वो सब है।
1: राइट, तो इसे अपने आप से बात करते हुए बार बार याद दिलाना है, तभी आप उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर सकते हैं।
0: अडॉप्ट भी करेंगे और हमारा वाइब्रेशन हाई होगा ना, तो प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे केसेस है भाई बहनों के, ये चेंज आ ही जाता है, बेटर अपॉर्चुनिटी सामने खड़ा होता है
1: हमारे। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हाई एनर्जी, फिर हाई एनर्जी चीजों को अट्रैक्ट करती है। और मान लीजिए कोई वर्क प्लेस है, ऑफिस है, उसमें अचानक ही नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, तो डर भी है और फियर ऑफ जजमेंट भी है, तो रेजिस्टेंस भी है, तो इन सब चीजों को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जा सकता है?
0: जी, ये भी एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सबके सामने शेयर करना चाहूंगी।
1: जी,
0: तो जैसे कुछ सेशंस जब चल रहे थे विहासा का ऑन हॉस्पिटल में, तो एक डॉक्टर्स का ग्रुप था, तो उस डॉक्टर बहन ने ऐसे ही एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्होंने क्या थॉट पावर यूज किया था, शेयर किया कि उनके जहाँ ट्रांसफर हुई और उनकी जो डीन थी, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं और बहुत इरिटेट रहते थे, तो ये जब उनके जस्ट सडन उनके ही नीचे इनका ट्रांसफर हुआ और उनको 3 साल उनके साथ काम करना था, तो सब ने कहा आप इनके साथ नहीं चल सकते, इम्पॉसिबल है, आप कर नहीं पाओगे। तो वो मैडम हमें शेयर कर रही थी कि हमने एक ही थॉट रखा था, ये मेरी सीनियर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन, क्योंकि जो डीन थी वो काफी रिनाउंड है
1: जी,
0: चाहे थोड़ा उनका पर्सनालिटी कैसे था, कड़क था, लेकिन अपने काम के क्षेत्र में वो एक दिग्गज थी, तो उन्होंने एक ही थॉट रखा, मेरी सीनियर है और मुझे इनसे बहुत कुछ सीखना है इन 3 सालों में, तो मुझे बहुत विनम्र रहना है, हमेशा स्माइल करके उनको विश भी करना है। तो वो पूरे हॉस्पिटल में ये पाया गया कि सिर्फ वही एक ऐसी लौती डॉक्टर थी जिनसे वो डीन मैडम देखते ही स्माइल करते थे
1: जी,
0: तो सभी में ये सवाल होता था कि आपने ऐसे क्या किया, ये कभी तो मुंह उठा के ऐसे स्माइल तो दूर की बात, हमें रेस्पॉन्ड भी नहीं देते हैं, आपसे क्यों इतना ऐसे करते हैं। तो इनका कहना था, मेरा एक ही थॉट था, ये मेरे इमीडिएट सीनियर है और मुझे बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मुझे विनम्र रहना है और हमेशा स्माइल करना है उनके साथ, तो उनका नेचर चेंज हो गया।
1: तो एक थॉट प्रोसेस से पूरी दुनिया बदल गई।
0: मतलब डर तो था ही नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक संकल्प रखा, 3 साल तो ऐसे चलना ही है ना, करना ही है, सीखना है, तो वो घुड़घुड़ के क्यों करना है, उसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हम बना के भी कर सकते हैं।
1: राइट,
0: और सामने वाले के पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आ गया।
1: तो एक थॉट, एक विचार माहौल को परिवर्तन कर देता
0: जी
1: है। जी, तो दोस्तों आप भी ऐसे कर सकते हैं, अगर कहीं नई जगह पे जा रहे हैं आप, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जुड़ रहे हैं, तो एक थॉट प्रोसेस जो आपके आसपास के माहौल को बदल देगा, तो वो थॉट प्रोसेस क्या, ये आप लिख सकते हैं सोच करके, समझ करके अपने वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग। और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि अगर आप कहीं नई जगह पे जा रहे हैं तो आप क्या नया विचार के साथ जा रहे हैं, वो आप व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगर हमारे काम करने का पुराना तरीका वर्षों से पहले जो सही चल रहा था, लेकिन अभी जो नए नए टेक्नोलॉजी है उसके कारण तरीका बदलना पड़ रहा है हमें, तो हमें पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो कैसे वो कंफर्ट जोन से हम बाहर निकले?
0: अगर हम हमेशा ना पूरा लाइफ स्वयं को स्टूडेंट समझेंगे
1: जी,
0: स्टूडेंट कैसे होते हैं, वो हमेशा उनके लर्निंग मोड में रहते हैं कि हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ आगे करना है, नया नया करना है, तो बहुत खुश रहेंगे।

0: सीखना है सब कुछ, मैं शरीर के थ्रू सब कुछ कर रहा हूँ, तो कुछ नया आया तो मैं नए भी सीख लूंगा और करूंगा, आप एक्चुअल में एंजॉय करेंगे।
1: जी, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का तरीका है अपने आप को स्टूडेंट समझें। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट समझते हैं, सीखने के लिए मन भी है, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं तो वो जज करते हैं या टॉन्ट करते हैं या आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो आपको थोड़ा फियर होता है कि अच्छा मेरा इंसल्ट ना हो जाए, पता नहीं क्या,
0: मतलब
1: सीखने के दौरान
0: कि वो कुछ बोल दे कि तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा,
1: क्योंकि मैं उम्र में बड़ी हूँ और वो छोटे हैं, मुझे सिखा रहे हैं।
0: हाँ, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ स्पिरिचुअलिटी काम में आता है। आयु तो शरीर का है ना, कोई 50 साल का है, कोई 30 साल का, पर मैं शरीर नहीं हूँ। हम जितना राजयोग का प्रैक्टिस करते हैं, हम रोज अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन में बार बार ये प्रैक्टिसिंग करते हैं कि मैं एक बहुत ब्यूटीफुल बींग हूँ, एक लाइट हूँ, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, लव मेरा ओरिजिनल क्वालिटी है, ये मैं एक एनर्जी हूँ, एक शक्ति हूँ, और ये मेरा शरीर का आयु है। तो अंदर जो ठहराव रहता है, जो शांति रहती है, जो एक शक्तिशाली स्थिति बनती है परमात्मा के साथ कनेक्शन के बाद, उस आधार से आप एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि गॉडली स्टूडेंट तो है ही, हम पढ़ाई तो करते हैं, साथ साथ आपका जो वर्क फील्ड है, स्वयं को अपग्रेड करने में भी आपको मजा आएगा। वहाँ ये नहीं फील होगा, देखो टीचर तो हमारा कोई भी हो सकता है, एक छोटा बच्चे से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो उसमें क्यों जाना, हमें देखना है कि नहीं, अरे उस समय तो ये मेरे लिए मेरा टीचर है ना, मैं कितना वैल्यूबल चीज इनसे सीख रहा हूँ, तो उसमें भी क्यों जाना कि मैं छोटों से सीख रहा हूँ या वो मुझे कुछ बोल देंगे, कोई बात नहीं, उसमें नहीं जाना है। और ये एक्चुअल में ये फीलिंग में हम तभी नहीं जाते जितना हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, हमें उल्टा अंदर से थैंक यू निकलता है कि चलो भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया सीखने के लिए और कितने अच्छे गाइड करने वाले भी मेरे पास है।
1: जी।
0: आपका दृष्टिकोण चेंज होगा कि चलो छोटे हैं तो क्या हुआ, मुझे सिखाने वाले तो भगवान ने किसी को भेजा है, कोई तो है मेरे पास,
1: राइट,
0: तो आप बहुत अप्रिशिएट करेंगे,
1: नजरिया चेंज करके उनके अंदर अच्छाइयों को देखने की कोशिश करें। मान लीजिए फियर ऑफ जजमेंट है, कोई नई चीजें सीखने के लिए कई बार हमें पूछ पूछ के सीखना पड़ता है
0: जी,
1: क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उसको तो सब कुछ आता है,
0: बहुत स्मार्ट है,
1: तो हमें पूछ पूछ के सीखना होता है ना, वो हेजिटेशन होता है
0: जी,
1: तो वो भी राजयोग के द्वारा या अपने साथ बात करते करते
0: बिल्कुल चला जाता है, क्योंकि हम जैसे ही बहुत हायर एनर्जी लेवल में रहते हैं, है ना, एक ऊंच स्थिति में है, हमारे वाइब्रेशन कैसा है, बहुत प्लीजिंग है, पीसफुल है, लविंग है, तो आप बहुत जल्दी ना फ्रेंडशिप कर सकते हैं किसी के भी साथ, कोई उम्र वाले भी हो आपके साथ काम करने वाले, और जहाँ फ्रेंडशिप बन जाता है वहाँ सीखना बहुत इजी होता है, क्योंकि दोस्तों के बीच कोई हिचकिचाहट रहता ही नहीं है सीखने के लिए कि मुझे ये पता नहीं, आप बहुत ओपन हो के बात कर सकते हैं कि हमें नहीं पता है, आप थोड़ा सिखा दीजिए, या यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ईजीनेस आ जाता है एक्चुअली, क्योंकि हम कैसे हैं इस समय, हमारा जो इमोशनल रिलेशनशिप जो है एक दूसरे के साथ, वो एक समान लेवल में है, एक इमोशनल कनेक्शन है
1: जी,
0: ना, मशीन टू मशीन जैसा कनेक्शन वो नहीं है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, वाइब्रेशन के थ्रू जुड़े हैं, संबंध के थ्रू जुड़े हैं, तो एनर्जी लेवल इक्वल है, तो सामने वाले को भी मन होता है कि चल ठीक है हमें भी सिखाना है। अब देखो, आप जब बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, आपके अंदर बहुत ट्रांसपेरेंसी है, आप बहुत प्यार है, अपनापन है, आप किसी से बात कर रहे हैं, नेचुरली आप देखना, फील करना, वही रिस्पॉन्स वहां से आएगा।
1: राइट,
0: तो इसमें झिझकना नहीं है,
1: अपने ईगो को भी साइड रखना है।
0: हाँ, कोई ईगो आएगा ही नहीं क्योंकि आप देखो ना, घर में भी हम दो बहनें हैं, दो भाई हैं, वहाँ ईगो आता है क्या, कुछ सीखने के लिए, कुछ पूछने के लिए
1: नहीं
0: ना,
1: हम अधिकार से बोलते
0: हैं। और हम तो इतने अच्छे अच्छे सारे ट्रेनिंग करते हैं कि क्या क्या करते हैं, सारा जो चलता रहता है, कितने स्लोगन लगाते हैं, वी आर फैमिली, वी आर टीम, क्या क्या करते हैं ना अपने कार्य क्षेत्र में, तो रियल में जब आप राजयोग का प्रैक्टिस करेंगे ना, फैमिली क्या है आपको फील होगा, एक अपनापन फील होता है हर किसी के साथ, अब बहुत कंफर्ट जोन में जाएंगे, बहुत प्यार से बात कर सकते हैं, मन खुल के बात कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम एक वाइब्रेशन लेवल में हर किसी को अपना पाते हैं, और वो थॉट लेवल में हमने अपनाया है, तो वही वाइब्रेशन वहाँ रेडिएट हो रहा है, तो वो भी हमें वैसे ही रिस्पॉन्स देंगे। ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आपके डे टू डे लाइफ में, मेडिटेशन

0: मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम थोड़ा समय बैठेंगे, ध्यान करेंगे, अच्छा लगा, शांति की अनुभूति हुई, नहीं, मेरी जो ओरिजिनल गुण है, मैं हर किसी के साथ आते हुए वो मुझे कैसे काम में आ रहा है, ये आप रियली एक्सपीरियंस कर सकते हैं
1: जी। ये एक लाइफस्टाइल है,
0: लाइफस्टाइल है, राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल
1: जी, बिल्कुल। तो इसके बारे में आगे भी जानते रहेंगे। आजकल अगर हम युवाओं की बात करें यहाँ पर, तो जैसे रिजेक्शन की बात हम कर रहे थे कि नई चीज़ें सीखना है, तो भी कई बार हमें रिजेक्शन की फीलिंग्स आती है कि हम आगे की जनरेशन्स के द्वारा रिजेक्शन मिल रहे हैं हमें। तो वैसे ही युवाओं को करियर में भी रिजेक्शन और फेलियर का बहुत जल्दी उन्हें ये सब फेस करना पड़ता है, तो ऐसे समय में अडेप्टेबिलिटी उन्हें टूटने से कैसे बचा सकती है?
0: देखिए, अडेप्टेबिलिटी है क्या, हम कोई भी सिचुएशन को इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो वो एक्सेप्टेंस है, मैं एक्सेप्ट कर लूं कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक सीन आया है, एक सिचुएशन है, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं बहुत पावरफुल और यूनिक हूँ
1: जी।
0: और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, परमात्मा हमें कहते हैं कि हर एक आत्मा उसका बच्चा है, जो ऑलमाइटी है, जो सर्वशक्तिमान है। आप एक बात सोच के देखें, भक्ति में हमने उसे कितना याद किया, माता पिता बंधु सखा साथी कहकर, और अभी तो डायरेक्ट हम वो मेडिटेशन के थ्रू एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं वो पावर को
1: जी।
0: तो आप ये ट्राई करके देखें, आपको कोई भी ऐसा फीलिंग आएगा ही नहीं कि मेरा रिजेक्शन हो गया या मैं रिजेक्ट हो गई या मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। नहीं, आपको ना नेचुरली अंदर रहेगा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है,
1: तो वो कॉन्फिडेंस लेवल वो
0: बहुत ज्यादा
1: कनेक्ट होने से
0: बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
1: ओके, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ या जिसको आज दुनिया में कहते हैं गॉड पार्टिकल के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ जाते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो आप एक पावरफुल हाउस के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसा
0: जी जी।
1: ओके, तो उससे आप कनेक्शन से आपको पावर्स हाँ, मिलता है,
0: क्योंकि इटर्नल लॉ है, आप जिसको याद करेंगे, जितने हायर सोर्स को, उसके एनर्जी आप में आना ही है,
1: ऑटोमेटिक
0: है ये प्रोसेस है। तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, कभी ना ये नेगेटिव थॉट्स चलेंगे नहीं कि मेरे से नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता, मैं तो फेलियर हूँ या सभी मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा होगा ही नहीं। आप जितनी पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जहाँ खड़े हो जाएंगे, वहाँ आपके सामने सफलता खड़ा ही है, होना ही है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ये करके देखना है। ऐसे भी दुनिया में थॉट पावर के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है ना, हम इतना पॉजिटिव रहे कैसे, लेकिन करके तो देखे, आप प्रैक्टिस करके देखे मेडिटेशन को और फिर डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखे, इससे बड़ा प्रूफ आपके सामने और कुछ नहीं जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे।
1: जी बिल्कुल, मेडिटेशन से आप खुद के साथ भी जुड़ते हैं, खुद के स्ट्रेंथ्स को भी पहचानते हैं और उन्हीं स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करते हुए अपने आप को पावरफुल भी बनाते चलते हैं, और सुप्रीम सोर्स के साथ जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली, दीदी ने जैसे कहा कि हायर सोर्स के साथ जुड़ते हैं तो उनके पावर्स भी काम करते हैं
0: जी
1: जी। तो इसलिए कई बार कहा जाता है हमारे इंडिया में, भारत में, कि बड़ों बुजुर्गों के आशीर्वाद भी लेना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनसे बातें करनी
0: हाँ
1: चाहिए
0: जी, क्योंकि ब्लेसिंग्स मिलता है ना, वो हमें ढूंढ रहे हैं, कोई हमें याद कर रहे हैं, कोई हमारी जो एब्सेंस है उसे फील कर रहे हैं, तो जरूर हमें उनसे बात तो कर सकते हैं ना
1: जी,
0: दो शब्द पूछ तो सकते हैं ना, कैसे हैं आप, ठीक हैं, अच्छे हैं, आपको कुछ चाहिए क्या, सब ठीक है ना, हम हैं आपके साथ, आप इतना भी बोल दीजिए ना। आप देखो, कोई आपको मिस कर रहे हैं, कोई दूर में है, अकेले हैं, आप उतना ही बोल दो, हम आपके साथ ही हैं, हमें आपकी याद आती है, आप बहुत अच्छे हैं, इतना भी आप छोटी छोटी बातें भी बोल दो, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक यू, इतना भी बोल दो, उनका दिल से एक दुआ निकलेगा।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो दुआएं भी हमें कई बार आगे बढ़ने में मदद करती है या फिर परिस्थितियों को पार करने में भी। क्या अडेप्टेबिलिटी का मतलब अपनी इच्छाएं और जो ड्रीम्स है उसे छोड़ देना भी होता है कई बार?
0: जी नहीं।
1: जी, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बदलना भी अडेप्टेबिलिटी हो
0: हाँ
1: सकता
0: जी
1: है?
0: क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमने जो सपने बोए हैं, जो हमने संजोए हैं, हमने क्या सोचा है, इससे हमें बहुत सारा खुशी मिलेगा
1: जी।
0: फाइनली हम वही चाहते हैं ना जीवन में, कुछ भी करते हैं हम उससे सुख ही ढूंढते हैं, खुशी मिले, शांति मिले, यही तो ढूंढते हैं, लेकिन उसको बनाने वाला मैं कौन हूँ, उसका क्रिएटर तो मैं ही हूँ ना। अगर मुझे कहीं पे भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है, चेंजेस को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, पड़ रहा है नहीं, मैं वो खुशी से कर लूं, फिर वहां देखूं मेरे लिए और क्या अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए कौन सा नया रास्ता है, भगवान ने कौन सा नया रास्ता मेरे लिए ओपन किया है। कभी कभी आपको ऐसे भी महसूस होगा, आपको लगेगा मेरा ये रास्ता बंद हो गया, लेकिन जो सेकंड रास्ता ओपन होगा आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत ही खूबसूरत है।
1: जी,
0: तो कभी ऐसे सोचना नहीं है कि ये मेरा ये एक ही सपना क्यों रखे, हम बहुत सारे खूबसूरत सपने भी रख सकते हैं ना,
1: और रास्ता एक भी ना रखे दो
0: बहुत सारे रख सकते हैं सपना okay. एक खूबसूरत सपना एक क्यों हो, हम एक से ज्यादा भी बना सकते हैं।
1: राइट
0: इसलिए हम इसे सब्स्टिट्यूट भी रखना चाहिए। कभी कभी हम अपना एम ऑब्जेक्ट लेकर बहुत फोकस्ड हो जाते हैं, बस यही चाहिए, यही होगा तो हम खुश होंगे, ऐसे नहीं, आप दो तीन भी बना के रखिए।
1: ओके, लेकिन फिर कई बार ना हमें, मान लीजिए हमें यूपीएससी में टॉप करना है, तो अगर मैं फोकस नहीं रहूंगी, मुझे लगा नहीं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो फिर मैं यूपीएससी की ओर ध्यान नहीं दे पाऊंगी ना।
0: नहीं, फोकस तो रहना ही है, लेकिन सब्स्टिट्यूट हमेशा रखे।
1: मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, या फिर अपने जान माल का भी नुकसान हो जाता है।
0: हाँ, बराबर, ये केसेस भी होता है, लेकिन हमें वहां तक नहीं जाना है,
1: तो इसीलिए ऑप्शंस रखना है।
0: क्योंकि देखिए, आप सोचिए, वो हमें चाहिए क्यों था, सिर्फ पोस्ट पोजीशन के लिए था क्या? मेरे पेरेंट प्राउड फील करेंगे, मेरे टीचर प्राउड फील करेंगे, और मैं डिप्रेशन में चला गया तो तब हम सोचते हैं क्या मेरे टीचर क्या फील कर रहे हैं, मेरे पेरेंट कितने डिस्टर्ब हैं? जिनको बुद्धि में रखकर मैं सब कर रहा हूँ कि वो खुश होंगे, मेरे ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, मेरे पढ़ाई का इतना खर्चा हुआ है, सभी का अपेक्षा था कि मैं ये कर सकता हूँ लेकिन हुआ नहीं, इसलिए मैं डिप्रेशन में हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, फिर मैं ये अटेम्प्ट भी लो, तो एक्चुअल में मैंने जस्टिस किया, किसके साथ किया मैंने, सोचने वाली बात है। मेरे पेरेंट कब खुश होंगे, मेरे टीचर्स कब खुश होंगे, या मेरे दोस्त कब खुश होंगे, मैं जब खुश हूँ ना, इसीलिए भले फोकस्ड रहे लेकिन एक आंतरिक अंदरूनी तैयारी भी रहे, ये ना रहा तो मेरे पास ऑप्शन बी भी है, सी भी है।
1: जी,
0: फाइनली आप हमेशा इम्पोर्टेंस अपने संबंधों को दीजिए, क्योंकि वो ही हमारे आसपास हमेशा रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, हमारे खुशी में हम किससे शेयर करेंगे अपनी खुशी को।
1: राइट, जी, तो ऑप्शंस भी रखना, यही एडेप्टेबिलिटी हो सकता है कि अगर प्लान ए नहीं तो प्लान बी सी डी जितना भी आप
0: कर
1: रखना चाहे तो रख सकते हैं।
0: इसमें बहुत क्रिएटिविटी है, सोच के रखें।
1: जी, एक क्वेश्चन है कि परिस्थिति नहीं बल्कि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों से, खुद से, वो बदलनी पड़ती है, तो एक्सपेक्टेशंस और एडेप्टेबिलिटी दोनों में कुछ कनेक्शन है?
0: हाँ जी, कनेक्शन है, क्योंकि हम अगर एक्सपेक्टेशंस को चेंज कर रहे हैं, वो एक अपेक्षा है ना, हमने ऐसा ऐसा सोचा था, एक फ्रेम बनाया था, अभी वो नहीं हो रहे तो मेरा फ्रेम बी है।
1: जी,
0: तो फ्रेम बी भी मैं बना रहा हूँ, ये भी एडेप्टेबिलिटी में आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, अपनी तरफ से खुद को चेंज किया है,
1: रिजिडिटी,
0: चलो हाँ ये नहीं, चलो ये सही। लेकिन यहाँ पे भी अगर मान लो सामने से भी वो रिजल्ट नहीं आया,
1: जी,
0: तब भी मैं ओके हूँ।
1: जी,
0: हमेशा ना अपने जीवन में प्रायोरिटी सेट करना जरूरी है, मेरे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में कौन है, क्या मेरे संबंध है, हम संबंधों के साथ जीते हैं, हम अकेले तो नहीं जी सकते, अच्छा भी नहीं लगेगा, आपको करोड़ रुपया दिया जाए और मशीनों के साथ रख दिया जाए 10 साल, आप रह सकते हैं?
1: नहीं
0: रह सकते।
1: जी,
0: आप संबंध ढूंढेंगे।
1: राइट, तो प्रायोरिटी मतलब खुद को प्रायोरिटी देना।
0: हाँ, खुद को, क्योंकि संबंध मेरे लिए वैल्यूएबल है, तो संबंध भी हेल्दी कब रहता है, वो भी कब रहते हैं, जब मैं हेल्दी हूँ।
1: राइट,
0: तो प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर वन प्रायोरिटी सो की, फिर जो मेरे संबंध है
1: जी
0: वो भी बहुत वैल्यूएबल है, फिर तीसरे में है आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी प्लानिंग है, जो करने वाले हैं, क्योंकि इसलिए आज आप देखो, आज एक नेगेटिव सीन दिखता है ना, हम करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन ओल्ड एज होम में अपने पेरेंट को छोड़ देते हैं, तो दुआएं कहाँ से मिलेंगी? तो हम जब उस उम्र में पहुंचेंगे तो हमारे बच्चे फिर वैसे ही करेंगे, तब हम फिर क्यों दुखी हो कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है?
1: कर्म फिलोसफी,
0: बराबर। इसीलिए ये जो संबंध है बहुत वैल्यूएबल है, जो हमें हमारी केयर करते हैं उनको हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में रखना जरूरी है, माता पिता, भाई बहन, जो भी है, हमारे फैमिली है, जो भी है,
1: उनको
0: फ्रेंड सर्कल है, बिल्कुल। और वो खुश कब रहते हैं? जब हम खुश हैं। तो हमें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
1: राइट,
0: बाकी धन तो आएगा जाएगा, नौकरी आएगा जाएगा, हर चीज आएगा जाएगा, क्योंकि हम उस दौर में गुजर रहे हैं। चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, आपका संबंध की जो भी है ना, रिलेशनशिप देखे, फाइनेंशियल सिचुएशन देखे, इस समय कुछ भी स्टेबल नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं।
1: जी जी, जी। बिल्कुल। तो उन चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए जब हम रिलेशनशिप्स अच्छे रखेंगे, तभी कोई भी चेंजेस हमें अकेले हैंडल नहीं करना पड़ेगा,
0: सभी साथ में होंगे ना।
1: जी।
0: आप सोचिए, आप मुश्किल घड़ी में हैं और चार लोग आपके लिए खड़े हैं, कोई बोल रहा है नहीं बेटा सब ठीक होगा ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप तो इतने अच्छे स्टूडेंट हो, चलो कोई बात नहीं, ये चला गया ना, वो हो जाएगा। ये दो शब्द बोलने के लिए भी अगर आपके पास आपके माता पिता नहीं है, कोई बड़े नहीं है, कैसा फील होगा आप सोचो।
1: जी जी बिल्कुल। तो इसलिए संबंध बहुत इम्पोर्टेंट,
0: बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: राइट। तो मान लीजिए परिवार में हम रहते भी हैं, लेकिन किसी सदस्य की सोच हमसे बिल्कुल अलग है, तो रिलेशनशिप बचाते हुए खुद को कितना अडॉप्ट करना चाहिए? आजकल हम मतलब इन लॉज के घर में भी देखते हैं और पेरेंट्स के घर में भी देखते हैं, तो थोड़ा बहुत विचारधारा तो अलग है सबके।
0: जी देखिए, अगर हम यहाँ पर मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को ले, परमात्मा हमें कहते हैं हर एक आत्मा जो है वो बहुत यूनिक है, होना भी चाहिए, वही उसकी सुंदरता है। सबके अपने अपने गुण है और विशेषताएं हैं। अब हमें सबके बीच में चलना है, तो सबके साथ चलते हुए हम अपनी विशेषताओं को भी देखें, दूसरों की विशेषताओं को भी देखें।
1: जी,
0: फाइनली वही काम में आएगा। बाकी किसी में क्या विशेषता नहीं है, क्या कमी है, कमी भी है सबके अंदर, हमारे अंदर है तो सबके अंदर है।
1: जी,
0: वो भी है, उसे हम थोड़ा सा ना इग्नोर करें। फाइनली हमें क्या चाहिए, अपने संबंध में हम खुशी ढूंढते हैं ना, जो हम ढूंढते हैं हमें क्रिएट करना है, इजी है। जैसे हम धन मांगेंगे नहीं खड़े होके कि हमें महीने में 1,00,000 पगार दे दो, 50,000 दे दो, मांगेंगे क्या, हम कमाते हैं ना। तो खुशी भी मुझे क्रिएट करना है,
1: मांगना नहीं है,
0: मांगना नहीं है, शांति मुझे क्रिएट करना है। कैसे करना है वो टेक्निक मुझे पता है कैसे करना है। तो रिलेशनशिप संबंधों में क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है ना। तो मुझे जो चाहिए मैं क्रिएट करूं और दूं तो मुझे वही मिलेगा। अगर मान लो मुझे मिल नहीं रहा है, कुछ अपोजिट आ भी रहा है, तब भी मुझे थोड़ा पेशेंस रखना है। मैं अपनी जो मैं खुद अनुभव करती हूँ, शांति है, खुशी है, प्रेम है, मैं उसे चेंज ना करूं, मैं अपनी भावना को नहीं चेंज करूं, तो वो भी बदल जाएंगे।
1: अपने इंटेंशंस को ना चेंज करें,
0: हमारी इंटेंशन हमेशा अच्छा हो। और ये वो तभी होता है जितना हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो ना आपको एक सवाल आएगा कि हम इतने अच्छे क्यों बने, लोग हमें एक्सप्लोइट करेंगे, आपको ये आ सकता है। लेकिन वापस मैं वही दोहराऊंगी, हम जो राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं और इतना हाईली एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन जो परमात्मा हमें गॉडली नॉलेज के तहत देते हैं, वो एक्चुअल में बहुत मैजिकल है, आप ट्राई कर सकते हैं।
1: जी, तो अगर हम अच्छा बनते हैं तो हम कैच भी तो कर सकते हैं कि सामने वाला हमारे साथ जो बिहेवियर कर रहा है, हमारे साथ बातें कर रहा है, या हमें वो मतलब सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हम परख सकते हैं ना।
0: जी,
1: उसकी इंटेंशन भी हम परख सकते हैं अगर हम मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में है तो।
0: परख सकते हैं, हमारे इंटेंशन हमेशा प्योर हो, प्यार वाला हो, क्योंकि परमात्मा हमें जो नॉलेज देते हैं वो इतना ब्यूटीफुल है, आपको पूरा विश्व एक परिवार फील होगा।
1: जी,
0: और जो अपने फील होते हैं उनके लिए हम सब कुछ कर लेते हैं।
1: राइट, उसके साथ साथ बाउंड्रीज भी सिखाते हैं परमात्मा कि आपके दायरा भी क्या होना चाहिए।
0: दायरा अनलिमिटेड है,
1: दायरा अनलिमिटेड है। मान लीजिए
0: जैसे जैसे मान लो मेरे में विशेषता है, मैं मुझे अच्छा लगता है, मैं सबसे प्यार से बात करती हूँ, तो मैं क्या बात करना छोड़ दूँ, मैं करूँ नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। चलो सामने से किसी ने बोल दिया, थोड़े समय फीलिंग आएगा, लेकिन क्या हम बात नहीं करते हैं फिर प्यार से? कर ही सकते हैं ना, घर में हम करते या नहीं करते हैं, कितना भी टकराव हो फिर से करते ही है ना, या पूरा छोड़ ही देते हैं? नहीं ना, तो सेम फॉर्मूला है, प्यार से बात करते हुए मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूंगी, मैं क्यों छोड़ दूंगी।
1: राइट राइट, ओके। तो प्यार से बात करना है, प्यार की कोई हदें नहीं है, लेकिन मर्यादा की हदें सिखाता है।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: बाउंड्रीज सेट भी करते
0: जी,
1: हैं
0: जी जी
1: ओके मतलब खुद की सेफ्टी के अनुसार आप उसे परख करके
0: वो हम कर सकते हैं कि हमें कोई एक्सप्लॉइट ना कर ले लेकिन वही वापस जितना हम मेडिटेशन के प्रैक्टिस में रहते हैं हमें कोई एक्सप्लॉइट करेगा नहीं, हमारे जो हाई वाइब्रेशन ही काम करेंगे दूसरों के ऊपर और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए
1: जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के ऊपर था कि अडेप्टेबिलिटी और अनहेल्दी
0: कॉम्प्रोमाइजेस के बीच बाउंड्री कैसे पहचान, ये आपको पहचान में आ ही जाएगा। वाइब्रेशन भी कैच होते हैं, इंटेंशन भी फील होगा लेकिन हम उसे चेंज भी कर सकते हैं वापस बहुत अपनी श्रेष्ठ स्मृति से कि मैं कौन हूँ, मेरी क्वालिटीज क्या है और मैं किसका बच्चा हूँ
1: जी। राइट, तो एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त हाँ हाँ हाँ करना,
0: नहीं नहीं
1: अपनी बाउंड्रीज के अनुसार ना ना भी कर सकते हैं।
0: हाँ लेकिन वाइब्रेशन बहुत प्योर हो, वो ना बोलते हुए वाइब्रेशन में ना ना हो, रिजेक्शन ना हो सामने वाले के प्रति। हम भले ना बोल रहे हैं, जैसे नहीं आपको एक एग्जांपल देते हैं, मान लो आपको एक छोटा सा बच्चा है उसे पता नहीं है आग में हाथ जल जाएगा, हम उसे जरूर रोकेंगे, वो आग के नजदीक है, उसका नन्हा सा हाथ है वो जल जाएगा, हम उसके हाथ को पकड़ लेंगे
1: जी,
0: उसको जाने नहीं देंगे, वो रोएगा जोर जोर से चिल्लाएगा, लेकिन हमारा इंटेंशन यहाँ बहुत प्योर है ना, उसे कोई चोट ना पहुंचे।
1: राइट,
0: क्योंकि उसे तो पता नहीं ना उसे चोट पहुंचेगा, लेकिन उसे लग रहा है ना मुझे रोक दिया गया, मैं जा नहीं पाया, जो जो से चिल्लाएगा ऐसे वाले। तो भले हम ना बोले, क्योंकि जैसे जैसे हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं, किसी के साथ आपका कितना भी अनबन हो, कोई कैसा भी है, जैसे ही हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि मैं एक प्योर सोल हूँ, एक बहुत यूनिक बींग हूँ और बहुत लवफुल हूँ, पीसफुल हूँ, तो सामने वाला भी तो वही है ना, वो अपने एक रोल में है।
1: राइट,
0: उसे पता नहीं वो क्या कर रहा है, लेकिन हमें तो पता है ना, हमें उसे ना बोलेंगे ये गलत है ये भी बोलेंगे, लेकिन अंदर नफरत या घृणा नहीं रहेगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए नीचे चला जाएगा, उसका ऑलरेडी तो एनर्जी लेवल लो है, वो और नीचे चला जाएगा
1: जी। कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातों में तो हम अडेप्टेबिलिटी ले आते हैं, हम फ्लेक्सिबल भी बन जाते हैं, मोल्ड कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन छोटी छोटी बातें जैसे कि कोई प्लान बन रहा था वो कैंसिल हो गया या कोई शेड्यूल है वो बदल गया, तो हमारा मूड बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशंस में कैसे तुरंत अपने आप को अडेप्टेबिलिटी सिखाएं?
0: जी एक्चुअली ये ना पूरे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। मान लो हम एक दिन के लिए ले ले, लंबा नहीं ले, एक ही दिन में, संडे का मॉर्निंग था और हमारा प्लानिंग में था कि आज हम एक्सरसाइज करेंगे, सवेरे वॉकिंग में जाएंगे, बाद में फिर थोड़ा बाहर जाएंगे, आउटिंग में जाएंगे, कुछ शॉपिंग था, कुछ खरीदारी था, फिर मान लो आपको कहीं और घूमने जाना था, किसी के घर जाना था, लेकिन एक एक चेंज होता गया आप बस एक दिन के लिए लीजिए कि कल का दिन जो आएगा अर्ली मॉर्निंग जब हम मेडिटेशन करते हैं, ये आज का दिन मेरा बहुत ब्यूटीफुल है और परफेक्ट है, मेरे जो प्लानिंग में जो चीजें थी किसी वजह से अगर चेंज भी हुआ, कैंसिल भी हुआ, मैं अपने आप को एक संकल्प देकर ही रखूं कि दिन भर जो भी होगा मुझे एक्सेप्ट करना है और खुश रहना है और ईजी रहना है
1: जी।
0: ये एक दिन आप करके देखिए, हमेशा नहीं होता है कि हम जो सोचते हैं वही सब कुछ होता है, होता नहीं है, बहुत सारी चीजें चेंज होता है। चलो चेंज भी हुआ लेकिन मुझे बस एक्सेप्ट करना है और शांत रहना है
1: जी,
0: क्योंकि ऐसे तो नहीं ना वो 24 घंटे के बाद आपका लाइफ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं, वो अलग दिन भी हो सकता है और कोई दिन भी हो सकता है, नेक्स्ट संडे भी हो सकता है। तो हम अगर छोटी छोटी चीजों में बार बार अपने मूड को खराब करेंगे तो हमारा संस्कार क्या बनेगा, बड़ी बड़ी बातों में हम कैसे होंगे, फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे।
1: राइट,
0: बहुत ज्यादा हम अपसेट रहेंगे अगर ये छोटी छोटी बातों में आदत बना देंगे मूड खराब करने की। इससे बेटर है ना छोटी छोटी चीजों में प्रैक्टिस करें कि हम उसे इजीली एक्सेप्ट करेंगे। ये बहुत छोटी बात है, मुझे एक्सेप्ट करना है
1: जी,
0: तब आप बड़ी बड़ी चीजों में आप बहुत डट के खड़े हो सकते हैं।
1: राइट जी, बिल्कुल। तो छोटी छोटी बातों में ही ये अडेप्टेबिलिटी के गुण को अपनाते चले, फिर हम बड़ी बातों में इसे प्रैक्टिकल इजीली कर सकते
0: हैं
1: सिचुएशंस में। अगर किसी व्यक्ति को अचानक किसी नए शहर में या फिर नए एनवायरमेंट में रहना पड़े तो खुद को इमोशनली और सोशली कैसे अडॉप्ट करें, उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: जी ये तो सबसे पहले सेल्फ टॉक ही है, स्वयं से ही बातें करें कि ठीक है हम एक नई जगह में जा रहे हैं, मुझे बहुत कुछ नया सीखना है और मैं इतना कैपेबल हूँ और इतना शक्तिशाली हूँ, मैं वहाँ पे भी एडजस्ट हो सकता हूँ और बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर हर किसी के साथ हमारा ना रिलेशन बहुत अच्छा हो, मतलब अपने आप में अकेले अकेले रहना ये हमारा नेचर ना हो, तो आप ना आप में एडेप्टेबिलिटी बहुत नीचे चली जाएगी। अगर आपको ऐसे ना कि कोई कोई रहते ना हम मोनोटोनस रहेंगे, अकेले रहेंगे, अपने में रहेंगे, नहीं, सबके साथ इंटरेक्शन में आना बहुत ज़रूरी है। ये गुण हमें बहुत मदद देता है। हम एक नए एनवायरनमेंट में हैं तो एक सोशल एडेप्टेबिलिटी भी बनी रहती है और इमोशनल तो हम स्वयं से बात करके हम सेट हो ही जाते हैं, कर लेते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। अगर कोई श्रोता अपनी एडेप्टेबिलिटी को चेक करना चाहे तो क्या क्वेश्चंस अपने आप को पूछ सकते हैं?
0: हाँ जी, तीन चीज़ें आप चेक करके देखिए। मान लो आपने बहुत अच्छा काम किया है आपके ऑफिस में, लेकिन पूरा श्रेय किसी और को गया और उनको प्रमोशन मिल गया। आप चेक करना आप कितना एडॉप्ट कर पाते हैं उस सिचुएशन को।
1: जी
0: वो एक है। दूसरा, फैमिली में आप एक बार देखिए। मान लो आप परिवार में बहुत कुछ करते हैं, सभी के लिए सभी का ध्यान रखते हैं, उनका हर बात का ख्याल करते हैं, लेकिन सभी का एक्सपेक्टेशन हमेशा आपके ऊपर रहता है फॉर ग्रांटेड कि वो करेगी, वो है ना, उनको वो करना चाहिए, हमारे लिए चाहिए, और कभी भी आपको अप्रिशिएशन नहीं देते हैं, थैंक यू नहीं बोलते हैं, पर आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन हमेशा रहता है। और आपको क्या है उस समय, आपकी मनस्थिति कैसी है? कभी आता है ऐसे मन में, अरे मैं कितना करूं कितना करूं कितना करूं, ये तो मुझे ऐसे ही लेके रखे हैं, या ऐसे लगता है नहीं नहीं मुझे करना है, इनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, उनको वो चाहिए, वो अब वहाँ आप चेक कर सकते हो। अगर आप खुशी से कर रहे हैं बिना थैंक यू के, एक्सपेक्टेशन आपका नहीं है, तो आप में वो पावर है। जैसे ना घर में एक माँ होती है, वो किसी के थैंक यू के लिए रुकती नहीं है, वो करती रहती है सब कुछ। ये वाला क्वालिटी, ये क्वालिटी एक्चुअली परमात्मा का गुण है, पालना देना,
1: राइट।
0: ये आप चेक करें। और तीसरा है, आप संबंधों में देखें, आप किसी को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर करते हैं हर सीन में।
1: जी,
0: ये आप चेक करके देखना आपकी एडेप्टेबिलिटी कैसी है वहाँ पे।
1: जी, तो अगर नहीं है तो एक्सेप्ट करना पहले शुरू करें, यहीं से पहला स्टेप शुरू हो
0: जाता है। जी, आप सोचिए इसी में, आप देखो जो दे सकता है ना वो बहुत पावरफुल है एक्चुअली।
1: जी राइट राइट,
0: यहाँ पे जो इन सब सिचुएशन में भी सबके लिए कर रहा है, दे सकता है, वो एक्चुअल में बहुत पावरफुल है, क्योंकि परमात्मा को भी हम लोग अपनी हर मुश्किल में क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं ना, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, उसकी महिमा में फिर क्या गाते हैं, दुखहर्ता, सुखकर्ता, कल्याणकारी है, लिबरेटर है, गाइड है, रहम दिल है।
1: जी,
0: ये सब बोलते हैं ना, दो दो बातें ऑपोजिट होता है ना, कैसे, क्योंकि हमने उससे बहुत कुछ रियली पाया हुआ है,
1: राइट,
0: इसलिए उसकी महिमा करते हैं। लेकिन मुश्किल घड़ी में उसको ही डांटते हैं, कटघरे में उसको ही खड़ा करते हैं, तूने मेरे नसीब में ये लिखा है, तूने ये सब किया है, तूने ये गड़बड़ किया है,
1: राइट राइट जी।
0: लेकिन भगवान का रोल रियली कितना ब्यूटीफुल है ना, ये फिर ऐसे ये क्वालिटी ही बहुत ऊंच है कि हम सिर्फ एडेप्टेबिलिटी नहीं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है। और ये एक्चुअल में जब हम राजयोग का प्रैक्टिस करते हैं, आप बहुत निस्वार्थ और बहुत, क्योंकि आप भरते हैं ना, हम जितने भरपूर रहेंगे आप दिए बिना रह नहीं सकते।
1: जी,
0: आप देंगे, नेचुरली देंगे, करेंगे, एक अपनापन रहता है कि मैं सबको सब दूं, सब करूं,
1: राइट। तो इसी नोट के साथ यहीं पर मैं रुकना चाहूंगी, अब समय हो चुका है यहाँ से विदा लेने का। तो सस्मिता दीदी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तो दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे प्रोग्राम में आने के लिए।
0: आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी बहुत प्यारी शुभश्री बहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको बिल्कुल ही अच्छा ही लगा होगा, और जो भी पॉइंट्स आपने नोट डाउन किया है या कोई भी सवाल है आपके मन में, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये था कार्यक्रम जीवन रोशनी, और हम जान रहे थे एडेप्टेबिलिटी के बारे में। नमस्ते।

0: रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, काफी लंबे अरसे के बाद हाजिर हूं आप सबका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार अब ये मौका मिला है कि आप सबसे रूबरू हुआ जाए और एक शानदार कार्यक्रम आप सबके लिए प्रस्तुत किया जाए। और इससे भी इम्पोर्टेंट, जो हम हर बार कोशिश करते हैं कि अलग अलग पर्सनालिटीज को, अलग अलग सिचुएशंस को आप सबके सामने ले करके आते हैं इस हमराही प्रोग्राम के माध्यम से, और ऐसी ही कोशिश हमारी आज भी होने वाली है। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह आप सबको ये प्रोग्राम पसंद जरूर आएगा। बाकी तो आप सबकी प्रतिक्रियाएं बताएंगी, और अब कोशिश ये भी रहेगी कि अगर हमें हमारे मेहमान मिलते रहेंगे तो प्रोग्राम रेगुलर होता रहेगा। खैर, आप सब जानते हैं श्रोताओं, हमराही प्रोग्राम एक ऐसा विशेष प्रोग्राम है जिसको सिर्फ ये सोच करके प्रस्तुत किया गया था कि एक किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में परिवार का, सोसाइटी का या उसके आसपास के माहौल का क्या रोल होता है, और वो किस तरह अपने पैरों पर खड़े होने के बाद अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से हो ये रहा है कि जॉब मिलना शायद उतना मुश्किल नहीं रहा, लेकिन जीवन साथी की तलाश और उसमें भी एक भरोसेमंद लाइफ पार्टनर को पाना, ये तो हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, और एक किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की जिंदगी में तो ये होता ही होता है। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं, और किस तरह से न सिर्फ आगे बढ़ते हैं बल्कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो आज के हमारे मेहमान भी कुछ ऐसे ही हैं। इनके जिंदगी के 25 साल शायद किसी और कहानी को कहते हों, और बाद के 25 साल हो सकता है किसी और कहानी को कहते हों, लेकिन सवाल वही है कि किसी भी सिचुएशन में इंसान को रुकना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, और हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए मोटिवेटेड भी रहना चाहिए, और उसके लिए मेहनत भी करते रहना चाहिए। तो चलिए, इतनी सारी बातें करने के बाद आप सब सोच रहे होंगे कि आज हम किन से मिलवाने वाले हैं। श्रोताओं, एक बार फिर आप सबका हमराही प्रोग्राम में स्वागत है, और आज हमारे मेहमान हैं इस कार्यक्रम में प्रोफेसर चिराग मित्तल सर, और एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर मोनिका मित्तल मैम। तो चिराग सर और मोनिका मैम, आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
2: थैंक यू।
0: मैं चाहूंगा सबसे पहले चिराग सर, आप हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताएं।
2: संदीप त्रिवेदी जी का नमस्कार, और रेडियो मधुबन का थैंक्स कि उन्होंने हमें आपके समक्ष प्रस्तुत होने का मौका दिया। मैं प्रोफेसर चिराग मित्तल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मोना, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, दिल्ली NCR। एक साल से कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 साल प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 और शेयर ट्रेडर।
0: जी, क्या बात है सर। तो हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं सर कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है।
2: मैं संदीप जी रेटिनोसिस पिगमेंटोसा ब्लाइंड हूँ।
0: ओके।
2: तो जब पैदा हुआ तो बहुत रेटिनस में काफी छोटा डैमेज था जो एज के साथ बढ़ता गया, और बाय एज ऑफ अराउंड 30 आई गॉट ऑलमोस्ट 100% ब्लाइंड।
0: ओके। 30 साल की उम्र में आप पूरी तरह से दृष्टिबाधित हो गए।
2: जी।
0: ओके। तो आरपी का तो सर सुना है कि मतलब कोई इलाज है नहीं शायद, इसके बारे में आपने कितना कुछ पता किया सर, या आपकी फैमिली ने क्या कुछ जाना समझा?
2: दिल्ली में एम्स, मूलचंद से लेके साउथ में एलवी प्रसाद से लेके USA के डॉक्टर्स, काफी जगह ट्रीटमेंट करवा लिया। लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स है, जो टेस्ट हो सकते थे सारे करवा लिए। एक ही सवाल बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि बस 5 साल में इलाज आ जाएगा। 5 के 50 साल तो मेरी जिंदगी का ही हो गया, आज तक कोई इलाज आया नहीं, और डॉक्टर्स का जवाब अब तक सेम है, आई डोंट नो।
0: जी, थोड़ा सा सर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए कि आप बेसिकली मतलब कहाँ से हैं।
2: इंटरेस्टिंग। देखिए, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। मेरे मदर फादर दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे, पापा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मामे स्कूल के प्रिंसिपल, दोनों ही क्लासरूम के असिस्टेंट ऑफिसर्स थे। और मेरा बचपन की आप बात करें तो मेरा बचपन एक राजकुमार की जिंदगी से कम नहीं था।
0: वाह
2: मुगलक शहर
0: ग्रेट.
2: में, डबवाली, फतेहाबाद वगैरह में, जब पापा जब क्लास वन एग्जीक्यूटिव एक्सिन होते थे, तो क्योंकि मैं लिटिल बहन हुआ हूँ तो उस टाइम पर मैं बाइक कार वगैरह भी चला लिया करता था छोटे होते।
0: अच्छा.
2: तो उस टाइम पर अपना साथ में गन्स, गाड़ियाँ, सिक्योरिटी गार्ड्स,
0: क्या
2: जो
0: बात
2: मुझे
0: है.
2: अपने पिक्चर हॉल में अपना शो सेटअप करवा लिया, किसी फार्म हाउस से कुछ भी उठा लिया। सो समथिंग लाइक दैट, पूरा का पूरा उस टाइम से प्रिंस की तरह लाइफ थी। और मेरे डबवाली स्कूल में हमारे प्रिंसिपल साहब थे श्री रणवीर सिंह, वो कहते थे कि चिराग, योर फादर हैज मेड यू इन अ वेरी गुड पोजिशन, बट टू मेंटेन दिस पोजिशन यू विल हैव टू वर्क हार्ड।
0: राइट, बिल्कुल सही कहा सर उन्होंने कि उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी पहचान खुद बनानी होगी. तो सर जब इतनी अच्छी पोजीशन थी तो मतलब जो थोड़े दबंगई टाइप जो माहौल होता है उसमें भी कभी पड़े आप या नहीं उससे दूर ही रहे?
2: हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा हो जाता है, यू आर राइट। स्कूल में एक दो बार कान खींचा, स्टेज पे बुलाया गया था करने के लिए, क्योंकि असर आ ही जाता है वो सब करने में।
0: जी,
2: बट
0: बहुत.
2: इसका कह लीजिए कि कुछ कह लीजिए कि ज़्यादा उस ग्रुप के अंदर में ज़्यादा गया नहीं। हालांकि मैं अपने टाइम में टाइकोंडो चैम्पियन रहा था ब्लू स्ट्रिप के अंदर में, कराटे वगैरह करने का तो ये शौक हमेशा रखता था।
0: जी,
2: बट ठीक है, जो भगवान करता अच्छे के लिए करता है हमेशा।
0: जो गवर्नमेंट जॉब मिला आपको पहला वो किस एज में मिला?
2: 2016, 40।
0: 40 की एज में. जनरली इस एज में आते आते लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना बंद कर देते हैं या मेहनत करना कम कर देते हैं. लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि आपने अपने आप को इतना मोटिवेटेड कैसे रखा और आखिरकार जो एक अच्छे से अच्छी पोस्ट होती है उसको हासिल किया.
2: उसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मोनिका मोना को जाता है जो मेरे साथ बैठी हुई है।
0: बहुत
2: क्योंकि
0: बढ़िया. तो फिर
2: जब
0: तो इस पे चर्चा फिर आगे करेंगे जरूर.
2: क्योंकि क्योंकि जब मेरी शादी हुई उस टाइम पे, तो जैसे फादर साहब ने मेरा बिजनेस सेटअप करवा दिया था, साइबर कैफे
0: जी.
2: और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह कोचिंग का। और जब मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह लाइन गई तो मोनिका ने बताया कि फैमिली के पास कुछ रिसोर्सेज भी थे। बिजनेस फेल होने के बाद, कुछ सालों के बाद में जब बिजनेस चले शुरू हो गई, वो कह रहे थे कि आप कुछ और बिजनेस सेटअप कर लो। पर उन्होंने बताया, मुझे समझाया कि बिजनेस सेटअप करोगे पहले की तरह ये वाले फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैं काफी बिजनेस कर चुका था, 8-10 बिजनेस में कर चुका हूँ। साइबर कैफे, वीडियो गेम, शेयर ट्रेडिंग का टर्मिनल, एम इंडिया का, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोचिंग सेंटर, इंग्लिश कोचिंग सेंटर्स, और उसके अलावा भी कई तरह के जो काफी सारे काफी टाइम चलाए हुए बिजनेसेस। तो उन्होंने समझाया कि आप, उन्होंने मेरी कमजोरियों को नहीं, क्षमताओं को पहचाना है, कैपेबिलिटीज को पहचाना। उसने कहा कि आप में टैलेंट है, आप क्वालिफाई कर सकते हो जॉब्स को, ब्लेंड होने के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ ट्राई करो। और योर एफर्ट एंड कोऑपरेशन, रिजर्वेशन की एज रहते रहते सरकारी गाड़ी में सवार हो गया और
0: क्या
2: जो
0: बात है. बहुत जबरदस्त सर. बहुत मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब चूंकि अब मोनिका मैम का जिक्र चला है तो हमारे श्रोताओं को अब मोनिका मैम से भी मिलवा देते हैं. जी मैम, एक बार फिर आपका स्वागत. और जरा आप भी अपनी जर्नी और अपने बारे में बताइए प्लीज.
1: धन्यवाद सर। जैसा कि बताया, मैं चिराग की वाइफ मोनिका हूँ। और जब मेरी शादी के लिए ये आए थे मुझे देखने के लिए, तो मुझे पता था कि आप ही है और थोड़ा सा आइज विजन में प्रॉब्लम है। बट तब भी जब ये बात इज लाइक हमारे क्या होता है कि इंटरव्यू लिया जाता है लाइक लड़की का, कि
0: अच्छा.
1: इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे मुझसे, तब मैंने रियलाइज किया कि बहुत टैलेंटेड है।
0: अरे वाह, उन क्वेश्चंस को देखते ही आप समझ गए.
1: हाँ, तभी मैंने समझ लिया था। एंड तो मैंने कहा शादी करनी है तो यही करनी है मुझे,
0: अच्छा.
1: तो तब तो मुझे लग गया था। और तब साइबर कैफे था इनका, अच्छा तब भी बहुत 2001 की बात है, तब कंप्यूटर्स आए थे हमारे यहाँ नेट, तो तब लगा कि हाँ ये बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, तो बहुत अच्छा सा रन कर रहे हैं। और 10 साल के बाद धीरे धीरे नेट हर घर में आने लगा, इंटरनेट, फिर
0: राइट
1: बिजनेस बंद होने लगा। तब
0: जी.
1: मैंने देखा कि इनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल्स में बहुत ज्यादा है, आईक्यू बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश बहुत जबरदस्त है, तो इन्होंने कहा ठीक है हम दूसरा बिजनेस करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, 24 आवर आप किसी भी बिजनेस में दोगे और उसके बाद आप उसके अंदर एड ऑन करते चले जाओगे, लेकिन जहाँ हो वहीं की वहीं रहोगे। तो आप
2: जी
1: इससे अच्छा 24 आवर स्टडी में दो और कोई अच्छी पोस्ट लो। अब इसमें भी ट्विस्ट है सर, जब मैं छोटी
2: जी
1: थी तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी उनके पापा SBI बैंक के अंदर मैनेजर थे।
2: अच्छा
1: तो मेरा ड्रीम था कि मेरी शादी किसी SBI मैनेजर से हो, बिकॉज उनको एक
2: जी
1: CEO मिलती है घूमने के लिए।
2: जी जी
1: तो मेरा ये था कि SBI वाले बड़े अच्छे क्रीमी लोग होते हैं। शादी के बाद मैंने इनसे कहा कि आप बैंक की तैयारी कीजिए और 100% आप उसमें निकलेंगे और SBI बैंक के ही एग्जाम्स देने आपको।
2: अच्छा
1: तो छोट
2: अरे
1: भगवान ने उसमें इनका रिजल्ट आया, पास हुए, असिस्टेंट मैनेजर लग गए सर।
2: जी जी
1: दूसरा
2: जी जी
1: ट्विस्ट ये कि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस की शादी से पहले प्रोफेसर थी सर।
2: अरे क्या बात है
1: तो मुझे हुआ कि ये इतने पॉलिटिकल की इनको नॉलेज है, न्यूज वगैरह जितनी भी चैनल्स देखते थे इनको हर चीज की नॉलेज थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप प्रोफेसर के लिए भी एग्जाम्स हो, नेट क्वालिफाइड कर रहे हैं आप और आप प्रोफेसर लग जाएंगे सर। वो एग्जाम भी दिया, SDET, CTET, NET, सारे एग्जाम से क्लियर करते चले गए सर। मैं बुक्स रिकॉर्ड करती थी, ये पढ़ते थे और ये मार्क्स लेते चले गए। जो सपने मैंने देखे ना सर, वो
2: जी
1: सब इन्होंने पूरे किए सर।
2: गजब बहुत ग्रेट मैम। लेकिन वो आपकी आवाज में रिकॉर्डिंग थी तो फिर मैडम पढ़ते नहीं तो करते भी क्या इसीलिए तो नहीं, वो स्वीट हो या नहीं हो लेकिन फिर भी मतलब इतने हम्बल कैसे हैं आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है।
1: सॉरी सर, अंबल तो आप भी बहुत हैं सर,
2: नहीं,
1: नेचर ही होता है सर।
2: बहुत
1: ये तो अपना अपना
2: बहुत
1: नजरिया होता है
2: उसने
1: देखने का सर।
2: एक्चुअली बड़ा, जब भी मैं नई फैमिलीज के साथ मैम इंटरेक्शन करता हूँ तो आप दोनों से तो मेरी मुलाकात हुए हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं, और मुझे थोड़ा ये था कि मैं ये प्रोग्राम कर भी पाऊंगा कि नहीं, 1 घंटा बिता पाऊंगा कि नहीं बिता पाऊंगा, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं मजा आएगा बात करेंगे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर तो मैम आप थोड़ा सा बताएं, आप भी हरियाणा से हैं या कहीं और से हैं?
1: सर मैं राजस्थान से हूँ, जहानाबाद
2: क्या
1: साइड से।
2: बात है गजब मैम, हम भी राजस्थान से
1: क्या बात है
2: हैं
1: सर, राजस्थान में कहाँ से सर?
2: मैं अजमेर में हूँ।
1: क्या बात है सर, तभी तो राजस्थान वाले होते ही बहुत मीठे हैं ना सर।
2: ये जो रेडियो चैनल है ये भी राजस्थान में है, रेडियो मधुबन माउंट आबू में, आपने नाम सुना ही होगा और गए भी होंगे शायद। जी
1: राइट सर,
2: आप
3: बागड़ी में ही बात कर सकते हैं,
1: मारवाड़ी में सर।
3: मारवाड़ी में,
2: मारवाड़ी लेकिन
3: मुझे तो
2: राजस्थान
3: किसी एक
2: और
3: लाइन
2: से
3: दिखाई
2: मिलता ही
3: दे।
2: है ना सर, कि अपने यहाँ तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो खैर तो राजस्थान में कहाँ से हैं मैम? श्री
1: सर गंगानगर से।
2: गंगानगर, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए मैम कि पॉलिटिकल साइंस से आप तो पहुंच गए, ये जो प्राइवेट सेक्टर है MD बन गए आप, और
1: यस
2: सर जो है कैफे चलाते चलाते पॉलिटिकल साइंस की तरफ चले गए, तो ये इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या?
1: तो कहानी तो ये है कि पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था
2: जी
1: और चिराग कर रही थी BCom, BBA,
3: जी
1: MBA कर रही थी BBA के बाद। तब मैंने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे हैं और मुझे था कि ये उसमें क्रैक कर जाएंगे, नेट क्वालिफाई करना इतना इजी नहीं है विद JRF।
2: जी मैम
1: तो इन्होंने वो क्लियर किया। तो ऐसी करनी बनी कि मैंने जब इनसे कहा कि आप पॉलिटिकल में कीजिए तो इन्होंने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। उसके लिए वापस से 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, BA, MA ये सब इनको करनी पड़ी सर, BEd, MEd सब कुछ।
2: ये बहुत
1: और
2: बड़ी बात होती है, नहीं तो लोग करते नहीं है इतना, तो छोड़ देते हैं लोग तो। जी मैम
1: इनकी डेडिकेशन इतनी जबरदस्त थी सर, सुबह 4 बजे उठते और 8 बजे तक अपनी स्टडी करते, 8 बजे शॉप पर जाते सर, रात को 10 बजे वापस आते। सिर्फ सुबह के जो 4 घंटे होते थे उसके अंदर इन्होंने अपना 100% दिया। जो भी
2: वेरी
1: आते
2: नाइस
1: हैं अपनी मेहनत से हैं सर, मतलब
2: जी
1: मेरे तो सिर्फ सपने थे। कहते हैं ना बच्चों के साथ माँ बाप अपने सपने पूरे करते हैं, बट मेरे तो हस्बैंड ने ही ये सपना पूरा कर दिया। तो
2: क्या बात है मैम,
1: बच्चे अपना करें ना करें मेरी लाइफ सेट है सर।
2: आप दोनों तो मेड फॉर ईच अदर ही हो रहे हैं
1: और इसमें भी टेस्ट है सर, ये सब सपने मेरे छोटे होते के थे। बड़े होने के बाद मैंने कहा कि देखो ये सब बचपन के सपने थे, आपने पूरे कर दिए, अब बड़ी हो गई हूँ, सपने भी बड़े हो गए हैं, आइए इसका एग्जाम दीजिए आप सर। वो भी दिया इन्होंने, वो भी क्लियर किया सर।
2: ग्रेट
1: पर वो
0: क्या
1: था कि
0: बात है,
1: पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा थी, तो किसी ने
0: बहुत
1: सजेस्ट
0: बात।
1: किया हमारे अंकल कि प्रोफेसर की जॉब ठीक है, इसमें ज्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है, और एक टाइम 2 बजे के बाद तुम फ्री हो जाओगे, अपनी फैमिली को टाइम दोगे, तो ये प्रोफेसर की जॉब रखो। तो
0: जी
1: सर
0: मैम,
1: ये हमने SBI भी छोड़ दिया, IAS वाला भी छोड़ के सिर्फ प्रोफेसर पे फोकस किया इन्होंने। फिर
0: और भी कोई मैम सपना बचाए?
1: अभी सपना सर, आप सच बताऊं तो एक सपना और था बचपन का, वो भी
0: जी
1: देखो, वो भी ये
0: जी
1: था कि फॉरेन ट्रिप अगर मुझे लगाना है तो मैं सबसे पहले स्विट्जरलैंड जाऊंगी सर, और कहीं नहीं। चिराग
0: क्या बात है, ग्रेट
1: जी ने
0: जी।
1: मुझे कहा कि थाईलैंड चलो, मॉरिशियस चलो, और अपने आसपास के
0: चलो
1: जितने भी हैं
0: चलो
1: जहाँ पे चल
0: जी
1: लो। मैंने कहा नहीं, स्विट्जरलैंड। कहते ठीक
0: जी
1: है। फिर जो फॉरेन ट्रिप लगा उसमें सबसे पहले मैंने स्विट्जरलैंड पे ही पैर रखा सर, वो सपना
0: वाह,
1: भी इन्होंने पूरा किया सर मेरा।
0: मतलब लगभग सारे सपने हो गए पूरे।
1: सर एक सपना और था, गाड़ी चलाना सीखना, वो भी चिराग ने सिखाई मुझे। आप बिलीव
0: क्या
1: नहीं
0: बात
1: करोगे, 1 साल की गुड़िया होती हमारी, गोद में लेती थी मैं,
0: जी,
1: चिराग को कम दिखाई देता था बट फिर भी मैनेज करके, और एक खाली
0: करके
1: ग्राउंड में
0: आपको
1: ले जाते थे गाड़ी को, वहां मुझे दे
0: जी
1: देते थे। और मुझे
0: जी
1: लगता था डर कि अगर ये गाड़ी कहीं लग गई तो पापा क्या बोलेंगे।
0: बिल्कुल
1: हम
0: सही है मैम,
1: पापा से छुप कर गाड़ी सीखते थे सर। फिर
0: वाह
1: पापा को बताया चिराग ने कि मैंने मोना को गाड़ी सिखा दिया, अब आप देख लो, फाइनल टेस्ट देना है तो दे दो। तब उन्होंने देखा, कहते ये कब सीखा, कहते मैं शॉप पे आता था, सिखा दी इनको गाड़ी। और सर आज
0: जी,
1: गाड़ी इतनी बढ़िया चलाती हूँ, टचवुड कभी किसी के साथ भी नहीं लगी मेरी गाड़ी।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब मैम,
1: सारे सपने सर चिराग जी ने पूरे किए सारे।
0: ग्रेट। मतलब क्या कहें, ये तो एक ऐसा बहुत रेयर इस तरह की सिचुएशन मिलती है, लेकिन वाकई में ईश्वर की बहुत कृपा है आप दोनों पर, ये अच्छा लग रहा है देख करके। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही रेडियो मधुबन पर, और

0: को जब पहली बार मिलने आए तो परख लिया, पहचान लिया, पढ़ लिया कि भाई ये बंदा तो कुछ करेगा आगे चल करके। क्यों? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी है कि उस समय आपको ब्लाइंडनेस के बारे में इन जनरल कितना नॉलेज था?
1: सर, अब क्या बताऊं सर, ये कहानियां भी ऐसी ऐसी लाइफ में जो आप सोचते हो ना, वो हो जाता है आपके साथ, और स्पेशली मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि ये सब ईश्वर ने कैसे किया, क्यों किया। एक्चुअली भी मैं जब छोटी थी तो एक टीवी सीरियल आया करता था, जिसके अंदर मुझे उसका नाम भी नहीं याद, कुछ भी नहीं याद, बस जरा सी झलक याद है सर। उसके अंदर
0: जी।
1: था कि कुछ ऐसा शहर था जिसमें सिर्फ ब्लाइंड्स रहा करते थे, और
0: अच्छा
1: उसके
0: जी।
1: अंदर जिसको दिखाई देता था उसको उस शहर में रखना क्राइम था। ठीक है, तब छोटे होते आया था कि ब्लाइंड की लाइफ कैसी होती है, मुझे वो
0: होती है जी।
1: देखनी है। अंदर से कुछ ऐसा निकला और जो भी हुआ लाइफ के अंदर वो ऑटोमेटिकली वो चीज मुझे मिल गई। और जब आप ये बोल रहे हो कि आपका क्वेश्चन क्या था सर,
0: आपको ब्लाइंडनेस के बारे में कितना अंदाजा था जब चिराग जी का रिश्ता आपके सामने आया? क्योंकि रिश्ते जाहिर है और भी आए होंगे, या हो सकता है तैयारी चल रही होगी, तो आपको कितना नॉलेज था? आपने कभी कुछ खुद से सोचा कि यार कहीं ऐसा नहीं है कि अभी तो चलो अच्छा खासा विजन है, बाद में क्या होगा, या कुछ भी मतलब आपको आइडिया था क्या?
1: सर इतना आइडिया था कि विजन थोड़ा सा ठीक नहीं है, जो स्पेक्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा इतना आइडिया नहीं था कि आगे जाके इतना हो जाएगा, ये केस ऐसा हो जाएगा। पर ये था कि शायद इलाज आ जाएगा 2 साल में 3 साल में तो ठीक हो, जैसा चिराग ने बताया कि डॉक्टर्स कहते रहे थे 2 साल 3 साल में ठीक हो जाएगा।
0: हम समझ रहे हैं 25 साल पहले की उन भावनाओं को फील कर रहे हैं, और थोड़ा सा मुझे लगा आप इमोशनल भी हो रहे हैं शायद, लेकिन खैर आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए प्लीज।
1: बट सर कभी इनकी ब्लाइंडनेस को लेकर इतना फील नहीं हुआ कि ये दिखाई नहीं दे रहा है या काम नहीं कर पाते हैं। इन्होंने अपनी इस चीज को कमजोरी कभी नहीं माना सर, हमने हमेशा इसको पॉजिटिव सेंस में ही लिया कि चलो जो भी हुआ है, लेकिन हमें दूसरी चीज हमेशा दी है भगवान ने, एक चीज ली है तो दूसरी दी है। तो इनका जो ब्रेन है ना सर, वो आज नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा सही है, जो देख पाते हैं उनसे ज्यादा इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया सर, मैं हमेशा प्राउड फील करती हूँ सर।
0: बहुत अच्छे मैम। और जब सर का रिश्ता आया तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था मैम? उनको भी तो पता होगा ये सब।
1: हाँ उनको भी पता था, बट ऐसा इतनी वीक नहीं थी ना सर उस वक्त इनकी आईज।
0: तो नहीं आज मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा मैम प्लीज आप अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ। आज हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं जिनको बहुत अच्छा विजन है मैम, उनकी मतलब यूं समझिए कि एक आंख बिल्कुल सही है, एक आंख थोड़ी सी खराब हो सकता है वो, उन तक को भी, और जॉब की तो खैर बात मत करिए, जॉब तो बहुत अच्छा है ही मान लीजिए, फिर भी उनको जब वो रिश्ता लेकर के जाते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स कहीं जाते हैं तो वो बताते हैं कि यार ये ब्लाइंडनेस आड़े आ जाती है हमारे, तो उस केस में आपके यहाँ भी तो ये कुछ अवेयरनेस इस बारे में थी या नहीं? कुछ भी ऐसा सोचा नहीं आप लोगों ने, सब ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम।
1: एक्चुअली में सर देखो, मम्मी पापा का उस वक्त आप भी जानते होंगे 25 साल पहले इतनी क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं होती थी,
0: नहीं होती थी
1: लड़की के साथ, राइट?
0: बिल्कुल सही है मैम।
1: और जो रिश्ता आया था वो मेरी कजन मौसी थी, यानी कि मेरी मम्मी की कजन सिस्टर थी वो
0: जी।
1: और चिराग की चाची लगती थी वो, तो
0: अच्छा,
1: हमारी फैमिली के अंदर ही ये रिश्ता हुआ था। उन लोगों में आपस में क्या बात हुई सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट उन्होंने ये था पूछा था कि तुम ठीक हो, खुश हो इस रिश्ते से? तो मैंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज बहुत एजुकेटेड है पूरी फैमिली, एक्चुअली में एजुकेटेड थी। जैसे हम कहते हैं ना सर, रिश्ता सिर्फ एक पर्सन से नहीं होता, पूरे खानदान से होता है, पूरी फैमिली से होता है सर।
0: फैमिली से होता है, ये बहुत सही कहा मैम आपने, बहुत सही कहा जी।
1: तो इनकी मम्मी पापा, इनकी दोनों सिस्टर, सबका नेचर बहुत ही, आज भी मैं कहती हूँ कि वो जबरदस्त था। और मैं जब मेरे फादर इन लॉ थे, मदर इन लॉ थे, तब भी मैं उनको कहा करती थी, इवन कोई भी रिलेटिव घर पे आता था, मैं हमेशा कहती थी कि शायद मैं भगवान में एक टाइम गलती निकाल सकती हूँ, लेकिन अपनी फादर इन लॉ मदर इन लॉ में नहीं निकाल सकती सर, वो मेरे लिए लेवल पे थे सर।
0: बहुत खूब मैम।
1: और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया सर कि जो मैंने, मतलब हम लोगों ने ये रिश्ता लिया है या यहाँ शादी की है ना सर, 1% भी पछतावा नहीं है। और शायद ऐसा घर परिवार बहुत ही किस्मत से मिलता है, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, मैं गंगानगर से थी, राजस्थान में आप

0: पता है इतना नहीं होता हमारे यहाँ लड़कियों पे, पर
1: जी
0: इन्होंने
1: जी
0: इस लेवल पे पहुंचा है, कभी सोचा ही नहीं कि ये हमारी बहू है। एक बेटी से भी ज्यादा दर्जा दिया सर हर चीज में, तो फैमिली से हुए सर ये जो शादी हुई है, पर्सन से नहीं सर।
1: बहुत खूब मैम। ये जॉब आप पहले से करते थे या ये भी शादी के बाद ही शुरू हुई आपकी जॉब?
0: ये शादी के बाद ही सर, हम दोनों ने एक साथ ही जो भी किया अपनी ग्रोथ एक साथ किया सर। बहुत चीजों में चिराग ने मेरी हेल्प की है, बीएड एमएड करना, हम लोग एक साथ ही कॉलेज में जाते थे, लोग हमें हस्बैंड वाइफ कहते ही नहीं थे, कहते तुम तो फ्रेंड्स लगते हो, लगते ही नहीं हो कि तुम हस्बैंड वाइफ हो। हमारी नोक झोंक सब कुछ ऐसे होती थी जैसे फ्रेंड्स में होती है सर। एक साथ
1: जी
0: बैठना, एग्जाम्स देना, मतलब टोटल हम लोगों ने एक साथ ग्रोथ की है। और आज बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं सर, मेरी ट्विंस बेटियां हैं और बेटा है, और ट्विंस लड़कियों ने यूएस में फ्लोरिडा से एमएस कर रही है सर वो दोनों।
1: क्या बात है मैम, ग्रेट, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। और सच में ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप दोनों को, आपकी फैमिली को यूं ही मिलती रहे। ये जो कंपनी है ये आप ही ने स्टार्ट की थी मैम? अच्छा,
0: सर ये की थी हमारे फादर इन लॉ ने रिटायरमेंट के बाद से।
1: ओके। तो बेसिकली थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए हम चिराग जी के पास जाएं उनसे पहले, कि इस कंपनी का कामकाज क्या रहता है, आप करते क्या है दरअसल?
0: सर ये आईटी कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, हम लोग
1: ओके,
0: सॉफ्टवेयर बनाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन सर।
1: अच्छा, एंड्रॉयड, आईफोन सबके लिए?
0: हाँ यस सर, सबके लिए
1: ओके।
0: वेबसाइट
1: आपने
0: बनाना ये सब करते हैं सर।
1: भी डेवलपमेंट सीखा है मैम या सब बाकी लोग करते हैं डेवलपर
0: बाकी टीम
1: सीख?
0: रखी हुई है सर हमने,
1: ओके ओके,
0: तो 30 से 50 लोगों की टीम है सर, कुछ यूएस के अंदर भी है, यूएस बेस्ड भी है कंपनी, यूएस से ही हमारे क्लाइंट्स होते हैं मोस्टली, इंडियन क्लाइंट्स नहीं होते सर।
1: तो चिराग जी के लिए भी कुछ बनाया मैम एपी
0: इस साले चिराग जी का ये सर, और करेंगे सब बन
1: के?
0: जाएगा।
1: मैं राष्ट्रपति नहीं, इनके लिए कोई स्पेशल कोई ऐप?
0: नहीं ऐसा अभी रिक्वायरमेंट नहीं आई चिराग जी को। मैं
1: पूरी कंपनी है चिराग जी के
2: प्रेजेंट
1: पास।
2: हूँ अवार्ड देने के लिए। हूँ
1: हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, पूरी कंपनी है चिराग जी के पास।
0: राइट सर,
2: पोस्ट बनाई है मेरे प्रेजेंट।
1: चलिए, तो मैं पूछ रहा था सर कि जब शादी की बात चलने लगी घर परिवार में, तो क्या डिस्कशन मतलब रहते थे? ये कभी डिस्कशन में था पॉइंट ब्लाइंडनेस वाला, या एज अ नॉर्मल जैसे आपने कहा राजकुमारों की तरह रहे हैं तो फिर मतलब वैसे ही सब कुछ चल रहा था?
2: ऑब्वियसली बात है, जब कभी
1: जी
2: कोई चीज लेने में दिक्कत आई नहीं आज तक, तो लड़की लेने में कहां से आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: बिल्कुल। अच्छा, फैमिली में कोई भी डिस्कशन इस तरह का नहीं हुआ?
0: नहीं सर, चिराग ओनली 23 के थे और मैं 22 की थी सर,
1: जी मैम,
0: तो बचपन में ही होगी। चिराग तो फन फन में बस देखने आए थे, कि फर्स्ट टाइम चिराग का था लड़की देखने आने का, और फर्स्ट टाइम ही मेरा था सर। हम
1: जी
0: लोग
1: मैम,
0: सेकंड का कोई ऑप्शन ही नहीं रखा था, चिराग को ये था कि मैं जाऊंगा, लड़की पसंद आएगी तो ठीक, नहीं तो मैं रिजेक्ट करके आ जाऊंगा।
1: पहली बार में ही दोनों को दोनों पसंद आ गए।
0: यस सर, जस्ट कहते हैं ना कि मैरिजेज आर मेड इन हेवन।
1: यस, बिल्कुल सही कहा सर। ये वाकई वाकई में मतलब लगता है आप दोनों को और इस तरह की जोड़ियों को देख करके ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सच कहा है कहने वाले ने। जी, तो चिराग सर आपका क्या ओपिनियन था मैम से मिलने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद? बेसिकली फिर इंटरव्यू में मतलब मार्क्स वार्क्स कितने दिए आपने?
2: इंटरव्यू में
1: अच्छा,
2: देखिए 3 राउंड हुए, एक के बाद एक के बाद एक, अलग अलग ड्रेसेस में आई मोनिका, ठीक है, अलग अलग रूम में बिठाया किया, और काफी सारी पॉलिटिक्स से लेके जनरल लाइफ वगैरह सबके बारे में बातें हुई। अपनी डिजीज के बारे में बताया कि मुझे मेटनसिस पिगमेंटोसा है, कि इस वक्त आगे डिजीज बढ़ेगी, अभी घर में बाहर थोड़ी दिक्कत आती है, घर पे अपने घर में और अपने काम करने में कोई इशू नहीं है।
1: जी
2: उस टाइम तक यही था, हमने कहा कि ठीक है बाद में हम हाना का फैसला बाद में करेंगे, चार करने का टाइम रखते हैं, ट्रे गैप ऑफ अराउंड सलाह मशुरा के बाद में दोनों हम दोनों ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए पेरेंट्स को।
1: और शादी कितने महीनों में हो गई?
2: 7 जनवरी को शायद देखा था ना, और 15 अप्रैल को शादी हुई।
1: ओके ओके, 2001,
2: यस
1: ग्रेट, बहुत खूब। तो चिराग सर फिर मतलब वही बात आती है बार बार, मतलब कि मैम को तो ये उम्मीद थी कि आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, लेकिन आपको खुद को भी क्या उम्मीद थी कि आप ये सब अचीव कर लेंगे? गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना लगभग 38-40 की एज में, एक मतलब स्टूडेंट की तरह एग्जाम देने जाना, और फिर उसके बाद भी कॉलेज एजुकेशन का भी एग्जाम आपने क्लियर किया और नेट सेट सब कुछ, मतलब ये आपने खुद को कैसे समझाया?
2: देखिए लाइफ में अलग अलग फेजेज आते हैं, उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि रिजर्वेशन होती है हमारे लिए दो चैलेंज के लिए। जब मैं 2010 के अराउंड में ब्लाइंड हो गया तब इसका क्रेडिट मोनिका को जाता है। मोनिका पापा के साथ बैंक में गई थी, वहाँ पे मांडवी को देखा जो भी सी में एज ए पीओ काम कर रही थी।
1: बिल्कुल, मांडवी गर्ग।
2: मांडवी गर्ग, यस यस
1: बिल्कुल।
2: उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी एक ब्लाइंड लड़की से मिली हूँ जो आप बैंक में लगी हुई है, आप उससे मिल कर आओ। तो मैंने उससे टाइम लिया, रेफरेंस से की मिल के आई थी। तो मैंने मुझे कहा ठीक है आप घर पे आके मिल लो, हम दोनों अर्बन स्टेट में रहते थे हिसार में। तो उसके घर जाके मिला, उसने मुझे गाइड किया, सारा बताया। और एक हमारे मदनलाल गोयल साहब हैं जो उस टाइम पर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हुआ करते थे, उनके पास रेफर किया। तो उन्होंने कहा कि आप एम ए दोबारा से पढ़ाई शुरू करो। तो उन्होंने एम ए में पोलिटिकल साइंस, उन्होंने भी कहा कि पोलिटिकल साइंस में पढ़ाई दोबारा शुरू करो। तो और मांडवी ने मुझे गाइड किया एन ए बी के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, जॉब सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में, नेसेसरी कॉन्टैक्ट दिए, टेक्निकल होल्डिंग दी, जो थोड़ा हेल्प की कराने में आई एम ग्रेटफुल टू। और उसके बाद मैं पापा को बताया कि आप इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाओ। और फिर 2010 में ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पापा ने बनवाया, पढ़ाई दोबारा शुरू की आफ्टर ए लॉन्ग गैप ऑफ 11 इयर्स। 99 में मैंने IMS गाजियाबाद, जो देश के नंबर 2 कॉलेजेस में आता है, वहाँ से BBA किया था। और उसके बाद में IMT गाजियाबाद, जो देश के टॉप 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस में आता है, वहाँ से PGDBM किया था। तो जब 11 ईयर्स आई स्टडीड पढ़ाई अगेन, अपने जैसे उन्होंने बताया कि सुबह साइबर कैफे था, सुबह 4 बजे उठ के अपना डेस्कटॉप से पढ़ाई करना, और उसके बाद में 12 घंटे दुकानदारी करनी, और फिर रात को आके बेहोश होके सो जाना। 2010 में हम लोग देश के तीन कोनों में घूमने गए थे, मैं और मोना। उसके बाद से फिर दोबारा पढ़ाई का इतना जोर चला, 5 साल तक हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। 15-16 में हमारी फिर SBI में जब जॉब लगी, उसके बाद से तो फिर नो टर्निंग बैक फॉर आवर टूर। मोना ने बताया कि कहाँ कहाँ घूमने गए हैं 2010 में, और उसके बाद में कहाँ कहाँ हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स हैं।
0: सर हमने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 उत्तराखंड के 4 धाम और इंडिया के 4 धाम सर, 51 शक्तिपीठ, पंच केदार, पंच प्रयाग, पंच कैलाश सर, ये सब फिर हमने किए।
1: मैं हैरान हो रहा हूँ मैम, सच बता रहा हूँ मैं। फैमिली भी साथ साथ चल रही है, इधर बच्चे भी छोटे, और अपनी आप दोनों की जो फैमिलीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लस एजुकेशन भी, और जो अचीव करना है वो भी, और अपनी अपनी जॉब को भी मैनेज करना, तो ये सब, और ये जो घूमना फिरना वाला तो एक और नया एंगल, तो ये सब कैसे कर लिया आप लोगों ने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा।
0: और सर अभी रिसेंटली हम लोग लद्दाख से आए थे, अब इसमें भी आपको एक ट्विस्ट बताती हूँ सर। हम फर्स्ट टाइम केदारनाथ गए थे 2021-22 में आफ्टर कोरोना।
1: यस मैम।
0: तो जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोग एक पैकेज में गए थे सर, तो उसके अंदर था केदारनाथ में सिर्फ विजिट करने और दर्शन करने और वापस आने। तो वहाँ जैसे ही मैं पहुंची तो मेरा मन था कि मैं रात को वहाँ पे नाइट स्टे हो और रात की आरती देखूं और स्नोफॉल हो जाए बहुत ज्यादा कि हमें वहाँ रुकना पड़ जाए। सर 2 बजे हमें कहा कॉल आई कि अब वापस चलना है आप लोगों को, और ये 2:15 बजे बहुत हेवी स्नोफॉल होने स्टार्ट होगी सर, और ऐसा हुआ कि हमारा वहां जाना बंद कैंसिल हो गया कि अब जा नहीं सकते हैं, सब बंद हो गया और यहाँ रात को रुकना पड़ेगा। और हम वहां रुके और रात को आरती देखी सर। होटल की विंडो के बाहर से हमें दिखाई दे रहे थे,
1: क्या बात है।
0: तो वो अच्छे से हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा गई सर केदारनाथ, तो वहां जैसे गई तो मैंने कहा सारा अली खान हमेशा आती रहती है यहाँ पे केदारनाथ में और अमरनाथ वगैरह में, तो इस बार मुझे सारा अली खान को देखना है सर। अब ये नहीं करोगे सर, वो मैं मतलब मंदिर से बाहर निकल रही थी और वो एंटर कर रही थी सर, जस्ट एकदम पास से क्रॉस होकर गई, मैं उसको देख नहीं पाई, अलग बात है, बट वो मेरी बिल्कुल पास से क्रॉस होकर अंदर गई मंदिर में सर। अब इसमें उसको देखा नहीं, वो क्रॉस कर गई, पर ठीक है, ये सपना भी महादेव ने पूरा किया सर। अब भी हम 28 तारीख राखी वाले दिन हम वापस आ रहे थे सर, लेह लद्दाख शक्तिपीठ है, लेह में एक शक्तिपीठ है अगर आपने सुना हो तो, उसके दर्शन करके हम वापस आ रहे थे सर
1: जी।
0: एयरपोर्ट पे सर मुझे सारा अली खान मिली सर, सिर्फ वो और मैं, हम दो ही थे आमने सामने और मैं उसको पहचान नहीं पाई, मुझे लगा सारा है नहीं है। उसके पास गई, मैंने पूछा आप सारा अली खान हो, कहती नहीं। मैंने कहा नहीं आप हो, बस एक सेल्फी चाहिए आपके साथ, महादेव ने उस वक्त आधा अधूरा मिलाया था आपसे और आज पूरा मिलाया सर। सारा अली खान का गया इत्तफाक नहीं है, ये ऊपर से कॉल है और आप ही का आना एक है कि हाँ जो मैंने सोचा वो आज पूरा किया उन्होंने 3 साल बाद। फिर सर चिराग के साथ सेल्फी ली सर हम दोनों ने, सारा
1: क्या बात,
0: हम दोनों के साथ
1: क्या बात है।
0: तो सर जो जो जैसा जैसा सोचे है ना सर लाइफ में, वो सब प्री प्लान था सर, वो आज तक होता चला जा रहा है सर। और अब देखिए सर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी एक ड्रीम था बहुत पहले कि कोई हमारा इंटरव्यू ले सर।
1: अरे गजब क्या बात है, मैंने तो मतलब
0: तो ब्लेसिंग से ऊपर वाले की, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं।
1: गजब मैम, मेरी तो चिराग सर से बात हुई 1-2 मिनट की मुश्किल से, मैंने सर को ऐसे ही कहा, मैंने कहा सर एक प्रोग्राम करते हैं आपके साथ। अच्छा थोड़ा वो भी रहता है ना, पता नहीं लोग कन्विंस होंगे नहीं होंगे, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन बताइए आप कि आपका कभी ये ड्रीम था और हमको, हम तो ऐसे ड्रीम को ढूंढते ही हैं, हम तो ऐसे लोगों को ढूंढते ही हैं कि जो इतने इतने मतलब सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में।
0: नहीं सर 10 साल लगे सर ये ड्रीम पूरा होने में, हमारा तो बहुत पहले से ड्रीम था।
1: अच्छा लग रहा है मुझे, और यही हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम लोगों को ये समझा सकें कि जिंदगी का अंत कहीं पर है ही नहीं, बस हमें पहचानने की जरूरत है। वो दरवाजा आपके से जो सामने है, जो शायद नजर भी नहीं आ रहा है, उसको देखना भी है और उसको खोल के आगे बढ़ना भी है,
0: और सर खुशी खुशी लाइफ को जीना भी है।
1: बिल्कुल सही,
0: आपके हाथ में है कि आप लाइफ को किस डायरेक्शन में किस तरीके से जीते हो सर।
1: तो मौना मैम सच बताएं मैम, जब पता चला घर में खबर मिली, न्यूज मिली कि चिराग की जितनी भी रोशनी थी वो पूरी तरह से डिटीरियोरेट हो गई है, उस दिन को थोड़ा सा याद कीजिए मैम, उस दिन क्या माहौल था, क्या मन में चल रहा था उस दिन, पहले से क्या प्रिपेयर्ड थे या फिर संभाल लिया खुद को।
0: सर ये एक्चुअली में इनकी आईज अब बहुत स्लो स्लो गई है ना सर।
1: नहीं एकदम से, जिस दिन अब आज जैसे टॉकिंग सॉफ्टवेयर की यूज करने की जरूरत पड़ती है सर को ना, लेकिन एक जमाना था जब सर अपनी आंखों से फोन और लैपटॉप और कंप्यूटर सब एक्सेस कर रहे थे।
0: नहीं सर वो एक्चुअली ये फोन आए ही बहुत लेट है ना सर, तब तक तो विजन चली गई थी ना सर। तो ये स्टार्ट तब तक तो कीपैड का फोन था, तो
1: इतना जब आपकी शादी हुई तब तक तो सर को ठीक ठाक दिखता था, अच्छा खासा दिखता था, लेकिन एक दिन तो आया होगा ना 2005-6-7-8 कभी तो आया होगा, जिस दिन पूरी तरह से पता चला कि नहीं अभी हो गया, तो उस दिन कैसे संभाला आपने खुद को मैम।
0: सर ये आपको ऐसा लग रहा है सर, बट हम लोग अपनी फैमिली में और इन सब चीजों में इतना बिजी थे ना सर, वही बात है ना, कभी इस चीज को हमने नेगेटिव लिया ही नहीं सर।
1: नहीं सवाल नेगेटिविटी का नहीं है मैम, सवाल है कि एक ऐसी चीज जो एक हम एक उम्मीद रखते हैं ना, चलो यार जितनी है उतनी रह जाए, भगवान करे जितनी रोशनी है उतनी तो रहेगी, और खासकर आप जबकि एक अलग बैकग्राउंड से आए थे और आपके लिए ये ज्यादा थोड़ा सा था ना कि भाई इतनी भी रह जाएगी तो बहुत है, एक होता ही ना हम लोग अच्छे की उम्मीद तो करते ही है ना मैम हमेशा से, उस लिहाज से हम ये पूछते हैं।
0: फैमिली का तो मुझे आइडिया नहीं है सर, अपना खुद का है कि ये उम्मीद थी कि डॉक्टर्स ने कहा है 2 साल बाद विजन आ जाएगी, तो
1: एग्जैक्टली वही
0: एक बार लगा कि अब क्या होगा कि कैसे करेंगे मैनेज, नहीं दिखाई देता तो आगे बच्चे भी हैं सब कुछ है तो कैसे होगा सब कुछ, तो थोड़ा टाइम आई थिंक उतना याद भी नहीं है कि एक बार तो फील हुआ सब कुछ। पापा मम्मी एक्चुअली में फैमिली पूरी साथ में थी ना, तो मम्मी से भी डिस्कस हुआ, तो बस ये था कि ठीक है सब कुछ अच्छा होगा, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है, बट एक उम्मीद जो होती है ना कहते हैं धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाती है, डॉक्टर्स के आप चक्कर काट रहे हो सब कुछ कर रहे हो, फिर वो आपका माइंड तैयार होने लग जाते हैं सब चीजों के लिए।
1: जी मैम
0: वो ही था कि डॉक्टर्स पे घूमते घूमते ऑटोमेटिक माइंड सेट होता चला गया सर। लिक्विड लाइफ को अलग डायरेक्शन देनी थी, तो वो देनी स्टार्ट कर दी थी सर।
1: बहुत खूब है, बहुत
0: भी। पहली बार जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तब उनको भी लगा कि हमारे पापा दूसरों के पापा से थोड़ी डिफरेंट हैं। मैंने बच्चों से एक्चुअली में पूछा कि तुम्हें जब पापा का पता लगा तो तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि हमने तो कभी बताया नहीं, बच्चे अपने आप ही देखेंगे जो भी देखेंगे।
1: बिल्कुल सही है मैम।
0: तो कहते हमें भी एक बार लगा, बहुत छोटे होंगे LKG UKG वगैरह में, तो कहते मामा एक बार हमें लगा था कि जो मेरी फ्रेंड है उसके पापा बड़े आराम से चल रहे हैं, हमारे पापा को हमें बताना पड़ रहा है कि इधर नहीं इधर से चलो। तब हमें पहली बार लगा कि पापा को दिखाई नहीं देता। तो बच्चे थे तो बच्चों के मन में बस ये चीज आई, उसके बाद बच्चों ने बहुत केयर करनी स्टार्ट कर दी, इवन अपने लगा बहुत छोटी एज से, फर्स्ट क्लास से बच्चों ने। तो आज तक बच्चे अपने पापा की बहुत ज्यादा केयर करते हैं सर, मुझसे भी ज्यादा।
1: क्या बात है, बहुत खूब मैम, बहुत जबरदस्त। कभी कोई शिकायत रही मैम इन 25 सालों में किसी से भी, लाइफ से या ऊपर वाले से, या कोई रिग्रेट रहा मैम?
0: सर मैंने तो थैंक्स ही कहा है ऊपर वाले को कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरे सारे सपने चिराग शायद आइज नहीं है इस वजह से ही पूरे कर पाए, मे भी ऐसा भी हो सकता है सर, बट उन्होंने सारे सपने पूरे किए सर हमने, तो मुझे कभी रिग्रेट फील ही नहीं हुआ सर। और मैं तो थैंक्स करती हूँ कि जितना भी जो कुछ भी आज मैं हूँ या जो भी मुझे मिला है वो सिर्फ चिराग की वजह से मिला है सर।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो चिराग सर
2: जी,
1: आपने बताया आप एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज भी हैं और प्रोफेसर तो खैर हैं ही हैं, तो फैमिली के अलावा, फैमिली में तो आपके जलवे हमको पता चली गए मैडम के माध्यम से, लेकिन अपनी कॉलेज में कैसे आप सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज होने के बाद तो और भी कई सारी चीजें हो जाती हैं।
2: कृष्ण जी, टेक्नोलॉजी ने लाइफ हमारे लिए काफी आसान कर दी है, खासतौर पे ये ChatGPT, Cloud AI वगैरह आने से एडमिनिस्ट्रेशन का काम, कोऑर्डिनेशन का काम, डेस्कटॉप के ऊपर में व्हाट्सएप एक्सेसिबिलिटी, जीमेल्स, एक्सेल, इनसे काफी ज्यादा काफी इजी हो जाता है सारे ईमेल्स को पढ़ना, उनके लिए अलग अलग लेटर्स बनाने, ड्राफ्ट सर्कुलर्स, ऑफिस ऑर्डर्स बनाने, और जितने भी अब पहले हमारे लिए इश्यूज आते थे कि जो PDFs या OCRs में होते थे नहीं पढ़ पाते थे, अब हम उनको भी अलग अलग AI के माध्यम से सर्कुलर्स को पढ़ पाते हैं, उनका समराइज कर पाते हैं, उनके हिसाब से उनको अपने हम लिख पाते हैं, तो काफी कोई दिक्कत नहीं आ, बहुत कंफर्टेबली एक साल से सारा चलना, मल्टीटास्किंग में मीटिंग्स लेना करना, सभी के परफॉर्मेंसेस का हिसाब रखना, टास्क देना, उनका रिपोर्ट लेना करना, और हो जाता है, इजिली हो जाता है। आजकल मैनेजमेंट की लाइन में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ब्लाइंड व्यक्ति को कोई दिक्कत है नहीं एज ए कैरियर, तो ब्लाइंड लोगों के लिए मैनेजमेंट का फील्ड सही है, जिससे मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमारे विजुअल चैलेंज साथी इसमें जा सकते हैं और अच्छा काम कर सकते
1: हैं। हिम्मत हार गए हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, उनको माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा उनको भी गाइड कीजिए।
2: देखिए, एक हमारे फैमिली में है स्वामी रामदेव जी, हमारे परिवार समूह उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास एक माँ आई छोटे बच्चे को लेके कि बता जी इसके सिर पे हाथ रख, बाबा जी ने कहा उससे क्या हो, तो बाबा तो लेडी ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, तो बाबा जी ने कहा कि इसे बोलो प्राणायाम करे, कपालभाति करे, उसे ठीक होगा, मेरे हाथ रखने से नहीं हो, तो वही खुद के मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता,
1: नहीं मिलता बिल्कुल सही।
2: हम कितना भी दे सकते हैं लोगों, लेकिन चलना तो इंसान को खुद ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही।
2: ब्लाइंड कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, जितनी हो सकता है सभी की हेल्प करता हूँ, बुक्स देता हूँ, अलग अलग लैपटॉप्स भी देता हूँ, दान भी करता हूँ, गाइडेंस भी करता हूँ, कोई सफल हो जाता है, कोई नहीं भी हो पाता उनके अंदर में से, क्योंकि जो इंटरनल मोटिवेशन है आगे बढ़ने की जील, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के पिता कहते हैं अरिस्टोटल को, जो सारे ज्ञान अरिस्तो पर ही जाते हैं, तो उसने कंसेप्ट दिया था यूडोमिया, फाइनल कॉज या पर्पस, जो कार्य करने का, जब तक आपका यूडोमिया क्लियर नहीं है, पर्पस उद्देश्य क्लियर नहीं है, लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कब तक करना चाहते हो, तब तक लाइफ में आगे बढ़ना काफी मुश्किल है। उसी चीज को आजकल मोटिवेशन स्पीकर्स ने अपना शिवखेड़ा ले लें, जिन्होंने अपना गोल दिया हुआ है, सेट योर टारगेट, प्लान, एक्ट एंड गेट, आजकल जो नए यूट्यूबर्स मोटिवेशन आए हैं उन्होंने इसका नाम दिया प्लेसिबो कंसेप्ट दिया है इसको, कि आप सोचो उसे कर लो, ट्रेड सीक्रेट का नाम दिया है, रहस्य मोटिवेशन जो लेते हैं सारे के सारे, टोटल फिलोसफी से ही निकले हैं सारे मोटिवेशन कॉन्सेप्ट्स। हम तो ये चीज मानते हैं उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं।

0: कि फोकस ऑन फोर डीज. डी, पहला डी आपका डिजायर, बर्निंग डिजायर क्या होनी चाहिए, ये सबसे पहला है. क्या मुझे लाइफ में इस तारीख तक ये चीज करनी है, विजुलाइज करनी लाइफ को चीज को. देन डायरेक्शन, उसके लिए प्लान बनाए. देन डेडिकेशन, यानी कि समर्पण करें. और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट डी है इसके लिए, डिसिप्लिन, अनुशासन. एंड दैट कम्स विद पनिशमेंट एंड रिवार्ड, कि अपना टारगेट बनाए. क्योंकि जब मैं बताता हूँ कि जब 2010 से लेकर 15 तक, जैसे मैंने बताया 5 साल हमने कठोर तपस्या की है पढ़ाई के लिए और करने के लिए, सुबह 4 बजे से लेकर 5 साल तक कठिन तपस्या की है. उस टाइम पे मेरी कंप्यूटर में एक एक्सेल रिपोर्ट आती थी, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया करता था कि आज मैंने ये करना है, ये करना है. और लिखता था उसके अंदर में कि ये शिवखेड़ा की बुक पढ़ के, जीत आपकी, नई दिल्ली से मंगवाई,
1: जीत आपकी
0: वो किताब, उसी से मुझे प्रेरणा मिली, मोटिवेशन पढ़ने के लिए मिली. और मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ, अपने मित्र चलन साथियों को, की और सभी को भी, कि वो किताब जरूर कंटेस्ट करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. तो मान लेता था कि ये टारगेट पूरा हुआ तो अपने आप को ये रिवार्ड दूंगा, टारगेट अगर पूरा नहीं हो पाया तो अपने आप को पनिशमेंट दूंगा. पनिशमेंट हो सकती थी 10 उठक बैठक लगाऊं, एक्सरसाइज करूं, खाना कम खाऊं, दो घंटे मोबाइल को दूर रखूं, अलग अलग तरह से पनिशमेंट्स अपने आप को दें और अचीव कर लूं तो रिवार्ड. तो ये डिसिप्लिन, तो ये जब तक आप फोर डीज नए लाइफ में नहीं अपनाएंगे, हर एक व्यक्ति के लिए डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, तब तक
1: क्या बात,
0: गोल को पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है. और ये पालोगे तो मुश्किल नहीं है, कुछ भी कठिन दीजिए.
1: बिल्कुल सही कहा. तो सर सोसाइटी के प्रोग्राम्स में भी जाते हैं घूमने फिरने के अलावा मैम के साथ, या नहीं जा पाते हैं?
0: हाँ,
1: ब्लाइंड फील्ड के प्रोग्राम्स होते हैं.
0: ब्लाइंड समाज के प्रोग्राम्स में तो अभी का आपका ही प्रोग्राम होगा जिसमें हम जाएंगे पहली बार मुंबई में.
1: ये हमारी खुशकिस्मती होगी. चलिए, तो बहुत बहुत बहुत जबरदस्त, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आप दोनों की जर्नी के लिए बयान करने के लिए, लेकिन मजा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लगा. तो चिराग सर, अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या क्या मन में आता है? मतलब आज तो सब कुछ है लाइफ में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रह गया हो. अब आप जब अपने आप को देखते हैं, अपनी जर्नी को देखते हैं, तो क्या महसूस होता है?
0: मैं ये देखता हूँ कि मेरी लाइफ के 11 साल वेस्ट हुए इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से.
1: राइट.
0: पढ़ाई के बाद में मुझे, जबकि हम मम्मी प्रिंसिपल स्कूल्स के अंदर में, हमारे रिश्तेदार सभी, कोई सेंट्रल बैंक में मौसा जी मैनेजर, कोई बाकी मामा जी अलग अलग कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल प्रोफेसर, पापा इतनी बड़ी पोस्ट पे, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना जुलना. जब हम लोगों को नहीं पता था कि ब्लाइंड लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज होती हैं, क्या रिजर्वेशन होती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और आम इंसान को कैसे पता हो.
1: बिल्कुल सही है सर.
0: मैं चाहता हूँ कि जो मुझे सफरिंग हुई वो रुको ना.
1: बहुत सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो यही एक जरिया होता है सर इस तरह से, जब आपको लोग सुनते हैं या आगे भी सुनेंगे तो ऐसे ही सीखने को मिलता है. तो सर आपको अभी तक लगा कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर कि यार ब्लाइंडनेस की वजह से मैं इस चीज में पीछे रह गया?
0: वो तो अनगिनत जगह पर है, झूठ नहीं अच्छा? बोलूंगा कि हमें कहने की जी बिल्कुल हम सब कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा है वैसा है, नो डिपोर्शन. जो असलियत है वो असलियत है ये यही है कि ब्लाइंड व्यक्ति को लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं. हम किसी को पहचान नहीं सकते, इंडिविजुअली चल फिर नहीं सकते, बहुत सारे काम जो लोग कर सकते हैं उनकी तरह से नहीं कर सकते. सॉफ्टवेयर साइट्स हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, रास्ते हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, लोगों का दृष्टिकोण हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, रिश्तेदारों का एटीट्यूड हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होता समाज के अंदर में. सो चैलेंजेस बहुत हैं और हमें हर काम पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि वी आर कैपेबल. और एक स्टेज आती है जब इंसान प्रूव करके थक जाता है कि व्हाई टू प्रूव एंड टू हूम टू प्रूव, किसलिए प्रूव करें कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. हम अपनी पूरी जिंदगी लोगों को प्रूव करने के लिए नहीं बिता सकते. जो इंटरनल खुशी होती है वो चाहती है कि औरों को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे लाइफ अच्छे से बीत सके, हमारे लिए अपने व्हाट्स इनफ फॉर अस, ये फाइंड करें कि हमारे लिए क्या इनफ है, क्या अच्छा है, वो फाइंड करें और लाइफ को और मीनिंगफुल और प्लेजेंटली कैसे बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं. यू हम लोगों को खुश करने के लिए, प्रूव करने के लिए ये काम कर रहे हैं वो काम करने करेंगे, फिर तो हम कोलू की बेल की तरह गोल गोल घूमते रह जाएंगे पूरी जिंदगी में. उस चीज में रेट रेस में मैं नहीं पढ़ा. जब मैं छोटा था तो मेरे दीदी ने एक घोड़े की फोटो लगाई हुई थी रूम के अंदर, पोस्टर का भागता हुआ घोड़ा और एक पैर उसको मुड़ा हुआ था, और टैगलाइन लिखी हुई थी, ईच मस्ट फाइंड हिज ओन रोड. तो हमें अपना लाइफ, अपने रास्ता खुद फाइंड करना है, खुद देखना है।
1: देखना बिल्कुल।
0: औरों की तरह तो लोग तो पता नहीं क्या काम करते हैं दोस्तों, हम काम औरों की रीस करेंगे तो फिर तो रीस ही करते रह जाएंगे।
1: बिल्कुल सही है,
0: दैट्स इट, लाइफ एंजॉय करें, अच्छे से जिए, सभी के लिए कहूंगा।
1: बहुत जबरदस्त। तो सर एक बात छोटी सी, मतलब मैं बहुत शॉर्ट में जानना चाह रहा हूं कि 7 जनवरी से 15 अप्रैल तक का जो टाइम था 2001 में, उस दौरान बातें वगैरह होती थी आप लोगों की?
0: मोबाइल तो थे नहीं, अमानी जी तब तक लॉन्च किया नहीं था अपना फोन,
1: बिल्कुल।
0: वो सिर्फ तो मूवी आई थी एक, उस तरह से जस्टिन टीसीओ पे
1: पहली
0: 180 रुपए का बिल,
1: बार
0: 200 रुपए का बिल, 300 रुपए का बिल।
1: दीपक और आरती
0: तो बस वही
1: जी,
0: हम एसडी पीसी वाले को बिल पे किया करते
2: दस
0: थे,
2: हजार रुपए का बिल आया
0: 10,000 रुपए का फोन का बिल जाता था, फिर शूट हुआ
1: था।
0: करते थे।
1: ये 2001 की बातें सोचता हूँ, 10,000 का बिल और केवल 3 महीनों में।
0: ये तो शूट
2: एवरी मंथ था,
0: महीने का था,
1: अच्छा महीने का। ओ माय गॉड।
2: बहुत
1: तो सर वो
2: बातें करते थे
1: वीडियो
2: सर, लेटर्स
1: जी,
2: बहुत, लेटर्स बहुत आया करते थे, कैसेट्स रिकॉर्ड होकर आया करती थी सर,
1: अच्छा क्या बात
2: ना
1: है,
2: ना दिन का
1: री
2: पता था ना रात का पता था सर।
1: माय गॉड, सब कुछ ही मतलब होता था, सारे ही। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप और ट्विटर नहीं था तो मतलब कुछ होता ही नहीं था, सब कुछ होता
2: सर एक से एक सॉन्ग आया करते थे सर, रिकॉर्ड होकर कैसेट्स में,
1: मैडम तो
2: कोरियर आने में टाइम
1: कविताएं
2: लगता था।
1: कौन से, कविताएं भी आती थी कभी, शेरो शायरिया वगैरह भी आती थी कि नहीं?
2: वो सर लिखी हुई आती थी लेटर्स में,
1: अच्छा लिखी हुई आती
2: सब टाइप करके भेजते थे सर लैपटॉप से,
0: थी। indiapost.com।
2: indiapost.com से।
1: क्या बात है, गजब, बहुत जबरदस्त। चलिए तो अब आप दोनों से बात करते करते तो कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला हमको तो, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी तो मैं 2-3 घंटे और बातें कर सकता हूँ आप दोनों से।
2: सर अभी तो बहुत कहानियां हैं, वाकई में पूरा दिन खत्म हो जाएगा लेकिन बातें नहीं खत्म होंगी सर हमारी।
1: खत्म होंगी कोई नहीं, मुंबई में सुनेंगे, बाकी की कहानियां मुंबई में सुनेंगे आप दोनों से।
2: यस सर।
1: एक कुछ ऐसी छोटी छोटी मस्ती भरी बातें आप दोनों से कर लेते हैं कि दोनों में जब कभी कुछ हो जाता है, ये है गड़बड़, तो सॉरी कौन बोलता है पहले?
0: देखिए, आई एम द बॉस ऑफ माई हाउस,
1: अच्छा,
0: एंड आई हैव माई वाइफ्स परमिशन टू से सो,
1: जी
0: वाइफ इज ऑलवेज राइट।
1: अच्छा तो इसका मतलब आप बोलते हैं।
0: अपना अपना मुंह से कैसे कह सकते हो,
2: पर कोई भी बात हो जाए, चाहे गलती मेरी हो ना हो, बस मैं
1: हाँ
2: भी इनसे एक ही बात बोलती हूँ, आपको याद है ना मैं कौन हूँ, आपकी वाइफ, मेरी गलती कभी हो ही नहीं सकती, तो आप क्यों उम्मीद करते हो कि
1: बॉस
2: मेरी
1: इज ऑलवेज
2: गलती।
1: राइट, इफ रॉन्ग देन अप्लाई रूल फर्स्ट।
2: यस।
1: अच्छा तो कहीं अगर जाना हो घूमने तो किसकी जगह को अप्रूवल मिलता है, जो फाइनल कौन करता है कहाँ जाना है, ये आप दोनों में से?
2: एक्चुअली ये होता है कि टिकट्स बुक सब कुछ बुक, बस ये बताया जाता है कि आपको 8 तारीख को वहां चलना है मेरे साथ।
1: क्या बात है, जवाब मिल गया मतलब मुझे।
2: इनके कॉलेज का सब पूछ लेती हूँ कि कब छुट्टियां आ रही है, क्या प्लानिंग है, कैसे हैं। अभी 9 सितंबर का इनका बर्थडे आ रहा है सर, तो हमने ये कहा इनसे कि 9 को हम वृंदावन चलते हैं, प्रेमानंद जी से मिलकर आते हैं और आपका
1: बिल्कुल
2: बर्थडे
1: सही
2: वहीं
1: जी,
2: सेलिब्रेट करते हैं, तो सारी प्लानिंग होगी सर, बस इनसे इतना बताना था कि चलना है, अब आप अपना मैनेज कर लेना सर। कहते हैं ओके ठीक है।
1: सही है। चलिए तो सर को एडवांस में बर्थडे के लिए ढेर सारी विशेस, और आप लोग ऐसे घूमते फिरते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और लोगों की जिंदगी में रोशनी फैलाते रहें। मैम ये बताइए कि आपके बनाई हुई कौन सी डिश सर को सबसे ज्यादा पसंद है?
2: सर दाल बाटी चूरमा
1: अरे वाह क्या बात है, राजस्थानी सूरमा। सही
2: सर,
0: और गट्टे की सब्जी झरने वाली
1: ओके। अच्छा मैम ये बताइए कि मूवीज का शौक है कि नहीं सर को?
2: सर को मूवीज का बहुत शौक है सर, हमने बहुत शादी के बाद हर हफ्ते एक मूवी देखी है सर हमने।
1: अब तक सर को सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है आप बताओ।
2: अच्छा मैं बताऊं सर, इनको सबसे अच्छी लगती है
1: जी
2: शोले, शोले के हर
1: अरे
2: डायलॉग इनको
1: वाह
2: पसंद है सर, जबरदस्त लगती है वो मूवी, और
1: गजब,
2: इनकी फेवरेट हीरोइन है रवीना टंडन सर,
1: ओहो ओहो
0: आपकी भी होगी।
1: फुहरा टिप टिप बरसा पानी है। क्या बात है, ग्रेट। तो चिराग सर आप भी बता दीजिए, इंडिया में अभी कौन सी ऐसी जगह है जो मैम नहीं गई हैं और उनको जाने की बहुत इच्छा है?
0: शक्तिपीठ का चल रहा है, काफी सारे शक्तिपीठ हम कवर कर चुके हैं, कुछ शक्तिपीठ रह गए हैं, अभी मुंबई आ रहे हैं तो उसके बाद देखते हैं कि अगर पॉसिबल नासिक में कवर कर लेंगे और शक्तिपीठ।
1: अच्छा, सब जगह जाने का इरादा है आपका?
2: ऑल इंडिया सर।
1: ऑल इंडिया, क्या बात है, ग्रेट।
0: फिर कामाख्या मंदिर आसाम, वहां पर भी जाना है। काफी जगह, लंबी लिस्ट।
1: अच्छा, लंबी लिस्ट है, लेकिन अभी ऐसी जो जिसके लिए ये कहा जा रहा हो कि बस कहीं और जाए या ना जाए, यहाँ जरूर चलना है सबसे पहले।
0: फिलहाल तो बरसाना जाएंगे।
1: अच्छा, बरसाना, ओके ठीक है। और मैम का फेवरेट कलर? मैम का फेवरेट कलर?
0: कलर आजकल नजर तो आते नहीं, फिर भी यहाँ तक मुझे याद पड़ता है। फेवरेट कलर ब्लैक तो रहा नहीं, मैरून, मैरून टाइप में काफी पसंद करते थे कपड़े।
1: सही है, सही कह रहे हैं।
2: यस सर, राइट।
1: चलिए, मतलब सर को याद तो है अभी, देखिए आपकी पसंद के बारे में। चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब। चिराग सर, अगर एक सेंटेंस में मैम के बारे में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे?
0: सिर्फ इतना कि मोना, यू आर ग्रेट, यू हैव मेड माय लाइफ, एंड तुम सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं हो, मेरी सलाहकार हो, फ्रेंड हो, और तुमने ही मेरे लाइफ को काफी अच्छा बनाया है। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कहीं अंधेरों में खो चुका होता। तुमने मुझे मेरी कैपेबिलिटीज के हिसाब से पहचाना, मोटिवेट किया, गाइड किया और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो थैंक्स कहना भी बहुत छोटी चीज होगी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए।
1: बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। मोना मैम, अब आप भी कुछ कह दीजिए, एक सेंटेंस में अगर सर की लाइफ को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे?
2: ठीक है सर, अब सर की लाइफ को तो मैं कुछ लाइंस कहना चाहूंगी सर उनके लिए।
1: जरूर जरूर जरूर।
2: एक शुक्रिया जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए। एक शुक्रिया जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए। एक शुक्रिया जिंदगी में आने के लिए।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: करस्ता रहेंगे हम जन्मों जन्मों तक, एक शुक्रिया प्यार को इतने प्यार से निभाने के लिए।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह, तो सोचता हूँ बहुत बहुत बहुत जबरदस्त। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा, तो अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा 9414151415 पर। और चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आप दोनों क्या मैसेज देंगे?
2: मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगी कि कभी भी जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी निराश नहीं होना, उसमें भी उम्मीद की रोशनी जरूर देखना, और भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। हमेशा आगे बढ़ते रहो अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ।
1: और चिराग सर, आप क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: सिंपल, खुश रहो, अपने ध्यान समस्याओं की जगह अपॉर्चुनिटीज पे लगाओ, सेट योर टारगेट, प्लान, एक्ट एंड गेट।
1: बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो श्रोताओं, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह। चिराग सर और मोनिका मैम, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए।
2: थैंक यू, धन्यवाद सर।
1: श्रोताओं, रेडियो मधुबन सुनते रहें, मुस्कुराते रहें और हमराही प्रोग्राम का इंतजार करते रहें।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी के साथ कितनी सारी बातें जुड़ी है ना दोस्तों, इतनी सारी परिस्थितियां आती हैं और कुछ ऐसी हैं जो याद रहती हैं और कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी बार बार याद करते हैं। अब आज की परिस्थिति में हम प्रेजेंट रह पाए और पुरानी को टाटा बाय बाय कह पाए, जिंदगी को खुशनुमा तरीके से प्यार से जी पाए, उसकी एक पहल, उसकी एक कोशिश है हमारा ये कार्यक्रम। और आज हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट ग्लोबल अस्पताल से। हमारे साथ जुड़ी हैं कल्पना जी, जो कि हमारी गाइड और दोस्त तो है ही, आप एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने रेडियो के श्रोताओं से मिलने का, बातें करने का मौका मिलता है, जिससे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं हमेशा से ही इस बात के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ।
0: कल्पना जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक बहुत इंसाइटफुल होते हुए भी बहुत सरल कॉन्वर्सेशन होता है आपके साथ, जो हम समझ भी पाते हैं, जीवन में अपनाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। मैं कोशिश कहूंगी क्योंकि हर चीज कई बार नहीं कर पाते, लेकिन ये कोशिश जारी रहेगी आपके साथ। आज परिस्थितियों के बारे में, जैसे मैंने कहा, जब भी हम किसी की जीवनी पढ़ते हैं या बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें लिखा होता है ये परिस्थिति आई, ऐसे क्रॉस किया, ये किया। एक परिस्थिति के बारे में क्रॉस करके वो व्यक्ति बहुत बड़े बने होते हैं। हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, और हम बात कर रहे थे सिचुएशंस के साथ कैसे अवेयरनेस हमारी रहे। आपने हमें लास्ट टाइम बताया था ऑब्जर्व करना पहला स्टेप है, ऑब्जर्व करना। उसके लिए आपने कहा था कुछ और हम चीजें जानेंगे, कुछ एक्टिविटीज या कुछ जो हम बेहतर कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो अगर वहीं से शुरुआत की जाए।
1: जी बिल्कुल, आपने अच्छा याद दिलाया। हमने एक सीक्वेंस बनाया था कि परिस्थिति को कैसे एक्शन लेने से पहले एनालाइज करना है। तो हमने कहा था ऑब्जर्वेशन, देन अंडरस्टैंडिंग, एंड सिचुएशन की अवेयरनेस एंड एक्शन। ये हमारा सीक्वेंस था। इसमें एक बहुत सुंदर जो टेक्निक है जिस उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं SOS टेक्निक। आपने SOS शब्द तो सुना होगा। डॉक्टर्स जब कभी बीमार को मेडिसिन देते हैं तो कहते भाई आपको जरूरत हो तब इस मेडिसिन को लेना, उसको वो SOS कहते हैं। और भी कई भाषाओं में कई तरीके से SOS का इस्तेमाल किया जाता है
0: जी।
1: यहाँ सिचुएशन अवेयरनेस में SOS बहुत सुंदर रीति से उपयोग में लाया जा सकता है। S stands for step back। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो एक कदम पीछे होकर उस परिस्थिति का थोड़ा सा डिटैच होकर जायजा लेना। तो पहला है step back and then observe। अब आपका जो एंगल है परिस्थिति को देखने का वो वाइड एंगल हो जाता है। जब आप परिस्थिति के बिल्कुल क्लोज होते हैं मेंटली, तो वो एंगल एक शॉर्ट एंगल हो जाता है जिसमें कई सारी चीजें ऑब्जर्व होना रह जाती है। When you step back mentally, उसके बाद आपको थोड़ा वाइड एंगल मिलता है। तो स्टेप बैक, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर। स्टीयरिंग अर्थात स्टीयरिंग को चलाना शुरू करे या एक्शन ले,
0: मतलब जो गाड़ी जैसे चलाते हैं हाथ रख के स्टीयरिंग पे कुछ।
1: गाड़ी चलाते समय भी हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठने के बाद मिरर चेक करते हैं, तीनों मिरर चेक करते हैं, अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं, एंड देन ब्रेक्स, अपने पैर जो सही जगह पर है कि नहीं उसको देखते हैं, एंड देन हम आराम से चाबी घुमा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अपना गियर चेंज करते हैं, एंड देन हैंड ब्रेक छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है। उसी तरह से SOS टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक है। एक्शन करने से पहले, रिएक्ट करने से पहले, अगर स्टेप बैक, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर, ये छोटा सा प्रोसेस अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत सारी बातों से हम बच जाते हैं। बहुत सारी बातों से बच जाते हैं।
0: मुझे लग रहा है कि जैसे किताब बहुत आँख के पास हो तो वो सच में पढ़ने में नहीं आती। थोड़ा सा तो दूर रखना पड़ता है पढ़ने के लिए, वैसी शायद परिस्थिति को पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है, जैसे जब हम उस परिस्थिति में होते हैं, कई बार ये भी कहा जाता है अगर कुछ चल रहा है मेरे सामने और मैं उसे महसूस नहीं कर रही हूँ, मान लीजिए बहुत सारे चेंजेस आए हैं कोई भी लेवल पे, तो जब ये फील हुआ है कि गलत हो रहा है और मुझे फील हुआ है गलत हो रहा है, तभी वो चेंज करने की जो एक अंदर से मोटिवेशन आता है, हिम्मत आती है, तभी आया है वो। तो अगर मुझे वो अप क्लोज इतने मेरे पास नहीं है, मैं थोड़ा स्टेप बैक कर ले रही हूँ, तो उस परिस्थिति को मैं दूर से देख रही हूँ, महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मेरे अंदर वो चेंज की भावना कैसे आएगी, वो बदलाव का जज्बा कैसे आएगा?
1: बिल्कुल आएगा। जो ये छोटा सा पॉज हम लेते हैं ना, उस पॉज के दौरान कई सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर होने लगती हैं। उस पॉज में हमारा ब्रेन सही एक्शन को लेने के लिए कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो वो जो SOS वाला पॉज है ना, वो 10 सेकंड का भी हो सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं हर रोज, तो वो 10 सेकंड का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पति घर पे आया नौकरी करके, तो उसने आते ही वाइफ ने उसको कुछ न कुछ सारे दिन की शिकायतें करना शुरू कर दी, और वो परेशान होके उसने बोला, आप 1 मिनट फुर्सत नहीं लेने देते हो, और मैं घर में आया हूँ थक के, मेरी क्या प्रॉब्लम है, उसको पूछे बिना आप में अपनी बातें सुना रहे हो, तो वो चिढ़ जाते हैं।
0: ये होता है।
1: हाँ, तो चिड़चिड़ाहट में दोनों ही एक दूसरे पर बरस पड़ते हैं, सिचुएशन बिगड़ जाती है
0: जी।
1: तो जैसे हम घर में घुसते हैं, उस समय पहले चप्पल हम बाहर छोड़ के आते हैं ना
0: जी।
1: हाँ, तो अगर घर में घुसने वाला व्यक्ति चप्पल के साथ अपने सारे टेंशन, प्रॉब्लम्स, जो बैगेज लेकर आ रहा है, उसको भी बाहर छोड़ दे और मुस्कुराते हुए अंदर आए, और जो रिसीव करने वाला व्यक्ति है, वाइफ है, वो भी थोड़ी देर के लिए उनको रिलैक्स होने दे, पानी पीकर थोड़ा सा बैठने दे, और आराम से उनको पास बैठकर पूछे कि कैसे रहा आपका दिन, सब कुछ ठीक था ना, तो ये कन्वर्सेशन की शुरुआत जब इतना पीसफुली और पॉजिटिवली और खुशनुमा होती है, तो आगे का कन्वर्सेशन फिर वो शिकायतों भरा क्यों ना हो, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली दोनों ही लोग प्रिपेयर हो पाते हैं। तो वो SOS टेक्निक बहुत काम करती है कि भाई थोड़ा चुप, शांत रहो, थोड़ा स्टेप बैक करो, मतलब टाइम दो सामने वाले व्यक्ति को, और खुद भी टाइम लो एक्ट करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए।
0: कितना टाइम? लेकिन
1: मैंने कहा ना, 10 सेकंड भी हो सकता है।
0: अच्छा, ओके।
1: या अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो पॉज जो है वो 10 सेकंड का भी हो सकता है।
0: इतना छोटा भी हो सकता है।
1: हाँ जी, हाँ।
0: हमें लगा टाइम लेना है, मतलब पहले 1 दिन 2 दिन ऐसे सोच रहे हैं, फिर बाद में डिसीजन दे रहे हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। वो पॉज अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पर छोटा भी हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: ओके, इंटरेस्टिंग। तो पहले स्टेप बैक करना है, उस परिस्थिति से थोड़ा बाहर निकलना है, पीछे हटना है, फिर उसको ऑब्जर्व करना है, पॉज लेना है, और फिर एक्शन देना है, स्टीयर करना है।
1: बिल्कुल।
0: ओके, इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से हम परिस्थिति को समझ सकते हैं, अवेयरनेस हमारी हो सकती है, एक्चुअल जैसी परिस्थिति हमें वो वैसी ही समझ में आएगी फिर।
1: बिल्कुल। सो आज की एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगी
0: जी।
1: अमेरिका से एक बहन आई है माउंट आबू खास मेडिटेशन सीखने के लिए। तो आते समय, उसने वहां से निकलते समय सोचा कि मैं माउंट आबू में जाऊंगी और मुझे रहने के लिए अच्छा स्थान मिलेगा, सब कुछ सही होगा, ऐसा सोचकर वो यहाँ आई। प्लान कुछ था नहीं, जाकर सीखना है मेडिटेशन। यहाँ आकर देखा तो यहाँ होटल्स तो बहुत महंगे हैं, और वो महंगा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने एक कम बजट वाला अकोमोडेशन तो लिया, बट खाने पीने की प्रॉब्लम। अब 5 दिन बाद उसको वो स्थान छोड़ देना है, तो 5 दिन हो चुके हैं, और 5 दिन बाद उस, तो वो दिन भर इसी टेंशन में बिताती है कि 5 दिन बाद मेरा क्या होगा,
0: क्या होगा।
1: सो 5 दिन बाद की टेंशन के लिए जो मेरे 5 दिन मेरे हाथ में है, उनको भी मैं बिगाड़ रही हूँ, है ना, मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो 5 दिन तो कम से कम मेरे हाथ
0: टेंशन
1: में
0: है बहुत।
1: और जब हम थोड़ा सा प्री प्लान्ड होते हैं, मेंटली थोड़ा सा प्लान करके, इतनी बड़ी उड़ान भरने से पहले आपने कुछ रिसर्च किया होता, सर्च किया होता, या यहाँ से किसी से बात करके आप आए होते कि अगर मैं यहाँ आऊँ तो मुझे कहाँ रहना है, क्या करना है, अचानक निकल पड़े, और अब अगर आपको डिफिकल्टीज आ रही है रहने खाने पीने में, तो तब आप सोच रहे हो, तो वो कितना क्या कहेंगे इसको,
0: है ना? मतलब प्लानिंग ठीक नहीं हुई कहीं ना कहीं। तो अब लेकिन अगर मेरे पास अब 5 दिन है, तो अभी मुझे 5 दिन पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी
1: अगले पांच दिन की। बिल्कुल, पर टेंशन लेके नहीं।
0: पर टेंशन लेके हाँ ये प्लानिंग हो रही थी या टेंशन हो रहा था, दोनों मिक्स हो गया, एक ही लगने लगा.
1: राइट. सो हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स है ना, पॉजिटिविटी है, वो हमें बहुत जल्दी सॉल्यूशन तक ले जाती है. जब हम पॉजिटिविटी के ट्रैक से नीचे उतरते हैं, नेगेटिविटी के ट्रैक में जाते हैं, तो जो होने वाला है सॉल्यूशन, जो मिलने वाला है, वो भी नहीं मिल पाता है.
0: राइट. ओके. तो नकारात्मकता मतलब हमें प्लानिंग्स जो हम चाहते हैं करना उससे भी दूरी ले जाती है, हो नहीं पाती है.
1: नहीं हो पाता है.
0: तो ऐसे में क्या करना है? मान लीजिए जैसा आपने कहा कि जो भी आपने बताया था स्टेप बैक करें, तो अब मैं क्या स्टेप बैक करूं? अगर मुझे 5 दिन बाद पता है कि एक परिस्थिति आने वाली है, ये तो पहले से ही पता चल गया, आई नहीं है, आई है तो मुझे स्टेप बैक करके उसको देखना है. अब जब मुझे पता चला परिस्थिति आने ही वाली है 5 दिन, तो अभी क्या करूं?
1: पहला थॉट है जो ऑप्टिमिज्म को ले आता है. ऑप्टिमिस्टिक होना मतलब कि आशावादी रखना है ना, कि आशावाद से, मतलब आशा से अपने मन को पहले शांत करना. पीसफुल माइंड से आपको सॉल्यूशन क्लियरली दिखाई देते हैं. जब आप पीसफुल हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं और आशावादी रहते हैं, तो कुदरत, प्रकृति, यूनिवर्स और परमात्मा आपके साथ जुड़ जाते हैं. तो आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, वो पाने के लिए शुरुआत पॉजिटिविटी और पीस से करनी होगी.
0: ओके. तो पहला थॉट पॉजिटिव.
1: राइट.
0: इसमें पॉजिटिव थॉट क्या होगा? लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है तो
1: मैंने कहा ना, आशावादी रहना कि हो हाँ, जाएगा,
0: हो जाएगा, मिल जाएगा,
1: मिल जाएगा.
0: ओके. ठीक है. तो पहले पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है कि हो जाएगा, जो भी परिस्थिति आने वाली है सोल्यूशन हो जाएगा.
1: हो जाएगा.
0: और उसके बाद फिर प्लानिंग करना.
1: हाँ बिल्कुल. जैसे कि अभी वो मेडिटेशन सीखने के लिए आई है हमारे पास, तो 2 घंटा जब वो मेरे पास मेडिटेशन सीखने के लिए आई है, तो उसमें से आधा घंटा यही डिस्कशन करने में चला जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा. उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है. तो मैंने कहा कि अभी 2 घंटे के लिए आप ये सोचना बंद कीजिए कि क्या होगा, 2 घंटे बाद आपको सोचना है उसके बारे में, है ना. ये जो स्टॉप बटन है ना हमारे माइंड में,
0: ये है एक्चुअली,
1: है
0: दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, इतनी आसानी से ये बटन कहाँ चला गया है पता नहीं. ओके. मतलब है स्टॉप बटन.
1: पॉज बटन, स्टॉप बटन. सो इट गिव्स अस पीस, शांति देता है. अगर आप मेडिटेशन सीख रहे हो और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस समय वही करो. फिर अपने माइंड को हमें समझाना है कि भाई ये 2 घंटे के बाद मुझे अपना आगे का फ्यूचर प्लानिंग के लिए टाइम देना है. सो इफ यू मिस आउट फ्रॉम द मोमेंट, आप उस मोमेंट को मिस कर देते हैं, तो ना आप इधर के रहते ना उधर के.
0: मतलब ना सोल्यूशन निकल रहा है और ना अभी का टाइम यूज हो रहा है, ना आगे के लिए बेनिफिट, ना अभी के लिए बेनिफिट.
1: बिल्कुल.
0: ओके. तो मतलब हम इसको भी प्लान कर सकते हैं, थॉट्स को भी प्लान कर सकते हैं.
1: बिल्कुल.
0: वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. तो जैसे हम, क्योंकि परिस्थिति की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आपने बताया किस तरह से पहले ऑप्टिमिस्टिक रहना है, सकारात्मक रहना है, हो जाएगा निश्चय रखना है, फिर उसके बाद प्लानिंग करनी है. वो भी हर वक्त दिन भर प्लानिंग नहीं करते रहना है, अभी को भी यूज करना है और प्लानिंग के लिए भी टाइम डिसाइड करना है.
1: बिल्कुल.
0: ओके. तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि जब परिस्थिति ऐसी है जिसमें से हम थोड़ा स्टेप बैक कर सकते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है जिसमें और लोग इन्वॉल्व हैं बहुत सारे, सिर्फ मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है, मेरे परिवार पे असर हो रहा है, मेरे दोस्तों पे असर हो रहा है, तो उस समय वो लोग सब पेन में है, मैं देख रही हूँ वो परेशान है, तो मुझे तो उस वक्त लगता है कि मुझे उसी वक्त कुछ करना है. वो स्टेप बैक कैसे, ऑब्जर्व कैसे करूं व्हेन हर कोई उस दर्द में है?
1: बिल्कुल. देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हर बार सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा रुक कर ये सोचना कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है. रिएक्ट मैं नहीं कहूंगी, बट मुझे एक्ट कैसे करना है.
0: ओके.
1: सो जब हम ये सोचते हैं, तो हमें वो तरीका मिल जाता है कि कैसे पॉजिटिवली, पीसफुली हम सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. इसलिए हमें थोड़ा सा रुकना बहुत जरूरी है. अच्छा, फॉर एग्जांपल,
0: लेकिन उस टाइम ऑब्जर्वेशन बहुत मुश्किल लगती है. मतलब हर कोई पेन में है, मैं देख रही हूँ रो रहे हैं मेरे सामने, मेरी माँ रो रही है, या फिर बच्चे रो रहे हैं या मेरे दोस्त रो रहे हैं, तो मैं उस समय स्टेप बैक नहीं कर पा रही हूँ, ऑब्जर्व नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उनको रोता हुआ छोड़ के मैं पीछे होके ऑब्जर्व
1: नहीं नहीं नहीं वो
0: रॉन्ग
1: फिजिकल स्टेप बैक आप फिजिकल समझ रहे, फिजिकल नहीं, फिजिकली आई एम देयर ओनली इन द सिचुएशन, मैं मेंटली स्टेप बैक की बात कर रही हूँ.
0: कैसे उस वक्त, कैसे कोई रो रहा है मेरे सामने तो उस समय मेंटली मैं क्या करूं?
1: बिल्कुल, आपको अपने आप में आ जाना है, खुद के साथ जुड़ जाना है और मन से थोड़ा सा उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लेना है और दूर से देखना है, मन में दूरी, मन में दूर से, मन में डिटैचमेंट से देखना है कि आप सब लोग रो रहे हैं, अगर मैं भी उनके रोने में रोकर शामिल हो जाऊं तो वो कोई फायदा नहीं होगा उसका. अगर सब लोग रो रहे हैं तो मुझे रोना है कि नहीं रोना है, ये मुझे तय करना है कि नहीं मुझे रोना नहीं है, मुझे सबको शांत करना है, ये मेरा काम है. लेकिन अगर मैं इमीडिएट एक्शन लेती हूँ, अरे सब लोग रो रहे हैं और मुझे भी रोना आ गया, मैं भी उनके साथ रोने बैठ गई, तो फिर सिचुएशन को संभालेगा कौन? सो आप जिस भी सिचुएशन में हो, जब आप खुद के पास लौट आते हो और ये सोचते हो कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके किसी मित्र ने आपको मैसेज भेजा, फ्रेंड ने आपको मैसेज भेजा कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, अरे आप उसके इस आंसर से, उसके इस मैसेज से तुरंत

0: स्टॉप बटन, पॉज बटन, कि चलो फ्रेंड ने मुझे मैसेज भेजा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। फ्रेंड है मेरी इतने सालों से, मैं उसे जानती हूँ, अगर वो ऐसा लिख रही है तो जरूर उसका कुछ कारण होगा, लेकिन इस समय बात करके कोई फायदा नहीं है। तो कहानी बनाने की बजाय सिचुएशन को समझ लेना है। ओके, वो मुझसे नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत किया है, पहले वो चेक करूं मैं, क्या वो किसी प्रॉब्लम में है। अब ये समझने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मेरे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है कि हुआ क्या है एक्चुअली।
1: पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक मैसेज आया है बस।
0: कुछ नहीं। सो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव हूँ तो मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी लिख सकती हूँ,
1: मुझे भी नहीं करनी बात, जाओ,
0: मुझे भी नहीं करनी बात, जा। तुम अपने आप को समझती क्या हो, ये रिएक्शन हो गया, एक्शन का रिएक्शन। बट अगर मैं सिचुएशन अवेयरनेस के साथ उससे बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, अब तुम्हारा मूड इस समय ठीक नहीं है, इसलिए तुम जब शांत हो ना तब मुझे बताना कि क्या हुआ है, हम बाद में बात
1: करेंगे।
0: जब तुम ठीक महसूस करो, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे बता सकती हो तो मैं जरूर सुनूंगी कि क्या बात है, है ना। तो आपने पॉज दे दिया, आपने कुछ कहानी नहीं बनाई मन में, आपने उस सिचुएशन को पॉज दे दिया, होल्ड पर रखा और उनको मौका दिया कि वो जो लिखा है उन्होंने, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, उसका एक्सप्लेनेशन शांत होने के बाद आराम से दे।
1: उनको भी टाइम दिया पॉज करने का, खुद तो ले आए सामने वाले, मतलब अपना पॉज बटन और उनका, दोनों
0: एक साथ दबा दिए,
1: दोनों एक साथ। ये अच्छा है, मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि खुद के लिए भी हेल्पफुल हो ये पॉज बटन और सामने वाले के लिए भी, ताकि वो भी परिस्थिति को एक स्टेप बैक करके देख पाए और फिर वापस हम उसको बेहतर तरीके से डील कर पाए।
0: जी,
1: वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बहुत प्रैक्टिकल चीजें समझ में आ रही हैं, अपनी परिस्थितियां दिख रही हैं और ये भी समझ में आ रहा है कि कितना अलग अलग रिजल्ट हो सकता है दोनों एक्शंस का हमारी लाइफ पे, कितना कुछ बदल सकता है सिर्फ ये कदम उठाने से, एक बड़ा अंतर आ सकता है। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि अपनी हर परिस्थिति में स्टेप बैक करें, पॉज करें और फिर ही एक्शन में आए। क्या हम कोई ऐसी मेडिटेशन प्रैक्टिस या कोई ऐसे अफर्मेशंस है दीदी जिनका हम अभ्यास कर सकते हैं ताकि वो परिस्थिति आने पे हमें याद रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर अभ्यास है। देखिए, जब भी परिस्थिति आती है तब हमारी एंजाइटी बढ़ती है और एंजाइटी को कंट्रोल करने का सबसे सुंदर साधन प्रकृति ने हमें दिया है, वो है हमारी ब्रीदिंग। सो हम अपने ब्रीदिंग पर फोकस अगर करते हैं, दिन में कई बार अपने श्वासों को आते जाते हुए देखते हैं, तो हमारा मन अपने आप शांति का महसूस करता है। तो इसीलिए जब भी हम श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि एक दो मिनट के लिए हमें मेडिटेशन करना है, तो उसकी शुरुआत हमेशा लंबी और गहरी सांसों से होती है। तो आइए चले हम कुछ देर के लिए शुरुआत करें अपने आप को शांति की ओर ले जाते हुए गहरी और लंबी सांसें लें। महसूस करें अपने सांस को भीतर जाते हुए, बाहर आते हुए, हर सांस के साथ अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ते हैं। अपने मस्तक के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं, वहां जो आत्मशक्ति है उसी आत्मशक्ति में मेरा मन है और अब मैं अपने मन को ट्रेन कर रही हूं, जब भी कोई परिस्थिति आएगी मैं थोड़ी देर के लिए रुकती हूं, गहरी और लंबी सांस लेती हूं, परिस्थिति को चारों ही एंगल से अच्छी तरह से देखकर समझने की कोशिश करती हूं और फिर सजगता के साथ उस परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया देती हूं।

0: गहरी और लंबी सांस ले, याद करे मेरा मन हर परिस्थिति में शांति का अभ्यास करता है। मैं हर परिस्थिति में शांत रहकर प्रतिक्रिया देती हूं। शांत मन सही रूप से परिस्थिति को समझने की शक्ति प्रदान करता है। गहरी और लंबी सांस ले और इस प्रक्रिया को रिपीट करें अपने मन में। पॉज, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। रुके, देखे, समझे और फिर प्रतिक्रिया दे। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी। आई थिंक ये जो आपने अभी अभ्यास कराया, ये भी हम करते रहें, और साथ साथ जो बात समझ में आई है कि परिस्थिति चाहे कितनी बड़ी हो छोटी हो, लेकिन एक स्टेप बैक करके जब समझते हैं और पॉज करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। तो उस अंतर को लाने के लिए हम कोशिश करेंगे ये अभ्यास करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस एपिसोड में।
0: धन्यवाद आरुषि जी। श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी काफी पेशेंटली हम ये सुनते हो, समझते हो, धन्यवाद।
1: जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिंदगी के कई राज खुलने वाले हैं और कई खजाने हमें मिलने वाले हैं। फिलहाल लेते हैं इजाजत और जिंदगी को खुल के कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

0: 19वीं सदी के आखिरी तीन दशकों और 20वीं सदी के पहले दशक में भारत को साम्राज्यवादी वर्चस्व और एंग्लो ईसाई औपनिवेशिक शासन से आजाद कराने के लिए अंतिम संघर्ष की नींव रखी जा रही थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1875 में वंदे मातरम के जरिए देश को एक शक्तिशाली मंत्र दे दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा में प्रवाहित होते हुए इस गीत वंदे मातरम ने 150 वर्षों से भी अधिक समय तक राष्ट्र के भाग्य को गढ़ने का कार्य जारी रखा। भिकाजी कामा और बिंदु घोष, सिस्टर निवेदिता, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में ये एक ज्वाला के रूप में धधकता रहा और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। 1908 में महाराष्ट्र के अमरावती में एक सभा को संबोधित करते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी अरबिंदो घोष ने भी वंदे मातरम गीत की महिमा की।
1: मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि यह गीत वंदे मातरम भारत के सभी हिस्सों में बेहद लोकप्रिय हो गया है। इसे बार बार गाया जा रहा है। इस राष्ट्रगीत को ही मैं अपने भाषण का विषय बना रहा हूं। यह गीत केवल एक राष्ट्रगीत नहीं है, जैसा कि यूरोपीय राष्ट्र अपने गीतों को मानते हैं। यह असीम शक्ति से परिपूर्ण एक पवित्र मंत्र है। यह मंत्र हमें आनंद मठ के रचयिता द्वारा प्रदान किया गया है, जिन्हें एक प्रेरित ऋषि भी कहा जा सकता है। यह मंत्र कोई मनगठन तो रचना नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन मंत्र का पुनरुद्धार था, जो एक व्यक्ति नवकिशन की गद्दारी के कारण लगभग विलुप्त हो गया था। बंकिम चंद्र के इस मंत्र को उनके अपने समय में उचित सराहना नहीं मिली थी। तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा समय अवश्य आएगा जब संपूर्ण भारत इस गीत के गायन से गूंज उठेगा, और उस भविष्यवक्ता के वचन चमत्कारिक रूप से सत्य सिद्ध हुए। उस समय इस गीत का वास्तविक अर्थ इसलिए नहीं समझा गया क्योंकि तब लोगों में सच्ची देशभक्ति का अभाव था। उस समय की देशभक्ति का अर्थ केवल इतना ही था कि भारत को इंग्लैंड और अन्य देशों की छाया बना दिया जाए। ऐसे देश जिनकी शानो शौकत और वैभव ने इस मातृभूमि की संतानों की आंखों को चकाचौंध कर दिया था। उस काल के तथाकथित देशभक्तों भले ही भारत के शुभचिंतक रहे हों, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसे लोग नहीं थे जो भारत से सच्चा प्रेम करते हों। जो व्यक्ति अपने मां से सच्चा प्रेम करता है, वो कभी भी उसकी कमियों पर दृष्टि नहीं डालता। वो कभी भी अपनी माँ को एक अज्ञानी, अंधविश्वासी, पति अथवा जर्जर स्त्री मानकर उसका तिरस्कार नहीं करता।
0: वीर सावरकर के लिए भी वंदे मातरम एक जोशीला क्रांतिकारी गीत था, जो स्वतंत्रता सेनानियों के बीच एक अभिवादन के रूप में प्रयोग किया जाता था। वो देशभक्ति का एक प्रतीक, समझौता चाहने वालों के लिए चेतावनी और एक ऐसा मंत्र था जिसने संघर्ष की ज्वाला प्रज्वलित की। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम भिकाजी कामा ने सावरकर और उनके साथियों को प्रतिनिधित्व करते हुए पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। सावरकर, कामा और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए इस ध्वज पर वंदे मातरम शब्द प्रमुखता से अंकित थे, जो सावरकर पर इस गीत के गहरे प्रभाव को दर्शाता था।
2: दीदी, आपने मुझे अनेक वीर सेनानियों के किस्से सुनाए, लेकिन अब तक श्याम जी वर्मा के बारे में कुछ बताया नहीं है। वे कौन थे?
3: ओहो बन्नो, पहले तो तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी।
2: क्यों क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया?
3: अरे मेरी प्यारी बहना, तुम्हारी लगन और जिज्ञासा की तारीफ करना चाहती हूँ। कि तुम कितना ध्यान पूर्वक इस ऐतिहासिक कथा को सुन रही हो। श्याम जी कृष्ण वर्मा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने न केवल देश विदेश में अंग्रेजों से मुक्ति का वातावरण बनाया बल्कि क्रांतिकारियों की एक पूरी पीढ़ी का मार्गदर्शन भी किया। इसमें विनायक सावरकर से लेकर मदनलाल ढींगरा तक एक लंबी श्रृंखला है, इसलिए उन्हें क्रांति गुरु भी कहते थे। हो भी क्यों ना, जब जन्म ही क्रांति के बीच हुआ था।
0: वो 1857 का साल था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। 10 मई को दिल्ली से 40 मील उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। धीरे धीरे उसकी आग बढ़ती जा रही थी। ये लपटे गुजरात के अहमदाबाद, सौराष्ट्र, सूरत, गोधरा, नांदेड़ एवं दाहोद जैसे शहरों तक भी पहुंच चुकी थी। तभी अक्टूबर के महीने में कच्छ जिले के मांडवी गांव के संस्कृत विद्वान श्री कृष्ण वर्मा के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो और कोई नहीं, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। पिता संस्कृत के विद्वान थे तो माँ गोमती देवी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप जीवन शैली में रची पसी थी। आरंभिक शिक्षा गांव में होने के बावजूद बालपन में ही श्याम जी को संस्कृत का अद्भुत ज्ञान हो गया था। उन्होंने घर में ही भारतीय वाङ्मय के संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। जब वो 11 वर्ष के थे तब माँ उन्हें सदा के लिए छोड़कर चली गई। दादी ने देखभाल की। स्कूल की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए श्याम जी मुंबई चले गए। वहां विल्सन कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। धीरे धीरे यहां भी उनकी कुशाग्र बुद्धि और संस्कृत के ज्ञान की खूब चर्चा होने लगी।
4: श्याम जी, तुम तो संस्कृत के बड़े विद्वान हो। इन दिनों मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती आए हुए हैं, उनसे मिलने नहीं चलोगे?
5: हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलूंगा।
0: ये साल 1875 की घटना है, जब श्याम जी की भेंट स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई। उनके प्रवचन सुनने के बाद आर्य समाज की विचारधारा ने उन्हें काफी प्रभावित किया। वो आर्य समाज द्वारा किए जा रहे वेदों के भाष्य अनुवाद से जुड़ गए। स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य बनने के बाद श्याम जी ने पूरे देश में उनकी शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए दौरे किए। काशी में उनका भाषण सुनकर काशी के पंडितों ने उन्हें पंडित की उपाधि दे दी। ऐसी उपाधि पाने वाले वो पहले गैर ब्राह्मण थे। इसी वर्ष लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रमुख मोनियर विलियम भारत आए थे। वो ऐसे संस्कृत विद्वानों से मिलना चाहते थे जो अंग्रेजी भी जानते हों। उनकी मुलाकात युवा श्याम जी से हुई।
6: आप तो अद्भुत है, संस्कृत का इतना ज्ञान, मैं स्तब्ध हूँ। आप लंदन क्यों नहीं आते, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में?
5: मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ, बहुत खर्च होगा।
6: आप एक बार घर वालों से विचार विमर्श कर लीजिए, फिर मुझे जवाब दीजिएगा।
0: श्याम जी की पत्नी भानुमती के पिता एक बड़े व्यापारी थे। भानुमती ने अपने पिता से बात की।
7: पिताजी, लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हासिल करने का आमंत्रण मिला है।
5: किसे मिला है?
7: आपके दामाद जी को मिला है।
5: अच्छा, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया है?
7: वो इस दुविधा में है कि कैसे जाएंगे, बहुत खर्चा आएगा और वो कहां से होगा। फिर भी मोनियर जी ने सोच समझ कर जवाब देने को कहा है।
5: ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूं, लेकिन श्याम जी को बुरा तो नहीं लगेगा?
7: मैं उन्हें समझा लूंगी। इस तरह भानुमती के पिताजी ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन भेजने की व्यवस्था की। साल 1878 में वो इंग्लैंड चले गए। लंदन में कुछ दिन मोनियर के सहायक के रूप में काम करने के बाद 1879 में उन्होंने बीए करने के लिए बालियोल कॉलेज में प्रवेश लिया। पढ़ाई के साथ वो निजी स्तर पर संस्कृत का अध्ययन भी निरंतर करते रहे। बीए के पश्चात उन्होंने एमए और बारेट लॉ की पढ़ाई पूरी की। लंदन में रहकर ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय थे। उनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर हो गई थी। ऑक्सफोर्ड में वो संस्कृत के साथ भारतीय छात्रों को गुजराती और मराठी भी पढ़ाया करते थे। प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए श्याम जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बर्लिन कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 7 साल लंदन में रहने के उपरांत साल 1885 में वो भारत लौट आए और मुंबई में वकालत शुरू की।
2: वाह दीदी, श्याम जी की कहानी तो बड़ी दिलचस्प लग रही है। आगे क्या हुआ बता।

0: थोड़ा धैर्य रखो बन्नो, बताती हूं। श्याम जी ने वकालत शुरू कर दी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर हो रहे जुर्म उन्हें विचलित कर रहे थे।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
0: श्याम जी को वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके सामने कोई विकल्प भी नहीं था। वे वकालत छोड़कर मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रतलाम चले गए।
2: रतलाम पहुंचने के बाद श्याम जी रियासत के दीवान बन गए। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत साल 1893 में वो राजस्थान के उदयपुर चले गए। वहां राज्य काउंसिल के सदस्य बने। उदयपुर में 3 वर्ष रहने के बाद जूनागढ़ गए और वहां के दीवान का पद संभाला। परंतु जूनागढ़ में तैनात एक अंग्रेज से विवाद हो गया। उनके मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति नफरत पैदा हो गई। वो नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई वापस लौट गए और वकालत शुरू कर दी। श्याम जी एक संवेदनशील और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति समर्पण भी अटूट था। उन्होंने हर कदम पर भारतीयों का अपमान देखा था, इसलिए उनके स्वाभिमान रक्षा के लिए श्याम जी ने समाज को जागृत करने का संकल्प किया। सबसे पहले अपने साथी वकीलों का एक समूह बनाया और ऐसे भारतीयों के समर्थन में मुकदमा लड़ना आरंभ किया जिन पर पुलिस अत्याचार करती थी और बिना किसी अपराध के जेल में ठूस देती थी।
0: जानती हो बन्नो, ये साल 1898 की बात होगी। पुणे के प्लेग गवर्नर कमिश्नर रैंड की चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में फांसी भी दे दी गई, लेकिन उसकी गूंज पूरे देश में फैल गई। उन्हीं दिनों तिलक जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनको श्याम जी अपना आदर्श मानते थे।
1: श्याम जी वर्मा को बड़ा धक्का लगा होगा ना दीदी, उन्होंने कुछ किया नहीं इस पर?
0: ऐसा हो सकता था क्या? श्याम जी और वकीलों के समूह ने तिलक जी की गिरफ्तारी के विरोध के अलावा चापेकर बंधुओं पर मुकदमा चलाने के तरीके पर गहरी आपत्ति जताई थी, क्योंकि चापेकर बंधुओं पर चला मुकदमा एक औपचारिकता था। वकीलों के समूह ने महाराष्ट्र कांग्रेस से भी आपत्ति दर्ज कराने का आग्रह किया। कांग्रेस ने आवेदन तो दिया, पर विरोध के लिए खुलकर आगे ना आ सकी। उन्हीं दिनों स्वामी श्रद्धानंद मुंबई आए। श्याम जी की उनसे भेंट हुई और संघर्ष की योजना बनी।
3: क्यों ना देश भर के उन संघर्षशील नौजवानों को संगठित किया जाए जो अपने स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र अभियान चला रहे।
4: हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है।
3: ठीक है, फिर मैं बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र की यात्राओं पर निकलता हूँ और युवा क्रांतिकारियों से संपर्क करने का प्रयास करता हूँ।
2: योजना के तहत श्याम जी निकल पड़े और उन्हें अपने मकसद में सफलता भी मिली। पंजाब के क्रांतिकारियों का बंगाल और महाराष्ट्र से संपर्क बना और इसमें श्याम जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन श्याम जी के मन में कुछ और भी चल रहा था। वो लंदन में रह रहे भारतीय नौजवानों का स्वाभिमान जगाना चाहते थे, जिन्हें अंग्रेजों का अपमान सहने की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए उन्होंने दोबारा से लंदन लौटने का निर्णय लिया।
1: दीदी, अब क्या होगा? श्याम जी तो फिर विदेश चले गए।
0: ओ मेरी प्यारी बन्नो, अब वे पहले वाले श्याम जी नहीं रहे थे। इस बार लंदन वे देश के स्वतंत्रता संग्राम के एक सिपाही की तरह गए थे।
1: वो कैसे दीदी?
0: समझाती हूँ। श्याम जी विदेश में रहने वाले युवाओं में देश प्रेम की लौ जागृत करना चाहते थे, इसलिए लंदन में उन्होंने 3 काम आरंभ किए। पहला, वहां रहने वाले सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने का। दूसरा, लंदन में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का। और तीसरा, भारतीयों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक समाचार पत्र निकालने का।
2: श्यामजी कृष्ण वर्मा ने साल 1905 के फरवरी महीने में लंदन में द इंडियन होम रूल सोसाइटी नाम के एक संस्था का गठन किया। श्यामजी इसके संस्थापक अध्यक्ष बने और इस केंद्र को नाम दिया इंडिया हाउस, जो 65 क्रॉमवेल एवेन्यू हाईगेट में स्थित था। इसे एक छात्रावास का रूप दिया गया था, जिसमें 25 छात्रों को रहने की व्यवस्था थी। औपचारिक उद्घाटन 1 जुलाई को सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन के हेनरी हाइंडबैन द्वारा हुआ। इस अवसर पर दादा भाई नारोजी, लाला लाजपत राय, मैडम कामा, लंदन पॉजिटिव सोसाइटी के शिस्वनी और हैरी, एस आर राणा, विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल उपस्थित थे। इंडिया हाउस का सारा खर्च श्याम जी स्वयं उठाते थे। देखते ही देखते ये भारतीयों की सभा संगोष्ठियों और क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रेरणा केंद्र बन गया। यहाँ होने वाली सभाओं में भारत की स्वतंत्रता पर खुलकर बातें होती। गांधी जी से लेकर भगत सिंह, गोखले भी यहाँ रुके। आगे चलकर अनेक क्रांतिकारी नौजवान श्याम जी के शिष्य बने, जिनमें मदन लाल ढींगरा और वीर सावरकर उनके प्रिय शिष्यों में थे। सावरकर ने श्याम जी के मार्गदर्शन में ही 1857 की क्रांति पर पुस्तक लेखन आरंभ किया था। इसके साल भर बाद ही भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित अनेक आंदोलनकारी बंदी बना लिए गए। खबर इंडिया हाउस भी पहुंची, सभा बुलाई गई, जिसमें अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी प्रतियां समाचार पत्रों को भी भेजी गई। इसके साथ ही श्याम जी ने विभिन्न देशों और नगरों में जाकर संगोष्ठियों में भाग लेना आरंभ किया। वो अब अंग्रेज सरकार के विरोध में खुलकर बोलने लगे थे। होलबोर्न टाउन हॉल में आयोजित यूनाइटेड कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेट्स की संगोष्ठी में जोरदार भाषण दिया।
5: भारतीय स्वाभिमान को जगाना होगा, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र कराना होगा।

0: इंडिया हाउस इंडियन होम रूल संगठन की स्थापना के अलावा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का अखबार भी शुरू किया, जिसकी कॉपियां पूरे यूरोप में भेजी जाती थी। उनके लेख आयरिश, जिनेवा और फ्रांस के कुछ समाचार पत्रों में छपने लगे। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में उनकी गतिविधियों की आलोचना होने लगी। ब्रिटिश सरकार विरोधी लेखों को लेकर श्यामजी अंग्रेजों के निशाने पर आ गए, साथ में उनका इंडिया हाउस भी। सीक्रेट सर्विस के एजेंट उन पर नजर रखने लगे, उन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। इस कारण श्यामजी ने इंडिया हाउस की जिम्मेदारी वीर सावरकर को सौंपी और खुद पेरिस के लिए निकल गए। ये साल 1907 की बात होगी। हालांकि अंग्रेज सरकार ने उन्हें वहां भी परेशान करना नहीं छोड़ा। तब श्यामजी ने फ्रांसी राजनेताओं से संपर्क बनाना शुरू किया और वहीं से पूरे यूरोप के भारतीय क्रांतिकारियों को एकजुट करने, उनको मदद करने, कई भाषाओं में अखबार छपवाने आदि में मदद करने लगे। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक सीक्रेट समझौते के चलते उन्हें पेरिस भी छोड़ना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले श्यामजी स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा के लिए निकल गए।
1: क्या जेनेवा में वे भारतीय क्रांतिकारियों की मदद कर पाए?
2: क्या कहूं बन्नो, समय साथ नहीं दे रहा था उनका और ना अंग्रेज पीछा छोड़ रहे थे। जेनेवा में भी उन पर थोड़ी बहुत पाबंदियां थी, फिर भी जितना संभव था वे यूरोप में सक्रिय भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करते रहे।
0: विश्वासघात क्या होता है, इसका आभास श्याम जी को नहीं था। जब तक कि उन्हें ये पता नहीं चला कि जिस प्रो इंडिया कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर ब्रीस से वो सबसे ज्यादा बातचीत करते थे, वो एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट थे। उधर मदन लाल ढींगरा ने जैसे ही भारत के सचिव वाइली की हत्या की, तो इंडिया हाउस अंग्रेजी सरकार के निशाने पर आ गया। आखिरकार 1910 में इसे बंद कर दिया गया। फिर 30 मार्च 1930 का वो काला दिन आया, जब जिनेवा में भारत के वीर सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जीवन की अंतिम श्वास ली। उनकी मौत पर लाहौर की जेल में बंद भगत सिंह और उनके साथियों ने शोक सभा रखी, जबकि वो खुद कुछ दिनों के मेहमान थे।
1: दीदी, क्या उनका शव जिनेवा से भारत आ पाया?
2: बन्नो, श्याम जी को एहसास हो चला था कि उनकी अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है, इसलिए मरने से पहले उन्होंने जिनेवा की सेंट जॉर्ज सिमेट्री में 100 साल तक अपनी अस्थियां सुरक्षित रखने की फीस भर दी थी। बाद में उनकी पत्नी की अस्थियां भी उसी सिमेट्री में रखी गईं। उन्हें आशा थी कि जब भी देश स्वतंत्र होगा तो देशभक्त उनकी अस्थियां भारत ले आएंगे। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन किसी को श्याम जी की अस्थियां भारत वापस लाना याद नहीं रहा। आखिरकार 22 अगस्त 2003 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनेवा की धरती से श्याम जी और उनकी पत्नी भानुमती की अस्थियां भारत मंगवाई। मुंबई से उनके जन्म स्थान मांडवी तक भव्य जुलूस निकाला गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अस्थि कलश लाया गया। इतना ही नहीं, श्याम जी के जन्म स्थान पर एक भव्य स्मारक क्रांति तीर्थ का निर्माण भी कराया गया। उस परिसर के श्याम जी कृष्ण वर्मा कक्ष में उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा गया। ये स्थल वैसा ही बना जैसे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा का लंदन में इंडिया हाउस होता था। 13 दिसंबर 2010 को इस मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कच्छ जाने वाले सभी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मांडवी का ये क्रांति तीर्थ एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है।
0: श्याम जी कृष्ण वर्मा का एकमात्र स्वप्न था स्वतंत्र भारत, जहां हर नागरिक स्वाभिमान से जी सके। अपने राष्ट्रवादी विचारों से उन्होंने न सिर्फ देश बल्कि विदेश में रह रहे भारतीयों के हृदय में क्रांति की लौ जगाई, जबकि खुद उनके हृदय में वंदे मातरम गीत एक अग्नि की तरह धधकता रहा, उनके जज्बे को बल देता रहा। उस एक ध्वनि ने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा। वो केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत के आत्मगौरव, स्वाधीनता और एकता का शाश्वत प्रतीक है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे देश के एक अन्य वीर सपूत से। तब तक सुनते रहिए एक गीत, एक नारा और एक और इतिहास रचती कहानी के साथ। जय भारत, वंदे मातरम।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचे, कोई वंचित नहीं रहे। इस कार्यक्रम का माध्यम से अपना गांव और अपना अंचल में जो गतिविधि हो रही है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा एक मंच देती है। तो आज खुशी का बात है क्योंकि आप सबको विदित है पर्यावरण के तहत एक एपिसोड हम हर रविवार को चलाते हैं, जिसमें हमारा श्रीमान भूपाल राम पुरे जी जो कि आबुरोड ब्लॉक से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रूप से सेवानिवृत्त होने के पश्चात रेडियो मधुबन कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं। हर जगह में जाकर पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कुछ न कुछ टिप्स जानकारियां अवेयरनेस देते हैं। तो आज खासकर हमारे आग्रह पर और वो अपना स्वेच्छा से एक विद्यालय जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदुल्ला में पहुंचे, बच्चों को कुछ टिप्स पढ़ाई का संदर्भ में चरित्र निर्माण के साथ साथ अपने जहां रहते हैं उस एरिया को सशक्त समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए पर्यावरण का कितना आवश्यकता है, वो भी जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो उनको स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। और आज हम मोदुल्ला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे, बच्चों का साथ रूबरू होंगे, पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण विषय बहुत मायने रखता है। जहां पर हम रहते हैं जैसे हमारा गांव और हमारा अंचल, पर्यावरण सशक्त होगा, सुंदर होगा और समृद्ध होगा तो हमें जीवन जीने की और आगे बढ़ने की एक शिक्षा मिलेगी और हमें खुशी से रह पाएंगे। तो देर किस बात की, सर से हम सुनेंगे क्लास में कैसे बच्चों का साथ रूबरू हो रहे हैं। सर आपको स्वागत है।
1: पर्यावरण पर बात करेंगे और इसमें जो आपका जो ये टेक्स्ट बुक है प्रस्क्राइब, जो कि मेरे ख्याल से सर ये एनसीईआरटी की तरफ से लिखी हुई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये बुक प्रस्क्राइब है। अपने यहाँ पर दो तरह का सिस्टम चलता है, एक तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चलाती है और दूसरा चलाती है एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और वो लिखती है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। आपकी जो छोटी कक्षाओं की जितनी भी पुस्तकें होगी वो एससीईआरटी के द्वारा तय एनईपी के तय मानदंडों के अनुरूप वो लिखी जाएगी, वो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए है। अच्छा, ये जो लिखी गई है वो मेरे ख्याल से अप टू स्टार्ट फ्रॉम 6 होगी मेरे ख्याल से, जो भी है। तो ये सारी किताबें जो आपके पास में जो एनईपी 2020 के तहत बनी हुई है उस पर हम काम करेंगे। बच्चों एक प्रश्न पूछता हूं आपको, भैया सवाल का जवाब थोड़ा सा, ये जो पुस्तक पढ़ाई जा रही है, चलिए ये बताइए आप पढ़ क्यों रहे हैं, ये बताइए बस, पढ़ने का क्या आपका क्या उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? आप सभी पढ़ रहे हैं ना, आप सब पढ़ रहे हैं ना, 12वीं क्लास में आए तो पढ़ क्यों रहे हैं भाई आप, और हम पढ़ रहे हैं ना, हम यहां पर आए, हम क्यों आए हैं यहां पर, हम क्यों आए, अरे सिखाने तो आए हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं? आपने देखिए आप पहली कक्षा पास की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, और करते करते पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? आप 10वीं क्लास में क्यों नहीं छोड़ा, 11वीं में क्यों पढ़े, क्यों पढ़ रहे हैं आप, ये तो बताओ बेटा, अपने अंदर जो भी हो उसको बोलो भाई, आपको बोलना तो पड़ेगा, बोलेंगे नहीं तो पता क्या चलेगा इसका मतलब, तो हम यहाँ पर आए हैं, क्यों आए, बस आ गए, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप क्यों यहाँ बैठे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इसका कोई भी सवाल का कोई एक जवाब तो होगा ना। आप हिंदी नहीं बोल पाते, अपनी बोली में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ लूंगा, मुझे सब ठीक है ना, मुझे चीज समझाने से मतलब है, समझ हमारे अंदर कितनी है वो अपने अंदर होना चाहिए भाई, हम पढ़ क्यों रहे हैं, बोलो 12वीं क्लास से सवाल का जवाब तो आना चाहिए। मैं तो सर से बात कर रहा था कि पहली क्लास का बच्चा भी हमसे बात करेगा, अब 12वीं वाला नहीं बोलेगा और मैं ही बोलता रहूंगा तो इसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। बोलिए भाई अपन पढ़ क्यों रहे, बोलिए
2: कुछ आगे जाकर अच्छा कर सके, इसलिए
1: अच्छा करना है, क्या अच्छा करना है, आपने अब तक अच्छा ही किया है, घर पे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा खाना खाया है, ठीक है ना, तो अच्छा ही तो कर रहे हैं। तो आगे जाके क्या अच्छा करेंगे, बैठो। और कोई बेटा बात यह है कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं, हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमारा विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, सब तरफ से विकास हो। सब तरफ से विकास का मतलब क्या, बोलना चाहे तो हाथ ऊपर करना तो पता चले। सब तरफ से विकास का मतलब क्या सर, आप भी बता सकते हैं क्योंकि अगर कोई बात ऐसी है तो आप भी बोलिए, अपन सभी मिलके करें। सब तरफ से विकास हो अपना, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास, चहुंओर विकास। तो ये सर्वांगीण विकास को कैसे समझे बताइए, यानी हम सब तरफ से आगे बढ़ करके जीवन में अपने आप को ठीक रखते हुए औरों के लिए भी उपयोगी बने, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। परीक्षा देकर के पास होने का मतलब क्या है, उसको समझा सकते हैं?
2: आपको आगे बढ़ाओ,
1: आप आगे बढ़ाओ। हाँ भाई, परीक्षा दे के पास हुए क्या मतलब रहा उसका? एक बच्चा है 100 में से 100 अंक ला रहा है, एक बच्चा है 100 में से 40 ला रहा है, एक बच्चा 100 में से 50 ला रहा है, क्या मतलब हुआ? देखिए समझ के लेवल की बात हो रही है। हाँ, तुम समझ के लेवल की बात करोगे तो टेक्स्ट की बात आती है, और अब तक अपन समझे ही नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तब तो ये पढ़ना कितना ठीक है अपने लिए। सर यही चीज सर मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, मेरी ये मूल मेरे अंदर भावना रही कि उस चीज को व्यक्ति समझे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये बात तो समझ में आनी चाहिए।
0: लेकिन बोल नहीं पाते सर।
1: सर तो बोलना
0: बोलना पड़ेगा, लेकिन सबका उत्तर है सबके पास
1: नहीं, तो सर ये बोले तो बताएं,
0: झिझक दूर करके।
1: सर इनको बात बता भी दी कि क्यों क्या है ये, भाई किसी बच्चे ने अच्छे अंक प्राप्त किए इसका मतलब उसने समझा है तो उसको करना है, बात ये है। अपन कई बार क्या करते, पढ़ लिया, रट लिया, बोल दिया, 100 में से 100 नंबर आ गए, भैया वो पर्याप्त नहीं है, समझ करके लागू करना ये पर्याप्त है। जैसे आप प्रकृति के बीच में रहते हैं, कहते हैं ना आपके चारों तरफ ये जो बना हुआ जो वातावरण है वो आपको प्रभावित करता है, यहाँ की वायु है, यहाँ की पानी है, यहाँ की स्थितियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपको प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं से। तो आप लोगों ने क्या करा कि ये जो कम हो रहे हैं तो और पौधे लगा दिए, ये चीज सीखनी है अपने। भाई ये आप पौधे लगाते नहीं लगाते तो क्या हो जाते, ये तो आपने लगाए तो हो गया ना, और लगाया तो कितना सुंदर लग रहा है, ये पेड़ पौधे आपने लगाए तो सुंदरता बढ़ गई नहीं बढ़ी? तो इसका मतलब हम जीवन में क्या पढ़ करके पास होना ये तो अलग बात है भाई, ये तो एक पैरामीटर है, आप समझ रहे हो, नंबर लाना तो एक सिस्टम है, एक पैरामीटर है। आपको क्या करना है जीवन में, ये पौधे हम हमारे यहाँ स्कूल में लगाए हैं ना, तो हम कहाँ और लगाए, अपने घर पर भी लगाए, अपने गांव में लगाए, अपनी कम्युनिटी में लगाए, भाई तब जाकर के इससे होने वाली सुंदरता अपने घर पर भी दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी? तो ये काम कौन करेगा, कौन, हम कौन? मेरे घर पर मैं स्वयं करूंगा, आपके घर पर आप स्वयं करोगे, आपके घर पर आप स्वयं करोगे तो सबको फायदा होगा, आपको भी होगा, सबको होगा तो किसको होगा, आपको भी होगा ना।

0: को मिल बैठ के करना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम इस शिक्षा की जो उद्देश्य है वो पूरा कर पाएंगे। पास हो गए और नौकरी लगी, ये इसका सही उद्देश्य तो नहीं है, ये कोई बीच का एक रास्ता है जिसको निकालने वाली बात है। भाई जो पढ़ करके अच्छे नंबर लेकर के नौकरी लग जाता है, उसके अलावा दूसरे लोग क्या भूखे ही बैठे रहते हैं फिर? पर उनके जीवन में अगर शिक्षा है, पर्यावरण है, तो वो निश्चित रूप से अच्छा जीवन जी सकते हैं। आप अच्छे साफ धुले हुए कपड़े पहनते हैं, पहनते हैं ना? आप गंदे कपड़े पहनते हो? तो जब गंदा होता है तब कौन धोता है उसको? आप धोते हो ना, ठीक है ना? तो उसकी सफाई आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आप भोजन करते हो, फिर अच्छा भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा पोषण देगा, वो काम कौन करेगा? तो आप सब खुद के लिए ये जब काम करेंगे, पर्यावरण से जो संबंधित है, जो हमारे इस सिस्टम को प्रभावित करता है, तो अब आप ये बताइए कि पर्यावरण किसे कहेंगे? उत्तर दे सकते हो, पर्यावरण किसको कहेंगे? इनको प्रश्न पूछा है मैंने इतनी देर बोलने के बाद में कि भाई पर्यावरण किसे कहते हैं, उसका उत्तर ये देवे। अरे आपको जैसा आता है वैसा बोलो, ताकि मुझे उसमें से कुछ निकालने का मन। भाई मैं तो और बोलो
1: बोलिए
0: बोलो बोलो बोलो
2: हाँ। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब चारों ओर, आवरण यानी ढका हुआ। अब चारों ओर से अपन क्या क्या ढका हुआ दिख रहे? पेड़, पानी, जमीन, ये सारा पर्यावरण में शामिल है। हाँ
0: भाई, आप और हम सभी यहां पर किस चीज से प्रभावित होते हैं? बाहरी ओर से, बाहर से, बाहर से, बाहर से किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं? जो अपने शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्या चीज है ऐसी चारों तरफ?
2: दिन हो या रात, उसे प्रभावित हो रहे हैं।
0: किससे प्रभावित होते हो? किससे प्रभावित होते हो? पर्यावरण में क्या क्या आएगा, यही तो पूछना चाह रहा हूँ, यही तो निकालना चाह रहा हूँ। किस किस से प्रभावित हो रहे? पर्यावरण में क्या क्या आ रहा है?
3: जल,
0: जल आता है बिल्कुल,
3: पौधे,
0: बोल बोल बोल तू बोल यार भाई।
3: पेड़ पौधे,
0: पेड़ पौधे और
3: जल,
0: जल,
3: भूमि,
0: भूमि आ गई,
3: पहाड़,
0: पहाड़ आ गए,
3: हवा।
0: बेटा आप समझ में आया? समझ में आया ना? ये सारी चीजें मिल करके हमको प्रभावित कर दी, और कहां तक प्रभावित करती है? हमारे जीवन, उसके विकास और उसकी मृत्यु, किसी भी जीव का। देखिए ये तुम्हारे ऊपर ही प्रभाव नहीं डालती, मैंने एक बात कही, हर एक पर डालती है। किसी जंतु पर भी तो प्रभाव डालती है, कुत्ते पर प्रभाव डालती है, बिल्ली पर प्रभाव डालती है, शेर पर प्रभाव पड़ता है इसका, प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ता है ना? तो इन सब पर इसका चारों तरफ से जो प्रभाव पड़ता है वो क्या करता है? उसके जीवन को सुनिश्चित करता है, लाइवलीनेस, उसके विकास को सुनिश्चित करता है। आप अशुद्ध पानी पिएंगे तो क्या होगा?
2: बीमार हो जाए।
0: क्या क्या बीमारी होगी बोलो ना बेटा,
2: बोलो।
0: अशुद्ध पानी पिएंगे तो क्या क्या होगा?
2: पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती है? पेट खराब हो जाएगा, मेन तो पेट ही है, सब रोगों की जड़ है वो अपना पेट ही है। और गंदा पानी पिएंगे तो सीधा
0: बोलो कौन कौन सी बीमारियां होती है?
2: पूरे बोल।
0: अरे बोलो ना, तुम इधर उधर बोल जाओगे तो हम उसको ठीक कर लेंगे। बैठे कितने लोग,
2: सब अपने ही है यहाँ पे, आपको डरने की बात नहीं है।
0: बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज से तुम्हारे इधर ये आ जाना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे।
2: हाँ।
0: नौकरी मैंने कर ली, ये कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मतलब नहीं है। आपने तो बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के यहाँ पर बस सब छोड़ दिया, यही कर रहे हैं। तो करना ये है, ये पर्यावरण बनाते, ये पर्यावरण बनाते। नौकरी लगना ही शिक्षा नहीं है। मैं रिटायर हो गया, पूछो, इन्होंने रिटायर कर दिया सरकार ने, जाओ कर जाए, सो जाओ जाकर, वो शिक्षा है क्या? शिक्षा वो है जो कुछ करने के लिए प्रेरित करे। मैं आज ये समझा रहे निकला हूं कि आप उस चीज को समझ लो कि आप पढ़ क्यों रहे।
2: सही।
0: आप उस चीज को समझ लो कि आप स्वस्थ कैसे रहे। आप उस चीज को समझ लो कि आप स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को कैसे चलाएं। नौकरी अहम नहीं है। अपने यहां पर जो नौकरी में नहीं लगे वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो भी कमा के खा रहे हैं ना, खा रहे हैं ना। तो फिर भाई पैसा कमाना ही सारी चीजें थोड़ी होता है। आप इस बात को समझ लो कि नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं है भाई, ये नहीं तो वो विकल्प मिल जाएगा, वो नहीं तो वो विकल्प मिल जाएगा। आप तो नौकरी भी नहीं करते, मैं रिटायर हो गया, आप तो नौकरी भी नहीं करते।
4: शिक्षा का मूल उद्देश्य
0: ये बात करनी है, बात ये करनी है। आज हम आए हैं इसलिए, ये बड़ी क्लास लेने का मतलब यही है कि शिक्षा की मूल बात आप तब तक पहुंचाओ कि शिक्षा सौपड़ी वासवा हुदिस नहीं है। लोकल में बताना चाह रहा, आप हमारा सम्मान करते, क्यों करते? क्योंकि मैंने कभी किताबें पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं की। इनको पूछो, जब भी इनको पूछो कि जब मैं कक्षा लेता था ना भैया, मैं अगर क्लास में घुस गया सर
4: जी,
0: तो पूरे दिन क्लास चलेगी नॉन स्टॉप। ये सारे बोल दिया, मतलब क्लास में घुस गए। हमारे डाइट में सर लोग इतने डरते थे कि ये सर अंदर आने ही नहीं चाहिए।
2: लगभग 1993-94 की बात है जब मैं 11th में पढ़ता था, और सर की वजह से मैंने ज्योग्राफी ली थी, क्योंकि सर उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे और वहां पे लेक्चरर थे, और इनका पढ़ाना बहुत ही अलग ही तरीके का था, और उसी की बदौलत हम आज यहां तक खड़े हैं, और मैं वही उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर।
0: बेटा मैं बात आपसे ये कह रहा हूँ कि सर मैं पीजी की क्लास लिया करता था रीजनल कॉलेज अजमेर में, उस मेयो कॉलेज में और रीजनल कॉलेज में, वहां राजे महाराजाओं के लड़के ही पढ़ते थे, वहां क्लास लेने के लिए मुझे सर पीजी से बुलाते थे, मैं अच्छा मेहनत करता था इसलिए। तो वहां जब जाता ना,
4: इतने गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी आपको थोड़ा मिलने के पहले थोड़ा सा रेफर किए?
0: नहीं सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो हम नहीं करें अब उस तक तो मैं जा ही नहीं रहा हूं।
4: आग बंद कर नहीं किए सब चीज रहने, क्या हमको पढ़ना है, मैंने हमारा लक्ष्य क्या है, कितना दे और देने में उसको कितना ग्रहण करने की कैपेसिटी कितना देखना होता है। बड़े बच्चे के लिए तो कॉलेज के लिए अलग है, लेकिन यहाँ के लिए जो स्टैंडर्ड में जिसे पुरेश जी अपना बात को रख रहे हैं,
0: करना ही पड़ेगी सर।
4: क्यों सर?
0: सर तो वहां जब सर मतलब डिवोटेड, आप इन्हें समझे मेरी बात को, समर्पित हो जाओ, मेरी बात को समझ रहे हो, मतलब आप यहाँ का हाँ कहना नहीं ताकि मैं आगे बढ़ूं। समर्पण ऐसा होना चाहिए भाई, वहां पीजी की सर क्लास में घुसे तो 3-4 पीरियड एक साथ चलेंगे, घुसे तो चलते रहो बस बस। ये तो इसलिए हमको चाहिए कि लिमिट में बंधने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है, इनको
4: रेफरेंस
0: इनकी इनकी आवश्यकता नहीं, ये इसलिए कि मैं तुम्हारे तक सीमित रहूं, आप समझ रहे हो ना। तो चल पड़े तो चल पड़े सर, ये डाइट की क्लास में घुसे तो अब घुसे तो वो बच्चे समझेंगे कि अब बाहर जाने का काम नहीं, वो जाएंगे ही नहीं, वो बाहर कैसे जाएंगे, उनको मैटर ही ऐसा मिल रहा है। पर पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, तो हमको भी उस बात को छोड़ो, पूरी तैयारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना क्यों है, वो इसलिए कि रिटायरमेंट के बाद भी हम काम में लगे, वो इसलिए पढ़ना है भाई। कमाना तो एक जरिया हो सकता है
4: जी,
0: खाना तो एक जरिया हो सकता है, दो टाइम का भोजन तो कहीं भी मिल जाएगा, अपने खेत में खेती करेंगे तो भी मिल जाएगा ना, मकान तो बना हुआ है, खेती करेंगे खाना मिल जाएगा, नरेगा में जाएंगे भोजन मिल जाएगा, लेकिन करना क्या है? तो भैया हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात समझ में आई? बेटा तू बोल यार, बोले जो अपने जैसे भी बोलना बोल दे बस,
4: अपना नाम बोल।
0: हम क्यों पढ़ रहे
4: हैं? क्लास
5: मेरा नाम कालू राम है, मैं कक्षा 12th में पढ़ता हूँ
0: जी जी,
5: स्कूल का नाम सेकेंडरी स्कूल मुदल्ला।
0: हाँ, अब पढ़ क्यों रहे हो ये बोलो,
5: ताकि हमारा विकास हो सके, और
0: विकास इसलिए होगा कि आप स्वस्थ रहो। स्वस्थ कैसे रहोगे? चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, स्वस्थ कैसे रहोगे बेटा? बोलो बेटा बोलो भाई, स्वस्थ कैसे रहोगे? सोने वाला कभी स्वस्थ नहीं होता बेटा, गजब यार। तो फिर बोलो स्वस्थ कैसे रहोगे, बोलो बेटा बोल बोल।
5: स्वस्थ हमारे शरीर को अच्छा रखेंगे और खाना पीना अच्छा होगा,
0: खाना पीना शुद्ध होना चाहिए,
5: शुद्ध होना चाहिए,
0: ठीक है ना। शुद्ध कैसा? पानी छना हुआ होना चाहिए, ठीक है, अच्छी जगह का होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, तो हम बीमार नहीं होंगे, कई तरह की बीमारियां नहीं होगी, हमको मोती जरा नहीं होगा, पेट संबंधी बीमारियां नहीं होगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे फिर भोजन कैसा करेंगे, कैसा स्वस्थ? जो देसी गोबर से बना हुआ पका हुआ अनाज का जो भी भोजन होगा वो सबसे अच्छा होगा, ये केमिकल प्रयोग करके पैदा हुआ भोजन अच्छा हमारे लिए नहीं हो सकता। भाई साहब से पूछिए कि किस किस तरह के केमिकल सर उस भोजन में आ जाते हैं, कहां कहां से आते हैं सर बताना इनको, हल्का सा हल्का हल्का।
4: जो भोजन हम लेते हैं ना भोजन करते हैं बच्चे
0: सर, ये दे दीजिए,
4: सभी तो भोजन करते, भोजन बिना हम कैसे चल पाएंगे, भोजन तो जरूरी है, लेकिन भोजन जो हम ले रहे हमारा शुद्ध भोजन होना चाहिए, शुद्ध भोजन माने प्योर,

0: हुआ है
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: पूरा रासायनिक कुछ भी नहीं है उसमें, पूरा जैविक और शुद्ध, मैंने विचार सकते आपका विचार जो है ना, हमारा स्कूल में हमारा विद्यालय में एक किचन गार्डन हो और हम उसको उगाए, हम बहुत सारा पौधा देखे हैं। क्या क्या देखे सर?
1: जो आपका जो किचन गार्डन मैंने देखा है ना, यहाँ पर आपकी जो मैं ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में था उसमें, उसमें बहुत विकास हुए, हमारा मतलब ही विकास है बस, क्योंकि हम उसमें उस पॉजिटिव दिशा में काम करते हैं। किचन गार्डन सर प्रत्येक हॉस्टल में बनाया गया।
0: क्या बात,
1: प्रत्येक हॉस्टल में, हॉस्टल है ना आपके आदिवासी हॉस्टल जितने भी
0: छात्रावास,
1: सभी में बनाए छात्रावासों में, और सभी में वहीं पर उगाई हुई सब्जी काम में ली जाने लगी। आपने भी बनाया ये छोटा सा, ठीक है ना, पर वो सर हॉस्टल की सब्जी उस हॉस्टल में काम में आ जाती थी, तो सभी अपने अपने घर पर भी ये कर सकते हैं। अब ये कोई बड़ा काम नहीं है, 10 टमाटर के पौधे लगा दिए, टमाटी बैंगन लगा दिए,
0: मिर्ची लगा दी,
1: सेम फली लगा दी, मिर्ची लगा दी, और क्या चाहिए,
0: पपीता लगा दो, हमेशा चलता
1: लगा दो, ये अपने हाथ से अपन बना करके उसको उगा करके खा सकते हैं।
0: सर उसके साथ जिस राजस्थानी, आपके पास बाजार जाना जरूरत नहीं है, गाय गोबर तो मिलता है, भैंस का गोबर रहता है ना, तो उसको डालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कुछ भी नहीं, आपका मन में सोचना है, अच्छा सोच उस पौधा को दो, अच्छा बन जाए, अच्छा बहुत इतना फल है जो हमारा परिवार खाने का अड़ोसी पड़ोसी को दे और स्कूल में लेकर जाएंगे, पक्का होने के बाद सभी मेरा बर्थडे में खिलाएंगे, ऐसे सोचो वो पौधा को पेड़ को उनको संकल्प दो, तो पेड़ के साथ बढ़कर ऐसे बात करो मन से, देखो पौधा कितना आगे बढ़ेगा प्रैक्टिकल, और देखना होगा तो चलिए हमारा तपोवन में सब कोई रासायनिक नहीं है, जैविक खेती के साथ योगी खेती करते हैं, लेकिन जानेंगे अल्प विराम के बाद स्कूल का जो गार्डन और सभी हॉस्टल का जो गार्डन जो लगाए अपना खुद के लिए, बोले कम जमीन में लगाओ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसका बाद फिर बड़ा एकड़ में बड़ा जगह में लेकर बना सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ये आपका फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा होगा, इसका साथ साथ पर्यावरण को भी अति
1: बिल्कुल फायदा होगा,
0: फायदा करेंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक है ना सर, इसका बाद फिर सर से सुनेंगे
1: नेक्स्ट
0: अल्प विराम का बात।

0: बेटा देखो, अब तक अपन ने बात की, आपने कहा है कि किचन गार्डन में लगे हुए सर जो सब्जी फल अपने यहाँ पर जो लगा हुआ उसी की बात कर रहे हैं। बेटा आप लोगों के यहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है, देखिए यही पर्यावरण, पर्यावरण को यूं समझना पड़ेगा कि सरकार ने लागू क्यों किया है सर। इसके प्रीफेस में लिखा हुआ है, मैं बताऊं आपको यहाँ इस प्रीफेस को देखने वाली बात। सर एक्चुअल में ये जो पढ़ाई होती है ना सर, इसमें हमारे ये लोग प्रीफेस को नहीं देखते, अंदर घुस जाते। जैसे मैंने जो अभी बात की वो बेसिक बात की है कि शिक्षा क्यों है, पढ़ना क्यों है, पर्यावरण क्यों है, अपन इस पर थोड़ी सी चर्चा की है ना। तो वो इसलिए कि अपन आगे बढ़े, खुद स्वस्थ होकर के अच्छा खा करके, रसायन से रहित, जो रसायन के बिना, अगर भाई आप अगर केमिकल वाला यूरिया है वगैरह है इसका उपयोग ना करके आप गाय का, भैंस का, अपना जो गोबर है ना बकरी का, जो भी ये खाद है उसको अगर अपन उसमें सही तरीके से देते हैं, अपन शुद्ध पानी से उसकी परवरिश करते हैं, अपने हाथ से उस छोटे से पौधे को अपन बड़ा करते हैं, तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हो जाए। जब अपना स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो अपना विकास बढ़िया हो जाएगा, और अपना विकास बढ़िया होगा तो अपने विचार बढ़िया हो जाएंगे, और उसको सही दिशा में उन विचारों को लगा दिया तो निश्चित रूप से हम हमारी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो जाएंगे। इस प्रीफेस में सर ये दिया हुआ है सर।
1: जी
0: बिल्कुल, देखिए इसकी मैं बताऊं, इसकी जो पाठ्य चर्चा की रूपरेखा मैं देख रहा हूं 2005, और 2005 सर ये बता रहा है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए।
2: क्या बात,
0: हम इस पर काम करते थे सर, हमने नेशनल पॉलिसी पे काम किया है, किताबें तो खूब बाद में लिखी जाती है, ये कि स्कूली जीवन से बाहर, और अपन तो स्कूल में किताब पढ़ रहे हैं उसका उत्तर दे रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है। आप बाहर देखें, बाहर जाकर कि ये प्रकृति हमको क्या सिखा रही है, ये पर्यावरण बाहरी हमको क्या सिखा रहा है, ये हमको कैसे बीमार कर रहा है, ये देखें। सिखाने का मतलब हमको कहां से बीमार कर रहा है और हम क्या उल्टा पुल्टा खा करके बीमार हो रहे हैं। एक बात और मैं कहूं इसके साथ ही कह दूं, बाहर से जो बच्चे कुरकुरे खाते हैं ना, हो सकता है बनाया होगा किसी टाइम पास के लिए, कभी बहुत दूर जा रहे हैं भूख लगी तो वहां कुछ खा ले, नो डाउट हो जाना, लेकिन सामान्य तौर पर सुबह उठते ही कुरकुरे लाओ, दोपहर को कुरकुरे लाओ, शाम को कुरकुरे लाओ, तो ये तो शरीर को बिल्कुल बर्बाद कर देगा भाई। ये है शिक्षा कि हमको खाना क्या है, ये है शिक्षा कि हमको पानी कहाँ का पीना है। तुम कहीं भी जाकर के पानी पीने लगते है, उसमें कीड़े आते हैं ना, कहीं भी जाकर के लग गए पानी पीने, उसमें न मालूम कोई केमिकल डाला हुआ है उस कीड़े को मारने के लिए, डालते हैं ना लाल दवा वगैरह, उसमें न मालूम क्या डाला हुआ है, हम सही तरीके से हाथ नहीं धो रहे उस पानी को पी रहे उस मेरे हाथों से, तो बीमार नहीं होंगे तो कहां से क्या होगा। ये है शिक्षा, हम शुद्ध वायु ले रहे, इंडस्ट्रीज के पास में औद्योगिकरण से धुआं फैलता है, इतनी बीमारियां होती है सर को पता है, इतनी बीमारियां होती है, इलाज ही नहीं है उनका। तो आप बाहर निकले उसको देखें, और स्वस्थ जीवन के लिए आप प्रयास करें, विचारों की शुद्धि करें। देखिए सर 86 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी को मैं जानता हूं, उसमें था सर बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे को केंद्रित करके शिक्षा दी जाती थी, मास्टर पढ़ाता था, वो भैया खत्म हो गया। 2005 की दो अलग पॉलिसी आई, बाहर ले जाने वाली हुई, और अब जो आई है 2020 एनईपी 2020 में कुछ लिखा होगा सर
2: जी,
0: देखिए इसमें साफ लिखा है सर, शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति। मैंने आपको ये बात साफ साफ कही है कि परीक्षा ही इसका आधार नहीं है, परीक्षा तो पास करने का एक पैरामीटर है, जैसे ये बच्चा तैयारी कर रहा है ना उसमें एक पैरामीटर होता है, इसकी पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, करीब प्रत्येक तैयारी में एक पैरामीटर होता है कि भाई इतने से तेज दौड़ेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एक पैरामीटर है। तो ये परीक्षा भी तो पैरामीटर है भैया, सर अपने यहाँ तो फेल करने का भी सिस्टम
2: नहीं है,
0: क्यों हटाया, ये शिक्षाविदों ने मिलकर इसलिए हटाया कि ये तो एक सिस्टम है, एक मात्र 100 में से 100 नंबर लाने वाले की ही नौकरी लगेगी, वो जरूरी नहीं है, इनको पूछो 100 में से 100 नंबर लाएगा वो, फिर वो दौड़ कैसे लगाएगा उतनी, तो सब तरफ से स्वस्थ होना है, तो सब तरफ से स्वस्थ होना है तो सब तरफ से सोचना है, शिक्षा का मतलब तो वो है, शिक्षा का मतलब पुस्तक पढ़ करके नंबर लाना तो नहीं है, वो याददाश्ती का एक पैरामीटर हो सकता है, वो तो एक बिंदु है जो बहुत ही छोटी सी बात है। तो ये इसका मतलब अब ये हुआ कि दैनिक समय सारिणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिसमें शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। वास्तव में हकीकत में तुमको क्या सीखना है वो सीखना है, ये समझ होनी चाहिए। ये है शिक्षा का
1: क्या बात?
0: सर मूल उद्देश्य। और हकीकत क्या है? हम अनाज कैसे पैदा करें अपने खेत में। हम डीएपी और यूरिया का अगर प्रयोग कम करेंगे ना, आपको पता है नैनो यूरिया अभी आया है, एक छोटी बोतल आती है तुम्हारे सबके घर पे होगी, वो जो अपने जो वो जो बैग वाला यूरिया जो काम में लेता है उससे बड़ा काम करता है, छोटी सी बोतल आती है, पता है आपको? नैनो यूरिया देखा है? अतरी कूपे आवे तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो उसका सारा काम कर लेता है। जो बदलते हुए समय में हमको उपयोग क्या करना है, उसकी जगह गाय भैंस का गोबर, बकरी का गोबर, बकरी का जो भी होती है ये खाद, वो अगर आप काम में लेते हैं तो वो आपको शुद्ध अनाज देगी। और सर आने वाले समय में अगर आप देखो तो आपके वहां आरोग्य वन में गया था मैं, वहां दवाई नहीं छिड़कते, ये तुम्हारे पंप लगा के छिड़कते हैं ना, वो दवाई नहीं छिड़कते, उससे तो बीमारियां आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जितना आवश्यक है उतना करना पड़ेगा, लेकिन जीवामृत वहां बनता है। 10 पेड़ों के पत्ते होते हैं, उनको बॉइल किया जाता है, उसमें आंवला मिलाया जाता है, उसला मिलाया जाता है, एलोवेरा, और उससे एलोवेरा यहां भी लगा हुआ आपके यहाँ, उसको मिलाते हैं उसमें और उसको फिर स्प्रे किया जाता है। कैसे? पानी के माध्यम से दे दिया जाता है, ऑटोमेटिक सब में वो सारी दवाई लग गई, कोई बीमारी नहीं होगी। वो खाद लग गया, वो दवाई लग गई, वो सारा उत्पादन बढ़िया से बढ़िया हो गया। हम बीमार होंगे कहां से? बीमार होते हैं लेकिन कम होंगे। आप अंदर से मजबूत है, आप कम बीमार होंगे। तो इसका जो मूल जो पर्यावरण का उद्देश्य वो ये है। अब आपको आपके कंटेंट वाली बात भी मैं कर देता हूं क्योंकि इसको हमने इससे जोड़ लिया है,
1: प्राकृतिक संसाधन।
0: हाँ, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन इसमें से इस क्लास को। तो इसमें हमने क्या करा है, 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा और कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है, विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में इसमें आपके बताने वाली बात है, और समकालीन विश्व में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता का इनसे क्या मतलब, आपका जो मूल जो जनता है जो पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़ हो रही है वो इसके बारे में क्या सोचती है और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, वो इन सम्मेलनों में सर तय होता है। ये है सर, इसके लिए 60 के दशक में ये पर्यावरण के बारे में समझ पैदा हुई जिस बारे में अभी आप और हम रूबरू हो रहे हैं आपकी क्लास में। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सर, ये हुआ था सर रियो डी जनेरो में मेरे ख्याल से, राइट? इसमें लिखा हुआ नहीं है, विश्व राजनीतिक मुद्दों को शामिल कर दिया यहां पर। ये जो 1992 में ये जो हुआ था इसके अंदर पर्यावरण की चिंता की गई। वैसे बहुत लंबे समय से इस पर काम चल रहा है, वही वाली बात जो मैंने आपसे निवेदन किया है, वो क्या, किताब पढ़ते हैं नंबर तो लाते हैं पर काम नहीं हो रहा है। आप समझ गए? आप ये बताओ, सरकार ने मुझे रिटायर कर दिया पर मेरी समझ ये है कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं ना? आप समझ गए बात को? भाई हमको क्या समझ रहे हैं वो समझना है। आपने कहा कि आप आओ साहब पर्यावरण को समझाओ, तो मैं शायद ये समझाने में सफल रह रहा हूं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस कक्षा में पर्यावरण को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। सरकार ने मुझे उम्र के हिसाब से रिटायर कर दिया कि भाई नहीं यार, 60 साल के बाद आदमी कमजोर पड़ जाता है यार वो, पर देख लो हमने तो पर्यावरण के साथ में आनंद लिया है, तो पर्यावरण में मुझे स्वस्थ कर दिया दौड़ने के लिए, आज भी दौड़ रहे हैं, ठीक है ना भैया?
1: तो उसका राज सोने वाला आपका ये जो कर रहे हैं इसका राज क्या, सात्विक शुद्धता है ना, परोपकार।
0: राज तो इसका यही है,
1: उनका विचार है ना, विचार होना चाहिए,
0: विचार एकदम शुद्ध होना चाहिए,
1: तब जाकर काम
0: निकलेगा। जैसे मुझे ये विचार है अभी कि मैं आपको वो चीज दो जो समझाना है वो समझा के जाऊं।
1: सारी तो सबका है मेरा, लेकिन विचार
0: ये भैया खड़े हैं,
1: भावना उससे
0: ये भैया खड़े हैं। आपको बताओ कि हमने जब यहाँ पर, मैं जिला शिक्षा अधिकारी था यहाँ पर, कहाँ तुम्हारे एरिया में, आबू रोड में, मैं तुम्हारे ट्राइबल में खूब काम किया, ऐसे ऐसे काम किए, लोग बजट कहते थे कि यार वो वहां बैठा उसके बजट दे दो, पूरे एरिया का बजट आता था। तो हमने बजट को ऐसा उपयोग किया कि उसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। मैं जब यहां आता था तब ऐसा नहीं था ये, लेकिन अब इतना बढ़िया हो गया, पूछो इनके वहां निचलागढ़ में जाते लोग खुश होते। आज मैं आया हूं, देखो भाई साहब ने बुलाया, मुझे आनंद आ रहा है कि चलो हमने जो बोया था ना वो बढ़िया अच्छा उग करके फल दे रहा है आप सबको, तो हमको अच्छा लगता है। तो हम स्वस्थ क्यों है? दूरगामी सोच के साथ में अपना विचार है, अपना संकल्प है, तो वो बढ़िया रखना। हम अच्छा करें तो अच्छा हो जाएगा, मैं समय का उपयोग अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा। भाई ये बात तो तुमको समझ में आई कि मैं यहाँ पढ़ाने तो नहीं आया? नहीं, मैं ये पढ़ाई कहां से आई और क्यों आई इसके लिए आया हूं, ये मुझे पकड़ के क्यों लाए?
1: लेकिन क्या है जो अभी समझा रहे, फाउंडेशन है इसका, ऊपर में जितना मंजिल बना सकते हैं, जो अभी जो ज्ञान सुन रहे हैं ना, वो ज्ञान आपका बेस, इसका आधार से चरित्र निर्माण होगा। जो चरित्र निर्माण होगा, कोई भी रोजगार का लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा आपको, सभी
0: आपके पास में चरित्र है किसी रोजगार की।
1: तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र निर्माण, विचार निर्माण, शुद्ध विचार, शुद्ध चरित्र।
0: आप बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? खाने की पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं है, ये प्रकृति अपने खूब दे रही है। गड़बड़ कहाँ है कि हम गड़बड़ हो जाते हैं तो बीमारी में अपन खत्म हो जाते हैं, इधर उधर जाने में अपना काम पूरा हो गया। आप सही चलोगे, सही काम करोगे तो अपने आप ही सही बरसने लग जाएगा। अच्छे काम के लिए कहीं पर प्रतिरोध करना भी सीखो, करना पड़ता है। हम जब निकलते हैं, अरे यार आज तक तो नहीं हुआ, ये क्या कर लेंगे भाई, हम रिटायर भी हो गए अब तक तो तुमने, अरे हमने प्रयास हमारा कर देना चाहिए। आपको अपना प्रयास करना है, अपने आप प्रकृति दे देगा, नहीं देगा तो आप प्रयास करोगे तो नहीं मिलेगा, मिलेगा ना? हमको मिला है तो आपको भी मिलेगा ना? खाने की चिंता नहीं करनी है, भोजन मिल जाएगा। अरे देखो हम तो नौकरी से, ये तो नौकरी भी नहीं की है, नौकरी अच्छी जगह से छोड़ छाड़ के आ गए, भूखे बैठे हैं। अच्छा अपन तो, हम तो हमारे एरिया में घूम रहे, ये तो कहां घूम रहे, उड़ीसा से आए हैं और यहां घूम रहे। तो कहने का अर्थ इसका जो है कि आप अच्छा करोगे निश्चित रूप से आपको अच्छा मिल जाएगा। अब ये जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं इस पे जा रहे हैं, देखिए यहां पर चिंता क्या हुई थी, पर्यावरण की चिंता क्यों है, ये देखो वहीं पर आ गए। क्यों चिंता है? दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। चरागाहों में चारे खत्म होने को है, मत्स्य भंडार घट रहा है, जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है, प्रदूषण बढ़ा है, खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो ये जब उन्होंने तब सोचा था, कब सोचा था? 1992 में सोचा है मुझे लगता है। अब तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया भाई, इसलिए अब हम खड़े हुए, मैं खुद खड़ा हुआ। भाई साहब आप किसका काम करेंगे? हम ईश्वरीय चिंतन करेंगे, अच्छी बात कहेंगे और पर्यावरण से ही देखेंगे सभी चीजों को। हमने आपसे यही वादा किया, मुझे कहीं ले जाओ वहीं से पर्यावरण शुरू होगा हमारा। बस पेड़ के पौधे, जो पेड़ है उसकी जड़ों में पानी डालेंगे वो छाया देगा कि नहीं देगा? बस यही काम करना है,
1: देते चलो, बस
0: करते चलो, करते चलो,
1: देते जो भी हमारे पास।
0: देखिए सर इसमें
1: संयुक्त राष्ट्र रिटर्न मिलेगा, अच्छा सोच कर देंगे ना तो रिटर्न अच्छा ही मिलेगा।
0: सर ये विकासशील देशों की सर 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है, पानी नहीं है साफ।
1: इस गांव में भी पानी के लिए कितना गर्मी का टाइम है दिक्कत होता है ना, कितना दूर जाना पड़ता आप लोग जाते हैं ना, पानी कभी कोई नहीं आता, तो पानी कहाँ से आता आप घर के लिए, कहाँ से आता बहन तुम बता, देखिए तुम्हारा घर में नल लगा हुआ है, बताओ नहीं कहा से लाते पानी, बताओ कितना दूर जाना पड़ता, सबको पता है ना, तो पानी का कमी है कि नहीं?
0: अब सर देखिए वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, ये देखो ये साइंटिफिक है। ओजोन कम क्यों हो रहा है पता है? पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आपने भी मोटरसाइकिल ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, तो वो जो निकलने वाला जो सल्फर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगी? तो मैं तो साहब से निवेदन यही करता हूँ कि इन साधनों का कम से कम उपयोग करो। आधा किलोमीटर तक हम पैदल चले, उससे ज्यादा है तो साइकिल से चले, ज्यादा ही दूर है तो मोटरसाइकिल काम में ले ले, कोई बात नहीं, सही बात है ना सर? अभी मैं वो टिकट लाया था, मैं सर मुझे कहीं से आना था, दो दिन पहले आपने बुलाया था, मैं कहीं बाहर गया था, मैंने सर ट्रेन पकड़ी, कोई कैसे जाएंगे? मैंने कहा यार अपन ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन में कोई पॉल्यूशन नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कोई पॉल्यूशन नहीं, आपका उसमें योगदान होता है। तो अच्छे काम के लिए आप ये करो ना भी, इसकी जगह ये ले लो, इसकी जगह ये ले लो, उसका अच्छा विकल्प चुनो ताकि उसका प्रदूषण नहीं हो। तो मेरे ख्याल से सर सार रूप में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अपने लिए जिए, मतलब पर्यावरण की शुद्धि के लिए अपना विकल्प तलाशें। आप नाश्ता करने में कुरकुरे नहीं खाएं, क्या खाएं? घर पे हल्का सा नाश्ता बना के खा लें, घर की चीज का। हम कोई गलत चीज का उपयोग नहीं करें, अच्छी चीज का उपयोग। भाई विकल्प अपने को काम में लाना, भूख तो मिटानी है, खा लो। कोई इधर उधर की कचरा पचरा खाने से अच्छा सा केला लेके खा लो, उसी कीमत में मिल जाएगा। आई समझ में? तो आप सब तरफ से स्वस्थ हो जाएंगे और फिर शांति से सुबह थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा बैठा करो, थोड़ा अपने लिए सोचा करो, थोड़ा परिवार के लिए सोचा करो, ठीक है ना। अपने को गुस्सा नहीं आना चाहिए, शांति से बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को प्यार से सिखाओ, ये सारी चीजें सिखाओगे तो अपने आप ही अपन मजबूत हो जाएंगे। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रस्ताव, देखिए कितना भाग्य का बात है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदल्ला में, और इतना बड़ा एक्सपर्ट जो कैमरा है, पर्यावरण पूरा एक्सपर्ट है, बच्चों को अपना जो भाव है, भावना है, बच्चे कैसे आत्मनिर्भर बने
0: है, क्योंकि इतना ज्यादा वो नहीं पाएगा,
1: अपना परिवेश को, अपना गांव को सशक्त बना सकते हैं। इस माध्यम से सुने हमारा श्रोता मित्र इसको फायदा लेंगे जरूर, और जो बच्चे सुन रहे इस कार्यक्रम को शाम को 7 से 8 बजे, वो भी इस कार्यक्रम का माध्यम से जितना हो सके तो ज्यादा ना कम अपना आवश्यकता अनुसार ग्रहण करके उसको काम में लाएंगे, तो जरूर सर का इतना मेहनत आपको देने के लिए जो आए, जब उनको ड्यूटी था, जो पोस्ट पे थे उनको पूरा बांधा हुआ था, कहा नहीं जा सकते,
0: तो काम ही नहीं कर पाता,
1: नहीं करते, लेकिन अभी रिटायरमेंट होने के बाद जहां भी जाए, जहां जितने भी समय दे दे सकते, ये कम बात नहीं, और आपका भाग्य का बात है, ऐसे बार बार आपको जो मिलेगा। देखो केवल गाँव पूरा एजुकेटेड गांव, हर घर छोड़ के एक एम्प्लॉय मिलेगा, एजुकेटेड शिक्षक हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कुछ ना कुछ पोस्ट लेकर रहते हैं, क्यों? वो मेहनत करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं, और उनका शुद्धता विचार कुछ करने के लिए गांव के लिए, तो आप क्यों नहीं, आप भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। यस बोलो, यस आई कैन, जोर से बोलो, यस
3: आई कैन,
1: यस वेरी गुड, मैं कर सकती हूँ, बोलो क्या नाम है तुम्हारा?
3: टंकू।
1: हाँ तुम कर सकती हैं,
0: ये एक्चुअल में एक पर्यावरण को एविडेंस जा रहा है कि भाई वास्तव में ये लोग कम्युनिटी में जाकर के ये चीज से बात, आप लोग बोलेंगे तो पता चलेगा।
1: देखो सभी से अपना करेंगे तो कुछ पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा जो सोएगा वो रोएगा, रोएंगे नहीं, खोएगा नहीं,
0: रोएगा,
1: हम पाएंगे। यस क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, यस आई कैन, वेरी गुड, मैं कर सकती, मैं कर सकता हूँ, बोलो जोर से, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं ही किया था और मैं ही करूंगा, बोलो, मैं किया था, मैं ही करूंगा, वेरी गुड, ताली बजाओ,
0: वेरी गुड।
1: सर हमारा गणेश सर तो कौन भूल सकते भाई, हम निचलागढ़ से परिचित है, और गणेश सर रेडियो मधुबन और ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या जानते हैं और क्या सहयोग लेते हैं?
4: बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र भाई, वैसे मेरी मनसा तो कुछ अलग ही है, लेकिन हमारा विद्यालय जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास में आया हुआ है, और उसको मैं मिनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ, और लगातार प्रयासरत हूँ, और आने वाले समय में शायद ये दृष्टि यहाँ पे विकसित हो जाएगी। धन्यवाद,
5: बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सर, और हमारा साथी सहयोगी श्रीमान भोपाल राम पुरेत जी को सुंदर में आज बच्चों का साथ रूबरू होकर पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हमारा नैतिकता और चरित्र निर्माण में पर्यावरण कितना आवश्यकता वो विषय रखे हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर पर्यावरण स्पेशल।

0: अरे तू बाहर क्यों बैठा है? अंदर क्यों नहीं आया?
1: खा रहा हूँ ना।
0: अच्छा, नाम क्या है तेरा?
1: बबलू।
0: बबलू हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता है तू?
1: पांचवी तक पढ़ता था लेकिन अब छोड़ दिया।
0: क्यों?
1: माँ बहुत बीमार है ना, उठ ही नहीं सकती, मैं ही घर संभालता हूँ।
0: अच्छा एक बात बता, तू रहता कहाँ है?
1: यहाँ बिरवाड़कर चौल में, 1 घंटा दूर।
0: बिरवाड़कर चौल वो जुहू वाला क्या?
1: हाँ।
0: चल चल भाग, माँ इंतजार करी होगी, जा।
2: अरे बबलू देख, तेरे से कोई मिलने आया है।
3: ये बबलू है?
2: हाँ वही बबलू है।
3: अच्छा तू बबलू है?
1: आप कौन?
3: मैं डॉक्टर हूँ, बड़ी जान पहचान है तेरी। चल तेरी माँ को देखते हैं।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, यानी संगीत का कार्यक्रम, यानी दिल से कनेक्ट करने का एक साधन है ये कार्यक्रम, क्योंकि वो गीत जो हमें अपनी ही भावनाओं से मिलाते हैं, वो गीत जो जीवन को एक नया रूप दे देते हैं, वो पुराने नगमे हो या नए बने रैप सॉन्ग्स. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. और आज बहुत कुछ एक साथ, यानी एक पैकेज में लेकर आ रहे हैं आपके लिए. बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिलने वाले हैं और हमारे साथ बहुत नन्हे नन्हे से दो प्यारे से कलाकार हैं, जिनकी मौसिकी, जिनका संगीत बहुत बड़ा है. हमारे साथ हैं साहिली और ऋत्विक, दोनों तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गीत भी गाते हैं. और क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, सब कुछ आइए उनसे ही जानते हैं. साहिली, ऋत्विक, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे. कैसे हो आप लोग?
1: परमानंद में.
0: हाँ, अरे वाह. तो अच्छा, तो हमारे लिसनर्स को थोड़ा अपने अपने बारे में बताओ क्या आप.
1: यस,
0: बताइए ऋत्विक. पहले ऋत्विक से शुरू करें.
1: मैं अम्बाला शहर से आया हूँ, हरियाणा के अंदर है. मेरे को सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, ड्राइंग, स्केच बनाना बहुत पसंद है. उनमें मैं माहिर भी हूँ.
0: वाह, क्या बात है. और साहिली, आप?
2: मैं भी अम्बाला से आई हूँ, हरियाणा में. मैं 8 साल की हूँ और मैं ऋत्विक से 1 महीना बड़ी भी हूँ, बड़ी बहन. और मेरे को म्यूजिक, डांस में इंटरेस्ट है और मैं पढ़ाई में मैथ्स और साइंस में ज्यादा मार्क्स लाती हूँ. बाकी सारी चीजों में अच्छे मार्क्स लाती हूँ, सिंपल.
0: ओके, तो आप दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, है ना? कैसे रिलेटेड हो एक दूसरे से?
1: जैसे अब इसके जो पापा है वो मैं उनको बड़े पापा बुलाता हूँ, पर वो मेरे लगते हैं ताऊ.
0: ताऊ जी हैं आपके.
1: और जो मेरे पापा हैं वो इसके चाचा लगते हैं, पर उनको बुलाती है आशु पापा से.
0: क्या बुलाते हो?
2: आशु पापा.
0: अच्छा, अरे
1: नाना उनका.
0: ओके, तो आप दोनों एक साथ रहते हो?
2: एक घर में रहते हैं.
0: खूब मस्ती करते हो?
2: करते हैं.
0: अच्छा, कौन कौन रहता है आपके घर में, कौन कौन है?
1: हमारे एक जॉइंट फैमिली है, उसमें ताऊ, ताई, चाचा, चाची
2: और
1: दादू, दादी.
2: हम 4 बहन भाई हैं.
0: हाँ,
1: हमने अपना एक स्टूडियो भी खोलेंगे अभी हम. उसका नाम होगा साधक ग्रुप, क्योंकि एस से साहिली, आर से ऋत्विक, डी से धनविक और के से केश.
0: वाओ, तो आप लोगों ने ये सोच के भी रखा हुआ है?
1: नहीं, अभी बस खोलेंगे.
0: क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, सबसे बड़ा कौन है आप चारों में?
2: साहिली.
0: साहिली बड़ी है. हाँ, तो और बाकी वो, और फिर आप हो और फिर बाकी वो दोनों छोटे छोटे हैं, तो वो दोनों भी गाना गाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है?
1: हमने लाइन वाइज रखा हुआ है ना, एस से साहिली सबसे बड़ी, उससे छोटा मैं ऋत्विक, उससे छोटा धनविक मेरा छोटा भाई, उससे छोटी केशवी छोटी बहन.
0: तो धनविक और केशवी को भी पसंद है क्या गाना गाना, म्यूजिक?
2: तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन
0: अच्छा वो बहुत
2: छोटी है.
1: बहुत अच्छा गा लेते हैं वो.
2: लेकिन वो
1: अच्छा
2: कार गा लेती है.
0: हाँ,
2: करके गा.
0: अच्छा, सिखाते हो आप लोग उसको?
2: नहीं, वो उसका इंटरेस्ट है इन चीजों में.
0: अच्छा,
1: ऐसा ऐसा नहीं कि वो रोते हुए आकार वगैरह, ऐसा नहीं. वो सिंपली जब भी हम उसको कहते हैं कुछ गा के दिखाओ तो वो ऐसे करती.
0: और कितनी बड़ी है वो, कितनी उम्र है उसकी?
1: उसकी 3 साल.
0: अच्छा,
1: बस हुई थी नवम्बर में.
0: तो सबसे छोटे आर्टिस्ट आपके घर में वही है?
1: वो हमसे भी बड़ी आर्टिस्ट है.
0: अरे वाह.
2: और जो धनविक हमारा छोटा भाई है ना, उसे साइकिलिंग ऐसे ऐसे गेम्स में बहुत मजा आता है. स्पोर्ट्स.
0: अच्छा,
1: वो आगे भी है, पर
2: साइकिलिंग में वो बहुत सारे स्टंट भी कर देता है.
0: साइकिलिंग भी बहुत अच्छी चीज है वैसे, लेकिन हाँ, केयरफुल रह के ध्यान से, है ना, करना चाहिए.
1: उसको अब आ गया ना, मैंने सिखाया था उसको. तो उसको अब आ गया. पहले तो मैं उसके साथ होता था ना जब सिखा रहा था, अब उसको आ गया.
2: वो सबसे पहले सीखे वो साइकिलिंग.
0: अच्छा,
1: सबसे ज्यादा
2: हम दोनों
1: 4 इयर्स की उम्र में और वो 3 साल की उम्र में सीखे.
0: अच्छा,
2: एक दिन में ही सीख गया था वो तो.
0: क्या बात है. स्पोर्ट्स भी वैसे बहुत अच्छी चीज है ना, स्पोर्ट्स में भी आगे जाना चाहिए, अच्छा खेलना चाहिए. पता है स्पोर्ट्स में ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें आप अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर
1: वो
0: सकते
1: उसमें
0: हो.
1: जाएगा, वो उसमें ही जा रहा है.
0: और आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें पसंद है ना. पर आप लोग सेम क्लास में सेम स्कूल में पढ़ते हो
1: यस
2: यस
0: है, तो मजा आता होगा, साथ साथ जाते होगे, साथ साथ पढ़ते होगे, है
1: यस
0: ना.
1: यस मजा आता है.
0: कभी झगड़ा नहीं होता?
1: बहुत
0: बहुत
1: कम
0: कम.
1: होता है.
0: ओके, तो अगर होता है तो क्या करते हो, एक दूसरे को कैसे मनाते हो फिर, अगर मान लो हो गया तो? हाँ
1: वो तो हम खुद ही मन जाते हैं आधे घंटे बाद.
0: बस अपने आप. हाँ सहेली,
1: कभी मैं मना लेती हूँ इसे, कभी ये मुझको मना लेता है, लेकिन
0: बस
1: इसे मनाना बहुत मुश्किल है.
0: क्या
1: चीजें जकल मना लेती हूँ.
0: मनाते कैसे हो, क्या करते हो फिर?
1: जैसे मैंने इसको अपनी कोई टॉय दे दिया, बॉल दे दी, स्टिकर दे दिया,
0: जैसे
1: ऐसे.
0: कोई हमारा फेवरेट चीज
1: और वो एक दूसरे के पास हो तो दे देते हैं. और
0: ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, तो बड़े भी कर सकते हैं. स्टिकर आपको अच्छे लगते होंगे ना?
1: मेरे को स्टिकर अच्छे लगते हैं.
0: मुझे भी अच्छे लगते हैं.
1: मैं जैसे अब फंक्शन में जाता हूँ डांस वाले, तो मेरी अपने पर्सनल मेकअप सेट है, तो मैं उसमें से थोड़ा बहुत सामान निकाल के दे देता हूँ मेकअप का. मैं लगाया हमारी छोटी बहन को भी मेकअप में बहुत शौक है. वो
0: मेरी
1: हम छोटी उम्र में ही बहुत अच्छा मेकअप करती है. जैसे अब शुरू में फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं,
2: उसको सारा पता है. वो पहले फाउंडेशन लगाती है, उसके बाद वो आईज का करती है, आईज का करो, उसके बाद वो लिप्स का
1: और वो
2: करती
1: लगा
2: है.
1: भी बहुत अच्छा लेती है. जैसे अब छोटे बच्चे
0: वो तो 3 साल की
1: भारी,
0: है ना, उसको भी मालूम है. वाह,
1: जैसे अब वो हम फंक्शंस में जाते हैं ना, इसलिए जब मैं चली जाती हूँ ना, तो वो पीछे से करवाती है जैसे अब
0: बस.
1: छोटे बच्चे लिपस्टिक बाहर निकाल देते हैं, वो नहीं निकालती, वो अच्छी
0: अच्छा,
1: लगाती है.
0: ओह क्या बात है. तो यानी आपसे सीख लिया होगा उसने,
1: इस
0: सैली से, है ना.
1: मेरे से तो नहीं सीखा, लेकिन जो मेरे मम्मा है ना, वो ना मेकअप में बहुत अच्छा करता है, मेकअप
0: एक्सपर्ट है.
1: इसलिए.
0: अच्छा, अरे वाह. ओके, ये भी एक कला है ना, आर्ट है करना. और वही आगे जाके तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. अच्छा ये बताओ, बचपन में जैसे आप लोग तो बहुत छोटे छोटे से हो भी, तो गाने का शौक कब से आया आप लोगों को?
1: हम जब 2 साल के थे, जब हम दो
0: तब
1: साल
0: हम
1: के थे,
2: दादू हमको लेके जाते थे, तो वहां पे ना गाते थे, तो हम दादू को कहते थे दादू इसे क्या कहते हैं, तो दादू ने हमको बताया. उसके बाद हम 3 साल या फिर 4 साल से शुरू हो गया
1: दो
2: गाना.
1: साल से तब हम जब हमारा पहला फंक्शन था, वो था कन्हैया मित्तल के पास, तब सेकंड प्राइज आया था,
2: मेरा आया था हनुमान चालीसा में, तब हम पूरी बोल लेते
0: तो
1: थे.
0: आप लोग 2 साल के थे तब? ओह, तब तो
1: नहीं,
0: बहुत
1: 2 साल से थोड़ा बड़ा.
0: थोड़े से बड़े थे, बहुत थोड़े बड़े हो गए थे. अच्छा, तो हनुमान चालीसा किसने सिखाई आपको?
1: हमारे
0: अच्छा,
1: बड़े पापा मतलब ताऊ.
0: ताऊ जी ने, यानी आपके पापा ने. ओके, तो आपको ऐसा जैसे आप तो हनुमान चालीसा गाते थे, फिर और गाने गाने लगे, तो कभी आपको लगने लगा कि ऐसा गाना सीखना कब शुरू किया आपने, कि मतलब ऐसा सुर होता है, ये ताल होती है ऐसे?
1: हमने
2: ये
1: होगा
2: हमने चार या फिर
1: तीन तीन
2: 3 साल में शुरू किया था.
0: अच्छा, 3 साल में
1: 3 साल
2: हमको
1: में जैसे
2: सिखा
1: अब
2: दिया था कि
1: हमें पता था कि सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, इसका वो क्या होता है, सब
0: किसने सिखाया आपको ये सब
1: दादू.
0: चीजें?
2: ये दादू ने हमको करवाया. और फिर बाद में जो हमारे पहले सर आए थे, उसके बाद ढोलकी और हारमोनियम के लिए एक टी मैम आए थे, उसके बाद फिर से सर.
1: अब हमारे पास टोटल
2: सर
1: गिटार
2: हमको
1: है,
2: ये
1: कीबोर्ड
2: करवाते.
1: है, हारमोनियम है, ढोलकी है, अभी हम ऑक्टोपैड लेंगे साइली के लिए, बांसुरी
2: ऑक्टोपैड,
1: है, बांसुरी भी
0: वाह,
2: है.
0: ऑक्टोपैड भी और बांसुरी भी. बांसुरी कौन बजाता है?
1: बांसुरी
2: बांसुरी
1: दादू.
0: दादू. वाह क्या बात है.
1: अभी हम भी सीखेंगे, हमें आती है थोड़ी थोड़ी
0: हाँ, ये तो
1: थोड़ी थोड़ी
0: बहुत
1: आती है.
0: अच्छा लगता है. तो दोस्तों चलिए, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इन नन्हे कलाकारों की कला को सुनते हैं, बहुत सुंदर से एक गीत को सुनते हैं, लौट कराएंगे कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड पर.
1: टूटे हैं मन से पहले, एक नम से पहले मेरी बात संसार में कैसे हो. शुरू करें?
0: हाँ कर सकते हैं. तैयार है भाई? आपको बैठना
1: है? टूटे हैं मन से पहले, एक नम से पहले मेरी मौत. ओह
2: तो फोर पे शुरू किया, वन पे शुरू करना था. वन टू थ्री फोर, तो शुरू थे जन्म से पहले. जन्म से पहले मेरे मुंह के सामने कैसे

मुझ मौत चैन की ना मिली, मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा, मेरे वंश का पतन देखा, विवेक का मस्तक देखा, द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का कालहरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भरकम विध्वंस देखा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से, दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन्ड एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव

0: करते हुए और ये एक्सप्लोर करते हुए कि इन्हें संगीत से इतना प्यार आखिर क्यों है, आइए इनसे और बातचीत करते हैं।
1: अच्छा, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आप लोग सब कुछ सीखना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर है जो आपको लगता है?
2: इसमें आधे से ज्यादा तो आते हैं।
1: आधे से ज्यादा आते हैं आपको?
2: बस बांसुरी और बस बांसुरी नहीं आती, और डफली भी हमारे पास, वो भी मैं अच्छी बजा लेता हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है, वाओ, आप लोग तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हो, तो इसीलिए स्टूडियो बनाने वाले हो क्या? हाँ, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट रखोगे?
2: जब हम 9 इयर्स के हो जाएंगे तब बन जाएगा।
1: क्या करोगे उसके अंदर?
2: हमारा रूम होगा रिकॉर्डिंग का, हम रिकॉर्डिंग करेंगे।
3: और साथ में हमारा छोटा भाई जो है ना स्पोर्ट्स में, वो थोड़ा बहुत कर लेता है, जैसे कि वो डांस बहुत,
2: जैसे अब हमारे पास हम कंप्यूटर लेंगे अच्छी क्वालिटी का, तो उसको रिकॉर्डिंग के लिए रखेंगे सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपने।
3: हमारा छोटा भाई रिकॉर्डिंग करेगा और ये बजाएगा, मैं और मेरी छोटी बहन गाएंगे, हमने ऐसा सोचा था।
1: मतलब सब मिलके करने वाले हो?
2: हाँ। गाएंगे सब, बजाएंगे भी सब।
3: हमारा छोटा भाई ज्यादा अच्छी वीडियोस बना लेता है, मतलब उसे ये भी पता है कि डिलीट कैसे करें।
1: अच्छा, वो कितना बड़ा है?
3: वो 5 इयर्स
1: का है। 5 इयर्स का, उतना कुछ आता है उसको इतनी कम उम्र में?
2: डिलीट तो हमें भी करना नहीं आता होगा, अब आ गया,
1: अब आ गया है,
3: अब आ गया है। गेम्स में भी बहुत।
1: अच्छा,
3: गेम्स खेलते हैं।
1: अच्छा, आप चारों लोग जब साथ में होते हो तो क्या खेलते, क्या करते हो?
2: हम ज्यादातर तो
3: छोटी बहन की मान लेते हैं, क्योंकि वो फिर बाद में ना भाग जाती है, तो हम घर घर खेल लेते हैं।
2: सोने उठने वाला गेम घर बना लेते हैं।
1: सोने उठने वाला गेम क्या होता है?
2: मतलब जैसे हम सारे हट बना लिए, तो उसमें जैसे हम खाते हैं पीते हैं, बस
3: मेकअप करते हैं, फंक्शन में जाते हैं, स्कूल जाते हैं।
1: अच्छा,
3: पसंद है।
2: वैसे अगर वो नहीं होती, कहीं गई होती है, तो हम जैसे स्पोर्ट्स वाली गेम खेल लेते हैं, म्यूजिक कर लेते हैं।
1: स्पोर्ट्स वाली गेम कौन सी?
3: जैसे कि साइकिल कर देते हैं।
1: अच्छा, ओके, घर के बाहर जाके फिर खेलते हो
3: वगैरह, रनिंग वगैरह।
2: हमारा बरांडा भी बड़ा है, तो हम उसमें ही खेल,
1: बरांडे में खेल लेते। आप तो चारों ही काफी एक साथ ही खेल लेते होगे, है ना? अरे वाह,
2: केशवी बॉलिंग करवा देती है अच्छी।
1: अच्छा,
3: उसे बॉलिंग आती है,
2: पर जब उसका मन नहीं होता तब हम वही खेलते हैं
1: जो उसको पसंद है।
3: हाँ।
1: सबसे छोटी की बात सबसे ज्यादा मानी जाती है, यानी है ना?
2: हाँ। इसकी बात सब, साइली की बात सबसे कम मानी जाती है,
1: वो सबसे बड़ी है।
2: हाँ। मेरी उससे, मतलब मेरी थोड़ी ज्यादा धन की, उससे ज्यादा केशवी की सबसे ज्यादा।
1: जो सबसे
3: छोटे बहन भाई है ना, वो जवाब दे देते हैं, बड़ों के सामने भी जवाब दे देते हैं वो।
1: अच्छा,
3: अगर हम
2: वो जिसकी मैं बात कर रहा था धार्मिक, वो उसके पास ऐसे ऐसे सवाल है, उसको उसके आंसर भी पता है, पर बड़े नहीं दे पाते।
1: ऐसे कौन से सवाल है?
2: बहुत है। एक बार उसको ना दादू ने कहा था ऐसे पैरों को हाथ लगाते हैं, उसने कहा क्यों
3: लड़के पहना।
1: अच्छा
2: नहीं, फिर उसने कहा कि क्यों लगाने, फिर दादू ने कहा क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, तो उसने कहा सबसे बड़े तो बाबा होते हैं, फिर हम उनको क्यों लगाए, फिर दादू चुप।
1: ओ, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है वो तो।
2: इससे भी खतरनाक, हमें याद नहीं अभी, पर बहुत ज्यादा
1: ऐसे पूछता है कि बड़ों को भी सोचना पड़ता है कि अब क्या जवाब दिया जाए इसका। भाई, इतने सारे क्वेश्चन तो होने चाहिए वैसे हमारे माइंड में, है ना? अपनी बात तो पूछना चाहिए, है ना? क्या लगता है आप लोग?
3: लेकिन वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसका कोई आंसर नहीं दे सकता।
1: कोई आंसर ही नहीं दे सकता, इतना डिफिकल्ट होता है।
2: गूगल भी नहीं।
1: आप लोग के पास होते हैं उसके सवालों के जवाब?
2: नहीं
1: नहीं।
3: उसके पास ही होते हैं।
1: उसके पास ही होते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, उसी से पूछ लिया करो कि भाई इसका जवाब क्या है, आप तुम ही बता दो, है ना?
3: वो बता भी देता कई बार।
1: अच्छा,
2: जब उसने इसको पता तो होता है, पर जब वो कहता है, जब वो थोड़ा गुस्से में रहता है, तो वो तब नहीं बताता,
1: तब नहीं बताता, बाद में बताएगा। अच्छा, जैसे आप लोगों ने आज
3: उसने हमको आंसर बताया था कि बाबा बड़े होते हैं, तो हमको उसके उनके पैर छूने चाहिए, तो जो बड़े लोग होते हैं उनके पैर इसलिए नहीं छूने चाहिए क्योंकि वो बाबा से तो बड़े नहीं है।
1: अच्छा, उसने ये बताया था। ओके, लेकिन जैसे हमसे उस हमसे जो बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट करने का एक तरीका है दिखाने का।
2: उसने कहा था कि रिस्पेक्ट करने का तरीका हम उनको, मतलब उनकी सेवा करके कर सकते हैं।
1: हाँ।

0: ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: बस
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ों की सेवा करनी चाहिए. वेरी नाइस, मतलब वो बहुत अच्छा सोचता है ना, उसके पास
1: सोच बहुत
0: बहुत अच्छी है, और आप लोगों की भी, क्योंकि आप लोग भी इतना अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हो. चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं एक और गीत की ओर, जो गाया है साइली और ऋत्विक ने. लौट कर आएंगे मधुबन अनप्लग्ड पर.

0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी श्रोताओं को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: दोस्तों, इन बच्चों ने इतना प्यार से ईश्वर को याद किया कि सच में इनके सुर और इनके दिल की आवाज जरूर परमात्मा तक पहुंची होगी। वैसे ये नन्हे नन्हे कलाकार हैं, लेकिन इनकी बातें बड़ी बड़ी हैं। तो आइए इनसे और बातें करते हैं और सुनते हैं इनके संगीत का सफर।
2: अच्छा, जैसे गाना आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे गाने जो सुनाए, अब इनमें से कोई एक गाना लेते, जैसे रैप सॉन्ग आप लोगों ने गाया, तो उसमें क्या प्रैक्टिस कर, कैसे शुरू किया, प्रैक्टिस कैसे करी, उसके बारे में थोड़ा बताओ।
3: सुन के गाते,
2: लेकिन साथ में भी तो करना होता होगा, सिंग करके गाना एक दूसरे के साथ गाना।
3: वो हम क्रोकेल गा लेते हैं।
2: क्या कर लेते हो?
3: क्रोके।
2: वो क्या होता है?
3: मतलब वो सिर्फ पीछे की ट्यून होती है, वो
4: उसमें बोलते नहीं है, वो शब्द वो हमको बोलने होते।
2: अच्छा, ओके ओके,
3: लिखा हुआ आ जाता, बस वो
4: पढ़ के गाओ।
2: पटकेगा तो प्रैक्टिस कैसे करते हो, मतलब साथ में शुरू करते हो गाना कि प्रैक्टिस अलग अलग करते हो फिर एक साथ गाते हो?
4: एक साथ शुरू
2: करते हो। तो एक दूसरे को करेक्ट कौन करता है कि अभी तुमने ये ठीक करा, ये इसको ऐसे करना, ऐसे कौन करता है?
4: ऐसे तो
2: दादू।
4: एक बार बस मैंने से कहा था कि ये सेकंड बीट से स्टार्ट होएगा, उस सर ने, हम मैंने सर को ज्यादा देखा था ना, तो उन्होंने सेकंड बीट से स्टार्ट किया था।
3: और एक बार ही हुआ था कि इसने थोड़ी ट्यून ऑफ बीट वगैरह बहुत पहले की थी, थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा ही गलत कर दी थी, तो मैंने थोड़ा टोका था।
2: तो आप लोग एक दूसरे को भी करेक्ट कर लेते हो, मतलब जहाँ आपको लगता है?
4: कर लेते हैं।
2: तो किसी को बुरा तो नहीं लगता ऐसा?
4: नहीं, हम उसको ठीक कर लेते हैं।
2: ओके, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हम कोई भी आर्ट होती है तो उसमें बहुत अच्छा करने का स्कोप तो हमेशा ही रहता है, तो सीखते ही रहना होता है उसको। तो करेक्शन अगर कोई देता है तो बहुत अच्छी बात है ना हमारे लिए, और आप लोग तो ये जानते हो, कमाल है। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो कितना समय लगता है आपको एक गाना तैयार करने में?
3: एक गाना तैयार करने में एक कई बार 4-5-6 दिन भी लग जाते हैं,
4: अगर ज्यादा लंबा हो तो।
3: वैसे आधे घंटे में भी कर लेते हैं।
2: ओके,
4: आधे घंटे में हम आधा गाना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं,
2: सीख लेते हो, लिरिक्स याद भी हो जाते हैं?
4: हो जाते हैं,
3: दादू प्रिंट निकाल देते हैं उसकी, फिर हो जाते हैं।
4: थोड़े बहुत जो रह जाते हैं वो हम पढ़ लेते हैं।
2: ये भी अच्छा है। अच्छा, आप दोनों स्कूल जाते हो, स्कूल में क्या अच्छा लगता है करना?
4: स्कूल में गेम पीरियड भी होता है और ज्यादातर पढ़ाई में जो टीचर समझाते हैं वो भी अच्छा लगता है।
3: जैसे हमारे स्कूल में हिंदी वाले मैम है, वो बहुत अच्छा समझाते हैं, मतलब जैसे अब रीडिंग करवानी है तो वो बहुत अच्छी करवाते हैं, तो
4: वो तो कई बार कहानियां भी सुनाते हैं।
2: हाँ, कहानियां अच्छी लगती है आप दोनों को?
4: अच्छी लगती है।
2: ऋत्विक को नहीं अच्छी लगती? मुझे
3: अच्छी लगती
2: है। अच्छा, ओके, तो मतलब स्कूल जाना अच्छा लगता है आप दोनों को?
4: बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे फ्रेंड्स भी होते हैं।
2: हाँ, ये बात तो करेक्ट है, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे स्कूल में, अच्छे लगता होगा ना रोज उनसे मिलना। ऋत्विक आपके दोस्त है?
3: मेरा एक ग्रुप है।
2: अच्छा,
3: मतलब सारे जितने भी बॉयज हैं उन सबको एक कला आती है। एक बॉय है उसको बहुत अच्छी ड्राइंग आती है,
4: ज्यादातर तो बॉयज को।
3: जैसे टीम का मतलब हम लीडर वगैरह नहीं बनाते टीम के, हम सिंपल टीम रखते हैं फ्रेंड्स वाले।
2: अच्छा, तो उसमें क्या करते हो आप लोग?
3: उसमें मैं ऑलराउंडर, ऐसे ऐसे रखते हैं बस।
2: अच्छा, ऐसी टीम बना लिया आपने?
3: हमारे टीम में 24 होंगे।
2: 24? ओह,
4: 24 बॉयज है, और मेरे ख्याल से 10 या फिर 10
3: बॉयज के बीच में जो हमारे क्लास के बॉयज हैं उसमें उनमें झगड़ा कभी नहीं होता।
2: अच्छा,
4: गर्ल्स में हो जाता है कई बार, लेकिन
3: गर्ल्स में हो जाता है।
2: हैं, क्यों?
4: अरे मैं उनके बीच में जाती नहीं, उनका अपना ही झगड़ा होता रहता है, पता नहीं
3: किस बात पे। अच्छा, हमारे बीच में किसी ने झगड़ा शुरू कर दिया तो कोई ना कोई चुप करवा ही देता है, क्योंकि पता है फिर टीम कट जानी है।
2: हाँ, और टीम इम्पोर्टेंट है ना,
3: इसलिए अगर कई बार मेरे को दिखता तो मैं भी करवा देता हूँ।
2: कैसे करवाते हो? मान लो झगड़ा हो गया
3: तो वो वो सबसे पहले तो बोलना ही शुरू करते हैं। पहले बोलना तो मैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर देता हूँ, जैसे वो कहते हैं ये अच्छा है, तो हाँ। मैं उनको मिक्स करके से
2: कि दोनों ही अच्छा है करके, मतलब उन दोनों को अलग अलग पसंद आ रहा होता है कुछ, इसलिए झगड़ा होता है।
3: पसंद आ रहा होता है, मैं एक पेज लेता हूँ उसको दोनों की ड्राइंग में हल्का हल्का लेके एक ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ, फिर वो पसंद कर।
2: दोनों की ड्राइंग मिक्स कर देते हो आप, और आप क्या बोल रहे थे?
4: जैसे कि मेरी फ्रेंड और मेरे में झगड़ा हो गया, तो ना एक मैं बोलती हूँ उसे कि जैसे कि वो फिर बाद में रूठ जाती है मेरे से, तो मैं उसे कहती हूँ मैं तेरे को अपनी ज्योमेट्री दे दूंगी, आज आप फ्रेंड बन जाते हैं तो हम बन जाते हैं।
2: मतलब आप जल्दी जल्दी मना लेते हो।
4: एक बार फिर फ्रेंड्स जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स पसंद करती है और सब इरेजर्स को नेल आर्ट बना लेती है।
2: अच्छा,
4: एक बार
2: ये कैसे होता है इरेजर को नेल आर्ट? वाह।
3: एक बार ना इसकी फ्रेंड नाराज हो गई थी, तो इसने मेरे को बताया था, इसने कहा था कि फिर तेरे को मेरी जैसी दोस्त तो नहीं मिलेगी, वो उसी वक्त फ्रेंड बन गया।
2: ये अच्छा है कि भाई मेरे जैसी मैं अच्छी दोस्त हूँ तुम्हारी, तो फिर तुम्हें ऐसी दोस्त तो नहीं मिलेगी दोबारा, याद दिलाना पड़ता है ना कभी कभी। ये भी सही बात है, अच्छे
4: पेपर्स के नए उस बना लेते हैं, उनको दिखाते हैं फिर दोस्त को, हाँ। उसके बाद उतार लेते हैं।
2: अच्छा, फिर वो वापस दोस्त बन जाते हैं। यानी आप लोग को स्कूल जाना दोनों को पसंद है,
4: पसंद है ना? है।
2: तो इसी बात पर एक और गीत हो जाए, बहुत सुंदर सा, प्यारा सा, प्यारी प्यारी आवाजों में।

0: Hello, I'm Alexander, diplomat from Russia, and you are listening FM Radio Madubar. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomaduban.in on internet, even Russia, even everywhere.
1: नमस्ते ओम शांति, मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से।
3: तो नवरात्रि के इस प्रथम दिन पर शैलपुत्री माता की पूजा होती है। शैलपुत्री माता कौन है? तो कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री ये प्रथम देवी है। पहला अवतार माँ दुर्गे का है, जिसके अंदर खूब एनर्जी है, शक्ति है, और जो हिमालय की बेटी मानी जाती है, और इसीलिए शिव के साथ की शक्ति बताई गई है। शैलपुत्री, पुत्री यानी जो बेटी है, और शैल माना पहाड़, यानी सती भवानी या पार्वती या हेमवती का ही दूसरा स्वरूप है। हिमालय का जो राजा हेमवान, उसकी बेटी शैलपुत्री नवदुर्गा में प्रथम मानी जाती है, और उसकी ये पूजा करके शक्ति को प्राप्त करने का भाव है। उसके एक हाथ में त्रिशूल दिखाया है और दूसरे हाथ में कमल पुष्प दिखाया है, और भैंसा उसकी सवारी के रूप में दिखाया गया है। उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान और आनंद का भाव प्रकट होता है। अब ये त्रिशूल और कमल का प्रतीक जो दिखाया गया है, ये किस बात का प्रतीक है? तो कहा जाता है कि त्रिशूल के नीचे एक छड़ दृढ़ निश्चय का प्रतीक है, और ऊपर की तीन पत्तियां मन, वाणी और कर्म द्वारा पांच विकारों रूपी राक्षसों पर विजय प्राप्त करने का द्योतक है। साथ ही साथ कमल पुष्प अर्थात संसार में रहते हुए तामसिक विकारी वायुमंडल से अलिप्त एवं पवित्र रहने का प्रतीक है। तो जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मन, वाणी, कर्म के ऊपर संपूर्ण अधिकार

0: करके दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है और संसार में रहते हुए पवित्र रहता है, तब उसके जीवन में आनंद का भाव और मुस्कान नेचुरल रूप में बनी रहती है।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड और हमारे साथ बने हुए हैं नन्हे कलाकार साइली और ऋत्विक। बहुत सच्चाई से दिल से ये गाना गा रहे हैं और अभी से प्रैक्टिस करते हैं, म्यूजिक का सम्मान करते हैं, उसका मतलब समझते हैं, ये बड़ी बात है। यानी हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही म्यूजिकल और सुरक्षित है। चलिए आइए और बातें करते हैं इन नन्हे कलाकारों से।
2: छुट्टियां जब होती हैं तब क्या करते हो?
3: तब हम दादू हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस कर देते। वैसे हमारी चल रही है म्यूजिक और डांस क्लास, पर दादू फिर जिमनास्टिक वगैरह लगवा देते हैं।
1: जिमनास्टिक भी सीखते हो आप दोनों?
3: सीख लेते हैं।
1: अच्छा,
3: हम पहले अलग से क्लासेस जाते थे, पर जब स्कूल शुरू होते हैं फिर छुड़वा देते हो।
1: हाँ, मतलब छुट्टियों में सीखते हैं।
4: छुट्टियों में दादू सेंटर पे योगा भी करवाते हैं।
3: सेंटर पे जैसे अभी सेंटर है कोई, उसमें कोर्स वगैरह सब कुछ
1: अच्छा
3: करवा देते हैं जब छुट्टियां होती है।
1: छुट्टियों
3: उसके बाद स्कूल आ जाते हैं, फिर डांस वगैरह भी होता है।
1: डांस भी सीखते हो आप दोनों? कौन सा डांस सीखते हो?
4: कथक।
1: कथक सीखते हो आप दोनों? क्या बात है।
4: हरियाणवी भी आता है।
1: कथक तो मैंने भी सीखा है, पता है मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोग के साथ अब मैं आप लोग को देख देख के करूंगी, फिर आप लोग का स्टूडियो बन जाएगा ना। फिर
4: हमारा चैनल भी है वैसे यूट्यूब पे।
1: कौन सा चैनल है बताओ?
4: बजाज किड्स।
1: अच्छा, इस नाम से यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे क्या होता है वहाँ पे आपके?
4: हम सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं,
3: डांस या ओल्ड वीडियोस।
1: अच्छा,
4: हमारी छोटी बहन
3: जैसे अब जो हम स्टूडियो की बात कर रहे थे वो हमारे नए मकान में होगा। उसमें 3 फ्लोर्स है, नीचे वाला तो सबके रूम वगैरह है, ऊपर वाले में हमारा है रिकॉर्डिंग रूम, डांसिंग रूम, पेंटिंग रूम, सारा कुछ ऊपर वाले में। उससे ऊपर हमारा प्लेग्राउंड, जैसे अब स्विमिंग पूल की भी बात कर रहे थे, नेट वाला, क्रिकेट, ऐसे ऐसे,
1: मतलब जहाँ पे आप खेल सको।
4: ऊपर छत है उसमें बनाएंगे।
1: अच्छा, ऊपर छत है तो उसमें भी तो थोड़ा सनलाइट आएगी, उसमें आप लोग खेलोगे, है ना?
3: ऊपर जैसे जिस साइड हम है वहाँ उस साइड ना थोड़ी अच्छा मौसम बना रहता है, मतलब इतनी धूप नहीं गिरती।
1: अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे आप लोगों ने बताया ना बच्चों के प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हो, अगर मान लो बड़ों में लड़ाई हो जाती है, वो उनको एक दूसरे की बात अच्छी लगती है, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे एक दूसरे को मनाना चाहिए, कोई तरीका बताओ।
3: जैसे अब कई बातों पे झगड़ा होता है, मैं एक का बताता हूँ। हम जैसे अब लड़ाई हो गई, उसमें या तो जो कर रहा हो उस जिसने शुरुआत की हो वो सॉरी बोल दे, या टीचर को जाके बोल दे।
1: और अगर टीचर ना हो तो? वो दोनों है केवल।
4: और टीचर ना हो तो हम ज्यादातर उन्हें बोल देते कि एक दूसरे को सॉरी बोल दो,
1: है ना?
4: या माफी मांगे।
1: मतलब माफी मांगने से झगड़ा ठीक हो जाता है ना। माफी मांग लेनी चाहिए बड़ों को भी, बड़े कभी कभी नहीं मांगते ना, फिर झगड़ा बड़ा हो जाता है।
3: अगर वो हमसे ज्यादा बड़े हैं तब हम नहीं जाते, तब उनके क्लासमेट उनको समझाते हैं, तब हम नहीं जाते।
1: तब आप नहीं जाते। ओके, चलो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। आप लोग को बहुत गाना, क्या आप लोग हमेशा गाते रहोगे बड़े हो जाओगे तब भी?
3: हमेशा? वैसे जब मैं बड़ा हूंगा मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है।
1: एस्ट्रोनॉट बनना है आपको? वाह, बहुत सारी, तो उसमें तो बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। लेकिन
3: नहीं, मैं पढ़ाई में तो आगे हूँ।
1: पढ़ाई भी अच्छी लगती है आपको ना? अच्छा करते हो आप, पढ़ाई में भी आगे हो, वेरी गुड। और आपको सही?
4: डॉक्टर बनता है बड़े होके।
1: डॉक्टर बनना है, ये तो डबल फायदा हो जाएगा फिर। जो आपके पास इलाज के लिए आएगा उसको बहुत सारा अच्छा गाना भी सुनने को मिलेगा और ट्रीटमेंट भी मिलेगा।
3: ये कह रही है मैं फ्री में करूँगी।
1: हाँ, ऐसा क्यों?
4: क्योंकि जो ज्यादा उनके जिनके पास पैसे नहीं होते वो भी करवा सकते हैं अपना।
1: ये भी सही बात है ना, उनकी हेल्प भी, जिनके पास नहीं है, किसी के पास कम है, तो उनकी भी सहायता।
3: जब ये छोटी थी,
1: बहुत अच्छी सोच है आपकी।
3: जब ये छोटी थी इसके पास ना डॉक्टर सेट था, तो ये घर में जितने भी सारे होते थे उन सबका चेकअप करती थी।
1: अच्छा,
2: अच्छा लगता था आपको?
3: और जैसे रियल डॉक्टर करते एकदम सेम वैसे।
2: इसलिए उनको शुरू से डॉक्टर बनना है ना,
3: सबको पेशेंट बनना पड़ता था।
2: कौन पेशेंट बनता था?
3: पापा, मम्मा, मैं भी बनता था।
2: अच्छा,
3: तब छोटा भाई और बहन नहीं थे ना अभी, तब छोटे थे हम।
2: अभी वो लोग बनते हैं पेशेंट छोटे भाई बहन?
3: अब तो नहीं। कोई भी किसी को भी डॉक्टर का शौक नहीं, अभी ये बस पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे,
2: पढ़ाई पे ज्यादा,
3: क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई, डॉक्टर बनना,
2: उसके लिए पढ़ाई होती है।
5: साइंस और मैथ में ज्यादा ध्यान दे रही हूँ।
2: अच्छा, एक एक चीज बताओ, चलो आपके घर में जो बड़े हैं उनकी एक कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है? कोई भी।
5: अपनी मम्मा का नेचर अच्छा लगता है।
2: ओके।
5: और सब क्वालिटी अच्छी लगती है
2: सारी। एक जो आपको लगता है कि मैं भी वैसे ही बनूं, मैं भी वैसे करूं, ऐसा कुछ लगता है
3: कि जैसे अब कोई, जैसे अब आ गया कि कोई खाना मांगने वगैरह के लिए आ गया तो उसको दे देते हैं, जैसे अब गाय के लिए स्पेशल एक बड़ी रोटी बना के रखते थे उसको दे देते।
2: तो बहुत अच्छी बात है, तो हमको भी करना चाहिए ना जब हम बड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है आपने बोली।
5: हम ऐसे या फिर छोटे से थे, थोड़े से छोटे थे, तो हम सोचते थे, हम ना वीडियोस देखते थे, तो उसमें ना लोग ना ज्यादातर गरीब लोगों की मदद करते थे, तो हम भी ऐसा ही सोच रहे थे।
2: वेरी गुड।
3: हम बड़े होके डॉक्टर और एस्ट्रोनॉट तो बनेंगे, पर साथ ही साथ एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम खोले।
2: वृद्धाश्रम क्यों?
3: जो सड़क पे भीख वगैरह मांगते हैं उनको जॉब वगैरह दिलवाएंगे,
2: उनकी मदद करोगे आप, है ना? बहुत अच्छा ख्याल है आपका, एंड हम बहुत सारी विशेस करते हैं कि आप दोनों बहुत अच्छा अच्छा करो, जो आप सोचते हो वो जरूर जरूर कर पाओ। अच्छा, लास्ट में जाते जाते एक दूसरे की एक अच्छी बात बताओ, साथ साथ प्रैक्टिस
3: बहुत करती है।
2: अच्छा,
3: सहेली मेरी, जैसे अब मेरे को चोट लगी हुई है, ये मेरे को मेरी सब बातें मानेगी, पानी लेके, खाना, मैं बेड पे ही होता हूँ ना, तो
2: बहुत केयर करती है।
3: एक बार मैं साइकिल चलाते चलाते थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चला रहा था, गिर गया, पत्थर साइड में थे, तो बहुत बड़ी चोट आई थी, तो मैं रूम में था, तो ये लाती थी, मम्मा भी ले आते थे, पर ये भी लाती थी।
2: ये भी लाती थी, बहुत केयर करती
3: है। पूरा ये छिल गया था, पूरा फ्रैक्चर नहीं आया था,
5: गोड़ा
3: बड़ा आया था, और ये यहाँ पे एल्बो पे थोड़ा बड़ा चोट आई थी।
2: अच्छा,
5: ये भी केयरिंग करता है मेरी, जैसे कि मेरे को, हम दोनों ना जैसे कि रनिंग कर रहे थे तो मेरा पैर फिसल गया, तो मेरे दोनों यहाँ पे चोट लगी और दोनों घोड़े छिल गए थे। तो हमारे घर में ना कोई आया हुआ था, तो मम्मा तो बाहर थे, इसलिए उन्होंने वो फटाफट से आ नहीं पाया, और ये मेरे पास में ही था, तो इसने मेरे को उठाया, बल्कि इसके चोट लगी हुई थी, फिर भी इसने मेरे को उठा के अंदर ले गया था।
2: मतलब आप दोनों एक दूसरे की केयर करते हो, है ना? आप दोनों बहुत बहुत अच्छे से ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, एक दूसरे की हमेशा केयर करना, सबकी केयर करना, और हमारी बहुत सारी जो रेडियो मधुबन है यहाँ पे और जो लिसनर्स आपको सुनेंगे ना, सबकी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी गुड विशेज आप लोग के साथ हैं। तो खूब अच्छा अच्छा गाओ, हम लोग आपका यूट्यूब चैनल भी देखेंगे और आपके गाने सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें और इतने प्यारे प्यारे गाने सुनाने के लिए। थैंक यू साइली, थैंक यू रिथ्विक। अगली बार जब आओगे तो मिलोगे वापस हमसे? पक्का? प्रॉमिस?
5: प्रॉमिस।
2: तो चलो, इस प्रॉमिस के साथ दोस्तों फिलहाल लेते हैं इजाजत। इन नन्हे कलाकारों को सुन के आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9914151415, यानी कि 9414151415। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते इन नन्हे कलाकारों यानी ऋत्विक और साइली की आवाज में सुनते हैं बहुत खूबसूरत सा गाना, तेरी मर्जी।

தேடி மருதி, தேடி மருதி, தேடி மருதி, தேடி மருதி, தேடி மருதி.

बहुत आएंगी दर पर, सभी को तुझको है पढ़ना।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है यशस्वी भारत। दोस्तों, भारत के कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने न सिर्फ समाज कल्याण में, भारत की उन्नति में, भारत के कल्चर में अपना योगदान दिया, साथ साथ भारत का नाम विश्व में भी ऊंचा किया। दोस्तों, कई ऐसी आर्ट फॉर्म्स हैं जिनके बारे में ये तो बात होती है कि उन्हें भूलते जा रहे हैं, कहीं हम वेस्ट की तरफ आगे तो नहीं बढ़ते जा रहे, क्या हम भारत की संस्कृति को संभाल के रख पा रहे हैं। परंतु इसके उत्तर खोजने जाएं तो सच में कभी कभी लगता है कि हम अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे, क्योंकि हम ही उनके बारे में जानते नहीं। लेकिन कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, मैं जिनसे आपकी मुलाकात आज कराने वाली हूँ, उनकी कहानी सुन के आप जरूर इंस्पायर होंगे, क्योंकि पूरा भारत उनसे इंस्पायर हुआ है। वे पद्मश्री अवार्डी है और वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर परशुराम खुने जी। आज सर, सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते सर। सर, एक बहुत ही बड़ा सम्मान, और हम सभी जानते हैं आपका कंट्रीब्यूशन 50 सालों से भी अधिक रहा है झाड़ीपट्टी थिएटर में, और आपने बहुत से युवाओं को रिहैबिलिटेट किया है, उनका पुनर्स्थापना उनको एक कराई है, चाहे वो एडिक्शन से निकाल कर हो या फिर वहाँ की और भी कई कुरीतियों से छुड़ाकर हो, और इसमें आर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो सर, पहले तो आपकी जुबानी ही कुछ आपकी कहानी जानना चाहेंगे।
1: मैं महाराष्ट्र के पूर्व विदर्भ चंद्रपुर गढ़चिरौली भंडारा से एक पूर्व विदर्भ हमारा एरिया है
0: जी,
1: और मैं 50 साल से मैं वहां कार्यरत हूँ एक आर्टिस्ट करके
0: जी।
1: लेकिन ये झाड़ी पट्टी रंगभूमि को एक अलग परंपरा है, अलग पहचान है। वो इसलिए कि वो जो पट्टा है पूरा जंगल व्याप्त है।
0: ओके।
1: वहां किसान है, आदिवासी का एक अलग कल्चर है वहां, और 150 साल से उसकी पुरानी कहानी है। जो प्रथम अवस्था में था नाटक, वो दंडार करके, दंडार यानी कोई तभी 5-6 आदमी एक दंडा लेके एक गीत बोल के, इस वाक्य बोल के, वो एक रामायण महाभारत इतिहास कालीन पर एक स्टोरी बताते हैं
0: जी।
1: लेकिन जैसे समाज परिवर्तनशील है, फिर उन्होंने हमारे पूरे एरिया में, वो पूरे विदर्भ में ये चलता था दंडार, अभी भी चाहे चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने नागपुर आकर, ये बड़े बड़े कंपनी थी, उनका नाटक जो संगीतमय नाटक देखा उसने,
0: अच्छा,
1: तो उनको लगा कि ये तो अपन यही पेश करते हैं, यही अपन, लेकिन इनका जरा सही संगीत का ढांचा अलग है, हारमोनियम है, तबला है, संगीतमय है, तो उन्होंने वो ढंग से जो उसके विद्वान थे अपने घर को लेके, उनने उसे पूरा उसका पढ़ाई किया
0: जी।
1: तो वो फिर एक नाटक के माध्यम से चल रहा है। लेकिन झाड़ी पट्टी रंगभूमि क्या है, ये नामकरण किसने दिया है
0: जी?
1: तो झाड़ी पट्टी रंगभूमि का मतलब ये है कि वो झाड़ी से व्याप्त है, पेड़ से व्याप्त है, जुड़पो से व्याप्त है, और जहां गाओ वहां नाटक,
0: अच्छा,
1: ऐसी परंपरा अभी भी चल रही है
0: जी।
1: तो एक, और वहां का नाटक चलता है पूरे रात भर चलता है, 10 बजे अगर चालू हुआ तो सबरे तक। उसकी वजह ये है, कारण ये है कि अगर वो गांव में जब मेहमान आते, उनकी संस्कृति भी है, उसके पीछे एक ऐतिहासिक, जो आदिवासी लोग होंगे हमारे कुछ इधर भी जमात के होंगे, तो वो बहाने से गांव में एक कष्टकारी पीड़ित लोग, उनके एक बार कुछ मनोरंजन होना, इसलिए गांव के माध्यम से वो दिन जहाँ जी नाटक रहता है, उसके माध्यम से जो कोई नई लड़कियां शादी होकर जाती है वो आती है, नवीन दामाद आते हैं, नई लड़कियां देखने आते हैं, उससे लगने कुछ तगाई जुड़ती भी है
0: जी।
1: और सबरे उनकी विदाई होती है उनके साथ, तो वो एक अलग परंपरा है कि तो वो झाड़ी का नाटक, झाड़ी का पट्टे का नाटक, इसलिए वो झाड़ी पट्टी रंगभूमि। दूसरी वो बात यह कि ये इसके अलगपन क्या है, तो अलगपन ये है कि वहां का नाटक 10 बजे चालू होता है, 11 बजे तो सबरे तक चलना, 5 बजे तक चलते हो। इसका कारण ये है कि जो बहुत दूर से लोग आते हैं
0: जी,
1: तो उनको खाने का इंतजाम हो जाता है, लेकिन सोने का इंतजाम नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर तीन चार बजे नाटक खत्म हो गया तो उतने रात जाएंगे कहाँ,
0: जाएंगे
1: कहाँ, क्योंकि वो पूरे जंगल का एरिया, कई पशु पक्षी वहाँ सब क्यों भीती रहती है, इसलिए वो एक परंपरा अभी भी चल रही, वो गांव में नाटक चलता है। और वो आप बोलेंगे इतनी बड़ी स्क्रिप्ट रही थी क्या, तो नहीं रही थी। बात यह है कि जो नाटक करते हैं गांव में, अभी तो थोड़ा परिवर्तन हो गया। हमारे जमाने जब मैंने 30 साल काम किया, एक गांव के हौसले लोग बिता के हमारे जैसे दो एक दो कॉमेडियन एक दो लेडीज को बुलाते थे। और हर गांव में जब तो उधर एक ऐसी अभी प्रथा है कि उधर एक सम्मान पत्र सबको दिया जाता है, मान पत्र, हमारे नाटक देखने आओ
0: जी।
1: फिर खासदार रहे, आमदार रहे, जिला जो जो के बड़े बड़े नेताजी है, लीडर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो आते हैं। और उनका वो तो मैं कहता हूँ ये ATM कार्ड है वो मंडल का, क्योंकि आधे आधे जो बख्शीश का जो वितरण होता है वो स्टेज पर हो जाता है।
0: अच्छा।
1: कि हर नाटक को 40-50-60-70 हज़ार खर्चा है, और वहाँ का जो प्रेक्षक है वो बहुत बड़ा दिलदार है, वो टिकट निकाल कर ही अंदर आता है और पूरे रात भर नाटक देखता है। लेकिन ये जो मेहमान आते हैं
0: जी,
1: ये भी उनके बाद उनको कोई 10 हज़ार कोई 5 हज़ार, इसलिए उसमें फायदा ये है कि चलो भाई वो गांव में नाटक होता है, जो कलाकार आता है बाहर उसका भी पेट भरता है। और दूसरी बात ये है इसके पीछे
0: जी,
1: कि हमारे झाड़ी पट्टी रंगभूमि में हर साल
0: जी
1: 70-80 करोड़ की लड़ाई होती, इतनी बड़ी एक भी नहीं है।
0: अच्छा।
1: 170 कंपनियां हमारे आज भी है, पहले चालू होते तो होली तक चलते रहते प्रोग्राम।
0: अच्छा।
1: और उसमें से फायदा ये होगा कि जो एक बेकार युवक था, जो मेरे जमाने में ऐसे भी कुछ डर था कि ये लोग कोई भटक न जाए, कहीं इनका इन जाए नक्सलाइट के प्रभाव से कहीं अगर इन हो जाए, तो हमने ऐसे लोगों को ये प्रभाव में ले नाटक के अभिनय का चगाता है तो गाओ, है ना। कोई खाली जिसको अभिनय तो वही नहीं, उसके पीछे जो नेपथ्य वाला है, पर्दे खींचने वाला है, स्पीकर वाला है, ऐसे 40 लोगों का 50 लोगों का ये सब समूह रहता है। जीव वाले, दो ट्रक वाले, नेपथ्य वाले, वो तंबू लगता हमारा वो गांव में जाके।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे 40-50 लोगों का पेट एक कंपनी में उसके ऊपर चलता है, एक रोजगार मिल गया ना उनको।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऐसे ऐसे 100-150 कंपनी आज भी है जो निरंतर नाटक कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: दूसरी बात, अगर जहां तंबू लगता गांव में
0: जी,
1: वो तंबू के सब होता 40-50 दुकान लगते है, चाय टपरी वाला, पान ठेले वाला, चने वाला
0: जी,
1: उनका भी निवरा उसी ऊपर चलता है। जब अंक खत्म होता है बाहर आके सब चाय पीते पान खाते, तो वो भी बेचारे उद्योग कर रहे हैं उनका, इसलिए वो एक बड़ी इंडस्ट्री का ये है, इसलिए उनको एक रोजगार मिल गया।
0: जी जी बिल्कुल।
1: इसलिए और हर बात और दूसरी, अभी तो जब मैं बात कर रहा हूँ अभी तो अभी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी मुंबई के हमारे कलाकार मराठी कलाकार वो हमारे झाड़ी बटी में आके काम करते हुए हमारे साथ में, तो एक बड़ी उपलब्धि हुई है इससे एक जो भाई का युवक है वो। लेकिन क्या है अभी इसे ऐसे माहौल में आजकल थोड़ा क्या बोलता है जो नया जनरेशन है
0: जी जी,
1: अभी हमारे तरफ क्या है कि पहले जो हमें नाटक होते थे महाभारत पौराणिक धार्मिक रामायण वो भी नहीं होता, अभी लावणी होना डांस होना, तो थोड़ा कोई ये जो युवक है थोड़ा नया जनरेशन वो जरा अलग टाइप से देख रहा है, होता तो परिवर्तन है। अगर अब जो बिजनेस करना तो चल रहा, लेकिन अभी भी वो झाड़ी पट्टी

0: क्योंकि अच्छी यानी उसका एक अच्छा स्टेज मिला, अच्छा रंगमंच मिला है नाटक को। जब मेरे को 50 साल हो गए मैं भी, इसलिए मेरे को यानी अच्छा लगता, मैं आभार मानता हूँ भारत सरकार के, एक झाड़ी पट्टी के एक कलाकार को जो देहात में रहता है, आदिवासी इसमें रहता है, मेरे परिश्रम का एक चीज बोल के मेरे को 2023 में
1: जी
0: कला के माध्यम से मेरे को पद्मश्री बहाल किया।
1: जी तो 50 साल बहुत लंबा समय होता है और आपने एक आर्ट फॉर्म को डेडिकेट कर दी अपनी लाइफ पूरी तरीके से, तो मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी क्या इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ा जब आप इस कला से जुड़े और इतना समय।
0: वो क्या है दीदी, मैं हूँ होम्योपैथी डॉक्टर
1: जी,
0: और मैं हूँ किसान का बेटा। जब मैंने अपना देह रखा कि मैं कोई पढ़कर को ऑफिसर बनना नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ जमींदार थे, 100 एकड़ जमीन थी, तो मेरे को ऐसा कोई बिजनेस होना कि जो मैं खेती कर कर भी कर सकता होती है, वैद्य की पेशा है, डॉक्टर की है, इसलिए मैं उधर गया। लेकिन मेरे घर में जब मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के पिताजी दंडार करते थे, मेरे पिताजी मेरे गांव में एक मंडल करके वो नाटक ये करते थे, तो वो बचपन से मेरे ऊपर वो प्रभाव हुआ। और मैं मेरा असली जो क्या बोलते उसको जो उसके ऊपर संस्कार बोलती है वो नोरगांव में हुई, चंद्रपुर जिले में, जो बालाजी पटेल मेरे मामू थे वहाँ मेरे प्राइमरी शिक्षण से मैं वहाँ गया, तो 5-6 साल बड़े बड़े बॉम्बे सीधे, और वहाँ से मेरे को एक के प्रति एक भाव आ गया मेरे में कुछ है। जब मैं कॉलेज पढ़ने नापको रहा उसमें भी मैंने क्या हुआ, मेरे को मेरे दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ मैं गया मेरे को अच्छे लोग कलाकार मिलते गए
1: जी।
0: और मैं जब इसमें एक ढंग से मैंने डॉक्टर की नहीं किया, फिर भी एक सेवा भाव, चलो क्या भगवान को सबको कला नहीं देता, कलाकार ये नहीं देता, ये माध्यम से एक समाज प्रबोधन कि जो इलाका मेरा पूरा आदिवासी पूरा जंगल इन बहाने से सब एक और मनोरंजन का साधन कुछ नहीं था उस वक्त, इससे भी नाटक से माध्यम से कुछ ऐसे रामायण है महाभारत है ऐसे संस्कार में नाटक देने का हमने
1: प्रयास
0: किया। जैसे कोई अभी तुम्हारी ब्रह्म कुमारी का जैसे इनके काम चल रहे, तो उनके ऊपर एक समाज को ऐसा चेतना देना एक कुछ माध्यम होना चाहिए
1: जी।
0: और आज तो इतनी जरूरत है, मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि हर आदमी ने ये जो चल रहा है जो माहौल आज के दिन में जो मन शांति नहीं है
1: जी,
0: जो भटका हुआ है आज का युवक
1: जी,
0: कोई इसकी प्रवृत्ति नहीं अच्छे भाव
1: जी,
0: इसके लिए मैं तो कहता हूँ हमारी तरफ इन्होंने जो काम किया है
1: जी,
0: जुड़े हम कुंदा दीदी ने
1: जी,
0: तो ये हर गांव में हर वहां तक पहुंच गए, जो जो हमारा जिला कहा से कहा है वहां उधर सब आदिवासी इसमें लग, आज वो बहुत बदल जो हुआ है
1: जी जी,
0: तो दीदी के वजह से हुआ है, ब्रह्म कुमारी के माध्यम से हुआ है
1: जी। सर जैसे आपने बताया तो गढ़चिरौली की बात करें तो बहुत नक्सलाइट एरिया है जितना हाँ। हमने पढ़ा जितना जाना, तो उसमें से क्या युवाओं को आपको एंगेज करना क्या चैलेंजिंग होता था?
0: नहीं अभी क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ कि जब ये जो युवक है
1: जी,
0: तो जो नक्सलाइट का जो प्रभाव था पहले एक डर था मन में बहुत
1: जी,
0: यानी वो गांव वाले भी था, क्योंकि अगर वो गांव में घुसे तो जिसके आगे पुलिस उसको भी दंडा मारते थे, अगर पुलिस के नाम बताए तो वो दंडा मारते थे, वो बेचारा जो युवक था उसके सोचने की मैंने दोनों तरफ से उनको बड़ा ये था,
1: दोनों तरफ से डर था
0: कि अगर वो नहीं बताया तो पुलिस का मार पड़ता था, अगर पुलिस वाले को बताया तो ये नक्सलाइट, तो इसमें से एक बड़ा द्विंदीय मनस्थिति में उसकी एक सोच थी ना, तो इसमें अगर बाहर कैसा निकलना चाहिए इसको, और हर आदमी तो नक्सलाइट नहीं बन सकता उनका ध्येय, लेकिन जब वो युवक ना भटक जाए ऐसे कोई गए भी तो वो अभी तो आत्मसमर्पण कर लिया और एक माध्यम मिल गया ये, अगर तू खाली रहता है कुछ खाली माइंड तो शैतान का ही रहता ना
1: जी,
0: अगर तेरे को कुछ रोजगार मिलता अच्छे संस्कार होते तो ऐसे एक नीडर भी बन गया ऐसा नहीं। अभी तो मैं तो कहता हूँ कि दावे से कि अभी तो हमारे यहाँ में जो कुछ नक्सलाइट बहुत सैनी चला गया, अभी जो कोई बाकी शरणागति पद कर ले, ये जो बदल है ना ये पहले एक दिन से भी नहीं होने वाला था, ठीक है, हमने जो शुरुआत की
1: जी
0: इस माध्यम से नाटक के माध्यम से एक जो संपर्क वहां आया हमारे बातचीत हुई है, तो उसे वो फायदा अभी मिल रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है। उसका बड़ा फायदा ये है कि हमने पहले से ट्राई किया, पहले से उनको एक युवक को ऐसी दिशा दी और उनको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी खेड़े बाड़े में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मैं जहाँ जा गया मेरे ब्रह्म कुमारी के माध्यम से हमारी जहाँ वहाँ है तो उधर एक संस्कार में ये वहाँ एक वातावरण इन लोगों ने निर्माण, बाकी तो मेरे को नहीं दिखा। लेकिन ये जो दृष्टिकोण हम जुड़ गए, मैं भी बहुत 5-6 साल पहले आया था यहाँ।
1: अच्छा।
0: आया था मैं, एक दो दिन रह के चला गया था
1: जी।
0: लेकिन दीदी के माध्यम से, आज खुन्ना दीदी के माध्यम से मेरे को दोस्तों, मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आया
1: जी।
0: और दीदी के बारे में क्या बात है, उनका कार्य तो बड़ा है, तो मैं आने का श्रेय भी उनकी वजह से मैं आता का नहीं, आज नहीं आ रहा था
1: जी।
0: तो ये दृष्टिकोण से आज ये जो परिवर्तन, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। और आज के जमाने में जो मुझे बात की नहीं, घर घर में जो ये मोबाइल जो इसको, ये भले मोबाइल से वो आदमी की नहीं, अपनी फैमिली से बहुत दूर होते जा रहा
1: है जी। ये तो बात है,
0: कभी बात नहीं करते हमारे सबके, इससे अगर रोकना है
1: जी,
0: इसको देना है
1: जी,
0: तो अपने को ऐसे को आध्यात्मिक जैसे ब्रह्म कुमार या ऐसे लोगों की आज जरूरत है, और आश्रम होना चाहिए,
1: होना चाहिए।
0: नहीं तो ये आने वाली जी जो जनरेशन है जी, वो बहुत मैंने चिंता का विषय,
1: चिंता का विषय। सही कह रहे हैं। और बहुत इस दुनिया ने हमको इतना ज्यादा अपने में ले लिया है कि बाहर की दुनिया तो
0: कुछ भी नहीं, वो अपने इसमें रहता है, कोई करने की जरूरत ही नहीं है
1: जी।
0: वो सोचता ही नहीं, घर में घुसा था ना, बाप से बात करता ना भाई से बात करता, यानी वो घर में भी अकल भी दूर रहता है
1: जी।
0: अब मोबाइल दूर से बात करने की ठीक है, लेकिन घर से इतना दूर हो गया कि वो सब भूल गया
1: जी।
0: कहीं कहीं तो हमारे तरफ सुसाइड कर दिया।
1: अच्छा,
0: सुसाइड कर दिया अगर मोबाइल नहीं लेके दिया।
1: हाँ जी, इस तरह की घटना,
0: इससे अगर निकलना है ये नई जनरेशन को, तो उसमें ऐसे एक आध्यात्मिक
1: संस्थान की जरूरत है,
0: बहुत
1: वातावरण की जरूरत,
0: आज उसकी आवश्यकता है
1: जी।
0: पूरा बदल गया।
1: सर मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे झाड़ी पट्टी के बारे में आपने बताया इतना पुराना आर्ट फॉर्म है, ऐसे भारत में बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, लेकिन अब क्योंकि हम इंटरनेट देखते हैं, टीवी देखते हैं, इसी में सब कुछ आता है, तो ये आर्ट फॉर्म्स का क्या रोल है हमारे जीवन में, और क्या हमको उनसे जुड़ना, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, क्या आवश्यकता है?
0: मैं तो बोलता हूँ आर्ट कोई भी, मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, एक जीवन का एक हमने सीखा है ब्रह्म कुमार आध्यात्मिक विषय में, हमें सनातन धर्म से
1: जी,
0: आदमी को हंसना बोले तो एक टॉनिक है, आधा माइंड उसका मेडिटेशन के लिए भी। तो हमारे क्या अब जो क्रियाशील है, जो असंतोष में पैदा हुआ है, जो हर दिन खेत में काम करता है, कोई भी यानी वो कहीं का भी रहे, लेकिन उसको कुछ संतोष की बात, अगर उसको कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जिसे बोलते हैं अपन, वो मन में लाना चाहिए। तो वो जीवन तो हर दिन जगना है, लेकिन वो जीवन जगने का तरीका क्या है, अपना जन्म, अपना जन्म किसके लिए है, वो जब तक उसको ये नहीं है, अब तो जीतो तो सब है
1: जी।
0: लेकिन जो जीवन की फिलॉसफी है
1: जी,
0: ये जैसे ब्रह्म कुमारी है हमारे नाटक से अच्छे आदमी माध्यम से
1: जी,
0: अगर ये जिया तो आने वाले जो जनरेशन बोल लो, आने जो पीढ़ी है, वो बहुत सुखी रहेंगी ना। तो बहुत ही क्या बोलते हैं टेंशन में आज का
1: जी,
0: इससे बाहर निकलना जरूरी है,
1: इससे बाहर निकलना।
0: उसमें कला संगीत
1: जी,
0: जैसे कला से संगीत में जैसे हास्य कला है, तो उससे भी आदमी को टेंशन आधा हो जाता, कम हो जाता। आध्यात्मिक दृष्टि से मेडिटेशन करना है
1: जी,
0: प्राणायाम करना है, जो कोई योगा है
1: जी,
0: ये आज के अगर इन माध्यम से जुड़ रहे बात, जो नया नए जो अच्छे अच्छे घर के लोग है
1: जी,
0: ये इस माध्यम में जुड़ रहे हो, कर रहे हैं, कि उनको भी मालूम है मेरे आने वाली जो पीढ़ी है क्या क्या करेगी। हर के मन में आ रहा है, मुझे बताइए जैसे मोबाइल हुआ, तो जो हम पिताजी है कोई लड़का अगर जा रहा है, तो उनमें से उनको उनको भी लगता है मैं बाहर निकलना चाहिए। तो उसमें माध्यम क्या है, एक तो उसको परिवर्तन से कोई आनंद दे
1: जी,
0: कुछ मेडिटेशन दे,
1: कहीं ऐसे जुड़े,
0: कहीं ना कहीं उसको यहाँ से निकलने के लिए दो ही तरीके, वो आदमी वहां से बाहर
1: निकल,
0: दो ही वजह निकलेगी इसमें गरज। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम तो क्या हम, लेकिन जिन लोग ये काम कर रहे हैं, जो गांव में बोलो, आसन में बोलो, जो कुमार के माध्यम से जो लोग जुड़ेंगे ना, तो तरीका वो ये माध्यम है बस,
1: बदलाव का,
0: बदलाव के लिए,
1: और बदलाव बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है
1: जी। सर अगर थोड़ा और हम झाड़ी पट्टी की बात करें, तो कैसे, मतलब क्या होता है, जैसे आपने बताया रामायण भी महाभारत भी, तो जो एक्टिंग आप करते हैं उस समय क्या, उसकी प्रिपरेशन पीछे क्या होती है, तैयारी कितने समय की होती है?
0: मैं अभी जो बात

0: लावणी आ गई।
1: हाँ जी,
0: यू नो महाराष्ट्र लावणी
1: जी,
0: लावणी हर हर घर में घुसी है। जब वो पिक्चर आती थी वही लावणी होती थी, तो वो ढंग से फिर नाटक आने लगे।
1: अच्छा,
0: और एक बात, दूसरी और बात जी, झाड़ी पट्टी का मैंने आपको पूर्व विदर्भ किया, तो वहां ही एक गांव गांव में लेखक राइटर पैदा हो गए। अच्छा। आज भी
1: जी
0: उन्हें लिखा हुआ नाटक, वही लावणी का नाटक, लिखने सब मैंने जो, अब उसने क्या किया, मेरा भांजा है
1: जी
0: सदानंद बोरकर, उसे गांव में एक सत्य घटना होती थी, देखो वो जो मेरा एरिया है ना
1: जी,
0: ये अंधश्रद्धा की बहुत बहुत अंधश्रद्धा थी उसमें। एक सुशिक्षित भाई ने अपने ये बुआ बाजी के उसमें जाके उसको दो दिन भूखे रखे बांध के धूप में, वो भी क्वालिफाइड लड़का था, इंजीनियर था, वो भी उसकी बीबी टीचर थी, लेकिन उसको कोई स्किन भेजा था पहले उसको, तो उसको लगा वो बुआ बाजी में गई तो उसमें वो मर गया धूप से। उसने एक नाटक लिखा माझ कुंकुम पुसल मराठी, तो ऐसे बहुत जो किसान की आत्महत्या हो, कोई अपने कौटुंबिक समस्या हो, एड्स हो, ऐसे पर अभी बहुत नाटक हमारे तरफ आई और चल रही, अभी भी चल रही, तो पैटर्न बदल गया। अभी वो धार्मिक पौराणिक नाटक चले गए, अभी इस ढंग से जो समाज परिवर्तनशील नाटक बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, और सौ कंपनियां भी है और हजारों कलाकार पेट भर उसके ऊपर, राइटर को जो लिखता है उसको भी रॉयल्टी मिलती है। तो ये ढंग से हमारे तरफ से अभी मैं ये जमाने में मैं कोई जैसे पुराना था उसमें नहीं, जैसा समाज का है तो वैसे मैं भी बदलता रहेगा, वैसे मैं पहले अभी कैरेक्टर रोल करता मैं।
1: अच्छा।
0: तो कॉमेडी करता जो रोल है मैं करता हूँ
1: जी। आपका फेवरेट रोल कौन सा है?
0: मेरा फेवरेट रोल है, मैं जो एक मैं बोला ना कि हमारे ऊपर वो जो नशा बंदी है
1: जी,
0: एकच प्याला।
1: ओके।
0: एक नाटक है, मैं अभी करता हूँ, मेरा फेमस है वो नाटक, बहुत हर साल मैं उसके ऊपर बड़ी डिमांड रहती है। वो एक नशाबाज बेवड़ा रहता है और दूसरे का संसार कैसा है, उसमें दारू का वो अपने परिसर में ये मत लोगों को बताते हैं दारू से कैसे चीज होती है।
1: अच्छा।
0: ये ढंग से है, वो वैसा ही रहता है वो, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, जो संसार बर्बाद होता है, तो उससे समझ जाता कि भाई ये नशा करना दारू वाला पीना कितना घातक है, तो वो बहुत बड़ा संदेश होते जाता है। तो मैं रोल हर साल एक तलीराम करके बाप एक रोल है
1: जी।
0: मैं जब से ज्यादा वही कर रहा हूँ, लोगों ने मेरे को उससे ढंग बहुत पसंद किया।
1: अच्छा।
0: मैं जब 22 साल का था तब से अभी तक वो रोल मेरे लिए मायना रखता है, मैंने एक उससे बहुत पब्लिसिटी वो रोल ने मेरे को दी है। और वो नाटक संगीत में नाटक है, कथानक अच्छा है।
1: अच्छा।
0: और वो मेरा जो दारू का जो मैं जो बात करता हूँ ढंग से
1: जी।
0: वो उसमें मराठी में आया हमारा वो।
1: अच्छा। तो मराठी में गीत के माध्यम से
0: मराठी बोलो।
1: हाँ बोलिए कुछ, अगर एक कोई डायलॉग या कुछ ऐसा
0: वही ना।
1: हाँ जी,
0: मराठी में चलेगा
1: जी जी जी।
0: ये जो नाटक है राम गणेश गडकरी बड़े साहित्यिक थे हमारे महाराष्ट्र में, और ये नाटक संगीत एकज पाल
1: जी,
0: इसको 100 साल पुराना नाटक है, आज भी चल रहा
1: जी,
0: संगीतमय है। तो उसमें एक अच्छा बैरिस्टर रहता है, वो पढ़ने जाता है
1: जी।
0: वो जब उसको कोई उसके ऊपर कुछ केस ये होता तो वो जरा डिप्रेशन में चला जाता है। वो उसका जो एक नौकर रहता तड़ीराम, तो वो बोलता है यार ये गम भूलना है तो एक बड़ी चीज है मेरे। अच्छा। पास और थोड़ी शराब पी के उसको उसका महत्व पढ़ा देता और अपने वो अपना क्लब तो एक मराठी में बात करता मैं। ये दोनों एक पदवीधर और एक ये बैठ के दारू पी के बैठे है, तो ताला सांग तो मुझे तो ताला दारू तो मरतो मने दारू सुटत नहीं, एकदा घेतली की मने दारू कधी सुटत नहीं, तेवढं ना दारू वाईट राइट बिशार का मने सुटत नहीं, भगीरथ दारू बद्दल बडबडणाऱ्या पेटी पुष्कळांना दारू काय चीज आहे हेच मुनी मला माहित, बर मी म्हण खरच एकदा दारू घेतली की सुटत नाही, तेवढं दारू वाईट कशी ठरतो, भगीरथ तुम्ही विश्वविद्यालयाचे पदवीधर आहात, 4 दिवस परीक्षा देऊन एकदाची पदवी मिळवता ती जन्माची चिकटते, म्हणून कुणी पदवी घेण्याचं टाकलं आहे का, तशीच बायको एकदा का नुसती लग्नमाळ गळ्यात घातली उभा जन्म बायकोचा लबेदा पाठीमांग बिलंबतो, म्हणून कुणी बायका करण्याचं टाकलं आहे का, अरे पदवी वाईट नाही बायको वाईट नाही दारूच तेवढी वाईट आहे का।

0: तुम्ही घ्या, तशा मनाला भगीर. मद्यपान नीतिमत्तेला फार पोषक आहे. पहा कसं, मद्यपी माणूस कधी खोटं बोलत नाही कारण त्याला खोटं रचून सांगताच येत नाही. मद्यपी माणूस कधीही कुणाची कुणार्जो चहाडी करत नाही कारण मागं कोण काय बोललं याची त्याला आठवणच राहत. आणि मद्यपी माणूस कधीही कुणाचा विश्वासघात करत नाही कारण त्याच्यावर कुणी विश्वासच ठेवत नाही. असे ते मराठीतले डायलॉग असतात. ते पात्रता म्हणजे नाटक फार सुंदर म्हणजे वाङ्मयी आहे त्या नाटकामध्ये. ते विद्यापीठाला पण होतं. असे परंपरेने आलेले नाटक आहे तुमचं. आणि दुसरी गोष्ट आहे मराठी भाषा.
1: जी सर, थोड़ा सा इसका हिंदी में समझा सकते हैं जो आपने बोला?
0: किसका
1: हिंदी आपने जो डायलॉग बोला?
0: हाँ, वो डायलॉग ऐसा है कि वो बोलता कि देखो एक बार गिलिए हमने नशा किए दारू पी तो बोली छूटती नहीं. अच्छा, लोग उसकी बदनामी करते हैं लेकिन उनके ये नहीं मालूम कि ये दारू क्या चीज है. वो भगीरथ तू विश्वविद्यालय का जो ग्रेजुएट है, पदवीधर है, चार दिन को आप एग्जाम दे के आप पदवी मिलाते हो, जनंबर चिकटती है, उसका कोई महारा नहीं करता.
1: अच्छा,
0: जैसे औरत अगर एक बार उसने माला डाल दी तो जनंबर आपके पीछे रहती हो, इसलिए मैं कोई औरत तो नहीं करने डाल दिया. अरे वो पदवी भी ये नहीं है, वो तुम्हारा ये औरत भी बुरी नहीं है, तुम्हें दारू क्या बुरी है. ये उसमें वो दो फायदा ऐसे है कि दारूबाज मानुष कभी भी झूठ नहीं बोलता.
1: अच्छा, झूठ नहीं बोलता.
0: हाँ, झूठ नहीं बोलता. झूठ बोल के यानी बहाना बन के बताने आता ही नहीं.
1: अच्छा,
0: ये जो मध्य आदमी जो दारूबाज आदमी है
1: जी, वो कन्विंस कर रहे हैं
0: उसको. वो कभी किसका तो लावाला भी नहीं करता, चाहड़ी नहीं करता.
1: अच्छा,
0: क्यों? कि कौन क्या बोला उसको याद ही नहीं रहता, नशे में
1: भूल जाता.
0: और तीसरी बात, वो किसका उसको क्या बोलते विश्वासघात है, नहीं क्या बोलते
1: विश्वासघात बोलते.
0: हाँ, विश्वासघात नहीं करता. क्यों? कि ऊपर कोई विश्वास ही नहीं रखता. ये उसके ढंग से
1: विश्वास ही नहीं करता तो विश्वासघात कैसे करेगा.
0: हाँ,
1: जी.
0: तो ऐसे तरीके से उनको
1: व्यंग यूज किया. हाँ, है
0: तो वो अपने को अपने वो क्लब वो आयरे मदिरा वो अपने क्लब में उनको अपने इसमें लाने के लिए ये बहाना करता है.
1: जी,
0: बताता
1: जी,
0: है.
1: हाँ,
0: लेकिन वो नाटक बहुत अलग ढंग का है.
1: जी जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है. लेकिन जैसा क्योंकि बहुत सारे अब हम सीरियसली उसको बात को कहें.
0: हाँ,
1: कि शराब नहीं पीनी चाहिए या इससे ये होता है.
0: हाँ,
1: तो शायद व्यक्ति नहीं सुनेगा या फिर वो
0: नहीं नहीं उसका जो उसका जो ये नहीं था एक पहला वो जो बताता है आखिरी में इतनी रचनात्मक बताया है. मैं क्या बताऊँ आपको, मैं वो तो मैं को याद नहीं अभी.
1: जी जी,
0: लेकिन जो उसका ये जो संदेश जाता है कि ये इतनी बुरी चीज है, उसमें जो लोगों के सामने जब उनका संसार आता है, बच्चे को मारता है, अपने बीबी को मारता है, और वो अच्छा क्वालिफाइड आदमी कैसे भीख मांगता है, और वो आदमी वो खुद पाई जिंदगी के समाप्त हो जाता. तो उससे जब बाहर निकलता है वहां से जो प्रेशर बहुत बड़ा इफेक्ट है, ये कितनी गंदी चीज है. एक अच्छे चलते चलते इंसान को कैसी जानवर बना देती है. ये संदेश जाता उससे.
1: ये संदेश
0: तड़ीराम भी मरता ना आखिर में.
1: अच्छा.
0: हाँ, उसमें उसमें आखिरी इन बहुत बच्चा पता है उसका. ये तो उसमें भाई ये जो नशा कितनी घातक हो सकती है. एक नाटक के माध्यम से हर बहुत बहुत से ऐसे कुछ हमारा अभी जो चल रहा है इधर एरिया में, जो हम किसान के बेटे हैं.
1: जी जी.
0: तो जो आत्महत्या चलते है नहीं करना चाहिए.
1: किसान आत्महत्या ये बहुत बड़ा विषय है, संपूर्ण भारत में.
0: है अभी हमारे.
1: जी.
0: तो उसमें नहीं भाई, उसमें एक संदेश आत्महत्या बोल लिया लोगों ने. कोई अभी जैसे हुंडा पद्धति जो रिश्वत ले गए, बहुत ऐसे ये है इस बारे में कि जो जो संसार में चलते हैं
1: जी,
0: दहेज वगैरह का, तो वो विषय लेकर अच्छा है. सब यानी सब जगह अच्छे रहते हैं. संदेश जाता है एक समाज को, नहीं भाई ये करने से क्या बुराई हो सकती है, ऐसे कर्म कर्म से कैसी होती है. तो ऐसे आध्यात्मिक लोगों से जुड़ते जा रहे हैं. यानी मेरी पट्टी रंगों में हम इनको मालूम है हमारे एरिया में तो हर गांव में नाटक रहता है.
1: अच्छा जी.
0: लेकिन हम माध्यम से वो जुड़े. अभी मैं तो थोड़ा परिषद मंडल में हूँ, अभी सेंसार बोर्ड का मैं सदस्य हूँ हमारे इसका. मैं एक 3 साल केंद्रीय फिल्म से इसका भी था. तो इस बारे में चलो अभी मैं इधर जो आया था अभी, तो हमारा वो क्या बोलते हैं 2 दिन सम्मेलन था
1: जी,
0: झड़ी पट्टी वो करके मैं इधर आया.
1: अच्छा, अभी खत्म.
0: बस वैसा ही इधर आया मैं. पूछो था मेरे को 9 तारीख बताए थे हमने, 7-8 को लिए वो.
1: जी जी.
0: तो मैं बोला 9 तारीख किसी का आ जाऊंगा, दीदी बोली 7 को जाना है आपको, फिर भी चलो मैं आता हूँ क्योंकि दीदी का मैं कार्य अच्छा है। मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को आने की तमन्ना थी, एक बार मैं तो एक बार गया हूँ, लेकिन हम भी जरा वो टेंशन में रहते इधर हर दिन के अभी उधर का उधर का, लेकिन ये आज मैं हर एक को बोलता हूँ अगर आपको मन शांति चाहते हो तो आप एक बार माउंट आबू जाओ, उनसे मिलो
1: सम्मेलन भी होते हैं। अच्छा, किस प्रकार के सम्मेलन?
0: नहीं, मैं जब पहली बार वो क्या हो गए थे, हमने जब मैं नाटक में आया जब तो हमने ये झाड़ी पट्टी विकास महामंडल नाट्य विकास स्थापन का मैं अध्यक्ष था, 15 साल था। उसके एरिया में ऐसा लगा कि चलो भाई अब ये जो हमारे नाट्य परिषद वगैरह उसके गवर्नमेंट उसके ही देता है उनके सम्मेलन होते हैं कि उस माध्यम से कलाकार इकट्ठा आ जाए, उनके कुछ जो कोई मनोबल है उसे उससे कुछ डिफिकल्ट है वो एक माध्यम से वो संदेश, क्योंकि वयोवृद्ध कलावंत मानधन नहीं मिलता था पहले।
1: अच्छा,
0: हमने उसको किया था। आज 5,000 रुपये एक कलाकार जो 60 उससे ऊपर हो गया उसको मिलता है।
1: अच्छा,
0: उनको उनको रीटा की मेहनत कुछ नहीं मिलता था ना।
1: हाँ, जी जी।
0: तो उसे कोई सुविधा है तो इसके वजह से, और जो नया कलाकार आता है जो इतने आज तो ढंग से, तो ये हमारे कुछ जो नाटक कंपनी है उनको कुछ अनुदान मिल जाए, बीमा कवच है उनको, अभी हमारा कुछ हर गांव में नाट्य गुरु बनाना चाहिए ऐसे, हाँ कुछ ये था, और गवर्नमेंट ने अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अच्छा चल रहा अभी। हमने 1,000 कलाकार आए थे
1: जी,
0: वो माध्यम से एक परिचय, और उसको कुछ कुछ समस्या रहती है
1: जी।
0: तो एक झाड़ी पट्टी रंगभूमि मंच हमारा अलग ही, और मेरे को जब से पद्मश्री मिला है
1: जी।
0: तो एक चर्चा हो गई भी झाड़ी पट्टी क्या है,
1: हाँ, जानना चाहते हैं अभी।
0: उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि झाड़ी पट्टी के मंच पर एक पद्मश्री मिलता है
1: जी।
0: तो एक दृष्टिकोण चर्चा तो होती है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो उसके माध्यम से मेरे को जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ झाड़ी पट्टी का जो ये और मैं भारत सरकार के ही मानता हूँ कि हमको भी कहीं नहीं लग रहा था कि पद्मश्री क्या है, क्या किसको मिलता है, लेकिन अभी वो हर यानी जब से मिला है तो ये एक पहचान बन गई झाड़ी पट्टी रंगभूमि की, इज्जत बढ़ गई, लोगों का देखने का दृष्टिकोण बदल गया और इधर के लोग आने लगे अभी झाड़ी पट्टी में देखने लगे। अब एक झाड़ी उड़ करके पिक्चर भी निकला हमारा।
1: अच्छा,
0: हाँ, झाड़ी उड़।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: वाह।
0: और कई लोगों ने PhD के डॉक्टरेट भी लिया उसमें, तो एक चल रहा है ना, बहुत लोग आ रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो दृष्टिकोण अगर अच्छा है, इसलिए ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट था कि सब कलाकार नेपथ्य वाला है, तबले वाला, पिटी वाला, सब हर प्रकार का जो योगदान देता है झाड़ी पट्टी में
1: जी।
0: उसके लिए ये सम्मेलन वरदान है,
1: ये सम्मेलन वरदान है बिल्कुल। ये बहुत मतलब हम कम सुनते हैं कि इसमें रिटायरमेंट के बाद इस तरह की कोई व्यवस्था हो, ये शायद ही कहीं कभी सुनाई नहीं देती इस तरह की।
0: हमारे महाराष्ट्र में है
1: जी,
0: हमने पहली भी शासन ने भी बहुत, हमारे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कला लोक कलावंत एरिया, तो उस वक्त क्या था उन्होंने 3 भाग में विभाजन किया था
1: जी।
0: ये अ ब क, अ वाले को 27, ब वाले को 22 और क वाले को 16 के 1200 ऐसे मिलते थे। तो अभी हमारे सांस्कृतिक मंत्री हमारे जिले के थे सुधीर बाबू, और मैं वो सम्मेलन का अध्यक्ष था
1: जी।
0: पिछले साल तो आखिर के जो समारोह के दिन में हमने बोले कि सर ये अभी तीन ये भाग ये सब मतभेद मत करो
1: जी।
0: और आज 1500 में क्या होता है, कुछ तो बढ़ा दो, एक रकम कर दो। तो 5,000 रुपये उन्होंने किए अभी चल मिल रहा फारे को अभी। और हमने ये जो सम्मेलन किया कि अभी और मांग ये किया कि भाई ये 5,000 में कोई नहीं होता, उसका कोई गुजारा नहीं होता
1: जी।
0: तो इसमें वो फायदा है
1: जी,
0: गवर्नमेंट को सोचना पड़ता नहीं, इनको जो मांगने रखी है इसमें करना पड़ता, तो ये उसका बड़ा फलित है,
1: बहुत बड़ा बेनिफिट है जी जी।
0: उनको न्याय मिलता है, और वो संदेश वहां तक जाता है
1: जी।
0: हाँ,
1: उनकी बात पहुंचती है,
0: बाहर पहुंचता है
1: जी। सर, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि हम जब भी भारत की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, और आपने भी बात की आज के समय कितना चेंज आ गया है, बहुत चीजें, तो क्या इस तरह की जो आर्ट फॉर्म्स हैं जो बहुत ही कई जगह तो विलुप्त हो रही हैं, कई जगह तो परिवर्तन इतना ज्यादा आ चुका है कि उसको ओरिजिनल फॉर्म भूलती ही जा रही है एकदम, तो क्या आपको लगता है कि ये भारत की संस्कृति को रिस्टोर करने में कोई भूमिका निभा सकता है, इस तरह की कलाएं? नहीं,
0: मैं जो बोल रहा हूँ कि अभी क्या होता है, ये नए नए जब ये जो मीडिया आया
1: जी,
0: टीवी आया
1: जी,
0: मोबाइल आया
1: जी,
0: तो उसमें ये जो अपने जो कल्चर है
1: जी,
0: ये बहुत दूर चला गया। 60 वर्षों में जो मनोरंजन के साधन हो गए, तो अपन अपनी संस्कृति अपनी हैसियत भूल गए
1: जी।
0: ये बिल्कुल ये लिए मैं बता दूं, तो ये इसके लिए वही बोल रहा हूँ कि उसके लिए मैं करना क्या चाहिए। अभी तो इतना बढ़ गया कि कोई मानने को तैयार नहीं है
1: जी।
0: ढंग से हम चले, हम जो भारत जो हमारा प्रेम है, हम यहाँ के नागरिक है, स्वतंत्रता मिली है, बड़े बड़े लोगों ने त्याग दिया है, जो कोई जो बात हो बात तो हमारे भारत में रहती है, भारत की जो संस्कृति है
1: जी,
0: धर्म जो अपनी अनेकता में एकता है
1: जी जी,
0: वो करने के लिए तो भी आज का युवक जरूरी है। और मेरा ख्याल है धीरे धीरे ये अगर माध्यम होगा तो ऐसे माध्यम से, कुंदादाई के माध्यम से बोलो, ऐसे में उसको एकत्र लेना, उसको समझा देना ढंग से, समझना जरूरी है। वो समझ में आ रहा अभी,
1: अभी
0: समझ में आ रहा। मैं भी जिस खेड़ में रहता हूँ आज, लोगों को समझ में आ रहा जो हो रहा आजू बाजू में, अपने जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी अपने कुछ मुल्क है, तो उसमें जो हो रहा है
1: जी,
0: तो उससे एक संदेश उसके वो उसको वो लाइन पे लाने के लिए जरूरी है, ये संस्कार जरूरी है,
1: संस्कार जरूरी है।
0: तो अब कर रहे जेदी मानसिक कर्म, आध्यात्मिक विषय से बोलो तो ये हो रहा परिवर्तन,
1: आध्यात्मिकता को अब स्वीकार है,
0: जो हो रहा ना अब अड़ोस पड़ोस में अपने, तो उसका उपयोग हो रहा नई पीढ़ी को
1: जी,
0: सोचने को मजबूर कर दिया। अगर हम इस ढंग से नहीं चले तो अपना क्या होगा,
1: अपना क्या होगा जी,
0: तो ये सोचना जरूरी है। और ये काम कोई अकेले ब्रह्म कुमारी का नहीं है, कोई उनका नहीं है, अब सबका है।
1: बिल्कुल,
0: ज्ञान तो आप दे रहे हैं, लेकिन आप वहां ले पीना नहीं पीना पानी, वो उनका तैयारी रखो, प्यासे हो आप, उसके लिए तो जरूरी है नहीं बात। तो ये नए जो कुटुंब प्रमुख होगा, कोई अपने जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे जैसे संस्था, एक एकता में आने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए करना, जब शुरुआत तो है, मैंने मैं तो बोलता हूँ वो तो हो जाएगा, क्योंकि जब एकदा जो क्या बोलते जो देखते अपन
1: जी,
0: जो परिणाम
1: जी,
0: उसका रिपीट होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: तो वो तो जरूरी है आज के लिए, ये जरूरी
1: है, ये जरूरी है। सर एक और चीज जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि पद्मश्री जब आपको अवार्ड हुआ, वो अनुभव कैसा था, उस समय कैसा वातावरण था, क्या आप फील कर रहे थे उस समय?
0: मेरे को तो क्या हो गया, मैं पहली बार जब कोई भी पुरस्कार रहे
1: जी,
0: जैसा आप ये फंक्शन कर रहे हैं
1: जी,
0: कोई भी उसको एक पुरस्कार जब मिलता है तो एक प्रेरणा मिली। जब मेरे को स्मिता पाटी पुरस्कार मिल गया
1: जी,
0: उसके नाम पर, दूसरा मेरे को कलादान पुरस्कार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया, तीसरा पुरस्कार मेरे को क्षेत्र में जा, क्षेत्र में मैं अच्छा किसान हूँ, इसमें मैंने उपजत किया, तो उसके में क्षेत्रनिष्ठ पुरस्कार महाराष्ट्र शासन का मिला
1: जी।
0: मेरे को समाज भूषण बाबा साहब अम्बेडकर भूषण पुरस्कार मिल गया,
1: अनेक पुरस्कार,
0: ये मेरे महाराष्ट्र के पुरस्कार, बहुत 40-50 की लिस्ट है अभी। लेकिन जब हमको लगा कि अभी जब डायरेक्ट बोलता हूँ कि ये जो सरकार आई है
1: जी,
0: तो पहले ऐसा लगता था कि भाई ये जो पुरस्कार, ये बड़े बड़े क्रिकेटवीर, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े उद्योगपति, उनको ही जाता होगा, पद्मश्री क्या आपको मालूम भी नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने एक ऐप निकाला था कि यहाँ का बोले भारत का कोई भी नागरिक जिसका जिन्होंने कार्य किया है, कोई सेवा की है, अपने अपने इसमें फील्ड में उन्होंने नाम कमाया है, वो आप कर सकते हो, तो ऐसे मैंने मजाक मजाक में वो ये सब लेके भेज दिया
1: जी।
0: और मेरा नक्सलड एरिया पूरा वो ढंग से मेरे को शायद हो सकता है, वो इन 50 साल उन्होंने कार्य किया, इतने साल से इन्हें अवार्ड मिले, और नक्सलड एरिया में रहकर ये इतना 50 साल से कर रहे
1: जी।
0: तो वो ढंग से मेरे को जब मिला
1: जी,
0: तो मैंने मेरे को पत्रकार ने आए मेरे घर को, बोला आपको कैसा लग रहा, टीवी पे आ रहा आपको, मैंने कुछ नहीं, मैं बोला देखो ये मेरा अकेले का नहीं है, मैं 50 साल ये झाड़ी पट्टी रंग में ये जो पूर्व विदर्भ है मैं घुमा हूँ, और 50 साल जो निकाला मैंने, इसका कारण ये कि जिस ये जो मेरा प्रेषक वर्ग है
1: जी,
0: रक्षक वर्ग है, उन्होंने मुझे प्यार दिया, 50 साल तक मेरे को उन्होंने ऊर्जा दी, मेरे नाटक को आई टिकट निकाल के गर्दी की
1: जी,
0: बोला वो ये सब जो आज जो चल रही है उनके मान सम्मान झाड़ी पट्टी का, वो उसका हकदार वो है, मैं ये मेरा पद्मश्री उनके चरणों में अर्पण करता हूँ, ये मेरी पहली प्रतिक्रिया। और बाकी तो अपने कुटुंब में जो मिलता है जो मिला तभी, तब से मैं तो अरे मरे यकीन ही नहीं था कि मेरे को पद्मश्री मिल सकता है एक सामान्य आदमी को, लेकिन मिले।
1: आपने जो 50 वर्षों से भी ऊपर जो एक कला को समर्पित किया,
0: हाँ,
1: आपका जीवन,
0: तो मैं ये बोल निस्वार्थपन से करो ना दीदी, वो भगवान उनको देता है। मेरे बारे में मैंने कई पैसे की लालच नहीं किया, मैं जितना दिया उतना लिया, लेकिन जाता था नाटक, लोग बुला नहीं जाता था, कोई पैसे भी कोई अपेक्षा नहीं थी, मैं करते रहना घर, तो 8-8 दिन घर नहीं जाता था मैं।
1: अच्छा,
0: उसके पीछे मेरी बीबी आई बीच, उनका भी बड़ा सहयोग है, मेरे भाई का, मेरे गांव में सरपंच था 15 साल गांव का, 15 साल फिर भी मैं वो उनका भी काम करता था। तो कोई काम लगन से करो ना, निस्वार्थ करो, तो उसको भगवान उसका मिल देता है,
1: फल देता है।
0: हाँ
1: जी।
0: अब मैं आज आया
1: जी,
0: मेरे को अभी खैर मैं आऊंगा करके, लेकिन भगवान की इच्छा हुई, चलो आप माउंट आबू आपको जाना है
1: जी।
0: मैं तो टाल दिया था पहले, पूछो तो ये कभी कभी आदमी कर्मी भी ये हो जाते, इतना बड़ा ये आप मेरा एरिया देखोगे आप उधर आओगे तो बड़े कहाँ आके बैठ गए, कभी कहा साला शेर निकलेगा, कभी आएगा ये।
1: अच्छा।
0: हाँ
1: जी।
0: तो ये इसमें रहकर मैं कभी साइकिल पर, कभी नाव पर, कभी ऐसे चलते थे रात भर नाटक करके घर के वापस आना, और दूसरे को नॉन स्टॉप करता था मैं 3-4 महीने
1: जंगलों के बीच,
0: जंगल के बीच में भाई 50 साल के एक नाटक किलोमीटर, दूसरा इकड़े मोटरसाइकिल जाना, कभी कभी रेंगे पे जाना, कभी डोंगे पे जाना।
1: तो आपको डर नहीं लगता था कभी?
0: गया था मैं, वो जमाना अभी तो रोड बन गए
1: जी,
0: उस वक्त नहीं था, मैं 70-80 की बात कर रहा हूँ, बहुत जंगल था अभी भी है, ताड़ोबा है जंगल हमारा, नागजीरा है, हमें जंगल इनका ताड़ोबा देखने लायक है, वहाँ फेमस है हमारा, इधर नागजरा है, नयगांव बांध है, बड़े बड़े हमारे जंगली एरिया वो हमारा
1: जी।
0: लेकिन हमको अच्छा लगता है अभी
1: जी,
0: जब से कोरोना आया ना तब से हमारा एरिया अच्छा लगता है कि वहाँ खुला हुआ साक्षर मिलता है।
1: सही बात है,
0: अभी बहुत बदल हो गया अभी।
1: तो इतने महीनों जब आप बाहर रहते थे, और मतलब क्या लगातार पूरी रात अलग अलग अलग अलग जगह कार्यक्रम?
0: हाँ, आज अलग नाटक का, अलग मेरे को नाटक का नाम भी नहीं मालूम था।
1: अच्छा,
0: अभी तो कंपनी होगी, मैं जब जिस मैं जो 25 साल मैंने काम किया होगा वैसा ही किया कि आज यहाँ नाटक, परसों वहाँ अलग अलग कलाकार, कौन क्या कर रहा जाके, मैंने डायरेक्टर नहीं सका, डायरेक्ट जाना था।
1: अच्छा,
0: अभी तो डायरेक्टर बन गया, आज लोग सब रिहर्सल लेके नाटक तैयार करते, हम दोनों वैसा नहीं था, वो गाँव में 4-5 कलाकार, बाकी हम जाते थे क्या है बताओ।
1: अच्छा,
0: लेकिन वो एक मैं बोले कि महाभारत रामायण वही नाटक होते रहे, तो वो कभी भी फिर वो मेरे को पूरे कंटेस्ट हो गए। लेकिन अभी जब से ये लावणी प्रधान आ गया था, अभी अब थोड़ा क्या हो गया, वो थी होशी रंगभूमि, अभी ये 20 साल से थोड़ा कमर्शियल हो गई पूरी, पहले जो गांव के लोग करते थे वो गई अब होशी, अभी वो क्या करते हमारे वर्षा में बड़ी बाजार जो हॉलीवुड पिक्चर निकला गया नहीं, तो बड़े वो उसका मार्केट है, जहाँ दुकान अपना आप लेके बैठे है नाटक के 4-5 नाम कलाकार के नाम, और वो जो लेने वाले आदमी फिर उनको एक दिन के लिए 40-50-70-80 रुपए लेके गांव में नाटक करते हैं, हर गांव में नाटक होता है। तो वो आ गया अभी व्यवसायिक, तो उसमें अगर तुमने थोड़ा भी गलती कर दिया तो पैसे नहीं देते, इसलिए अभी कंपटीशन बढ़ गया है,
1: कंपटीशन हो गया,
0: एक एक गाँव में 12-12 नाटक होते, गिनीज बुक में है, गाँव में 4 तो होते, 2 तो होते चाहे गाँव में, क्योंकि वो पार्टी का अलग, ये पार्टी का अलग, वो पार्टी का अलग, ठीक है। तो अभी उससे हमारा कोई मतभेद नहीं रहता, क्योंकि चलो कलाकार का पेट भरता है
1: जी, जी, जी।
0: एक गांव में 4 रन होना बोले तो क्या बोलते, कलाकार तो 150 का हो गया ना उसमें
1: जी, जी।
0: तो उसमें कोई मतभेद नहीं, वो करते
1: मिलजुल के, मतलब
0: मिलजुल के करते, उसमें कोई बड़ी बात
1: जी, जी। मतलब 12-12 नाटक भी,
0: और उसमें मैंने बोला कि उसमें खाली नाटक नहीं है
1: जी,
0: तो वो ढंग से जो मेहमान आते हैं लड़की देखने, वहां फिर शादी जुड़ती है, नए जावई दामाद गांव में आते हैं, कोई देखने आती लड़की, ऐसे ही वो भी चलता है उसमें।
1: हाँ।
0: वो भी एक सामाजिक कार्य का एक फायदा है उसमें,
1: जैसे वो एक पूरा सामाजिक कार्य
0: हो गया, क्योंकि हर साल में एक बार नाटक गाँव में होता है।
1: अच्छा,
0: तो एक वो गाँव वाले के लिए वो एक तो यार ये मेरे गांव में नाटक हो रहा है, अरे चलो मेरे गांव में हूँ।

0: बोला जाओ या जाओ, मेरे बहन आ जाओ, मामा जी आ जाओ, गुरुंग जी वो एक निमित्त शिव आते हैं, उससे सबर विदा भी होती, बढ़िया विदा की
1: खातिर भी होती।
0: हाँ, तो एक संस्कृति इसके पीछे
1: जी, भारत की भी संस्कृति ना, मेहमानों को बुलाना, देख रेख करना,
0: हाँ, उसमें तो शादियां जुड़ती है ना
1: जी।
0: ये परंपरा चल रही है अभी भी,
1: परंपरा अभी भी चल रही है।
0: थोड़ा ढांचा नाटक का बदल गया
1: जी जी जी,
0: पूरे अभी क्या बोलते उसे व्यावसायिक होगी
1: जी,
0: वो ढंग से नाटक भी सादर करते हैं
1: जी। सर जो भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई भी भारत के युवा या गांव में रहने वाले युवा, बहुत लोग सोचते हैं कि हमको जीवन में, हम गांव में रहते हैं हम क्या करेंगे, या फिर ठीक है अब जीवन यही है तो वो भी मान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं कि ठीक है यही है, नशा कर रहे हैं या आदत पड़ गई है, दोस्तों के साथ है, तो उनको लगता है कि ठीक है हम कोई शहरों वाले थोड़ी है ना, हम वहां जाएंगे, हमारा जीवन यही, तो कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा बहुत अंशी मेरा जो कार्य है वो देहात में गया
1: जी,
0: मैं बहुत नजीक से देखता हूँ उसमें तरुण को, लेकिन आजकल क्या हो गया, एक बड़ा मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे को लोग मजूर नहीं मिलते, एक तरफ ऐसा भारत है वहाँ, दो भारत है, इधर मजूर नहीं मिलते, इधर कई वर्ग जाता हूँ तो भिखारी का है कि मैं जब चार लोगों को पालना चाहता हूँ, मेरे खेत पर बुलाना चाहता हूँ, नहीं आता, क्या कारण है? ये लगन नहीं, मैं कहता हूँ हमारे गांव, मेरे गांव में जो कि लड़का ऐसे कि जो रात भर नाटक में काम करते, दिन भर खेती करते, अपने व्यवसाय करते, तो आजकल कोई भी सरकार तो हर एक को नहीं दे सकती ना, तुम स्वावलंबी बनो, ये तो बड़ा, मैं तो बड़ा ये झाड़ी पट्टी रखी तो बड़ी एक बड़ा एरिया है जहाँ आपको अगर आत्मिक कोई गुणवत्ता हो, आप अच्छा, आपको गला है, आपको अभिनय आता है, आपको अच्छा कोई, आप पेंटर हो, आप अच्छा बाजा बजाते हो, तबला बजाते हो, सबके लिए तो खुला है, उनको होना ही है ना। अगर ये मैं तो तुम काय को नौकर, और नौकरी तो इतनी बड़ी कोई जो नहीं लगता, आजकल डोनेशन दो, पैसा भरो, ये भी भ्रष्टाचार बहुत चल गया है, कोई ऐसी कोई ऐसा नहीं लगता कि ये लोग तो उनसे टाइम उसमें जो अर्जी जिंदगी चली जाती है उनकी, ना ये ढंग से एक ना गायक बन सकता है ना उधर नौकरी कर सकता, तो एक लगन से अगर आपको अच्छे है, आपको अभिनय आता है, तो आप उतर जाओ सीखो, और आज का शहर में भी ये जिंदगी बिताना बहुत कठिन काम हो गया
1: जी,
0: इतना सरल नहीं रहा, तो मान से अपने परिवार बोलो, अपने आए बाप जो माँ बाप रहते तो उनके सामने अगर आप अच्छा कमाएंगे, एक लगन से काम करेंगे, आज बहुत बहुत है ना, मैं तो कहूँ नहीं जमते जाओ मिलिट्री में, देश की सेवा करो, क्या क्या पर आपका को, आप तो आपके मुफ्त खाने की बात हो गया
1: जी,
0: एक रुपए कर चावल दो, तो कर ये दो, अरे को देखने का, अरे वो तेरे पिताजी के लिए है, काम नहीं उनके लिए, तू क्या मनता है, खुद की पहचान अगर तेरे करना तो सोचना मेरे में क्या है, अगर तू अच्छा मजदूर बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा गायक बन सकता है, अच्छा कलाकार, खुद को पहचानने की जरूरत है, मेरे में क्या है, इस कम है तो मैं कैसा, इसके लिए कोई गाइड गुरु की जरूरत होती है, शांत उन्होंने सोचना चाहिए, ये अगर आपने गुरु ढूंढ ले अच्छे इसमें ये गए, आपको अच्छे मार्गदर्शन मिल जाएंगे, अपना क्रोध तुम कंट्रोल होते हो, ब्रह्म कुमार तुम्हारे इसमें पढ़ाया जाता है, क्रोध का क्या अर्थ है, शांति कैसे बनाए चाहिए, उसका फायदा उसको हो जाता है उसमें, अगर पहले से आप अगर निगेटिव सोच रहे हो तो कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव सोचो,
1: पॉजिटिव सोचो, अपने अंदर अपनी पहचान
0: हो, मैं कौन हूँ, अगर वो बन गई तो वो बन जाता, टाइम लगेगा थोड़ा, हमारे पता वैसा नहीं था, कंपटीशन कम था
1: जी।
0: अभी बढ़ गया,
1: अभी तो बहुत
0: बहुत है, हमारा हम तो भाग्यशाली के हम चले गए, अभी तो तुम्हारे बाप आज दूसरा बिला बुला आता है, सुनो कंपटीशन, तो खुद को रखो,
1: मजबूत रहना होगा,
0: प्रेजेंटेशन करो खुद को, मैं क्या हो, आत्मा बल बढ़ा, तो उसमें अगर ये मेडिटेशन तो आप ये ज्वाइन करो ब्रह्म को, वहां आके अपना ये करो, उसमें तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ना आपको, आप जो भटके हुए आपको जो विचार मन में नहीं ये होते उसको तो एकत्रित, उसमें कैसा मैं यहाँ से मैं जाऊँ, तो वो ये के ही है
1: जी। तो बहुत सुंदर आपने बात कही, और मुझे लगता है युवाओं के लिए बहुत ही बहुत जरूरी है,
0: जरूरी
1: है, खुद को खोजना, खुद को पहचानना, मेरे अंदर क्या है, और जैसा आपने कहा समय लग सकता है, लेकिन पॉजिटिव
0: पॉजिटिव इम्पोर्टेंट,
1: उसके लिए मेडिटेशन या आप हाँ। कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। मेडिटेशन तो बहुत ही मदद करता है
0: आज की जरूरत है।
1: युवाओं को भी हम सोचते हैं कि शायद हम कभी बुजुर्ग हो जाएंगे तो हाँ, हमें करेंगे तो ऐसा ही
0: आपके बच्चे भी वही हर
1: कोई
0: आना जो, जो जैसे परंपरा चल रहा था वो अभी वो परंपरा बदलने को होना ना
1: जी।
0: पुराने तो हम नहीं बोलते कि पुराने लेखों का, लेकिन जो जैसा जैसा जमाना बदल जा रहा उसमें से अपने खुद को बचा के
1: जी खुद को बचा के भी
0: रखना। साइड को बचा के खुद यहाँ से तैर, ये तो महासागर है
1: बिल्कुल,
0: यहाँ से तैरना निकलना तो आपको कोई ना सहारा लेना पड़ेगा।
1: सही बात है,
0: बहुत मार्ग है तेरे पास है लेकिन तू तू तू दिखता नहीं ना, वो गलत है। तेरे मोबाइल ही दिखता है,
1: मोबाइल ही दिखता है। सही बात है,
0: क्या नहीं वहाँ भी है वो खोज जी। मोबाइल के अच्छे ना, मोबाइल में सब कुछ है।
1: सही बात है, उसका भी नुकसान आज
0: वो नहीं देखता,
1: भुगत रहे हैं बहुत ज्यादा युवा पीढ़ी भी और समाज भी। सर बहुत मोटिवेटिंग आपकी कहानी है और आपने जैसा आगे बढ़ाया है एक कला को ही नहीं बल्कि एक जीने के तरीके को
0: हाँ।
1: जीवन शैली को। सर जाते जाते आपसे एक और छोटा सा राउंड हम करना चाहेंगे ऑडियो इस इंटरव्यू में, इस आप इस बातचीत में, कि मैं कुछ एक शब्द कहूंगी आपसे और उस शब्द को सुन के आपके मन में एक कौन सा शब्द आता है वो आप बताइएगा, कि इसका जवाब आपको एक शब्द में देना है।
0: एक शब्द में?
1: हाँ जी हाँ। कि ये शब्द सुनकर आपके मन में कौन सा शब्द आता है वो आपको बताना है।
0: अच्छा
1: जी, तो पहला शब्द है झाड़ी पट्टी।
0: झाड़ी पट्टी पूरा रंगभूमि।
1: पूरा रंगभूमि। भारत।
0: मेरा भारत महान।
1: मेरा भारत महान। कला।
0: हा?
1: कला।
0: कला तो जीने का सहारा है।
1: जीने का सहारा।
0: पॉजिटिव थिंकिंग।
1: युवा।
0: युवा आज का बोले तो आज का युवा भारत का आधार स्तंभ है, भारत उसको बनाना है।
1: बनाना है,
0: बनाना है। और हम हमारी जो पीढ़ी उनकी चाहते कि ये कुछ ना बन जाए। युवा बोले भारत, यंग भारत।
1: यंग भारत, क्या बात है। और अगर मैं आपसे कुछ शब्दों में जानना चाहूं कि आप कौन हैं, आप अपने बारे में क्या?
0: मैं भारत माता का सेवक हूं
1: जी।
0: मैं खुद को भाग्य से मैं भारत जैसे देश में जन्म लिया
1: जी।
0: और मेरे भारत में जैसे सनातन धर्म की एक परंपरा है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, खाली भारत में ही मिलेगा आपको ये
1: जी।
0: जैसे माउंट आबू में आया है, जो आध्यात्मिक देखा मैंने, तो ये कई कल्चर दूसरे देश में नहीं मिलेगा। जीने का सहारा ये है, इसमें भागवत करता हूँ। मेरे भारत में सही रास्ते में लाने वाली बहुत संस्था है, ब्रह्म कुमारी जैसी है, ये मैं भाग्यशाली श्रेष्ठ हूँ
1: जी। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं इस मामले में, इस भूमि पे जन्म,
0: भूमि में जन्म
1: जी।
0: भारत माता है, माता काली, इसलिए विश्व माता बोलते हैं। भारत बोलते कहीं नहीं बोलती, यहाँ सिखाया जाता है माता क्या है, मेरी माँ है,
1: मेरी माँ है।
0: और माँ के सामने सब बराबर होते हैं
1: जी। बहुत सुंदर बात किया आपने, माँ के सामने सब
0: बराबर,
1: सब बराबर है।
0: पहले भारत माता के पुत्र है, माँ है हमारी, कोई माने ना माने, अगर ये हम सब अनेकता में एकता का प्रतीक यही है, वो माँ का माँ है
1: ये शब्द माँ, क्योंकि हमने भारत माँ है तो
0: भारत।
1: बहुत सुंदर सर, आपका जीवन काल बहुत ही लंबा, आपने जो समय व्यतीत किया जैसा आपने बताया, कई रातें लगातार और वो जीवन जीते जीते झाड़ी पट्टी को प्रमोट करते करते युवाओं को उस नक्सलाइट एरिया में उस जीवन शैली से निकालना, बचाना, सकारात्मक दिशा देना।
0: भैया मैं जब यहाँ से 22 साल का था, मैं जब मैंने डॉक्टर के पास की गांव में गया, वहाँ पूरा जब मैं सरपंच बना गांव का, पूरा वो आदिवासी, तो उनका पूरी श्रद्धा पुजारी फुकपक बुआ बाजी। जब मैं कहीं घर को जाता था, बोले इंजेक्शन को, बोले उनके दे दो, मैं उनको पुजारी ये करके देगा, तो निकालना कैसे। वो पूरे इन ढंग से बुआ बाजी के इसमें गए थे, चमत्कार क्यों नमस्कार। तो मैंने कुछ मैजिक शो सीख लिया था।
1: अच्छा।
0: और वो करना चालू कर, फिर जो दुर्गा उत्सव हो, गणपति हो
1: जी।
0: ये उसका भी रहस्य भी एक, वही जैसे गुदबत्ती कैसी घूमती है, ये रुमाल हवा से ये कैसा आता है, चैन कैसी निकालते है, वो गणपति दूध कैसा पीता है, ये सब उसको अगर बोलो आश्चर्य लगता था
1: कैसे हो रहा है।
0: लेकिन ये सब थोतांड है जब उसका ये कर रहा था, अरे भाई ये तो साले जी ये साइंस क्या है उसके पीछे बनी है। मैंने को उसका वो भी कार्य मैं अभी भी कर रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आप करके बताते
0: बताते हो। हाँ। मैं टीवी पर अभी आया परसों, मेरा इंटरव्यू हमारे महाराष्ट्र में, तो मैंने वो भी करता हूँ, मेरे को उसके भी मद्रास में किया था।
1: अच्छा।
0: मैं अभी पुणे में मैं उसका शो किया था, मैं उसके लिए कोई ये नहीं, मैं उसके लिए वो उनके लिए करता हूँ जो अंदर सदा के निर्मूलन के जरिए मशाम मानव हमारी, तो वो भी मैं किया
1: जी। उनको बाहर निकालने बाहर के लिए उस अंधश्रद्धा से
0: पूरा, हम नहीं, पूरा जो देहाती पहले था वो इसमें जाता था, डॉक्टर भरोसा नहीं, लेकिन पुजारी को भरोसा नहीं था। उसमें हम नाटक में मरीमाई का भूतिया,
1: अच्छा
0: एक नाटक आदिवासी परंपरा का नाटक है, सत्य घटने पर आधारित है, जो नरबड़ी कोई ज्यादा उत्पादन होने के लिए पहले उधर हमारे एरिया में आदमी को काटते थे, कोई एक सत्य घटने पर आधारित था, मरीमाई का भूतिया, मरी माँ एक रही थी उसको पटेल, उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई, नक्सल एक्ट का हमारे ऊपर अटैक हो गया।
1: अच्छा।
0: कोर्ट में गए इसके लिए, हम कोर्ट को न्यायाधीश को बताया है इस बारे में, बोले इसमें कोई ये जो इसमें से परंपरा किसी गलत है ये हम बताना चाहते हैं, उसमें वो आदिवासी को बाहर निकालना करके, तो उन्होंने भी फिर भी उसके बहुत यानी क्या है कोई नकारात्मक ये हुआ तो उसको बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है, तो वो इतना नाटक चला कि वो भी हमने की।
1: क्या बात है, ये तो बहुत
0: बहुत अच्छा काम किया,
1: बहुत बहुत ही अच्छा
0: वो पूरा वो आदिवासी संस्कृति में वो नाटक आदिवासी भाषा में था, वो जो बोलते थे ढंग का वो जो उनकी अलग भाषा है आदिवासी, क्योंकि मराठी अलग बात करेंगे
1: जी।
0: तो वो ढंग से उन्होंने लिखा और वो पूरे कलाकार आदिवासी थे हमारे, उनका पूरा जो आदिवासी का जो साज था बजाने का वो भी पूरा साज जो उनकी संस्कृति बजाते है देवगढ़ से वो पूरा हमने लाए थे, उसका बड़ा इफेक्ट हो, बहुत दिन हो गए नाटक अभी लेकिन बहुत चला
1: उसका बड़ा असर पड़ा,
0: बड़ा असर पड़ा, और हमने उसने भी निकाले जो नक्सलाइट में हमारे ऊपर पूरा भैंस का डाला था, लेकिन हमने उनको भी दिखाया, इसमें कोई बोला बुराई है ही नहीं सर, हम तो लोगों को समाज को निशान बाहर निकालना चाहते, ये जो परंपरा है बोले उत्पादन बढ़ने के लिए कुछ बोले आदमी को काटना पीटना अपनी देवी को करने थोता नहीं है, उसके वो जो पटेल था आदिवासी उसकी लड़की उससे बंड करती है, इसमें ये बुरी क्या बात थोड़ी है, बोला
1: वो पूरी कहानी है,
0: कहानी है।
1: जी। तो आपने उनको भी समझाया?
0: हाँ। तो वो हमने वो ढंग का भाई वो ये मरी मैं जब होती
1: जी
0: बहुत पुराना नाटक जब तुम नाटक में कहूँ उसमें बहुत नाटक चलाओ
1: जी,
0: तो उसमें नक्सलाइट ने हमको धमकी दी थी हमारे ऊपर आपके तरफ नहीं है।
1: अच्छा, उनको लगा होगा कि उनकी
0: हाँ, तो वो हमको फायर मिलिट्री खाली हम नाटक कर रहे हैं, फिर कलेक्टर को देखा है हमने सेंसर बोर्ड को और मिलने बोली इसमें कोई है ही नहीं, बाद में वो मान गए,
1: ये तो उनके बेहतरी के लिए कल्याण के लिए
0: आपके आपके अच्छे के लिए नाटक
1: अच्छे के लिए
0: ये जो थोता नहीं है, जब बुआ बाजी फुआ बाजी ये जो आपको पुजारी बताता है नर आदमी को काटना कहाँ से उत्पन्न होती है, आदमी को काटना गलत है ना,
1: बिल्कुल
0: वो सत्य घटना थी
1: इस तरीके से
0: ना। अभी तो नहीं, अभी तो उधर का आदिवासी बुरा प्रॉम्प्ट हो गया, अभी
1: अभी बदलाव
0: फलित है, हमने हमारे जमाने में
1: बहुत था। बहुत अच्छा सर, बहुत ही पावरफुल कहानियां हैं और बहुत सारी कहानियां होंगी आपके पास, क्योंकि 50 साल का एक लंबा अंतराल आपने इस कला को समर्पित किया है और इसके माध्यम से कुरीतियों को लोगों के दिलों से और डर बन जाता है, वो डर को
0: निकाला,
1: वो बहुत बड़ा काम है, वो एक बार में नहीं होता, वो शायद कला के माध्यम से उसका इम्पैक्ट
0: भी आएंगे
1: होता है,
0: जैसा हमने किया था, जैसे मेरे को प्रेरणा मिली कि मेरे को इस काम का पद्मश्री मिला
1: जी,
0: तो पीछे वाला ने इससे कुछ भले किया तो उसको भी तमन्ना आ जाती है मैं भी अच्छा कार्य करूँ,
1: मैं भी करूँ,
0: तो वो भी तैयार हो जाए, वो होना चाहिए ना, जैसे दीदी अभी कार्य कर रही, इनके पीछे कोई आने को होना ना दीदी का कार्य सामने लाने के लिए, यही तो संस्कार है,
1: यही संस्कार है,
0: एक आदमी आया तो भी बहुत हो गया,
1: एक को भी प्रेरणा मिली तो बहुत हो गया जी,
0: भगवान को पत्र मारो तो ये हो जाता है ना आसमान को
1: जी जी जी। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में पधारे, आपने अपना समय दिया और इतनी खूबसूरत रीति से इस जर्नी को हमारे साथ जो आपने शेयर किया, जो बांटा, इतनी अनेकों प्रेरणाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्ते,
1: धन्यवाद,
0: राधे राधे, ओम शांति,
1: ओम शांति, राधे राधे। चलिए दोस्तों, वक्त हो गया है इजाजत लेने का, रेडियो मधुबन 107.8 FM से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं रात के 10, स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ 9 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। और आज शरदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिग बी अमिताभ बच्चन का भी जन्मदिन है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए बात करते हैं, आज हम लोग विशेष न्यूरो साइंस के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में, कैसे बिना दवा के आप घर बैठे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर विषय लेकर हमारे बीच आई है डॉक्टर कृपा, जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर कृपा जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ
0: जी। जी जी जी, डॉक्टर कृपा, मैं सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं को आपका इंट्रोडक्शन दे, क्योंकि पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं, तो आप अपने बारे में बताइए। नेचुरोपैथी से या न्यूरो साइंस से कैसे आपका जुड़ना हुआ? जी,
1: नेचुरोपैथी जो आजकल लगभग सब अवेयर हो रहे हैं,
0: हाँ, बिल्कुल,
1: कि
0: बिल्कुल।
1: दवाई का साइड इफेक्ट हो रहा है, तो मेरी नेचुरोपैथी की जर्नी कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई। बचपन में हम जब बीमार होते थे तो सर्दी जुकाम फीवर ऐसा कुछ हो जाता था, तो दवाइयाँ देते थे। तो स्पेशली मेरा ऐसा रहता था कि जब हम दवाई लेते थे तो फीवर से जितनी तकलीफ मुझे नहीं होती थी, उतनी ज्यादा तो मुझे दवाई से तकलीफ होती थी।
0: अच्छा।
1: तो मुझे ये क्वेश्चन रहता था कि ये दवाई सच में ठीक कर रही है या मुझे और तकलीफ दे रही है।
0: हाँ, हाँ,
1: हाँ। इनका सॉल्यूशन क्या होगा?
0: जी,
1: ये
0: जी।
1: उस समय की बात है जब हम स्कूल में थे, तब इतना नेचुरोपैथी का ख्याल नहीं था हमें। फिर बाद में जब कौन सी फील्ड में जाना है ये हमारे सामने आया कि कोई वे चूज करो।
0: जी, जी, जी, जी।
1: तब मेरे माइंड में यही ख्याल आता था कि ये दवाई से कैसे छुटकारा पाए, इनके रिलेटेड कोई दुनिया में है अलग अलग स्टडीज क्या
0: जी,
1: है
0: जी, जी, जी।
1: तो उस समय हमें पता चला कि ये नेचुरोपैथी एक ऐसा वे है जिसमें बिना दवाई के लोग ठीक हो सकते हैं। फिर नेचुरोपैथी के बारे में थोड़ा स्टडी किया, उसके बाद मैंने उसमें एडमिशन लिया और ये 5.5 साल का मैंने कोर्स किया।
0: अरे वाह।
1: नेचुरोपैथी करने के बाद जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो अलग अलग हॉस्पिटल में मैंने काम किया, तो वहां जाके मैंने देखा कि सच में लोग ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन वहां पे जो पेशेंट आते थे उनका मैंने ये देखा कि वो लोग बहुत ही डिप्रेस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में रहते हैं। तो उन लोगों को थेरापी वर्क तो करती है, डाइट भी वर्क करता है, लेकिन 100% जो रिजल्ट चाहिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा था। अब इनको कैसे ठीक करें, इनके लिए मैंने रिसर्च किया और ये रिसर्च करते करते मुझे समझ आया कि ये न्यूरो साइंस है जो हमारे इमोशंस को हील करते हैं। वो इमोशंस जब तक हील नहीं होंगे तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि कोई भी डिजीज होता है वो डिजीज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही आता है, चाहे कैंसर हो, सर्दी जुकाम हो, कोई भी है, वो स्ट्रेस की वजह से ही क्रिएट होता है। तो इस स्ट्रेस को, नेगेटिव इमोशंस को हील करने के लिए मैंने स्पेशली न्यूरो साइंस का स्टडी किया और अब मैं एक साथ दोनों प्रैक्टिस करती हूँ, न्यूरो साइंस और नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और न्यूरो साइंस में माइंड को डिटॉक्स करते हैं। तो इस तरह से जब बॉडी और माइंड दोनों डिटॉक्स हो जाते हैं तो कोई भी इंसान एवर हेल्दी रह सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कृपा, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे आपका जो है नेचुरोपैथी की तरफ रुझान हुआ। और बचपन में जैसे आप बीमार पड़ते थे तो दवाइयाँ आपको अच्छा नहीं लगता था, दवाइयों से मुक्त होने का आपका जो है संकल्प ने आपको इस ओर लेकर आया है, और आपने नेचुरोपैथी का पूरा जो है कोर्स करके अब न्यूरोसाइंस इसमें कैसा रोल करता है, न्यूरोसाइंस के बारे में थोड़ा सा बताइए क्या है न्यूरोसाइंस, क्योंकि ये हमारे सभी श्रोता बंधु शायद पहली बार ही इस तरह का शब्द सुन रहे होंगे।
1: जी जरूर। न्यूरोसाइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है
0: जी।
1: मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल थ्रू समझाना चाहूंगी। जैसे हम एक थॉट क्रिएट करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर 1200 केमिकल जनरेट होते हैं जिसको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। ये शब्द सभी ने सुना होगा, हॉर्मोन। तो एक थॉट से 1200 केमिकल रिलीज होते हैं, तो सोचिए हम पूरे दिन में कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो 60,000 से 70,000 दिन भर का थॉट होता है। कोई ओवर थिंकिंग करता है तो ये 90,000 तक जाता है, और जो कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो कोई कोई का 1,00,000 से ऊपर भी जाता है। जिनका थॉट ज्यादा उनको फिर कोई इमोशनल डिजीज होगा। तो एक थॉट से 1200 केमिकल रिलीज होते हैं। तो पूरे दिन हम जो थॉट क्रिएट करते रहते हैं तो उनके हिसाब से वो केमिकल रिलीज होते हैं। हाँ। जी, और ये जो केमिकल्स है वो हमारे बॉडी में जाता है। थॉट माइंड क्रिएट करता है और उसके जो केमिकल्स है वो बॉडी में जाते हैं। तो हमारे बॉडी के जो सेल है वो सेल्स वो केमिकल को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो सेल उसके बाद केमिकल को एब्जॉर्ब करने के बाद फीलिंग जनरेट करते हैं।
0: अच्छा।
1: यस, थॉट इज अ लैंग्वेज ऑफ माइंड, फीलिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बॉडी। देखिए, कोई भी फीलिंग्स होती है वो आपको बॉडी में फील होगी। जैसे आप बहुत खुश है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे किसी कभी आपने सैड न्यूज सुन लिया अचानक से तो आपके हार्ट बीट फास्ट हो जाएंगे, आपको पेट में कुछ हो जाएगा। तो फीलिंग है वो बॉडी फील करती है, माइंड है वो थॉट क्रिएट करता है। तो अभी आपको समझ आया कि फीलिंग कैसे क्रिएट होती है?
0: थॉट की वजह से।
1: माइंड ने थॉट क्रिएट किया, बॉडी के अंदर वो केमिकल्स जनरेट हुए, सेल ने वो केमिकल एब्जॉर्ब किया और बॉडी के अंदर फीलिंग जनरेट हुई। एक थॉट किया, बॉडी ने फीलिंग जनरेट की। अभी बार बार सेम थॉट करते हो तो बार बार जो हमारे बॉडी के सेल्स है उनको सेम केमिकल मिल रहा है, तो वो सेम फीलिंग जनरेट कर रही है। अभी यहाँ मेन पॉइंट ये है कि जब ब्रेन ने थॉट क्रिएट किया, बॉडी ने वो फीलिंग जनरेट की, फिर वो जो सेल्स है वो माइंड को ऑर्डर देता है कि यही केमिकल वाला थॉट क्रिएट करो। क्योंकि वो केमिकल के आदि हो चुके, बार बार सेम थॉट करते करते सेल्स को वो केमिकल का हैबिट पड़ गई है। तो वो ब्रेन को ऑर्डर देता है कि यही थॉट क्रिएट करो। माइंड मजबूर हो जाता है उनके जो सेल्स की जो क्रेविंग है केमिकल की वो फुलफिल करने के लिए, सेम थॉट क्रिएट करने के लिए वो मजबूर हो जाता है और सेम थॉट क्रिएट करते। जैसे कभी कभी आपको लगता होगा मैं ये सोचना नहीं चाहता हूँ लेकिन ये मेरी माइंड बंद ही नहीं हो रहा,
0: बंद ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ हाँ।
1: ये इसकी मेन वजह ये है, ये साइंस है,
0: वो साइकिल
1: साइकिल चलती ही रहेगी।
0: अच्छा अच्छा।
1: थॉट क्रिएट किया, केमिकल जनरेट हुए, सेल ने फिर से वही केमिकल की डिमांड की, ब्रेन ने फिर से वही सोचा, सेम केमिकल, सेल की फिर से वही डिमांड। ये साइकिल बार बार चलती है, जो लंबे समय तक चलती है उसको बोलते हैं, फिर वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। फिर आपको पता भी नहीं होगा आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। ये एक साइकिल ऑटोमेटिक चलती रहती है,
0: चलता रहता है,
1: तब तक चलती रहेगी
0: जब तक आप
1: अवेयर होके उसको ब्रेक नहीं करेंगे।
0: तो अवेयर होके ब्रेक करने का क्या तरीका है?
1: पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोग्रामिंग आपके अंदर ऑटो पायलट
0: में मोड चल रहा है। अच्छा अच्छा। उसको पकड़ेंगे तो फिर उसको ब्रेक
1: पकड़ेंगे, फिर उसके बाद नया थॉट क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ भी क्या है, मान लो कोई बार बार स्ट्रेस का थॉट क्रिएट करता है,
0: जी जी जी,
1: तो अंदर स्ट्रेस का

0: केमिकल हो गया. अभी सेल को बॉडी को ये नहीं पता है कि ये केमिकल मेरे लिए यूजफुल है या नहीं, ये नहीं पता है. उनको तो जो बार बार आ रहा है वही उनके लिए बेस्ट है. तो बार बार स्ट्रेसफुल थॉट क्रिएट करते हैं तो सेल को सेम केमिकल की वो हैबिट हो चुकी है.
1: बिल्कुल.
0: तो मान लो 2 साल से आप स्ट्रेस में है तो आपके अंदर एक थॉट का 1200 केमिकल.
1: एक थॉट का 1200 केमिकल.
0: तो 17,000 दिन के जो थॉट्स होते हैं उनके कितने केमिकल बन गए?
1: बहुत ज्यादा
0: बन गए. मान लो आपका बॉडी पूरा एक वो केमिकल का समंदर बन गया. अभी आप सोचते हो मुझे स्ट्रेस से बाहर आना है तो क्या करना है? मेडिटेशन करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो. अभी जो पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं वो आपने मान लो एक ड्रॉप डाला आपका बॉडी केमिकल का जो समंदर बन गया है स्ट्रेस वाले थॉट के केमिकल से. पॉजिटिव थॉट किया, समंदर में एक ड्रॉप डाला. आज पूरे दिन में आपने 10-15-20 पॉजिटिव थॉट्स किए तो 10-15 ड्रॉप गए. कल भी किए, फिर रोज थोड़े थोड़े ड्रॉप डालते जाएंगे. लेकिन मैक्सिमम तो थॉट्स वो केमिकल कौन सा है? स्ट्रेस वाला ही है. अभी नया जो आपने पॉजिटिव थॉट्स वाले जो ड्रॉप्स डाले हैं केमिकल के वो आपके सेल मना कर देंगे.
1: अच्छा.
0: इनको नया केमिकल नहीं चाहिए क्योंकि उनको जो
1: आदत है
0: स्ट्रेस वाले केमिकल है उनकी वो आदत मतलब समझ लो व्यसन हो चुका है. वो पॉजिटिव थॉट को मना कर देगा, वो ब्रेन को मना कर देगा ये थॉट नहीं चाहिए. तो आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा पॉजिटिव थॉट आप कितने दिन कितना टाइम कर पाते नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके सेल से मना कर रहा है ये नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर रहा है. फिर से ब्रेन मजबूर हो जाएगा वही स्ट्रेस वाला थॉट. वो फिर हमारा यहाँ अनकॉन्शियस माइंड काम करता है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपको स्ट्रेस हो ही क्योंकि अंदर सेल डिमांड कर रहे हैं. और हमारे बॉडी के सेल्स कितने हैं?
1: ट्रिलियंस
0: ऑफ सेल्स है. ये सारे सेल्स एक ही केमिकल की डिमांड करेगा तो माइंड क्या करेगा? मजबूर हो जाएगा. तो ये साइकिल चलती रहती है. और फिर एक दिन ऐसा आता है कि लोग माइंड की दवाई के लिए मजबूर हो जाता है. उनका माइंड अभी सह नहीं पाता है ये नेगेटिव थॉट, फिर बीमारियां शुरू होगी. ये भी एक वंडरफुल है, लोगों को मैक्सिमम नहीं पता है बीमारियां कैसे शुरू होती है. जैसे कोई इंसान बार बार लंबे समय से स्ट्रेस में रहता है तो अभी उनका माइंड बॉडी सब कुछ ऑटो पायलट में चला गया है. तो वो कंटिन्यू स्ट्रेस में ही रहेगा, वो स्ट्रेस के हैबिट हो चुके हैं. तो वो स्ट्रेस की वजह से बॉडी को हीलिंग का टाइम नहीं मिलता. जैसे को हमारी बॉडी होती है उनको हीलिंग के लिए टाइम चाहिए और वो टाइम है सबसे बेस्ट स्लीपिंग. रिलैक्स मोड चाहिए. जब रिलैक्स मोड में बॉडी और माइंड दोनों रहता है तो बॉडी अपने आप हील हो जाती है. बॉडी में कोई भी बीमारी आए बस उसे रेस्ट दीजिए दोनों को,
1: माइंड
0: और बॉडी को, तो अपने आप हील हो जाती है. लेकिन मान लो आप स्ट्रेस में हो. अभी आप स्ट्रेस में हो तो बॉडी और माइंड दोनों को तो स्ट्रेस की हैबिट हो चुकी है. बॉडी को ऐसा लगता है बाहर कुछ खतरा है. स्ट्रेस को वो क्या मानता है? खतरा. बाहर कुछ खतरा है तो वो जैसे आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो आपके पास कुछ कीमती सामान है तो आप चेन की नींद सो पाएंगे?
1: नहीं.
0: तो ऐसे ही होता है. ब्रेन को बॉडी को ऐसा लगता है बाहर कुछ खतरा है तो रिलैक्स मोड में नहीं जाएगा. जब वो रिलैक्स मोड में नहीं जाता है हीलिंग बंद हो जाता है. अब रिलैक्स मोड में नहीं गया तो क्या होगा? बॉडी को एनर्जी चाहिए स्ट्रेस को फाइट करने के. आप जो कंटिन्यू स्ट्रेस ले रहे हो उनको फाइट करने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से लाएगा? बॉडी खुद ही नींद कम कर देगी. पहला स्टेप ये आएगा. कोई भी इंसान स्ट्रेस में रहता है तो एक्सपीरियंस होगा सबका, नींद कम हो जाएगी. डीप स्लीप नहीं जाएगा. तो हीलिंग का काम बंद हो गया. तो पहली एनर्जी ली नींद कम की. दूसरा बॉडी खुद ही डाइजेशन कम कर देगी क्योंकि हमारी जो एनर्जी है उसमें मैक्सिमम एनर्जी डाइजेशन में यूज होती है तो डाइजेशन वीक कर देगी मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगी तो इस तरह से पूरी एनर्जी स्ट्रेस को फाइट करने में लगा देगी. अभी सोचो नींद कम हो गई हीलिंग बंद हो गया डाइजेशन वीक हो गया तो पूरा बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी क्रिएट होने शुरू हो जाएगी और जब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी तो इसके लिए इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज क्रिएट होना ही है क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे जैसे हड्डियां टूटना हड्डियां कमजोर होना थकान होना और इनकी वजह से बहुत सारे डिजीज. फिर डाइजेशन वीक कर दिया तो पेट का इश्यू कॉन्स्टिपेशन गैस एसिडिटी अल्सर. और दूसरा डाइजेशन कम हो गया तो हमारा जो रोज का टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि डाइजेशन ही वीक हो गया है. टॉक्सिन बाहर नहीं निकलेगा तो कहते हैं ना कब्ज ही सारे बीमारियों की जड़ है. तो जहां जहां वो टॉक्सिन अभी बॉडी के अंदर टॉक्सिन रोज का रोज बढ़ता जाएगा निकल नहीं रहा है बढ़ता जाता है. अब टॉक्सिन बढ़ता जाता है तो वो टॉक्सिन ब्लड सर्कुलेशन के साथ पूरी बॉडी में घूमेगा और कोई ना कोई ऑर्गन में वो फंसेगा क्योंकि टॉक्सिन है कचरा है तो कहीं ना कहीं फंसेगा. मान लो किसी का टॉक्सिन हार्ट में फंस गया तो वहां ब्लॉकेज दिखाएगा हाई बीपी होगी ऐसी डिजीज क्रिएट होगी. किसी के टॉक्सिन्स पेनक्रियाज में फंस गए तो पेनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन क्रिएट नहीं कर सकता और इनकी वजह से जो बीमारी क्रिएट हुई उनको हम नाम देते हैं डायबिटीज. तो इस तरह से जहां जहां ये टॉक्सिन्स फंसते
1: हैं वहां पर एक नई बीमारी
0: वहां वो ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं करेगा तो उनको आप नाम दे देंगे.
1: हाँ.
0: तो हमारे नेचुरोपैथी में ऐसे कहते हैं हम सारी बीमारियां एक जैसी है सब हमने
1: सब एक इक्वली कर दिया.
0: हाँ सर हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं और हम क्या करते हार्ट की प्रॉब्लम हुई हार्ट के डॉक्टर के पास जाओ पेट की प्रॉब्लम हुई पेट के डॉक्टर के पास जाओ
1: अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास घूमते
0: रहते. तो वो जो मेडिसिन देते हैं आपको
1: तो
0: वो क्या वर्क करेगी. अभी आप सब आपको पूरी साइकिल समझ में आ गई ना.
1: वो सिर्फ उसको ठीक करने की कोशिश करेगी सिम्टम्स को ठीक करने
0: ठीक करती है. कोई ऐसी मेडिसिन बताइए जिन्हें आपको ठीक किया हो क्योंकि बीमारी क्रिएट कैसे हुई स्ट्रेस से. स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन वीक हुआ डाइजेशन वीक हुआ इनकी वजह से टॉक्सिन बढ़े इनकी वजह से ऑर्गन काम नहीं कर पा रहा इसीलिए बीमारी क्रिएट हुई. तो जो मेडिसिन लेते हैं वो सिम्टम्स को सप्रेस कर देते आपको ऐसे लग रहा है कि वो बीमारी ठीक हुई ठीक नहीं हुई क्योंकि अंदर जो टॉक्सिन है वो निकले ही नहीं है. इसीलिए लोग जिंदगी भर दवाई लेते रहते हैं. तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं नेचुरोपैथी में जिसमें हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं पूरी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर दे जहां जहां कचरा फंसा है वो बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं. इसके साथ साथ न्यूरो साइंस थ्रू उनका जो स्ट्रेस का एडिक्शन है वो ब्रेक करवाते हैं. जब स्ट्रेस का एडिक्शन ब्रेक हो जाता है तो उनकी माइंड और बॉडी को रिलैक्स मोड में लाते हैं और रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा हीलिंग अपने आप शुरू हो जाता है. तो इस तरह से न्यूरोसाइंस एंड नेचुरोपैथी दोनों से कोई भी इंसान एवर हेल्दी रह सकता है.
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर कृपा जी. आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को नेचुरोपैथी और न्यूरोसाइंस क्या है उसके बारे में पता चल गया होगा. आपको एक बहुत ही सुंदर जो है चाबी मिल गई है. न्यूरोसाइंस माना क्या है जो हम थॉट क्रिएट करते हैं. थॉट माइंड क्रिएट करता है बॉडी फीलिंग करता है उसमें जो केमिकल रिलीज होते हैं और फिर धीरे धीरे ये साइकिल जो है चलता रहता है. इसको ठीक से अगर आप समझेंगे तो आपको शायद बीमारी का भी पता चल जाएगा कि इस तरह के सोच की पैटर्न आपकी है. अगर आप किसी चीज़ को देखकर गुस्सा बार बार हो जाते हैं और रोज़ झगड़ा होता है रोज़ आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई एक पैटर्न है जिसको आपको समझना होगा जो डॉक्टर कृपा अभी बता रहे थे. अगर आप पैटर्न समझ लिया तो उस पैटर्न को पॉजिटिव वे में चेंज करने का एक तरीका फिर आपको बना के उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और जैसे कृपा जी बता रही थी कि खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है मेन आपका विचार है, आपके थॉट्स है, आपका स्ट्रेस लेवल है, तो उसको आपको मैनेज करना होगा। तो उसके बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर कृपा से। इनका वेबसाइट है

बारे में इनसे सुनेंगे ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाएगा कि कैसे हम इन चीजों को समझ सकते हैं, कैसे बीमारियां ठीक होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं अभी, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में 9:29 हो रहे हैं और आप हो हमारे साथ। आइए, आज डॉक्टर कृपा हमारे साथ हैं जो न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट है और नेचुरोपैथ है। तो नेचुरली हम लोग अभी नेचुरोपैथी के बारे में और न्यूरोसाइंस के बारे में कुछ डिफाइन थोड़ा सा जो है शॉर्ट में हमने समझा उसको। अब हम लोग ये समझते हैं कि न्यूरोसाइंस कैसे काम करता है हमको हील करने का, तो इसका टेक्निक क्या है, तो वही चीज़ समझेंगे एक केस स्टडी के माध्यम से। तो डॉक्टर कृपा, मैं चाहूँगा कि आप काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को मैसेज करके पर्सनल जो है उनका केयरिंग करके आप उनको ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा उनका, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो, जिनका रिजल्ट आपको 100% अच्छा मिला है, वैसे बहुत लोगों को मिला होगा, कुछ एक केस स्टडी जो आपको यूनिक लगा हो वो हमें बताइए शुरू से लेकर लास्ट तक।
3: जी जरूर, बहुत सारे लोगों का ऐसे ऐसे डिजीज सॉल्व किए हैं जहां मेडिकल फील्ड ने हाथ खड़े कर दिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
3: स्पेशली मैं एक आपको एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। ये एग्जांपल मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में उनका वीडियो भी है।
2: अरे वाह,
3: हाँ। यहाँ हमारे गुजरात में एक गवर्नमेंट टीचर थे, सुरेश भाई करके उनका नाम है, गुजराती है, तो वीडियो भी गुजराती में उन्होंने बनाया है। उनको सोराइसिस था।
2: अच्छा,
3: स्किन डिजीज। सोराइसिस ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है, हमारे जो बॉडी के सेल्स है उनका काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब आप लंबे समय से स्ट्रेस में रहते हैं, तो जैसे कैसे आप बहुत जल्दी में होते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप भूल जाएंगे कहाँ जाना है, काम कैसे करने, सिंपल सिंपल काम भी भूल जाएंगे। जल्दी में होते तो चाबी कहाँ रखी वो भी भूल जाते
2: हैं। बाथरूम में जाते तो कपड़े बाहर रहते हैं।
3: तो इंसान सालों से स्ट्रेस में रहता है तो उनके जो सेल है ना, वो एक तो बेचारे को रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है, रिलैक्स मोड में हम जाते ही नहीं है ताकि वो रेस्ट करे। तो स्ट्रेस की वजह से सेल्स अपना काम भूल जाते।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: उनका काम है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो काम भूल जाते क्योंकि आपने ओवरलोड देके रखा है काफी लंबे समय से। तो अपना काम भूल के वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने की वजह बॉडी को खाने लगता है। और इनकी वजह से जो डिजीज क्रिएट होते हैं उनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। वो खुद की बॉडी ही उसे क्रिएट करती है।
2: अच्छा, खुद की बॉडी क्रिएट किया,
3: सेल्स ही क्रिएट करते, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे बॉडी को, वो बॉडी को अटैक
2: कर रहे हैं। अच्छा अच्छा,
3: तो इनकी वजह से ये जो सोराइसिस है वो भी वन टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज है। बॉडी खुद ही क्रिएट करती है। अभी ऐसे लोगों को नेचुरोपैथी इसके साथ न्यूरोसाइंस
2: दोनों मिला के
3: मतलब नेचुरोपैथी में हम क्या करेंगे, नेचुरल डाइट देंगे और नेचुरल थेरापीज देंगे। थेरापी दोनों टाइप की होगी, अंदर से बॉडी को हील करे और ऊपर से भी हील करे। जैसे सोराइसिस वाले को इचिंग बहुत होती है, खून निकलना लगे, इतनी खुजली होती है,
2: काफी ज्यादा।
3: तो ऐसे लोगों के लिए ऊपर से नेचुरल थेरापीज देते हैं जो स्किन के ऊपर लगाना है, कोई मेडिसिन नहीं देते हम ना ऊपर से लगाने के लिए ना खाने के लिए. डाइट थेरापीज और इनके साथ न्यूरोसाइंस. न्यूरोसाइंस में हम क्या करते हैं, वीकली 2 सेशंस लेते हैं. लाइव सेशन होता है हमारा, पर्सनली होता है. तो इनके जो पर्सनल इमोशंस है जिनकी वजह से वो स्ट्रेस में रहते थे, इनकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज रहे, जो पर्सनल स्ट्रेस रहते हैं उनको मैं हील करवाती हूँ. पहले उनका क्या करती हूँ, पूरा न्यूरोसाइंस का नॉलेज देती हूँ कि कैसे आपकी लाइफ में ये स्ट्रेस शुरू हुआ, कैसे. पहले उनकी हिस्ट्री हम जान लेते हैं, फिर उनको बताते हैं कैसे आपका डिजीज शुरू हुआ है, पूरा न्यूरोसाइंस का नॉलेज सिखाती हूँ. उनके बाद उनके एक एक जो नेगेटिव इमोशंस जिसको हम बोलते हैं सर्वाइवल इमोशंस, एक एक इमोशन को हील कराने के लिए पहले मैं उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ. पहले न्यूरोसाइंस का नॉलेज, उसके बाद एक उनका कोई नेगेटिव इमोशन लिया उनके ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगी. प्रैक्टिस करवाने के बाद उनको 3 दिन का गैप दूंगी. मैंने जो प्रैक्टिस करवाई है ना, अभी मैंने 1 घंटा प्रैक्टिस करवाई, तो यहाँ भी न्यूरोसाइंस काम करेगा. आपकी बॉडी में वो 1 घंटे नया थॉट आया तो नया केमिकल बना, नया केमिकल बना तो थोड़ा सपोर्ट करेगा वो ब्रेन को. वो जो सेल है वो ब्रेन को कंटिन्यू ऑर्डर दे रहे थे स्ट्रेस के थॉट करो, अभी उनके अंदर नए केमिकल बने क्योंकि 1 घंटा मैंने प्रैक्टिस करवाया है. आप खुद नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ मैंने रेडीमेड थॉट दिए हैं, आपने थॉट क्रिएट नहीं किए हैं, मैंने रेडीमेड थॉट दिए हैं नया. तो 1 घंटा का कितने सारे केमिकल्स बन जाएंगे. फिर 3 दिन का गैप दूंगी, कहाँ कैसे कब वो नॉलेज प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है सब कुछ सिखाती हूँ. 3 दिन आप प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे, 3 दिन के बाद फिर से आएंगे, फिर से 1 घंटा मैं नेक्स्ट इमोशन पर काम करूंगी जो आपको परेशान करते हैं बार बार. उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, पहले न्यूरोसाइंस का नॉलेज दूंगी, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिकल करवाऊंगी, उसके बाद फिर से 3 दिन का गैप दूंगी उनको. प्रैक्टिकल जो मैंने सिखाया है प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है. अगर किसी को कोई कभी कभी नहीं भी हो पाता है क्योंकि बॉडी के अंदर वो पुराना केमिकल बहुत स्ट्रांग होता है, तो नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, उस समय फिर से हम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं. जो पेशेंट हमारे साथ कनेक्ट हुआ वो जब तक ऐसा बोले कि अभी मैं परफेक्ट हेल्दी हूँ तब तक हम साथ रहेंगे. फोन थ्रू, कॉल, मैसेज, एनी टाइम हम अवेलेबल रहते हैं. सर्विस हम बहुत बेस्ट देंगे. फिर ऐसे ऐसे चलते चलते हर वीक में 2 सेशन चलेगा, प्रैक्टिकल अप्लाई सेशन, प्रैक्टिकल अप्लाई, ऐसे कंटिन्यू साइकिल चलेगी. हमारे पेशेंट का एक्सपीरियंस रहता है कि जो सोरायसिस का जिसको मैं बात कर रही थी, 3-4 दिन में उनका ईचिंग बंद हो गया, उनकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होने लगेगी.
2: अरे वाह.
3: क्योंकि 1-1 घंटे का सेशन चलता है तो उसमें माइंड रिलैक्स हो जाता है. अभी उनके माइंड और बॉडी को रिलैक्स मोड में आने की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, तो हीलिंग शुरू हो जाती है. तो इस तरह से 2-3 महीना वो जो भाई की मैं बात कर रही थी उनको 12 साल से था.
2: अच्छा.
3: और उनको सोरायसिस ऐसा था, वो पूरा उनके वीडियो में वो खुद एक्सप्लेन कर रहा है. शिव के मंदिर में जाके उन्होंने वीडियो बनाया है और ऐसे बोल रहे हैं कि मैं भगवान की साक्षी होके जो बोल रहा हूँ सच सुना रहा हूँ. उनके बॉडी में आप उंगली रख सके इतनी भी खाली जगह नहीं थी, पूरे बॉडी में इतना सोरायसिस
2: हो गया था.
3: धीरे धीरे डाइट थेरापी और न्यूरोसाइंस के सेशंस इन तीनों के साथ करते चलते वो अपने टाइम पे वो फॉलो करते गए और आज ऐसा टाइम आ गया है उनकी बॉडी कम्प्लीटली क्लीन हो चुकी है.
2: अरे वाह.
3: वो बता रहे थे कि
2: कितना टाइम लगा उनको.
3: उनको लगा था 5 महीना एकदम क्लीन होने में क्योंकि बहुत ज्यादा था. और उन्होंने 12 लाख रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुके थे.
2: ओहो.
3: और उनकी कंपेयर में तो एकदम नॉमिनल चार्ज में बिना दवाई के बिना कोई साइड इफेक्ट के वो गारंटी देते कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी. और 100% उनको रिजल्ट मिल गया और कम्प्लीटली ठीक हो गए.
2: अरे वाह.
3: तो ऐसे बहुत सारे हमारे रियल सक्सेस स्टोरी हमने यूट्यूब पे डाली है,
2: आप देख ले सकते हैं.
3: जी
2: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया. और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि पेट की समस्याएं रहती हैं बहुत सारे लोगों को, कब्ज रहता है या फिर ये सारी चीजें, भी क्या स्ट्रेस के कारण होता है?
3: हाँ,
2: ये तो भी किस टाइप का स्ट्रेस, क्या पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेस ही पेट के लिए काम करता है या कोई ऐसा कुछ है?
3: सिर्फ स्ट्रेस नहीं.
2: हाँ.
3: मान लो आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है जहाँ आप हमेशा जल्दी में रहते हैं,
2: जल्दबाजी
3: में रहता है, तो भी वो भी वन टाइप ऑफ स्ट्रेस है. जल्दी ऑफिस जाना है, टाइम पे पहुंचना है, अगर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो बॉस डांटेंगे. तो ये हमेशा जल्दी में रहना है, जो ट्रैवलिंग करते हैं, जल्दी में बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, तो वो भी वन टाइप ऑफ स्ट्रेस है. इनकी वजह से भी आपकी डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगी ही. तो कोई पर्टिकुलर ऐसा स्ट्रेस नहीं है कि इनकी वजह से ही पड़ा. जब आप रिलैक्स मोड में नहीं होते, उनके अलावा की जो सिचुएशन है वो सारी स्ट्रेसफुल है. किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपने हर्ट फील कर दिया, तो भी आपके डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगी. अगर आप ज्यादा बुरा लगा लेते हो, हर्ट फील कर लेते हो, तो इनकी इफेक्ट भी डाइजेशन पर पड़ेगी. ये पूरा केमिकल का खेल है, अंदर कौन से केमिकल रिलीज हो रहे है.
2: और हम सोच रहे खाना अच्छा खाने से हेल्थ रहता है.
3: उसमें क्या होता है, कुछ कुछ जैसे फल सब्जियां खाते हैं तो डाइजेस्ट करना इजी होता है. तला हुआ ज्यादा मीठा खाना खाते हो तो डाइजेस्ट करना थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन आप खुश है, बहुत खुश है, हमेशा रिलैक्स मोड में रहते हैं, जॉयफुल रहते हो, तो बॉडी को वो तला हुआ ज्यादा मीठा खाना भी इजी रहता है पचाना. क्योंकि उनको स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए एनर्जी देनी नहीं है.
2: बिल्कुल,
3: आप तो जॉयफुल हो. लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहते हो और
2: कई बार ऐसा सुना है कि जो स्ट्रेस में रहते हो ज्यादा खा लेते हैं.
3: हाँ,
2: ये भी है क्या?
3: ये एकदम सही है. क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपको तो ऐसे लगता है कि खुशी तो मिल नहीं रही है, आपको हैप्पीनेस चाहिए. बॉडी को तो चाहिए, क्योंकि हमारा आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, हैप्पीनेस चाहिए और सबको अच्छी लगती है. लेकिन रहते हो स्ट्रेस में तो उस समय आपको हैप्पीनेस जनरेट करने के लिए वो हैप्पीनेस आप खाने में ढूंढेंगे.
2: अच्छा,
3: मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक हाथ में रखा है एप्पल, एक हाथ में रखा है समोसा, और मैं लोगों को पूछती हूँ आपके सामने ये दोनों है तो आप क्या चूज करेंगे? क्या चूज करेंगे अगर मैं आपके सामने रख दूँ?
2: समोसा ही.
3: अगर आपने समोसा चूज किया, दैट मींस आपका माइंड कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है. जो इंसान जॉयफुल होगा वो एप्पल चूज करेगा. और आपको तो पता है ना कि इन दोनों में से हेल्दी कौन सा है? एप्पल ही हेल्दी है, लेकिन चूज करेंगे समोसा ही. क्योंकि आपको जो हैप्पीनेस है वो समोसा में मिल रही, खाने में आप हैप्पीनेस फाइंड आउट
2: कर रहे हैं.
3: इसीलिए स्ट्रेस वाले ज्यादा खाते हैं तो और ज्यादा डाइजेशन
2: खराब हो जाता है.
3: यदि ये साइकिल चलती ही रहती है
2: तो एक समोसा खाएगा और ये एप्पल खाएगा, दोनों को स्ट्रेंथ किसको ज्यादा मिलेगा?
3: किसको ज्यादा मिलेगा? आपको क्या लगता है? कैसे एप्पल खाने वाले को ही स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा? इनका रीजन ये है कि समोसा आप खा रहे हैं तो समोसा तला हुआ है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी की बहुत सारी एनर्जी लगेगी, हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपको उसमें से एनर्जी कम मिलेगी. और एप्पल है, उनको डाइजेस्ट करना इजी
2: है और नेचुरल.
3: हाँ,
2: नेचुरल है वो,
3: इसीलिए आपको इसमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी.
2: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से ये चीजें हो रही हैं और आप जो है नेचुरल अपने जीवन को जो है इन चीजों से बना के रख सकते हैं. और जितना आप नेचुरल फ्रूट खाएंगे, रिलैक्स रहेंगे, उतना आप जो है हेल्दी रहेंगे. स्ट्रेस फ्री लाइफ आपका होगा। तो आइए, कोई सवाल हो या कुछ पूछना चाहते हैं आप तो मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं 94-14-14-14 इस नंबर पर। और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अब आपने ये सारी चीज़ें बता दी कि कैसे हम लोग थेरेपी देते हैं कंटिन्यू उनको और कंसल्टेशन करते हैं, और सोरा से जैसे बड़ी बीमारी से भी 5-6 महीने में मुक्त हो गए, ये केसेस आपके पास है, तो कई बार तो सोरेसिस वाले का लंबा चलता है, बहुत लंबा चलता है, पता ही नहीं चलता
3: जब तक स्ट्रेस में स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे
2: तब तक वो चलता रहेगा
3: क्योंकि कोई दवाई तो ऐसी है नहीं जो आपके सेल को याद दिलाए कि आपको अटैक नहीं करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है वो तो रिलैक्स मोड में जाएंगे तो अपना काम नॉर्मल मोड में आ सकता है।
2: एक और अनुभव मैं चाहूँगा कि जो मेंटली कई बार बहुत सारे लोग सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी स्ट्रेस में रहते हैं, इनका क्या कारण है? ना खाना पीना, घर भी अच्छा है, कपड़े लत्ते सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, माना फिजिकली उनको जो चाहिए रोटी कपड़ा और मकान एम्पल है, फिर भी स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसा क्यों होता है?
3: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले, अभी सब कुछ परफेक्ट है लेकिन पहले कभी स्ट्रेस था, एक दो साल तीन साल पहले स्ट्रेस था और वो स्ट्रेस लंबा चला था, तो वो स्ट्रेस की वजह से अभी स्ट्रेस के आपकी बॉडी के अंदर वो केमिकल है, अभी आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया लेकिन वो बॉडी को नहीं पता है ना। हमारे सेल तो वही डिमांड करेंगे जो सालों से उनको वो मिल रहा था केमिकल, तो माइंड को वो ऑर्डर करते हैं कि यही स्ट्रेस वाले जो केमिकल बन रहे हैं वही थॉट क्रिएट करो, तो ब्रेन मजबूर हो जाएगा, वही थॉट क्रिएट करेगा, अभी आपकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक है तो वो कहीं ना कहीं से भी स्ट्रेस ढूंढ ही लेगा। किसी ने कुछ बोल दिया स्ट्रेस, किसी ने बोला था वो काम नहीं किया स्ट्रेस, किसी ने पार्किंग में गाड़ी ठीक से नहीं पार्क की स्ट्रेस, गाड़ी चला रहे बाजू वाला गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे हम अंदर बैठे स्ट्रेस क्योंकि हमें स्ट्रेस का एडिक्शन हो चुका है। मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं, होता है कि फीलिंग्स का भी एडिक्शन होता है, सैडनेस है, किसी को दुखी रहने की आदत हो चुकी है जैसे ये मेरे पास केसेस आते है, ब्रेकअप हुआ आजकल चलता है ना, लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो सैड में रहने की हैबिट हो जाती है फिर वो हर मोड में स्ट्रेस सैड रहेंगे। सब कुछ परफेक्ट है, फैमिली परफेक्ट है, पेरेंट्स सिबलिंग्स सब सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उनको सैड में रहने की एक हैबिट हो चुकी है
2: जी।
3: और वो सैड रहेगा ही मान लो कोई इंसान सैड है, उनको आप बोलेंगे चलो हम घूमने जाते मजा आएगा, वो नहीं आएगा वो मना कर देगा अभी मेरा मूड नहीं है क्योंकि उनको सैडनेस ही चाहिए, उनको भी पता है बाहर जाऊंगा मजा आएगा, नहीं जाएगा क्योंकि सैडनेस की हैबिट उनको छोड़ेगी
2: नहीं।
3: तो इस तरह से स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस का एडिक्शन हो गया, जो खुश है उनको खुशी का एडिक्शन हो जाएगा,
2: बिल्कुल
3: तो वो हर जगह कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ ही लेगा जो देखो कोई लोग बहुत फनी होते हैं, कोई भी मैटर हो उसमें वो फन कर ही
2: लेगा
3: क्योंकि उनकी वो हैबिट हो चुकी है तो फीलिंग्स का भी एडिक्शन होता है, ये किसी को पता नहीं, हमको लगता है खाने का, मोबाइल का, गुटखा का, इनका ही एडिक्शन होता है, ऐसा नहीं, फीलिंग्स का भी एडिक्शन होता है
2: जी जी। मना जो कुछ आप सोच रहे हैं उसके जो फीलिंग
3: जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं उनका भी आपको एडिक्शन हो जाता है, वही चाहिए,
2: एडिक्शन हो जाता है जी जी। चलिए, आशा करूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं को आज न्यूरो साइंस का जो टेक्निक है वो समझ में आ गया होगा और कैसे हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, इसका भी एक आदत हो जाता है और ये आदत बार बार रिपीट हो जाता है तो वो हमारे जीवन में दिखता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति को देखते हैं कि भाई आप ऐसा है वैसा है और हम सोचते हैं कि उनको थोड़ा चेंज लाने के लिए हम बाहर लेके जाने, मतलब बंदा आता नहीं है, इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ उनका स्ट्रेस बना हुआ है, तो वो चीज़ों से हमें जो है अपने पुरानी चीज़ों से, इन थॉट से अपने आप को जो है बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सक्षम हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं जिससे आपको बाहर निकलने में आपको इजीनेस होगा और आप आसानी से अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है गहरी नींद।

0: नींद है ना, वो चीज हमारी बॉडी को हील करता है और वो चीज ही हमारे से गुम हो गया। अच्छा, नींद नहीं आता, बहुत सारे लोगों का हमने केसेस कभी कभी आते हैं, हमारे पास भी फोन भी आते हैं, तो गहरी नींद का क्या न्यूरो साइंस में कुछ टेक्निक है या कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा है?
1: पहले तो यही है, दिन भर स्ट्रेस कम लो। अगर स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है तो मेडिटेशन करना। अगर थोड़ा स्ट्रेस है तो रोज का 30 मिनट कम से कम मेडिटेशन कीजिए। ज्यादा स्ट्रेस है तो 1 घंटा मेडिटेशन करना है। और अच्छी नींद के लिए घरेलू नुस्खा में ये है, रात का खाना लाइट ले और जल्दी खा ले।
0: अच्छा, रात का खाना लाइट
1: लेना है और जल्दी खा लेना है। और फास्ट रिकवरी चाहिए, रिजल्ट फास्ट चाहिए, तो खाना एकदम आराम से चबा चबा के खाइए, ताकि बॉडी को जल्दी से वो डाइजेस्ट करने में इजी रहे। तो रात को वो डाइजेस्ट करने का काम उनका खत्म हो जाए सोने से पहले। तो ये पहला है। दूसरा है, रात को सोने से पहले गरम पानी में पैर डुबो के रहिए, हॉट फुट बाथ। एक बाल्टी में गरम पानी ले, जितना आप सह सके इतना। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे और 15 से 20 मिनट तक पैर डुबो के बैठ जाए।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ बॉडी के पैर की तरफ चला जाएगा, तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, तो उनको रिलैक्सेशन फील होगा, तो आपको गहरी नींद आ सकती है।
0: अरे वाह, जी जी।
1: और फिर भी आपको नींद की कोई डिफिकल्टी लगे तो मिट्टी की पट्टी बनाते हैं आंखों के लिए। क्लीन मिट्टी लो, एक कपड़े में लपेट के, गीला कपड़ा रखना है, कपड़े में लपेट के सिर के ऊपर रख दीजिए।
0: सिर पे रखना है,
1: आंखों के ऊपर और
0: सिर के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा।
1: 15 मिनट रखिए और साथ साथ मेडिटेशन सुने। कोई भी मेडिटेशन कमेंट्री सुनते जाइए, डेफिनेटली आपको नींद आ ही जाएगा।
0: तो मिट्टी, गीली मिट्टी होगा तो नहीं आंखों में वगैरह जाएगा?
1: कपड़े में डाला है ना हमने, कपड़े के अंदर मिट्टी रखी है,
0: गीली मिट्टी को ऐसा लोई टाइप बना के,
1: हाँ,
0: चपटा करके, फिर शायद ऐसे कपड़े में लपेट के रखना।
1: कपड़े में लपेट के।
0: ओके ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया।
1: हमारे वीडियो में है मिट्टी की पट्टी कैसे
0: बनानी। अच्छा, चलिए, एक दो सवाल साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
2: हेलो, नमस्ते
0: जी। सुखना बहन बोलिए, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं हम तो।
0: एक मिनट, हमारे डॉक्टर साहब कृपा जी से बात कीजिए। जी
2: हाँ,
0: नमस्ते, ओम शांति।
1: हेलो,
0: आपको सुनाई दे रहा
1: है? हाँ जी,
2: नमस्ते, ओम शांति,
1: ओम शांति।
2: आपने बहुत अच्छी बात बताई है, देखो।
1: थैंक यू।
2: तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती। नेगेटिव थॉट तो ऐसे ही चलते ही रहते हैं देखो, लेकिन हम तो बाबा की जान में जाते हैं तो थोड़ा नेगेटिव थॉट को हम डाइवर्ट कर सकते हैं बाबा की याद से।
1: वेरी नाइस।
2: हाँ, और क्या है कि दीदी, जो नहीं जानते हैं बाबा का ज्ञान, कुछ नहीं जानते
1: जी,
2: वो लोग भी थोड़ी थोड़ी बात में ऐसे टेंशन में आ जाते
1: जी,
2: उनके लिए हम क्या करेंगे दीदी?
1: यही हमने बताया ना, टेंशन लेने की एक हैबिट हो चुकी है। अभी टेंशन कुछ है नहीं लाइफ में, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन जो हैबिट हो चुकी है उनको ब्रेक करना है। तो जब जब आपको टेंशन आए तो तुरंत अपने आप को पहचानना है कि ये टेंशन लेने की मुझे हैबिट हो चुकी है। तुरंत अपने थॉट को पहचानो और उनके ओपोजिट यानी कि पॉजिटिव थॉट करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते जाएंगे।
2: दीदी, मैं क्या बोलती हूँ कि देखो, हमको तो पता है, हम तो बाबा के ज्ञान में चलते हैं सब
1: जी,
2: तो हम मेडिटेशन करते हैं
1: जी,
2: तो हमको तो पता है, लेकिन जो नहीं जाते, नहीं मानते, बाबा तो जानते ही नहीं है, हम तो बहुत बार उनको बोलते है बाबा के ज्ञान में चलो, करो करो, लेकिन वो लोग कुछ तैयारी नहीं है बाबा की ज्ञान में जाने के लिए, कुछ समझने के लिए। और उनके लिए देखो, अभी उनका परिस्थिति ऐसा है कि उनको जीवन में कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है
1: जी,
2: सब तरफ से ऐसे टेंशन में आके ऐसे बैठ गए सब हार के, तो उनके लिए हम क्या कर सकते?
1: उनको मेडिटेशन करवाना है, अगर कोई भी मेडिटेशन करे, लेकिन मेडिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि ये मेडिटेशन से ही थॉट चेंज हो सकते हैं। और मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो उनका माइंड और बॉडी रिलैक्सेशन मोड में आता है, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते जाएंगे, फिर उनका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता जाएगा।
2: जी। हम तो पता है ज्ञान है, कितने साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं। अभी सूरज भाई का जो सुबह में कार्यक्रम आता है वो भी हमें समझाते हैं। देखो हमारे पास सामने वाले के को तो कुछ ज्ञान नहीं है
1: जी,
2: क्योंकि कलयुग का अभी अंत चल रहा है
1: जी,
2: और सामने वाले में कुछ ज्ञान नहीं है। तो वो बोलते हैं कि हम ज्ञान का ऐसा प्रकाश डाले उन लोगों को, तो उससे भी उनका जीवन परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यदि क्या होता है कि जैसे तो हमारे कोई नजदीक की संबंधी है
1: जी,
2: हम उनके बहाव में आ जाते हैं।
1: उनके बहाव में नहीं आना है, उनको अपने बहाव में लेके आना है।
2: क्या करें, हम तो जाते हैं ना कभी, तो बस वो उन लोगों की सब देख के परिस्थिति तो हमें लगता है पता नहीं क्या होगा इन लोगों के जीवन में। हमको तो बाबा मिल गया है
1: नहीं, तो उस टाइम आपको ये थॉट क्रिएट करने हैं कि जैसे हमें बाबा मिल गया है और हम बहुत खुश हैं, इसी तरह हमें उनकी शुभ भावना रखनी है कि उनको भी बाबा मिल जाए और उनको भी परफेक्ट हेल्थ मिल जाए, खुशी मिल जाए, शांति मिल जाए। हमें ये थॉट क्रिएट करना है, ऐसे नहीं कहना है कि इनको पता ही नहीं है ये कब करेंगे, ये कैसे निकलेंगे, ऐसे कुछ थॉट नहीं क्रिएट करने। आप उनके लिए जो थॉट क्रिएट करेंगे वो उनको तुरंत इफेक्ट करेगा। तो आप सोच रहे हैं कि वो भी बाबा के बन जाए, वो भी खुश रहे, शांत रहे, तो हो जाएगा।
2: मैं तो पूरा कोशिश कर रही हूँ दीदी
1: जी, बहुत अच्छा।
2: लेकिन वो अभी के इंसान क्या है कि अभी बाबा ने बोला ना भक्ति भाग ज्यादा बढ़ेगा, तो ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है देखते हम। पर उन्हों को इसमें इंटरेस्ट है, हम बताते हैं भाई ये सब छोड़ो
1: नहीं,
2: बाबा
1: हमें
2: है,
1: हम न्यूरो साइंस में ये सिखाते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं वो हमें ना देखना है ना सोचना है। हमें यही सोचना है कि वो लोग भी बाबा के बच्चे बन जाए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, बस हमें सिर्फ इतना ही सोचना है।
2: सही बात है दीदी, मैं तो यही वाइब्रेशन देती हूँ,
1: बस यही वाइब्रेशन देते रहे।
2: हाँ, कि बाबा को बोलती हूँ कि बाबा ये सभी आत्माओं को शांति मिले,
3: अच्छा ज्ञान
2: मिल जाए बाबा का
1: जी।
3: ठीक है, ओम शांति सुगना बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और ये थे सुगना बहन गुजरात से जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और उन्होंने अपना ब्रह्म कुमारी का जो ज्ञान है उसके बारे में जिक्र किया, जिसे सुनकर व्यक्ति जो है स्ट्रेस फ्री हो जाता है, ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा डॉक्टर कृपा जी एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए।
1: सबके लिए मेरा एक मेन मैसेज है कि अगर आप परफेक्ट हेल्दी रहना चाहते हो हमेशा के लिए, तो दो रेमेडीज करनी है। एक रेमेडी है दिन में आधा घंटा मेडिटेशन करें
3: जी,
1: और दूसरी रेमेडी है तीनों टाइम जो खाना खा रहे हो, चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं, एकदम आराम से खाना खाए, चबा चबा के खाना खाए, बस ये लाइफ में दो चेंजेस करेंगे तो भी मैं मानती हूँ 60-70% आपकी हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी, माइंड और बॉडी दोनों की।
3: जी जी जी,
1: सिर्फ दो चीजें
3: ध्यान रखो, दो चीजें जरूर, एक आधा घंटा मेडिटेशन, दूसरा
1: खाना, तीनों टाइम आराम से
3: चबा चबा के खाए, बस
1: बस। ये हमारा एक्सपीरियंस है।
3: चलिए बहुत ही सिंपल टेक्निक आपको बताया है कि आप आधा घंटा मेडिटेशन करिए और खाना चबा चबा के धीरे से खाएं, इससे आपका हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ठीक हो जाएगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और अपना और अपनों का ख्याल रखे। सलाम नमस्ते, खमा गणेशा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम ऐसी नारी शक्ति पर आधारित है जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव या कुछ अलग उनके जीवन की कोई कहानी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि नारी शक्ति के साथ जो घर में रह रही है या बाहर जो भी करती है तो उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां भी आ सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप नारी शक्ति की शक्ति को भी पहचान सकते हैं, उसके स्ट्रगल को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही नारी शक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है मधु राठौड़। आप गुजरात जूनागढ़ जिला बांटवा गांव के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 52 वर्ष है। आपने 12th तक पढ़ाई की हुई है। सिलाई कढ़ाई बुनाई का आपको बहुत ही शौक है, कुकिंग का और विशेष करके सफाई का बहुत ही शौक है और अध्यात्म में गहरी रुचि रखती है। तो ऐसी नारी शक्ति से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। मधु जी नमस्कार।
1: धन्यवाद जी,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद
0: मधु जी। चलिए, आपकी उम्र 52 है, मतलब 55 के आसपास पहुंच चुकी है। और कहते हैं ना, 55 में जब बचपन की बातें करते तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या कहेंगे?
1: बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी
0: जी,
1: तब से मुझे कुछ ऐसे लगा, बचपन से तो वैसे माँ बाप, हम 5, 3 बहने हैं, 2 भाई है, छोटा सा परिवार है और माता पिता है, दादी थी। फिर दादी तो अचानक से हार्ट अटैक आया और चली गई। उसके बाद सत्संग चला था घर में, जैसे कि तो सत्यनारायण की कथा हर 11 को होती थी। तो मम्मी सब कहती थी कि जाओ आप ना, सबको जो सगे संबंधी है उसको कहना कि हमारे यहाँ सत्संग है तो आ जाना। फिर सबको वो फूल लाना, प्रसाद लाना, वो सब मम्मी मुझे देती थी कि आप वो करो। फिर तो सब लाते थे, फिर ना बरसात आई, ये सब इकट्ठा करते हैं पैसा और उसका कुछ बड़ा करना था। तो मैं तो छोटी थी, तो एकदम बरसात आई तो सारा पैसा ऐसे पास रहता है, 25 पैसे का, 30 पैसे का
0: जी,
1: हाँ, तो वो सब इकट्ठा किया हुआ था और घर की जो कांधी कहते मतलब माड़िया कहते उसमें लगा था। तो बरसात आने की वजह से जोरदार वो बिक गया। फिर सब वो सुखाया बहनों ने, मेरी 2 बहनें हैं और भाभी है, सब सुखाया। फिर तो मम्मी ने और सत्संग की जो मंडली थी ना, बड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही वो सत्संग चालू किया। तो कहते हैं कि अब ना कुछ उसका नया करे, हमारे यहाँ जो राजपूत के मंडली होती है ना बहनों की, तो उसमें सत्संग में से जो इतने पैसे इकट्ठे हुए थे तो उसका कुछ अच्छा सा करे जो सबको काम भी आए उसमें।
0: चलिए मधु जी, सत्संग की बातें हम जरूर जानेंगे, पहले हम बचपन की बात जानना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे थे कि 5 भाई बहनों, ठीक है, अच्छा आप 3 बहनें और 2 भाई हो, आपका नंबर कौन सा आता है?
1: मेरा लास्ट का नंबर 5वां।
0: तो आप तो सबके चहेते रहे होंगे।
1: बहुत बहुत बहुत चहेते रहे।
0: आपके पिताजी क्या काम करते थे उस समय?
1: वो किसान थे, किसान। पहले तो मैं जब से आई ना तब से तो हमने बहुत खेती देखी। इससे पहले कहते थे कि हमारे 7 थे ना घर में, जैसे 5 बच्चे और 2 माँ बाप और दादी, उसमें बहुत एकदम करकसर से जीवन था
0: जी जी, मुश्किल से चल पाते थे गृहस्थी की।
1: हाँ, नहीं, पापा का यही एक सपना था कि मैं बड़ी खेती लूँ। इसके लिए उसने करकसर से हम सबको ऐसे सिखाया कि करकसर से रहोगे, लोभ से नहीं, करकसर से।
0: जी जी।
1: तो उसने 100 बीघा, मतलब अभी उसका पैसा होता है वो 15 करोड़ होता है, तभी कभी कुछ नहीं था, फिर भी पापा ने, हम काका कहते थे, हम साथ में रहते थे,
0: जॉइंट परिवार था।
1: हाँ, जॉइंट परिवार था, मतलब मेरे जो बड़े पापा के बड़े भाई वो साथ में रहते थे, उसका 6 बेटा
0: जी
1: हाँ, और साथ में रहते थे। तो साथ में रहने की वजह से जो बड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं
0: जी, काका बोलते हैं और बड़े पापा के बेटे,
1: हाँ पापा के बड़े भाई, उसको हम अदा बोलते हैं गुजराती में
0: जी।
1: तो वो अदा का सब बच्चे इकट्ठे रहते, तो वो मेरे पापा को काका कहते थे, तो हम भी काका ही कहते हैं, लास्ट तक काका किया। तो काका का यही सपना था और मुझे बहुत पढ़ाया उसने, सब हमारे भाई बहन है ना, उसमें से मुझे ज्यादा पढ़ाया।
0: अच्छा, बाकी आपसे सब कम पढ़े लिखे है,
1: सब कम पढ़े लिखे,
0: भाई भी?
1: भाई भी।
0: तो सब क्या करते, खेती का काम?
1: हाँ, सब खेती का ही काम करते।
0: तो आपके सामने 100 बीघा जमीन का जो आपके पिताजी का
1: वो बनाया उसने अपने।
0: संकल्प था तो लिया?
1: हाँ, वो पूरा किया। पहले ऐसा नहीं था, फिर पूरा किया। फिर उसको तो इतना उमंग आया। उसके बाद सब, पहले भाई की शादी हुई, बड़े भाई की। उसके बाद तीन तीन की साथ में हुई और मेरी अकेली हुई।
0: अच्छा, आपकी शादी की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बात कर रहे थे आपके बचपन की, कि इस तरह आपके पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे। आपके माताजी भी कुछ करते थे?
1: हाँ, घर का काम करती थी और खेत में पिताजी को बहुत साथ देती थी। सारा पूरा काम करके, अपना बाता बना करके, और मुझे कहती थी कि आप ये घर संभालो, और पढ़ाई करने के बाद हम आएंगे तो आपको ये खिचड़ी बना के रखनी है, ये सफाई करनी है, और चूल्हा चूल्हा ये सब कुछ अच्छे से रखना है, ताकि आए तो सिर्फ हमें सब्जी और रोटी दोनों ही बनानी है, और पूरा घर का ख्याल रखना है, बाहर सब आपको करना है। और फिर आप ये सब पढ़ाई करने के बाद फिर पेड़ाई कर लेना और सफाई कर लेना। तो मम्मी भाता बनाकर, मतलब रसोई बनाकर जाती थी।
0: जी,
1: हाँ, और साथ में पिताजी को बहुत बहुत साथ देती थी।
0: तो आपके भाई बहन भी जाते थे खेत में?
1: सब जाते थे, सब के सब।
0: आप अकेले घर पर रहते?
1: हाँ, मैं अकेली घर पर रहती। मैं डरती नहीं थी। मेरे से जो तीसरे नंबर की बहन है ना, जैसे हम तीन बहन है, तो तीसरे नंबर की बहन के, वो अकेली नहीं रहती थी। वो डरती थी, वो कहती थी मैं अकेली नहीं रहूंगी। मम्मी बहुत कहती थी कि आप रहो इसके साथ। फिर मैं कह देती हूँ कोई बात नहीं मम्मी, आप जाओ उसको भी ले जाओ, मैं अकेली रहूंगी। और मैं बहुत बड़ा था तो मैं उसमें अकेली रहती थी और सब काम कर लिया करती। और मम्मी मुझे ऐसी शाबाशी देती, देखो तो आपसे छोटी है तो भी वो अकेली रहती है, और सारा डरती भी नहीं है। कोई आते हैं तो ऊपर से देख लेती हूँ कि कौन आया है। अगर कोई हमारा संबंधी आते हैं तो मैं खिड़की खोलती हूँ, अगर कोई और है तो खिड़की भी नहीं खोलती। ऐसे में बहुत तैयार थी, तो मम्मी और पापा दोनों की चाहती थी।
0: जी,
1: पापा पापा तो हमें साथ में ही सुलाते थे, वो तो मेरी सगड़ी है जैसे बोलते। मैं इतनी गर्म रहती हूँ ना, तो वो खेत में से आते और पापा को मैं पानी देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, तो पापा की बहुत चाहती थी। छोटी थी इसलिए बहुत बचपन प्यार से ही गुजरा, और सबका, भाई बहनों का अभी तक प्यार मिल रहा है।
0: जी जी
1: हाँ, बहुत प्यार मिल रहा है।
0: जी
1: और अभी वो पे दुलार देते तो कहते कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसे कहते अभी भी।
0: जी जी वो कहते हैं ना कि नमे सौने गमे, गुजराती कहावत है। तो
1: हाँ,
0: आपके अंदर नम्रता थी, तो आप सभी के दिलों पर राज करते थे
1: अभी भी कर रही हूँ। और
0: बचपन से। जो स्वभाव संस्कार जो हमारे अंदर पड़ जाते हैं, वो लाइफ टाइम चलता है।
1: हाँ, वो आगे ज्यादा हो जाता है बढ़कर। तो बचपन ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला कि देखो सबने इतना साथ दिया। और मैं मेरा उत्साह और उमंग बहुत बढ़ाते थे भाई बहने,
0: जी
1: जो मेरे से चारों भाई बहन है ना, बहुत उत्सव उमंग बढ़ाते थे। जैसे कि खेतों में बुनाई होती है, कटाई होती है, वो हम एक दो मजदूर रख करके हम स्वयं करते थे।
0: अच्छा,
1: मजदूर चार आते थे, वो चार बहनें आती थी, दो बहनें अपनी और दो भाई उसके, वो चार ही आते थे, और हम सब मिल करके ये सारा खेत संभालते थे।
0: सौ
1: तो
0: सौ बीघा जमीन में?
1: हाँ, सब
0: अच्छा,
1: मजदूर, नहीं ना कोई किराए का रखा, रात में कोई नहीं, सब अकेले ऐसे ही करते थे। तो हमने बचपन से यही सीखा कि मेहनत करो, और मेहनत से आगे बढ़े। और पापा का तो बहुत था कि ये ले वो ले, बहुत था, को ना मेहनत में बहुत विश्वास था।
0: जी चलिए मधु जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है यहाँ पर एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मधु जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं, जो हम फिर से सुनेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी जुड़ी हुई है, ऐसी मातृशक्ति जुड़ी हुई है, मधु राठौड़, जिनके अनुभव हमने सुने हैं। इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। मधु जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: जी थैंक यू जी।
4: तो मधु जी आपके बचपन की बातें चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा स्कूल की बातें बताएंगे कि आपके टीचर्स के साथ, सखियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: हाँ मेरी सखिया भी बहुत बढ़िया थी, एक सखी थी बहुत अच्छी थी, मैंने उसे अपना माना था, उसका वो अलग था। फिर मैंने पहले आठवीं पढ़ी तो मम्मी होली का त्यौहार था, जैसे अभी होली आ रही है, तो होली का त्यौहार था तो मम्मी ने कहा कि अबे ना सारा रसोई या भाता बोलते हैं ना, वो भाता कर रही हूँ, तो अपना आज जाओ शिव के मंदिर पर। और वहाँ से गुजरात में ये होता है कि बड़ा शिवरात्रि का महत्व होता है, शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं और भांग का प्रसाद मिलता है, और बड़ी उत्साह उमंग से शिवरात्रि पूरा दिन रहते हैं। और शिवरात्रि के दिन खाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट लेना है, दूध लेना है, और वो प्रसाद लेना जरूरी है। तो प्रसाद नहीं, माताजी लाई थी, तो उसने कहा आप जाओ तो मुझे मंदिर भेजा। तभी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी मिली और मैं आठवीं कक्षा में वो प्रदर्शनी देखी। तो वो प्रदर्शनी पहले तो कुछ समझ में नहीं आई, बाद में इतनी मन को भा गई कि बार बार वही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे। इसमें इतनी लगती थी कि मैं ही वही देवी हूँ, और मुझे इतना अच्छा अनुभव होने लगा कि मैं बस इसी मार्ग पर चलूँ। घर पर आई, प्रदर्शनी देखी, तो उस प्रदर्शनी में सुना कि मैं कौन हूँ, वही बहुत अच्छा लगा। फिर पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, और माताजी तो चली गई खेत में, और मैं घर पे, तब स्कूल पे रजा होती है तो घर पे हूँ, घर पे थी। उसके बाद आध्यात्मिक में मेरा जुड़ाव बहुत रहा, मैं बहुत अच्छा लगता था कि मैं आध्यात्मिक में कैसे आगे चलूँ। फिर हर ग्यारस के दिन और पूनम के दिन मेरी माताजी कथा करती है, सत्संग सब बहनें आती है, सत्संग की 50 बहनें होती है, तो माताजी सत्संग में होने के कारण मैं इतनी आध्यात्मिक रही पहले से। भक्ति भाव, उसमें प्रसाद होता है, महाप्रसाद की बहुत महिमा होती है सत्संग में, सत्यनारायण की कथा, वो सत्संग फिर पाठ पूरा हो जाता है, 5 अध्याय होता है, पूरा होने के बाद प्रसाद सबको बांटते।
4: अच्छा तो आप अध्यात्म में चलने लगे, तो फिर घर में किसी ने विरोध तो नहीं किया?
5: जी छोटी थी तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, पर ऐसे कहा कि अच्छा है, मम्मी अध्यात्म से जुड़ी थी तो अध्यात्म में बहुत रुचि थी मेरी पहले से ही।
4: तो भक्ति के संस्कार आपको बचपन से?
5: बचपन से
4: जी। और आठवीं से आपको थोड़ा अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया?
5: स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया।
4: अच्छा, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि आपकी सखियों के साथ कैसा था?
5: सखियों के साथ तो इतना मैं सखी नहीं करती थी, मुझे ऐसे अध्यात्म में अच्छा लगता है बस।
4: अच्छा, ये बताइए आप स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करते थे जैसे गाने? हाँ, में
5: हाँ, जो कोई स्पर्धा होती है, कोई भी स्पर्धा होती है, तो पहले तो मैं लींबू चमची में वो स्पर्धा किया ना, तो मेरा वो इसमें फर्स्ट नंबर आया, पहला नंबर आया, जो अच्छा लगा कि आगे बहुत बढ़ना चाहिए, उत्सव उमंग बढ़ा, जैसे पहले नंबर आए ना तो अंदर से लगा कि बहुत आगे मेहनत करनी चाहिए, फिर तो आगे आगे नंबर आता ही गया।
4: अच्छा, तो हर साल आप भाग लेते थे?
5: हाँ, हर साल भाग लेते।
4: अच्छा, और डांस गरबा ये भी करते थे?
5: हाँ, गरबा करते, डांस तो अकेले अकेले करते।
4: तो करते थे अकेले स्टेज पर?
5: हाँ, अकेले अकेले स्टेज पर करते थे, पर थोड़ा हिचकिचाते पर कर लेते थे, फिर बाद में एक भी किया फिर तो अच्छा लगा तो करते रहते थे डांस भी।
4: कभी टूर्नामेंट में भी गए, गेम्स में

0: शादी तुरंत कर दी।
1: तो आपका ससुराल कहाँ है?
0: ससुराल भी वही बांटवा में ही है।
1: बांटवा में? कितना बड़ा शहर है बांटवा? शहर है या गांव है?
0: वैसे शहर भी कहो तो शहर भी है और गांव भी है।
1: तो वहीं पर आपका पियर भी और ससुराल भी वहीं
0: ससुर
1: पर?
0: एक गांव में। सब कई बाहर गई नहीं, रेल तो मैंने कहीं देखा नहीं। आध्यात्मिक में रहे और गांव में ही शादी हो गई।
1: तो आप बता रहे थे कि छोटे थे तब तो कोई विरोध नहीं करते थे, तो शादी के समय किसी ने विरोध किया क्या?
0: नहीं, फिर तो युगल को मैं आध्यात्मिक में ले गई तो उसको भी अच्छा लगा। फिर विरोध होगा आध्यात्मिक में
1: फिर क्या
0: वो।
1: हुआ, विरोध हुआ?
0: हाँ, ससुराल में कहते हैं कि नहीं, हम कोई पकड़ बकड़ नहीं है, हम आध्यात्मिक में नहीं चल सकते। अब तो हमें बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, ऐसे आप शादी की है तो ये करना है, वो करना है।
1: कौन बोलता है?
0: सास ससुर बोलता है, पर हमारे में लाज प्रथा थी, घूंघट
1: जी
0: निकालने की प्रथा थी।
1: जी
0: तो मेरे पापा ने ही शादी के वक्त किया था कि आप घर जाके घूंघट उठाओ, वो अलग बात है, हमारे यहाँ तो शादी होगी तो घूंघट में ही होगी।
1: जी
0: पापा जी ने यही बोला था। और माँ, माता जी और बड़ी दो बहनें हैं, वो भी अच्छे से शिक्षा देती रही कि हमें अपने मर्यादा में ही रहना है, कभी इधर उधर पाँव ना जाए, फिसल ना जाए, वो बड़ा ध्यान रखना है किसी के साथ। बहुत सारी हमें मदद की बातें मिली उसी से,
1: जी
0: बड़ी दो बहनें थी उसी से सब मिला।
1: तो फिर ससुराल में सब कैसे रहते थे? शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
0: सासी तो घूंघट निकालते थे और बहुत स्ट्रगल हुआ,
1: मतलब आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते थे?
0: तभी तो करते थे। पर जब आध्यात्मिक में जुड़ी, आध्यात्मिक में मेरा मन रुचि लगी, तभी विरोध हुआ। पहले
1: तो आपने कहा कि आपके हस्बैंड तो आपके साथ जाते थे।
0: उसने थोड़े टाइम किया, थोड़े टाइम वो मेरे साथ चले। मैंने कहा, प्यार से उसे बोला ना कि चलो हम जाते हैं, इसमें आध्यात्मिक में क्या, बहुत अच्छा है लगता है। वो सत्संग में जाने लगे, अब मेरे साथ आए। वो उसमें साप्ताहिक होता है कोर्स, वो किया उसने। और उसके बाद विरोध किया। और घर में तो जाते हैं तो सबको पता चलता है ना, ससुराल में तो मैं कह करके जाती थी कि मैं सत्संग में जा रही हूँ। तो फिर आने के बाद सबको अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना काम टाइम पर करती थी, सबको बहुत प्यार से रखती थी, फिर भी उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हम पकड़ लोग नहीं है, सत्संग में हमारा आध्यात्मिक में नहीं जाना है, सत्संग में नहीं जाना है। तो फिर मन नहीं लगता था सत्संग के बिना। तो
1: फिर आपने विरोध किया?
0: मैंने विरोध नहीं किया, मैंने चलती रही, सत्संग में जाती रही। फिर
1: जी
0: छुप छुप के जाने लगी, ऐसे थोड़े सामने से। फिर तो उसको पता चल गया कि ये वहां से जाती है, तो सामने से आकर दो चमाट लगा देती।
1: अच्छा, तो इस तरह आपके साथ विरोध होने लगा।
0: बहुत
1: अच्छा,
0: ही
1: ससुराल में कितना बड़ा परिवार था? मतलब संयुक्त परिवार था या आप अकेले रहते थे सास ससुर के साथ?
0: संयुक्त तो परिवार था, 10 जने रहते थे। चार भाई है, दो बहनें हैं, दो ननद है और सास ससुर है, जेठ जेठानी, उसके 3 बच्चे
1: जी,
0: बच्चे थे। हाँ
1: तो इतना बड़ा परिवार था, आप कह रहे 10 जने थे, इतना बड़ा
0: जी,
1: परिवार रहते थे साथ में।
0: हाँ, सबका काम भी हमें ही करता है, ऐसे कोई काम का भाग नहीं हुआ था, सब इकट्ठे काम करते थे। और मैं तब पानी की तंगी थी तो खेत में जाकर के कपड़े धोने होते हैं।
1: जी,
0: हाँ, और
1: कुएं
0: वहाँ
1: पर।
0: नहाने का सब सब मना होता है, नहाते नहीं थे, कहते कि नहीं, हम थोड़ा ब्राह्मण लोग है, हम ब्राह्मण लोग नहीं है, वो क्या बोलते हैं, ब्राह्मण लोग नहाते हैं, हम नहीं नहाते। तो 2-3 दिन में नहाने देते थे, और जैसे कि चलता था।
1: अच्छा, नाने रोज नहीं देते थे और आपको
0: नहीं,
1: स्वच्छता पसंद है, तो फिर क्या करते हैं?
0: फिर मैं तो नहाती हूँ, तो उसको विरोध होता है कि ये कैसी है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते बोलते थे ना कि नहीं, नाना नहीं है, हम थोड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते हैं वो नहाते थे इस।
1: जी चलिए मधु जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए, इनके अनुभव हमने काफी कुछ सुने हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो मधु जी, जैसे आपकी शादी हो गई, आपको अध्यात्म में गहरी रुचि थी, सत्संग में आप जाते थे, ससुराल में फिर आप जाने लगे तो विरोध होने लगा, फिर आप रोज नाते तो नाने का भी विरोध होने लगा, तो पानी कहाँ से भर के लाते थे? घर पर नल था?
1: हाँ जी, नल तो था, पर ऐसे भी सबका मन भी देखना है ना, उसका मन नहीं है और हम ना रहे फिर भी नाना ही है, जरूरी है, फिर नहाते थे, नाना तो जरूरी लगा, तब भी लगा और अब भी लग रहा है।
0: नाते और रोज डांट खाते?
1: रोज डांट भी खाते, और उसको हम अच्छे नहीं लगते थे, क्यों नहाने के लिए मना करते और हम नहाते, तो संबंध ऐसे प्यार से नहीं रहता है।
0: आपके हस्बैंड के साथ?
1: हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे।
0: तो कौन मना करते है?
1: सासू, जेठानी, वो कहते कि नहीं नाना है, ये क्यों नाना है इसे।
0: तो फिर साथ में ही रहे या अलग हो गए?
1: नहीं, फिर तो साथ में रही, जब तक पहली बेटी आई, दूसरा बेटा आया, तब तक साथ थे।
0: अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे उस समय?
1: वो होमगार्ड में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं।
0: अच्छा, तो आपके गांव में थे?
1: हाँ, गांव में ही सेवा होती है ना सरकारी होमगार्ड की, जैसे पुलिस के नीचे,
0: जी जी
1: कॉन्स्टेबल के नीचे होती है।
0: अच्छा, तो जैसे आपका मायका भी वहीं था और
1: ससुराल भी गांव में?
0: जी, जैसे आप बता रहे थे कि कपड़े धोने आप खेत में जाते थे, तो पानी की कमी थी तो आपके मायके में भी कपड़े धोने आप खेत पर जाते थे?
1: जी नहीं, वहाँ तो घर पे ही था सब कुछ, घर पे ही कपड़े धोते थे, पर ससुराल में ना दुष्काल हुआ तो वहाँ थोड़ी तंगी हुई पानी की, तो कहते कि आप खेत में जाओ, तो मैंने तो जैसे शादी की आई और तुरंत कपड़े या जो चद्दर वो रजाई होती है ना, एक साथ 18 रजाई धोई, एक दिन भी मैंने बैठी नहीं हूँ,
0: इतना काम करते थे?
1: एक दिन भी बैठी नहीं हूँ, जैसे आज इधर पांव रखा, शाम को शादी करके आए, सुबह सब बोलने लगे इतना काम है, इतना काम है, वो है, इतना धोना है, तो मैंने सीधा कहा चलो मैं आती हूँ, मैं और मेरी जेठानी साथ में गए। फिर एक दिन आई, दूसरे दिन तो सास बोलने लगी कि इतना काम मैं अकेली क्या करूँगी, तो वो तो घर पर रही रसोई के लिए और मैं अकेली गई
0: कपड़े धोने।
1: हाँ,
0: तो शादी होते ही आपके काम में लगा देते हैं? नई नई बहू आई तो थोड़ा लाड़ कोड़ भी तो करते हैं ना?
1: करते हैं ना, अभी हम भी कर रहे हैं, हमारी भी बहू है, हम भी बहुत करते हैं,
0: जी।
1: क्योंकि ऐसे आध्यात्म में जाते हैं ना, तो जैसे हम पर बीती है ना, उस पर ना ही बीते, उसको तो इतना लाड प्यार करते, उसको तो आप करके, आप अभी भी, मैं, मेरी बहू है, उसको आप कहकर ही बुलाती हूँ
0: जी,
1: उसको ऐसे तुकार के नहीं बुलाते, प्यार से ही उसे बुलाते, अगर बुलाना है तो प्यार से ही बुलाते।
0: जी जी अच्छा, तो जैसे आपका काम में लगा दिया तो आपके मायके वालों ने कुछ नहीं कहा?
1: नहीं नहीं माँ पापा का तो यही था कि मेहनत करो, मेहनत आपको जगह दे, मेहनत से ही आगे बढ़ना है ना।
0: तो इतना आप काम करते थे तो सास ससुर प्यार करते थे आपको?
1: नहीं, हो अपना अपना तरीका होता है ना, अपना अपना नजरिया होता है।
0: अच्छा, किसी का प्रेम नहीं मिला?
1: नहीं, आध्यात्मिक में बहुत रुचि इसलिए तो जगी ना।
0: अच्छा, तो इसलिए आपको थोड़ा सत्संग से प्रेम बढ़ा?
1: हाँ, प्रेम और बढ़ा।
0: फिर कितने समय में आप पियर जाते थे?
1: पीहर तो गांव में ही था, क्योंकि वहाँ खाना, मुझे वहाँ तेल बहुत लगता था सब्जी में, और मायके में तेल नहीं था, तो साग भाजी में मायके ही खाती थी। अब माता जी मेरी और मेरी भाभी थी, सब कहते थे अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता, यहाँ खा लो, और खा करके वहाँ जाती हूँ ससुराल में।
0: तो रोज जाते थे खाना खाने?
1: हाँ, वहाँ रिवाज है, गांव में जो शादी होती है ना, वो 4 बजे या 5 बजे मायके में रोज जाती है।
0: अच्छा,
1: अभी भी
0: टाइम मिल जाता है?
1: नहीं, टाइम निकालते, वो रिवाज हो गया है।
0: तो 5 बजे जा करके खाना खा के वापिस आ जाते हैं?
1: हाँ,
0: फिर ससुराल में खाना नहीं खाते थे?
1: नहीं, सब्जी में बहुत तेल होता है, कोई स्वाद नहीं तो क्या।
0: तो आप नहीं बोलते कि सब्जी में थोड़ा तेल कम डालो, या आप खुद नहीं बनाते?
1: नहीं, सबको यही पसंद है, मेरी पसंद नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है। हम माँ मैं खा लेते
0: नहीं तो जैसे नहीं कहते कि आपके चाहिए उत्ती अलग से बना दो,
1: अलग कोई नहीं बनता किसी का।
0: अच्छा तो इस तरह आपके जीवन यात्रा रही। तो वो कहते हैं ना गांव में पियर और गांव में ससुराल है, तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है बैलेंस बनाने में, तो मुश्किल रहती थी आपके जीवन में भी?
1: हाँ पर अध्यात्म में बहुत रुचि थी ना तो मुश्किल नहीं लगा।
0: जी अच्छा, और आप बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलता था।
1: तभी मिलता था, फिर वो आध्यात्मिक में जुड़े तो थोड़ा कम हुआ। फिर ससुराल में सास ने और बोला कि अब तो 3 साल हो गए तो 3 साल में तो बच्चा होना चाहिए। मैके में भी यही कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो फिर तो बेटी हुई। बेटी हुई तो जेठानी थी वो खेत में चली जाती थी, पूरा काम मेरे पर आ जाता था। जैसे गायों को दोना, भैंस रखते थे इसको दोना, सब काम करना और बच्चे को रखना।
0: जी
1: थोड़ा थोड़ा ज्यादा सासू का साथ था, सासू थोड़ी बेटी को रखती थी, साथ में थे ना जॉइंट फैमिली में
0: जी,
1: तो रखती थी।
0: दूसरे और कोई सदस्य नहीं थे परिवार में?
1: हाँ थे ना, वो है एक चूल्हे पर ही रसोई बनती थी, पर यहाँ से कटोरी में लेकर वो अपने घर में खाती थी, वो मेरी सास की सास थी ना वो।
0: अच्छा तो मधु जी जैसे आप कह रहे थे कि आपको सत्संग का शौक था, इस वजह से परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे और काम की जिम्मेवारी काफी रहती थी आपके ऊपर, और फिर आप कह रहे थे कि बच्चे होने के बाद आप अलग हो गए, तो सभी अलग हो गए, जेठानी आप या फिर सास ससुर के साथ रहते थे आप?
1: सभी अलग हो गए, देवरानी भी अलग हो गई, मैं भी। फिर तो देवर की शादी हुई, उसके बाद 1 साल में सब अलग हो गए।
0: जी फिर तो आपको सत्संग में जाने से कोई नहीं रोकता था?
1: नहीं कोई नहीं रोकता था, मैं चुपके से ही जाती थी सत्संग में। वो जो मेरे पति है ना उसको जाना अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं अपना ढूंढती थी अंदर से कि भाई क्या मेरी कमी है, मेरा कोई काम छूट ना जाए, उसको बराबर से टाइम देती हूँ, उसका खाना पीना सब काम करना।
0: अच्छा आप सारा काम करते थे और भजन कीर्तन भी करते थे?
1: साथ में बहुत भजन कीर्तन साथ में ही रहता था।
0: अच्छा और आप क्या करते थे कभी?
1: और सिलाई
0: बच्चों को?
1: करते थे, हाँ बच्चों को पढ़ाई
0: हाँ,
1: में।
0: आपको सिलाई का भी शौक रहा, तो सिलने में आप क्या क्या सिलते थे?
1: ब्लाउज सिलते थे, ड्रेस सिलते थे, सिलाई का काफी शौक था। मैं ब्लाउज भी बना लेती थी और अपना पूरा जो भी है वो सब मैं सिलाई कर लेती हूँ।
0: जी जी तो आप जैसे सास जेठानी देरानी सबके साथ रहते थे, वहां पर भी सिलाई करते थे या अलग होने के बाद शुरू?
1: अलग होने के बाद, साथ में तो टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि 10 जने का काम था,
0: इसलिए आप अलग होने के बाद सिलाई का काम शुरू किया। तो आप अपना ही सिलते थे या मोल का भी सिलते थे?
1: मैं अपना ही सिलती थी, फिर दो थे भैंस थी और खेत थी। अलग होने के बाद तो खेत को संभालना होता है, सुबह 8 बजे भाता बना करके 8 बजे निकल जाना, 1 घंटे का चलने का खेत दूर थी।
0: अच्छा
1: तो वहां पहुंच के आध्यात्मिक में रुचि थी ना तो वहां भी मैं पढ़ लेती थी, कुछ भजन भजन कर लेती थी।
0: वहां भजन किसके साथ करते थे?
1: ऐसे अपने ऐसे मन से, तो जब मजदूर आते ना उससे पहले मैं पहुंच जाती थी।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो आपके हस्बैंड भी जाते थे?
1: वो दोपहर को रोटी लेकर आते थे, उसको क्या भाता बोलते हैं। हाँ तो वो भात लेकर के आते, मैं अपने भाता लेकर के जाती थी सुबह और बच्चों को मेरी माँ रखती थी।
0: अच्छा
1: अलग होने के बाद?
0: जी जी
1: हाँ, और शाम को आती थी चल करके, साइकिल भी नहीं कुछ नहीं था, चल के आना चल के जाना, तो 1 घंटा तो हो जाता है आने जाने में, 2 घंटा।
0: तो खेत में क्या करते थे आप, कुछ बोते थे?
1: बोते तो वो
0: बुआई आप ही करते या मजदूर करते, आप देख रेख करते?
1: बुआई तो उसी से होती है, ट्रैक्टर से होती है।
0: जी
1: पहले तो बेल था ना, बेल से होती बुआई, तो फिर उसमें सफाई होती है ना वो हम करते थे।
0: अच्छा
1: उसके बाद बड़े होकर के कटाई होती है ना, जैसे मूंगफली को पाटते है, भेगी करते है जैसे
0: जी इकट्ठी करते है और हाँ, फिर उसकी मिट्टी हटाते है।
1: हाँ
0: मतलब खेत के काम में आप
1: सारे काम करते थे
0: जी। जी
1: जो मजदूर वाला होता है ना वो सारा काम करते थे
0: जी। जी और पढ़ाई में आपको शौक था और उसी गांव में आपकी शादी हुई तो आपके टीचर लोग नहीं कहते कि क्या तू इन कामों में लग गई, पढ़ाई कर लेती तो अच्छा रहता।
1: टीचर बहुत अच्छी थी, पढ़ने जाते थे तो भी वो ऐसे वार्ता बोलते हैं ऐसे ही पढ़ाई की भार नहीं दिया, पढ़तर में तो बहुत अच्छा
0: जी। जी आप इस तरह खेत में जाते खेत में आते आपका टाइम पूरा हो जाता, फिर सिलाई कब करते है?
1: सिलाई तो मैं जिस दिन नहीं जाना होता है ना तब करती हूँ, और कभी कभी तो खाने पीने के बाद टाइम निकाल करके जो बनाना है ना वो मन से बना लेती हूँ, करना है कि यही करना है, यही चाहिए घर में और अपने पहनने में, तो रात को भी मैं सिल लेती थी।
0: अच्छा, जब जरूरत पड़ी कि हाँ मेरे को इस तरह के कपड़े चाहिए तो आप खुद का सिल लेते थे?
1: खुद का सिल ले।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है मधु जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव और भी बाकी है, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं हूँ कौटिल्य पंडित, आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो नारी का मान रखे उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधु जी के काफी अनुभव सुने हैं, और भी हम कहना चाहेंगे, मधु जी आप पूरे जीवन, अभी तक 52 साल की उम्र है तब तक आप पाटवागामी रहे, उससे बाहर आपका जाना नहीं हुआ?
2: कभी नहीं।
1: तो जैसे आपकी दो बहनें बड़ी है, कभी उनके यहाँ जाना हुआ होगा?
2: एक तो गांव में ही है, एक बाजू में मजेठी है, वहाँ है।
1: अच्छा, पास पास में ही है।
2: हाँ, कभी कभी जैसे कि प्रसंग होते हैं, उसकी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तभी जाना हुआ
1: जी। और आप कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं?
2: नहीं, पहली बार एक आध्यात्मिक ही बैठे।
1: हाँ, पहले जब आप रहे अपने ससुराल में तब तक ट्रेन में नहीं बैठे?
2: ट्रेन देखा ही नहीं था, दूर बाटवे में तो ट्रेन नहीं है, जूनागढ़ से।
1: जूनागढ़ से मिलते हैं। अच्छा, और जैसे अब आपकी उम्र 52 साल की है, आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू भी आ गई है, बेटी की भी शादी हो गई होगी?
2: हाँ, बेटी की भी शादी हो गई है, वो उसका भी दो बेटी है, बेटा है छोटा।
1: अच्छा, तो आप नहीं पढ़ पाए, तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया?
2: बहुत खूब पढ़ाया, यहाँ तक कि उसको तो नौकरी भी दिलाई, यहाँ तक
1: बेटी को,
2: बेटे को भी। अभी बेटा भी है, वो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर वहाँ पाजोद में है।
1: अच्छा, दोनों बच्चे जॉब करते हैं आपके?
2: हाँ, बेटी नहीं करती, बेटी को तो अच्छा ससुराल मिला है तो उसको नहीं करने देते, पर अब वो विदेश जाने वाली है।
1: जी जी, शादी हो गई और बेटा जॉब करता है?
2: हाँ।
1: अभी आपको कोई दिक्कत नहीं?
2: जी नहीं।
1: अभी कोई सत्संग से रोकता नहीं?
2: जी नहीं।
1: आपके हस्बैंड सहयोग करते हैं अब?
2: हाँ, वो सहयोग करते हैं, थोड़ा मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ तो सत्संग में, तो मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है
1: जी।
2: मैं उसको भी बोलती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
1: अभी भी आपके सास ससुर सभी है?
2: सास है अभी।
1: जी जी जी। अब अच्छे रहते हैं आपके साथ?
2: हाँ, बढ़िया रहते हैं, सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।
1: जी जी।
2: हाँ।
1: एक समय था जब कोई आपके साथ अच्छे नहीं रहते थे तो आपका दिल दुखता था?
2: एक समय तो यही था कि जब मैं अलग हुई ना, तब तो मेरे से सब विरोधी थे, फिर मेरी ये सत्संग की वजह से मैं सबसे साथ मिलजुल रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसको स्वीकार लेती हूँ, जैसे भी है मैं मिल जाती हूँ उसके, हर प्रसंग में उसके आगे होती हूँ।
1: जी जी जी, बिल्कुल। तो आपने सबके साथ तालमेल बनाए रखा?
2: अभी भी बनाए रखा है।
1: जी जी। और बहू के साथ आपका कैसा व्यवहार है?
2: बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसका नाम भी ऐसा है जैसा उसका काम है, उसका नाम है शीतल। तो बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है।
1: जी जी जी। तो आपने बहू और बेटी को समान समझा?
2: हाँ, बेटी से बढ़कर भी बहू को मैंने अपने दिल में रखा है।
1: जी जी।
2: कहते हैं ना, बेटी तो आती है तो जाती है।
1: जी।
2: बेटी से हमारा क्या? हाँ, आती है, वो फोन भी करती है, सब हालचाल पूछती है, पर बेटी से बढ़कर है बहू।
1: जी जी।
2: बहुत और बहुत बहुत अच्छी है।
1: जी,
2: बहुत प्यारी है, और उस जैसा उसका नाम है ना वैसा उसका गुण है।
1: जी। और सिलाई काम आज भी आप करते हैं? हाँ, या छोड़ दिया?
2: नहीं नहीं करती हूँ अभी भी, अभी तो बहुत अच्छा सिलाई काम हाथ में बैठ गया है।
1: तो आप अपना ही करते हैं या अभी भी मूल का करते हैं?
2: मूल का बेटे ना बोलते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं मम्मी, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, खेती है, अभी बहुत अच्छा है।
1: तो पहले आप मोल का भी करते थे?
2: पहले मोल का नहीं, घर का पूरा करती थी, खेत करती थी और पशुपालन।
1: अच्छा,
2: पशुपालन मेरे ऊपर था।
1: अच्छा, कितने गाय भैंस थे?
2: 3 गाय भैंसे थी और उसके बछड़े बच्चे होते हैं वो थे।
1: तो आप अकेले संभालते थे?
2: हाँ, हस्बैंड का तभी थोड़ा कम था साथ सहयोग।
1: जी। तो वो क्यों सहयोग नहीं करते थे फिर? आपने इतना क्यों पाला? खेती को संभालना,
2: पैसे के लिए पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो खेत में से जो उत्पादन होता है वो तो इतना नहीं होता था तब।
1: लेकिन आपके हस्बैंड तो होम गार्ड थे ना, तो सैलरी तो आती होगी ना।
2: हाँ, वो उसके खाते में जमा होती है, वो घर पर नहीं देते थे ना।
1: अच्छा, घर में पैसे नहीं देते?
2: नहीं देते थे,
1: तो घर कैसे चलेगा?
2: हाँ, बस दूध घर का है, सब्जी खेत की आती है, गेहूं भी खेत के आते हैं, तो और क्या चाहिए? जैसे कि बाहर से कुछ लेना है ना, तो वो गाय भैंस का जो दूध बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, उसमें से मेरा घर चल जाता है।
1: इसलिए आपने गाय भैंस रखी कि
2: हाँ,
1: आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते थे?
2: हाँ, तभी भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते,
1: अभी भी नहीं देते,
2: नहीं देते।
1: तो फिर पैसों का क्या करेंगे वो?
2: वो तो क्या करेगी, ले जाएंगे साथ में, कोई नहीं ले जाता है ना, यहाँ ही पड़ा रहेगा।
1: अच्छा, तो आप जैसे आबू आए, अभी आप रेडियो मधुबन में हमारे साथ है, तो किराया भी लगता है, पैसा भी चाहिए बाहर जाने पर, तो कौन देता है फिर आपको?
2: बेटा देता है ना।
1: अच्छा, बेटा देता है,
2: बेटे से मांगती हूँ। मेरा स्वभाव यही है कि मैं मांगती नहीं, वो सामने से बोलता है कि अभी तो आपका खलास हो गया होगा, इतना दिया था, अब खलास हो गया होगा तो लो मम्मी। मैं तो पहले तो ना ही बोलती थी, मुझे नहीं चाहिए, फिर यहाँ ये तो
1: बाहर जाते हैं तो फिर पैसे दे देते है बेटा, लेकिन हस्बैंड आज भी नहीं देते?
2: नहीं,
1: और आज भी जॉब उनकी जारी है?
2: नहीं, वो रिटायर्ड हो गए।
1: रिटायर्ड हो गए, पेंशन आती होगी?
2: नहीं, पेंशन नहीं आती, उसमें नहीं आती है।
1: अच्छा,
2: होमगार्ड में नहीं आती है।
1: अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत पैसा उनके हाथ में होगा, लेकिन देते नहीं है?
2: हाँ, वो सारा जमीन का पैसा तो आता ही है ना
1: जी, खेती बाड़ी का।
2: खेती बाड़ी का,
1: तो फिर खेती बाड़ी में से भी आपको नहीं मिलता है, जबकि आप तो काम करते हैं?
2: मुझे नहीं मिलता।
1: अच्छा,
2: ये महिलाओं की जिंदगी ऐसी टगल वाली है।
1: फिर भी आप खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करके चल रहे?
2: स्वीकार लिया ना, जैसे भी है।
1: जी जी जी, तो चलिए, कार्यक्रम के अंत में आप हमारी बहनें सुन रही, उनको क्या कहना चाहेंगे?
2: मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है, और हर परिस्थिति का डट के सामना करना है। जब सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हमें अंदर से खुशी भी आएगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
1: जी, चलिए, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है मधु जी, सभी नारी शक्ति को, कि मेहनत करना है और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। जैसे आप पशुपालन करके थोड़ा बहुत पैसे बचा करके कहीं जाते हो तो लेके जाते हो, बाकी घर से नहीं मिलता है।
2: और सहन शक्ति एक बड़ी शक्ति है, वो सहन शक्ति से हमारा सबके साथ संबंध अच्छा रहता है।
1: जी जी जी,
2: सहन करेंगे ना तो सबके प्यारे रहेंगे।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है मधु जी ने, बहुत बहुत आभार। आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सभी के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू जी, थैंक यू उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और बहुत बहुत दुआएं देती हूँ आपको।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मधु जी राठौड़ हमारे साथ बने हुए थे। आप जूनागढ़ बांटवा से पधारे हैं और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए हैं। देखिए, आपने जाना है कि नारी शक्ति कितनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका एक रुपए पर भी अधिकार नहीं होता है, फिर भी आप खुश है, परिवार को साथ में लेके चलते हैं, और सत्संग में जाना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप ईश्वर भजन करते हैं, तो परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और आपके साथ अव्यवहार किया, फिर भी आप सहनशीलता के दम पर और मिलनसार संस्कार होने के दम पर सभी को साथ में लेके चले और हमेशा खुश रहे, और आज भी खुश है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, सुर लय ताल की आवाज रेडियो मधुबन संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। संगीत की शुरुआत के विषय में अनेक गुरुजन के अलग अलग मत मतांतर रहे हैं। कहावत है, देवादि देव महादेव से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। उसके पश्चात महामुनि भरत जी, जो महादेव जी के शिष्य थे, उन्होंने ही पृथ्वी पर संगीत का प्रचार प्रसार शुरू किया। मतांतर में आदि देव ब्रह्मा जी ही संगीत के आदि गुरु कहे जा सकते हैं। महादेव जी ने ब्रह्मा जी से शिक्षा लेकर फिर सरस्वती देवी को संगीत विद्या प्रदान की थी। उसके बाद नारद जी ने सरस्वती देवी से संगीत विद्या लेकर भरत जी को ये शिल्प कला प्रदान की थी। ऐसे भरत जी मानव समाज में पहले संगीत गुरु कहे जा सकते हैं। संगीत के इतिहास में और भी जानकारी हम जरूर लेंगे, लेकिन शास्त्रीय संगीत में आइए हम सभी शामिल हो जाए। हर बार की तरह श्यामली जी भी हमारे साथ है। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ जी, मैं भी सबको नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, रागों की श्रृंखला में आज आप कौन सा नया राग लेकर आए हैं?
1: आज हम जो राग लेकर आए हैं उसका नाम है हम्बीर।
0: हम्बीर,
1: हम्बीर
0: जी,
1: तो ये कलन ठाट की है जिसमें कड़ीमा है। बहुत सुंदर राग है। ये जो राग है, समय जो है पहला प्रहर होता है 6 से 9।
0: ओके,
1: हाँ, इस बीच में, हाँ, इस बीच में हम कर सकते हैं। बहुत सुंदर राग है जिसमें है जाति जो है संपूर्ण जाति का है। वादी स्वर धा है, समवादी गा है, कभी कभी पा भी कह सकता है वादी स्वर।
0: ओके,
1: और बहुत सुंदर है। इसमें कड़ी माँ जो लगते हैं आरोह में नहीं लगते हैं।
0: ओके,
1: इसको प्रयोग जो नहीं लगता है, अवरोह में प्रयोग होता है।
0: Okay.
1: कभी आरोह में नहीं, ध्यान देना चाहिए। और कभी कभी होता है ना टेढ़ा बकड़ सहित
0: जी,
1: उसको जो प्रयोग होता है नी और गा थोड़ा बकड़े सहित बकड़े भाव से उसको प्रयोग होता है।
0: अच्छा।
1: मैं करके सुनाऊंगी, बहुत सुंदर है। जैसे इसमें दो माँ होता है, एक शुद्ध माँ कड़ी माँ तो है ही, कभी कभी इसमें कोमल नी विवादी स्वर में प्रयोग होता है।
0: कोमल नी,
1: कोमल नी
0: जी,
1: जैसे केदार राग की तरह। केदार राग में भी ऐसे ही होता है। केदार राग में भी गा और नी जैसे वक्र भाव से प्रयोग होता है, इसमें भी होता है। और हमने पहले भी कहा था कभी कभी कि कल्याण राग में जो अंतरा जो होता है पा से डायरेक्ट सा तार स्वर जो सा है उसमें जाता है, पा सा।
0: अच्छा, कल्याण ठाट में।
1: हाँ, कल्याण ठाट में जो राग होता है इसमें ये है कि अंतरा में पा से डायरेक्ट सा लगता है।
0: Okay.
1: तो अभी हम करके सुनाते हैं, आरोहण अवरोहण पकड़ के सुनाते हैं, उसके बाद हम स्वर लिपि दे देंगे। ठीक है।

0: इस राग में एक वैशिष्ट है, रूपरेखा है, बहुत सुंदर। अगर गामाधा जैसे ऐसे प्रयोग होता है तो ये हमरी राग की है।
1: ओके
0: जैसे इमन राग की नीरे सा नीरे गारे नीरे सा, ऐसे ही हम्बी राग की जो है, या केदार राग कहो सामारे सा, ये केदार राग की होता है। जब हम्बी रहते हैं, हम्बीर की जब टाइम आते हैं, गामाधा ऐसे ही होता है।
1: मतलब तो वो पहचान है,
0: पहचान है
1: जी।
0: तो फिर से करती हूँ।

0: ठीक है, हम क्या किया है, आरोह अवरोह पकड़ दिखाया है
1: जी।
0: गामा धा ऐसे जाते हैं, इसमें गुरुमुखी विधा है ना, तो इसलिए गुरु के पास जरूर शिक्षा लेना चाहिए
1: जी, जी।
0: दिन पर दिन और भी कठिनाई में जा रहे हैं ना संगीत, तो गुरु के पास आकर शिक्षा लेते हैं तो बहुत अच्छा है,
1: आसानी से वो समझ पाएंगे।
0: हाँ, समझ पाएंगे
1: जी।
0: तो अभी क्या करते हैं, हम तीन ताल में जो बंदिश देंगे, जो शास्त्रीय संगीत सिखाएंगे, मध्य लय की बंदिश सिखाएंगे, उसके स्वरलिपि पहले हम दे देते हैं। तीन ताल की है, 16 मात्रा की है, फाक से शुरू होता है
1: जी।
0: इसमें जाने के टाइम सुधमा, अवरोह में करिमा, सुधमा दोनों ही प्रयोग होता है। कैसे होता है हम बता देंगे, पा सा नी धा मा पा गा मा, ये जो पहला जो मा है वो जो है करिमा, दूसरा मा जो है सुधमा है
1: जी।
0: पा सा नी धा मा पा गा मा, धा धा धा सा ऊपर की सा है, धा धा पा पा या धा आ पा आ। नेक्स्ट लाइन है, गामा धा धा पा धा पा आ, गा गा मारी सा री सा आ। थर्ड लाइन है, सा सा मा मागा, ये मा जो है शुद्ध है और मा मागा एक साथ है, सा सा मा मागा पा पामा, ये जो माँ है करीमा, पा पामा धा पा। इसके बाद मापा धानी सारे सानी, ये जो माँ है करीमा है, मापा धानी सारे सानी सा, ये जो सारे सानी जो है तार स्वर की है, सा धा पा आ, ऊपर की सार तार स्वर है, सा धा पा आ। फिर से मैं बोलती हूँ, पा सा ऊपर की सा, पा सा नी धा करीमा पा गा सुधमा, धा धा धा सा ऊपर सा, धा आ पा आ, गा मा धा धा पा आ, गा आ मारे सारी सा आ, सा सा मा मा गा पा पा मा करिमा धा पा, मा पा धानी सारे सानी सा धा पा आ, ये सारे सानी जो सारे सा जो है ऊपर की सा है और मा कड़ी है
1: जी।
0: मैं करके सुनाती हूँ ठीक है।

0: ये जो स्वरलिपि है स्थाई का है।
1: स्थाई का,
0: हाँ जी,
1: हम्भीर राग की स्थाई का स्वरलिपि, हाँ, आपने अभी बताई। श्यामली जी, और भी हम्भीर राग के बारे में जानकारी लेंगे, मगर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक,
0: हाँ जी।
1: और ब्रेक में इसी राग से संबंधित एक प्यारा सा गीत हम आप सभी सुनेंगे। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: उन आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हम श्यामली जी से हम्भीर राग की स्थाई की स्वरलिपि सुनी, समझी भी, शायद हमने लिख भी ली। श्यामली जी, आगे आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, अभी अंतरा जो है, अंतरा को स्वरलिपि देना है
0: जी।
1: तो मैं लिस्नर को एक बात बोलना चाहती हूँ कि शायद ध्यान से देखा है कि इसमें पा सा डायरेक्ट सा आपको पहले बताई
0: जी,
1: पा सा गा मा धा, ये जो है ये विशेषता है इसका। तो अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो
0: जी
1: हो जाएंगे, ठीक है
0: जी, जी जी।
1: तो हम पहले स्वरलिपि दे देते हैं। फाक से शुरू होता है पा पा सा सा, जो सा है सब तार स्वर की है। पा पा सा सा सा सा रे सा, रे जो है तार स्वर की है। धा आ सा रे तार स्वर की है। सा नी धा पा। नेक्स्ट लाइन गा गा मा रे ऊपर की है, सब तार स्वर की है। सा रे सा सा धा धा सा रे, सारी ऊपर की है। सा नी धा पा। थर्ड लाइन सा सा मा मा गा पा पा मा धा पा, मा पा धा नी सा रे सा नी सा धा कोमल नी पा। अभी आपको पहले बताया कि विवादी स्वर के रूप से कभी कभी कोमल नी भी यूज होता है
0: जी।
1: तो फिर से मैं बोलती हूँ पा पा सा सा सा सा रे सा धा आ सा रे सा नी धा पा। गा गा मा रे सा रे सा सा धा धा सा रे सा नी धा पा। सा सा मा मा गा एक साथ पा पा मा धा पा। मा पा धा नी सा रे सा नी सा धा नी पा। मैं करके सुनाती हूँ, तब बैठ जाएंगे।

0: ये हमने जो स्थाई अंतरा की जो स्वरलिपि है हमीरा की हमने दे दिया है, जिसने बहुत अच्छा से इसको उठाएंगे, बहुत अच्छा से ये करेंगे और आकार सहित करेंगे तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट जब हम बंदिश दे देंगे तो बहुत आसानी से वो उठा सकते हैं।
1: जी
0: ठीक है
1: श्यामली जी, स्वर लिपि के साथ आगे आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
0: हाँ, मैं सोचती हूँ लिसनर को छोटा सा हमीरा के ऊपर बंदिश सुनाई जाए तो अच्छा लगेगा।
1: जी

0: तो ये हम्बीर राग की छोटी सी बंदिश हाँ, आपने हाँ सुनाई,
1: इसमें जो मिठास है
0: जी,
1: इसलिए हम इच्छा था कि
0: बंदिश सुनाकर आप इसकी पहचान भी दे सकते हैं।
1: हाँ जी, हाँ
0: जी जी। श्यामली जी, जाते जाते आज आप हमारे लिए क्या लाए?
1: हाँ, एक बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी,
1: 1946 का।
0: ओहो, इतना पुराना।
1: मिलन फिल्म, इसमें जो कंपोजिशन जिन्होंने किया है अनिल विश्वास,
0: ओके,
1: और जिन्होंने गाए हैं, जिन्होंने कंठ में दिया है पारुल घोष।
0: अच्छा, पारुल घोष।
1: हाँ, पारुल घोष ने दिया है। उस टाइम में बहुत फेमस गायिका थे, तो वही मैं करके सुनाती हूँ
0: जी।
1: बहुत सुंदर, सुहानी बैरिया बीती जाए, बहुत सुंदर।

0: वाह बहुत सुंदर, इतना हाँ पुराना गीत,
1: हाँ जी,
0: मगर फिर भी उसकी जो हाँ अलंकारिक भाषा है,
1: हाँ जी, पाल घोष जी ने इतना अच्छा निभाया है, मैं कोशिश किया है
0: जी। श्यामली जी, समय देता है हमको इजाजत। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 94-1415-1415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

0: जब कबूतर को पता चलता है कि बिल्ली उसके पास आ गई है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे बिल्ली गायब हो गई है, पर ऐसा होता नहीं है बाबू। वैसे हम लोग कभी कभी यही तरीका अपनाते हैं, समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इससे वो खत्म हो जाती है? घर ऑन एयर के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राठौड़ परिवार बड़ी मुश्किल से नाश्ते की टेबल पर बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर होती है एक नॉक। कौन पूछने पर गेट से जवाब आता है, पुलिस। अब यहाँ कबूतर है राठौड़ परिवार और बिल्ली है पुलिस। चलिए देखते हैं कि अब कबूतर करता क्या है।
1: बड़े भैया गेट मत खोलिए, मैंने सीरियल में देखा है, पुलिस एकदम से आती है अंदर और बिना कुछ बताए हथकड़ी लगाकर ले जाती है और फिर बहुत मारती है।
2: अरे अरे तो आप गेट मत खोलिए, आपको ले गए तो हमारा क्या होगा?
3: अरे पुलिस वालों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी को भी ले जाए, और मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैंने क्या किया है?
4: एक काम करते हैं, तुम लोग सब चुप हो जाओ, उनको लगेगा घर पे कोई नहीं है तो सब वापस चले जाएंगे।
5: माँ ऐसी थोड़ी होता है, आप
4: चुप कर किशन, जेल जाना है क्या?
6: माँ आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। बड़े भैया आप बैठिए, भाभी घबरा रही है, मैं देखता हूँ और आप लोग जरा शांत हो जाइए।
7: भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
6: ठीक है चलिए।
4: नहीं वीरेंद्र रुक, अरे रुक बेटा।
6: माँ आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा।
8: हम नजदीकी पुलिस थाने से आए हैं, हमें विजय की तलाश है।
7: आपका मतलब विजय दीनानाथ चौहान है?
8: आप पुलिस वाले से मजाक कर रहे हैं?
7: सॉरी सर, मैं नर्वस होता हूँ तो मजाक निकल जाता है।
8: ठीक है आप मेरी बात का ठीक से जवाब दीजिए, विजय कहाँ है?
6: जी विजय नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता।
8: देखिए हमें पता चला है यहीं रहता है, एक आरोपी को छुपाना कानूनन जुर्म है, इसलिए जल्दी बताइए विजय कहाँ है।
6: सर हम सच कह रहे हैं, यहाँ कोई विजय नहीं रहता।
8: देखिए हमारे पास प्रूफ है, विजय कुशवाहा आधार कार्ड डिटेल्स है, उसमें यहीं का एड्रेस दिया हुआ है।
9: अरे ये तो अपना विजय है।
8: हाँ पकड़े गए, मतलब हमसे झूठ बोल रहे थे, कौन विजय अब कहते हो अपना विजय?
6: नहीं नहीं सर, मतलब क्या है ना, ये हमारे परिवार का मेंबर नहीं है, ये तो हमसे पहले इस मकान में रहता था तो इसलिए ये एड्रेस पड़ा होगा, इसकी पोस्ट आती है कभी कभी यहाँ तो लेने आ जाता है बस।
8: कोई और आपके एड्रेस पे 5 साल से अपनी पोस्ट पार्सल मंगा रहा है, आपने कुछ नहीं कहा?
7: ये लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं।
8: सर मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं।
6: नहीं सर हमें लगा वो तो हमारा दोस्त है।
10: सर हुआ क्या है ये तो बताइए।
8: देखिए विजय ने बड़ा बैंक फ्रॉड किया है।
0: कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में कोई नहीं फंसना चाहता, लेकिन अगर मुसीबत आ ही जाए तो फिर समझदारी ही तो काम आती है। आपका आईडी प्रूफ आपका प्रमाण है, ध्यान रखिए कि आपके नाम नंबर या एड्रेस का कोई और इस्तेमाल ना करिए। अब पुलिस अपने विजय, मेरा मतलब है कि विजय को तो पकड़ ही लेगी, बैंक में जो फ्रॉड किया है, लेकिन क्या राठौड़ परिवार की समस्या कम होगी? अब ये तो बाद में पता चलेगा।
11: मर्दों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, हमसे हंस खेल के बात करने वाला वो विजय फ्रॉड निकला।
12: रागिनी दीदी पहली बार सही बात बोली है आपने।
11: पहली बार तो क्या कहना चाहती है शांति, क्या मैं हमेशा गलत बात कहती हूँ?
10: भैया ये हमारी बहने ही है ना, कहीं मंदिर से तो उठा कर नहीं लाए थे इन दोनों को?
11: किशन तू तो पिटेगा मुझसे।
12: दीदी आपसे और मुझसे दोनों से।
11: रुक अभी बताती हूँ।
12: पकड़ो दीदी पकड़ो इसको, बहुत मजाक बनाता है हमारा।
10: अरे कोई बचाओ मुझे इन दोनों से। कोई छोड़ के आओ इनको वापस मंदिर में।
11: तुझे तो मंदिर में भी नहीं रखेंगे। रुक,
13: मारो दीदी, मारो मारो।
4: अरे क्या कर रहे हो तुम तीनों, बच्चों की तरह लड़ रहे हो।
14: थोड़ा लड़ने तो इन्हें अंबिका, बड़े होकर भी बचपन जी लेना चाहिए कभी कभी। घर की रौनक इस मीठी प्यार वाले झगड़े से ही तो है। और देखो ये लोग इस बहाने एक तो हो गए ना।
2: इसलिए तो मैं भी प्यार से झगड़ती हूँ ताकि आप लोग खुश रहें।
4: बड़ी बहू, तू तो इतना खुश कर देती है कि खुशी के साथ मेरा बीपी भी बढ़ जाता है।
3: वैसे चंद्रावती, तुम तो बचपन में बड़ी शांत थी। तुम्हारी माताजी ने बताया था मुझे, कहीं शादी के लिए झूठ तो नहीं कह दिया था।
2: मैं तो सच में बड़ी शांत थी, अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया मैंने। और ये आपकी बहनों को देख लीजिए।
10: बड़े भैया आप तो बहुत लकी हैं।
14: हाँ बिल्कुल, हमारी बड़ी बहू ने आते ही इस घर को संभाला, इस घर को एक करके रखा। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो चंद्रावती 23 साल की थी और गजेंद्र 26 का, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बहू पर ज्यादा थी। शादी होते ही एक लड़की से सब ऐसे उम्मीदें लगा लेते हैं जैसे एकदम से वो बदल जाए, अपनी उम्र से भी बड़ी होकर व्यवहार करने लगे और वही लड़के को छूट दे देते हैं, बस इसलिए कि वो एक लड़का है। इसलिए मैं तो सच में मानता हूँ मेरी बहू तो बहुत सयानी है।
2: थैंक यू पिताजी।
0: चलिए, कोई तो समझा कि बहू भी एक आम लड़की ही तो है जिसे अपनी सहेलियों से बात करना पसंद है, जिसकी आंखों में अपने भी कुछ सपने हैं। उसी लड़की को शादी की रस्मों के बाद एकदम से सब जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता है और कहीं चूक हो जाए तो उसे बुरी बहू का खिताब दे दिया जाता है। उसकी गलतियों पर ताने कसने की जगह प्यार से समझा कर गले लगाकर तो देखिए, देखिए कि कैसे वो बहू बेटी बन जाती है। हाँ वैसे बहू से याद आया कि राठौड़ परिवार की छोटी बहुरानी राजकुमारी जी नजर नहीं आ रही। ओहो, समझ गया, राजकुमारी जी किचन में है।
4: कुमारी ये क्या कर रही हो? अरे ये कढ़ाई जमीन पर क्यों गिरी हुई है और ये दो तरफ से मुड़ी हुई क्यों है?
15: मासा मैं तो आपने जो कहा था बस वही कर रही थी।
4: मैंने क्या कहा तुझे?
15: आपने तो कहा था मासा कि राजकुमारी हमें कढ़ाई की जरूरत नहीं है, जा इसे बदल कर कुकर ला।
4: तो तूने कढ़ाई को हथौड़े से तोड़ दिया?
15: हाँ, मैं तो इसे कुकर बना रही थी मासा।
4: राजकुमारी बेटा, मैंने कढ़ाई को दुकान से बदल कर लाने को कहा था।
15: ओ, तभी मैं सोचूं कि मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, फिर मासा ने मुझे कुकर बनाने को क्यों बोला? लेकिन फिर मैंने सोचा, मासा ने बोला है कि कढ़ाई को बदल के कुकर ला तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
16: आपको क्या लगता है भाभी, इंजीनियर बर्तन बनाते हैं?
15: हाँ, मतलब वो पास वाली दुकान पे जो छोटू है ना, वो इंजीनियर ही तो है, बर्तन ठीक करके देता है सारे वो।
16: भाभी वो उसके पापा की दुकान है और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।
15: ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शुरू में ही सिखा देते हैं बर्तन बनाना।
4: बेटा अच्छा हुआ तू इंजीनियर नहीं बनी, वरना सारे इंजीनियर दरिया में कूद जाते।
7: हमारी भाभी कितनी भोली है ना।
11: हाँ भोली भी है और भाली भी,
16: जैसी भी है हमारी है।
7: मैं बहुत लकी हूँ मासा कि इस परिवार का हिस्सा हूँ।
0: ऐसा आज्ञाकारी देखा है आपने कि कोई कढ़ाई को कुकर बनाने की कोशिश करने लगे। वैसे हर परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और यही तो जिंदगी का मजा है। जैसे चाट होती है ना, थोड़ी खट्टी, आहा, थोड़ी मीठी और थोड़ी तीखी, हर स्वाद होता है। ऐसे ही जिंदगी में हर कोई हमारे जैसा सोचने बोलने और करने लगे तो फिर बोरिंग ना हो जाएगी लाइफ। हाँ तो चलिए, आप और हम लोगों में छुपी हुई खूबसूरती को देखते हैं और उन्हें सराहते भी हैं। आखिर अपने तो अपने होते हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, आपका साथ निभाने और राठौड़ परिवार की कहानी सुनाने फिर आऊंगा अगले एपिसोड में। इंतजार कीजिएगा हमारा, क्योंकि भई ये राठौड़ परिवार है, बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है यहाँ।
17: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुनते रहो गुनगुनाते रहो, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा सुबह शाम।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन. आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से.
1: तो नवरात्रि के इस प्रथम दिन पर शैलपुत्री माता की पूजा होती है. शैलपुत्री माता कौन है? तो कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री ये प्रथम देवी है. पहला अवतार माँ दुर्गे का है जिसके अंदर खूब एनर्जी है, शक्ति है, और जो हिमालय की बेटी मानी जाती है और इसीलिए शिव के साथ की शक्ति बताई गई है. शैलपुत्री पुत्री यानी जो बेटी है और शैल माना पहाड़ यानी सती भवानी या पार्वती या हेमवती का ही दूसरा स्वरूप है. हिमालय का जो राजा हेमवान उसकी बेटी शैलपुत्री नवदुर्गा में प्रथम मानी जाती है और उसकी ये पूजा करके शक्ति को प्राप्त करने का भाव है. उसके एक हाथ में त्रिशूल दिखाया है और दूसरे हाथ में कमल पुष्प दिखाया है और भैंसा उसकी सवारी के रूप में दिखाया गया है. उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान और आनंद का भाव प्रकट होता है. अब ये त्रिशूल और कमल का प्रतीक जो दिखाया गया है कि किस बात का प्रतीक है? तो कहा जाता है कि त्रिशूल के नीचे एक छड़ दृढ़ निश्चय का प्रतीक है और ऊपर की तीन पत्तियां मन वाणी और कर्म द्वारा पांच विकारों रूपी राक्षसों पर विजय प्राप्त करने का द्योतक है. साथ ही साथ कमल पुष्प अर्थात संसार में रहते हुए तामसिक विकारी वायुमंडल से अलिप्त एवं पवित्र रहने का प्रतीक है. तो जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मन वाणी कर्म के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करके दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है और संसार में रहते हुए पवित्र रहता है तब उसके जीवन में आनंद का भाव और मुस्कान नेचुरल रूप में बनी रहती है.

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं सभी वर्ग से मिलते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचे, कोई वंचित नहीं रहे। इस कार्यक्रम का माध्यम से अपना गांव और अपना अंचल में जो गतिविधि हो रही है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा एक मंच देती है। तो आज खुशी का बात है क्योंकि आप सबको विदित है पर्यावरण के तहत एक एपिसोड हम हर रविवार को चलाते हैं, जिसमें हमारा श्रीमान भोपाल राम पुरेत जी जो कि आबुरोड ब्लॉक से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रूप से सेवानिवृत्त होने के पश्चात रेडियो मधुबन कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं। हर जगह में जाकर पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कुछ न कुछ टिप्स जानकारियां अवेयरनेस देते हैं। तो आज खासकर हमारे आग्रह पर, और वो अपना स्वेच्छा से एक विद्यालय जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदुल्ला में पहुंचे, बच्चों को कुछ टिप्स पढ़ाई का संदर्भ में चरित्र निर्माण के साथ साथ अपने जहां रहते हैं उस एरिया को सशक्त समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए पर्यावरण का कितना आवश्यकता है, वो भी जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो उनको स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। और आज हम मोदुल्ला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे, बच्चों का साथ रूबरू होंगे, पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण विषय बहुत मैंने मायने रखता है। जहां पर हम रहते हैं जिससे हमारा गांव और हमारा अंचल पर्यावरण सशक्त होगा, सुंदर होगा और समृद्ध होगा, तो हमें जीवन जीने की और आगे बढ़ने की एक शिक्षा मिलेगी और हमें खुशी से रह पाएंगे। तो देर किस बात की, सर से हम सुनेंगे क्लास में कैसे बच्चों का साथ रूबरू हो रहे हैं। सर आपको स्वागत है।
1: पर्यावरण पर बात करेंगे और इसमें जो आपका जो ये टेक्स्ट बुक है प्रस्क्राइब, जो कि मेरे ख्याल से सर ये एनसीईआरटी की तरफ से लिखी हुई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये बुक प्रस्क्राइब है। अपने यहाँ पर दो तरह का सिस्टम चलता है, एक तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चलाती है और दूसरा चलाती है एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और वो लिखती है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। आपकी जो छोटी कक्षाओं की जितनी भी पुस्तकें होगी वो एससीईआरटी के द्वारा तय एनईपी के तय मानदंडों के अनुरूप वो लिखी जाएगी, वो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए है। अच्छा, ये जो लिखी गई है वो मेरे ख्याल से अप टू स्टार्ट फ्रॉम 6 होगी मेरे ख्याल से, जो भी है। तो ये सारी किताबें जो आपके पास में जो एनईपी 2020 के तहत बनी हुई है उस पर हम काम करेंगे। बच्चों एक प्रश्न पूछता हूं आपको, भैया सवाल का जवाब थोड़ा सा, ये जो पुस्तक पढ़ाई जा रही है, चलिए ये बताइए आप पढ़ क्यों रहे हैं, ये बताइए बस, पढ़ने का क्या आपका क्या उद्देश्य, क्या है लक्ष्य, क्या है? आप सभी पढ़ रहे हैं ना, आप सब पढ़ रहे हैं ना, 12वीं क्लास में आए तो पढ़ क्यों रहे हैं भाई आप, और हम पढ़ रहे हैं ना, हम यहां पर आए, हम क्यों आए हैं यहां पर, हम क्यों आए, अरे सिखाने तो आए हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं? आपने देखिए आप पहली कक्षा पास की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, और करते करते पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? आप 10वीं क्लास में क्यों नहीं छोड़ा, 11वीं में क्यों पढ़े, क्यों पढ़ रहे हैं आप, ये तो बताओ बेटा, अपने अंदर जो भी है उसको बोलो भाई, आपको बोलना तो पड़ेगा, बोलेंगे नहीं तो पता क्या चलेगा, इसका मतलब तो हम क्यों, हम यहाँ पर आए हैं, क्यों आए, बस आ गए, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप क्यों यहाँ बैठे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इसका कोई भी सवाल का कोई एक जवाब तो होगा ना। आप हिंदी नहीं बोल पाते, अपनी बोली में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ लूंगा, मुझे सब ठीक है ना, मुझे चीज समझाने से मतलब है, समझ हमारे अंदर कितनी है वो अपने अंदर होना चाहिए भाई, हम पढ़ क्यों रहे हैं, बोलो 12वीं क्लास से सवाल का जवाब तो आना चाहिए। मैं तो सर से बात कर रहा था कि पहली क्लास का बच्चा भी हमसे बात करेगा, अब 12वीं वाला नहीं बोलेगा और मैं ही बोलता रहूंगा तो इसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। बोलिए भाई अपन पढ़ क्यों रहे, बोलिए
2: कुछ आगे जाकर अच्छा कर सके, इसलिए
1: अच्छा करना है। क्या अच्छा करना है, आपने अब तक अच्छा ही किया है, घर पे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा खाना खाया है, ठीक है ना, तो अच्छा ही तो कर रहे हैं। तो आगे जाके क्या अच्छा करेंगे? बैठो। और कोई बेटा बात यह है कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं, हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमारा विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, सब तरफ से विकास हो। सब तरफ से विकास का मतलब क्या, बोलना चाहे तो हाथ ऊपर करना तो पता चले। सब तरफ से विकास का मतलब क्या सर, आप भी बता सकते हैं क्योंकि अगर कोई बात ऐसी है तो आप भी बोलिए, अपन सभी मिलके करें। सब तरफ से विकास हो अपना, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, चहुंओर विकास। तो ये सर्वांगीण विकास को कैसे समझे बताइए? यानी हम सब तरफ से आगे बढ़ करके जीवन में अपने आप को ठीक रखते हुए औरों के लिए भी उपयोगी बने, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। परीक्षा देकर के पास होने का मतलब क्या है, उसको समझा सकते हैं?
2: मैं आपको आगे बढ़ाओ,
1: आप आगे बढ़ाओ। भाई परीक्षा दे के पास हुए क्या मतलब रहा उसका? एक बच्चा है 100 में से 100 अंक ला रहा है, एक बच्चा है 100 में से 40 ला रहा है, एक बच्चा 100 में से 50 ला रहा है, क्या मतलब हुआ? देखिए समझ के लेवल की बात हो रही है। तुम समझ के लेवल की बात करोगे तो टेक्स्ट की बात आती है, और अब तक अपन समझे ही नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तब तो ये पढ़ना कितना ठीक है अपने लिए। सर यही चीज सर मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, मेरी ये मूल मेरे अंदर भावना रही कि उस चीज को व्यक्ति समझे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये बात तो समझ में आनी चाहिए।
0: लेकिन बोल नहीं पाते सर।
1: सर तो बोलना
0: बोलना पड़ेगा, लेकिन सबका उत्तर है सबके पास
1: नहीं तो सर ये बोले तो बताएं।
0: झिझक दूर करके
1: सर इनको बात बता भी दी कि क्यों क्या है ये। भाई किसी बच्चे ने अच्छे अंक प्राप्त किए इसका मतलब उसने समझा है तो उसको करना है, बात ये है। अपन कई बार क्या करते, पढ़ लिया, रट लिया, बोल दिया, 100 में से 100 नंबर आ गए, भैया वो पर्याप्त नहीं है। समझ करके लागू करना ये पर्याप्त है। जैसे आप प्रकृति के बीच में रहते हैं, कहते हैं ना आपके चारों तरफ ये जो बना हुआ जो वातावरण है वो आपको प्रभावित करता है। यहाँ की वायु है, यहाँ की पानी है, यहाँ की स्थितियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपको प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं से। तो आप लोगों ने क्या करा कि ये जो कम हो रहे हैं तो और पौधे लगा दिए। ये चीज सीखनी है अपने, ये आप पौधे लगाते नहीं लगाते तो क्या हो जाते, ये तो आपने लगाए तो हो गया ना, और लगाया तो कितना सुंदर लग रहा है। ये पेड़ पौधे आपने लगाए तो सुंदरता बढ़ गई, नहीं बढ़ी? तो इसका मतलब हम जीवन में क्या पढ़ करके पास होना ये तो अलग बात है भाई, ये तो एक पैरामीटर है, आप समझ रहे हो। नंबर लाना तो एक सिस्टम है, एक पैरामीटर है। आपको क्या करना है जीवन में, ये पौधे हम हमारे यहाँ स्कूल में लगाए हैं ना, तो हम कहाँ और लगाए, अपने घर पर भी लगाए, अपने गांव में लगाए, अपनी कम्युनिटी में लगाए, भाई तब जाकर के इससे होने वाली सुंदरता अपने घर पर भी दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी? तो ये काम कौन करेगा, कौन, हम कौन? मेरे घर पर मैं स्वयं करूंगा, आपके घर पर आप स्वयं करोगे, आपके घर पर आप स्वयं करोगे तो सबको फायदा होगा, आपको भी होगा, सबको होगा तो किसको होगा, आपको भी होगा ना। तो ये काम तो आपको मिल बैठ के करना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम इस शिक्षा की जो उद्देश्य है वो पूरा कर पाएंगे। पास हो गए और नौकरी लगी, ये इसका सही उद्देश्य तो नहीं है, ये कोई बीच का एक रास्ता है जिसको निकालने वाली बात है। भाई जो पढ़ करके अच्छे नंबर लेकर के नौकरी लग जाता है उसके अलावा दूसरे लोग क्या भूखे ही बैठे रहते हैं फिर? पर उनके जीवन में अगर शिक्षा है, पर्यावरण है, तो वो निश्चित रूप से अच्छा जीवन जी सकते हैं। आप अच्छे साफ धुले हुए कपड़े पहनते हैं, पहनते हैं ना, आप गंदे कपड़े पहनते हो? तो जब गंदा होता है तब कौन धोता है उसको, आप धोते हो ना, ठीक है ना? तो उसकी सफाई आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आप भोजन करते हो फिर अच्छा भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा पोषण देगा, वो काम कौन करेगा? तो आप सब खुद के लिए ये जब काम करेंगे पर्यावरण से जो संबंधित है, जो हमारे इस सिस्टम को प्रभावित करता है, तो अब आप ये बताइए कि पर्यावरण किसे कहेंगे, उत्तर दे सकते हो? पर्यावरण किसको कहेंगे? इनको प्रश्न पूछा है मैंने इतनी देर बोलने के बाद में कि भाई पर्यावरण किसे कहते हैं, उसका उत्तर ये देवे। अरे आपको जैसा आता है वैसा बोलो ताकि मुझे उसमें से कुछ निकालने का मौका। भाई मैं तो
2: आसपास का उदाहरण
1: और बोलो
2: बोलो
1: बोलो बोलो
2: क्या पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब चारों ओर, आवरण यानी ढका हुआ। अब चारों ओर से अपन क्या क्या ढका हुआ दिख रहे, पेड़, पानी, जमीन, ये सारा पर्यावरण में शामिल है।
1: भाई आप और हम सभी यहां पर किस चीज से प्रभावित होते हैं, बाहरी ओर से, बाहर से, बाहर से, बाहर से किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, जो अपने शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्या चीज है ऐसी चारों तरफ,
2: दिन हो या रात, उसे प्रभावित हो रहे हैं।
1: किससे प्रभावित होते हो, किससे प्रभावित होते हो, पर्यावरण में क्या क्या आएगा, यही तो पूछना चाह रहा हूँ, यही तो निकालना चाह रहा हूँ, किस किस से प्रभावित हो रहे, पर्यावरण में क्या क्या आ रहा है।
3: जल,
1: जल आता है, बिल्कुल,
3: पौधे, भूमि।
1: बोल बोल बोल तू बोल यार भाई।
3: पेड़ पौधे
1: और
3: जल,
1: जल,
3: भूमि,
1: भूमि आ गई,
3: पहाड़
1: आ गए,
3: हवा।
1: बेटा आप समझ में आया, समझ में आया ना, ये सारी चीजें मिल करके हमको प्रभावित करती है। और कहां तक प्रभावित करती है, हमारे जीवन, उसके विकास और उसकी मृत्यु, किसी भी जीव का। देखिए ये तुम्हारे ऊपर ही प्रभाव नहीं डालती, मैंने एक बात कही, हर एक पर डालती है, किसी जंतु पर भी तो प्रभाव डालती है, कुत्ते पर प्रभाव डालती है, बिल्ली पर प्रभाव डालती है, शेर पर प्रभाव पड़ता है इसका, प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ता है ना। तो इन सब पर इसका चारों तरफ से जो प्रभाव पड़ता है वो क्या करता है, उसके जीवन को सुनिश्चित करता है, लाइवलीनेस, उसके विकास को सुनिश्चित करता है। आप अशुद्ध पानी पिएंगे तो क्या होगा,
2: बीमार हो जाए।
1: क्या क्या बीमारी होगी बोलो ना बेटा,
2: बोलो।
1: अशुद्ध पानी पिएंगे तो क्या क्या होगा,
2: पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती है, पेट खराब हो जाएगा, मेन तो पेट ही है, सब रोगों की जड़ है वो अपना पेट ही है, और गंदा पानी पिएंगे तो सीधा,
1: बोलो कौन कौन सी बीमारियां होती है,
2: पूरे बोल।
1: अरे बोलो ना, तुम इधर उधर बोल जाओगे तो हम उसको ठीक कर लेंगे,
2: सब अपने ही है यहाँ पे, आपको डरने की बात नहीं है।
1: बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज से तुम्हारे इधर ये आ जाना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे।
2: हाँ।
1: नौकरी मैंने कर ली, ये कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मतलब नहीं है। आपने तो बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के यहाँ पर बस सब छोड़ दिया, यही कर रहे, तो करना ये है, ये पर्यावरण बनाते, ये पर्यावरण बनाते। नौकरी लगना ही शिक्षा नहीं है। मैं रिटायर हो गया, पूछो, इन्होंने रिटायर कर दिया सरकार ने, जाओ कर जाए, सो जाओ जाकर, वो शिक्षा है क्या? शिक्षा वो है जो कुछ करने के लिए प्रेरित करे। मैं आज ये समझाने निकला हूं कि आप उस चीज को समझ लो कि आप पढ़ क्यों रहे,
2: सही,
1: आप उस चीज को समझ लो कि आप स्वस्थ कैसे रहे, आप उस चीज को समझ लो कि आप स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को कैसे चलाएं। नौकरी अहम नहीं है, अपने यहां पर जो नौकरी में नहीं लगे वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो भी कमा के खा रहे हैं ना, तो फिर भाई पैसा कमाना ही सारी चीजें थोड़ी होता है। आप इस बात को समझ लो कि नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं है भाई, ये नहीं तो वो विकल्प मिल जाएगा, वो नहीं तो वो विकल्प मिल जाएगा। आप तो नौकरी भी नहीं करते, मैं रिटायर हो गया, आप तो नौकरी भी नहीं करते।
0: शिक्षा का मूल उद्देश्य
1: ये बात करनी है, बात ये करनी है, आज हम आए हैं इसलिए। ये बड़ी क्लास लेने का मतलब यही है कि शिक्षा की मूल बात आप तब तक पहुंचाओ कि शिक्षा सौपड़ी वासवा हुदिस नहीं है, लोकल में बताना चाह रहा। आप हमारा सम्मान करते, क्यों करते, क्योंकि मैंने कभी किताबें पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं की। इनको पूछो, जब भी इनको पूछो कि जब मैं कक्षा लेता था ना भैया, मैं अगर क्लास में घुस गया सर
0: जी,
1: तो पूरे दिन क्लास चलेगी नॉन स्टॉप। ये मतलब क्लास में घुस गए, हमारे डाइट में सर लोग इतने डरते थे कि ये सर अंदर आने ही नहीं चाहिए।
2: लगभग 1993-94 की बात है जब मैं 11th में पढ़ता था, और सर की वजह से मैंने ज्योग्राफी ली थी, क्योंकि सर उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे और वहां पे लेक्चरर थे, और इनका पढ़ाना बहुत ही अलग ही तरीके का था, और उसी की बदौलत हम आज यहाँ तक खड़े हैं, और मैं वही उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर।
1: बेटा मैं बात आपसे ये कह रहा हूँ कि सर मैं पीजी की क्लास लिया करता था रीजनल कॉलेज अजमेर में, उस मेयो कॉलेज में और रीजनल कॉलेज में, वहां राजे महाराजाओं के लड़के ही पढ़ते थे, वहां क्लास लेने के लिए मुझे सर पीजी से बुलाते थे। मैं अच्छा मेहनत करता था, इसलिए
4: वहां जब जाता ना, इतने गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी आपको थोड़ा मिलने के पहले थोड़ा सा रेफर किए?
1: नहीं सर, मेहनत तो पड़ेगी, मेहनत तो हम नहीं करें अब उस तक तो मैं जा ही नहीं रहा हूं।
4: आग बंद कर नहीं किए सब चीज रहने को, क्या हमको पढ़ना है, मैंने हमारा लक्ष्य क्या है, कितना दे और देने में उसको कितना ग्रहण करने की कैपेसिटी कितना देखना होता है। बड़े बच्चे के लिए तो कॉलेज के लिए अलग है, लेकिन यहाँ के लिए जो स्टैंडर्ड में जिसे पूरे जी अपना बात को रख रहे हैं,
1: करना ही पड़ेगी सर।
4: क्यों सर?
1: सर तो वहां जब सर मतलब डिवोटेड, आप इन्हें समझे मेरी बात को, समर्पित हो जाओ, मेरी बात को समझ रहे हो, मतलब आप यहाँ का हाँ कहना नहीं ताकि मैं आगे बढ़ूं। समर्पण ऐसा होना चाहिए भाई, वहां पीजी की सर क्लास में घुसे तो 3 से 4 पीरियड एक साथ चलेंगे, घुसे तो चलते रहो बस बस। ये तो इसलिए हमको चाहिए कि लिमिट में बंधने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है, इनको
4: रेफरेंस
1: इनकी इनकी आवश्यकता नहीं, ये इसलिए कि मैं तुम्हारे तक सीमित रहूं, आप समझ रहे हो ना। तो चल पड़े तो चल पड़े सर, ये डाइट की क्लास में घुसे तो अब घुसे तो वो बच्चे समझेंगे कि अब बाहर जाने का काम नहीं, वो जाएंगे ही नहीं, वो बाहर कैसे जाएंगे, उनको मैटर ही ऐसा मिल रहा है, पर पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। तो हमको भी उस बात को छोड़ो, पूरी तैयारी के साथ पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना क्यों है वो इसलिए कि रिटायरमेंट के बाद भी हम काम में लगे, वो इसलिए पढ़ना है भाई। कमाना तो एक जरिया हो सकता है
4: जी,
1: खाना तो एक जरिया हो सकता है, दो टाइम का भोजन तो कहीं भी मिल जाएगा, अपने खेत में खेती करेंगे तो भी मिल जाएगा ना, मकान तो बना हुआ है, खेती करेंगे खाना मिल जाएगा, नरेगा में जाएंगे भोजन मिल जाएगा, लेकिन करना क्या है? तो भैया हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात समझ में आई बेटा? तू बोल यार, बोले जो अपने जैसे भी बोलना बोल दे बस,
4: अपना नाम बोल।
1: हम क्यों पढ़ रहे हैं?
4: नाम और क्लास।
5: मेरा नाम कालूराम है, मैं कक्षा 12th में पढ़ता हूँ।
1: जी जी,
5: स्कूल सेकेंडरी स्कूल मुदल्ला।
1: हाँ, अब पढ़ क्यों रहे हो ये बोलो?
5: ताकि हमारा विकास हो सके, और
1: विकास इसलिए होगा कि आप स्वस्थ रहो। स्वस्थ कैसे रहोगे? चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, स्वस्थ कैसे रहोगे बेटा? बोलो बेटा, बोलो भाई, स्वस्थ कैसे रहोगे? सोने वाला कभी स्वस्थ नहीं होता बेटा, गजब यार। तो फिर बोलो स्वस्थ कैसे रहोगे, बोलो बेटा, बोल बोल।
5: स्वस्थ हमारे शरीर को अच्छा रखेंगे और खाना पीना अच्छा होगा,
1: खाना पीना शुद्ध होना चाहिए,
5: शुद्ध होना चाहिए,
1: ठीक है ना? शुद्ध कैसा? पानी छना हुआ होना चाहिए, ठीक है, अच्छी जगह का होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, तो हम बीमार नहीं होंगे, कई तरह की बीमारियां नहीं होगी, हमको मोती जरा नहीं होगा, पेट संबंधी बीमारियां नहीं होगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे फिर भोजन कैसा करेंगे? कैसा स्वस्थ? जो देसी गोबर से बना हुआ पका हुआ अनाज का जो भी भोजन होगा वो सबसे अच्छा होगा, ये केमिकल प्रयोग करके पैदा हुआ भोजन अच्छा हमारे लिए नहीं हो सकता। भाई साहब से पूछिए कि किस किस तरह के केमिकल सर उस भोजन में आ जाते हैं, कहां कहां से आते हैं सर, बताना इनको हल्का सा, हल्का हल्का।
4: जो भोजन हम लेते हैं ना भोजन करते हैं बच्चे,
1: सर ये दे दीजिए,
4: सभी तो भोजन करते, भोजन बिना हम कैसे चल पाएंगे, भोजन तो जरूरी है, लेकिन भोजन जो हम ले रहे हमारा शुद्ध भोजन होना चाहिए, शुद्ध भोजन माने प्योर, और जो भी ले रहे हम जानते कितना प्योर है, प्योर माने शुद्धता, उसमें नहीं मिलावट किसी ना किसी रूप में आते हैं सब।

0: में देखते हैं तो कितना चकाचक दिखाई देता है, लेकिन उसका पहले इंजेक्शन उसी कलर का काटेंगे तो लाल, और जब खाएंगे पेट गड़बड़ होता है कि नहीं?
1: सर क्या बता रहे बताऊं मैं?
0: तो पानी से भी
1: जो लौकी है ना उसमें इंजेक्शन लगता है, लौकी फट से बढ़ जाती है दूधी दूधी तुम्हारी, तो वो जो इंजेक्शन वाली दूधी तो नुकसान करेगी ना। और अभी देसी वाली
0: जैसे आपका स्कूल में हम लोग देखे लौकी का दूधी का लगा हुआ है,
1: बिल्कुल,
0: और पूरा रासायनिक कुछ भी नहीं है उसमें, पूरा जैविक और शुद्ध, मैंने बीचा आ सकता आपका विचार जो है ना, हमारा स्कूल में हमारे विद्यालय में एक किचन गार्डन हो और हम उसको उगाए, हम बहुत सारा पौधा देखे हैं। क्या क्या देखे सर?
1: जो आपका जो किचन गार्डन मैंने देखा ना यहाँ पर, आपकी जो मैं ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में था उसमें, उसमें बहुत विकास हुए, हमारा मतलब ही विकास है बस, क्योंकि हम उसमें उस पॉजिटिव दिशा में काम करते हैं। किचन गार्डन सर प्रत्येक हॉस्टल में बनाया गया।
0: क्या बात,
1: प्रत्येक हॉस्टल में, हॉस्टल है ना आपके आदिवासी हॉस्टल जितने भी
0: छात्रावास,
1: सभी में बनाए छात्रावासों में, और सभी में वहीं पर उगाई हुई सब्जी काम में ली जाने लगी। आपने भी बनाया ये छोटा सा, ठीक है ना, पर वो सर हॉस्टल की सब्जी उस हॉस्टल में काम में आ जाती थी, तो सभी अपने अपने घर पर भी ये कर सकते हैं। अब ये कोई बड़ा काम नहीं है, 10 टमाटर के पौधे लगा दिए, टमाटी टमाटी बैंगन लगा दिए,
0: मिर्ची लगा दी,
1: सेमफली लगा दी, मिर्ची लगा दी, और क्या चाहिए,
0: पपीता लगा दो, हमेशा चलता
1: लगा दो, ये अपने हाथ से अपन बना करके उसको उगा करके खा सकते हैं।
0: सर उसके साथ जिस राजस्थानी को आपके पास बाजार जाना जरूरत नहीं है, गाय गोबर तो मिलता है, भैंस का गोबर रहता है ना, तो उसको डालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कुछ भी नहीं, आपका मन में सोचना है अच्छा, सोच उस पौधा को दो अच्छा बन जाए, अच्छा बहुत इतना फल है जो हमारा परिवार खाने का अड़ोसी पड़ोसी को दे, और स्कूल में लेकर जाएंगे पक्का होने के बाद सभी मेरा बर्थडे में खिलाएंगे, ऐसे सोचो वो पौधा को पेड़ को उनको संकल्प दो, तो पेड़ के साथ बढ़कर ऐसे बात करो मन से, देखो पौधा कितना आगे बढ़ेगा प्रैक्टिकल, और देखना होगा तो चलिए हमारा तपोवन में सब कोई रासायनिक नहीं है, जैविक खेती के साथ योगी खेती करते हैं, लेकिन जानेंगे अल्प विराम के बाद स्कूल का जो गार्डन और सभी हॉस्टल का जो गार्डन जो लगा है अपना खुद के लिए, बोले कम जमीन में लगाओ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसका बाद फिर बड़ा एकर में बड़ा जगह में लेकर बना सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ये आपका फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा होगा, इसका साथ साथ पर्यावरण को भी अति
1: बिल्कुल फायदा होगा,
0: फायदा करेंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक है ना सर, इसका बाद फिर सर से सुनेंगे
1: नेक्स्ट
0: अल्प विराम का बाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: बेटा देखो, अब तक अपन ने बात की, आपने कहा है कि किचन गार्डन में लगे हुए सर जो सब्जी फल अपने यहाँ पर जो लगा हुआ उसी की बात कर रहे हैं। बेटा आप लोगों के यहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है, देखिए यही पर्यावरण, पर्यावरण को यूं समझना पड़ेगा कि सरकार ने लागू क्यों किया है सर, इसके प्रीफेस में लिखा हुआ है, मैं बताऊं आपको। यहाँ इस प्रीफेस को देखने वाली बात सर, एक्चुअली में ये जो पढ़ाई होती है ना सर, इसमें हमारे ये लोग प्रीफेस को नहीं देखते, अंदर घुस जाते। जैसे मैंने जो अभी बात की वो बेसिक बात की है कि शिक्षा क्यों है, पढ़ना क्यों है, पर्यावरण क्यों है, अपन इस पर थोड़ी सी चर्चा की है ना, तो वो इसलिए कि अपन आगे बढ़े, खुद स्वस्थ होकर के अच्छा खा करके रसायन से रहित, जो रसायन के बिना, अगर भाई आप अगर केमिकल वाला यूरिया है वगैरह है इसका उपयोग ना करके आप गाय का भैंस का अपना जो गोबर है ना बकरी का जो भी ये खाद है उसको अगर अपन उसमें सही तरीके से देते हैं, अपन शुद्ध पानी से उसकी परवरिश करते हैं, अपने हाथ से उस छोटे से पौधे को अपन बड़ा करते हैं, तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हो जाए। जब अपना स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो अपना विकास बढ़िया हो जाएगा, और अपना विकास बढ़िया होगा तो अपने विचार बढ़िया हो जाएंगे, और उसको सही दिशा में उन विचारों को लगा दिया तो निश्चित रूप से हम हमारी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो जाएंगे। इस प्रीफेस में सर ये दिया हुआ है सर।
2: जी जी
1: बिल्कुल, देखिए इसकी मैं बताऊं, इसकी जो पाठ्य चर्चा की रूपरेखा मैं देख रहा हूं 2005, और 2005 सर ये बता रहा है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए।
2: क्या बात,
1: हम इस पर काम करते थे सर, हमने नेशनल पॉलिसी पे काम किया है, किताबें तो खूब बाद में लिखी जाती है, ये कि स्कूली जीवन से बाहर, और अपन तो स्कूल में किताब पढ़ रहे हैं उसका उत्तर दे रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है। आप बाहर देखें, बाहर जाकर कि ये प्रकृति हमको क्या सिखा रही है, ये पर्यावरण बाहरी हमको क्या सिखा रहा है, ये हमको कैसे बीमार कर रहा है, ये देखें। सिखाने का मतलब हमको कहां से बीमार कर रहा है और हम क्या उल्टा पुल्टा खा करके बीमार हो रहे हैं। एक बात और मैं कहूं इसके साथ ही कह दूं, बाहर से जो बच्चे कुरकुरे खाते हैं ना, हो सकता है बनाया होगा किसी टाइम पास के लिए, कभी बहुत दूर जा रहे हैं भूख लगी तो वहां कुछ खा ले, नो डाउट हो जाना, लेकिन सामान्य तौर पर सुबह उठते ही कुरकुरे लाओ, दोपहर को कुरकुरे लाओ, शाम को कुरकुरे लाओ, तो ये तो शरीर को बिल्कुल बर्बाद कर देगा भाई। ये है शिक्षा कि हमको खाना क्या है, ये है शिक्षा कि हमको पानी कहाँ का पीना है। तुम कहीं भी जाकर के पानी पीने लग गए उसमें कीड़े आते हैं ना, कहीं भी जाकर के लग गए पानी पीने, उसमें न मालूम कोई केमिकल डाला हुआ है उस कीड़े को मारने के लिए, डालते हैं ना लाल दवा वगैरह, उसमें न मालूम क्या डाला हुआ है, हम सही तरीके से हाथ नहीं धो रहे उस पानी को पी रहे उस मेरे हाथों से, तो बीमार नहीं होंगे तो कहां से क्या होगा। ये है शिक्षा, हम शुद्ध वायु ले रहे, इंडस्ट्रीज के पास में औद्योगिकरण से धुआं फैलता है, इतनी बीमारियां होती है सर को पता है, इतनी बीमारियां होती है इलाज ही नहीं है उनका। तो आप बाहर निकले उसको देखें, और स्वस्थ जीवन के लिए आप प्रयास करें, विचारों की शुद्धि करें। देखिए सर 86 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी को मैं जानता हूं, उसमें था सर बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे को केंद्रित करके शिक्षा दी जाती थी, मास्टर पढ़ाता था, वो भैया खत्म हो गया। 2005 की दो अलग पॉलिसी आई बाहर ले जाने वाली हुई, और अब जो आई है 2020 एनईपी 2020 में कुछ लिखा होगा सर
2: जी,
1: देखिए इसमें साफ लिखा है सर, शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति। मैंने आपको ये बात साफ साफ कही है कि परीक्षा ही इसका आधार नहीं है, परीक्षा तो पास करने का एक पैरामीटर है, जैसे ये बच्चा तैयारी कर रहा है ना उसमें एक पैरामीटर होता है, इसकी
2: है।
1: पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, करीब प्रत्येक तैयारी में एक पैरामीटर होता है कि भाई कितने से तेज दौड़ेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एक पैरामीटर है, तो ये परीक्षा भी तो पैरामीटर है भैया। सर अपने यहाँ तो फेल करने का भी सिस्टम
2: नहीं है,
1: क्यों हटाया, ये शिक्षाविदों ने मिलकर इसलिए हटाया कि ये तो एक सिस्टम है एकमात्र, 100 में से 100 नंबर लाने वाले की ही नौकरी लगेगी वो जरूरी नहीं है, इनको पूछो। 100 में से 100 नंबर लाएगा वो, फिर वो दौड़ कैसे लगाएगा उतनी। तो सब तरफ से स्वस्थ होना है, तो सब तरफ से स्वस्थ होना है, तो सब तरफ से सोचना है। शिक्षा का मतलब तो वो है, शिक्षा का मतलब पुस्तक पढ़ करके नंबर लाना तो नहीं है, वो याददाश्ती का एक पैरामीटर हो सकता है, वो तो एक बिंदु है जो बहुत ही छोटी सी बात है। तो ये इसका मतलब अब ये हुआ कि दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिसमें शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। वास्तव में हकीकत में तुमको क्या सीखना है वो सीखना है, ये समझ होनी चाहिए। ये है शिक्षा का
2: क्या
1: सर मूल उद्देश्य। और हकीकत क्या है, हम अनाज कैसे पैदा करें अपने खेत में। हम डीएपी और यूरिया का अगर प्रयोग कम करेंगे ना, आपको पता है नैनो यूरिया अभी आया है, एक छोटी बोतल आती है तुम्हारे सबके घर पे होगी, वो जो अपने जो वो जो बैग वाला यूरिया जो काम में लेता है उससे बड़ा काम करता है, छोटी सी बोतल आती है, पता है आपको, नैनो यूरिया देखा है, अतरी कूपे आवे तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो उसका सारा काम कर लेता है। तो बदलते हुए समय में हमको उपयोग क्या करना है, उसकी जगह गाय भैंस का गोबर, बकरी का गोबर, बकरी का जो भी होती है ये खाद, वो अगर आप काम में लेते हैं तो वो आपको शुद्ध अनाज देगी। और सर आने वाले समय में अगर आप देखो तो आपके वहां आरोग्य वन में गया था मैं, वहां दवाई नहीं छिड़कते, ये तुम्हारे पंप लगा के छिड़कते है ना, वो दवाई नहीं छिड़कते, उससे तो बीमारियां आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जितना आवश्यक है उतना करना पड़ेगा, लेकिन जीवामृत वहां बनता है। 10 पेड़ों के पत्ते होते हैं, उनको बॉइल किया जाता है, उसमें आंवला मिलाया जाता है, उसला मिलाया जाता है, एलोवेरा, और उससे एलोवेरा यहां भी लगा हुआ आपके यहाँ, उसको मिलाते हैं उसमें और उसको फिर स्प्रे किया जाता है, कैसे, पानी के माध्यम से दे दिया जाता है, ऑटोमेटिक सब में वो सारी दवाई लग गई, कोई बीमारी नहीं होती। वो खाद लग गया, वो दवाई लग गई, वो सारा उत्पादन बढ़िया से बढ़िया हो गया। हम बीमार होंगे कहां से, बीमार होते हैं लेकिन कम होंगे, आप अंदर से मजबूत है अब कम बीमार होंगे। तो इसका जो मूल जो पर्यावरण का उद्देश्य वो ये है। अब आपको आपके कंटेंट वाली बात भी मैं कर देता हूं क्योंकि इसको हमने इससे जोड़ लिया है,
2: प्राकृतिक संसाधन,
1: हाँ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन इसमें से इस क्लास को। तो इसमें हमने क्या करा है, 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा और कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है, विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में इसमें आपके बताने वाली बात है, और समकालीन विश्व में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता का इनसे क्या मतलब, आपका जो मूल जो जनता है जो पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़ हो रही है वो इसके बारे में क्या सोचती है और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, वो इन सम्मेलनों में सर तय होता है। ये है सर इसके लिए 60 के दशक में ये पर्यावरण के बारे में समझ पैदा हुई जिस बारे में अभी आप और हम रूबरू हो रहे हैं आपकी क्लास में। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सर, ये हुआ था सर रियो डी जनेरो में मेरे ख्याल से, राइट, इसमें लिखा हुआ नहीं है, विश्व राजनीतिक मुद्दों को शामिल कर दिया यहां पर। ये जो 1992 में ये जो हुआ था इसके अंदर पर्यावरण की चिंता की गई, वैसे बहुत लंबे समय से इस पर काम चल रहा है। वही वाली बात जो मैंने आपसे निवेदन किया है, वो क्या, किताब पढ़ते हैं नंबर तो लाते हैं पर काम नहीं हो रहा है, आप समझ गए। आप ये बताओ सरकार ने मुझे रिटायर कर दिया पर मेरी समझ ये है कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं ना, आप समझ गए बात को, भाई हमको क्या समझना है वो समझना है। आपने कहा कि आप आओ साहब पर्यावरण को समझाओ, तो मैं शायद ये समझाने में सफल रह रहा हूं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस कक्षा में पर्यावरण को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। सरकार ने मुझे उम्र के हिसाब से रिटायर कर दिया कि भाई नहीं यार, 60 साल के बाद आदमी कमजोर पड़ जाता है यार वो, पर देख लो हमने तो पर्यावरण के साथ में आनंद लिया है, तो पर्यावरण में मुझे स्वस्थ कर दिया दौड़ने के लिए, आज भी दौड़ रहे हैं, ठीक है ना भैया।
2: उसका राज होने वाला आपका ये जो कर रहे इतना है, इसका राज क्या, सात्विक शुद्धता है ना, और परोपकार,
1: राज तो इसका यही है,
2: उनका विचार है ना, विचार होना चाहिए,
1: विचार एकदम शुद्ध होना चाहिए,
2: तब जाकर काम
1: निकलेगा। जैसे मुझे ये विचार है अभी कि मैं आपको वो चीज दूं जो समझाना है वो समझा के जाऊं,
2: सारी तो सबका है
1: मेरा,
2: थे, लेकिन विचार
1: ये भैया खड़े हैं,
2: भावना उससे
1: ये भैया खड़े हैं। आपको बताऊं कि हमने जब यहाँ पर, मैं जिला शिक्षा अधिकारी था यहाँ पर, कहाँ तुम्हारे एरिए में, आबू रोड में, मैं तुम्हारे ट्राइबल में खूब काम किया, ऐसे ऐसे काम किए, लोग बजट कहते थे कि यार वो वहां बैठा उसके बजट दे दो, पूरे एरिया का बजट आता था, तो हमने बजट को ऐसा उपयोग किया कि उसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। मैं जब यहां आता था तब ऐसा नहीं था ये, लेकिन अब इतना बढ़िया हो गया, पूछो इनके वहां निचलागढ़ में जाते लोग खुश होते। आज मैं आया हूं, देखो भाई साहब ने बुलाया, मुझे आनंद आ रहा है कि चलो हमारे जो बोया था ना वो बढ़िया अच्छा उग करके फल दे रहा है आप सबको, तो हमको अच्छा लगता है। तो हम स्वस्थ क्यों है, दूरगामी सोच के साथ अपना विचार है, अपना संकल्प है, तो वो बढ़िया रखना। हम अच्छा करें तो अच्छा हो जाएगा, मैं समय का उपयोग अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा। तो ये बात तो तुमको समझ में आई कि मैं यहाँ पढ़ाने तो नहीं आया, नहीं, मैं ये पढ़ाई कहां से आई और क्यों आई इसके लिए आया हूं, ये मुझे पकड़ के क्यों लाए।
2: लेकिन क्या है जो अभी समझा रहे, फाउंडेशन है इसका, ऊपर में जितना मंजिल बना सकते हैं, जो अभी जो ज्ञान सुन रहे ना, वो ज्ञान आपका बेस, इसका आधार से चरित्र निर्माण होगा। जो चरित्र निर्माण होगा, कोई भी रोजगार का चिंता नहीं करना पड़ेगा आपको, सभी
1: आपके पास में चरित्र है किसी रोजगार की।
2: तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र निर्माण, विचार निर्माण, शुद्ध विचार, शुद्ध चरित्र।
1: आप बात हमारी समझ पा रहे हैं ना, खाने की पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं है, ये प्रकृति अपने खूब दे रही है। गड़बड़ कहाँ है कि हम गड़बड़ हो जाते हैं तो बीमारी में अपन खत्म हो जाते हैं, इधर उधर जाने में अपना काम पूरा हो गया। आप सही चलोगे, सही काम करोगे तो अपने आप ही सही बरसने लग जाएगा। अच्छे काम के लिए कहीं पर प्रतिरोध करना भी सीखो, करना पड़ता है। हम जब निकलते हैं, अरे यार आज तक तो नहीं हुआ, ये क्या कर लेंगे भाई, हम रिटायर भी हो गए अब तक तो तुमने, अरे हमने प्रयास हमारा कर देना चाहिए, आपको अपना प्रयास करना है, अपने आप प्रकृति दे देगा, नहीं देगा तो आप प्रयास करोगे तो नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, हमको मिला है तो आपको भी मिलेगा ना। खाने की चिंता नहीं करनी है, भोजन मिल जाएगा। अरे देखो हम तो नौकरी से, ये तो नौकरी भी नहीं की है, नौकरी अच्छी जगह से छोड़ छाड़ के आ गए, भूखे बैठे हैं। अच्छा अपन तो, हम तो हमारे एरिया में घूम रहे, ये तो कहां घूम रहे, उड़ीसा से आए हैं और यहां घूम रहे। तो कहने का अर्थ इसका जो है कि आप अच्छा करोगे निश्चित रूप से आपको अच्छा मिल जाएगा। अब ये जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं इस पे जा रहे हैं, देखिए यहां पर चिंता क्या हुई थी, पर्यावरण की चिंता क्यों है, ये देखो वहीं पर आ गए। क्यों चिंता है, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है, चरागाहों में चारे खत्म होने को है, मत्स्य भंडार घट रहा है, जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है, प्रदूषण बढ़ा है, खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो ये जब उन्होंने तब सोचा था, कब सोचा था, 1992 में सोचा है मुझे लगता है, अब तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया भाई, इसलिए अब हम खड़े हुए, मैं खुद खड़ा हुआ। भाई साहब आप किसका काम करेंगे, हम ईश्वरीय चिंतन करेंगे, अच्छी बात कहेंगे और पर्यावरण से ही देखेंगे सभी चीजों को, हमने आपसे यही वादा किया, मुझे कहीं ले जाओ वहीं से पर्यावरण शुरू होगा हमारा, बस पेड़ के पौधे जो पेड़ है उसकी जड़ों में पानी डालेंगे वो छाया देगा कि नहीं देगा, बस यही काम करना है,
2: देते चलो, बस
1: करते चलो, करते चलो,
2: देते जो भी हमारा पास,
1: देखिए सर इसमें संयुक्त राष्ट्र
2: का रिटर्न मिलेगा, अच्छा सोच कर देंगे ना तो रिटर्न अच्छा ही मिलेगा।
1: सर ये विकासशील देशों की सर 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है, पानी नहीं है साफ,
2: इस गांव में भी पानी के लिए कितना गर्मी का टाइम है दिक्कत होता है ना, कितना दूर जाना पड़ता आप लोग जाते हैं ना, पानी कभी कोई नहीं आता, तो पानी कहाँ से आता आप घर के लिए, कहाँ से आता बहन तुम बता, देखिए तुम्हारा घर में नल लगा हुआ है, बताओ नहीं कहाँ से लाते पानी बताओ, कितना दूर जाना पड़ता सबको पता है ना, तो पानी का कमी है कि नहीं।
1: अब सर देखिए वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, ये देखो ये साइंटिफिक है, ओजोन कम क्यों हो रहा है पता है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आपने भी मोटरसाइकिल ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, तो वो जो निकलने वाला जो सल्फर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगी। तो मैं तो साहब से निवेदन यही करता हूं कि इन साधनों का कम से कम उपयोग करो, आधा किलोमीटर तक हम पैदल चले, उससे ज्यादा है तो साइकिल से चले, ज्यादा ही दूर है तो मोटरसाइकिल काम में ले ले, कोई बात नहीं, सही बात है ना। सर अभी मैं वो टिकट लाया था मैं सर, मुझे कहीं से आना था दो दिन पहले, आपने बुलाया था, मैं कहीं बाहर गया था। मैंने सर ट्रेन पकड़ी, कोई कैसे जाएंगे, मैंने कहा यार अपन ट्रेन से जाएंगे। सर ट्रेन में कोई पॉल्यूशन नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कोई पॉल्यूशन नहीं, आपका उसमें योगदान होता है। तो अच्छे काम के लिए आप ये करो ना, भी इसकी जगह ये ले लो, इसकी जगह ये ले लो, उसका अच्छा विकल्प चुनो ताकि उसका प्रदूषण नहीं हो। तो मेरे ख्याल से सर सार रूप में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अपने लिए जिए, मतलब पर्यावरण की शुद्धि के लिए अपना विकल्प तलाश। आप नाश्ता करने में कुरकुरे नहीं खाएं, क्या खाएं, घर पे हल्का सा नाश्ता बना के खा लें, घर की चीज का। हम कोई गलत चीज का उपयोग नहीं करें, अच्छी चीज का उपयोग, भाई विकल्प अपने को काम में लाना। भूख तो मिटानी है, खा लो, कोई इधर उधर की कचरा पचरा खाने से अच्छा सा केला लेके खा लो, उसी कीमत में मिल जाएगा। आई समझ में? तो आप सब तरफ से स्वस्थ हो जाएंगे और फिर शांति से सुबह थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा बैठा करो, थोड़ा अपने लिए सोचा करो, थोड़ा परिवार के लिए सोचा करो, ठीक है ना। अपने को गुस्सा नहीं आना चाहिए, शांति से बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को प्यार से सिखाओ, ये सारी चीजें सिखाओगे तो अपने आप ही अपन मजबूत हो जाएंगे। धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रस्ताव, देखिए कितना भाग्य का बात है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदल्ला में और इतना बड़ा एक्सपर्ट जो कैमरा है, पर्यावरण पूरा एक्सपर्ट है, बच्चों को अपना जो भाव है, भावना है, बच्चे कैसे आत्मनिर्भर बने,
1: क्योंकि इतना ज्यादा वो नहीं पाएगा,
2: अपना परिवेश को, अपना गांव को सशक्त बना सकते हैं। इस माध्यम से सुने हमारा श्रोता मित्र इसको फायदा लेंगे जरूर, और जो बच्चे सुन रहे इस कार्यक्रम को शाम को 7 से 8 बजे, वो भी इस कार्यक्रम का माध्यम से जितना हो सके ना ज्यादा ना कम अपना आवश्यकता अनुसार ग्रहण करके उसको काम में लाएंगे तो जरूर सर का इतना मेहनत आपको देने के लिए जो आए, जब उनको ड्यूटी था जो पोस्ट पे थे उनको पूरा बांधा हुआ था, उन्होंने कहा नहीं जा सकते,
1: तो काम ही नहीं कर पाता
2: नहीं करते, लेकिन अभी रिटायरमेंट होने के बाद जहां भी जाए, जहां जितना भी समय दे दे सकते, ये कम बात नहीं और आपका भाग्य का बात है। ऐसे बार बार आपको जो मिलेगा, देखो केवल गाँव पूरा एजुकेटेड गांव, हर घर छोड़ के एक एम्प्लॉय मिलेगा, एजुकेटेड शिक्षक हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कुछ ना कुछ पोस्ट लेकर रहते हैं, क्यों, वो मेहनत करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं और उनका शुद्धता विचार कुछ करने के लिए गांव के लिए, तो आप क्यों नहीं, आप भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, यस बोलो, यस आई कैन, जोर से बोलो, यस
3: आई कैन,
2: यस वेरी गुड, मैं कर सकती हूँ, बोलो क्या नाम है तुम्हारा, हाँ तुम कर सकती है,
1: ये एक्चुअल में एक पर्यावरण को एविडेंस आ रहा है कि भाई वास्तव में ये लोग कम्युनिटी में जाकर के ये चीज कर रहे हैं, बात आप लोग बोलेंगे तो पता चलेगा।
2: देखो सभी से अपना करेंगे तो कुछ पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा जो सोएगा वो रोएगा, हम रोएंगे नहीं, खोएगा नहीं,
1: रोएगा,
2: हम पाएंगे। यस क्या बोले, जोर से बोलो, यस आई कैन, वेरी गुड, मैं कर सकती, मैं कर सकता हूँ, बोलो जोर से, मैं नहीं करूंगा कौन करेगा, मैं ही किया था और मैं ही करूंगा, बोलो, मैं किया था, मैं ही करूंगा, वेरी गुड, ताली बजाओ,
1: वेरी गुड।
2: सर हमारा गणेश सर को कौन भूल सकते भाई, हम निचलागढ़ से परिचित है और गणेश सर रेडियो मधुबन और ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या जानते हैं और क्या सहयोग देते हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र भाई, वैसे मेरी मनसा तो कुछ अलग ही है, लेकिन हमारा विद्यालय जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास में आया हुआ है और उसको मैं मिनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ और लगातार प्रयासरत हूँ और आने वाले समय में शायद ये दृष्टि यहाँ पे विकसित हो जाएगी। धन्यवाद,
5: बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सर और हमारा साथी सहयोगी श्रीमान भोपाल राम पुरेत जी को, सुंदर में आज बच्चों का साथ रूबरू होकर पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हमारा नैतिकता और चरित्र निर्माण में पर्यावरण कितना आवश्यकता वो विषय रखे हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर पर्यावरण स्पेशल।

0: अरे तू बाहर क्यों बैठा है? अंदर क्यों नहीं आया?
1: खा रहा हूँ ना।
0: अच्छा, नाम क्या है तेरा?
1: बबलू।
0: बबलू हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता है तू?
1: पांचवी तक पढ़ता था, लेकिन अब छोड़ दिया।
0: क्यों?
1: माँ बहुत बीमार है ना, उठ ही नहीं सकती, मैं ही घर संभालता हूँ।
0: अच्छा एक बात बता, तू रहता कहाँ है?
1: यहाँ बिरवाटकर चौल में, एक घंटा दूर।
0: बिरवाटकर चौल वो जुहू वाला क्या?
1: हाँ।
0: चल चल भाग, माँ इंतजार कर रही होगी, जा।
2: अरे बबलू देख, तेरे से कोई मिलने आया है।
3: ये बबलू है?
2: हाँ वही बबलू है।
3: अच्छा तू बबलू है?
1: आप कौन?
3: मैं डॉक्टर हूँ, बड़ी जान पहचान है तेरी। चल तेरी माँ को देखते हैं।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के उपलक्ष्य में रेडियो मधुबन के सुनने वाले सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: ओम शांति। आज है 12 अक्टूबर 2026 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी शिक्षाओं भरी मुरली सुनाई है, जिसमें बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम रूहानी पाठशाला में बैठे हो, ये कोई जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में हम सभी रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सम्मुख बैठे हैं, जहां रूहानी बाप हमें राजयोग सिखाते हैं। और राजयोग अर्थात राजाई प्राप्त करने का योग, अर्थात हम नर से सुनारायण, नारी से सुश्री लक्ष्मी बनते हैं या मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वे डबल ताजधारी थे, एक लाइट का ताज, दूसरा रत्न जड़ित ताज। ये लाइट का ताज जो है ये पवित्रता की निशानी है। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य हम प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो हमारे में वो रॉयल्टी होनी चाहिए, अंदर में नशा रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जमीन से उठ करके कोई ऊंची पोजीशन को प्राप्त कर लेता है तो उसको कितना नशा रहता है, ठीक इसी तरह बाबा कहते तुम बच्चों को भी नशा रहना चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा से डबल सिर ताजधारी बनते हैं। साथ ही बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ये भी नशा होना चाहिए कि इस समय हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को जब ऐसा नशा सदाकाल रहेगा तब तुम बहुत सुंदर अपने जीवन के अंदर दैवी गुणों को धारण कर सकेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे तुम बहुत उच्च जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। यहाँ बाबा कोई स्थूल जाति की बात नहीं करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। आज की मुरली से प्रश्न है किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। उत्तर है ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। ये नहीं कि यहाँ आते हैं मन सफेद वस्त्र धारण ही करना पड़ेगा, नहीं। बाबा कहते तुम कोई भी वस्त्र पहन करके भी सहजता से पढ़ाई पढ़ो और बाबा को याद करो। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात भी नहीं है। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा जानती है ये पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सलका कपड़ा पहनाओ अर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं, श्याम हो गए हैं। बाप सांवरे को ही गोरा बनाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं रूहानी पाठशाला में। ये जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं इसको रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। यह है नई बातें। यह भी तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे डबल सिरताज थे, लाइट का ताज और रत्न जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज, जो होकर गए उनको सफेद लाइट दिखाते हैं। चारों ओर एक प्रभा मंडल सफेद लाइट का दिखाते हैं। वास्तव में बाबा कहते यह है पवित्रता के निशाने। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। दुनिया के अंदर भी कई ऐसे दिव्य आत्माएं हो गए, आज भी जब उनके फोटो निकालते हैं तो चारों ओर लाइट का ताज या प्रभा मंडल दिखाते हैं। बाबा कहते अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते, ये पवित्रता की निशानी देते हैं। लाइट और डार्क दो है, लाइट और डार्क। तो आज की दुनिया में तो हरेक को एकदम डार्क प्रभा मंडल चारों तरफ है। ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क है उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि देवी देवताएं कैसे इतने ऊंच पवित्र बने। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट समझाने के लिए। बाबा कहते समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र है, इसलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से समझते नहीं है कि हम इस याद की यात्रा से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। परमात्मा के याद की यात्रा से ही हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसको पता नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी किसको पता नहीं है। अब तुम जानते हो हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिर ताज वालों की पूजा करते हैं। ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है, वह ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं है। बाबा कहते हैं भारत में ही डबल सिर ताज देवताओं की पूजा होती है, तो जो पूजा करने वाले हैं उनके चारों ओर लाइट का ताज नहीं है। पवित्र की ही पूजा होती है, लाइट है पवित्रता की निशानी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है, नहीं, ये पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसीलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए हैं। आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए। कौन सी बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो कोई बाबा कहते नीचे जाति का है, वह एमपी एमएलए आदि बन जाते हैं अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं। ऐसे बहुत है, जाति भल कोई भी है परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है। फिर ड्रेस आदि भी ऐसे ही पहनेंगे, वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए। वह भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है। तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं। तो बाबा कहे, हल्की आदतों को मिटाते जाना है तो शूद्रपने की आदतें मिटती जाएंगी। अंदर में ये नशा रहना चाहिए हमको परम पिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं। हम ब्राह्मण बनते हैं फिर देवता बनेंगे तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती है। आसुरी चीजें सब छोड़नी पड़े। बाबा कहते हैं कोई अच्छी पोजीशन पर जाता है तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। उन्हों का तो है इस समय के लिए। तुम तो जानते हो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, विचार सागर मंथन करना है, मनन चिंतन करना है कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। हम क्या थे, हम अभी क्या बने हैं, अब विश्व के मालिक बनते हैं। जब कोई उच्च पद पाता है तो फिर वह फकूर रहता है, नशा रहता है। तो तुम भी थे कौन? बाबा कहते पतित छीछी थे, अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं। यह भी तुम समझते हो परम पिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। मूल वतन व सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे, दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। 84 जन्म का पाठ बजाना ही है। वह तो कह देते हैं 84 लाख योनियां। बाबा कहते 84 लाख योनियां जरूर है, परंतु हमें इन सब योनियों में भटकने की जरूरत नहीं। कितना घोर अंधेरे में है अभी तुम समझते हो। 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं हैं। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बिगर कोई ऊंच पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजा पद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है, ऐसे चित्र कहां रख पढ़ाते होंगे। लक्ष्य का चित्र सामने रख करके कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म ले पतित बने हैं। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है कि पतित दुनिया है ना, इसमें सब आ जाते हैं। बाबा कहे पतित दुनिया में तो सब आ जाते हैं। वो खुद भी गाते रहते हैं, पतित पावन आओ। सभी मनुष्य पुकारते हैं भगवान को, हे पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया है पावन दुनिया, पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके। बाबा कहते पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके। अभी तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, ईश्वर हमको पढ़ाते हैं, गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं ना, तो तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना। यहाँ ड्रेस आदि की बात नहीं है, आत्मा को पढ़ाई पढ़ना है। आत्मा जानती है ये पुराना शरीर है, इनको तो हल्का फल्का कोई भी कपड़ा पहना है तो हर्जा नहीं है। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की व भपका करने की बात नहीं है। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। बात तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। शरीर तो पतित है, इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, परंतु आत्मा और शरीर पतित है ना। श्री कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, उनकी आत्मा और शरीर दोनों जन्म पुनर्जन्म लेते लेते सांवरा हो जाता है। गांवड़े का छोरा था, तुम सब गांवड़े के छोरे थे, दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं। बाप को जानते ही नहीं है, हद का बाप तो सबको है, बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, भक्ति और ज्ञान। बाबा कहते भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे। अभी है अंत, सत्युग में ये कुछ भी होता नहीं, अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। मनुष्य भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नमः वासुदेव। बचपन में जिसको कृष्ण कहा वही ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, जब रासलीला रचाए तो हरे मुरारी कहा, और फिर जब राज गद्दी पर बैठते हैं तो नाथ नारायण कहते हैं। परंतु बाबा कहे राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये भी किसको पता नहीं है। गाते हैं पता नहीं है, तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है, साक्षात्कार आदि में देखा है। तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब सांस थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बल कोई रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं हैं। समझते हैं यहाँ तो गरीब भी है, समझते हैं यहाँ तो गरीब भी है, इसलिए लज्जा आती है। लेकिन बात तो है गरीब निवास, भगवान को कहा ही जाता गरीब निवास। कोई कोई सेंटर्स पर गरीब भी आते हैं। बाप कहते देह के सब धर्म छोड़, हम गुजराती है, हम फलाना है, ये सब देह अभिमान है, यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे। यह तो समझते हैं, यह तो जौहरी था, ये तो जरूर समझते, भले साधारण है ब्रह्मा बाबा, लेकिन था तो जौहरी। बाप खुद रिमाइंड कराते हैं कि कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आते हैं। हाँ शिव बाबा साधारण से साधारण तन में आता है, इसलिए गीता के सातवें अध्याय में कहा है मैं अति साधारण रूप में आता हूँ, जिस कारण से मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। बहुत जन्म के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया था, उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा। न युद्ध का मैदान है, ये पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिर ताज बनना है, अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है, सतयुग त्रेता में लाइट है, लेकिन जैसे जैसे पतित बनते गए तो लाइट चली जाती है, तो फिर सिंगल ताज रहता है। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूछते हैं, यह भी निशानी जरूर होनी चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं, तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शों पर दिखाएंगे तो बुद्धि में आ जाएगा। बाबा कहे, जैसे स्कूल कॉलेज में कोई नक्शा आदि दिखाकर किसी को पढ़ाते हैं तो बुद्धि में आ जाएगा। यूरोप उस तरफ है, आयरलैंड है, लंदन उस तरफ है, नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है। नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। अब तुम जानते हो ऊपर में है पूज्य डबल सिर ताज देवी देवता है, तो नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं, सीढ़ी उतरते हैं ना, ये सीढ़ी तो बड़ी सहज है जो कोई भी समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। तकदीर ही ऐसी है, स्कूल में पास ना पास तो होते ही है। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता, बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ न सके, कोई तो पूरा पढ़ते हैं, परंतु फिर भी वह है जिस्मानी पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। कहते हैं ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है, तो बाबा कहते ये ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि भी सोने का बर्तन होना चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है उसको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाएगी। कहा जाता है कि यह तो जैसे एकदम ठिकर बुद्धि है, वहां ऐसे नहीं कहेंगे। सत्युग में कोई किसी को ठिकर बुद्धि नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग था, ये भूल गए कि भारत स्वर्ग था। यह भी कहां प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता है। पहले पहले तो ये त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत जरूरी है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। बच्चों को सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर पर मुख्य चित्र तो जरूर रखने हैं, चित्रों पर अच्छा समझ सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा ये राजधानी स्थापन हो रही है, हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आगे हम क्या थे, बाबा कहते हैं विराट रूप के चित्र में अगर देखा जाए तो आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, फिर देवता बनना है। शिव बाबा हमको ब्राह्मण बनाते हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर ये सीढ़ी कैसे उतरे, कैसे क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्ध बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, भारतवासियों को पता होना चाहिए ना। फिर क्या हुआ, कहां चले गए, क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई, उन्होंने लड़ाई में

निराकार बाप पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा उच्च लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। शिव बाबा परम नाम से दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते हैं। परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए, दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं, लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उनकी डिनेस्टी बनती है, कितनी समझाने की बातें हैं। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, कोई चित्र तैयार किया झट बाबा के पास भाग आना चाहिए, बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। बाबा कहते मैं सावल शाह हूं, हुंडी बह जाएंगी, कोई बात की परवाह नहीं। इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है, वहां ही हठयोगियों का म्यूजियम है, तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे। बाबा के सेवा के लिए भी प्लान्स देते हैं कि तुम्हारा ऐसा अच्छा म्यूजियम हो जो कोई भी आकर देखे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है, यानी शुद्ध और पवित्र बनाना है, याद से ही बर्तन सोने का होगा। अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देनी है, बहुत रॉयल्टी से रहना है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संगम युग पर एक का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग पर एक का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग ही एक का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। माया जीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज, और उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप भी आकर मनुष्य रूप में मिलने आता है। इस फल में सब फल आ जाता है। आज का स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। आज का व्यक्ति इशारा है, परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारी पर भी उपकार करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते वर्तमान समय अनेक आत्माओं में स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। तो उपकार सच्चे दिल से होता है,
विश्व राज्य अधिकारी बनना है।